रहे तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, ये भी बाबा इशारा दे रहे हैं, समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे तो जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युगों में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं। बाबा तो हरेक को रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है, लेकिन अधिकार लेना ये हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते। ब्रह्मा बाबा का इतना प्यार है कि बाबा अपने साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे, क्या करेंगे, पूछते बाबा। फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हैं। सुनाया, आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। हर एक बच्चे बाबा के साथ है। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है। क्यों? जैसे ब्रह्मा बाबा का प्यार है तो बाबा कहे माया का भी प्यार है, उनका भी प्यार है। और आजकल दो रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है। कौन से दो रूपों में चांस लेती है? दो रूप में आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है, जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूं, मैं कम नहीं हूं। तो एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा अहंकार, मैं राइट हूं मैं कम नहीं हूं, ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूं। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। तो व्यर्थ संकल्प की लहर और दूसरा अभिमान की लहर, उस समय कोई साथ नहीं देता है। तो बाबा कहे ये टाइम वेस्ट करता है, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं ताकि ये टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी रखने का साधन है। मनन करना और मगन हो जाना, बाबा कहे यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। मुरली का मनन करो और मुरली में मगन हो जाओ। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसीलिए देता है ताकि बच्चे व्यर्थ संकल्प में न जाए लेकिन इस होमवर्क में बिजी रहे। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं, दुनिया में भी अगर बच्चों को इतना ज्यादा होमवर्क दे देते हैं तो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे।
ऐसे रोज की मुरली, उसमें चार ही सब्जेक्ट का होमवर्क है, मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट और मनसा वाचा कर्मणा और दिव्यता जीवन के अंदर लाना, बाबा कहते हैं ये होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, अभी विशेष अटेंशन किसमें देना है, तो बाबा कहते हैं अपने संस्कार और दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना। बाबा ने देखा बच्चों का अटेंशन है, याद की यात्रा पर भी भले नंबर वार है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार परिवर्तन करना, दूसरों के संस्कार को भी परिवर्तन करना। ये स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, भाव नहीं नेचर है, ये धारणा की सब्जेक्ट है, यह धारणा की सब्जेक्ट है, अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो, परिवर्तन पर विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है, कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो, ये व्यर्थ संकल्प ना आए और मनन चिंतन मगन अवस्था की ओर आगे बढ़े। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो। धारणा पर अटेंशन देना, माना कोई भी बात हो तो सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो, कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है, आश्चर्य वाली मात्रा, नीचे फुल स्टॉप और ऊपर फिर डंडी लग जाती है, मात्रा बन जाती है। आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे, बाबा सावधान भी करते हैं कि आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, उस समय क्वेश्चन मार्क आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी, इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि कोई भी बात आए क्या करो, फुल स्टॉप, बात गई बीत गई, तब विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। ये फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास जितना होगा, आगे बाबा कहे यही अभ्यास बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं, क्या चार ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है, ये बाबा देखते हैं, वह साधारण है। तो क्या देखा बाबा ने, क्या देखा, ये पुरुषार्थ चारों ही सब्जेक्ट में तीव्र है या साधारण है। तो बाबा ने क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है।

फॉलो करो। बाप समान बनने का लक्ष्य है तो उसकी सहज विधि बाबा बताते, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अर्थात टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो, मिलाओ अपने आप को बाबा के साथ। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है, ये टैली करो कि आज अगर बाबा होते तो क्या बाबा का ये कर्म होता, बाबा का ये बोल होता या बाबा का ये संकल्प होता। कहां भी जाता है पहले सोचो फिर करो, तो टैली करो। बोलने के पहले तोलो फिर बोलो, तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं। आप भी चाहते तो हो बाप समान बनने का, जब रू रिहान करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं, उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। ये करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं लेकिन कर्म तक आने में, संकल्प बहुत उमंग उत्साह वाले लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना। बाबा कहते अभी मनसा द्वारा क्या करना है, जो कर रहे हैं उसके लिए तो बाबा खुश भी है, सफलता भी देख रहे हैं, लेकिन अभी समय प्रमाण मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना। ये सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरे के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चलकर बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। इस पर आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें देना, इसके भी बाबा कहते आवश्यकता पड़ेगी। जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूं, वह हाथ उठाओ। किरणों देने की सेवा मैं करता रहता हूं, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। अच्छा कर रहे हैं, उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सर्कमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। आ नहीं सकेंगे जो किसी को हम ज्ञान सुनाएं, इसलिए दोनों सेवा, उस समय बैठे बैठे ये किरणें देने की सेवा, अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है, सीजन का पहला टर्न था, तो डबल फॉरेनर्स का पहला टर्न होता है मिलन का, इसलिए बाबा कहते आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है, वह डबल फॉरेनर्स वाह। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल्प पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। और बाप दादा ने सुना कि हर एक अपनी अपनी एरिया में, गांव गांव या शहरों में जो रहे हुए हैं, वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। हर एक विदेशी अपने अपने स्थान पर

0: दूर दूर तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। तो बाबा कहते उसकी मुबारक हो, मुबारक हो, नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, हालात बदलेगी, तो आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत बहुत बहुत उलहने मिलेंगे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया भी नहीं। संदेश तो देते, बहुत उलहने मिलेंगे कि हमें सिर्फ संदेश तो दे देते, इसलिए अभी कर रहे हैं और ज्यादा कोई कोना रह नहीं जाए इसका प्रयत्न करना। हाँ, बाबा कहे और ज्यादा कोई कोना रह नहीं जाए इसका प्रयत्न करना। बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चे जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हों को देख खुश है, बहुत बहुत खुश है। क्यों क्यों खुश है? अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को पसंद है कि कोने कोने तक पहुंचने का, किसी भी साधन से संदेश पहुंचाना है। ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। साधन भी निकलते रहते हैं तो बाबा कहते उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। आप जहां भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वह सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑल राउंड जा रही है साधनों को सेवा में लगाने के लिए। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो वह बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। आप कहां भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में कहां भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है। इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं हर एक को क्या देते हैं, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ, पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। बाबा कहते प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो। देखो आपका ये यज्ञ, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि देखो आपका ये यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई है। साइंस की सब इन्वेंशन शुरू हुई है। साइंस भी आपकी सेवा में मददगार है, साइंस भी सेवा में मददगार है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है। ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। तो बाबा कहते ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना? पूछते बाबा, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश है? जो सदा खुश रहता है वो हाथ उठाओ। सदा खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश, बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो? रहते हो? बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना? घबराते तो नहीं हो? वेलकम करते हो, अनुभवी बनाते हैं। ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई ये नहीं कहो, ये पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो, पेपर है। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है। इसलिए माया से घबराओ नहीं, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है क्या करूं कैसे करूं, क्या क्यों ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है, ब्राह्मणों के सोचने का काम नहीं है क्यों? बाबा कहे त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे ये उठ ही नहीं सकता। आदि मध्यंत को जो जानते हैं तो ये सवाल उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो, अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, जो भी पत्र, फोन, जिन्हों के भी याद, प्यार या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए यादगार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है, उन सबको बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहां नहीं भेजा है लेकिन दिल में भी संकल्प किया है, वह संकल्प भी बाप के पास पहुंच गया है। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, और इस वर्ष कोई ना कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं के प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा ने लास्ट में कहा ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपने तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंख खुल जाएगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। कभी कभी माया की बेहोशी आ जाती है तो आंखें बंद हो जाती है, तो बाबा कहे दिल से कहो मेरा बाबा तो देखो ये बंद आंख भी खुल जाएगी। आज का व्यक्ति इशारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है उनका पुरुषार्थ सरल होगा। संपूर्ण स्टेज की निशानी है उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। अच्छा, ओम शांति।
1: ओम शांति। अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है साक्षी भाव, जिसमें हम इस संसार के खेल को, सभी आत्माओं के पार्ट को, होने वाली घटनाओं को जस्ट देखते हैं। उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता, हम उसको एंजॉय भी करते हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। बाबा ने कहा है जैसे मैं वतन में बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो। जरा ऊपर को देखें, बाबा जब इस संसार को नीचे की ओर देखता होगा तो क्या उसके मन में ये भिन्न भिन्न तरह की दुख अशांति परेशानियां आतंकवाद भ्रष्टाचार ये सब देखकर कुछ परेशानी होती होगी? बिल्कुल नहीं। उसे पता है जो हो रहा है वह कल्प पहले भी हुआ था, वही सत्य है और वही तो होना है, वही होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग का अंत है। कलयुग के अंत में सच्चाई ईमानदारी पवित्रता ये सब कहाँ हो सकती है? तो हम सभी भी बाबा की तरह अपने चित्त में साक्षी भाव धारण करें। हमारे परेशान होने से, हमारे उलझनों में आने से, हमारे दुखी होने से, हमारे प्रश्नों में उलझने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सभी को ड्रामा का विशेष ज्ञान दे दिया है। ड्रामा के ज्ञान को योज करते हुए हम साक्षी भाव को धारण करें। साक्षी स्थिति बहुत मीठी स्थिति है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ड्रामा की 10 बातें निकाल लें और उनको अपने चिंतन में लाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे सभी आत्माएं इस संसार के नाटक में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कितना सुंदर खेल चल रहा है, एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से, एक सेकंड नहीं मिलता दूसरे से, कितना वंडरफुल खेल बना हुआ है। सब आत्माएं तो अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, वास्तव में तो यहाँ किसी का कुछ भी दोष नहीं है। ये एक बहुत सुंदर बात रहेगी। दूसरी बात, जो कुछ यहाँ हो रहा है क्योंकि वो कर्म अनुसार हो रहा है, वो किसी ने फिक्स नहीं कर दिया है, मनुष्य ने अपने कर्मों के अनुसार स्वयं उसको बनाया है, तो जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही कल पहले भी हुआ था, वही होना चाहिए। इस बात को याद रखते हुए अपने चित्त को पूरी तरह शांत करें। ड्रामा के खेल को देखते हुए न कोई क्वेश्चन उठे, न कोई कंप्लेंट हो, सब ठीक चल रहा है। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट बज रहा है, जिसमें जितनी शक्तियां हैं, जिसका जितना अनादि अविनाशी पार्ट है, वो अपना प्ले कर रहे हैं। हमें उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। और याद करें, सबको देखते हुए याद किया करें, इन सब आत्माओं का अपना अपना भाग्य है, चाहे वो आपके बच्चे हों या और कोई, सब अपना अपना भाग्य लेकर ही आए हैं। हम तो केवल निमित्त उनकी पालना कर रहे हैं। ये संकल्प हमें बिल्कुल निश्चिंत करेगा, सब अपना भाग्य बना रहे हैं, सब अपना भाग्य खा रहे हैं। साथ में मैं हीरो एक्टर हूँ, मुझे अपना पार्ट इस ड्रामा में सुंदर से सुंदर बजाना है, और जो कुछ हो गया क्योंकि वो कल्प के बाद ही रिपीट होगा, इसलिए उसको बार बार खोल कर नहीं देखना है। ड्रामा का ये ज्ञान हमें पास्ट को भुला देता है, और क्योंकि भविष्य पूरी तरह निश्चित है, ये भविष्य का ज्ञान हमें निश्चिंत कर देता है। तो इस तरह ड्रामा के ज्ञान को याद करते हुए आज सभी आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे कि हर आत्मा इस सुंदर नाटक में अपना पार्ट बजा रही है। ये नाटक सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। और ऊपर को देखेंगे, ज्ञान सूर्य हमारे ऊपर अपनी किरणें डाल रहा है, उसकी किरणों के नीचे रहते हुए हम इस खेल को देख भी रहे हैं और अपना सुंदर पार्ट बजा भी रहे हैं। आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों, सुबह के इस सुंदर समय पर हम हमेशा ही भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि सुबह की सुंदर वेला अगर हम एकाग्रचित होकर कुछ समय क्यों न सही लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो एक तो दिन पूरा बहुत अच्छा जाता है और दूसरी बात ये है पुण्य की भी कमाई होती है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि भगवान किसको कबूल करता है? बहुत खूब कहा है किसी ने, जैसे मैले कपड़ों को दुनिया कबूल नहीं करती, वैसे ही मैले मन को प्रभु कबूल नहीं करते। और इसीलिए मन जितना साफ, मन जितना स्वच्छ, उतना ही हम प्रभु के नज़दीक जा सकते हैं। भगवान को क्लीनलीनेस बहुत पसंद है और इसीलिए कहावत भी है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। दोस्तों, मन को स्वच्छ कैसे करें? क्या मन को स्वच्छ करने के लिए कोई साबुन बनी है? दोस्तों, जी हाँ, साबुन तो है एक, और वो है लक्ष्य। भगवान के प्रति हमारा लक्ष्य कितना है, वो लक्ष्य सोप अगर हमारे पास है तो सचमुच ही हम भगवान को, समय की बात नहीं है लेकिन 10 मिनट भी अगर हम बैठे तो भी हमारा लक्ष्य अगर उसके साथ हो, उसके पास हो और बुद्धि भटकती नहीं हो तो बहुत सारा पुण्य, पुण्य की पूंजी हम जमा कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए इसी सिलसिले में अमृतधारा में हम चर्चा करते हैं शास्त्रों की, जिसमें कई सारी बातों को जाने अनजाने में हमने कुछ गलत समझा है, या कहो हमारे चिंतन की धारा बदली हुई है या थी। तो अभी उसी सिलसिले में हमारे साथ उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को मन से और दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भक्ति जी, ये मन के ऊपर जो आपने सुविचार सुनाया, मुझे वो शेर याद आया कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ कर रहे थे। हमारे चेहरे पे धूल रहती है और हमें लगता है कि आईने पे धूल है और हम आईना साफ करते हैं। ये तो एक रूपक है, मिसाल है, लेकिन हमारे मन में जो किचड़ा है, मन में जो गंदगी है, उसे साफ करने के लिए जैसे आपने कहा कि अच्छा ब्रश चाहिए, और ये जो ब्रश है वो आत्मचिंतन है। आपने जैसे कहा लक्ष्य का सोप है, वैसे आत्मचिंतन ये एक ब्रश है, और सुबह शाम अगर हम उसे घुमाएंगे, जैसे हम कमरे साफ करते हैं उसके लिए ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ भी ये झाड़ू या ब्रश अगर हम आत्मचिंतन का करें तो मन सुबह सुबह बहुत अच्छा साफ होता है। और ये जो ब्रश है आत्मचिंतन करने के लिए, उसको हम अच्छे विचार अगर हम पैदा करते हैं तो वो ब्रश बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन सुंदर होना चाहिए, मन सुमन होना चाहिए, और इसीलिए तो हम अमृत धारा का कार्यक्रम करते हैं कि मन को कैसे समझाए।
0: बिल्कुल, और दोस्तों इसीलिए कई सारे गीत भी वैसे ही बने हुए हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए। हमारे मन के दर्पण में हम खुद को ही देखना शुरू करें तो बहुत सारी कमी कमजोरियां भी नजर आएगी, और धीरे धीरे हमारा मन जो है वो सचमुच बहुत ही सुंदर बन जाएगा, और ऐसा सुंदर मन प्रभु भी पसंद करता है। दोस्तों, चलिए हम कहानी सुनते हुए ही अमृत धारा की शुरुआत करते हैं, या कहो कहानी सुनने के बिना हम शास्त्रों की बातें नहीं करते हैं। आदत तो हो गई होगी आपको, बहुत सुंदर कहानी है आज की। एक घटना है मगध देश की, तो ये मगध के एक छोटे से राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब वे वृद्धावस्था में थे, करीब पहुंचे थे, तथा उनको लग रहा था कि अभी तो अपने जीवन का सूर्य अस्ताचल के करीब जा रहा है और कोई संतान की प्राप्ति की आशा तो है नहीं, तब सोचने लगे कि उत्तराधिकारी किसको बनाएं। और फिर उन्होंने बहुत सोच समझ कर अपने राज्य के एक सैनिक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कौन था वो? वो सैनिक बहुत वीर था, साहसी था, बुद्धिमान भी था और उसने अपनी बुद्धि और वीरता से अनेक बार राजा के प्राणों की रक्षा भी की थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि जो राजा का उस पर स्नेह था, विश्वास था, जिम्मेदारी किस प्रकार से वो निभा सकता है ये अनुभव भी था। तो राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद वह राजगद्दी पर बैठ गया। दोस्तों, अब एक सैनिक जो राजा बन गया है, क्या उसे प्रजा ने स्वीकार किया? उसको कौन कौन सी चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जरूर सुनते हैं अगली कड़ी में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों चलो तैयार हो जाइए अगली कथा सुनने के लिए। तो एक सैनिक स्नेह और विश्वास का पात्र बनकर राजा की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठ गया। अब मगध के नागरिक जो थे वो उसका सम्मान नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वह एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार से आया था, राजघराने का व्यक्ति तो था नहीं, और सबको पता था कि उसने अपना जीवन जो है बहुत निचले स्तर से प्रारंभ किया है। वो भी ये बात को जानता था कि मगध के लोग जो है, प्रजा जो है, उसका सम्मान नहीं करते हैं, किंतु उसने इसके लिए कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए थे। राजा था, उठा सकता था, लेकिन अभी तक नहीं उठाए थे। वो चाहता था कि मैं ऐसी चतुराई के साथ, स्नेह के साथ उन्हें अपने पक्ष में कर लूं, ताकि वो हमेशा के लिए मुझ पर विश्वास करे। जब उसने देखा कि अब लोग उसके पक्ष में आ गए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में तो एक झिझक है कि ये राजा तो निचले गरीब परिवार का व्यक्ति है, तो उसने एक दिन एक उपाय किया। राजा के रूप में उसके पास जो संपत्ति थी उसमें एक सोने का पात्र भी था। लेकिन दोस्तों उस पात्र की एक विशेषता थी, वो पात्र उसके और उसके अतिथियों के विशेष अवसरों पर पैर धोने के लिए या मुंह आदि धोने के लिए हमेशा ही उपयोग में लाया जाता था। उसने उस पात्र को तुड़वा कर उससे एक देवता की मूर्ति बनवाई और वह स्वर्णिम पात्र जो था वो स्वर्ण की मूर्ति, अब वो प्रतिमा अब नगर में एक सबसे अच्छी जगह पर उसने लगवा दी। लोग आते जाते उस मूर्ति का सम्मान करते, पूजन करते। वो प्रतिमा बहुत पूजनीय हो गई। अब एक बार क्या हुआ, उसके राज्य में एक समारोह था और उसमें राज्य के लगभग सभी प्रजाजन, सभी लोग उपस्थित भी थे। जिस समय उस जन समुदाय को राज्य के महामंत्री संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सभी उपस्थित नागरिकों को बतलाया कि देवता की वह सम्मानित पूजनीय मूर्ति कभी तो राजा के अतिथियों के पैर धोने की पात्र थी। लोग उसमें पैर धोते थे, कई बार कुल्ला करते थे, अपनी गंदगी साफ किया करते थे। फिर उसने उन्हें समझाया कि सोना तो सोना होता है ना, चाहे वो गंदगी धोने का पात्र हो या फिर देवता की मूर्ति हो, महत्व किसका है? महत्व सोने का नहीं है, महत्व उस रूप का है जो उसको दिया गया है। कोई व्यक्ति भी किस परिवार का है या कैसे परिवार का है, इन बातों का महत्व नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, उसका कर्म कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसी है। अच्छा कार्य करने वाला इंसान अगर निम्न स्तर का भी क्यों न हो, लेकिन सम्मानित बन सकता है, पूजनीय भी बन सकता है, लोगों के दिल को जीत सकता है, और अच्छे परिवार का होकर भी अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य के कारण, अपने कर्मों के कारण निंदनीय हो सकता है, तो फिर क्या लोग उसका सम्मान करेंगे कि केवल वो अच्छे घराने का है? नहीं ना दोस्तों। इसीलिए ये सब बात समझाने के बाद लोगों के मन में सारी बातें आ गई और वे राजा का सम्मान करने लगे। इसलिए दोस्तों सभी का सम्मान करें यही महत्वपूर्ण है। इसी विचार के साथ अगर हम अपनी जिंदगी में भी किसी को इसी दृष्टिकोण से हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम केवल उनके गुण ही देखते हैं। ज्ञानेश्वर जी आपका क्या विचार है?
2: बहुत ही सुंदर कथा है भक्ति जी, और ये जब कथा मैं सुन रहा था तब मेरे मन में एक विचार आया कि सोने का पात्र था, सोने का पात्र पिघला के उसकी मूर्ति बनाई गई, सोना वही है लेकिन बनाने वाला जो है वो महत्वपूर्ण है। जब वो पात्र था तब उसमें सोने का पात्र, उसमें पैर धोते थे, लेकिन जब मूर्ति बन गई तब लोग उसे नमस्कार करने लगे। आज हमने सुविचार भी बहुत अच्छा सुना मन का। हमारा मन भी सोने जैसा है, मन में अगर बुरे संकल्प आते हैं तो जैसे पैर धोने का पात्र बन जाता है, और मन में अगर अच्छे संकल्प आते हैं तो फिर वो मूर्ति बन जाती है। वो स्वर्णकार जो है वो हमारा परमात्मा है। परमात्मा की स्मृति जब रहती है तब मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं, और परमात्मा की स्मृति गायब हो जाती है, देहभान में आ जाते हैं, तब हम पैर धोने के पात्र बन जाते हैं। अगर हम परमात्मा प्यार के पात्र बन गए तो फिर क्या होगा, पैर धोने के पात्र की जरूरत नहीं है, हम हमेशा मूर्ति बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि देवता बनने का बहुत सुलभ साधन जो है खुद को देवता समझो। देवता हमेशा प्रसन्न चित्त होती है, देवता हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो क्या मैं सदा मुस्कुराता हूँ, क्या मैं सदा दूसरों को दुआ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, ये मन में संकल्प है, अगर वो हम चेक करें तो हम कभी भी पैर धोने का पात्र नहीं बनेंगे लेकिन हमेशा मूर्ति ही बने रहेंगे।
1: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बहुत सही बात आपने की, क्योंकि देवता शब्द में ही ये समाया हुआ है, जो दाता होता है, जो देने वाला होता है। दोस्तों कितनी सुंदर बात है, और यहाँ कोई देने की बात, धन समय ये तो है नहीं, हमें बस हर एक के प्रति शुभ भावना देनी है, हर एक का भला हो, हर एक आत्मा खुश रहे। दोस्तों चलिए इसी एक सुंदर निश्चय के साथ सुबह सुबह हम अपने मन को भी एक अच्छा पात्र बनाते हैं, न केवल अपने मन को लेकिन जो भी मिले उनको भी हम यही बनने की विचारधारा जरूर देते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ರೇಡಿಯೋ ಮಧುಬನ್ 107.8 FM ಸುನ್ತೆ ರಹೋ ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ರಹೋ ದೋಸ್ತೋ ಚಲಿಯೆ ಹಮ್ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಕಾ 13ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇಖ್ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ್ ಬಾತ್ ಶುಕದೇವ್ ಜಿ ಔರ್ ರಾಜಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಹೈ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜಿ ಕಾ ಮೋಹ ಕಥಾ ಆಗೆ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಮೋಡ್ ಲೇತಿ ಹೈ ಕಿ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಬಛಡೇ ಭಿ ಬನ್ ಗಯೆ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ ಭಿ ಬನ್ ಗಯೆ अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने प्रवेश किया ब्रज भूमि में। शुकदेव जी बताते हैं, राजा परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में वो स्वयं चले गए। अब देखिए यहाँ क्या बात है, माताएं जो है वो बांसुरी का तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। अब ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को उन्होंने तो अपना बच्चा समझ लिया, हाथों से उठा लिया, जोर से हृदय से लगा लिया और वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण उनके स्तनों से सुधा से भी मधुर ऐसे दूध निकलने लगा, उनको पिलाने लगे। राजा परीक्षित को शुकदेव जी कहते हैं कि संध्या के समय प्रतिदिन श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते, अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। और वे माताएं भी क्या थी, वो उसको उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती, अच्छे अच्छे वस्त्रों से गहनों से सजाती। इतना ही नहीं कि उसको काजल का टीका भी लगाती ताकि उसको किसी की नज़र न लगे। तो उसको बहुत सुंदर वर्णन किया है भागवतकारों ने और फिर आगे बताया है कि इस प्रकार का उनका सब कुछ स्नेह का भाव चल रहा था। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन एक वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती गई। यहाँ तक कि दोस्तों, पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने बालकों के प्रति भी हो गया। अब मजा देखिए, सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए एक वर्ष तक क्रीड़ा करते रहे। एक वर्ष पूरा हुआ, बस 5-6 रातें शेष थी। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौवे जो थी वो गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। फिर ये बात हो गई कि गौओं के और भी फिर बछड़े जो थे गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास भी वो दौड़ कर चली गई। और जैसे कि वो अपने बच्चों को ऐसे चाव से चाट रही थी। यहाँ इतना सारा जो प्रेम रस का सरोवर हो रहा था, अनुराग जैसे कि बढ़ रहा था, उस समय क्या हो गया कि बलराम जी देखते हैं कि ये व्रजवासी गोप गौवे ग्वालिनों इन सब की संतानों पर जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है और क्षण प्रतिक्षण जैसे कि वो अलग ही लग रहे हैं, ये क्या विचित्र बात है। उनको कुछ समझ भी नहीं आया, ये कौन सी माया है, कहाँ से आई है, किस देवता की है, मनुष्य की तो नहीं है, असुरों की तो नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। फिर धीरे धीरे वो जैसे ही ध्यान में बैठ गए उनको समझा, नहीं नहीं ये तो प्रभु की माया है, क्योंकि और किसी की माया में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है जो मैं भी मोहित हो रहा हूँ। और फिर उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा बलराम जी ने तो उनको ये मालूम हो गया कि बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण जी ही है। तो ज्ञानेश्वर जी, बलराम जी ने तो ये सारी बातें जान ली। अब ये मुझे बताओ कि यहाँ जो एक बहुत सुंदर शब्द है, इस पर हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि बलराम जी ने जो है वो ज्ञान दृष्टि से देखा। ज्ञान दृष्टि क्या होती है? और वैसे देखा जाए तो बलराम जी तो हर एक बात जानते हैं, ऐसी हमारी एक पहले से ही विचारधारा होती है। फिर यहाँ इन सारी बातों का मकसद क्या है?
1: भक्ति जी, कथा बहुत ही रोचक है और अलग अलग रीति से उसे पेश किया जाता है, और जितनी अलग अलग रीति से कथा पेश की जाती है उतनी और रोचक बन जाती है। वहाँ सामने दृश्य खड़ा हो जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप लेके, चाहे गाय के बछड़ों का हो या ग्वालों का हो, रूप लेके सजे हैं और अपना पार्ट निभा रहे हैं, और यह सब माया है। और भगवतकारों ने उसका वर्णन भी किया है कि यह भगवान की माया है। अभी ये माया जो है वो किसी को पता नहीं चला, जो ग्वालों की माताएं थी उनको पता नहीं चला, और किसी को पता नहीं चला, बलराम जी को भी पता नहीं चला। लेकिन उनको कब पता चला? कि जब उन्होंने ध्यानस्थ हो गए और ज्ञान दृष्टि से उसे देखा। उसमें बहुत गुह्य रहस्य है, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जिंदगी जो है वो है ही नहीं, ये नाटक चल रहा है। और बहुत सारे तत्ववेत्ता जो है वो भी कहते हैं कि ये संसार रूपी नाटक है, ये पृथ्वी रंगमंच है और उसमें हम अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो अगर इसी को हम स्वीकार करें तो नाटक क्या होता है? नाटक तो सच नहीं होता, नाटक तो झूठ झूठ होता है। नाटक में कोई हीरो रोता है या कोई हीरो गरीब है या कोई अमीर है, तो सचमुच वो गरीब नहीं रहता, वो गाड़ी में बैठ के आता है, ड्रामा में कवा पार्ट करता है और चला जाता है, लेकिन फटे हुए कपड़ों का पार्ट करता है। ये नाटक जो है किसको पता है? जो नाटक करने वाला है उसको भी पता है, लेकिन कभी कभी प्रेक्षक जो होते हैं, दर्शक होते हैं, देखते हैं, वो भाव विभोर हो जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं। वो भी रोने लगते हैं, वो भी हंसने लगते हैं, और फिर वो भूल जाते हैं कि ये नाटक है। और इसी प्रकार भगवान की जो माया है उसे हम जब जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रोज का बोलचाल है वो छोड़ के हमें अलग होना चाहिए। और ये अलग होना जो है उसे ही ज्ञान दृष्टि कहते हैं। एक मिसाल अगर हम व्यावहारिक दे तो देखिए, पहले 3D पिक्चर नहीं थी, 3D फिल्में नहीं थी, अभी 3D फिल्में आ गई। लेकिन 3D फिल्में देखने के लिए आपको चश्मे की जरूरत होती है। अगर आपके पास चश्मा नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता ये 3D है, और सिंपल फिल्म लगती है और उसका आनंद नहीं ले सकते। लेकिन जैसे आपने चश्मा पहन लिया तो लगता है कि ये कोई भी काम है वो बिल्कुल ही मेरे सामने घटित हो रहा है, कोई भी घटना है वो मेरे सामने घटित हो रही है, और अगर कोई शेर दहाड़ता है तो लगता है मेरे ऊपर वो चाल कर रहा है। ऐसी चीजें जो होती है 3D की, उसे ही ज्ञान दृष्टि कहते हैं। और इस ज्ञान दृष्टि से हम संसार की असलियत जान सकते हैं। और ये ज्ञान दृष्टि जरूरी इसलिए है कि जो सुख और दुख जो है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया चयो, ये भगवद गीता में जो कहा गया है, उसे समदृष्टि से देखने की आदत हमें यह ज्ञान दृष्टि से मिलती है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही। और मैं समझती हूँ ज्ञान दृष्टि शब्द तो हो सकता है कि हर एक को समझ नहीं आए, लेकिन आपने जो मिसाल दी वो बिल्कुल ही सुंदर और एक्यूरेट है मुझे लगता है। तो दोस्तों देखिए, हम छोटी छोटी बातों के कारण मायूस होते हैं, या छोटी बातों से हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं, एकदम हम खुशी से झूमने लगते हैं, और दूसरे ही समय हमारा मूड ऑफ भी हो सकता है। लेकिन सचमुच अगर हम ज्ञान दृष्टि से देखें तो जिसको कहते हैं माया, मतलब ये ऐसा है ही नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि हम ऐसी ऐसी जो हमारी मूड चेंजेस होती है वो नहीं होगी। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, उसमें और भी एक मेरी आशंका है, फिर तो हम जीने का आनंद ही नहीं ले सकेंगे, क्योंकि फिर तो एक समान हमारी भावना रहेगी। तो ये भी तो जरूरी है कि खुशी में झूमना, ये भी जरूरी है। अगर हम बिल्कुल ही जैसे कि उदासीन हो गए तो फिर जीने का आनंद कैसे ले सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने भक्ति जी। इसलिए मैंने जो ड्रामा या नाटक का मिसाल दिया, तो नाटक में जो अच्छा कलाकार होता है, चाहे फिल्म हो या नाटक हो, अच्छा कलाकार किसको कहा जाता है? जब वो अपनी भूमिका में डूब जाता है। अगर उसे हंसना है तो दिल खोल के हंसता है, अगर उसे रोना है तो सचमुच ही रोता है, और वो देखने के बाद वो जब असलियत नजर आती है झूठ, लेकिन असलियत जब नजर आती है तब दर्शक बोलते हैं ये बहुत अच्छा कलाकार है। ऐसे बहुत सारे कलाकार है, वो एक क्षण में वो रोना शुरू करते हैं, एक क्षण में हंसना शुरू करते हैं, लेकिन वो एंजॉय भी करते हैं। ऐसे नहीं कि वो भूमिका निभाते हैं तो वो सूखे सूखे निभाते हैं, वो भूमिका निभाते समय वो एंजॉय करते हैं। वैसे ये नाटक जो विश्व का नाटक है या बायोस्कोप है, उसमें हमारे जो भूमिका जो है वो अगर हम अच्छी रीति से निभाए तो क्या होगा, हम उसे एंजॉय भी कर सकते हैं, हम भी एंजॉय करेंगे और दर्शक जो है वो भी एंजॉय करेंगे, ऐसा लगता है मुझे।
0: यस, गणेश्वर जी आपने बहुत सही कहा। मुझे लगता है दोस्तों इसकी बॉटम लाइन हम ये जरूर ध्यान में रखें कि हम सब रोल प्ले कर रहे हैं और हमें अपना रोल बहुत बहुत एक्यूरेट, परफेक्ट और बढ़िया सा प्ले करना है। बस इसको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सारी बातों को हम जान लेंगे, या कहो हमें भी वो ज्ञान दृष्टि मिलेगी। चलिए दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है। शायद मैं समझती हूँ कि हमने कई बार भागवत कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन क्या हमने ज्ञान दृष्टि से पढ़ी थी, सुनी थी? और वो ज्ञान दृष्टि हमें अभी मिल रही है और मैं समझती हूँ आप सब भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अनसात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। और राजा परीक्षित, शुकदेव जी का जो बयान है वो जैसे कि मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। आगे हो क्या होता है कि शुकदेव जी बताते हैं, हे राजन, अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से व्रज में लौट आए। उनके कालमान से तो अब तक केवल एक त्रुटि, बहुत ही कम समय व्यतीत हुआ था। अब उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ एक साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे, वो तो सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं, मैंने तो उनको अचेत कर दिया है। और ये कौन है फिर, ये भगवान के साथ खेल कौन रहा है? एक साल से ये जो हो रहा है ये क्या है? स्वयं ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अपने ज्ञान दृष्टि से उन्होंने उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु उन्हें जहां तहां यही दिखाई देने लगा, ग्वाल बाल और उनके बछड़े और भगवान। फिर उनको ये समझ में नहीं रहा था कि कौन सच्चे है और कौन बनावटी है, मैं कैसे समझ लूं। और इसीलिए बहुत सुंदर वर्णन किया है भागवतकारों ने, श्री कृष्ण की इस माया में सभी मुग्ध हो रहे थे, लेकिन उन्हें अर्थात श्री कृष्ण जी को इसका स्पर्श भी नहीं था। अब ब्रह्मा जी तो दरअसल अपनी माया से श्री कृष्ण जी को मोहित करना चाहते थे, लेकिन वे ही मोहित हो गए। कहते हैं कि जैसे रात के घोर अंधकार में कुहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में सूरज के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही ये हो गया। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, जहां तहां मैं यही दिखाई दे, मैं यही देख रहा हूं, क्या हो रहा है? बहुत सुंदर वर्णन भागवतकारों ने किया है, और हम अगर उसको शॉर्ट में करें ज्ञानेश्वर जी, ताकि हमें तो उसका रहस्य जानना है, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये देखा कि भूत भविष्य वर्तमान काल के द्वारा कुछ भी सीमित नहीं है, वो चीज है परमात्मा, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, वो आनंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है, उनको कभी भी माया मोह स्पर्श कर नहीं सकती। ये सारी बातें उन्होंने देखी, उन्होंने जानना भी चाहा, और कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हो गया, वे मानो मरकर फिर से जी उठे और सचेत हो गए। उन्होंने जो जो करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले, और फिर उन्हें कहीं अपना शरीर सारा जगत दिखाई देने लगा, और ये सारी भगवान की लीला है, इस बात को उन्होंने जान लिया। और फिर क्या था, उन्हें अपना जो अहंकार हुआ था उसका एहसास हो गया, यही तो मकसद था भगवान का। और बहुत सुंदर वर्णन किया है, प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर अपने आप ही विनम्रता से नीचे झुक गया। वे अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता से, एकाग्रता से, गदगद वाणी से स्वयं भगवान की स्तुति करने लगे, और उन्होंने ये जो भी खेल रचा था, उनको जो ये मोह हुआ था, इन सब बातों का उन्हें अपने आप ही ज्ञान हो गया, लेकिन ये ज्ञान कराने के निमित्त बने श्री कृष्ण जी, अर्थात भगवान।

0: स्वयं। तो ज्ञानेश्वर जी, क्या भागवतकार हमें ये बताना चाहते इस द्वारा कि हम भी कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातों में जो उलझते हैं, अपने ही बातों के रचे हुए जो ये नाटक चल रहा है, तो अपने ही बातों के रचे हुए इन सारे जंजाल में जब फंस जाते हैं, तो कभी कभी हम भी ऐसे ही खो जाते हैं और फिर हमें अपनी सब बातों का पता चलता है, इसको कहते हैं आत्मज्ञान हो जाता है, तो हम अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं।
1: बिल्कुल भक्ति जी, ये कथा सुनने के बाद मुझे वो डायलॉग याद आया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, बच्चा होता है, क्योंकि बाप जो कर सकता है वो बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा जो कर सकता है वो बाप बिल्कुल कर सकता है। और इसलिए ये डायलॉग इसलिए याद आया कि भगवान जो है, भगवान को हम माता पिता कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव ये कहते हैं, और हर कोई आत्मा जो है, हर कोई इंसान जो है, वो भगवान को पिता के रूप में देखता है, माता के रूप में देखता है, तो बड़े के रूप में देखता है। जो मैं कहीं कर नहीं सकता वो कर सकता है, इसलिए कहते हैं कि भगवान की लीला जो है वो अगम्य है। लेकिन जैसे उन्होंने जो रूप अनेक देख लिया, जैसे हम कथा में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेक रूप ले लिए, उसके ऊपर जब मैं चिंतन कर रहा था तब मुझे लगा कि जैसे ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि आपकी लीला अगम्य है, आप निराकार हो और निर्गुण हो और स्वयं प्रकाशित हो, तो उसमें मुझे एक तोत्र याद आया, भगवान शिव की जो महिमा है वो उन्होंने कही है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। उसमें भगवान को बिंदु के रूप में उन्होंने दिखाया है, और ये बिंदु के रूप में दिखाया है, लेकिन बिंदु जो है वो भी सिंधु है, बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, लेकिन बिंदु जब समुन्द्र में जाता है तब बिंदु अपना अस्तित्व खो जाता है। वैसे हम आत्मा के रूप में बिंदु स्वरूप है, लेकिन जब हम इन संसार में आते हैं तब हमारा अस्तित्व हम खो देते हैं, और इसी को कहते हैं देहभान। और वो देहभान जब आता है तब हमें सब माया और मोह ग्रासित कर देते हैं। ब्रह्मा जी ये सृष्टि का निर्माता करके उनका गायन है, ब्रह्मा जी का गायन सृष्टि का निर्माता के रूप में है, और उन्हें अहंकार होता है, उन्हें कभी अहंकार आता है, उन्हें कभी संशय आता है, ये हमारे मन में स्वीकार नहीं हो सकता, आम आदमी के मन में स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन इसे हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो फिर लगता है कि ये स्वीकारार्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी को हम बच्चे के रूप में देखें और परमात्मा को पिता के रूप में देखें तो फिर ये संभव हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है।
0: बिल्कुल, इसीलिए दोस्तों भक्ति में भी कहा गया है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः, नमो नमः। तो ये सही बात है कि परमात्मा हमें अपनी ही पहचान देते हैं। और दोस्तों इन बातों को बहुत ही रूपकात्मक कहो या बहुत ही काव्यात्मक रूप से यहाँ पेश किया है, और इसीलिए ही सचमुच जब हम ये पढ़ते हैं तो मैं समझती हूँ इतनी सारी बातें जान नहीं सकते, लेकिन जब हम ज्ञान दृष्टि से इसको समझने लगते हैं तो भगवान की लीला अपरम अपार, और यहाँ जो बहुत सुंदर वर्णन है वो स्वयं प्रकाशित है, उनको कोई भी माया लेप शेप नहीं हो सकता, इन सारी बातों को हम जान लेते हैं। दोस्तों आपने भी बहुत सुंदर रीति से एंजॉय किया होगा, मैं समझती हूँ आपकी भी जो भी प्रतिक्रिया है हमेशा की तरह आप हमें भेजते रहना। चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर से मिलेंगे अमृत धारा में, रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार जहां वो रहता है वहां सुख, शांति, आनंद और प्रेम की कामना करता है। यदि परिवार में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो परिवार वास्तव में स्वर्ग बन जाता है, और यदि इनका अभाव है, कलह है, क्लेश है, अशांति है, तो वो परिवार जैसे नरक तुल्य हो जाता है, वहां कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि परिवार के सभी सदस्य आपसी समझ बूझ से एक प्रेम पूर्ण वातावरण, एक सद्भावना पूर्ण वातावरण का निर्माण करें, ताकि परिवार में एक ऐसा माहौल बना रहे जहां सभी लोग बहुत ही आनंद का अनुभव करें और अपना संपूर्ण विकास भी कर सकें। इसी की चर्चा हम पिछली कड़ी में भी कर रहे थे, आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय ब्राता जी के साथ। ब्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक्स
0: ब्राता जी। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि संबंधों में कटुता तब आने लगती है जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो हमारे अंदर उपजती है, उसका जवाब हम खुद ब खुद देने लगते हैं। तो जहां संवाद का अभाव हो जाता है, जहां कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वहां कटुता भी बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं दूरी भी बढ़ती चली जाती है।
1: बिल्कुल, अपनी बात क्लियर करना, कुछ बातों को शेयर करना, ये बहुत आवश्यक होती है। कम्युनिकेशन का जहां अभाव रहता है वहां कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और जहां अपनी बात कर ली जाती है, दूसरे की सुन ली जाती है, वहां बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। तो बात हम परिवारों के परिवेश की कर रहे थे, तो ये सच है कि जिस परिवार में बहुत खुशी हो, शांति हो, प्रेम हो, हल्कापन हो, चार चीजें, वो परिवार तो सचमुच स्वर्ग है। और जिन परिवारों में महाभारत ही चलता हो सदा, एक दुर्योधन हो और एक कोई और करण जैसा हो,
0: या सबके चेहरे अलग अलग दिशाओं में हो, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूर्व, कोई पश्चिम,
1: तो उस परिवार का क्या हाल होगा, तो विनाशक स्थिति है ही। इसलिए इससे तो बचना चाहिए, और मनुष्य जो कि एक बुद्धिमान प्राणी है उसे जरूर सोचना चाहिए कि जीवन की यात्रा को प्रेम पूर्वक व्यतीत किया जाए, अपने स्वार्थों को छोड़कर, अपनी संकीर्ण भावनाओं को छोड़कर, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर इस यात्रा पर चलेंगे। अकेला तो कोई चलेगा नहीं, साथ लेकर सबको चलना ही है, तो कितना सुखद होगा।
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, और आपसी समझ इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है भ्राता जी। कई बार ये होता है कि व्यक्ति अपने अहम के कारण, मैं सही हूं तो मैं क्यों झुकूं, तो ये अहम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूरी पैदा कर देता है।
1: बिल्कुल, ये अहम और इसका भी एक ये स्वरूप, मैं राइट हूं। देखिए, जो बुद्धिमान है वो भी यही सोचेगा मैं राइट हूं, और जो कम बुद्धिमान है वो उससे भी ज्यादा सोचेगा मैं राइट हूं।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ा लिखा सोचेगा ये बिना पढ़ा लिखा आदमी ये क्या जाने, और वो सोचेगा इसको बड़ा अहंकार है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसने बहुत डिग्री ले ली इसलिए हमसे अच्छी बात नहीं करता है। तो दोनों में ये मन मुटाव बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें। आज जो परिवारों में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो जो बिल्कुल पास रहते हैं वहां सम्मान का अभाव बहुत हो जाता है
0: जी।
1: कभी कभी प्यार में भी सम्मान का अभाव हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे अपने परिवार में भी, चाहे भाई भाई हों भाई बहने हों, आपस में भी एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखना, इससे अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और कोई रूठता भी है तो मना ले ब्रदर जी। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं कि कोई रूठे अगर तो उसे तुरंत मना लो, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये
1: बिल्कुल।
0: जुदाई हो जाती है और हम हमेशा इसी भावना में रहते हैं कि पता नहीं फिर से कब मिलाप होगा, और वो मिलाप कभी हो नहीं
1: पाता। एक को तो झुकना पड़ेगा ही।
0: जी जी
1: देखिए, जैसे बच्चे रूठ जाते हैं, हालांकि माँ बड़ी होती है लेकिन फिर भी माँ ही मनाती
0: झुक
1: है ना
0: जाती
1: बच्चों को
0: है।
1: भी,
0: बिल्कुल
1: तो बड़ों को झुकना ही पड़ता है। तो आजकल के परिवेश में
0: जी
1: ये आवश्यक हो गया कि बड़े छोटों को सम्मान दें,
0: जी
1: बड़े छोटों को अंडरस्टैंड करें, छोटों से ये कामना ना करें कि वो हमें सम्मान देंगे या हमें ठीक से समझेंगे। तो बड़े पहले झुकें,
0: जी
1: बड़े आगे आएं, तो छोटे भी कुछ ना कुछ
0: और वैसे भी
1: सीखेंगे।
0: कहा है किसी कवि ने कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।
1: बिल्कुल
0: तो यदि
1: बिल्कुल,
0: छोटन उत्पात कर रहे हैं तो
1: हाँ
0: बड़े बड़े बनके यदि
1: बिल्कुल।
0: थोड़ा सा क्षमा भावना अपनाएं तो परिवार की खुशहाली
1: और
0: बनी
1: हर एक
0: रहेगी।
1: को ये समझ ही लेना चाहिए, विशेष मातृशक्ति को,
0: जी
1: कि हमें अपने परिवार को मंदिर जैसा बनाना है,
0: बिल्कुल,
1: जिसमें शांति हो, जिसमें प्रेम हो, खुशहाली हो, जहां सब ऐसे रहें जिनके विचार बहुत सुंदर हों। और परिवार में जितने सबके विचार सुंदर होंगे,
0: जी
1: वहां का वातावरण एनर्जेटिक होगा, चार्ज्ड वातावरण होगा, और
0: बिल्कुल
1: इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। ना वहां समस्याएं आएंगी, ना वहां बीमारियां आएंगी, और अगर बीमारियां आ भी गई तो बहुत जल्दी समाधान मिलेगा।
0: तो परिवार के बहुत सारे मेल हमारे पास आए हैं। इनमें एक मुंबई की हमारी बहन लिखती हैं कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी शादी को 7 साल हो गए, पति ने धोखा दिया और वो छोड़कर चला गया, कोर्ट में केस चल रहा है जिससे मैं बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ, बच्चे पर भी गुस्से में हाथ उठा देती हूँ, मुझे बहुत रोना भी आता है। 2 बार मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ। 2 साल से ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के संपर्क में हूँ जिससे मुझे थोड़ा संबल मिला है। मैं पूरी तरह अपने पास्ट को भूलना चाहती हूँ और अपनी इन कमजोरियों से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ?
1: देखिए, बात तो बहुत बुरी हुई कि पति और पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो गया,
0: जी
1: संबंधों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, या दोनों का ईगो टकराया होगा, मैं दोनों ही डॉक्टर होंगे, ये स्किन स्पेशलिस्ट है वो
0: जी
1: भी कुछ होगा, तो दोनों का ईगो भी टकराया होगा, और संभव है कुछ और भी कारण रहे हों, पति का कहीं और लगाव हो, उसके कारण भी डाइवोर्स हो गया हो।
0: जी
1: तो कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको अब अपनी मनोस्थिति नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मनोस्थिति बिगड़ेगी तो परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। अब चलो डाइवोर्स का केस चल रहा है, और ये जो चाहेंगी वो भी हो सकता है, ये डाइवोर्स चाहेंगी, साथ रहने में तो इनको मजा आएगा भी नहीं, कि न जाने क्या कारण है, वो तो इन्होंने बताया नहीं। लेकिन अगर ये साथ रहना चाहती हैं तो उसका भी हल हो जाएगा, अगर ये सेपरेट होना चाहती हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि ये अपनी मनोस्थिति को बिगाड़े नहीं। जीवन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुसाइड कर लेना ये कोई समस्याओं का हल नहीं है।
0: दो बार ये कोशिश कर चुके
1: हैं। ये मनुष्य सोचता है कि मर जाएं तो शायद उसे भी अकल आ जाएगी। कई लोग सुसाइड इसलिए कर लेते हैं, दूसरों
0: अकल
1: को
0: भी आ जाएगा और दूसरा हम अपनी इन समस्याओं से मुक्त हो
1: मुक्त
0: जाएंगे,
1: भी
0: वो ये
1: हो
0: सोचते हैं।
1: लेकिन ये सबको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस तरह मरने के बाद समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। अनेक केसेस में तो आत्मा भटक ही जाती है, और जब उसे पुनर्जन्म मिलेगा तो अब से 10 गुनी समस्याएं उसके सामने होंगी, बचपन से ही होंगी। इसलिए ये मार्ग तो बिल्कुल गलत मार्ग है, नरक में ले जाने वाला मार्ग है, यात्रा को जटिल करने वाला मार्ग है। इसका संकल्प तो इन्हें अभी त्याग कर देना चाहिए। और जब ये 2 वर्ष से राजयोग के कॉन्टेक्ट में आई हैं तो इन्हें थोड़ा सा समय निकाल कर फिर से राजयोग का अच्छा अभ्यास करना चाहिए। और ये जो इनकी मनोस्थिति है, जो इनमें अवगुण आ गए, बहुत क्रोध आता है, नेचुरली इसके क्रोध बिना कारण नहीं है, ऐसे में मनुष्य को क्रोध आएगा क्योंकि वो अपसेट रहता है। जब ये प्रैक्टिस में जाएगी तो ये पेशेंट को भी क्या देखेगी, क्योंकि खुद टेंशन में है, अपसेट रहती है, तो इसकी बुद्धि ठीक से डिसाइड नहीं करेगी कि दवाई क्या दी जाए, इसका डायग्नोसिस बहुत प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए इसको अपने चित्त को शांत करना चाहिए और अब राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करके अपने क्रोध को भी जीतना चाहिए। और देखिए, इस समस्या से भी ये निजात पा सकती है, उसका स्पिरिचुअल तरीका अगर ये अपनाए, थोड़ा अच्छा सा राजयोग सीखे जाकर ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करे, 1 घंटा रोज ये दे उसके लिए, वह ज्यादा समय नहीं, तो इसके अपने मन में शांति आएगी, प्रेम प्रकट होगा, इसकी अपनी प्योरिटी बढ़ेगी, इसके अपने एटीट्यूड्स बदलेंगे। और देखिए, ऐसे में क्या होता है, ये जरूर अपने पति को दोषी मान रही होगी, उसने मेरे से ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य के अपने एटीट्यूड्स, उसका ईगो, उसके अपने कर्म, उसका व्यवहार भी इसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की उंगली दूसरों की ओर होती है ना, अपने को प्रोटेक्ट करता है मनुष्य, दूसरे की ओर उंगली करता है, और जिस क्षण ये उंगली अपनी ओर हो जाती है उस क्षण से मनुष्य का कल्याण होना शुरू हो जाता है।
0: वैसे भी हम कहते हैं कि जब एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां हमारी ओर होती हैं,
1: तो हम अपनी कमियों को देखेंगे। देखिए, बड़ी सुंदर साइकोलॉजी है, ये अपनी कमियों को महसूस करे तो इसका पति अपनी कमियों को महसूस कर लेगा, और इनमें कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है, ये झुकने लगे उसमें भी झुकने के संकल्प आएंगे, तो परिवर्तन होगा ईश्वरीय ज्ञान से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं इनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा योग सिखाई है। सवेरे जब ये उठे तो थोड़ा अच्छा मेडिटेशन इनको करना, आधा पौना घंटा जरूर, ये समझे कि मुझे अपने को चार्ज करना है रोज सवेरे, और इस समस्या को भी समाधान करना है। 2 तरह से इसका समाधान संभव है, या तो दोनों आपस में बहुत प्यार से रहने लगे, डाइवोर्स आदि का केस वापिस हो जाए, और अलग रहें तो ये अपना सुखी जीवन व्यतीत करें, इसको बच्चा है और इसकी अपनी अच्छी प्रैक्टिस है, ये अपना पवित्र जीवन व्यतीत करे, ये भगवान के काम आए, भगवान को अपना साथी बना ले। राजयोग में यही सबसे बड़ा फायदा है कि परमात्मा हमारा साथी बन जाता है, ये हमें महसूस होने लगता है, तो जिसका साथी भगवान हो जाए उसे फिर ये अकेलापन महसूस नहीं होता। नहीं तो किसी पत्नी को पति के बिना, सदा ही पत्नी के पति के बिना रहना है तो मन उदास भी होगा, निराश भी होगा, अकेला,
0: और जीवन इतनी लंबी है तो भारीपन आ
1: जाएगा। लेकिन राजयोग में ये फायदा है कि भगवान के साथ का अनुभव होने लगता है, और उसके साथ का अनुभव माना चित्त आनंद से भरपूर होने लगता है, एक अलौकिक खुशी जीवन में आने लगती है, कतिन्द्रिय सुख से आत्मा भरपूर होने लगती है, तो अनेक अभाव समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को अपना जीवन खुद ही अच्छा लगने लगता है। इसलिए राजयोग की यात्रा पर तो इन्हें बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ना ही है
0: जी।
1: लेकिन सवेरे उठकर अपने पति को गुड वाइब्रेशंस इन्हें देने हैं, और अपने स्वमान को जगाना है। स्वमान से एक बड़ा फायदा ये होता है कि मनुष्य का अभिमान नष्ट होता है, तो जैसे ही ये स्वमान का अभ्यास करेगी, मैं भगवान की संतान, मैं बहुत महान हूं, मैं प्यार की सागर भगवान की संतान, मुझे तो सबको प्यार देना है, अपने पति के लिए भी प्यार की फीलिंग्स ले आए, कि आखिर वो मेरा पति, आखिर हम दोनों की मैरिज हुई है, प्यार की फीलिंग, हम दोनों में बहुत प्यार है, मैं शांति के सागर भगवान की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मेरी शांति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करने से इनका ईगो नष्ट होता रहेगा, स्वमान से अभिमान नष्ट होता है, और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं, इनका ईगो नष्ट होगा तो दूसरे का भी ईगो नष्ट होगा, और आपस में समीपता आएगी, संबंधों में मधुरता आएगी। एक तो काम ये करना है
0: जी।
1: दूसरा जैसा मैंने कहा, अपने पति को गुड वाइब्रेशंस देने, आधा घंटा मेडिटेशन करें और फिर अभ्यास करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जैसे उसकी किरणें मुझे आ रही हैं थोड़ी देर, और फिर मुझ आत्मा से उस आत्मा को।
0: लेकिन भ्राता जी, जैसे एक बात इन्होंने कही है कि मैं अपने पास्ट को पूरी तरह भूलना चाहती हूँ, तो कहीं वो अपने पति को इमर्ज करती हैं, सामने देखती हैं, तो कहीं वही फिर पास्ट की बातें यदि आने लगें और ये डिस्टर्ब हो, कहीं ऐसा तो नहीं?
1: हाँ, नहीं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और सुवमान की प्रैक्टिस ऐसी है कि इससे वो चीजें भूलने लगेगी, क्योंकि सद्भावनाएं हो गई, आत्मिक दृष्टि हो गई। तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी में सिद्धांत है कि जब मनुष्य श्रेष्ठ स्मृतियों में रहता है तो पास्ट की बुरी स्मृतियां लोप होने लगती हैं। तो जितना जितना नए विचार इनके अंदर आएंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होंगे, तो पुरानी बातें, उसने कभी कड़वा बोला हो, उसने कभी इनको दुख दिया हो, सताया हो, इनकी भावनाओं को हर्ट किया हो, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो, वो इनको हल्की लगने लगेगी। ये तो कुछ भी नहीं थी, मैं केवल ज्यादा सोच रही हूँ इसलिए हर बात मुझे बड़ी लग रही है, बट वाई नथिंग, ऐसा इनको लगने लगेगा और ये भूलने लगे।
0: क्योंकि प्रताप जी, जब तक, जैसे आपने कहा कि कुछ अच्छे अभ्यास नहीं करते, कुछ अच्छी स्मृतियां में नहीं होती हमारे पास, तो जो पास्ट में घटित हुई हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसने हमारे पूरे जीवन को बदल दिया है, वो चीजें बार बार आती रहती हैं और वो चीजें परेशान भी करती हैं, और साथ ही साथ हम उन्हें क्षमा भी नहीं कर पाते जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है।
1: बिल्कुल यही बात के देखिए, सूक्ष्म साइकोलॉजी पे ध्यान दें, पास्ट की जिन बातों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं वो तो हमें कभी नहीं भूलेंगी, और जिन बातों को हम हल्का कर दें, लाइटली ले लेंगे, कुछ नहीं, ये तो होता रहता है जीवन में, वो तेजी से भूलती जाएंगी। तो हम महत्व न दें उन बातों को, जो कुछ हो गया है बस हो गया, जीवन सुंदर चीज है, आगे बढ़ो।
0: फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कई बार ये संकल्प भी कि सबका जीवन कितना अच्छा, हो सकता है कि इनकी सहेलियां हो जिनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन जब वो देखती हो कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और कई बार भगवान के लिए, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों,
1: बिल्कुल सारा गुस्सा फिर भगवान पे उतरता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे सुख दिया, उसे सुख दिया, उनका फैमिली लाइफ कितना सुंदर है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारे क्या नुकसान किया था, तो भगवान को गाली देने लगते हैं लोग। लेकिन इसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं है, हर मनुष्य ने जो कुछ किया है उसका फल ही उसके सामने आ रहा है। अब अच्छे कर्म करेंगी, पुण्य कर्म करेंगी, तो इस दुविधा से ये पार हो जाएंगी। बस यही जरूरी है कि अपने पति को भी ये क्षमादान कर दें, लेकिन ये भी तब होगा जब इनका स्वमान बहुत ऊपर उठेगा, नहीं तो ये सोचती होंगी वो मेरे से क्षमा मांगे, ये उल्टी बात हो जाती है। लेकिन ये उन्हें क्षमा कर देंगी तो वो भी इनके पास क्षमा मांगने आ जाएंगे। ये सूक्ष्म साइकोलॉजी इस तरह काम करेगी और तभी इनका जो आगे का जीवन है वो सुंदर हो सकता है।
0: बिल्कुल, चलिए हम दुआ करेंगे। भ्राता जी, मुंबई से हमारी बहन ने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी है, ये पुनः सुसाइड अटेम्प्ट ना करें, दो बार तो कर चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि इन्हें परमात्मा ज्ञान मिला है, तो अच्छे से अपने आप को, जैसे आपने कहा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, तो सहज हो जाएगा इनका जीवन, सरल हो जाएगा और आनंदित हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। ये भी हमारे पास मुंबई से आया है और ये कहती हैं, आई एम अ हाउसवाइफ एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड। माई हस्बैंड कॉन्स्टेंटली फाइट्स विद मी एंड थ्रेटन्स मी टू लीव द हाउस एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली शाउट्स एट माई चिल्ड्रेन। As a result of all, I and my children have started feeling depressed all the time. Also, we have started having hatred towards him, due to which we want him to always stay away from the house. This is having huge negative impact on me and my children, due to which they are not able to study and have no friends. I have also been cut off from everyone. Please guide us to improve our situation and please give a solution to our problem. ये भी मुंबई से हमारे पास आया है।
1: ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक बड़ी समस्या इस तरह पैदा हो गई है
0: जी,
1: कि एक व्यक्ति का व्यवहार पूरे परिवार को अशांति में डाल रहा है, टेंशन में रख रहा है, और इससे इनकी जो योग्यताएं हैं वो भी दबती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही।
0: बच्चे भी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये भी कट ऑफ हो गई है।
1: घर में प्रेम का और खुशी का माहौल जब नहीं होता, एक प्रेशर का माहौल जिस परिवार में होता है, तो बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। निश्चित रूप से ये बीमार रहती होगी और इसकी बीमारियां बढ़ेंगी ही, क्योंकि जब मानसिक अशांति मनुष्य को बहुत होती है और ऐसा व्यवहार भी पति की तरफ से हो जो सबसे समीप का नाता है, तो बीमारियां बहुत बढ़ती हैं और मनुष्य को खुशी भी नहीं रहती और कई तरह के निगेटिव विचार उसके अंदर आते हैं और सबसे बुरी चीज ये है माँ ये देख देख कर बहुत दुखी होती है कि उसके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे, बाप तो उनकी केयर करता नहीं, फिर प्रेशर माँ पर
0: फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है तो ये और कुछ
1: कर भी नहीं है, कर नहीं सकती है कुछ, क्योंकि कुछ बोलेंगी तो वो सब कुछ बंद कर देगा। इसमें भी इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी। इनका समाधान यही है कि ये ईश्वरीय ज्ञान लें, ये अपने विचारों को चेंज करें, ये अपने वाइब्रेशंस को चेंज करें और ऐसा पावरफुल राजयोग का अभ्यास करें कि इनके पास्ट के जो विकर्म हैं वो नष्ट हो जाएं और उस आत्मा से जो कटुता का संबंध इनका है किसी भी कारण से पूर्व जन्मों के कारण वो ठीक हो जाए। तो एक सिद्धांत इसमें याद रखना होगा इनको कि जब मनुष्य की मनोस्थिति श्रेष्ठ हो जाती है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। ये इनकी जो मनोस्थिति श्रेष्ठ होगी इनसे जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे वो जाएंगे इनके पति को
0: जी।
1: अब ये अपने पति के बारे में निरंतर निगेटिव सोच रही हैं तो इनसे निगेटिव वाइब्रेशंस पति को जा रहे हैं तो दूरी बढ़ती जा रही है, पति में क्रोध बढ़ता होगा, ईगो बढ़ता जा रहा होगा, इनको कष्ट देने की इच्छा बढ़ती जा रही है। ये मनुष्य के साथ होता है और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लगे हुए जरूर होंगे आजकल जो ये संबंधों में एक बहुत दूषित पन आ गया है, तो मनुष्य कहीं और जुड़ा रहता है, उसका प्यार कहीं और रहता है तो अपनी पत्नी और बच्चों पर वो ध्यान नहीं देता, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब इनको ये ध्यान देना है कि मुझसे निगेटिव एनर्जी पति को न जाए, नहीं तो उसमें गिरावट आएगी, भावनाओं में गिरावट आएगी, एटीट्यूड्स में गिरावट आएगी और ये दूरी बढ़ती जाएंगी। अब इसका समाधान यही है कि इनसे पॉजिटिव प्योर एनर्जी लवफुल एनर्जी पति की ओर जाए और इसके लिए इन्हें थोड़ा राजयोग का अभ्यास करना ही होगा, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना होगा और इस सिचुएशन को स्वीकार कर लें। ये देखिए इन्हें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में मैंने भी, हो सकता है मैं पति रहा हूं और ये पत्नी रही हो मेरी और मैंने भी इनसे यही व्यवहार किया हो और अब उनका टर्न है वो मेरे से व्यवहार कर रहे हैं, तो इस कर्मों के बुरे खाते को नष्ट करने के लिए योग की अग्नि इन्हें प्रज्वलित करनी पड़ेगी।
0: जी जी जी, तो योग करके विशेष करके ये ठीक कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। प्रता जी, कई बार ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि लगातार सामने वाले व्यक्ति की तरफ से दुर्भावना, बुरा व्यवहार, जैसे इन्होंने कहा कि एक लड़ाई भी होती रहती है, वो हमें डराते धमकाते रहते हैं, तो ऐसे में एक अच्छी फीलिंग लाना, जैसे आपने कहा कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती लगती है।
1: बिल्कुल, चुनौती बड़ी नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, जहां निरंतर कोई मनुष्य आउटिंग कर रहा हो, बुरे वचन बोल रहा हो, बिल्कुल भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए गुड वाइब्रेशंस देना, शुभ भावनाएं देना, बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है कि यह असंभव है, लेकिन जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा केंद्र पर जाएगी, वहाँ बहुत सारे लोग इसको मिलेंगे तो इसके एटीट्यूड्स थोड़े ऊपर उठ जाएंगे और इसका जो लेवल है स्पिरिचुअल लेवल वो भी ऊंचा चला जाएगा, तो ये अपने पति के उस व्यवहार को लाइटली लेने लगेगी। ये संसार एक सुंदर ड्रामा है, इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, इसे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसलिए वो पति अपना पार्ट बजा रहा है लेकिन मुझे अपना पार्ट बजाना है, वो निगेटिविटी दे रहा है, मुझे पॉजिटिविटी देनी है, तो डेली वहां ईश्वरीय ज्ञान सुनते सुनते इनके विचारों में महानता आएगी और तब ये उन्हें गुड विशेष ब्लेसिंग दे सकेंगे।
0: मतलब एक प्रकार का सिद्धांत मतलब ये हो गया कि मैं स्व परिवर्तन से जैसे सामने वाले व्यक्ति का परिवर्तन करूं, जितने अच्छे वाइब्रेशन मेरे होंगे सामने वाले व्यक्ति में उतना ही जल्दी परिवर्तन
1: होगा। इनको अपने चारों ओर एक पावरफुल ओरा क्रिएट करना ही पड़ेगा
0: जी।
1: ताकि इनके वाइब्रेशंस उनको जाएं, उनके इनको ना आएं, इनके ओरा से वो वाइब्रेशंस टकरा के समाप्त हो जाएं, ऐसा पावरफुल एक प्रभा मंडल इन्हें अपने चारों ओर बनाना ही पड़ेगा। बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां निरंतर कटु वचनों की बौछार होती हो वहां मनुष्य सब कुछ नहीं कर पा, वहां तो सोचता है अलग हो जाऊं या इसको मार डालूं, उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने को शांत रखना, अनइफेक्टेड रखना उन बातों से, ये संभव है। और तब हम देने वाले बन सकते हैं, हमारा फ्लो दूसरों को जाएगा। ऐसे कई केस देखे गए हैं, तो जो व्यक्ति हमेशा दबाव में है, जब उसने अपने को ऊंचा उठा लिया तो उसके वाइब्रेशंस दूसरे को जाने लगे और आखिरकार दूसरे व्यक्ति ने महसूस किया कि मैं गलत हूँ।
0: बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि ये भी जो हमारी बहन है मुंबई से, ये भी इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करके अपने आप को ऐसी स्थिति तक लाएं ताकि समाधान हो सके और जल्दी से जल्दी घर की परिस्थितियां बदल सके। भ्राता जी, बच्चों की बात जो इन्होंने लिखी है, विशेष जानना चाहूंगा, बच्चों के लिए इनका भी क्या दायित्व बनता है? ठीक है, ये एक चिंता तो करती ही है, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से, तो माँ किस प्रकार हैंडल करे बच्चों को ताकि बच्चों पे कम से कम प्रभाव हो और वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाए?
1: देखिए, इन्हें पहले यही करना होगा कि पति का जो व्यवहार है
0: जी,
1: उसका जो प्रभाव इनके ऊपर निरंतर छाया रहता है, इससे इनको बाहर रहना पड़ेगा
0: जी।
1: ये निश्चित रूप से बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं और उसके हर बोल इनके अंदर चला जाता है, उसका प्रभाव सीधा बच्चों पे आता है। अगर ये बच्चों का कल्याण करना चाहती हैं तो पति की बात को इन्हें लाइटली लेना होगा, मुस्कुरा के पूरा कर देना होगा, और बच्चों के लिए जो इनका कर्तव्य है उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना, उन्हें होमवर्क कराना, उन्हें एनकरेज करना, उन्हें अच्छा भोजन खिलाना, ये कर्तव्य इन्हें अवश्य करना होगा, नहीं तो दोनों की लड़ाई का प्रभाव भुगतना पड़ेगा बच्चों को।
0: बिल्कुल भ्राता जी, एक फोन कॉल भी हमारे पास था, इसमें भी लगभग इनकी ऐसी समस्या है कि मैं गृहिणी हूँ, जूनागढ़ से हमारे पास फोन कॉल था। 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को, मेरी एक बेटी भी है, पति बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहते हैं, साल में 1 मास के लिए ही आते हैं। वो मेरा और बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, रिस्पेक्ट नहीं देते। हम किस हालत में हैं इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं रहती। उन पर अपने परिवार का ज्यादा प्रभाव है, वो उन्हीं की मानते हैं। वो हमारा ध्यान नहीं रखते, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, इसलिए उनका परिवार भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, हमारा ध्यान नहीं रखता। अपने पति के इस व्यवहार को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए?
1: यह भी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि उस व्यक्ति का ध्यान पूरा अपने दूसरे परिवार की ओर है। उसे समझना ही चाहिए कि मेरा पहला परिवार तो ये है, पत्नी और बच्चे,
0: मतलब ये अपनी माता पिता भैया भाभी आदि पे ध्यान दे रहे हैं,
1: इन पे ध्यान नहीं देता। देखिए, है तो ये भी कर्मों का ही खेल, परंतु इसे बदला जा सकता है। एक सिचुएशन है कि पति की मेंटेलिटी को बदल देंगे, दूसरी सिचुएशन है मान लो वो नहीं बदलता, उसका ध्यान उधर ही ज्यादा रहता है, तो ये अपनी स्थिति को बदल दें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि वो ध्यान तो नहीं दे रहा पर कम से कम इन्हें पे आर्थिक मदद तो करता ही रहता है। तो इसमें भी इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी, इन्हें सीख लेना चाहिए। अब ये यहाँ हैं, पति वहां रहता है, तो इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज अवश्य इकट्ठी कर लेनी चाहिए। डेली 1 घंटा सेवा केंद्र पर जाकर संपूर्ण ज्ञान ले लेना चाहिए, तब ये अपने पार्ट को एंजॉय कर सकेंगी, अपने बच्चे के लिए भी जो इसके कर्तव्य है उनको भी ये पूर्ण कर सकेंगी। लेकिन इन्हें भी रोज सवेरे एक टाइम फिक्स करके अपने पति को कुछ अच्छे वाइब्रेशंस और कुछ अच्छे थॉट्स देने चाहिए
0: जी।
1: ये एक बहुत सुंदर सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस है कि 5 बजे या ऐसा टाइम ये निश्चित करें जब वो व्यक्ति सोया हो, क्योंकि वहां के टाइम में और यहाँ के टाइम में अंतर होगा। जब वहां 5 बजे हो, जब वो सोया हो, यहाँ दिन का कुछ भी बजा हो, तब ये 10-15 मिनट तो उन्हें गुड वाइब्रेशंस दे राजयोग के द्वारा, और फिर माइंड टू माइंड उनसे बात करें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, हम भी तो तुम्हारे साथी हैं, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे लिए भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें भी हमें बहुत प्यार करना चाहिए, ऐसे ऐसे गुड थॉट्स दें, ये तुम्हारा बच्चा भी तो है, इसके लिए भी तुम्हारे बहुत अच्छे कर्तव्य हैं, वो भी तुम्हें पूर्ण करने हैं। तो ये थॉट्स जब रोज उन्हें देंगे सेम टाइम, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करता जाएगा, और जब उठेंगे तो उनमें जागृति आएगी, और निश्चित रूप से 7 दिन अगर लगातार किया जाए बहुत पावरफुल रूप से, तो उनके विचारों में चेंज आएगी। जो विचार इधर से भेजे जा रहे हैं वही विचार वो करेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है जी। आज आपने बहुत सुंदर, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी हमारी बहनों की, उनका बहुत सुंदर समाधान दिया है। आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि इनकी ये समस्या जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में परिवार तो खुशहाली के लिए ही बसाया जाता है, लेकिन यदि दुर्भाग्य वजह से वहाँ किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी हो जाती है, किसी प्रकार की अशांति आ जाती है, समस्या आ जाती है, घबराएं नहीं, उससे उसे दूर किया जा सकता है। जैसे भ्राता जी ने आज बहुत सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास बताए हैं और मैंने उनसे एक बात पूछी भी अवश्य कि कितने दिन में ये दूर हो सकता है, यदि हम राजयोग का बहुत गहन अभ्यास करें तो निश्चित रूप से जल्दी हम अपने इन तमाम समस्याओं से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि निराश ना हो, अपने संबंधों में वैसी ही खुशहाली लाने

के लिए अपना प्रयास जारी रखें, अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को न बिगड़ने दें, तो परिवार का माहौल जैसे पहले था वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपका सबके साथ हैं कि आपके परिवार में ऐसी ही खुशहाली हमेशा बनी रहे।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth, and after many many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें to do some exercise. अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बिन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो, और जब मैं कहूंगा टू तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ चलिए, ओके हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके एक और बार करेंगे, वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है वे बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है और वो है जब मैं कहूंगा वन तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ, जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए, ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे। राइट। भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना। जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके। यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए, और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग गाबू इस कार्यक्रम में। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, खुशी भरा दिन है। हर संडे जो है हमें एक बेहद खुशी महसूस होता है क्योंकि अवकाश होता है, तो अवकाश में हम आनंद को डबल कर सकते हैं क्योंकि हम अपने परिवार के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं, है ना। और नहीं गए तो किसी को अपने घर बुला ले सकते हैं, है ना। तो अपने ही परिवार के लोगों को अपने घर बुलाकर खुशियां शेयरिंग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी बातों का, अपने अनुभवों का लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। अनुभव शेयरिंग करने का एक सुंदर जो है कार्यक्रम अपने घर पर रखिए। अगर कोई नहीं हो तो आप भगवान से भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपकी आज मुलाकात ईश्वर से है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट आप एक बार सोच के देखिए, क्या फ्री है, सब कुछ अच्छे से स्थित ठीक ठाक करके और बैठ जाइए परमात्मा की याद में और उनसे बातें कीजिए, उनसे अपना अनुभव साझा कीजिए। देखिए बड़ा मज़ा आएगा, एक बार करके देखिए आपको, है ना। अपने आप को एक नया अनुभव प्राप्त कराइए। आप ईश्वर से बात कीजिए जैसे किसी व्यक्ति से आप अपने गहरे दोस्त से बात करते हैं, अपनी दिल की सारी बातें उनके सामने रखते हो। ऐसे ही आप करके देखिएगा, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। 5 मिनट का काम है, है ना। खुद से खुद बात करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए, 14 जून आज का तारीख है और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या रोहिणी आज है और इसके साथ ही देव पितृ कार्य अमावस्या के रूप में भी आज के दिन को जाना जाता है और विश्व रक्तदान दिवस भी आज है। तो विश्व रक्तदान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, अगर आप समय मिलता है, आप रोमा में ब्लड बैंक है, वहाँ पर आके आप रक्तदान भी कर सकते हैं, आज के दिन को सार्थक बना सकते हैं विश्व रक्तदान दिवस को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं सीधे ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ जो अपने आप में बहुत ही कमाल का है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर गुड मॉर्निंग आबू। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। हेलो जी, नमस्कार। तो चलिए, शायद गुटलाल जी याद कर रहे होंगे हमें, और फ़ोन किया उन्होंने, लेकिन फ़ोन उनका ठीक से नहीं पकड़ पाया। आइए पकड़ते हैं फिर एक बार, कोशिश करते हैं उन्हें। तो एप्लीकेशंस के बारे में भी आजकल जो है बड़ा अच्छा, आपको उससे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, और जो चीज़ें आपको चाहिए उसका एप्लीकेशन होने से आसानी से लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। नमस्कार, क्या नाम है? हेलो, चलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम आपके इंतज़ार में हैं, फिर से कोशिश कीजिए। और आइए, विश्व रक्तदान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज शाम मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में आप रक्तदाता, रक्तदान करने वालों का स्वागत है। आपके लिए विशेष कार्यक्रम मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में है, तो आप सभी आ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, और ग्लोबल विशेष ट्रोमा सेंटर जहां पर ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक के माध्यम से भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए जाते हैं। वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% स्वेच्छा रक्तदान नीति की नींव डाली, और 1997 में संगठन ने ये लक्ष्य रखा था कि विश्व में 124 देश अपने यहाँ स्वेच्छक रक्तदान को ही बढ़ावा दे। उद्देश्य ये था कि रक्त की ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अब तक लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है। और तंजानिया जैसे देश में 80% रक्तदाता पैसे नहीं लेते। कई देशों में जिसमें भारत भी शामिल है, रक्तदाता पैसे नहीं लेते। ब्राज़ील में भी ये कानून है कि आप रक्तदान के पश्चात किसी भी प्रकार का सहायता नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कुछ अन्य देश भी है जहां पर रक्तदाता पैसे बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो ये रक्तदान पुण्य है, महादान है, इसलिए इसमें शुल्क नहीं लिया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए 14 जून को ही विश्व रक्तदान दिवस के तौर पर क्यों चुना। दरअसल कार्ल लैंडस्टानर, जन्म 14 जून 1868 नामक, अपने समय के विख्यात ऑस्ट्रेलियन जीव विज्ञानी और भौतिक विद्य की याद में उनके जन्मदिन के अवसर पर ये दिन तय किया गया। वर्ष 1930 में शरीर विज्ञान में नोबल पुरस्कार से सम्मानित मिनिशी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने रक्त में विशेष जो अगोल्युमिनेटिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त का अलग अलग रक्त समूह ABO में वर्गीकरण कर चिकित्सा विज्ञान में अहम योगदान दिया, जिसके कारण उनके ही जन्मदिन, उनके ही इस अनुसंधान के आधार पर उनके जन्मदिन को रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया था। तब से लेकर ये चीज़ें चलती आ रही हैं, और रक्तदान को लेकर जो भ्रांति है उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, और इन जागरूकता कार्यक्रमों में रक्तदान के महत्व और उसके लाभ भी बताए जाते हैं, और जो भ्रांतियाँ है उसको दूर किया जाता है। इसीलिए जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो आप शुरू में वहाँ पर जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस तरह की बातें समझ में आ जाएगी, जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। तो आइए, आप सभी को ले चलता हूँ मैं एक और सुंदर गीत की तरफ, सांसों की माला आपके नाम, अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। सांसों की माला, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं। आशा करूंगा आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है और इस खूबसूरत गीत को गहराई से आप सुनिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:12 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ गुड मॉर्निंग गाबू। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और विश्व रक्तदाता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा अगर आप टाइम मिलता है तो ज़रूर आप जो है ये रक्तदान करिएगा और बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे आप अगर नहीं किया हो। जो करते हैं वो तो करते ही हैं, है ना। अगर आपने नहीं किया हो तो एक बार प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। आप अपना वज़न जो है 60 किलो शायद होना चाहिए, 60 के ऊपर, तो आप ज़रूर कीजिएगा और चेक भी कर लीजिए एक बार। वहाँ पर जाते ही वो तुरंत तो लेंगे नहीं, आपकी चेकिंग करने के बाद ही आपको पूछेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद आपके ब्लड डोनेशन कराएंगे। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं अभी। और गुड मॉर्निंग आबू, में आप आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। अरे चलो, गाना तो आपने अच्छा ही सुना दिया, एक गाना और सुना दीजिए कि

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सभी मित्रों को आपको
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। ये थे सुरेश जी जोटाना से, जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। और आइए, जून की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज के दिन विशेष, जैसे विश्व रक्तदान दिवस है। और अगर आपने रक्तदान किया हो तो ज़रूर हमें बताइए कि कौन कितनी बार आपने किया है, तो हमें और खुशी होगी। हेलो जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी,
2: बोलो,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हम राजस्थान से।
0: जी जी, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम विष्णु है।
0: विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग आप हमें। और रेडियो मधुबन सुनते हैं रेगुलर आप?
2: हाँ।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, और ये गीत अभी सुरेश जी ने याद कराया। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करते हैं कि आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज विशेष जिन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में बातें करते हैं, उसमें से एक शेखर सुमन जी का जन्मदिन है, उनके बारे में बातें करते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी।
0: जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: बस बस, हम भी अच्छे हैं आपकी दुआ दया से।
1: बस बस, सबकी दुआ है, दुआ के साथ में अपन भी अच्छे हैं। और मैं कभी से सुन रहा हूँ लेकिन मेरा मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कहा मौके का फायदा के लिए एक गाना सुना दोगे तो अच्छा रहेगा, समय है तो।
0: जी जी जी।
1: बड़ी देर भई मेरे राम, बड़ी देर भई मेरे राम, कब लोगे मेरी खबर ओ मेरे राम, कब लोगे मेरी खबर ओ मेरे राम। ये गाना भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। आपने अच्छे अच्छे गाने सुना दिए, हमको सुन सुन करके मस्त हो गए, मस्त के साथ में मेरे को भी ये गाना याद आ गया, मेरे को भी ये भी सुना देंगे, अच्छा रहेगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और चलिए अब बड़ी देर वाला जो गीत है वो भी सुनते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपको मैं ले चलता हूँ, बात करूँगा के असीब के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने हिंदी सिनेमा के जगत में कम फिल्में बनाकर बहुत नाम कमाए। भारतीय सिनेमा की सर्वाधिक क्लासिक फिल्में मुगले आजम इन्होंने बनाई। बहुत कम फिल्में और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करने वाले फिल्मकारों में से एक नाम के आसिफ का आता है। शायद ही ये अकेला नाम है भारतीय फिल्म जगत के इस महान फिल्मकार का, पूरा नाम करीम आसिफ था। तो आइए इनके कुछ गानों के बारे में सुनेंगे, उनके कुछ काम के बारे में सुनेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करीम आसिफ का जन्म आज के दिन 1922 को उत्तर प्रदेश के इठावा गांव में हुआ। पिता का नाम फजल करीम और माँ का नाम बीवी गुलाम फातिमा था। के आसिफ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, खुद उन्होंने भी कभी शिक्षित होने का दावा नहीं किया और बावजूद इसके वे महान फिल्मकार बने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर अपनी एक अलग पहचान और जगह कायम की। एक मामूली कपड़े सिलाने वाले दर्जी के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और बाद में लगान और बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी फिल्मों में हुई और फिल्मों में लगन और मेहनत से निर्माता निर्देशक बन गए। अपने 30 साल के लंबे फिल्मी करियर में के आसिफ ने सिर्फ 3 मुकम्मल फिल्में बनाई, फूल 1945 में, हलचल 1951 में और मुगले आज़म 1960 में। ये तीनों ही फिल्में बड़ी थी और तीनों में सितारे भी बड़े थे। फूल जहां अपने युग की सबसे बड़ी फिल्म थी, वही हलचल ने भी अपने समय में काफ़ी हलचल मचाई थी और मुगले आज़म तो हिंदी फिल्म जगत इतिहास का शिलालेख बन गया। मोहब्बत के आसिफ, मोहब्बत को के आसिफ ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत मानते थे और इसी विचार को कैनवस पर लाते, अगर वे चित्रकार होते तो इसी विचार को पर्दे पर लाने के लिए उन्होंने मुगले आज़म का निर्माण किया। तो 3 फिल्मों में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की 30 सालों में, हर फिल्म के लिए 8 से 10 साल इनको लगे, तो है ना कमाल की बात। तो आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, आप सुनते रहो।

कब लोगे खबर पौरे, क्या बात है। आइए बात कर रहे थे कि आसिफ जी के बारे में, और तीन फिल्में इन्होंने निर्देशक के रूप में निर्देश किया, और फिर उसके बाद मुगले आज़म का तो आप सभी जानते हैं, एक ऐतिहासिक जो है फिल्म बनी, और उसके बाद अधूरी रही इनकी लव एंड गॉड। उसके बाद में उनकी फिल्म को पूरा किया गया, लेकिन फिल्म जो है जिस तरह से बननी चाहिए थी, जिस अंदाज में वो बनाना चाहते थे, वो शायद नहीं कर पाए, लेकिन फिल्म तो रिलीज हुई। तो आइए पहला फिल्म फूल का ये गीत आपके नाम अभी 1945 का ये फिल्म का गीत आपके नाम।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले आपको ले चलता हूँ मैं के आसिफ की जीवन कहानी से। उनके फिल्म बनाने का अंदाज़ जो है के आसिफ का, सामान्य रूप से अपनी फिल्मों में विशेष रूप से ऐसा लगाव था जैसे लगन में पूजा जैसी पवित्रता और जुनून की सीमाओं तक डलती बढ़ती हुई एकाग्रता थी। अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत वे मूवी

0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हलचल फिल्म के कुछ एक गीत जो मैंने आपको सुनाया कि आसिफ जी का, और उसके बाद दूसरी जो फिल्म बनाई उन्होंने मुगले आज़म। और मुगले आज़म इस फिल्म के गीत तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, है ना? तो आइए बात करते हैं कि आसिफ जी के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में बातें चल रही थी और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और आपने अगर उनका फिल्म देखा भी होगा तो कई फिल्में जो हैं सुपर डुपर हिट रही थी, लेकिन इस तरह की सुपर डुपर फिल्में आपने नहीं देखी होगी। तो के आसिफ जी जो है उनको विशेष 1960 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला मुगले आज़म के लिए, और 1960 में ही सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक भी मुगले आज़म को उनको दिया गया। तो उसका एक गीत है जो खास कांच के महलों में शूट किया गया था। हेलो जी नमस्कार। हेलो
1: जी नमस्कार, बोल रहा हूँ।
0: बोलिए बोलिए मदन जी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार करते हैं रमेश जी को। और आज रविवार है, जब कहीं खुशियाँ मना रहे होंगे, कहीं मिलने गए होंगे, कहीं अच्छा कार्य करने गए होंगे, सभी को दिन अच्छा जाए ऐसी शुभकामना करते हैं। और आपको नमस्कार। और अभी मशीनें चल रही है, अभी अभी जस्ट आया हूँ कंपनी में, और आपको फोन किया है। और बस बढ़िया सा गाना सुना दिए, और अल्लाह तेरो ला ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, और इसे संगीत से सजाया है जय देव ने, बड़ा अच्छा गाना है बहुत, और सुना दिए। नमस्कार सर, ओम शांति। मैं
0: अभी
1: इधर
0: इधर
1: में हूँ, इसलिए बात
0: नहीं कर रहा। ठीक ठीक, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए अब मुगले आज़म का ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: चलिए मित्रों, आज के गुड मॉर्निंग गाबू में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अभी सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं समाचारों की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते
1: समाचार प्रभात के साथ, मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज संडे है, संडे में हम लोग विशेष आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर टीएन सिंह जी हैं, जिनसे हमारी बहुत सारी बातें होती है और पिछले कई एपिसोड उनके आपने सुने हैं। और मैं चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में भी आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी बातें हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें बता सकते हैं। और डॉक्टर साहब 9 से 10 हमारे साथ है और उनसे जो बातें आपको करना हो किसी भी विषय को लेकर हेल्थ रिलेटेड, ज़रूर उनसे बातें कर सकते हैं। इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं 94-1415-1415 इस नंबर पर, या फिर कॉल करके डायरेक्टली भी डॉक्टर साहब से अभी बात कर सकते हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद रमेश भाई
0: जी।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक घंटे आपके बीच मैं रहूँगा। इस बीच में जो भी आपको मेडिकल संबंधी प्रॉब्लम है, कोई भी, कोई ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन संबंधी ही हो, और सर्जिकल हो, ऑर्थोपेडिक हो, गायनी हो, INT, जो भी संबंधी जानकारी लेनी हो कि बीमारी क्यों होती है, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, कितने समय लगेगा ठीक होने में, दवाएँ कैसे चलेगी, ठीक होगा नहीं होगा, आगे कहाँ दिखाया जाएगा, क्या होगा, कोई जानकारी बेझिझक आप पूछ सकते हैं। फिर बीमारी से हम बचे कैसे, इसके बारे में सबसे ज़रूरी होता है प्रिवेंशन, बीमारी नहीं हो उसके लिए हम कैसे तैयार करें अपने को। इन सब बातों की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप बेझिझक मुझसे बात करें। धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी तरह से हूँ, बहुत अच्छी तरह से हूँ। लेकिन आजकल जो मौसम ऐसा
0: जी, जी,
1: हुआ
0: जी।
1: है, इसमें काफी केसेज आ रहे हैं आपके, इन्फ्लुएंजा वाले केस में आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन है ये, बहुत, इतना परिवार में एक आदमी को अगर हो गया तो सारे परिवार के लोगों को हो जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो इससे सबको थोड़ा बचना है, सावधान रहना है उसके लिए, उस पर ध्यान देना है।
0: अच्छा, अभी जो बारिश का मौसम है और यहाँ पर बिल्कुल अलग टाइप का मौसम है, जैसे कि एकदम से बारिश बंद होते ही जितना वो ठंडक लग रहा था उससे कई गुना ज़्यादा गर्मी भी, उमस आ जाती है, पसीना पसीना लगता है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें क्या बीमारियाँ हो सकती हैं?
1: इसमें सबसे अधिक इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत अधिक फैलता है, क्योंकि वायरस, जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं जनरली स्प्रेड होते हैं आपके छींकने से, खांसने से, ये सबसे अधिकतर स्प्रेड होते हैं। खास करके इन्फ्लुएंजा बी वायरस जो है ये अधिक होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: दूसरी बात हो गई कि खास करके जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज वाले हैं, थोड़ा सा भी अगर बॉडी रेसिस्टेंस उनका कम है तो बारिश में भींग गए, थोड़ा सा भी सर गीला रह गया या कपड़ा कोई गीला रह गया तो उनको पकड़ लेगा पट से, या परिवार में किसी एक मेम्बर को हो गया तो थोड़ा सा उसको अलग करना है, दूसरे रूम में रखना है। और दूसरी बात है कि उनको आप ऐसा कीजिए कि एक जो होता है ना मास्क जो होता है, बहुत सस्ता मिलता है मास्क, उस मास्क को जिनको हुआ है उनको बांधना चाहिए। जनरली होता क्या है कि बाकी लोग अपने मुंह पर लपी करते हैं, असल तो उनसे फैलना है, जो छींकते हैं खांसते हैं उनसे फैलना है, इसीलिए उन लोगों को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बचे इससे, कि कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। दूसरी बात है कि अगर बारिश से भींग गए तो तुरंत एक कपड़ा चेंज कर लेना चाहिए, माथा अगर सर गीला हो गया है तो उसको टॉवल से पोंछ लीजिए, कपड़ा चेंज कीजिए, और थोड़ा सा हॉट ड्रिंक, कोई भी, कोई चाय लेना है, कॉफ़ी लेना है, दूध लेना है, ये सब ले लीजिए। उस ऐसा नहीं कि भींगने के बाद कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोई भी चीज़, छाछ हुआ या कोई कोल्ड ड्रिंक हुआ, कुछ भी, यहाँ भी जूस भी अगर फ्रिज का निकाला हुआ पी लेंगे, फ्रिज में रखा हुआ अगर मिठाई, खास करके आपका रसगुल्ला वगैरह जितना भी है, ये बहुत जल्दी पकड़ता है, थ्रोट पकड़ लेगा पट से। और एक बार वायरस इन्फेक्शन हो जाने के बाद में कितना भी हम कोशिश करें 3-4 दिन तो खींच ही लेता है। आप इलाज कराइए तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं इलाज कराइएगा तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तंग करेगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इससे बच करके रहना है। काफ़ी फीवर भी, मतलब हाई शूटअप कर रहा है। इसके साथ अभी कन्फ्यूजन की बात ये है कि अभी आपको इस मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, खास करके डेंगू है, जो डेंगू है वो काफी केसेज आ रहे हैं, मलेरिया के केसेज आ रहे हैं हम लोग के हॉस्पिटल में। बाहर की जो बहने आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं लोग दिल्ली वगैरह साइड से, या राजस्थान के ही, अपने राजस्थान के आ रहे हैं लोग, ये लोग मलेरिया और डेंगू लेकर के आ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो उससे थोड़ा बचना है। देखिए, किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उससे आपको इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैन टू मैन नहीं कैरी करता है ये। जिसको हुआ है डेंगू, अगर उसको एडिस मॉस्किटो काटेगा उसमें, उसके थ्रू फिर और वही मॉस्किटो अगर दूसरे किसी को काट लिया, आपको काट लिया तो हो जाएगा। वो ऐसे फैलता है, वो वायरस वो कैरी करेगा और दूसरे को इंजेक्ट कर देगा। इस तरह से होता है। तो इसका वही उपाय है कि हम डेंगू के लिए खास करके जो एडिस मॉस्किटो होते हैं, वो एडिस मॉस्किटो दिन में ही, रात में वो नहीं काटते हैं, रात में मिलेंगे नहीं, वो छुपे रहते हैं बेचारे। और दिन में खास करके 9-10 बजे के बाद में, दिन में दो मैंने 12 बजे तक थोड़ा रिस्की पीरियड है, आप बाहर बैठते हैं लोन वगैरह में कहीं पर बैठते हैं, तो एक तो है कि पूरा कपड़ा, अगर लोन में बैठते हैं तो पूरा कपड़ा पहन करके बैठिए, खाली जगह नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है कि जो होता है मतलब जैसे ओडोमॉस वगैरह टाइप की चीज़ है ना, एंटी मॉस्किटो रेपलेंट, उसका तो बहुत चीज़ निकल गया है आजकल, लोशन भी आ गया है, पहले से क्रीम था ही, अब आजकल कपड़ों पर लगाने के लिए भी आ गया है, उस पर क्लोथ्स पर भी लगा दिया जा रहा है, उससे वो बैठते नहीं है, काटते नहीं है। तो इस मॉस्किटो को से बचने के लिए क्या है, और ये खूबी ये है कि बाकी मॉस्किटो जैसे मलेरिया के जो जितने भी मच्छर हैं, ये मच्छर जो हैं वो पानी, स्टेग्नेंट वाटर जो है, वो गंदा पानी है, उसमें ग्रो करते हैं, होते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और उसमें उनका अंडा होता है, लार्वा डेवलप करता है। और एडिस मॉस्किटो का उल्टा है, ये साफ पानी में, जैसे आपने अपने गमला में प्लांट में साफ पानी डाला कहीं पर, या किसी कंटेनर में साफ पानी रखा हुआ है और वो मतलब कुछ देर के लिए रह गया, उसमें उसको मौका मिलता है ग्रो करने का। अगर 2 दिन रह गया तो उसमें ग्रो कर जाएगा वो मॉस्किटो। तो उसमें जहां पर अगर कहीं जरूरी है कि साफ पानी अगर पड़ा हुआ है तो, और नहीं तो उसमें थोड़ा सा केव ऑयल वगैरह डाल दीजिए ऊपर से, तो वो मच्छर उस पर नहीं बैठेंगे, या फिर उनका ब्रीडिंग नहीं होगा, बढ़ने की देर नहीं होगी। और ये बाकी तो मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता ही है, तो एनोफिलस काटने से होता है, लेकिन वो मच्छर जनरली रात में अंधेरा होने के बाद वो काटते हैं, एनोफिलस मच्छर। और उसके बाद क्विलेक्स मॉस्किटो एक होते हैं जो अगर काटते हैं तो उससे भी मैंने होता है मॉस्किटो। उसके बाद क्विलेक्स फाइलेरियल भी फैलता है, फाइलेरिया भी होता है जो मॉस्किटो ही फैलाते हैं। तो बहुत सारा है, एक और होता है तो उसका होता है कि काला जार होता है, वो भी मॉस्किटो से ही ये होता है, उसको कहते हैं लिस्मेनियसिस कहते हैं, हम काला जार कहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो बहुत सारे तो मॉस्किटो से एनी हाउ बचना है।
0: सही बात।
1: और अभी वायरस भी ग्रो होता है, क्या डेंगू जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन मलेरिया जो है वायरल नहीं है, मलेरियल पैरासाइट है, फैलेरियल पैरासाइट हैं ये सब। काला जार वाले जो हैं डिस्मेनिया में डोनोफनाई करके आता है, वो पैरासाइट है, ये अलग ग्रुप हो गया। और ये डेंगू जो फैलता है ये आपका वायरल है, तो वायरल है, लेकिन यही है कल्याण है कि मैन टू मैन नहीं फैलता है। ये नहीं कि आप एडिस वाले इसके पास में, डेंगू वाले फीवर के पास आप बैठे तो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मॉस्किटो के काटने के बाद ही होगा। तो मॉस्किटो से बचें, रात में मॉस्किटो नेट लगा करके सोया करें, दिन में अगर कहीं फील्ड वील्ड में बैठते हैं तो या तो यही मॉस्किटो रिपेलेंट जो है बताया, ओडोमॉस टाइप की बहुत सारी
0: रिपेलेंट,
1: तो उसको आप लगा करके ही करें। और कुछ नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल भी शरीर में लगा करके अगर बैठते हैं तो उससे भी मॉस्किटो नहीं होते हैं। अगर उसमें बैठते हैं आप, इसमें मॉस्किटो लगा करके मस्टर्ड ऑयल केवल, तो मस्टर्ड ऑयल भी शरीर में लगा करके अगर आप बैठते हैं तो जनरली मच्छर नहीं काटते हैं, दिन में भी बचते हैं। लेकिन अगर आप ये करके ये करें, मॉस्किटो रेपेलेंट अगर करें तो बेटर है। दूसरी बात है कि अगर कहीं पर बारिश में भीग गए, या बारिश में भीगने के बाद में अगर आपको हुआ भीग गए, तो ऐसा करना है कि छींकों को आनी शुरू हो गई तो तुरंत एंटी एलर्जिक ले लीजिए, आप एंटी एलर्जिक आप ले सकते हैं।
0: जी जी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि बारिश में ये जैसे कि सिचुएशन में आपने बताया, और एक मैसेज आया है, अंजिता जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आपको डॉक्टर जी को, सभी सुनने वालों को नमस्कार। और कई मेडिकल स्टडीज में ऐसा बताया हुआ है कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी,
1: हाँ बोलिए, हाँ,
0: तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ऐसा पानी पीने से कई तरह की बीमारियां का खतरा टलता है। जानते हैं कि रोज़ इस पानी को पीने से क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए ऐसा है कि कॉपर के मतलब तांबे के बर्तन में अगर पानी रख करके, ऐसा नहीं कि तांबे का गिलास खरीद लिया उसमें पानी रख करके पी गए, उसे नहीं होगा। वो तांबे के बर्तन में पानी 12 घंटा रहना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: मतलब हाँ, जो घड़ा है या कोई चीज रखते हैं या लोटा वगैरह टाइप का जो गांव में रखते हैं, उसमें पानी रहना चाहिए 12 घंटा। और उसका और कोई चीज पर तो असर हो या नहीं, डाइजेशन में इफेक्ट है जैसा आप मानते हैं। दूसरी सबसे अधिक है एक विटिलिगो होता है, स्किन डिजीज होता है।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: हाँ। जहाँ पर
0: व्हाइट व्हाइट पैच,
1: हाँ, व्हाइट व्हाइट पैचेज हो जाते हैं जिसमें कि एक पिगमेंट होता है।
0: हाँ।
1: और मेलनोसेल पिगमेंट आता है। वो वहाँ डिपोजिट होता ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो वो डिपोजिट अगर ये तांबे का रखा हुआ पानी पीते हैं तो थोड़ा जल्दी डिपोजिट होता है।
0: ओके।
1: ये फायदा है। और दूसरी बात है जैसे धूप में भी अगर ये बैठते हैं तो उनको भी बेनिफिट होता है। दूसरा थोड़ा सा इसका रोल सोरियसिस में भी रखा गया है। एक सोरियसिस स्किन डिजीज होता है जिसमें कि पैचेज होते हैं, ड्राई पैचेज भी होते हैं, वेट पैचेज होते हैं, जल्दी ठीक होता नहीं है। ये क्रोनिक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका कारण पता नहीं है। तो इसमें भी है कि अगर वो तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं तो हो सकता है, एक चांस है कि कभी ठीक हो जाए, कंफर्म नहीं है इसके बाद। हाँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा धूप में भी दिखाना उसको जरूरी होता है। अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन अगर होता है तो दोनों में बेनिफिट होता है, विटिलिगो में भी बेनिफिट होता है और इसमें भी बेनिफिट होता है, सोरियोसिस में भी बेनिफिट होता है, दोनों।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: अर्ली मॉर्निंग वाला ये सनलाइट,
0: सवेरे सवेरे
1: सवेरे वाला धूप, दोपहर वाली धूप नहीं। तो तांबे के पानी में अगर आप कोई रखती हैं, पॉट रखती हैं जिसमें कि पानी रखा जाए 12 घंटा रख करके, उसके बाद पिए, जब खत्म हो तो फिर उसको भर,
0: फिर उसको भर के 12 घंटे के बाद पीना है।
1: मैंने वो तो हो गया ना कंटिन्यूअसली, तो रेगुलर हो गया।
0: अच्छा, फिर
1: एक बार अगर मान लीजिए 10 ग्लास वाला कोई भी कंटेनर आपने रख दिया है, भर दिया है, और उसके बाद 12 घंटे के बाद रात में रखा, सुबह से पीना शुरू कर दिए,
0: ओके ओके,
1: तो एक एक ग्लास निकालती है, एक ग्लास पानी डाल दीजिए, दो ग्लास निकालती है, दो ग्लास पानी डाल दीजिए, सर साइकिल चलता
0: रहेगा,
1: इसमें लॉस नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि तांबे के इसमें पानी पीने से, क्योंकि तांबे का बाद में स्टील आया है, स्टेनलेस स्टील आया
0: है। सही बात है।
1: पहले तो जो खास करके जितने अच्छे परिवार, रईस परिवार वाले होते थे, तो उनके पास तांबे का जो जो सबसे राजे महाराजे होते थे तो उनके यहाँ गोल्ड का रहता था। उसके बाद उसे नीचे वाले थोड़ा सा आते थे, रईस लोग थे, उनके यहाँ सिल्वर का रहता था। और अभी सिल्वर में ग्लास में पानी पीते हैं लोग,
0: धनी मानी
1: है। और उसके बाद नंबर तीन वाले जो आते हैं, जो उनको कॉपर का यूज करते हैं तांबे का, और जो हम लोग जो बाकी पीते हैं स्टील वाले पीते ही, तो जनरल है ये, ऐसा चीज निकल गया कि ना टूटता है ना फेंकने से ही फेंकना ही पड़ेगा आपको, पुराना होने के बाद जब 15-20 साल 25 साल हो जाएगा तो वो खत्म होने वाला है नहीं।
0: सही बात है।
1: अभी भी तांबे का बर्तन महंगा है, आप कोई भी लीजिए बर्तन लीजिए तांबे का, तो वो महंगा है स्टील से, बहुत महंगा है। तो अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, और आप उसे यूज करें तो कोई आपको
0: हार नहीं है
1: कम से कम।
0: चलिए एक और मैसेज उन्होंने लिखा है, जिंदगी क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यय होती है, जब बुद्धि व्यय होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है, क्रोध मत कीजिए।
1: ये तो मेडिकल संबंधी कोई बात नहीं है
0: इसमें, ऐसे, ऐसे, ऐसे मैसेज किया है।
1: क्रोध करने से मेडिकल भी बहुत सारा है, जहाँ मेंटल टेंशन बना क्रोध बने तो बहुत सारी बीमारियां, आपका बीमारी होती है मेंटल, इसलिए आजकल हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा है, अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: माइंड बॉडी मेडिसिन।
0: अच्छा, ये कहाँ चल रहा है?
1: अभी अभी चल रहा है माउंट आबू में चल रहा है, ज्ञान सरोवर में चल रहा है, काफी डॉक्टर्स इंडिया के आए हुए हैं,
0: वेरी गुड,
1: मोर देन 1000 डॉक्टर्स आए हुए हैं, और ये सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हुए हैं। इसमें यही टॉपिक ही रखा जाता है इसमें, कि पहले इलाज करना है माइंड का। माइंड का इलाज करने का मतलब क्रोध का ही हुआ ना, टेंशन का हुआ, कि हम कैसे स्ट्रेस फ्री रहें। तो पहले माइंड का इलाज करके तब बॉडी का इलाज करते हैं हम लोग, तब दवा पर, माइंड बॉडी मेडिसिन, मेडिसिन लास्ट में आता है। तो ये भी ठीक है, क्रोध नहीं करें तो बड़ी अच्छी बात,
0: बड़ी अच्छी बात है,
1: कहना तो बड़ा आसान चीज है, क्रोध नहीं करें, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ धारण करना पड़ेगा अपने भीतर।
0: हाँ।
1: कि हमको क्रोध कैसे नहीं करना है।
0: जी जी जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को, और संडे हैं, और आशा करता हूँ आप सभी छुट्टी फरमा रहे होंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं किसी भी विषय को लेकर, 94 1415 1415 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, चाहे आप डायबिटिक हो, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, काफ़ी समय से मेडिसिन ले रहे हो और कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर उसके लिए भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: Mammography is X-ray imaging of breast for early detection of breast cancer and other benign breast lesions. Global Hospital and Research Center at Mount Abu has recently installed new mammography system, CR-based digital mammography. There is evidence in the medical literature that suggests that periodic mammography screening is the most effective method for early diagnosis of breast cancer, with significant reductions in the specific mortality rates caused by this disease. This screening method is especially beneficial for women aged 40 years and above. Warning signs of breast cancers are these: lump, hard knot or thickening inside the breast or underarm area, swelling, warmth, redness or darkening of breast, change in the size or shape of the breast, dimpling or puckering of the skin, itchy, scaly sore or rash on the nipple, pulling in of your nipple or other parts of the breast, nipple discharge that starts suddenly, new pain in one spot that does not go away. For further information, contact X-ray Department, Global Hospital, Mount Abu.
3: रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज कर सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी स्लैश एपीटी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, ए विंग, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली 11001001, फोन 011-233-86547, ईमेल prabhudutt.sharma@nic.in या फिर crscell-moib@nic.in।
4: अरे साहब, जरा हमको रिपोर्ट तो दो, अफवाह फैलाने में हम कितने कामयाब हुए हैं। है
5: मच्छर सरदार, हमारे फौजी मच्छर इंसानों के कानों में भिन भिन की आवाज के साथ यही मैसेज दे रहे हैं कि मलेरिया संक्रमक नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो भी बुखार उतर जाएगा, और ये इंसान हमारी बातों में पूरी तरह से फंस गया है, कंफ्यूज हो गया है सरदार।
4: सब पास मेरे सेनापति मच्छर, इस बार तुमको प्रमोशन जरूर मिलेगा।
6: मच्छर गैंग चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, पर रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आपको मिलेगी मलेरिया संबंधित पूरी जानकारी।
7: मलेरिया जैसी बीमारी का इलाज समय पर ना होने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। अधिकतर बीमारियों को लेकर लोगों में भ्रम है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। जैसे एक भ्रम यह है कि अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो आप आजीवन इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं। तथ्य इसके बिल्कुल ही विपरीत है। सही चिकित्सा से मलेरिया पूरी तरह ठीक हो सकता है, इसीलिए अपने डॉक्टर्स की पूरी सलाह माने। मलेरिया और इससे बचने के उपायों को जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और डॉक्टर टीएन सिंह जी हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छी बातें वो समझाते हैं, बड़े दिल से हर चीज़ को जो है स्पष्ट करते हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोग अभी डेंगू के बारे में पूछ रहे थे, तो इसके कैसे हम लोग जो है दूर रह सकते हैं, जैसे आपने बताया 3-4 चीज़ें, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, डेंगू ना हो, मलेरिया ना हो, इसके लिए क्या करें?
1: प्रिवेंशन के लिए तो मैंने बताया ना कि इसमें एक है कि जो डेंगू एडिस मच्छर का नाम होता है,
0: अच्छा,
1: ये दिन में काटते हैं और इससे वो वायरस जो डेंगू के पेशेंट हैं वो एक डेंगू वायरस है,
0: अच्छा,
1: तो उसके पेशेंट जो हैं उसको जब वो काटेगा, डंक मारेगा, तो उससे ब्लड सक कर लेता है वो,
0: अच्छा,
1: और वो ब्लड उसके शरीर में जब गया डेंगू इसके मच्छर में, एडिस मच्छर में, और वो फिर दूसरे को डंक,
0: अच्छा,
1: मारेगा,
0: दूसरे को मारेंगे,
1: मारेंगे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा वो वायरस,
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा,
1: और फिर वो वायरस जो है, तो वायरस बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो वो वायरस से डेंगू फीवर ये होता है। और मलेरिया वाला जो है वो दूसरा चीज है, मलेरियल पैरासाइट है,
0: अच्छा,
1: वो मलेरियल पैरासाइट क्या होता है कि जो मच्छर जो हैं वो मच्छर में ही मलेरियल पैरासाइट का साइकिल चलता है,
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा,
1: उसी में मल्टीप्लाई होकर के बहुत ही होते हैं, और तब वो जब डंक मारेगा तो उसके बाद में उसमें वो मलेरियल पैरासाइट को इंजेक्ट कर देगा। मलेरियल पैरासाइट को इंजेक्ट जब कर देगा तो मलेरिया भी खांसने से छींकने से बढ़ता नहीं है, मलेरिया भी जो है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको अगर कोई मॉस्किटो डंक करता है तो जल्दी वो मलेरियल पैरासाइट उसमें फिर इसमें चले जाएंगे मॉस्किटो में। लेकिन मॉस्किटो में रहता है मलेरियल पैरासाइट, जब एक बार चला गया तो उसके भीतर उसका साइकिल चलता रहता है। अंतर क्या है पहचानने में, तो बचने की बात है कि दोनों में वही चीज है कि मॉस्किटो से मच्छर से बचना है, तो मच्छर से बचना है कि एक तो कि मच्छर ग्रो नहीं हो, बढ़े नहीं, उसके अंडा नहीं, उसके एग्स नहीं बढ़े, लार्वा नहीं बढ़े, फिर से उसमें मॉस्किटो आए नहीं, मतलब मच्छर नहीं बन सके। तो इसका तरीका ये है कि इसमें जो खास करके मलेरियल जो मॉस्किटो जो होते हैं एनोफिलस होते हैं, उसके एनोफिलस में भी फीमेल एनोफिलस से ही फैलता है मलेरिया, तो उसमें क्या है कि उसमें जो मच्छर ये होते हैं वो मल्टीप्लाई उसके लार्वा, जो अंडा दिया इसमें पानी में, अंडा से लार्वा बढ़ा, लार्वा से उसके बाद में वो एडल्ट मच्छर बन जाते हैं। तो मच्छर का साइकिल कैसे तोड़ा जाए, माने मच्छर बढ़े नहीं, जैसे मच्छर पानी में जाकर के अंडा दे रहा है, एक मच्छर कितना सैकड़ों हजारों अंडा दे दिया है, तो उसे उतने मच्छर तो बन जाएंगे ना, तो उसको खत्म करने के लिए तरीका क्या है कि एक तो ऐसे गांव वगैरह में लोग मछली उसमें पाल देते हैं पानी में,
0: अच्छा अच्छा,
1: और वो मछली जो है वो सब खा जाती है,
0: अच्छा, यहाँ
1: उसका एक को भी और इसको भी लार्वा को भी खा जाएगी, तो मच्छर बनने नहीं देगी, तो उससे एक बेनिफिट होता है। और दूसरा क्या चीज है कि वो पानी, एक तो पानी को खत्म करें, नहीं रहने दें स्टेग्नेंट वाटर जो गंदा पानी है, नाले उले का पानी हुआ चाहे सबको उसको खत्म करें, और दूसरी बात है कि उसके ऊपर अगर कोई भी वायल का एक लेयर दे दिया जाए, कोई भी खास करके के वायल का हुआ, कोई भी वायल का लेयर दे देने के बाद में, तो उस पर मच्छर का एक बन रह नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, ऊपर रह जाएगा, उसका कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा। तो एक उससे खत्म करने का तरीका ये है कि मॉस्किटो मच्छर कैसे मच्छर बढ़ने नहीं पावे, और दूसरा तरीका ये हो गया कि मच्छर कैसे हमको काटे नहीं, तो नहीं काटने का तरीका ये है कि मच्छर अगर हो गए हैं, चूंकि आजकल ब्रीडिंग सीजन में मतलब मच्छर के बढ़ने का समय है, हर जगह पानी जमा हुआ है, हर जगह ऐसा है, तो मच्छर नहीं करते, एक तो जब भी जहां सोए जहां मच्छर है तो रात में मॉस्किटो नेट तो जरूर यूज करें, यहां तक कि देहात वगैरह में जहां पर अधिक मच्छर होते हैं वहां तो दिन में भी मॉस्किटो नेट लगाना पड़ जाता है लोगों को, दिन में अगर सोते हैं तो, और दिन में अगर काम करते हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे होता है ओडोमोस टाइप का, बहुत सारा क्रीम है, लोशन है, या कपड़े पर लगाने का है, क्लोज पर लगाने का ये है, उसको यूज करें तो मच्छर नहीं आते हैं, या रात में सोते हैं तो मॉस्किटो वाले जो आते हैं, जो ये सब आते हैं, मैंने फ्लूइड जो आते हैं जिससे वेपर निकलता है उससे, तो उसके गैस से वेपर निकलने से मच्छर भागते हैं, लेकिन आजकल वो मच्छर इतने एडिक्ट हो गए हैं उसके कि उसका कोई असर होता नहीं है। तो मच्छर से बचना है दोनों में ही, और एडिस वाला मच्छर है जो एडिस मच्छर जो है जो कि आपका डेंगू फैलाता है, वो मच्छर है वो दिन में जनरली पानी में बैठता है, पानी के ऊपर बैठता है और दिन में ही ये काटता है और वो क्लियर वाटर में बैठता है, गंदे पानी में नहीं, नाले वाले में जहाँ पानी गंदा है, सड़ा हुआ पानी, उस पर नहीं बैठेगा, क्लीन वाटर पर जनरली करो। तो इसलिए क्लीन वाटर को भी आपके फ्लावर पॉट्स में, आप घर में रखे हुए हैं भीतर फ्लावर पॉट्स सुंदरता के लिए रखे हुए हैं, खासकर लो मनी प्लांट और इनडोर प्लांट्स रखते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें मच्छर ग्रो करते हैं ये एडिस वाले, क्लियर पानी जो है उसमें, तो उसको हमेशा पानी निकाल दिया करें, कम से कम हफ्ते में एक बार तो पानी निकाल ही देना चाहिए। आदत बना लीजिए कि संडे को ही आप निकालिए, घर की सफाई होती है, संडे को पानी निकाल दिया कीजिए। तो पानी जब तक स्टेग्नेंट नहीं होगा तो मच्छर ग्रो नहीं कर पाएगा। मान लो आज पानी है, दो दिन रहा, आपने निकाल दिया, तो दो दिन में नहीं ग्रो कर पाएगा, उसको भी टाइम चाहिए, तो उससे बचना है। अब रह गई बात, सबसे बड़ी बात आती है कि फीवर आया, हाई फीवर करके आया, हाई फीवर करके आया, तो हाई फीवर करके आया तो हर जगह कन्फ्यूजन होता है कि है क्या, मलेरिया है, डेंगू है, क्या चीज़ है, या इन्फ्लुएंजा वायरस से हुआ है, फ्लू हुआ है, क्या हुआ है। तो इसको लेकर के इसको ऐसा है कि एक तो है कि डेंगू अगर होगा तो डेंगू में एक्यूट बॉडी एक होता है, मैंने समझो कि कमर दर्द होता है, कमर तोड़ दर्द होगा, लगेगा कि एकदम टूट गया कमर, एकदम बॉडी में एक्यूट पेन होगा, सहना मुश्किल होता है, बहुत हाई फीवर भी होगा, साथ साथ ये होगा। और दूसरी बात होता है कि अगर वो बुखार कुछ दिन रह गया 6-7 दिन के बाद में, तो हेमरेजिक स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी में, लाल लाल लाल लाल लाल लाल पूरे शरीर में लाल लाल बॉडी में आ जाएंगे, वो हेमरेजिक स्पॉट्स से वो बताता है कि मतलब रिस्की पॉइंट में जा रहे हैं हम लोग, मतलब ब्लीडिंग शुरू होने का डर है। जब वैसा हो जाता है तो नाक से भी खून आ सकता है, पेशाब के रास्ते से आ सकता है, अपना मल द्वार के से भी पानी, ब्लड कहीं से भी ब्लड निकल सकता है, ब्लड वेसल से डैमेज होकर के ब्लड आ जाते हैं। तो ये आगे की जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत डाउन हो जाते हैं, तो इसमें जो ब्लड जांच किया जाता है, तो एक तो सीबीसी जनरल हम लोग कराते ही हैं और उसी में प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है, और उसके बाद टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है। तो प्लेटलेट्स काउंट अगर जनरली 1.5 लाख होना चाहिए, और 1 लाख से अगर नीचे आया तो थोड़ा सा कोशिश तब डेंगू का किट का जांच करना चाहिए। डेंगू का किट आजकल आ रहा है, उसमें 3-4 उसके एंटीजन होते हैं, उसका जांच किया जाता है कि डेंगू कौन सा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है क्या है। अगर घट करके 60,000 के नीचे आ गया तब तो रिस्की चीज़ है, तब तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है। जैसे मलेरिया के लिए इंजेक्शन है, हम गोली भी है, क्लोरोक्विन का टेबलेट चलता है, या मलेरिया का उसका क्लोरोक्विन का इंजेक्शन चलता है, या आजकल और भी सारे इंजेक्शन आ गए हैं, क्योंकि मलेरिया में दो तरह के मलेरिया ले है, वायरस और फैल्सीफेरम, दोनों दो चीज़ है, दोनों का इलाज अलग अलग ये है, तो उसमें उसका इंजेक्शन आया हुआ है। लेकिन डेंगू के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, डेंगू से जो वायरस फैलता है, चूँकि वायरस का कोई खासी है नहीं, वायरल अगर डेंगू हो गया तो बॉडी रेसिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, मतलब फ्लूइड को नॉर्मली करके, हमेशा ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, स्लाइन ट्रांसफ्यूजन हुआ, ग्लूकोज का हुआ, उस जरूरत पड़ी तो प्लेटलेट्स भी चढ़ाते हैं, प्लेटलेट्स अगर कम हो गया तो ये सब हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट हो जाता है। डेंगू में जो भी रिस्क होता है वो इसलिए होता है कि प्लेटलेट्स काउंट डाउन गया, ब्लीडिंग शुरू हुआ, तो ब्लीडिंग शुरू हुआ तो इंटरनल ऑर्गन में जहाँ जहाँ से भी ब्लीडिंग हुआ तो रिस्की हो जाता है। तो देखिए कहीं आया कॉल।
0: हेलो जी।
2: हेलो जी, रमेश जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ
2: है।
0: हाँ हरि जी बताइए।
2: डॉक्टर साहब से मेरी ये विनती है कि हमारी बीवी को है ना जो जो खांसी होती है, खांसी।
1: हाँ जी।
2: हाँ खांसी कई बार हो जाती है, कितनी भी दवा की तो वो नाबूदी नहीं होती है, कोई भी मौसम में हो जाती है, सर्दी हो, बारिश हो, या गर्मियों का मौसम हो।
1: अच्छा, सूखी खांसी।
2: एलोपैथिक दवाई ली है और होम्योपैथिक भी चालू।

0: निकलता है उससे भी एलर्जी होता है, कमरे में झाड़ू पड़ रहा है वो जो कमरे का डस्ट जो है वो सबसे खतरनाक होता है, कमरे का डस्ट जो है हाउस डस्ट, टेबल के ऊपर किताब कॉपी रखा हुआ है, अखबार रखा हुआ है पुराना, उसके ऊपर जो पेपर डस्ट होता है उससे भी बहुत, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्यों, आप सोचिएगा कि ठंडा तो रहा नहीं, गर्मी रहा नहीं, तो हो क्यों गया, ये डस्ट एलर्जी से भी होता है। तो ये पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसा एलर्जी चीज से होता है। दूसरी बात है कि उनको ठंड से तो कोई भी खाना ठंडा नहीं देना है, कोई भी चीज़, दही छाछ कड़ी वगैरह नहीं देना है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है उनको, फ्रिज का खाना उनको नहीं देना है, और एक बैग ठंडा से गर्मी, गर्मी से ठंडा, जैसे एसी वगैरह में सो गए, आदत नहीं है तो हो जाएगा, या बहुत ठंडा से नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत धूप में अगर निकल गए तो उससे भी हो सकता है। तो इसमें आप कफ सिरप पिलाएंगे या कफ की दवा जो चलेगी उससे नहीं आराम होगा, इसको एंटी एलर्जिक देना पड़ेगा कि जिससे कि ये हो नहीं, आगे नहीं बढ़े। अगर हो गया है तो उसके लिए दवाएं देते हैं हम लोग, खांसी की दवा देते हैं जिसमें कि कफ का बाउट जो रिफ्लेक्स है, कफ क्या है, कफ एक रिफ्लेक्स है, जो रिफ्लेक्स बताता है, कफ कोई बीमारी नहीं है, लोग कफ को बीमारी समझते हैं या टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है जिसको फीवर कहते हैं तो समझते हैं कि ये बीमारी हमारे को बुखार वाली बीमारी हो गई, वो बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है, सिम्टम दिखाता है कि कफ हो गया, इसका मतलब है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर में चाहे लोअर में कहीं पर कोई एलर्जी से हो रहा हो या फिर इन्फेक्शन से हो रहा हो, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है जिससे कि ये नेचर जो है वो रिफ्लेक्स से बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है। उसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हाई टेम्परेचर जो होता है वो भी बताता है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बात है, इसलिए टेम्परेचर बॉडी का अधिक बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंटी एलर्जिक, एंटी पायरेटिक हम लोग दवा देते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो जाए, पैरासीटामोल वगैरह, और कफ वाला अगर होता है तो कफ रिफ्लेक्सेज को डाउन करने के लिए हम देते हैं कि कफ का बाउट कम हो। लेकिन अगर एलर्जी मिलता रहा, जिस चीज़ से इनको एलर्जी है, तो खांसी तो कभी ठीक नहीं होगी ना, तो उनको पहले ये पकड़ना है कि हाँ डस्ट वगैरह नहीं लगे। जब घर में झाड़ू वाड़ू पड़ रहा है घर में, तो घर में नहीं बैठें झाड़ू के समय में, या अपने अगर झाड़ू लगा रही हैं तो मुंह नाक पर, मुंह पर वो कपड़ा, पतला कपड़ा बांध करके या मास्क बांध करके तब ये करें, इस तरह से बचना पड़ेगा।
1: हेलो जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ।
0: बोलिए
2: जी सर। मेरे को मतलब पेशाब में जलन रहती है और पेट में पानी भर जाता है, जब भी पानी पीता हूँ मतलब पेशाब के जरिए कम निकलता है, पेट में पानी बढ़ता रहता है।
0: अच्छा, क्या एज, उम्र कितनी हुई आपकी?
2: 24।
0: अच्छा 24 हुआ, तो ये कितने कितने दिनों से ऐसा है पेशाब वाला?
2: ये मतलब लगभग 5-6 महीने हो गए।
0: 5-6 महीने में आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कहीं से मिला हुआ है, कभी फीवर भी हो जाता है, बुखार भी होता है?
2: बुखार तो मतलब कमजोर से होता है हल्का
0: हल्का। पहली चीज तो ऐसा करें आपकी पानी खूब पिया करें। आपका कितना बॉडी वेट होगा, वजन कितना है अंदाजन आपका शरीर का?
2: 40 किलोग्राम।
0: कितना?
2: 40 किलो
0: है, तो कम ही है वजन, तो आपको कुछ नहीं, अगर 3 लीटर पानी अगर आप पिए तो सफिशियंट है दिन में 3 लीटर। लेकिन पानी खूब पीजिए। देखिए पेट में पानी जब जाएगा तो पेट में से उसके बाद वो उसको किडनी में जाना ही है, रास्ता वही है निकलने का, पानी जब भी निकलेगा तो रास्ता उसका वही तरीका है, किडनी में जा करके किडनी के थ्रू ही निकलेगा, गुर्दा के थ्रू निकलेगा पेशाब के रास्ते से। तो अब ये है कि अगर पेशाब में ऐसा है तो फिर आपको कोई यूरोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ेगा, जो मूत्र विशेषज्ञ होते हैं हिंदी में कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, वो हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में रहते हैं लोग, उनके पास आप जाओगे तो एक तो वो पेशाब का जांच कराएंगे, उसका कल्चर कराएंगे, सेंसिटिविटी देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, किस किस चीज़ से ये बैक्टीरिया मर रहा है। दूसरी चीज़ है कि वो और भी देख करके उसका सोनोग्राफी करके देखते हैं लोग कि किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में कहीं पर वाटर स्टेग्नेंट तो नहीं हो रहा है, रुक तो नहीं रहा है, उसके लिए सिस्टोस्कोपी तक किया जाता है, ये कुछ जांच है। लेकिन अभी आप तो इतना करें, अभी तक तो मुझसे बात करने के बाद में पानी पीना बढ़ा दें। दूसरी बात है कि एक आप साधारण एंटीबायोटिक कुछ दिनों तक, 10 दिन तक खाइए आप, नॉर्फलॉक

0: 400 मिलीग्राम सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग खाने के बाद. नॉरफ्लॉक्स पीले रंग की गोली होगी, ये नॉरफ्लॉक्स समझे, और खाने के बाद आपका पेशाब का रंग भी पीला हो जाएगा. तो घबराना नहीं है, ये दवा का रंग निकलेगा. कितने लोग भागते हैं कि क्यों पीला पेशाब हो गया, जॉन्डिस तो नहीं हो गया हमको, पीलिया रोग तो नहीं हो गया, ऐसी बात नहीं है. वो दवा का रंग निकलेगा, 10 दिन आप खा कर देखो, 2-4 दिन 5 दिन खाने से नहीं होगा. खा करके देखिए, पानी अधिक पीजिए, अगर नहीं उस पर कंट्रोल होता है तो फिर आप यूरोलॉजी से कंसल्ट कीजिए.
1: ठीक है,
0: यूरोलॉजी से कंसल्ट कीजिए तो वो टेस्ट करा कर देखेंगे. अभी जो कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की, अभी आप दवा खा करके देखिए, पानी खूब पीजिए.
1: ठीक है, नॉरफ्लॉक्स 400 आपको 10 दिन तक चलाना है.
0: किसी तरह से आपका पेशाब अधिक होना चाहिए.
1: अधिक,
0: अगर हाँ, अगर डिसूरिया होता है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो एक अल्कली आता है, अल्कासोल है, अल्कासाइट्रन है, तो इस तरह की एक अल्कली आती है, बड़ा बाजार में बहुत मिलता है, अल्कासोल करके भी मिल जाएगा, अल्कासाइट्रन करके मिल जाएगा. ये दवा ले करके और 1 कप पानी में 2 चम्मच दवा डाल करके 2-3 बार इसको पीजिए, तो पेशाब का जलन आपका जल्दी ठीक हो जाएगा. ऐसे तो पहले बहुत अच्छा चीज एक मिलता था, टिंचर हायसमस करके आता था, लिक्विड आता था, बहुत सस्ता होता था. वो पानी में डाल करके पीते समय डालिए, थोड़ा सा भी उसमें से 1/4 चम्मच भी उसमें से डाल दिया गया तो पेशाब का जलन खत्म हो जाता था. आजकल मिलेगा नहीं दुकान में, क्योंकि वो सस्ती दवा है, सस्ती दवाएं जनरली मिलती नहीं है. प्रॉफिट नहीं है ना उसमें.
1: हाँ हाँ, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए. और डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है, नॉरफ्लॉक्स 400 जो है 10 दिन आपको लेना है सुबह शाम करके, और सिट्राल का
0: इससे अगर बेनिफिट होता है ना, तो 10 दिन तक आप मॉर्निंग इवनिंग खा करके, या उसके बाद 20 दिन तक एक एक गोली रात में खाते रहो.
1: हाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत.
0: 1 महीना दवा चला दो, 1 गोली फिर रात में खाना है. इससे क्या होगा कि रात में जो पेशाब जमा होता है पेशाब के थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में, वो जब भी एक्युमुलेट होगा तो बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका नहीं देगा वो. इसलिए रात में अगर गोली खा लेंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया.
1: ये अच्छी बात आपने बताया. आशा करता हूँ लक्ष्मण जी आपको समझ में आ गया होगा. और फिर भी इन सभी चीज़ों को करने के बाद अगर नहीं कुछ होता है, तो मूत्र विशेषज्ञ को जो है उसको आपको बताना है, वो डॉक्टर को, मूत्र
0: विशेषज्ञ
1: करके होता है, तो वो उनसे आप जरूर एक बार संपर्क करें ताकि आपको पूरा डिटेल्स मालूम पड़ जाए. हेलो जी, नमस्कार.
2: हाँ जी सर, नमस्कार. और आपको नमस्कार, आपको भी नमस्कार.
1: नमस्कार जी, नमस्कार सुरेश जी,
2: बोलिए सर. गुड मॉर्निंग, नमस्कार. ओम शांति.
1: ओम शांति.
2: और मैं पूछना चाहता था डॉक्टर साहब से, मैंने मोतिया का ऑपरेशन करवाया है.
0: क्या चीज का, क्या ऑपरेशन?
1: मोतियाबिंद
0: का कराया है, कैटरेक्ट का कराया है.
2: तो आज मेरे 12 दिन हो गया.
0: हाँ हाँ.
2: तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता कि हम कितने दिन के बाद काम कर सकते हैं, जो हमारा सिलाई का काम है.
0: हाँ हाँ, इसमें देखिए दो मतलब आइडिया है इसका. जो हाँ. बहुत अच्छे सर्जन हैं आई के, तो हाँ. मैं आई सर्जन नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो फैक्ट है वो आपको मैं बता रहा हूँ. तो दो ग्रुप है, एक जो पुराने सर्जन जो हैं, जो कि बड़े नामी सर्जन सब हैं, अच्छा ही हैं. हाँ. वो तो 3 हफ्ते तक का, 3 वीक्स का ये करते हैं,
1: टाइम देते हैं. हाँ.
0: 3 हफ्ते तक का कि प्रिकॉशन लेना है आपको, कि आपको आँख में कोई चीज़ नहीं पड़ना चाहिए, हम चश्मा देखो मैं धूल ओल नहीं पड़ना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ आँख पर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ तक कि स्नान उस्नान करने में भी लोग ऊपर से पानी नहीं डालने देते हैं, लोग बहुत सारा प्रिकॉशन लेते हैं लोग. और एक ग्रुप अभी मैंने ये हुआ 3 हफ्ते वाली है इसमें रखने में, तो अगर आप रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सेफ्टी के लिए, उसमें कोई घाटा आपको नहीं है. यही है कि 3 हफ्ते तक अब सिलाई आप कर रहे हो, सिलाई करने में आप ध्यान देकर कर रहे हैं, कपड़ा ही सिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कपड़े का कोई कॉटन का कोई चीज उड़कर आँखों में अगर पड़ जाता है आपको, तो आपको कष्ट कर सकता है. अगर वैसा करना है तो चश्मा लगा करके, जो डॉक्टर लोग चश्मा भी देते हैं ना ऑपरेशन के बाद में, तो चश्मा पहन करके अगर करें तो कोई बात नहीं है. दूसरा है कि
2: मैं 1 हफ्ते के बाद दिखाने गया था, तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जो आपको नंबर निकालना है तो मैं आपको नंबर निकाल के आप काम कर सकते हैं.
0: हाँ.
2: और 1 हफ्ते के बाद जरूर 10 दिन के बाद काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 15-20 दिन के बाद ही काम.
0: ठीक है, आपने अच्छा सोचा और डॉक्टर साहब ने भी 10 दिन का समय दिया. अच्छा, अभी मैं दूसरा ग्रुप के लिए आ रहा था. दूसरा ग्रुप ये पहले वाले ग्रुप हैं, ये तो अगर पहले वाले जो डॉक्टर जो नामी डॉक्टर हैं लोग, जो कैटरेक्ट के नामी डॉक्टर हैं, वो तो सारे डॉक्टर जो पुराने डॉक्टर हैं वो तो 3 वीक के लिए चलते हैं. आप कहते रह जाओगे, उनके सारे असिस्टेंट जो कहेंगे कि नहीं साहब 3 हफ्ते के पहले आपको कोई काम नहीं करना है. कहीं कहीं पर तो जो बड़े बड़े आई हॉस्पिटल हैं, शंकर नेत्रालय वगैरह मद्रास वाला जो है, वो तो हफ्ते 10 दिन के लिए एक साइड में, एक करवट में सोने के लिए करता है। राइट आइड में अगर हुआ है तो राइट आई साइड में सोने नहीं देगा, करवट नहीं सोने देगा। इतना तक प्रिकॉशन लेते हैं लोग कि थोड़ा सा भी झटका नहीं आना चाहिए आँख में। लेकिन दूसरा ग्रुप जो आजकल नए नए डॉक्टर्स जो आए हैं, अच्छे सर्जन हैं, उनका भी काफ़ी नाम है, ऐसा नहीं है। वो तो 7 दिन के बाद ही कहते हैं कि भाई सारा काम करो आप।
2: मुझे ऐसा ही बोला जो वो सर्जन ही है, मैंने जो ऑपरेशन करा वो सर्जन ही है, तो बोला कि 1 हफ्ते बाद आप काम कर सकते हैं और आराम से। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं
0: अच्छा है, आपने ठीक ही सोचा, दोनों के बीच में सोचा कि ठीक है आप आराम दिन 15 दिन के बाद ही करें तो कोई घाटा तो नहीं है ना। लेकिन ये जो है 7 दिन वाले जो है ये भी गलत नहीं है। उनका कहना ये है कि आजकल का जो लेंस जो आता है, इंट्राऑक्युलर लेंस कहते हैं उसको, तो जो लेंस डाला जाता है उस पर जो सिस्टम जो है, अभी आजकल आँख का जो ऑपरेशन होता है कैटरेक्ट का ना, उसको फेको सिस्टम कहते हैं। तो फेको सिस्टम से वो लेंस को फोल्ड करके डाल दिया जाता है, बहुत छोटा सा होल करके।
2: हाँ
0: वैसा ही किया होगा
2: आपने,
0: हाँ वही वही फेको सिस्टम, आजकल फेको सिस्टम ही चलता है। हाँ तो उससे अभी क्या होता है कि आपका जो लेंस जो निकाला जाता है ना, जिस पर कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, जिसमें माणी टाइप का जो होता है कि व्हाइट हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, उस लेंस को निकालना पड़ता है। और लेंस निकाल करके उसके जगह पर लेंस एक डाला जाता है। तो लेंस को अगर पूरा डाला जाए तो वो तो पूरा पड़ने में चीरा बहुत लगेगा, ऑपरेशन का इंसीजन बड़ा पड़ेगा। लेकिन वो नया ऐसा फोल्ड करके निकल गया है कि लेंस को फोल्ड कर दिया जाता है, बहुत छोटा कर दिया जाता है, वो मिलीमीटर में आता है एकदम, मैंने इतना छोटा करके, और उसको एक ड्रॉप के साथ ऊपर से डाल देते हैं आँख में, और डाल जा करके वो फोल्ड फिर खुल जाता है वहाँ पर, समझे। खुलने के बाद में तब वो धीरे, तो अब वो फुल लेंस भीतर चला गया, अपने जगह पर वो चला गया। तो पहले वाले डॉक्टर जो थे, वो जो 3 हफ्ता का करते हैं, वो ये कहते हैं कि लेंस अपना जगह पकड़ लिया। जब तक लेंस वहाँ सेट नहीं हो, माने वहाँ के आई के टिश्यू के साथ वो पक्का नहीं हो जाए, पकड़ नहीं ले, तब तक रिस्क है। और अभी नए वाले जो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं, उन लोगों का कहना ये है कि साहब जो हमने डाल दिया वो इस तरह का लेंस बना हुआ है कि वो एकदम फिक्स हो गया, तो उसमें ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत काम करें तो कोई बात नहीं है। तो आपके डॉक्टर साहब ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, जो बताए हैं 10 दिन 7 दिन आप 15 दिन कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है आप करके। हाँ थोड़ा सा यही है कि अधिक, हाँ बिना चश्मा का धूप, बिना जो डार्क चश्मा देते हैं लोग, उसके धूप में नहीं निकलना है,
2: डस्ट
0: कोई इंजुरी नहीं होनी चाहिए, आँख पर झटका नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरह का झटका नहीं। कपड़े का काम आप कर रहे हो, सिलाई उलाई का ना, तो कपड़ा खींच करके और फैलाने में चाहिए सब में कभी आँख में झटका पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए, उससे बचना है आपको। यहाँ तक कि माथे ओथे में जो होता है ना, लोग तेल वेल लगाते हैं तो ऊपर से, कितने लोग आदत है कि ऊपर से माथे पर मारते हैं, जो चंपी करते हैं लोग, जो पहले जो फिल्म देखे होंगे जो इसमें जॉनी वॉकर करता था चंपी वाला, वो जो चंपी करते हैं लोग, तो चंपी वंपी बंद रहता है उस पर, माथे पर ठोकने वाली बात बंद होती रहती
2: है। नहीं, ब्लैक से कुछ करता है।
0: हाँ, तो वही बचना है और कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।
1: ओके जी, नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। चलिए, कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 15 दिन का जो है टाइम रहता है, या फिर कई बार अलग अलग डॉक्टर के अपनी अलग ग्रुप, दो ग्रुप में बताया डॉक्टर साहब ने, तो उस हिसाब से आप प्रिकॉशन जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा है। और नॉर्मली अगर अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं तो वो जैसा बताए वैसे करना बहुत ज़रूरी।
0: ऐसा भी है ना कि बहुत तीन हफ्ता बहुत लंबा पीरियड
1: हो जाता है।
0: कोई आदमी अपना, जैसे मान लीजिए कि यही टेलरिंग वाला काम करते हैं,
1: हाँ,
0: अपने जॉब से कितना दिन बाहर,
1: कितना दिन बाहर रहेगा,
0: रोजी रोटी का सवाल है, कोई भी है, मान लीजिए डॉक्टर ही हम लोग हैं तो कितना दिन अपना काम छोड़ करके ये करेंगे, ये जो भी कहीं पर भी जो कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये है, दोनों मतलब डिफिकल्ट है, नया वाला भी सिस्टम बुरा नहीं है।
1: तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि जैसे शुरुआत में हमने डेंगू और मलेरिया के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसमें और क्या बता सकते हैं?
0: हाँ, तो दूसरा चीज़ है कि अगर फीवर आता है, हाई फीवर आता है और जाड़ा दे करके आता है, ठंडा करके आता है, कि मैंने कपकपी हो गई, जाड़ा दे करके आता है। अगर आ करके या तब बुखार चढ़ता है खूब जोर से, बुखार काफ़ी अधिक हुआ, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा बुखार रहने के बाद में पसीना होकर के अगर उतर गया तो चांसेज अधिक है मलेरिया का। ठंडा लग करके आया, एकदम कपकपी हुई आपको, कंबल चादर ओढ़ना पड़ गया, और ओढ़ने के बाद में फिर फीवर हाई गया, हाई जाने के बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे फीवर उतरना शुरू हुआ, पसीना हुआ उतर गया, तो इस तरह का फीवर अधिकतर मलेरियल होते हैं। ऐसे जाड़ा देकर के और भी बुखार में आता है
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन इसमें दूसरा है कि फीवर वाला में एक ग्रुप जो है वो अल्टरनेट फीवर आता है।
1: अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। ये बहुत लोगों को देखा,
0: जनरली अल्टरनेट आता है, तो ये भी एक लक्षण है मलेरिया का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: कि अल्टरनेट डे करके आता है, तो उसमें कुछ गेस कर सकते हैं। लेकिन डेंगू में कभी अल्टरनेट नहीं होगा, जब होगा तो
1: बहुत तगड़ा होगा।
0: अच्छा, ऐसा भी है कि डेंगू का कोई जरूरी नहीं है कि कोई आप दवा करें, चार बॉडी रेसिस्टेंस अगर ठीक है तो चार पांच दिन के बाद अपने भी ठीक हो जाएगा। अगर आपका प्लेटलेट्स अधिक डाउन नहीं हुआ है तो क्योंकि उसकी कोई दवा नहीं है, उसमें यही है कि न्यूट्रिशन पूरा दिया जाता है। हॉस्पिटल में भी जो एडमिट होते हैं तो ट्रांसफ्यूजन ही किया जाता है, वो ग्लूकोज का हुआ, सलाइन का हुआ, ये सब का दिया जाता है। अगर कम हो गया प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स का भी आता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, किया जाता है। फुल न्यूट्रिशन दिया जाता है, पानी का कमी बॉडी में नहीं होना चाहिए डेंगू में। डेंगू का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, उसके किट से एंटीजन से डायग्नोसिस किया जाता है, वो जरूरी है। मलेरियल पैरासाइट का पहले तो पेरिफेरल मलेरिया का जांच होता था कि ब्लड में पेरिफेरी में जनरली रात में पेरिफेरल मलेरिया पकड़ाता है, रात में अगर ब्लड स्लाइड लिया जाए तो अधिक पकड़ाता है। देखिए,
1: हाँ जी,
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार कंचन भाई, बताइए।
2: बस सर, अभी सुन रहा था, थोड़ा चल गया था नेटवर्क। तो आगे जो मुंह में मेरी तकलीफ थी, छाले पड़ गए थे, तो बताया डॉक्टर साहब ने, जो उपचार किया वो ठीक हो गया।
0: अच्छा, ठीक हो गया, धन्यवाद।
2: जो मलेरिया ठीक हो गया,
0: बाबा को धन्यवाद दीजिए, श्री बाबा को धन्यवाद दीजिए।
2: थैंक यू सर, धन्यवाद। और जो मलेरिया की बात बता रहे हैं, तो आज सीजन है अभी,
0: हाँ बहुत सीजन है,
2: हाफ बॉय के कपड़े पहनने चाहिए, आखिरी बॉय के, और खूब सतर्क रहने की जरूरत है सर। मैंने काम किया है मलेरिया में, MLV
0: मलेरिया प्रिवेंशन वाले ग्रुप में कर रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है।
2: 50 रुपए मानद एकदम मिलता था महीने का,
0: पहले 50 रुपए भी मिलता था, तो आजकल वो 5,000 से ऊपर हो गया ना। उसमें वही है कि आजकल यही है कि कपड़ा जो है ना, मतलब फुल बाजू का हो, मैंने मैक्सिमम एक्सपोज पार्ट्स नहीं रहे,
1: फुल शर्ट पहन लेने से भी,
0: फुल शर्ट पहने तो जनरली,
2: और पहले से मादा मच्छर आपको तो पता है, लेकिन स्वच्छ पानी का रहना था, स्वच्छ पानी में जो आसपास जो टायर वगैरह है, और तो एक
0: उसमें भी होता है, उसमें खास करके डेंगू वाला जो है ना, क्लीन वाटर में डेंगू वाला जो एडिस मच्छर जो है ना, वो ब्रीड करते हैं अधिक, दोनों में यही डिफरेंस होता है, वो कभी भी
2: पानी भरा रहता है वहाँ, ऑयल
0: थोड़ा सा डाल दें तो बेटर ये होता है। ऐसा है कि कहीं रखे, कितने लोगों को शौक से हैचरी करके बना करके रखे हुए हैं लोग, मैंने मछली पाल करके रखे हुए हैं लोग, शीशा में अपने जो करके घर में रखते हैं ना,
2: तो गर्मियों के ऋतु में जो धर्म कुंड रखे हैं ना हमने,
0: बाहर भी कितने लोग अपने कुंड बना करके मछली पाल करके रहते हैं, तो वो भी उसमें यही है कि मछली है ना, तो वो नहीं ग्रो करने देती है, वो सारे उसके अंडे लार्वा को खा जाती है इसके, मॉस्किटो के।
2: मछली आती है सर, हमने छोड़ी है कई बार,
0: वो दूसरी मछली होती है, सारी मछलियाँ नहीं है, उसे स्पेशल मछली है वो,
2: नहीं सारी मछलियाँ नहीं,
0: वो मछली लोगों का भी ग्रोथ बहुत जल्दी होता है उसका, बहुत बड़ी हो जाती है बहुत जल्दी। सही आपने बताया,
2: मछली आती है, हमें बताया
1: ठीक,
2: सभी दोस्तों को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: हाँ। चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। तो कंचन भाई जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे और पिछले कुछ समय पहले उन्होंने किसी विषय को लेकर बात की थी वो मुंह में छाले आ जाते
0: तो के बारे में हाँ,
1: तो वो ठीक हो गया उनको। तो उसके साथ में आज के इस एपिसोड में जैसे कि शुरुआत में हमने मलेरिया इससे जुड़ी हुई बुखार ये सब चीज़ें कैसे होता है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताया है। और उसके बाद हमारे एक कॉलर लक्ष्मण जी ने पेट में पानी भरने की समस्या बताया उनके लिए डॉक्टर साहब ने नॉरफ्लक्स 400 10 दिन चलाने के लिए बोला है।
0: में उनका यूटीआई का प्रॉब्लम
1: तो वो 10 दिन ले ले फिर उसके बाद एक एक गोली करके 20 दिन और ले ले तो पूरा महीना भर अगर आप खाते हैं तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद हरीश जी ने फोन किया था खांसी के लिए तो उसके लिए सब चीजें डॉक्टर साहब ने बताया है एंटीबायोटिक और फिर सिरप आप ले सकते हैं जिससे आपको राहत मिलेगा। और उसके बाद हमारे सुरेश जी जोटाना वाले आ गए जो कैटरेक्ट ऑपरेशन किया है और को जो है रेस्ट करने के लिए कहा था तो वो चीज़ें चल रही हैं उनकी। और उसके बाद अभी हमारे कंचन भाई आ गए हैं तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक्स।
1: और मैं चाहूँगा कि आपका नंबर ज़रूर बता दें ताकि कोई मिस हो गया जैसे एक फ़ोन नहीं लग रहा था कंचन भाई बता रहे थे तो आप अपना नंबर ज़रूर बताएँ
0: 9494141400074793।
1: तो ये डॉक्टर साहब का नंबर है आप सुबह 9 से 12 के बीच में या शाम को 4 से 6 के बीच में ही फोन कीजिए बीच में डिस्टर्ब ना करें। ओके आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ हम चाहेंगे इजाजत सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
5: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग नमस्कार राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है झाड़ू पोछा लगाना लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
6: हाँ नमस्कार।
5: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
6: बस मजे में।
5: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
6: हाँ दीदी।
5: अच्छा प्रवीणा जी चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
6: मेरा बचपन गुजरात में।
5: गुजरात में कहाँ पर?
6: पालनपुर।
5: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
6: गुजराती छो।
5: सु बात छे। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
6: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
5: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
6: मेरे 3 भाई थे और 5 बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे शराब वराब फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए तो ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
5: जी जी ससुराल की बात जरूर करेंगे थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं कि आप बता रहे थे आप 8 भाई बहनों।
6: 8 भाई।
5: आपका नंबर कौन सा बनता है?
6: मैं तो लास्ट में हूँ।
5: अरे वाह क्या बात है आप सबसे छोटे तब तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
6: नहीं नहीं मेरे से छोटी और बहन थी इससे बड़ी हूँ। 3 बहनें बड़ी थी हमारे से।
5: अच्छा तो आपका नंबर 7वें नंबर पर 8 भाई बहनों में आपका 7वां नंबर।
6: 7वां नंबर। हाँ 3 भाई ऑफ हो गए मेरे
5: बचपन में ही।
6: नहीं बड़े होके शादी शुदा होके बच्चे बच्चे हैं इनके 18 आ गए थे।
5: सॉरी बात करेंगे आपसे इस बारे में भी लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
6: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
5: आप 8 भाई बहन में आपका 7वां नंबर बनता है तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता है ना खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
6: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
5: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
6: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। मम्मी भी बेचारी, ये भी हमारे हम छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, हमारी मस्ती में मस्त थे। ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को के भी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी, बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
7: अच्छा, तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
6: हाँ, ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी,
7: ठीक है, 8 भाई बहन है इसलिए।
6: हाँ, इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
7: अच्छा, मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
6: पिताजी सर्विस करते थे, पण बाकी वो शराब पीते थे।
7: सर्विस किस में करते थे?
6: ये चपरासी की।
7: स्कूल में?
6: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
7: अच्छा, तो आप 8 भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए, कि भाई नहीं पीना चाहिए?
6: छोटे छोटे थे, क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
7: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
6: नहीं, ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बेचारी कहाँ ध्यान देवे, वो मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के हमारा पेट भरने का लावे के हमारे में ध्यान देवे।
7: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
6: सारे पैसा उड़ा देते थे, तो फिर माँ को तो करना है कुछ न कुछ काम।
7: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
6: नहीं, कौन करने वाला है मदद आजकल,
7: नहीं जैसे आपके भाई बहन, जैसे बड़े भाई बहन।
6: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था, झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
7: पिताजी तो व्यसनी थे, लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने, आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
6: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो, पर इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने, हम 5 बहने थी, 3 भाई थे, तो फिर शादीशुदा हो गया, तो फिर इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी, तो मम्मी इन सबका टेका लेके, सहारा लेके हमारे को शादी करवाई, घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
7: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे, आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
6: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, पर पढ़ाई नहीं करी, हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए, कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने कभी किसी से नहीं।
7: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे, तो घर का काम कौन संभालते थे?
6: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदियां संभालती थी सारा काम। फिर ये शादीशुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा, हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई, तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम, तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने, फिर पैसे थोड़े घने मिले, तब मम्मी के पास में ही है।
7: अच्छा, अभी भी आपके मम्मी के पास ही रहते
6: हैं? हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, 3 लड़कियां एक लड़का।
7: जल के मर गए,
6: तो फिर
7: कुछ हादसा हुआ क्या?
6: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी, तो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गए। फिर 3 बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, 3 लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई, सारा हमारा पियर में वही संभालती, भाभियां नहीं संभालती, हमारी छोटी वाली संभालती है।
7: अच्छा, बहुत, देखो कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
6: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में ही थी, मेरे बच्चे थे, 2 लड़कियां थी मेरे पास में।
7: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
6: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले भगवान। भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, और ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आ गए सारे बच्चे। तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे मान ही निभावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
7: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
6: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को ही, बुआ को ही मम्मी बोलते। माँ को और सबको घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता है।
7: वो कहते ना त्याग उन्होंने भी किया ना,
6: इसने जीवन त्याग कर दिया। इसने शादी किया था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे। तो बच्चे बहुत इज्जत करते इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते कि नहीं हमारा मम्मी पापा यही है।
7: जी जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जाकर के मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन सुन लेते हैं गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: बहू
1: बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
2: जी आई माँ जी।
1: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
2: जी माँ जी आ गई, चलिए।
1: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
3: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
1: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
3: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
1: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
3: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
2: जी वो
1: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
3: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
4: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
5: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं, और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे। तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
6: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
5: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहा है, बड़े होवे ही नहीं।
6: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
5: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके। तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
6: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके बच्चों को संभालने के लिए, थोड़ा घना मम्मी ने करा। फिर भाई ने नो सर्विस करी, कुछ भाई ने थोड़े घने पैसे दिए, ऐसे करके हमारा गुजारा। फिर सब बहनों की शादियां कर दी मम्मी ने।
5: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
6: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर करके, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी काम काज करने के लिए।
5: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
6: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को, काम ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था, तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
5: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
6: 15-16 साल की थी।
5: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी? तो शादी करके आप सीधे आबू आए?
6: सीधे आबू आए।
5: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
6: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
5: मतलब कैसे, जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
6: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
5: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
6: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
5: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
6: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, पर मैंने भी डट के सामना करा।
5: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
6: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जीती मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
5: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, या परिवार वालों का दबाव था?
6: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलूं। ऐसे ही झोपड़ा था, घर मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इनों को मैंने बनवाया, बहुत ऐसे मैंने संकट से झीला है।
5: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
6: नहीं देखा था, इन्होंने देखा था क्योंकि मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी क्या मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे में हेल्प करते थे, मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे करते थे।
5: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननंद देर सास ससुर सभी?
6: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला नहीं सारा करा।
5: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
6: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए, फिर ऐसे ही छोटी मजूरी करी, धंधा कर, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है, इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे, जैसे तैसे करके सोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया बनाया मैंने।
5: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
6: मैंने 5-6 साल बाद।
5: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया, तो 5-6 साल आपने क्या किया घर के कामकाज?
6: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
5: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू में होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोज ही। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
6: हाँ, होता था, बहुत होता था, कोई सगे वाले आते थे करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी, फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया, करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करते थे तो 4-5 हजार रुपए आते थे।
5: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपए लिए मंथली?
6: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करे मैंने।
5: ये कितने साल पहले की बात होगी?
6: ये होगी दीदी, ज्यादा टाइम के,
5: पर 250 रुपये में सारा ही काम?
6: फिर 550 रुपये ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
5: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
6: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती, 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं, वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश ब्रश करवा के चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती, तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती, तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते बंद करके, मैं काम करके आती।
5: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद दियर, फिर इनको कौन संभाल?
6: तो शादी होगी थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे, इसके आदमी तकलीफें देते थे तो भाई के ही घर पे आवे ना, कहने का जा रहे, माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको, जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनको, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको, कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं संभालती हूँ दोनों बहनों को।
5: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक गीत, तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: जय।
1: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं इस संस्था को।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
3: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारों में सेट हो गई हूँ।
2: जी जी, अब तो इतने साल हो गए जो
3: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था। मैं गुजराती में बातें करती थी, ये हिंदी क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते हैं हिंदी ये लोग। अब सब समझ गई हूँ।
2: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी, क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
3: नहीं, मेरे पियर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी शराब बरब पीते थे करते थे, तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे, आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे 5 लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जाता दे दी थी बेटियों को, देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह 5 बहनों के।
2: जी जी हाँ, सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
3: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं, पर तकलीफें तो घनी हैं।
2: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे? आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
3: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को। ऐसे ही घूंघट में रहना, करना मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
2: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
3: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
2: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
3: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको। दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली यो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
2: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
3: पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
2: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
3: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा, कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
2: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
3: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना है ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते।
2: तो
3: तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
2: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है। काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
3: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
2: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
3: 2-3 बज जाते थे सोते करते। सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के फिर 9 बजे में थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती।
2: सुबह 9 बजे?
3: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
2: बहुत काम करते थे। तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया, वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है। तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
3: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी, पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
2: खुददारी से जीवन जिया,
3: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
2: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है। काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
3: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
2: जी जी, तो आपके जैसे बेटियाँ भी है, तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटियाँ पढ़ रही है?
3: नहीं, मेरी 2 बेटियाँ ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
2: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की, पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
3: हाँ, 7वीं क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूलें छोड़ दी। फिर
2: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
3: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे, तो फिर इन्होंने बिचारी ने काम करा दोनों बहनों ने।
2: देखिए, पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों के तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
3: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चियों ने फिर मम्मी के तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
2: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?
3: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाने आते, फिर दिखने जैसी हुई, फिर सगाई करी, शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। और छोटी वाली थी, इसने 8वीं पास करी, इसने छोटी वाली ने, वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इन्हों को भी ऐसा लगा के भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी, फिर तो फिर घर पे बैठ के

0: मिल जाए तो वापस लग जाऊं।
1: जी जी बिल्कुल। तो प्रवीणा जी, और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम में सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम. प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं. प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है. बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
2: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संघट करा है. बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे, तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो. और काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है काम.
1: तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
2: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते है. तो ऐसे कुछ मांगते है तो दे देते है, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती. अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास ये इनका छो करते है, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा पर इज्जत की रोटी खाई है मैंने. मैंने शान से जी, उन शान से ही वही रहना है मेरे को. इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा, अब मत काम करो.
1: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है. तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
2: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई. मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ. सबके सामने हंस के सामने आई हूँ. तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियाँ खुश ही थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती. ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है वहाँ पे भी. पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी.
1: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है. तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है और यही होना चाहिए सही मायने में. तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटे वाले को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
2: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है और एक बेटा अभी छोटा वाला है, नौवीं में आया है. तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे, कैसे करे, अभी सोच रहे. इसकी फीस बीस जमा करनी है और सोच रहे वहाँ तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको तृप्त कर देंगे.
1: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना. आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
2: बहुत अफसोस होता है, बहुत, कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया. मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई क्या चीज है. खेल कूद करने में खूब ध्यान दिया हमने.
1: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए. बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो.
2: हाँ दीदी, तो दे रही है अभी, कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के. तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है.
1: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
2: हाँ, अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ मैं, मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ. मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ.
1: बच्चे आपका कहना मानते?
2: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं. मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ. इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे दे, दे एक रोटी दे दे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है.
1: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
2: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने. अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा.
1: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
1: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है। जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है, लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, रविवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और यही परमपिता परमात्मा से आप सभी श्रोताओं के लिए प्रभा पंडिताइन निवेदन करती है कि हमारे सभी भाई बहनों को सकुशल रखें, स्वस्थ रखें। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम पंडिताइन में। और शुरू करते हैं बहुत सुंदर एक कहानी से, माँ के हाथों का स्वाद। कहे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें माँ के बारे में, पिता के बारे में, बहन के बारे में, बिटिया के बारे में बोलें तो बहुत अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। सभी के बारे में बोलते हैं लेकिन माँ के जैसा स्थान तो कौनो नहीं ले सकता है ना, इसलिए ऐसी भी कहानी चुन के लाते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे। बरसात का मौसम रहा, आसमान में काले बादल छाए हुए रहे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर का एक बड़ा अधिकारी, जिन्हें सभी साहब कहकर बुलाते थे, अपना ऑफिस में बैठे रहे। काम का दबाव, मीटिंग्स और फाइलों के बीच उनका मन बहुत बेचैन हो गया था। उस सोचा कि आज कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर निकलकर मन को हल्का किया जाए। उन्हें शहर के बाहर सड़क किनारे स्थित एक छोटा सा ढाबा याद आया जहाँ वो कभी कभी खाना खाने जाया करते थे। वहाँ का खाना उनको बहुत पसंद रहा। न जाने उस साधारण से ढाबे में ऐसा का रहा कि वहाँ जाते उनके मन को सुकून मिल जाता रहा। साहब अपनी कार लेकर ढाबे पर पहुंच गए। जैसे ही वो अंदर आए, ढाबे का नौजवान कर्मचारी रामू दौड़ता हुआ आया। उसने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास मेज पर रखा और बोला, नमस्ते साहब, आज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। साहब मुस्कुराए, बोले, हाँ रामू, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ रहा। कौनो बात नहीं साहब, आप बैठिए, मैं भी आपके लिए कुछ खास लेकर आता हूँ। साहब ने कौनो ऑर्डर नहीं दिया। उन्हें पता था कि रामू उनकी पसंद अच्छी तरह जानता है और कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म आलू के पकौड़े और हरी चटनी मेज पर आ गए। बाहर बारिश और सामने गर्म पकौड़े देखकर साहब का चेहरा खिल उठा। वाह रामू, तू तो सच में जादूगर है, इस मौसम में इससे अच्छा और क्या हो सकता है, साहब ने खुश होकर कहा। रामू हंसते हुए बोला, साहब अभी तो अदरक वाली चाय भी आ रही है। खाना खाते खाते साहब का सारा तनाव दूर हुई गवा। हर निवाला उन्हें घर जैसा स्वाद दे रहा था। कई वर्षों से वो ई ढाबे पर आते थे लेकिन एक बात हमेशा उनके मन में रहती थी, आखिर वो रसोईया कौन है जौन इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता है। उन्होंने कई बार रामू से पूछा था लेकिन हर बार वो बात टाल देता रहा। आज साहब ने दृढ़ निश्चय कर लिया, रामू आज मैं उस बावर्ची से मिले बिना नहीं जाऊंगा, मुझे उसका धन्यवाद करना है। रामू थोड़ा घबरा गया और बोला, साहब रहने दीजिए ना। लेकिन इस बार साहब नहीं माने, उठे और सीधे रसोई की ओर बढ़ गए। रसोई में पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। एक वृद्ध महिला चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद हो चुके थे लेकिन आंखों में ममता की चमक वैसी ही थी। साहब की आंखें फैल गई, उनके होंठ कांपे और अचानक उनके मुंह से निकला, माँ। वृद्ध महिला ने पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंखें भर आई। साहब की आंखों से आंसू बहने लगे, माँ आप यहाँ? मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, वहाँ रहने को जगह थी, खाने को भोजन था, लेकिन दिल को सुकून नहीं रहा। साहब चुपचाप सुनते रहे। माँ ने आगे कहा, एक दिन रामू वहाँ आया था। उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा कि मैं उसके ढाबे में आकर खाना बनाऊं, तब से मैं यही हूँ। साहब की आंखें झुक गई। माँ ने प्रेम से कहा, बेटा जब भी तू यहाँ आकर खाना खाता था, मैं रसोई से तुझे देख लेती थी। तेरी पसंद आज भी मुझे याद है, कौन सी सब्जी पसंद है, कितनी मिर्च खाता है, बारिश में पकौड़े अच्छे लगते हैं। एक माँ अपने बच्चे की पसंद कभी नहीं भूलती। अब साहब फूट फूट कर रोए लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस ढाबे का स्वाद मसालों में नहीं, बल्कि माँ के प्रेम में रहा। यही कारण था कि रामू को उनकी हर पसंद पता होती थी और उनसे कम पैसे लिए जाते थे। उस दिन साहब अपनी माँ को सम्मानपूर्वक अपने घर वापस ले गए। वर्षों बाद उनके घर में फिर से रौनक लौट आई। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा धन माँ बाप का प्यार होता है। माता पिता जीवन का वो अनमोल खजाना है जिनकी कीमत अक्सर उनके दूर होने पर समा जाती है। दुनिया का कोई भी सुख, धन या पद माँ बाप के प्रेम और आशीर्वाद की बराबरी नहीं कर सकता। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और उन्हें अपने जीवन में स्थान देता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा और सबसे धनवान इंसान है। माँ के हाथों के खाने में स्वाद नहीं, ममता घुली होती है और ममता का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं उसे प्यारी माँ कहते हैं। माँ से प्यारी दुनिया, माँ से प्यारा कोई हमें उतना प्यार, उतना दुलार, उतना सहन नहीं कर सकता जितनी एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। आशा करते हैं अगर आपने अपने माता पिता को कहीं दूर किया है, आज ही अपने माता पिता को ले आइए। उनकी दुआएं आपको बहुत फलने फूलने में मदद करेगी। जिसे सत्य पता है उसके लिए तो शरीर मिट्टी है। कहावत है, जिसे सत्य पता है उसके लिए तो शरीर मिट्टी है। अब ये शरीर मिट्टी में मिला दिया जाए या मिट्टी में खुद मिल जाए, का फर्क पड़ता है। किसी के पास समय नहीं होता, ये आधा सच है। किसी के पास समय नहीं होता, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि लोग समय वहीं देते हैं जहां उनका मन जुड़ा होता है।

या तो उनका कौनो फायदा होता है। जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो बिगाड़ लो। अगर कुछ करने की चाहत हो तो अभी भी वक्त है, जान लगा दो, जान लगा दो, लक्ष्य आपके कदमों पे आके गिरेगा। कठोर शब्द हजार घाव दे सकते हैं, कठोर शब्द हजार घाव दे सकते हैं, नरम शब्द घाव भर भी सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो, जहाँ प्रेम है वहीं शांति है। जुबान का वार तलवार से भी गहरा होता है, जुबान का वार तलवार से भी गहरा होता है, क्योंकि तलवार शरीर पर निशान छोड़ती है और शब्द दिल पर। इसलिए बोल हमेशा ऐसे जो टूटे मन को सुकून दे, दर्द नहीं। आशा करते हैं आप इन बातों पे जरूर गौर करेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में इन बातों को अप्लाई करेंगे। नदी और समय की सबसे सुंदर विशेषता ये है कि वो कभी रुकते नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। समय भी पीछे मुड़ के नहीं देखता घड़ी, और ना नदी, आगे आगे आगे ही बढ़ना है। नदी निरंतर बहती रहती है और समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। जो लोग बीते हुए पलों और पुरानी बातों में ही अटके रहते हैं, वो अक्सर वर्तमान की खुशियों और नए अवसरों का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए जीवन में हर नए दिन का मुस्कुरा कर स्वागत करें, वर्तमान को अपनाएं और आगे बढ़ने की कला सीखें। जैसे नदी का जल रुकने से सड़ने लगता है, उसी तरह समय भी ठहरने से जीवन निरर्थक हो जाता है। प्रवाहित रहें, प्रगतिशील रहें और अपने हर पल को सार्थक बनाएं। अत्यधिक विचारों से किसी भी विषय का समाधान नहीं मिल सकता। बहुत सोचे जाते हैं, सोचे जाते हैं, सोचे जाते हैं, और वो सोच में और कई ऐसी सोच आ जाती है जो अभी सोचने की जरूरी नहीं है, और आपका बोझ और टेंशन बढ़ा देती है। इसलिए कहा, अत्यधिक विचारों से कोनो भी विषय का समाधान नहीं मिल सकता, बल्कि वो वर्तमान के बेहतरीन लाभ पाने में बाधा बनते हैं। सीमित सोचे समृद्ध जीवन जिए। जितने आपके विचार कम होंगे उतने पावरफुल होंगे। कहे कि जो चीज़ में ज़्यादा पावर होती है, जैसे बहुत बोलेंगे तो बोल में उतना प्रभाव नहीं पड़ता, कम बोलिए बहुत लोग ध्यान से आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही विचार दिमाग चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा, अरे थक जाएगा ना भाई। आप काम कर ही रहे 16 घंटे 20 घंटे, उसके बाद क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, शरीर थक गया ना, तो मन भी तो थकता है। बहुत नहीं सोचिएगा, और बहुत थका होगा मन तो अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छे बोल नहीं होंगे, अच्छे कर्म नहीं होंगे। सारा कुछ तो हमारे दिमाग में खुपरिया में भरा है, दिमाग में ज्ञान, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। आशा करते हैं कि आप इन बातों को प्रैक्टिकल में लाएंगे। चलिए भाई, यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा ये गीत।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सतयुग की सीख, संतोष का अमृत। सतयुग में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मप्रिय और न्यायकारी था, फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। ये कहानी हम सुना रहे हैं जहाँ हम पढ़े थे, जबकि हमें तो परमात्मा जी कहते हैं कि सतयुग में कोनो चीज़ अप्राप्त नहीं होती, सब चीज़ से भरपूर रहते हैं। तो महलों की शोभा, सोने चांदी के खजाने, सेवक और वैभव होने के बावजूद उस राजा के भीतर में शांति नहीं मिलती रही। एक दिन राजा ने अपने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है, मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताइए। राजगुरु मुस्कराए और बोले, राजन, कल प्रातः मेरे साथ वन में चलना। अगले दिन दोनों घने वन में पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। उनके पास न कोई महल था, न धन, न सेवक, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और संतोष झलक रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऋषिवर, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? ऋषि ने पास रखे मिट्टी के पात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, इस पात्र में नदी का जल है, जब मुझे प्यास लगती है मैं इसे पी लेता हूँ, वृक्ष मुझे फल देते हैं, धरती आसान देती है और प्रभु हर श्वास देते हैं, फिर मैं दुखी क्यों रहूं? राजा बोला, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं तो कभी समाप्त नहीं होती। ऋषि ने कहा, यही तो अशांति का कारण है। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानने वाला सुखी रहता है और जो अप्राप्त के पीछे भागता रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। फिर ऋषि राजा को नदी किनारे ले गए। उन्होंने नदी में बहते हुए एक सूखे पत्ते की ओर संकेत किया और बोले, देखो राजन, ये पत्ता धारा के साथ बह रहा है, इसलिए शांत है, यदि ये धारा से लड़ने लगे तो टूट जाएगा। इसी प्रकार जौन मनुष्य ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। ऋषि आगे बोले, सतयुग के लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता थी। वो हर सुबह उठकर ईश्वर को ध्यान देते थे कि आज भी जीवन का एक नया अवसर मिला है। राजा की आंखें खुल चुकी थी। उनने कहा, ऋषिवर, आज समझ आया कि मैं सुख को बाहर खोज रहा था जबकि वो मेरे भीतर ही था। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, हर श्वास ईश्वर का उपहार है, जब तक श्वास चल रही है धन्यवाद करते रहो, जिस दिन श्वास रुक जाएगी तब न राज्य साथ जाएगा, न धन, न मान सम्मान, इसलिए वर्तमान में जियो, सेवा करो, अच्छे कर्म करो और प्रभु का स्मरण करते रहो। उस दिन के बाद राजा ने शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाई, उसका मन शांत हो गया और वो पहले से भी अधिक प्रिय राजा बन गया। सतयुग का रहस्य धन या वैभव नहीं था बल्कि संतोष, कृतज्ञता और ईश्वर पर विश्वास था। जो व्यक्ति हर श्वास को प्रभु का प्रसाद मानकर धन्यवाद करता है, उसके जीवन में सच्चा सुख और सुकून स्वयं आ जाता है। तो क्या कहिए, क्या करिएगा, अपने जीवन में कहीं ना कहीं संतुष्टता को प्रधानता दीजिए। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके लिए सब कुछ प्राप्त है। काहे कि संतुष्टता है तो फिर मन तो नहीं ना भटक के करेगा इधर उधर, ई चाहिए, ऊ चाहिए, ऊ चाहिए। आज यही है कि मनुष्य ही नहीं समझ पा रहा कि बाहर की चीज़ों में सुख नहीं है, सुख तो हमारे अंदर है, मन की एक स्थिति है। और जिसको सत्य ज्ञान हो गया कि कुछ भी यहाँ पे विनाशी सब चीज़ें हैं, अविनाशी आत्मा और परमात्मा हैं, कभी भी भटकेगा नहीं, संतुष्ट रहेगा। मैं आत्मा अविनाशी, मेरे परमात्मा अविनाशी, बाकी सब चीज छूट जाएगी यहीं के यहीं। तो ध्यान रहेगा परमात्मा में तो संतुष्टता तो अपने आप आ ही जाएगी ना भाई। घमंड जेब में रखिए। घमंड तभी तक रहता है जब तक रिपोर्ट नॉर्मल आती है। जिस दिन डॉक्टर कह दे कि अब सब भगवान के हाथ में है, उसी दिन सारी अकड़ पिघल जाती है। ना बैंक बैलेंस बोलता है, ना गाड़ी, ना बंगला। आईसीयू के बाहर सब बराबर खड़े होते हैं। वहाँ नोट नहीं चलते, वहाँ सांसें गिनी जाती है। जिंदगी ने एक झटका दिया नहीं कि समझ आ जाता है तू मालिक नहीं मेहमान था। इसलिए घमंड जेब में रखें। पेट में गया हुआ जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों में गया हुआ जहर हजारों रिश्ते खत्म कर देता है। इसलिए दूसरों के कहने पर विश्वास करने के बजाय खुद के देखने पर विश्वास करें। कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं स्पीड कदमों की। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी है, परेशानी तो आएगी। ये तो दुनिया है, महासागर है, लहरें तो आएंगी, लेकिन जिसको जीना आ गया कि सब तो आएगी फिर भी हमको जीना है, ये तो मधुर बांसुरी की तरह सुर निकलेंगे और जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। नदी और समय की सबसे सुंदर विशेषता ये है कि वो कभी रुकते नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। अभी हम आपको सुनाए हैं। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के मार्ग में तीन चरणों को पार करना ही होगा, अर्थात उपहास, विरोध और स्वीकृति। अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों का ध्यान मत दीजिए। कोई भी आपका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, उसका समय उड़ा लेने दो, आप अपने रास्ते पे चलो। विरोध कर रहा है, करने दो, हम जानते हैं, मेरा ऊपर वाला जानता है। और स्वीकृति, ठीक है, कह दिया तो कह दिया, इसमें हमारा का चला गया, जो सत्य है वो तो प्रकट हो ही जाएगा। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे, चाहे रिश्ता हो या धन दौलत। पिछले कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए, आपका आने वाला जीवन अपने आप सुखी होगा। उम्र में कोई छोटा हो या बड़ा, लेकिन वास्तव में बड़ा वही है जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम, दया और सम्मान की भावना हो। संसार में केवल दो ही सच्चे ज्योतिषी है, पहला मन की बात समझने वाली माँ और दूसरा भविष्य को पहुँचाने वाला, पहचानने वाला पिता। जिसे तुम प्रतिदिन स्मरण करते हो, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। भय को थामोगे तो भीतर सिमट जाओगे, ईश्वर को याद रखोगे तो चेतना ऊंची उठेगी। जब आप अपने डर को पहचान कर उसका नाम लेते हैं तो उसे संभालना आसान हो जाता है। कई बार तो कोई बात होती ही नहीं, सिर्फ जैसे कि अंधेरे में रस्सी देख ली और सांप का आभास हो जाता है, उस तरह बात कुछ नहीं होती, लेकिन हमारे मन में भय बैठ जाता है। और ये भय तब हम दूर होता है जब हम जीवन को जीना सीख लेते हैं, यानी जीवन में हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकृति कर लेना आ जाता है, हर चीज़ आसान हो जाती है। चलिए भाई, बात पे एक गीत और बनता, बहन जी को निकवा सा गीत सुना दीजिए, सुनिएगा ये गीत।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बात हमारी हो रही थी, अभी क्या होता है ना, कभी कभी बात कर रहे थे, फोन गिर गया तो कट गया। अभी कोई बात नहीं, भाई जी का फिर फोन आएगा तो बात कर लेंगे, है कि नहीं।

0: ओम शांति। आपको हमारी आवाज आ रही है?
1: हाँ थोड़ी अच्छी थी, थी मगर थोड़ी कम हो गई है।
0: हाँ,
1: तो अभी शायद हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है।
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ। तो जी जी आपको नमस्कार है और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार है
0: जी।
1: और जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को नमस्कार है
0: जी।
1: और बस यही कहना चाहेंगे कि भाई इस समय में अच्छे विचार करने की जरूरत है
0: जी।
1: और सेवा सर्विस की तरफ चारों तरफ से ये हमें सोचना चाहिए कि भाई चारों तरफ आज सेवा की और एक दूसरे की हिम्मत हौसले की जरूर है
0: जी।
1: क्या
0: जी।
1: ये मतलब बहुत है, सबके अंदर ताकत है, सब कुछ है, मगर वो अभी ऐसा हो गया ना चारों तरफ से मतलब हर मनुष्य गिर चुका है, मगर उसकी हिम्मत की जरूर
0: आ
1: है
0: गया। और स्वार्थ भी आ गया, थोड़ा परमार्थ खत्म होते जा रहा है।
1: हाँ बहुत खत्म हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा जीवन और भी है तो उसे बड़ी खुशी से जी ले। प्रभु यही कहता है कि
0: दूसरा कुछ बात नहीं है,
1: एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे के ऊपर अच्छे विचार और अच्छे शुभ भावना करो और एक दूसरे की मदद करो बस। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं मदद नहीं कर सकता।
0: हाँ
1: पैसा वगैरह का भी मदद जो अपना वो काम करो, सेवा करो।
0: नहीं जरूरी
1: और
0: नहीं
1: पैसे
0: कि
1: वाले
0: से
1: को पैसे के हिसाब से करो।
0: धन से ही सेवा नहीं होती, ज्ञान से भी सेवा होती है, प्रेम से भी सेवा होती है, किसी को सही रास्ता दिखाना ये भी सेवा होती है ना
1: जी। जी जी जैसे बाबे ने मैंने फिर से सुना था वर्मा बाप को
0: जी।
1: और बाबे ने कहा था कि सागर में दूर दूर तक लहरें आती हैं
0: जी
1: और दूर दूर तक और किनारे पे आके वापस लौट जाती है
0: जी।
1: इस तरह जीवन के अंदर सब कुछ आएगा,
0: आएगा
1: और आएगा और पगे तले आगे चली जाएगी, मगर हमें उससे सामना करना और उसे समझने की और कोशिश करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार और आपको बहुत बहुत नमस्कार है। और आज का मौसम जरा अच्छा ही है,
0: अच्छा
1: ठंडा मौसम है और काम करने के भी सभी को मजा आ रही है
0: जी,
1: और सब कुछ है
0: जी।
1: तो आपको नमस्कार है और एक गाना गाते हैं के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, सबके बरस

0: नमस्कार दीदी जी, ओम
1: नमस्कार,
0: शांति।
1: थैंक यू, ओम शांति भैया। तो देखिए भाई, भाई फोन जरूर करते हैं और कहते हैं कि शनिवार रात को सुनते हैं, कहे कि इस समय वो ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन फुनवा जरूर घनघना देते हैं, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो। जब सब कुछ जल गया तब कृपा बरस पड़ी। संत नामदेव जी भगवान के ऐसे अनन्य भक्त थे जिनका मन हर समय अपने ठाकुर जी के चरणों में लगा रहता था। संसार की वस्तुओं से उन्हें कौनो विशेष मोह नहीं था। उनका विश्वास था कि जो कुछ भी है वो सब प्रभु का दिया हुआ है और उसी का है। एक दिन की बात है, नामदेव जी अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर विश्राम कर रहे थे। आधी रात का समय रहा, अचानक उनकी कुटिया में आग लग गई। देखते ही देखते लपटें आसमान को छुए लगी। आसपास के लोग दौड़ कर आए और चिल्लाए लगे, नामदेव जी आपकी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी कुछ कीजिए। लेकिन नामदेव जी के चेहरे पर न चिंता थी न घबराहट, वो शांत भाव से उठे और आग को निहारने लगे। उनके मन में एक अद्भुत भाव जागा। उन्होंने सोचा, आज मेरे ठाकुर जी अग्नि के रूप में मेरे घर पधारे हैं, जब अतिथि घर आए तो उसे खाली हाथ कैसे जाने दूं। और ये सोच कर उन्होंने कुटिया के बाहर रखा अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। जौन बर्तन बाहर रखे थे उन्हें भी आग में डाल दिया। जो कपड़े बचे थे वो भी अग्नि को अर्पित कर दिए। लोगों ने ये दृश्य देखा तो हैरान रह गए। एक व्यक्ति बोला, अरे ये का कर रहे हैं, जो बचा है उसे तो बचा लीजिए। नामदेव जी मुस्कुरा कर बोले, जब सब कुछ प्रभु का है तो उसे प्रभु को लौटाने में कैसी चिंता। लोगों ने बड़ी मेहनत से आग बुझाई, लेकिन तब तक कुटिया पूरी तरह जल चुकी थी। सभी लोग नामदेव जी को पागल समझते हुए अपने अपने घर लौट गए। उस रात नामदेव जी खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रभु का नाम जपते रहे। उनके हृदय में तनिक भी दुख नहीं था। वो बार बार ही कहते, हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा, हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा। कहते हैं कि भक्त के समर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नामदेव जी के निष्काम प्रेम और अटूट विश्वास को देखकर ठाकुर जी भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोचा, मेरे इस भक्त ने बिना किसी शिकायत के अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया, अब इसकी परीक्षा पूरी हुई। प्रातःकाल जब गांव वाले वहां पहुंचे तो आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गई। जहां रात को जली हुई कुटिया थी, वहां एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कुटिया खड़ी थी। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। लोग दौड़कर नामदेव जी के पास आए और बोले, महाराज ये चमत्कार कैसे हुआ, हमें भी इसका रहस्य बताइए। नामदेव जी हंस पड़े और बोले, रहस्य बहुत सरल है, पहले अपनी कुटिया में आग लगाओ, फिर जो कुछ बचा हो उसे भी प्रभु को अर्पित कर दो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोले, आप तो बिल्कुल पागल हैं। नामदेव जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैं अपने ठाकुर जी का पागल हूँ, और याद रखो ठाकुर जी दुनिया के समझदारों के नहीं, अपने प्रेम में पागल भक्तों के घर बसते हैं। जब मनुष्य पूर्ण विश्वास, समर्पण और प्रेम के साथ स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तब ईश्वर उसकी हर कमी को अपनी कृपा से भर देते हैं। सच्ची भक्ति वही है जहाँ शिकायत नहीं केवल समर्पण होता है। हम अपने आप से पूछें, हम प्रभु के ऊपर कितने समर्पित हैं? क्या हमारे जीवन में सिर्फ जब जरूरत पड़ती है तो भगवान भगवान आरती और प्रसाद होती है, और जब सब कुछ होता है तो क्या होता है? सच्चे दिल से पूछें, नामदेव बाबा जैसे संपूर्ण समर्पित बने, भगवान कोई चीज़ की कमी नहीं होने देगा। और आज माँ के ऊपर से हमने बात की थी, माँ वो फूल है जिससे पूरा घर महकता है। माँ वो फूल है जिससे पूरा घर महकता है, और पिता वो वृक्ष है जिसकी छांव में जीवन संवरता है। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करती हूँ। शुभ रविवार, सुप्रभातम, आपका दिन मंगलमय और बहुत अच्छी तरह से बीते। चलिए एक गीत और सुन लेते हैं, ओके बात आपसे बताएंगे।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सद्गुरु का एक वचन। एक नगर में एक युवक रहता रहा। उसकी आदतें अच्छी नहीं थी। वो चोरी करके अपना जीवन चलाता था। कई लोगों ने उसको समझाया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। एक दिन वो एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत के मुख से निकले ज्ञान के शब्द उसके हृदय को छू गए। सत्संग समाप्त होने के बाद युवक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं चोरी करता हूँ। एक काम मैं तुरंत नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपके बताए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। कौनो ऐसा नियम बताइए जेको मैं निभा सकूँ। संत मुस्कराए और बोले, यदि तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो आज से हर स्त्री को माता या बहन के समान सम्मान देना। युवक ने वचन दे दिया और अपने जीवन में उस नियम को अपनाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद एक रात वो चोरी के इरादे से एक बड़े घर में पहुंचा। वहाँ एक महिला अकेली रहती थी। युवक ने सोचा कि आज उसे बहुत धन मिलेगा, लेकिन जब उस महिला ने उसे देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, यदि तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हें फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। युवक एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन तभी उसे अपने गुरु का दिया हुआ वचन याद आ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं आपको अपनी माँ के समान मानता हूँ। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे मेरे गुरु का आदेश टूट जाए। महिला उसकी बात सुनकर भावुक हो गई और उही समय घर के मालिक और कुछ लोग भी वहाँ आ गए, जो छिपकर सब देख रहे थे। उन्होंने युवक की सच्चाई और चरित्र की दृढ़ता देख ली थी। घर के मालिक ने कहा, तुम चोरी करने आए थे, फिर भी अपने सिद्धांत से नहीं डिगे। ये बताता है कि तुम्हारे भीतर अच्छाई जीवित है। उसने युवक को दंड देने के बजाय सम्मान दिया, काम दिया और उसे ईमानदारी से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। धीरे धीरे

0: युवक ने चोरी छोड़ दी और मेहनत के बल पर समाज में सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन वो फिर अपने गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपके एक छोटे से वचन ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सफलता बड़े उपदेशों से नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे नियमों का पालन करने से मिलती है। जीवन में यदि हम किसी श्रेष्ठ गुरु, माता पिता या सज्जन व्यक्ति की एक अच्छी सीख को भी पूरी निष्ठा से अपना लें तो हमारा भाग्य बदल सकता है। दृढ़ विश्वास, अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन मनुष्य को अंधकार से निकालकर सफलता, सम्मान और सुख के शिखर तक पहुंचा देता है। आपका विचार करते हैं, ये सही बात है कि नहीं? लेकिन हमें जीवन में कई ऐसे गुरु मिलते हैं, कई ऐसे अच्छे विद्वान व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन उन बातों को टाइम बीइंग तो कहते हैं कि हाँ हम जीवन में अमल मिलाएंगे, लेकिन लाते नहीं। अगर एक चोर भी संत बन सकता है, एक चोर भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है, सिर्फ एक बात मानने से, हम भी जीवन में वो परमात्मा को अपना गुरु मान के उसकी श्रीमत पर चले तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों, आजकल जीवन में कुछ हमारे समाज में कहें बहुत कुछ असमानता सी चल रही है, और उसका कारण आज एक सत्य कारण आज बता रहे हैं। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये आज के समाज की सच्चाई दिखा रहा। दर्द ये है, क्या है? समाज में शादी की उम्र का कैलेंडर। 22 साल के हो गए, अभी बच्चे हैं, पढ़ने दो। 25 साल, अच्छा सरकारी लड़का चाहिए। 30 साल उम्र हो गई, लड़का हमारे लेवल का नहीं मिला। 35 साल हो गए, रिश्ते तो आते हैं पर जम नहीं रहे। 40 साल, अब कोई देखने भी नहीं आता, लोग कहते हैं बूढ़ी हो गई, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए। कसूर किसका? सबसे पहले लड़की वालों की ऊंची डिमांड का 10 लाख पैकेज, सरकारी नौकरी, अलग मकान, सास ससुर नहीं चाहिए। दूसरी, लड़के वालों का इंतजार, अभी कमा ले, सेटल हो जाए, फिर 35 पार। तीसरा, समाज की चुप्पी। पंच लोग दहेज दिखावे पर बोलते हैं पर लेट शादी पर कोई नहीं बोलता। नतीजा, 35-40 की उम्र में लड़के लड़कियां डिप्रेशन में, माँ बाप रो रहे हैं। समाज की जनसंख्या भी घट रही है, अब क्या करें? तीन कड़वी सच्ची बातों पर ध्यान दें। सबसे पहली बात, उम्र सीमा तय करो। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, ओम शांति।
1: ओम शांति, भूरा राम बोल रहा हूँ। से
0: हाँ जी, कैसे हैं भाई?
1: सर, आपके सर पूरे ज्ञान की बातें सुन रहा हूँ
0: जी।
1: और सर पूरे अच्छे अच्छे विचार बोले, तो आपने बताते कि आदमी का पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जावे, ऐसी बातें आप बोल रहे हैं और ज्ञान वर्धक बातें कर रहे हैं।
0: धन्यवाद,
1: तो बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: और बस थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपको राम राम तो कर दूं।
0: हाँ जी, दवाई ली आपने?
1: हाँ, दवाई चालू है।
0: हाँ।
1: बैठ के दवा भी लेता रहता हूँ और बैठ के आपका प्रवचन सुन रहा हूँ
0: जी।
1: और बहुत अच्छी बात बताई है, जो संत तुकाराम जी का भी बोले था आपने, साथ बताया, बहुत अच्छा बताया
0: जी।
1: ये सब कुछ ईश्वर का ही है, तो ईश्वर को भेंट कर दो, क्या है अपना इधर संसार में कुछ नहीं है
0: जी।
1: ये आदमी सोच कर चले तो बोले तो पूरा जीवन ही परिवर्तन
0: हो जाए। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा, वो गाना है ना,
1: सफल हो जाएगा।
0: हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ अच्छाई और दुआएं ही जाएगी, और कुछ नहीं जाने वाला है,
1: कुछ नहीं जाने वाला दीदी।
0: जी जी, ये इंसान समझ ले ना जी। ठीक है, तो हम बता रहे थे अब क्या करें, समस्या तो बहुत बड़ी है। तीन कड़वी सच्ची बातें, सबसे पहले उम्र सीमा तय करो। समाज की मीटिंग में तय हो कि लड़की 25 तक लड़का 28 तक शादी कर ले, उसके बाद समाज सामूहिक रिश्ते करवाए। दूसरी, डिमांड कम रिश्ते ज़्यादा। लड़का ईमानदार है, मेहनती है, नशा नहीं करता, बस बाकी सब शादी के बाद बन जाता है। परफेक्ट रिश्ता भगवान के यहाँ भी नहीं मिलता। तीसरा, सामूहिक विवाह को बढ़ावा। 30+ उम्र वालों के लिए अलग से सामूहिक विवाह समारोह, बिना दहेज बिना दिखावा इज्जत से ब्याह करो। और युवाओं से निवेदन है कि भाई बहनों, 35 तक ठुकराओगे तो 40 में पछताओगे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। चेहरे के दाग धब्बे, सफ़ेद बाल, टूटे दांत, ये सब उम्र के साथ आएंगे। प्यार और साथ उम्र देखकर नहीं आता। माँ बाप से भी निवेदन है, बच्चों की शादी समय पर कर दो, अच्छे से अच्छा के चक्कर में अच्छा भी हाथ से निकल जाएगा। आशा करते हैं आप हमारी इन बातों पर ध्यान देंगे, कहे कि आज समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आप सब टीवी वगैरह देखते ही होंगे, समाचार सुनते ही होंगे। हमारा एक ही राष्ट्र है, हिंदुस्तान भारत, और उसमें हम अपने देश को सशक्त करें। अपने देश को सशक्त करने के लिए बहुमत की बहुत ज़रूरी होती है, यानी मतलब नहीं तो हमारा परिवार सिमट के रह जाएगा। आज आवश्यकता है समझ की। लोभ ना करें, जो वो बेटे के माता पिता हैं, और बेटी के माता पिता भी ये ना सोचे कि बेटी के घर में कोई नहीं होना चाहिए, अकेली हो, माँ बाप नहीं हो। इंसानों से ही समाज बनता है, और जब समाज में हम रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, बिना लोगों के हम जी नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों को, ताकि समाज में जो असमानता बढ़ती जा रही है वो ख़त्म हो, वरना एक दिन हम कहीं ना कहीं, आप समझ जा सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे। हम सबसे कम आबादी वाले हो जाएंगे, अपने ही देश में अपने पराए हो जाएंगे। आशा करते हैं हमने इशारे से कहा, आप समझ जाएंगे। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है, और नज़दीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती हैं। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वो मिलो दूर क्यों ना हो। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को दो हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, वक्त की चोट के आगे गुरूर भी टूटते हैं। और महाभारत में सबसे बड़ा अपराध हथियार उठाना नहीं, गलत समय पर मौन रहना बताया गया है। समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, अगले शनिवार 11 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत प्रत्येक मानव जीवन में अपरिहार्य है। संगीत मानव को रूप, रस, छंद में सूक्ष्ममंडित करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मानव को पूर्णता प्रदान करता है। संगीत से ही हमें आनंद की अनुभूति कर औरों को भी हम आनंदित करा सकते हैं। संगीत जैसा निष्पाप साथी और बंधु संसार में और कोई नहीं बन सकता, इसलिए संगीत इतना सर्वप्रिय होता है। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ जी, गीता जी, आपको भी और सबको दिल से स्वागत करती हूँ।
0: आज श्यामली जी हमें आगे क्या सिखाने वाले हैं?
1: हाँ, पिछले एपिसोड में हम राग केदार शुरू किया है, आज तो उसका स्वरलिपि दे दिया था, आज तो बंदिश दे देंगे, थोड़ा तान करेंगे, विसर करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा जानकारी दे देते हैं। ये जो राग है, कलन ठाटकी है, करीमा सुधमा दोनों ही यूज होता है। और गा थोड़ा वीक है, इसलिए हमने कहा था वर्जित है। गा अवरोह में एकदम वीक, जैसे गा वर्जित स्वर है, लेकिन कभी कभी गा वीक है, इसके लिए ज्यादा ठहरते नहीं है। जो स्वर में ठहरते हैं वो ठहरते नहीं है। तो हम तो करके सुनाएंगे, फिर दोबारा समझा देंगे। और जो नी विवादी स्वर है उसको भी थोड़ा दिखाएंगे, कैसे करना है, कैसे लगाना है
0: जी।
1: तो और भी एक वाइटल मैसेज है कि इसमें जो हम जब कोई राग करते हैं, सा पा सा गुटी दबा कर करते हैं हारमोनियम में, तो इसमें माँ वाइटल स्वर है, इसलिए क्या करेंगे, माँ को सा माँ सा करके करेंगे
0: जी,
1: पानी लगाएंगे, सा माँ ज्यादा ब्यूटी आती है, सा माँ सा करके करेंगे। ठीक है, तो आगे थोड़ा जो आज स्थाई अंतरा दे देते हैं, जो बोल है, बंदिश जो है, बोल थोड़ा सुना देते हैं लिसनर को। अगर किताब पेन लेकर बैठते हैं तो अच्छा है
0: जी।
1: तो स्थाई का जो बोल है, मोरा बोले रे सावन की रूत वन वन डार डारे, बहुत सुंदर जो बंदिश है। सावन की महीने की जो है, जब मोरा बोल रहे हैं, मोर बोलते हैं, इसका छवि इसमें है। मोरा बोले रे सावन की रूत वन वन डार डारे, वन वन में मोरा बोलते हैं सावन की ऋतु में। और अंतरा जो है, आज पिया घर आए मोरे सजनी ले हूँ बलैया बार बार, दोबारा बोलती हूँ, आज पिया घर आए मोरे सजनी ले हूँ बलैया बार बार। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने पिछले एपिसोड में जो स्वरलिपि दिया है, शायद लिसनर बहुत अच्छा से उसको निभाया है, प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस बिना तो कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए। और आ करके हमने बताया कि आक सहित, आकार सहित करेंगे तो बहुत अच्छा है
0: जी।
1: तो अभी हम क्या करेंगे, जब स्वरलिपि के साथ ये दे देंगे, ये बंदिश बैठा देंगे, बहुत सहज से वो कर सकते हैं। ठीक है
0: जी जी।

हमने जो स्थाई का थोड़ा दिखाया है पहले रिसर्च को पिछले एपिसोड में बताया कि ये जो एक तल की ऊपर जो विलंबित है इसमें एक तल के जो 12 मात्रा है 12 के साथ अगर 4 इंटू करेंगे तो 48 मात्रा होंगे। तो एक एक मात्रा में चार चार मात्रा प्लस होता है। तो हमने बताया कि मुकरा जो होता है सोम की चार मात्रा आगे से शुरू होता है, जैसे मोरा बोले बो के ऊपर मोरा, बो के ऊपर सोम है। फिर से मैं दोहराती हूँ, ठीक है।

0: ये हमने जो स्थाई का जो है, स्थाई का जो बोल है, हमने जो धुन दिया था, स्वरलिपि दिया था, उसमें बैठा दिया। अगर लिसनर बहुत अच्छा से वो प्रैक्टिस किया है स्वरलिपि को, ये जो हमने बंदेज दिया है वो बैठने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, आसानी से सहजता से बैठ जाएंगे
1: जी।
0: ठीक है
1: श्यामली जी, आपसे और भी आगे केदार राग में सीखेंगे, मगर अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक में हम केदार राग से संबंधित एक मीठे से प्यारे से गीत का आनंद लेंगे। पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले श्यामली जी से हमने केदार राग की स्वर लिपि के साथ बंदिश भी सीखी। अब आगे श्यामली जी हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, स्थाई तो हो गया, अभी अंतरा बाकी है
0: जी।
1: अंतरा फिर से स्वर लिपि करके रिपीट करती हूँ और उसके साथ बंदिश बैठा देती हूँ।

0: ताई किया, स्थाई के बंदिश किया, अंतरा का बंदिश किया, उसके साथ बिस्तर किया। इतना जल्दी नहीं होंगे, गुरु के पास तो शिक्षा जरूर लेना है। थोड़ा सा नमूना दिखाया, थोड़ा दुगुण चार गुण ऐसे किया, थोड़ा आकर के किया है, थोड़ा लिसनर अच्छे से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गुरु के पास शिक्षा लेंगे तो कर सकते हैं बहुत अच्छा से। क्योंकि ये विलंबित जो है 48 मात्रा की है ना, पूरा आवर्तन घूम के आना है, एकदम मैथमेटिकली उसको करना है।
1: आप जैसे बोलते हैं वैसे अभ्यास भी हमारे श्रोता मित्र करते होंगे, रियाज भी करते होंगे। श्यामली जी, आज आप हमारे लिए खास कौन सा गीत लेकर आए हैं जाते जाते?
0: हाँ, बहुत सुंदर एक हमने भजन लाए हैं, नरसी भगत जो अच्छा। फिल्म है, बहुत पुराने फिल्म है, हेमंत कुमार जी और के साथ मानना जी, मानना दे जी भी है और के साथ और भी साथियां हैं, तो बहुत सुंदर। दर्शन दो घनश्याम, बहुत सुंदर
1: जी।

0: आप ऐसे गाएंगे तो जरूर घनश्याम भी देंगे दर्शन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, भक्तिमय वातावरण हो गया
1: जी।
0: श्यामली जी, समय करता है इशारा इजाजत लेने का। पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9914151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: कहते हैं काल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब ये बात राठौड़ परिवार पर बहुत फिट होती है, लेकिन जब हर कोई ये कहावत एक साथ मान बैठे और सबको हो जल्दी अपने काम करने की, तो फिर क्या आज सब हो पाएगा या चलिए आपको लिए चलते हैं रविवार की उस दोपहर में जब गर्मियां धरती का तापमान बढ़ा रही थी, और यकीन मानिए सर का भी।
1: अरे मुझे चाय इस घर में ही मिलेगी या तार भेज के मंगवानी पड़ेगी।
2: इस मौसम में तो दूध को धूप दिखा दूं तो चाय बन जाए।
3: लाती हूँ जी।
4: पापा ये तार क्या होता है?
1: अरे बेटा हमारे जमाने में जब किसी को जरूरी मैसेज भेजना होता था तब तार भेजते थे, कम शब्द में जल्दी काम हो जाता था।
4: ओ यानी लाइक व्हाट्सएप।
1: वही तुम्हारा, जिस पे रोज घितर पीटर करते रहते हो तुम लोग। ये टेक्नोलॉजी किसी दिन सत्यानाश कर देगी, इसको मैसेज उसको मैसेज, बस कोई काम ही नहीं है। और
5: बेटा इतना तो मैं अपने जमाने की बात नहीं करती, छोड़ना मेरे प्यारे पोते को कुछ ना बोल। अरे मेरा हीरा बेटा, क्या खाना है तुझे बता, तेरी दादी बनाएगी।
6: बुआ ये दादी हमेशा भाई का मनपसंद खाना ही क्यों बनाती है, हमारा क्यों नहीं?
7: क्योंकि तुझे ना हम कूड़ेदान से उठा कर लाए थे।
8: अब इस छोटी सी मासूम को कैसे समझाऊं कि बेटा होना आज भी कितनी गर्व की बात है, और बेटी होना बस सिर्फ एक बात है।
9: दीदी वैसे माँ दिल की बुरी नहीं है, देखो हमें भी पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिया।
8: हाँ बस थोड़ा सा प्यार और विश्वास कम।
9: दीदी इससे ज्यादा प्यार और विश्वास दिया होता ना माने तुमको तो तुम तो इस धरती से मर्दों का नामो निशान मिटा देती।
0: जब बच्चा पहली बार माँ बोलता है तो एक माँ के लिए वो बड़ा ही भावुक कर देने वाला पल होता है, और बच्चे को लगता है कि माँ ही उसकी सब कुछ है, उसकी भगवान है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि इस दुनिया की रूढ़ियां, इस समाज की बेड़ियां कभी कभी मां को भी इंसान बना देती हैं। इंसान जिससे जाने अनजाने भेदभाव भी हो जाता है। वैसे डॉक्टर की दवाइयों से ज्यादा और राजकुमारी जी के उल्टे पुल्टे नुस्खों के कम असर से श्रीमान वीरेंद्र जी की आवाज अब वापस आ चुकी है।
10: सारी फाइल्स तो मैंने दे दी थी ना, अब ये कैसा मसला है? अरे पेन ड्राइव आपकी खराब और आफत हमारी, चलिए मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
6: डैड डैड डैड।
10: अरे क्या हुआ मेरी परी?
6: आज मैं बहुत खुश हूँ डैड। आज ना वो कार्टून फिल्म आने वाली थी ना यूट्यूब पर, जिसका मुझे कब से इंतजार था, और आपने वादा किया था ना कि हम साथ में मिलकर देखेंगे लैपटॉप पे।
10: हाँ मुझे अच्छे से याद है बेटा, वैसे अच्छा याद दिलाया, तेरे चाचा के पास लैपटॉप है ना, उससे मेरा काम भी हो जाएगा।
11: अरे आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ।
10: ये क्या है राजकुमारी?
11: ये ना देसी घी में अमरूद की चटनी बनाकर एक चुटकी सफेद तिल
5: और क्या बेटा राजकुमारी?
11: बस मैं थोड़ी सी हल्दी, इससे ना इनकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
10: राजकुमारी मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है अब? हाँ इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा मैं।
11: कुछ कहा आपने?
10: नहीं, मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा तुम्हारी तारीफ में कुछ। तुमने ठीक कर दिया है ना मेरे गले को।
9: हाँ भैया का गला भी सोचता होगा कि अब भाभी के हाथ का कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, इसलिए डर के मारे खुद ही ठीक हो गया।
8: हाँ भैया पियो पियो, गला एकदम ठीक हो जाएगा।
10: ये रागनी का गला खराब है ना, इसको पिलाओ तुम ये काढ़ा।
11: हाँ दीदी ये लीजिए।
9: हाँ दीदी नारी आंदोलन में नारे लगाने में मदद जरूर मिलेगी आपको।
11: अरे नहीं मैं ठीक हूँ।
0: अरे भाई भाई बहन का प्यार तो ऐसा ही होता है ना, खट्टा मीठा, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, पर एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं। जीवन में ये रस ना हो तो कुछ कमी सी लगेगी, है ना? वैसे अपने यहाँ तो ऐसा होता है कि घर के आसपास कोई बड़ा हो तो उसे नाम से नहीं बल्कि दीदी भैया ऐसा कहकर ही पुकारा जाता है। सच में कितनी आत्मीयता है ना इन शब्दों में। वैसे आज माधुरी जी यानी पड़ोसन जो रखती हैं सबकी खबर, वो दादाजी की शरण में आ पहुंची हैं। सुनिए तो क्या हो रहा है।
3: माधुरी मुंह खोले तो मिठाई बोले, लेकिन मैं कहती हूँ मासा, ये आपकी बहू है ना, आपकी खास इज्जत नहीं करती।
5: अच्छा, तुझे ऐसा क्यों लगता है माधुरी?
3: अब कल की ही बात देख लीजिए, मैं अपने लिए नई साड़ी लेकर आई, मतलब मेरे पास बहुत है, लेकिन लेटेस्ट फैशन में भी तो रहना पड़ता है।
5: हाँ हाँ बिल्कुल, मोर जैसे सारे कलर पहन के आ गई है तू माधुरी।
3: हाँ मासा, ये मेरी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती?
5: भला कोई तेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है माधुरी, उसके लिए तो तू खुद ही काफी है।
3: क्या क्या कहा आपने?
5: कह तो तू रही थी ना, क्या बताने आई थी? जल्दी बता माधुरी, मुझे बहुत काम है।
3: हाँ मैं तो बस आपकी चिंता में आ गई। आपकी बहू है ना, एक से एक खरीदी करती है, और आपकी ये पुरानी साड़ी बस पुराने जमाने की निरुपा राय बनाकर रख दिया है आपको।
5: माधुरी बेटा, तेरी आँखों का चेकअप करवाया ना अच्छे से?
3: हाँ हाँ मासा, मेरी आँखों को क्या हुआ, मैं तो अभी यंग हूँ।
5: तो आँखें खोल के देख मेरी अलमारी, मेरी बहुएं अपने लिए कुछ लाएं ना लाएं, लेकिन मेरे लिए कुछ लाना कभी नहीं भूलती। मना तो मुझे करना पड़ता है कि बस इस उम्र में अब कितना कपड़े पहनूं, समझी?
3: माधुरी मुंह खोले तो मीठा ही बोले, आप तो नाराज हो गई मासा, मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही थी।
5: हाँ हाँ खूब समझती हूँ मैं, चूल्हे में आग लगाया कर बेटा, लोगों की जिंदगी में नहीं।
0: अब जरा यहाँ विराम लीजिए और आइए अब जरा इनको सुनिए। ये हैं सबके प्रिय किशन सिंह राठौड़, यानी भगवत सिंह राठौड़ जी के सबसे छोटे सुपुत्र। ये किन विचारों में डूबे हैं?
12: हो उदास क्यों मन जब फूल को कांटे मिले, हो उदास क्यों मन जब राही को भटकन, अंधेरे में ही तो लौ जगाई जाती है, मुश्किलों से ही तो शख्सियत बनाई जाती है। एक काम करता हूँ, कल कॉलेज के प्ले में जो स्क्रिप्ट देनी है उसे लैपटॉप पे सीधा लिख लेता हूँ। वैसे कागज और कलम की बात और है, लेकिन अब तो सबको प्रिंटेड स्क्रिप्ट चाहिए।
7: चाचू मुझे गेम खेलना है।
6: नहीं चाचू इसे मत देना, मुझे वीडियो देखना है डांस वाला।
7: बिल्कुल नहीं, मेरी टर्न है आज, और आपने कहा था ना कि छुट्टियाँ होंगी तो मैं गेम खेल सकता हूँ।
12: अरे बस बस बस बस, तुम लोग लड़ो मत, सबको मौका मिलेगा, लेकिन अभी मुझे कॉलेज का इम्पोर्टेंट काम खत्म करना है, तो बाद में आना तुम लोग।
6: पर चाचू ताई जी तो कहती है कि आपका कॉलेज बस टाइम पास है, आपको क्या इम्पोर्टेंट काम करना है?
12: ये भाभी भी ना, देखो बच्चों टाइम को पास भी करना है तो कुछ रचनात्मक करना चाहिए, तुम लोग भी कुछ नया बनाओ, ये गेम वगैरह तो कभी भी खेल सकते हो।
7: ये कभी कभी नहीं आता, ए चांद तू ही आजा।
12: अच्छा मुझे छिड़ा रहे हो तुम लोग, रुको अभी पकड़ता हूँ दोनों को।
0: आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार और 100 बीमार। आज के समय में इसको थोड़ा बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक लैपटॉप और 100 बीमार होने वाले हैं। किशन को अपने कॉलेज की स्क्रिप्ट खत्म करनी है और बड़े भाई वीरेंद्र को ऑफिस का काम, शांति जी को अपनी सेल की चिंता है, और रागिनी जी को भरना है फॉर्म, राजकुमारी जी को बच्चों का होमवर्क देखना है, और बच्चों को खेलना है गेम। और अरे अरे सुनते जाइए, वैसे सब आपस में बातें कर रहे हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले लैपटॉप किसे मिलना चाहिए।
13: अरे मुझे बच्चों का होमवर्क कराना है, लैपटॉप मुझे दो।
14: अरे मुझे फॉर्म भरना है, लैपटॉप की मुझे बहुत जरूरी है।
15: अरे मेरे को लैपटॉप ऑफिस के लिए चाहिए भाई।
16: अरे भैया रुक जाइए, मुझे सेल में जाना है। अरे सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस लैपटॉप से मिलेगी।
13: बच्चों की पढ़ाई के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। मेरी तो किस्मत क्या बोलूं, इस घर में कोई समझता नहीं है।
10: रहने दो भाभी, आप रहने दो, इतनी जरूरत नहीं है। ऑफिस के लिए मुझे खास जरूरत है इस समय।
13: अरे भैया का बताओ,
10: भाभी का शुरू हो गया, अब करेंगी ये। दे दो भैया, इन्हीं को दे दो लैपटॉप।
14: नहीं नहीं, सेल लगी है, मैं तो किसी को ना दूं।
13: बच्चों का होमवर्क मिस हो गया तो हम क्या करेंगे, उनका साल भर बेकार नहीं हो जाएगा।
16: अरे भाभी, बच्चों को तो शाम को भी होमवर्क करा सकते हैं, अभी अभी थोड़ी जरूरत है, वो तो अभी स्कूल गए ना।
13: अरे तो आएंगे तो तुरंत खेलने नहीं ना चले जाएंगे, तो पहले उनको दिखाना पड़ेगा, पहले होमवर्क बैठ के कराना पड़ेगा ना। आप लोग तो बाद में भी कर सकते हो, फिर बच्चे नींद भी जरूरी होती है, थोड़ा तो समझा करो ना आप लोग।
16: अरे भाभी, अगर रिजर्वेशन अभी नहीं किया बाद में टिकट में कैसे मिलेगा?
13: और बच्चों की पढ़ाई चली गई साल भर ऐसे ही चला गया तो?
14: अच्छा अच्छा, छोड़ दीजिए आप सभी बहस करना, लैपटॉप तो मुझे ही चाहिए।
13: नहीं, हमें पहले चाहिए भाई लैपटॉप, बच्चों का भविष्य पहले है।
14: मुझे
10: चाहिए भाई।
13: नहीं हमें चाहिए, नहीं
10: तो आप बहुत जरूरी है।
13: लगेंगे हो कोई घर में हमारे बारे में,
14: और मुझे तो चाहिए ही चाहिए।
10: शांति, तुम दोनों को नहीं मिलेगा अभी, बाद में बात करो आप।
13: बच्चे के भविष्य की बात है, ये भी नहीं समझते। हाँ
17: अरे बस बस बस, चुप हो जाओ सभी। बच्चों, तुमको गेम खेलना है ना, चलो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि गेम भूल जाओगे। और तुम लोग भी क्या बच्चे बन गए हो, अपने बच्चों के सामने एक साथ मिलकर

0: सुन बच्चों, एक जंगल में ना एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम गर्जन था। गर्जन अपनी ताकत और गर्जना के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन क्या हो गया मालूम है? गर्जन एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय क्या हो गया, एक छोटा सा चूहा जिसका नाम क्या था मालूम है? मिट्टू। तो ये मिट्टू वहां से गुजर रहा था। मिट्टू ने शेर को नहीं देखा था और अनजाने में उसके ऊपर चढ़ गया। फिर क्या होगा, शेर की नींद टूट गई और शेर बड़े गुस्से से चूहे के ऊपर चिल्लाया। मिट्टू डर के मारे कांपने लगा और शेर से माफी मांगने लगा। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरा आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। शेर ने चूहे पर दया की। शेर ने क्या किया, शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद जंगल में शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया और उसे जाल में फंसा दिया। मालूम है जाल कैसे होता है? जाल रस्सी का होता है ना, तो ऐसे जाल में शेर को फंसा दिया। अभी शेर बाहर कैसे निकलेगा? शेर तो बिल्कुल फंस गया। और फिर शेर ने क्या किया, शेर ने जोर जोर से गर्जना शुरू की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अभी गर्जना करके कोई बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जाल में वो फंस गया था। और उसी समय क्या हो गया, मिट्टू वहां से गुजर रहा था। मिट्टू कौन है मालूम है? याद है आपको मिट्टू किसका नाम है? चूहे का नाम है। तो मिट्टू नामक चूहा जो है उसी समय जा रहा था। तो फिर मिट्टू ने क्या किया मालूम? मिट्टू ने अपने दांतों से जाल को काटना शुरू किया, क्योंकि जाल कैसा है, रस्सी का है, छोटे छोटे धागों का है, तो उसको काटना शुरू किया। जाल कट गया और फिर शेर मुक्त हो गया। तो शेर ने मिट्टू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई मिट्टू, आज मुझे समझ में आ गया कि छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर प्राणी का महत्व अपना होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। शेर और चूहे की कहानी आज भी जंगल में दोस्ती और सहयोग की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। ये कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है। लैपटॉप अगर किसी को चाहिए, किसी को बहुत जरूरी है, तो उसे पहले देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना? तो ऐसी सीख लेते हुए ऐसी कहानियां हमें सुननी है, ना कि सिर्फ कहानी सुननी है, लेकिन क्या करना है, उसे अपनाना भी है और जिंदगी में उतारना है। ठीक है,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और रेडियो मधुबन पर अभी कार्यक्रम समय हो रहा है सलाम जिंदगी का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.8 FM, और जहां पर आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम जो हर सप्ताह में एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आपके सामने लेकर आते हैं जिनके जीवन में हम थोड़ा झांकने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक विशेष शख्सियत रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे हैं, जिनका नाम है अनिल वर्मा अमरोही जी। और अनिल वर्मा जी उत्तराखंड रुड़की से आज हमारे स्टूडियो पर पधारे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आज एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है और ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में है, और आज आपका यहाँ आना हुआ है, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग, बहुत ही आत्मिक शांति प्राप्त हो रही है
0: जी। और जो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है रेडियो मधुबन, हमारे यहाँ के आसपास के जो जनसाधारण है उनकी आवाज़ है, और उनके लिए आप जैसे लोगों को भी लेकर आता है जिनके जीवन से बहुत सारे अनुभवों में से कुछ अनुभव हम अपने श्रोता तक पहुँचाते हैं। आज के इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में आगे की ओर चलते हैं, और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में आपके श्रीमुख से। सबसे पहले चलेंगे आपके बचपन की ओर, कि जो बचपन होता है वो हमारे पूरे जीवन की नींव होती है
1: जी।
0: और उस नींव में जो पत्थर रखे गए हैं उस नींव में, उसके अनुसार ही उतना मजबूत हमारा जीवन का मकान बनता है
1: जी।
0: तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, माता पिता आपके कौन थे, अपने माताजी से क्या सीखा, पिताजी से क्या सीखा जो अभी भी आपको काम आता है?
1: मैं अमरोहा, जिला मुरादाबाद में आता था, अब तो अमरोहा अपने आप में एक जिला बन चुका है। मेरा जन्म वहाँ पर हुआ
0: जी,
1: 19 नवंबर 1954 को। लेकिन मेरी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई है 30 जुलाई 1955, वो स्कूल में जो लिखवाई गई वो अलग है, पुराने लोग ऐसी लिखवा दिया करते थे
0: जी जी।
1: ये तो माता जी ने बताया कि आपका जन्म उसको हुआ था। तो अमरोहा से मैं जन्म के बाद जो है वहाँ पे ही कुछ चौथी क्लास तक वहीं तक पढ़ा। मेरे पिताजी पुलिस लाइन में थे, रामपुर पुलिस लाइन में। पुलिस में होने की वजह से हम फिर वहाँ से अमरोहा से उनके पास चले गए रामपुर उत्तर प्रदेश में रहने के लिए।
0: जो बचपन के बारे में पूछ रहा था, जैसे हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला जो परिचय हमारा होता है अपने माँ माताजी से और पिताजी से होता है
1: जी।
0: तो माताजी के अंदर कौन सी ऐसी विशेषता आप देखते हैं?
1: जी, माताजी से मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा ली है, एक तो इस बात के लिए है कि वो बहुत सच्चाई और ईमानदारी पे चलने का उनका वो था। दूसरे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, भजन गाया करती थी।
0: अरे,
1: तो वो मुझे भी शौक लग गया। ये बहुत ही अच्छा मेरा सौभाग्य रहा कि आज वो चीज़ मेरे गले में उनकी आवाज़ दी हुई है जो काम आ रही है।
0: और पिताजी से क्या सीखा?
1: पिताजी पुलिस में थे तो अनुशासन प्रियता तो स्वाभाविक सी बात है, और वो थोड़ा गुस्सा तो करते थे, पुलिस वालों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। लेकिन पिताजी से मैंने ये सीखा कि आप कम बोलिए लेकिन संतुलित बोलिए और अनुशासित रहिए जीवन में।
0: तो ये विशेषताएं आपने भी अपने जीवन में डालने का प्रयास किया?
1: बिल्कुल किया। मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जब मैं पिताजी के साथ, उनका ट्रांसफर शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में हो गया
0: जी,
1: वहाँ से मुझे जाना पड़ा चांदपुर जिला बिजनौर मेरे मामा जी के यहाँ। वो मुझे ले गए, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, बड़ा था हमारे, हम तीन बहन भाई थे। वो चांदपुर में ले गए, वहाँ मेरी हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई 1965 से लेकर के
0: जी।
1: और 1970 तक, इस दौरान जो हमारे जो पैतृक उनका व्यवसाय था, स्वर्णकार हम लोग हैं वर्मा, वो सोने का काम हमारे मामा जी करते थे। तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही था कि आपने स्कूल जाना है और स्कूल से जो है घर आना है और घर से दुकान, इतना ही मेरा जीवन था। वहाँ मामा जी के यहाँ रह करके जो मेरी नींव जो पड़ी है वो ये थी पड़ी कि वहाँ वो जो काम करते थे वो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी पे चलते थे। वही गुण मामा जी में थे, वही माता जी में थे।
0: माता जी में,
1: और कहते हैं ना कि माता जी में तो एक माँ होती है लेकिन मामा में दो माँ होती है। इस नाते जो मैंने वहाँ से सीखा वो, और जो मेरे जीवन में काम आया वो सच्चाई ईमानदारी थी सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा।
0: बहुत अच्छी बात है। और आज इस सलामी ज़िंदगी के मंच से इन दोनों आत्माओं का जिनका आपके जीवन में गहरा प्रभाव रहा उनको भी हम सलाम करना चाहेंगे
1: जी, जी।
0: और आगे बढ़ना चाहेंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, अगले कदम पे उसको सामना होता है अपने शिक्षक से
1: जी,
0: वो स्कूल के तरफ जाता है, माता पिता उसको लेकर भले जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा समय आता है कि शिक्षक का प्रभाव माता पिता से भी ज्यादा एक छात्र के जीवन में होता है, तो उनको कैसे याद करना चाहेंगे, कैसा स्कूल था, आपके दोस्त थे और शिक्षक कौन हुआ करते?
1: जी जी, मैं जरूर इस पे प्रकाश डालूंगा। 1970 में मामा जी के यहाँ से हमें अमरोहा आना पड़ गया, जो हमारा पैतृक निवास था।
0: जी,
1: जब मैं वहाँ फर्स्ट ईयर में 11वीं क्लास में दाखिला लिया, मेरी छवि जो थी एक अच्छे स्टूडेंट की थी, तो वहाँ पर जो मेरे शिक्षक थे, तब तक मैं बहुत शर्मीला था, स्टेज का मुझे कोई अनुभव नहीं था। मेरे एक शिक्षक थे, मैं आज उनको याद करना चाहूँगा, श्री श्याम सुंदर जी, जो हमें हिंदी पढ़ाया करते थे।
0: जी,
1: उन्होंने मुझे एक बार, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हम थे, सेकेंड ईयर वालों को हम वो दिया करते थे विदाई, फेयरवेल होती ना
0: जी,
1: सीनियर्स को विदाई देने के लिए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा, हमसे कहा नहीं तुम्हें वहाँ जा करके कुछ बोलना है विदाई। अच्छा। और बिल्कुल कोई अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था, बोलना कैसा है, जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं गया और जा करके जो भी मन में आया, जो कुछ था, वो मैंने बोला। लेकिन उन श्याम सुंदर जी की उस मुझे जो जबरदस्ती धक्का दिया था या भेजा था माइक पे, उसका प्रभाव यह हुआ कि उसके बाद मैं सेलेक्ट, मेरा सिलेक्शन होने लगा डिबेट्स के लिए। मैंने स्कूल से जो थी कई डिबेट्स में, जैसे हमारा जिला था मुरादाबाद, तो वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गया, तीन तीन लड़कों की या लड़कियों के साथ जिस तरह से टीम बनती थी, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, गए, कुछ सफलता कम मिली, लेकिन माइक फेस करने की वो हुई। फिर उसके बाद जो है हमें रामपुर भेजा गया किसी डिबेट के लिए, एक प्रोग्राम के लिए,
0: एक सिलसिला चल निकला,
1: चल निकला। और ऐसा हुआ, मतलब धीरे धीरे करते करते जब मैं डिग्री कॉलेज में 1972 में आया, तब तक जो है मेरा कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो चुका था। और मुझे अपने शिक्षकों को ही सारा मतलब क्रेडिट देना चाहूंगा कि अगर वो मुझे उस दिन 11वीं कक्षा में नहीं भेजते विदाई समारोह में, तो मैं शायद जो आज बोल रहा हूँ आपके सामने, इतना भी नहीं बोल पाता।
0: बिल्कुल, एक इंसान के जीवन में जो मार्ग से हम गुजरते जाते हैं, तो उस मार्ग में जो भी हमको मिलते हैं, हर एक का कहीं ना कहीं कम बेसी योगदान होता है। कई जगह पे अनुभव हमारे बहुत मीठे होते हैं, कई जगह खट्टे या कड़वे अनुभव भी होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए एक योगदान देती हैं कि क्या हमको और ज़्यादा करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से हमको दूरी बनानी चाहिए। कुछ ना कुछ शिक्षा तो हर एक बात में होती है
1: जी।
0: और इसी पथ पर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, स्कूल में जो शिक्षक हैं, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा?
1: शिक्षकों का पहला प्रभाव तो यही है कि मुझे स्टेज मिला
0: जी।
1: फिर वहाँ से जो है, जब मेरा डिबेट्स वगैरह में जाना हो गया, तो मुझे स्टेज पे एक्टिंग के लिए भी चांस मिला, तो एज एन एक्टर मैंने काम किया। और एक्टर बन गया तो फिर छोटे बच्चों को डायरेक्ट करने के लिए निर्देशक का भी दायित्व मुझे सौंपा गया, वो सब भी मैंने छोटे बच्चों के लिए नाटक वगैरह,
0: एक प्रतिभा से दूसरी प्रतिभा, दूसरी से तीसरी प्रतिभा निकलने
1: वो होता गया। तो जब तक मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा, तब तक जो था हमारी ये पोजीशन हो गई थी कि हम तीन लोग जाया करते थे एक टीम की तौर से प्रोग्राम करने के लिए डिबेट्स में।
0: उनके नाम याद करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, एक थे श्री ओमदत्त त्यागी, जो हमसे बहुत सीनियर थे डिग्री कॉलेज में, और एक मेरे साथी थे, वो आज भी हैं, श्री सुल्तान अख्तर जी, जो अमरोहा में रहते हैं, और वो बहुत प्यारे इंसान हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं। तीनों गए वहाँ पे रामपुर में, और वहाँ से हम तीनों ही को फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड मिला। और एक जो चल वैजयंती कहलाती है, जो कॉलेज को दी जाती है, एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, तो वो भी ट्रॉफी हमें मिली। और फिर जो स्टेज पे
0: रनिंग ट्रॉफी,
1: जी रनिंग ट्रॉफी, तो वो लेकर के जब हम आए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हमारे यहाँ से ही है, रनिंग ट्रॉफी भी हमारी है, तो फिर वो सम्मान जो प्रेयर के टाइम पे होता है स्टूडेंट्स का, जो कुछ अचीव करते हैं, वो बड़ा प्रेरणादायक रहा।
0: बिल्कुल।
1: फिर इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं 1972 11वीं में मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली थी।
0: ओके।
1: तो एक तो पिताजी का पुलिस में होना, दूसरा अनुशासन प्रियता मन में आ चुकी थी, तो और एनसीसी में कद छोटा होने के नाते हम सबसे आगे रहते थे
0: जी।
1: उसका प्रभाव यह हुआ कि एनसीसी बेस्ट कैडेट में गिने जाने लगे, क्योंकि उस जमाने में एक उपराष्ट्रपति हुआ करते थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी।
0: ओके।
1: उनका हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर में, हिंदू इंटर कॉलेज अमरोहा में आना हुआ, तो उनको हमने एनसीसी के कैडेट के नाते गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
0: ओके।
1: तो उस गार्ड ऑफ ऑनर की ट्रेनिंग हमारी चली एक महीना तक राइफल के साथ। तो वो जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसका सर्टिफिकेट हमें मिला, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। और मैंने एनसीसी में रह करके 20 सर्टिफिकेट पास किया।
0: वाह।
1: अब 20 सर्टिफिकेट पास करने का मतलब ये था कि हम LMG खोलना और बंद करना, ये सब चीजें सिखाई गई। आज मैं शायद पहली बार ही इन सब चीजों को व्यक्त कर रहा हूँ, और बड़ी

0: खुशी भी हो रही है जो आप
1: जी बिल्कुल, ये जो मंच है सलामे जिंदगी रेडियो मधुबन का, ये मंच इसीलिए है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे समाज के बड़े और बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी नहीं बताया होते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं सामने आती है और एक दोबारा से आपको उन पलों को जीने का मौका मिलता है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है,
1: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, आपकी जो जीवन की सत्य कथा है उसे जानकर। और भी बातें करेंगे लेकिन इससे पहले समय हो रहा है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनाएं और फिर लौट कर आए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम सलामे जिंदगी और हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी। और भी उनकी कहानी को जानेंगे और उनके जीवन से कुछ ऐसा सीखने का प्रयास करेंगे जो आज तक हमने नहीं किया है, लेकिन तब तक लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों फिर लौटकर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में और हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी। अनिल वर्मा जी के बचपन और शिक्षा काल के अनुभवों को हमने सुना और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको भी हमने जाना कि कैसे एक विशेषता दूसरी विशेषता को लेकर आती है। तो जरूर आप भी जो युवा साथी हमारे सुन रहे हैं आप जरूर ये कोशिश करिए कि किसी ने आपको धक्का लगाया, खींच के लाया या ना लाया, आप अपनी ओर से भी प्रयास करिए। कहीं पर एक मंच मिलता है तो कुछ अपनी भावों को व्यक्त करने का प्रयास करिए और ये विशेषताएं धीरे धीरे आगे एक सुंदर रूप लेकर आपके जीवन को और बेहतर बना देगी। तो अनिल जी, जैसे आपने बचपन के दिनों को और स्कूल के दिनों के बारे में बताया, आप थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल।
2: कि जैसे ही स्कूल का समय पूरा होता है कॉलेज जाते हैं और कॉलेज पूरा होने से पहले ही हमारे मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि अब हमें क्या करना है। एक सामाजिक रूप से भी प्रेशर होता है कि कहीं आपको जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। आगे की यात्रा आपकी कैसे रही, कि जब स्कूल से कैसे निकले, फिर जो आपकी पहली जॉब कैसे लगी?
3: मैं वही बताना चाहूँगा, 1972 में मैंने इंटर किया और उसके बाद मैं 1973 में आया डिग्री कॉलेज। हिंदू इंटर कॉलेज अमरोहा और डिग्री कॉलेज बराबर बराबर ही थे, सिर्फ एक दीवार थी बीच में। जब हम डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई, जो हमारा अनुशासन और वो सब था उसको देखते हुए मेरे कुछ पारिवारिक मित्रों ने ये कहा कि अब अनिल बड़े हो रहे हैं, इनको कुछ काम करना चाहिए। 1973 में मैंने, जबकि मेरी उस समय उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 18 साल का भी पूरा नहीं था, मैंने बाटा इंडिया लिमिटेड में टेम्परेरी काम करना शुरू किया।
2: तो ये कंपनी आपके वहीं पर थी?
3: अमरोहा में शॉप थी, बाटा शॉप। बाटा इंडिया तो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है, लेकिन वहाँ का जो स्टोर था उसमें मैंने पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने 3 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, जो भी उस समय मिल।
2: कैसे मैनेज होते थे पढ़ाई और ये दोनों चीज?
3: वो इस तरह से होता था कि या तो मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी या छुट्टियों में मैं काम करता था पार्ट टाइम। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक वैकेंसी हो गई बाटा की दुकान, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा। इस तरह से कि 1973 में मैंने जब बाटा कंपनी को 2 अगस्त 1973 मुझे आज भी डेट याद है ज्वाइन किया। मैं काम करता रहा मेहनत से, ईमानदारी से, और सबसे छोटे पद पर मैं लगा था।
2: ओके।
3: उस पद को उस समय नाम था हेल्पर, मैंने जब 1973 में ज्वाइन किया
2: जी।
3: लेकिन मेरी जो बैकग्राउंड मैंने बताई कि मैं मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मेरे सारे जो ऑफिसर थे वो बहुत खुश हो गए, और मैं दूसरे एक मैनेजर के साथ काम कर रहा था, फिर दूसरे एक और मैनेजर आ गए। इस बीच में क्या है, मेरा जाना हुआ बाटा शू कंपनी से छुट्टी लेकर के कुछ दिन की, मैं अपने दोस्तों के साथ बम्बई गया। बम्बई मेरे औरों की तरह मेरा भी ख्वाबों का शहर था।
2: अगर तो आपके अंदर छुपाई था पहले
3: जी
2: से।
3: वो था, तो वहाँ चाहता था मैं कुछ बनने के लिए, तो मैं वैसे ही घूमने के लिए गया आपके साथ। तो मैं वहाँ बाटा के शॉप के एक मैनेजर थे, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुरादाबाद में थे, वो बॉम्बे में बहुत बड़ी शॉप पे मैनेजर हुआ कर।
2: Okay.
3: क्राफर्ड मार्केट एक जगह है वहाँ बम्बई में, वहाँ पर मैं उनसे मिलने के लिए गया, जस्ट फॉर कर्टसी कॉल, सम्मान। मैं मिलने के लिए गया तो मैंने उनसे कहा, सर मैं तो बम्बई में आना चाहता हूँ। तो बोल, पता है तुम्हें बम्बई में कैसे रहा जाता है, यहाँ सब कुछ मिल सकता है लेकिन रहने की जगह नहीं मिलने की, तुम्हें ये लिख करके देना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो ट्रांसफर। में ट्रांसफर तो तुम्हारा चुटकियों में करा दूंगा, 15 दिन के अंदर अंदर तुम ट्रांसफर हो जाओगे, लेकिन ये समझ लो कि रहने के लिए मत कहना तुम मुझसे। फिर मैंने कहा साहब मैं नहीं कहूँगा। मैंने वापस गया अमरोहा, जाकर के अपने मैनेजर साहब से बात करी, और तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है बेटा, तुम आगे जाना चाहते हो तो अच्छी बात है
2: जी।
3: मेरा ट्रांसफर जो था 1978 में 8 अगस्त 1978 को मैंने अमरोहा छोड़ा और मैं बम्बई की यात्रा पर निकल गया। लोग मुझे इस तरह से अमरोहा में छोड़ने के लिए आए थे, जिस तरह हाजी लोग जाते हैं हज के लिए, तो वो इस तरह से मालाओं को पहना करके मेरे दोस्तों ने मुझे
2: बम्बई जा रहे
3: हैं, हाँ बम्बई जा रहे हैं, कि बम्बई में चले गए। वहां जाकर के दिल्ली होकर के जाते थे, पहले तो दिल्ली जाकर टिकट बुक कराते थे, वो बम्बई चले गए, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वहाँ जाने का फायदा ये हुआ, एक वाइड स्कोप मिला मुझे, बड़ा
2: समझ,
3: सारी दुनिया
2: समझ विकसित हुई।
3: तो लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा वही चीज काम आई जो इनिशियली मैंने आपको बताया, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम। मैं जब वहाँ पे पहुंचा और मेरा वर्किंग वहाँ पे मैनेजर्स ने देखा और वहाँ के बाकी स्टाफ जो थे वो सब मैच्योर्ड थे और मुझसे बड़े थे सारे, जो उन्होंने वर्किंग मेरे देखा, तो मेरा टेस्ट के लिए सेल्समैन के प्रमोशन के लिए लेटर आया अमरोहा। लेकिन मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि मैं प्रमोशन से रह जाऊंगा, मैं यहाँ ट्रांसफर होके आ गया। लेकिन हमारे जो मैनेजर थे वो कलकत्ता से डायरेक्ट, जो हमारा हेडक्वार्टर था वहाँ से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहीं पे बम्बई में बैठाऊंगा एग्जाम के लिए। तो बम्बई में जब मैं एग्जाम के लिए बैठा तो मेरा सबसे लास्ट नंबर था 46वां नंबर, जितने कैंडिडेट आए हुए थे। मैं देने के लिए गया और उन्होंने ये कहा तुम्हें एग्जाम में बैठाऊंगा मैं तुम्हें, जब कि जब तुम्हें मैं कुछ पेपर्स दूंगा उनको तुम सॉल्व करके लाओगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे दिया, बोले तुम सुबह को सॉल्व करके लाओगे। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा, क्योंकि बम्बई की लाइफ तो ऐसी है, भागदौड़ बहुत है। वहां से जब मैं लौट के अगले दिन लेकर के आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए कि आपने जो है वो सारी चीज़ें सही किया, ठीक है नाउ अब तुम पार्टिसिपेट की। मैंने पार्टिसिपेट किया उस एग्ज़ाम में, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं दुकान पे वापस लौट के नहीं आया था एग्ज़ाम से। तो मैंने जब अपने मैनेजर साहब से कहा कि मैं दे आया हूँ, कैसा हुआ? ठीक हुआ। भावुक हो गया मैं, रोने लगा। तो बोले क्यों रो क्यों रहे हो? मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मैं इतनी दूर आया हुआ हूँ बम्बई छोटे से शहर से। उन्होंने कहा जाओ तुम पास हो गए। ये डिक्लेयर्ड एग्जाम दे के कोई बच्चा आया हो उसको ये कह दिया जाए कि तुम पास हो जाओगे तो कितना हौसला बढ़ता है। मैंने और हौसले से काम किया और फिर वहां से मेरा ट्रांसफर जो है एज ए सेल्समैन आगरा कैंट की शॉप पे हुआ 79 में। वहां पे जब आगरा आया तो आजकल वो समय इनलैंड लेटर वगैरह सब पहुंचा करते थे, बम्बई में मेरे पास बहुत लेटर आते थे दोस्तों के, सुबह की डाक में 7 और शाम की डाक में 3, तो 10-10 लेटर एक दिन में आते थे। मेरे आगरा कैंट की खबर पहले पहुंच चुकी थी। आगरा में मेरे पहुंचने से पहले मेरे 5 लेटर मैनेजर के फाइल में रखे हुए थे। कौन लड़का ऐसा आ रहा है जिसके आने से पहले नील कुमार वर्मा के नाम से जो है वो 5 लेटर पड़े हुए ऑलरेडी। मैं उससे मिलने गया बिफोर जॉइनिंग उसी दिन शाम को, जिस दिन मैं पंजाब मेल से आगरा उतरा उसी दिन मैं शाम को मिलने गया। तो उन्होंने कहा इसी तरह से मिस्टर वर्मा वेलकम, और ये आपके 5 लेटर आए रखे हैं, टुमारो यू कैन ज्वाइन। तो मैंने 15 जुलाई मुझे याद है आज ही 15 जुलाई 1979 को मैंने आगरा कैंट शॉप पर ज्वाइन किया। और वहाँ फिर वही चीज़ काम आई, मेहनत ईमानदारी, जिससे जब वहाँ पर काम किया तो हमारी जो बाटा कंपनी के मालिक थे मिस्टर बाटा का वहाँ पर विजिट हुआ। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि आपकी किसी भी संस्था के सबसे बड़े जो रचयिता जो हैं वो आकर के अगर विजिट करते हैं तो उससे बड़ी खुशी वो नहीं हो सकती। वो अटेंड किया उनके साथ एक रात को, फिर 5-स्टार होटल में प्रोग्राम था आगरा में, वो अटेंड किया। बहरहाल बड़ा अच्छा आगरा का रहा 6 साल तक में हमारा, 84 दिसंबर तक।
2: कितने साल आप बाटा कंपनी में? टोटल
3: मैंने बाटा शू कंपनी में टोटल जो काम किया है 35 साल, 35 ईयर्स। 1973 से लेकर के मैंने 15 मार्च 2007 को मैंने छोड़ा बाटा कंपनी।
2: आप फिर बता रहे थे कि IIT रुड़की में भी आपने कार्य किया, तो ये और भी बाटा के बाद फिर आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन?
3: जी मैंने कोई और कंपनी ज्वाइन नहीं की, मैंने फिर उसके बाद वहाँ पे फर्नीचर स्टोर था अग्रवाल फर्नीचर स्टोर, मैं उनके पास गया किसी के जरिए, क्योंकि पैसों की जरूरत थी। वो बाटा कंपनी का कोई और इशू था जिसकी वजह से 2007 में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, मैं रिटायर नहीं हुआ था 2007 की बात
2: जी।
3: तो वहां से जो है मैंने 1 महीने भी पूरा काम नहीं किया, और वो इतने ईमानदार और बढ़िया आदमी थे, उन्होंने मेरी कदर किया क्या। तो मैं इस बीच में IIT में जाकर के उन लोगों से, अधिकारियों से मिला, तो हम लोग अपने बाटा के शूज, सैंडल्स और सॉक्स वगैरह सप्लाई किया करते थे। अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो इतना मतलब अच्छा ईमानदारी और उसके साथ काम करने वाला हो। तो मैं जाकर के जब उनसे मिला अग्रवाल फर्नीचर पे काम करते करते, क्या ठीक है, ये बात है 27 दिसंबर की, और 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला था 2008। तो उन्होंने मुझे, अग्रवाल फर्नीचर वाले ने इजाजत दे दी, बोले हमें बहुत खुशी होगी कि आप एक अच्छी जगह जा रहे हैं। तो वहां मैंने 2008 में 1 जनवरी से काम शुरू किया IIT रुड़की में ऑफिस में, और मैंने वहां पे 3 डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट्स में काम किया IIT में। और ये परमानेंट जॉब नहीं था, ये टेम्परेरी जॉब था, लेकिन किसी एजेंसी के थ्रू, जैसे आजकल वर्क हायर पे लोग रखे जाते हैं, तो इस तरह से मैंने वहां पे 2018 30 जून 2018 तक मैंने जो है वहां IIT में काम किया 11 साल।
2: जैसे अगर मैं ये पूछूं कि बाटा कंपनी में जो आपकी लर्निंग है
3: जी,
2: कौन सी ऐसी वैल्यूज आपने सीखी जो आपको लगता है कि दूसरों को पता होना चाहिए?
3: मेरी फिर वही बात आती है जो मैंने शुरू में कही, जो बाटा कंपनी में पंक्चुअलिटी, ईमानदारी, मेहनत, यही चीज मेरे काम आई सबसे ज्यादा।
2: कंपनी से क्या आप सीखा?
3: कंपनी से मैंने ये सीखा कि आपको जो है वो यू विल हैव टू हार्ड वर्क, और कस्टमर जो है हमारा मास्टर होता है। अगर कोई कस्टमर आपको आया है और आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय ठंडी हो जाने दीजिए, रख दीजिए, छोड़ दीजिए। यू वेलकम योर कस्टमर फर्स्ट, तरह से हमने जो था ये इस चीज को सीखा। और मैं अब लोगों से कहता भी हूँ कहीं जाता हूँ शॉप पे कि भाई आप कम से कम मोबाइल से नजर उठा करके कस्टमर की तरफ देख तो लीजिए। आई टू आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी होता है। बाटा शू कंपनी में कहा जाता है कस्टमर इज किंग। वो हमें कुछ देने आ रहा है, हम उसे कुछ नहीं दे रहे। हमें तो कंपनी काम करने के पैसे दे रही है, लेकिन बाटा कंपनी में जो बाटा कंपनी चल रही है या कोई भी संस्थान जो चलता है वो उसके एम्प्लॉयज की वजह से चलता है, कस्टमर की वजह से चलता है। एम्प्लॉयज कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तभी वो कंसर्न काम करेगा।
2: और ऐसे अगर मैं ये पूछूं कि आपकी आखिरी जॉब थी आईआईटी रुड़की वाली, वहां से क्या लर्निंग हुई आपकी?
3: वहां से मेरा जो चीज वो काम आई, जो बाटा कंपनी का एक्सपीरियंस था, लोगों से पोलाइटली मिलना, प्यार से मिलना। अंग्रेजों की कंपनी थी तो इंग्लिश का ज्यादा था, अभी भी शायद आप महसूस कर रहे हैं मेरी भाषा में हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का समावेश ज्यादा हो रहा है। वही चीज मेरे जो वहाँ स्टूडेंट थे, मेरा स्टूडेंट से कंसर्न रहता था, और मेरा डिपार्टमेंट था वो स्टूडेंट्स की समस्याओं से रिलेटेड था। उसमें कहते थे डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, DSOW, तो उस ऑफिस में मैं काम करता था। ज्यादातर फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट से मेरा लिंक रहता था, और वो मेरे जो इंग्लिश का शौक था यह समय का वो था, बाटा कंपनी का एक्सपीरियंस वो वहाँ पे काम आया। और स्टूडेंट से जो है मैंने स्टूडेंट से भी बहुत सीखा, स्टूडेंट ने मेरे को बहुत इज्जत दी, प्यार दिया, और मेरा वहाँ से भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मुझे गाना गाने का शौक था, तो मैं वहाँ रह करके लंच टाइम में एक गाना जरूर गा रहा था विदाउट म्यूजिक
2: जी।
3: तो वहाँ किसी स्टूडेंट ने आकर के मुझसे ये कहा कि सर आप इतना अच्छा गाते हैं तो आप इस म्यूल या स्टार मेकर के थ्रू क्यों नहीं गाते, वहाँ पे आपको लिरिक्स भी मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा और आपका एक्सपोजर जो है और ज्यादा होगा। तो कर लिया।
2: काफी इंस्पायरिंग जर्नी है, अलग अलग फेजेस, अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनी, अलग अलग जगह।
3: बिल्कुल।
2: और कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा के अंदर जो यात्राएं आपने की है उसमें से अपने अंदर भी आपने बहुत सारी विशेषताओं को भी अडॉप्ट किया। तो जैसे आपने गीत के बारे में बोला
3: जी,
2: कुछ ऐसा सुनाइए हमारे श्रोताओं को जो आपके दिल के बहुत करीब है।
3: अभी एक गीत रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ, उसी को सुनाया देता हूँ
2: जी।
3: लता जी का गाया हुआ गीत है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैंने अब तक मतलब हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जो ये अभी अभी रिकॉर्ड करके आता हूँ इमीडिएटली याद आ रहा है।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: कुमार जी की रचना है,
0: क्यों ना यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं और फिर लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। तो श्रोताओं सुनिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो अनिल जी के दिल के बहुत करीब है और दो लाइन उन्होंने भी गाया है आपके लिए, और बाकी गीत आप सुनेंगे रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन कार्यक्रम सलामे जी।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: हम बात कर रहे थे अनिल वर्मा जी से कि उनके बचपन, युवा काल, स्कूल की लाइफ, फिर जो उनका कार्यमय जीवन है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी अपनी यात्रा के बारे में बताया। कैसे इंसान कहीं अनुभव लेता है, कहीं सीखता है, और साथ साथ उन्होंने अपने गायकी का भी थोड़ा सा हमारे को एक झलक दिखलाई। आइए आगे चलते हैं और उनके जीवन की ओर। सर, जैसे आपने अपने कार्यमय जीवन तक बताया, इसी कड़ी में जैसे स्कूल से निकले, काम पे लगे, कंपनियां चेंज की, और इसी बीच में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आरंभ हो जाता है
1: जी।
0: तो आपका विवाह कौन से वर्ष में हुआ?
1: 1980 में।
0: 1980 में कितने साल के थे आप?
1: मैं 1980 में 25 साल का था।
0: जिनसे आपका विवाह हुआ उनके बारे में कुछ बताइए, और कैसा आपका विवाह का स्थिर हुआ, और उनकी क्या विशेषताएं?
1: जब बम्बई से ट्रांसफर होकर के आगरा आया, तब तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वहां शादी करूंगा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने के 2 दिन बाद ही मेरे जीजा जी वहां रहते थे आगरा में,
0: okay.
1: उन्होंने ये कहा, अनिल हमने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, सरप्राइज गिफ्ट। मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और फिर मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। बोले नहीं देख, तो वहां से सिलसिला चालू हुआ। लड़की वाले जो थे वो देखने के लिए आए बाटा की दुकान पे, आकर के उन्होंने देखा कि भाई हाँ, तो उनको कुछ जचा होगा अब। लेकिन मेरे को फिर वही बीमारी सच बोलने की, तो हमारे साले साहब मिलने के लिए आए, तो वो कहने लगे, मैंने कहा भी सोच लीजिए, मुझे केवल 500 रुपये महीना मिलता है, कैसे गुजारा होगा आपकी बहन के लिए? इसके बारे में बोले, हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या मिलता है हम इस बात से मतलब नहीं है। मैं 6 जुलाई हमारी शादी की,
0: आगरा में ही विवाह हुआ,
1: आगरा में शादी हो गई
0: जी।
1: बस वहीं से पहला जीवन शुरू हुआ, और 1983 में हमारे बेटे का जन्म हुआ।
0: नाम क्या है
1: जी
0: आपकी युगल का? नाम क्या है?
1: मेरी पत्नी का नाम था स्वर्गीय श्रीमती विनीता वर्मा
0: जी। उनको कैसे याद करते हैं अभी आप? कौन सी विशेषताएं आपको उनकी अच्छी लगती है?
1: वो बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है। वो बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत मजबूत थी, बहुत टेक्निकल माइंडेड थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेरी जिंदगी को सजाया संवारा, और घर कैसे बनता है, घर जो है वो घर जब बनता है, जब कोई उसको बनाता है, उससे पहले वो एक कमरा होता है
0: जी।
1: घर किसी के बनाने से बनता है, अकेला व्यक्ति घर नहीं बना सकता।
0: तो जैसे आपके सामने दोनों समय है, एक समय जब आपका विवाह हुआ था, और एक वर्तमान समय है जहाँ आपके भी बच्चे होंगे, और भी समाज में आप देखते हैं कि परिवार बन रहे हैं, कई परिवार बिगड़ भी जाते हैं, कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, कई बार पति पत्नी के बीच मन बन हो जाती है। कौन सी वो वैल्यूज़ हैं, कौन सी वो जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, एक परिवार को संगठित करके रखने मददगार होते हैं, आप क्या देखते हैं इसमें?
1: मेरे तो यही हमेशा कहना है कि जब हमारा किसी से वैवाहिक संबंध होता है, तो हमें उसको बेइंतहा प्यार करना चाहिए, और शक जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार पैदा कर देता
0: है,
1: बहुत बड़ी बीमारी है, वो कभी नहीं लाना चाहिए। और जितना आप एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही मजबूती संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उतना ही मजबूत संबंध बनेंगे, उतना ही जीवन सुचारू रूप से चलेगा। अब आना और जाना तो जिंदगी में कौन पहले जाएगा कौन आएगा, ये बात की बात है
0: जी।
1: लेकिन मेरी जिससे शादी हुई, वो उसने मतलब मेरे अनिल वर्मा को जो है वो जो एक्चुअल मतलब एक गृह स्वामी कह सकते हैं, या जो भी कुछ बनाया वो उन्होंने बनाया,
0: उन्होंने बनाया। तो आज जो सातमा को भी हम यहाँ से श्रद्धांजलि भी देते हैं, याद भी करते हैं, और सलामी जिंदगी से सलाम कहते हैं। और बच्चों के बारे में क्या बताना चाहिए?
1: मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी की शादी मैंने 2008 में कर दी थी।
0: कहाँ शादी?
1: बुलंदशहर में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उसके हस्बैंड डॉक्टर है। और बेटे की शादी 2010 में की
0: जी।
1: वो अब तो उल्टा ही कहना पड़ता है, पहले बच्चे रहते थे माँ बाप के साथ, अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरा एक पोता है
0: जी।
1: और बहू रानी है, और हम लोग साथ।
0: बेटा कहाँ रहता है?
1: बेटा साथ में ही है, रुड़की में रहते हैं।
0: रुड़की में रहते हैं।
1: हाँ, अब तक वो IIT में काम कर रहे थे, वो भी एक डिपार्टमेंट पे, लेकिन अब वो आजकल चूंकि परमानेंट नहीं हो पाए, परमानेंट जॉब नहीं मिलता
0: जी,
1: तो आजकल वो अपना ही कुछ काम कर
0: रहे हैं। परिवार को बेहतर बनाने का एक सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था। परिवार में जैसे पति और पत्नी का संबंध है, उसके लिए तो ये 2 लोगों की मेहनत होती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं और बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, तो उस समय कौन सी ऐसी बातें हमको सावधानी रखनी चाहिए, और कौन सी वैल्यूज़ हैं बच्चों को देनी चाहिए?
1: देखिए हम बच्चों को वही सिखा सकते हैं जो हम सीख करके वहां तक आए हैं
0: जी।
1: वो जो हमारा सामाजिक दायित्व उनको दुनिया में लाने के बाद होता है और वो हम उनको वही चीज देते हैं जो हमारे पास होता है
0: जी।
1: इस जर्नी में अब तक की
0: जी,
1: शादी के बाद उनके जन्म होने तक, मैं तो यही कहूंगा कि हम बच्चों को जैसा पौधों की तरह होते हैं बच्चे छोटे, जैसा उनको हम खाद पानी देंगे वैसे ही वो बनेंगे, और वाकई वैसे ही है, बच्चे जो है वो उसी राह पे चल रहे हैं।
0: कच्चा घड़ा को जैसे बनाया जाता है फिर पकाया जाता है, तो माता पिता कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी होती है कि जो हम उनको बता रहे हैं वो हम खुद भी प्रैक्टिस करें।
1: और माता पिता बताते भी वही हैं जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है।
0: कई बार आजकल हम देखते हैं एक शब्द यूज किया जाता है जनरेशन गैप
1: जी,
0: और ये माता पिता भी करते हैं और बच्चे तो उससे भी ज्यादा करते हैं कि आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे,
1: आपको आता ही क्या है,
0: आता ही क्या है, तो बहुत बाद में आता है, लेकिन पहले तो बच्चों को लगता है हमें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, या कई चीजें होती है, कई चीजें माता पिता की अनुभव की होती है, तो वो भी अपनी बात सही जगह रख रहे होते हैं। इस चीज का क्या सॉल्यूशन देखते हैं?
1: देखिए आजकल जिस हिसाब से तेजी के साथ ये दुनिया भाग रही है और नए नए गजेट्स आ रहे हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट वो हमारे जमाना तो रहा नहीं कि उपन्यास पढ़ करके बड़े हो गए है ना, या पढ़ाई करके बड़े हो गए। अब तो जिसके हाथ में कंप्यूटर भी अलग हो गया, तो जो है सबके पास जो है वो लैपटॉप और मोबाइल,
0: मोबाइल
1: के अंदर सभी चीजें आ गई हैं। कल भी जो हमारा मीडिया का विषय था उसमें भी यही चर्चा हो रही थी कि आजकल हर वक्त जो है बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और मोबाइल में सारी चीजें आती जा रही हैं। अब ये हमें माँ बाप होने के नाते ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे क्या देखें और क्या नहीं देखें, हालांकि वो इसमें अपने इंटरफेरेंस मानते हैं माँ बाप का,
0: प्राइवेसी की बात आ जाती है,
1: प्राइवेसी वाली बात आ जाती है बड़ा होती, लेकिन फिर भी हमें अंकुश तो लगाना पड़ेगा कि नहीं अब टाइम हो गया, जाइए आप सोइए, अब आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, आप रोते चिल्लाते हैं कुछ भी करते रहिए। लेकिन अगर बच्चों को संवारना है, सजाना है, तो उनको थोड़ा सख्ती तो करनी।
0: फैमिली वैल्यूज या पारिवारिक मूल्य जो कहते हैं
1: जी,
0: ये कौन से वैल्यूज हैं जो एक परिवार को बांध के रखते हैं?
1: देखिए परिवार को बांध करके जब ही रखा जा सकता है जब हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हो,
0: कनेक्टेड हो।
1: अगर हम जरा सा भी मम्मी काम पे चली गई, पापा काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए और शाम को आए तो मोबाइल लेकर के बैठ गए, तो उससे कनेक्टिविटी अब उतनी नहीं है, पहले हुआ करती थी
0: जी।
1: जब हम पढ़ते थे हमारी माताजी पढ़ाती थी या, तो वो था, अब दौर अलग हो गया है। अब बच्चे कहते हैं कि हमारे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, बल्कि देखा जाए तो अगर मोबाइल चलाना सिखाया तो बच्चों ने सिखाया हमें, जितना भी हम करते हैं आजकल
0: जी।
1: बच्चों को हमें ध्यान रखते हुए उनको करना पड़ेगा कि वो पढ़े लिखे, काबिल बने और जो है वो अपना जीवन जैसे हमने कोशिश की है संवारने की, ऐसी हमसे बेहतर बन के दिखाएं।
0: बहुत ही खूबसूरत अनुभव, और अपने जो सवाल हमारे श्रोताओं की ओर से मैंने रखा उनके भी अच्छे जवाब आपने दिए, और भी जानेंगे, पर इस बीच में एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे क्योंकि समय हमारा लिमिटेड है
1: जी जी।
0: और जीवन इतना लंबा है कि अनुभव गाथा खत्म नहीं हो सकती है
1: जी जी।
0: छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर लौट कर आते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM, श्रोताओं सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: तो आप सुन रहे हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन और कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अनिल जी से फिर मुखातिब होते हैं। अनिल जी, जैसे आपने जीवन के अलग अलग पड़ाव के बारे में बातचीत की, एक पड़ाव जो है वो वर्तमान है आपका
1: जी,
0: और इस समय आपने अपने जो कार्यमय जीवन था उससे अवसर भी ले लिया है
1: जी,
0: और बच्चों के साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं एक जीवन भर एक ढर्रे से हम बंधे रहते हैं, जो हम सुबह 8 बज गए 9 बज गए अपना टिफिन लेना है, काम पे जाना है, फिर रात को लौट के आना है, फिर अगले दिन की तैयारी के साथ, मेंटल तैयारी के साथ सो जाना है, फिर सुबह उठ के जाना है,
1: डेली रूटीन रहता है।
0: फिर एक वो समय जब आपने रिटायरमेंट लिया तो वो एक पैटर्न ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती रही होगी। अब
1: बिल्कुल चुनौती थी
0: जी,
1: बहुत ही अजीब सा लगता था। और मैं जितना स्लिम ट्रिम उस जमाने में था जब मैं मेहनत करता था, उतना अब मैं नहीं रहा। एक कुर्सी पे बैठ करके जो काम किया IIT रुड़की में 11 साल, उससे जो है वो थोड़ा सा बल्किनेस तो आ गई है, हमें इससे थोड़ा सा बचना चाहिए।
0: तो जैसे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं अभी, तो हर उम्र के लोग रेडियो मधुबन पर अभी आपको जैसे सुन रहे होंगे, चीज मैं जानना चाहूंगा, एक चीज तो नहीं कई बातें ऐसी हैं जो वर्तमान जीवन से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो बुजुर्ग होने वाले होंगे, हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद उनकी भी उम्र आगे बढ़ेगी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जिस भी उम्र के हम हैं वहाँ ध्यान रखनी चाहिए, ताकि जब हम बुजुर्ग हों स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे?
1: देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना तो बहुत ही जरूरी है
0: जी
1: सभी को, और वो स्वास्थ्य को एक आपको शौक बना लेना चाहिए, जैसे आपको गाने का शौक है, एक कविताओं लिखने का शौक है, कुछ भी चीज है, तो उसी तरह स्वास्थ्य का हमें रोजाना ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं है। वो एक कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है।
0: सही बात।
1: इसलिए योगा है या एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, सुबह शाम का वॉकिंग बहुत जरूरी है, और संतुलित डाइट लेना है
0: जी।
1: अपने आप को, खुराक तो कम हो ही जाती है इस उम्र तक आते आते
0: जी, जी,
1: है ना, बहुत सी चीजें भूलने भी लगता है आदमी, तो अपने आप माइंड को शार्प रखने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल अपने आप को पहले जैसे था, मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। मेरे पास 24 घंटे पहले भी कम होते थे और आज भी कम है।
0: क्या रूटीन रहती है आप, कैसे दिन आरंभ कर, क्या भोजन लेते?
1: मेरा देखिए, जैसे सप्ताह में 6 दिन का तो रहता ही है कि पोते को स्कूल छोड़ करके आना, वो IIT में ही स्कूल है तो उसको वहाँ छोड़ जाता हूँ मैं जब सुबह, उसकी वजह से ही मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ये बहुत मेरे लिए फायदे की चीज़।
0: कितने बजे उठते हैं
1: सुबह? वैसे तो मुझे नींद ही 4 घंटे की केवल रह गई है, लेकिन फिर भी मैं 5:30 या 6 बजे तक बिस्तर छोड़, और उसके बाद जब मैं उसको लेकर के जाता हूँ IIT में, स्कूल छोड़ने के बाद मैं फिर IIT के जो ग्राउंड है वहाँ पर मैं चक्कर लगाता हूँ, घूमता हूँ, टहलता हूँ, अपने जो मेरा शौक है गाने का वो भी कई बार रिकॉर्ड करता हूँ, रील्स बनाने का शौक है वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: 1.5 घंटे बाद मैं 9 बजे तक वापस आता हूँ
0: जी जी,
1: और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद थोड़ा सा नहाने धोने के बाद अपने पूजा अर्चना की, और फिर जब तक फिर थोड़ा और काम वाम निपटाए जो घर के होते हैं, और उसके बाद फिर वो 1:30 बज जाता है, उसको लेकर जाना होता है, 2:30 बजे तक आए, फिर खाना खाया
0: जी,
1: थोड़ा आराम कर लिया, सो गए, 5:30 5:30 बजे उठे, फिर उसके बाद चाय पी, और फिर उसके बाद शाम का इवनिंग वॉक है या कहीं मिलने जाना है, कुछ सामान लाना है
0: जी। तो ये हो गया फिजिकल पार्ट, कहीं ना कहीं इससे भी मन पे प्रभाव पड़ता है, जैसे आपने कहा कि एक स्वस्थ शरीर पे स्वस्थ दिमाग का वास होता है।
1: बिल्कुल।
0: पर एक स्वस्थ शरीर एक अच्छी स्वस्थ आत्मा के लिए भी हेल्पफुल होता है।
1: बिल्कुल।
0: आजकल एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ रहा है, सरकार भी इस पे कई चीजों पे ध्यान दे रही है, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत प्रकार की जागरूकता होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना या जागरूक रहना, या जैसे आपने मेमोरी की बात की, या एक सामाजिक रूप से भी एक्टिव रहना, इसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस की जा सकती है?
1: मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें यही है कि हमें जो डेली रूटीन है हमारा, उसके अंदर जैसे हमारा शौक है मान लीजिए अखबार पढ़ने का या TV पर न्यूज़ देखने का है
0: जी,
1: गजेट्स नए नए आ रहे हैं, जितना भी पॉसिबल हो हमें उसके अंदर अपने आप को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं आती तो बेटे से पूछें, बेटे से को नहीं पता तो पोते से पूछें, जिससे भी पूछ सकते हैं,
0: सीखने की
1: अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो मानसिक विकास भी अपने होता रहता है, उतना नहीं होता जितना नई जनरेशन का होता है, लेकिन हो होता तो है।
0: जैसे गीत गाते हैं उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है मन पे?
1: बहुत ज्यादा, बहुत सुकून मिलता है।
0: अच्छा,
1: इससे ज्यादा तो कोई चीज है ही नहीं। म्यूजिक इज माई लाइफ।
0: और आध्यात्मिकता भी एक बड़ा सब्जेक्ट है अभी के समय एक्सप्लोर करने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: आध्यात्मिक होने के लिए और आध्यात्मिकता से मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते?
1: देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी तो हमारा जो रोजाना पूजा हम करते हैं, नहा धो करके, वो तो हम करते हैं
0: जी।
1: उसके अलावा हमें अगर सुबह को संभव नहीं है तो शाम को, और शाम को संभव नहीं है तो सुबह मंदिर या जो भी हमारा पूजा का माध्यम है किसी भी व्यक्ति का
0: जी,
1: तो वो उसको करना जरूर चाहिए। चाहे वो नमाज पढ़ने की क्रिया हो, चर्च में जाने की क्रिया हो, या पूजा पद्धति हमारी
0: जो आस्था है,
1: जिसकी भी जो आस्था है, वो उस काम को धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: धर्म हमें जागरूक रखता है, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का भी बोध कराता है। अगर मान लीजिए मेरा ये शौक नहीं होता धर्म के प्रति, या मैं यहाँ कैसे आ पाता? मैं जो आज मधुबन स्टूडियो में बैठा हूँ उसका श्रेय जो है वो नारसन जी भले ही मना करें लेकिन बाबा जी को तो जाता ही है नहीं? ब्रह्मा बाबा जी को जाता है, इन्हीं का लिखा हुआ गीत भी वो ब्रह्मा बाबा जी के लिए ही समर्पित है।
0: ईश्वरीय प्रेरणा के लिए एक धार्मिक स्वभाव
1: होना जरूरी है, वो भी बहुत
0: और
1: जी।
0: बच्चों के जीवन में ऐसा कुछ उपयोग दिखते हैं आध्यात्मिकता का, धार्मिक?
1: हाँ, बच्चे जब देखिए माँ बाप को देखते हैं करते हुए, व्रत रखते हुए देखते हैं, या पूजा पाठ करते हैं दिवाली पे, दशहरा पे, या होली पे, या किसी भी त्योहार पे जब हमारे बच्चे देखते हैं
0: जी,
1: तो वो उसको उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं और उनके काम आता है जीवन में।
0: तो दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी, आप रुड़की उत्तराखंड
1: जी, जी
0: रुड़की उत्तराखंड से हमारे स्टूडियो पर पधारे हैं और उनके जीवन यात्रा के कुछ छोटे छोटे चीज़ों को, बातों को हमने सेलिब्रेट किया आज, समझा और जाना और कैसे इन चीज़ों को अपनाकर हमारे भी जीवन को हम विशेष बना सकते हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो उनके जीवन के हैं और वो हम अपने जीवन में उन चीज़ों से धोखा ना खाएं और उसको धारण करके उसका लाभ ले सकें, इन सभी चीज़ों के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन किया उनके जीवन पर। आज ऐसे एक विशेष शख्सियत जो हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए थे और अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभव लेकिन बड़ी बड़े प्रभाव उसके हमारे जीवन में हो सकते हैं, इन चीज़ों को आपने सुना होगा, जरूर कुछ बातों को नोट किया होगा। सलाम करते हैं आज उनको इस मंच से, सलामी ज़िंदगी के और रेडियो मधुबन से, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: साथियों और श्रोताओं, आज फिर से एक बार आपका होस्ट और दोस्त, बट इस बार हम लोग रिमोट से नहीं, स्टूडियोज में हैं, और स्टूडियोज से आपके साथ हूं मैं, आपका होस्ट शरद। तो आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून, और जुनून आप जानते ही हैं, आप सुनते हैं हर बार, हर शनिवार शाम 6 बजे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 पर। और इस बार है दो शानदार गेस्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में, और स्टूडियोज आपको तो पता ही है आबू रोड पे है ना, मधुबन के कैंपस में हम बैठे हैं हमारे स्टूडियोज में, और हम आज स्वागत कर रहे हैं हमारे दो गेस्ट, दोनों ही यंग हैं, हमारे बिजली चैलेंज साथी हैं, कोमल और प्रतिभा। तो प्रतिभा जी, आप दोनों ही का हमारे स्टूडियोज में स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपके बारे में, मैंने ये तो बताया है कि आप विजुअली चैलेंज हैं, हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी डिसेबिलिटी जो है वो क्या है, अभी उसकी क्या स्थिति है। पहले मैं कोमल आपसे जानना चाहूँगा।
1: यस, तो मेरी डिसेबिलिटी है कि मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ
0: जी,
1: और मेरी माँ भी एक पार्शल ब्लाइंड है, जिसकी वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी आई।
0: जी। हाँ, तो ये जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हुआ है। जी। और प्रतिभा जी, आपकी क्या कहानी है डिसेबिलिटी एक्वायर करने की?
2: सर, मेरा बाय बर्थ ही है, मुझे ग्लूकोमा है, मैं भी पार्शली ब्लाइंड हूँ।
0: जी। बहुत ही बढ़िया। तो डेफिनेटली आपने अपनी स्टडीज तो पूरी की होंगी है ना, तो थोड़ा सा आपका एक जुनून है जो मैं श्रोताओं को थोड़ी देर बाद बताऊंगा है ना, हालांकि कार्यक्रम का नाम जुनून है, लेकिन श्रोताओं को थोड़ा वेट तो करना चाहिए ना, इतना आसानी से हम नहीं बताएंगे चीजें। तो श्रोताओं, पहले हम इनके बारे में जानना चाहेंगे, तो इन दोनों ही हमारी बेहतरीन गेस्ट ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। तो कोमल, आपने अपना स्टडीज कैसे किया डिसेबिलिटी के साथ में?
1: मैं जब 5-6 साल की थी, तब मैं पालघर जिले में से बोईसर शहर में पढ़ती थी
0: जी।
1: तो 2 साल मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मुझे दिखता नहीं है
0: जी।
1: तो 2 साल के बाद जब बोर्ड पे से लिखना होता है तो वो मैं लिख नहीं पाती थी, तो मेरे टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये लिख नहीं पाती, तो आप इसका चेकअप कर लो
0: जी।
1: तो उन्होंने चेकअप किया तो पता चला कि ये विजुअली चैलेंज्ड है करके
0: जी।
1: तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे दादर में, जो हमारी गर्ल्स स्कूल है श्रीमती कमला मेहता दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें मुझे डाला। तो मैं 2006 में मैंने एडमिशन लिया स्कूल में
0: जी।
1: तब से मैंने 12th तक उधर पढ़ाई की है
0: जी।
1: तो 12th के बाद मैं बाहर आ गई
0: जी।
1: तो 12-13 साल मैंने हॉस्टल में निकाले
0: जी।
1: के बाद मैंने पढ़ाई, मैंने फर्स्ट मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी से की है, ऑनलाइन ही सब उस पर था जब कोरोना चल रहा था तभी
0: जी।
1: मैं मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है, अंधेरी में है
0: जी,
1: ऐसी मेरी पढ़ाई अब तक हुई है।
0: पर आप अभी अंधेरी रहते हैं?
1: नहीं नहीं, मैं बोईसर हूँ
0: जी। मुंबई का सबअर्बन एरिया है ये जी। तो हमारे साथ प्रतिभा जी भी हैं, तो प्रतिभा जी आप थोड़ा सा बताएं ना अपनी अध्ययन की यात्रा के बारे में, आपने कैसे पढ़ाई की और यहाँ तक कैसे पहुँचे?
2: जी सर, मेरा पढ़ाई तो नॉर्मल स्कूल में हुआ है, मैं नांदेड़ जिले से एक छोटे से गांव की हूँ बेलगुजरी, ये गांव में मेरा पढ़ाई हुआ है। तो मेरा दिखने का प्रॉब्लम है वो माता पिता को पता ही नहीं चला, और उनको इतना भी पता नहीं था कि स्पेशल मतलब हमारे लिए स्पेशल स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ डालना होता है, वो सब पता नहीं था। तो मेरा पूरा पढ़ाई का जर्नी नॉर्मल स्कूल में ही हुआ है
0: जी।
2: तो मुझे बोर्ड के ऊपर का दिखता नहीं था, फिर भी मैं सुन सुन के वो पूरा किया है, तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ ऐसे
0: जी। आशुतोष, वैसे पढ़ाई तो हमारी नॉर्मल स्कूल या जिसे कहते हैं हम सामान्य मेन स्ट्रीम स्कूल, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में ही होनी चाहिए, और जहाँ पर चुनौती किसी दृष्टिबाधित या किसी दिव्यांग व्यक्ति को विशेष तरह की आ रही है तो उसके लिए विशेष सेशंस या क्लासेस अलग से लगाई जानी चाहिए, ये प्रावधान है हमारे देश के कानून का। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी ना होने के कारण वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब समय आ गया है एक कुछ इंतजार के बाद जानने का हमारे दोनों ही गेस्ट के जुनून का, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है जुनून और श्रोता सोच रहे होंगे क्या पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है, आइए ना जुनून की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल श्रोता, थोड़ा धैर्य तो रखिए, मैंने हर बार कहा है आप जुड़े रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर जो आप सुनते हैं 107.8 FM पर हमारे आबू रोड और माउंट आबू की वादियों से, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। तो जुनून है श्रोताओं मलखम का। मलखम हमारे देश का एक इंडिजिनस गेम, इसने हजारों सालों तक हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, सलीका सिखाया, और मलखम अब जगह बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन मलखम के साथ खास बात है इन दो जुनूनी लड़कियों और कहे कि हमारी बेटियां, ये इस तक कैसे पहुंची हैं, आइए ना उनके बारे में जानते हैं। तो मलखम के बारे में कोमल हम जानना चाहेंगे, मलखम क्या है श्रोताओं को थोड़ा बताइए ना जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं जाना है।
1: बेसिकली मलखम एक एज अ स्पोर्ट्स करके जाना जाता है अभी
0: जी,
1: और मेरी मलखम से दोस्ती मैं कहूँगी कैसे हो गई। तो बचपन से ही जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया, एक साल हो गया, तो हमारे स्कूल में एक पीटी का क्लास होता है
0: जी।
1: तो उस पीटी में हमें मलखम भी इंट्रोड्यूस कराया गया था
0: जी।
1: जब मैं 6 साल की थी तब
0: जी।
1: तो हमारे जो मतलब श्री समर्थ व्यायाम मंदिर से सर आते थे, देशपांडे सर
0: जी।
1: तो वो हमें सुबह का 1 घंटा क्लासेस देते थे
0: जी।
1: तो उस क्लासेस में मुझे मतलब गेम्स तो हम ऐसे खेलते भी थे, भागना दौड़ना या लपन छुपाई खेलना ऐसे, पर ये मलखम एक अलग ही चीज है
0: जी।
1: तो ऐसे हमने कभी देखा नहीं था कि रस्सी पे चढ़ के भी हम कुछ कर सकते हैं
0: जी।
1: तो
0: जी।
1: ये मुझे अलग लगा, और मेरे में तब भी ऐसी क्षमता थी कि मैं ऐसे भागती दौड़ती बच्ची थी
0: जी।
1: तो मुझे ऐसे पसंद था। तो सर ने मैडम ने वो मेरा जुनून देखा और मुझे वो सिखाया
0: जी।
1: तो अभी मैं 12-13 मुझे साल हो गए कि मैं इस क्षेत्र में मेरा जो योगदान है मैं देती हूँ
0: जी। जी मलखम के बारे में आप क्या जानते हैं प्रतिभा जी, आप कैसे, देखिए हम ये रेडियो माध्यम के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो मलखम जब कोई खेलता है तो वहां पर क्या दृश्य बन रहा होता है, हमारे श्रोताएं भी अभी हमारी तरह विजुअली चैलेंज है क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं, हमें उनको इमेजिनेट करवाना है। तो मलखम कैसे खेला जाता है, थोड़ा उसके नियम भी बताइए, कुछ और बताइए मलखम के बारे में प्रतिभा जी।
2: जी सर, मलखम एक खेल है
0: जी।
2: तो मलखम यानी एक लकड़ी होती है, लकड़ी जमीन के ऊपर 6-7 फुट ऐसे एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर अलग अलग तरह के योगा के आसन हम लोग जैसे जमीन पे करते हैं वैसे सेम आसन वो लकड़ी पे बैठ के खड़े रह के और सब ऐसे आसन कर सकते हैं। उनका स्पेशल ऐसा यूनिफॉर्म वगैरह ऐसा नहीं होता है, एक शॉर्ट्स पहनना होता है और एक टी शर्ट, उसके ऊपर लड़कियां करते हैं, और लड़के लोग करते हैं तो सिर्फ वो शॉर्ट्स पहनते हैं और वो कर सकते हैं। तो एक मलखम करने से उनको मतलब सबको इतनी एबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन, एक स्ट्रेंथ भी आ जाती है, और इस मलखम करने से और बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ताकि तुम लोग कौन से भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, ये मलखम से मिलता है
0: जी। मलखम के 2 वेरिएंट बताए जाते हैं खेलने के, 2 तरीके, एक रोप और एक पोल, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं कोमल आप?
1: बेसिकली रोप मलखम जो होता है वो कॉटन का बना होता है
0: जी,
1: तो वो एक रस्सी जैसे रोप हम जैसे बोलते हैं ना वो होता है
0: जी।
1: और जैसे अपने प्रतिभा ने बोला है कि पोल मलखम जो एक हमारा वुडन का खाम रहता है
0: जी,
1: वो 6-8 फुट का, हाँ 8 फुट तक रहता है वो
0: जी।
1: तो उस पे सब हम योगा वगैरह करते हैं
0: जी,
1: तो ये डिफरेंस है
0: जी। जी हाँ, जो एक खंबा है उसके ऊपर फिर हम अपनी अलग तरह की पोजीशन,
1: उसमें भी क्या होता है कि खंबे में हम जब करते तो एक टॉप लेवल हमारा जैसा शरीर होता है ऊपर से लेके नीचे तक सर है, तो हम उसे एक बोंडा मतलब बोंड कहते हैं, जो हमारा गले तक का ये है उसको हम खाच कहते हैं, नीचे की पूरी बॉडी। तो टॉप पे रह के अलग अलग योगा होते हैं, बीच में रह के अलग अलग होता है, और नीचे एक ऐसे 3 लेवल होते हैं
0: जी। जी जी, निश्चित रूप से एक एडवेंचरस खेल है, और निश्चित ही इसमें करने के लिए हमें एक स्ट्रेंथ और या कहेंगे शक्ति चाहिए होती है। तो आपने जो शुरुआत कोमल जी ने अपने बारे में बताया कि वो खेलते कूदते थे, और प्रतिभा जी आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई इस मलखम के साथ में?
2: सर मैं शिवाजी पार्क में एक बार रनिंग के लिए गई थी, वहाँ पे मुझे ऐसे पोल वगैरह दिखाई दिए थे और मेरी एक रूम पार्टनर वगैरह थी, वो लोग ऐसे बात करते थे रोप मल्लखाम और डेमोस्ट्रेशन वगैरह ऐसे बात करते थे, और मैं तो गांव से बिलोंग करती थी तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था ये सब चीज के बारे में। तो मैं ग्राउंड पे गई थी तभी मुझे पता चला, तो मैं जाके वहाँ पे इंक्वायरी की और देशपांडे सर ने मुझे बोला कि तू आ सकती है। तो सर ने मुझे एक शॉर्ट्स दी थी 2 साल पहले, अभी तो वो शॉर्ट्स भी मेरे पास है और वो शॉर्ट्स से मैं अभी तक कर रही हूँ। तो मतलब ये है कि सर ने बहुत एफर्ट्स लेते हैं हमारे लिए, मतलब हम लोग को दिखता नहीं फिर भी लोग बोलते कि हाँ दिखता नहीं तो मैं इतना कठिन आसन उसको कैसे सिखाऊ वगैरह ऐसे होता है, बट सर ने बहुत दिल पे लेके बहुत अच्छे से सिखाए है। तो मैंने तभी से जैसे जैसे मेरा पढ़ाई का एग्जाम का टाइम आता है तभी मैं थोड़ा छुट्टी वगैरह ले लेके और डेली आके मैं थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी। तो तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है कि पोल मलखाम और रोप मलखाम मैं करती हूँ।
0: जैसा कोमल ने बताया है कि निश्चित रूप से एक इसमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता है और थोड़ा सा ये कठिन खेल माना जाता है, और मुझे लगता है आप दोनों यूनिक साथी हैं, विजुअली चैलेंज साथी हैं जो शायद इस खेल को अपने जीवन में अपना रहे हैं। आगे की दृष्टि में मुझे तो अभी उत्तर भारत में तो मेरा ऐसा संपर्क नहीं हुआ किसी विजुअली चैलेंज से, लेकिन हाँ हो सकता है हमारे और भी साथी कुछ कर रहे हो। हालांकि खेलों की दृष्टि से अभी देखा जाए कि ओलंपिक में पिछले सालों में विजुअली चैलेंज व्यक्ति ने अच्छा परफॉर्म किया है, और चूंकि आप दोनों भी एक खिलाड़ी हैं और आप एक इंडिजिनस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, खेल का भविष्य भी आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर आगे लेके जाएगा, आपकी भी खेल की जर्नी हो सकता है शुरू हो जाए आगे। लेकिन इस अभी जो समय है, मुझे प्री इस बातचीत से पहले कुछ बातचीत जब हमारी हो रही थी तो उसमें मालूम चला कि आप लोग मुंबई के उस इलाके में रह रहे हैं, दूर के इलाके में रह रहे हैं, और जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो दादर में है, वो जगह आपका स्कूल है ना, कमला मेहता आपके स्कूल का नाम मुझे बताएंगे? कोमल मिस कर गया,
1: कमला मेहता दादर स्कूल फॉर।
0: यस यस यस। तो आपका जो स्कूल बताया आपने दादर में, तो इस स्कूल तक की लंबी यात्रा सुबह और वो भी मुंबई के ट्रैफिक में आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने रूटीन में इसको जारी रखे हुए? कोमल मैं आपसे
1: जब मैं स्कूल में थी तब तो सब ऐसे सुलभ ही था कि स्कूल से लेने जाने के लिए बस थी, आने के लिए बस थी, जैसे कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर जब मैंने स्कूल छोड़ा और जब खुद पे ट्रैवलिंग की बात आई तो सोचा कि अभी कैसे किया जाए, तो क्योंकि मैं बोईसर में रहती हूँ और बोईसर और दादर ट्रेन से 2 घंटा लगता है, 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में, तो तब मेरे ऐसे मतलब मैं ट्रैवलिंग करते करते मुझे थोड़ा सा समय लगा सब समझने में करने में, तो तब से मैंने मतलब एक जुनून तो था कि बाबा करना ही है, प्रैक्टिस तो जारी रखनी ही है, बीच में गैप नहीं आना देना है। तो मैं और एक मेरी फ्रेंड थी वो भी पार्शियली ब्लाइंड है, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं, तो उस तरह से मेरी ट्रैवलिंग का सफर चालू हुआ घर से शिवाजी पार्क तक का।
0: जी हाँ, मुंबई एक विजुअली चैलेंज व्यक्तियों के लिए कंसेप्ट शहर माना जाता है, और वहाँ की भगम भग वाली जिंदगी में हमें कोई इधर से टक्कर दे रहा है, कोई उधर से टक्कर दे रहा है, और अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो और भी मुश्किल है। तो आप अपनी मोबिलिटी कैसे मैनेज करते हैं प्रतिभा जी?
2: सर मैं तो थोड़ा पार्शियली हूँ तो इतना दिक्कत आता नहीं है, फिर भी भीड़ में होती है, तो बॉम्बे के लोग बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए, तो कितना भी भीड़ रहने दो कितना भी ये होने दो हम लोग का बहुत ख्याल रखते है, तो बॉम्बे सिटी ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत अच्छी सिटी है।
0: अच्छा, चाहे लोकल की बात हो चाहे बीएसटीसी की बात हो,
2: कहीं पर भी सर कहीं
0: जी,
2: पर भी।
0: जी,
1: मतलब तो, थोड़ी सी दिक्कत आती है पर इतनी दिक्कत नहीं आती कि जैसे दूसरे शहर में हम देखते हैं, तो वैसी दिक्कत नहीं आती।
0: जी जी जी, नहीं मुंबई वैसे भी 24 आवर चलता हुआ शहर है, और आपके जुनून में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और मुंबई के बारे में तो कहते हैं ना कि जुनूनियों का शहर है, तो कुछ जो कुछ ना कुछ जीवन में हासिल करने आए हैं। तो आप भी मलखम को लेकर अपने इलाके नांदेड़, और आपने बताया कोमल का बोईसर, यस। तो बोईसर और नांदेड़ से आप दोनों आके और मुंबई में अपनी जगह बना रहे हैं, वो भी दादर जो कि मुझे लगता है शहर के कई बीचों बीच है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मलखम के बारे में कुछ यूनिक बातें कोमल बताइए ना। ये जुनून, देखिए क्या है ना कि एक शौक होता है और एक जुनून होता है, तो जुनून तक की यात्रा जो है ना वो कैसे हो गई कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे ना, अब तो करना ही है, और इसमें आप क्या आगे प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नया करने की, एज अ ट्रेनर और विजिबली चैनल इन लोगों के साथ जुड़ने की क्या योजना है?
1: स्कूल में थी तो ऐसे मतलब मुझे ऐसे फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता था, मैं बहुत बार महीने में एक दो बार तो बीमार ही पड़ जाती थी
0: जी, जी।
1: तो जब मैंने क्लास शुरू की तो सर ने थोड़ा थोड़ा हमें बताना शुरू किया कि मतलब मलखम के बारे में, कि आप जब करोगे तो थोड़ा सा जो हमारी फिजिकल जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब जब बुखार आता था खांसी सर्दी वो लगे इन्फेक्शन वगैरह पकड़ जाते थे वो कम हो जाएगी, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब तब ऐसा होता था कि पढ़ाई में भी मैं तो इतनी अच्छी नहीं थी, एवरेज से भी थोड़ा सा कम ही थी, तो फोकस इतना नहीं था। तो जब मैंने मलखम शुरू किया तब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट बढ़ने लगा मेरे में
0: जी।
1: तो कभी मेरे 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, कभी 80 से ऊपर मुझे परसेंटेज आने लगे
0: जी।
1: तो ऐसा मलखम का मेरा एक अच्छा सा अच्छा अनुभव अभी तक मेरे साथ है
0: जी। आपने सीधा बदलाव अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडीज में देखा
1: में और हेल्थ में देखा,
0: हेल्थ में देखा आपने, तो हेल्थ में क्या बदलाव आपने देखे? मतलब मैं देखता हूँ मलखम एक विजुअली चैलेंज व्यक्ति होने के नाते मलखम वाले जो व्यक्ति होंगे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, या बॉडी पे चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ ऐसे बदलाव आते हैं?
1: हाँ बदलाव तो आते हैं बहुत, मतलब मुझे पहले ना ऐसे बोलने भी दिक्कत आती थी
0: जी,
1: स्टेज
0: जी,
1: का फियर जो होता है
0: जी,
1: कैमरे के सामने बोलना या माइक पे बोलना
0: जी,
1: तो वो बहुत मुझे डर लगता था
0: जी,
1: पर अभी
0: जी,
1: जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या रेडियो सेशन पे बात कर रही हूँ तो उतना मुझे डर नहीं है मलखम की वजह से है
0: जी। जी प्रतिभा जी आप बताइए ना आपके जुनून की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जैसा बताया कि आप लोग सुबह सुबह मुंबई में कितने बजे उठते हैं प्रतिभा जी सुबह अपने अकेडमी पहुंचने के लिए, आप स्कूल पहुंचने के लिए जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है?
2: 4 o'clock।
0: और फिर उसके बाद आप वहाँ पर एक घंटे में पहुंचते हैं?
2: 4 o'clock पे उठती हूँ, उसके बाद मैंने फ्रेश होके 5 बजे ट्रेन पकड़ती हूँ, 6:30 बजे तक ग्राउंड पे पहुंच जाती हूँ श्री समर्थ व्यायाम मंदिर
0: जी।
2: वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा खुद का एक राउंड रनिंग वगैरह करना होता है, बाद में सर 7 to 8 सर क्लास ले लेते हैं
0: जी। जी जी कोमल आप भी ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं सुबह?
1: हाँ मैं तो 3:30 बजे मुझे उठना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो सब खुद का टिफिन वगैरह बनाना, मतलब मैं कुक भी करती हूँ, मतलब खुद का खाना बनाना भी मुझे पसंद है
0: जी, जी।
1: तो खाना बना के लेके जाना और 7 बजे के पहले या 7 बजे तक पहुँचना, 7 से 8 जैसे प्रतिभा ने बोला सर देशपांडे सर हमारा क्लास लेते
0: जी।
1: तो हम जब क्लास में जाते हैं तब ऐसा नहीं कि हमारा अलग और जो नॉर्मल बच्चे है उनका अलग, सबका साथ में लेते, क्योंकि पता चले कि हम भी कैसे करते हैं या सर भी हमें कैसे सिखाते हैं। तो ये अभी हम जब क्लास में जाते हैं तब लड़के लोग को पता चलता है कि हमको क्या डिफिकल्टीज आ सकती है या हम क्या फेस करते हैं, तो ये सर के वजह से पता चलता है उधर
0: जी। और भी कुछ दिव्यांग साथी हैं आपके साथ में जो मलखम कर रहे हैं वहाँ पर अभी?
1: हाँ ऐसे बहुत सारे एक्चुअली बच्चियाँ है, पर क्या होता है कि वही कि डेली आना ये किसी को पॉसिबल नहीं होता, तो जिसको जैसा वक्त मिले वो वैसे प्रैक्टिस को आता है, प्रैक्टिस करके चला जाता है, पर है बहुत सारी लड़कियां
0: जी। जी प्रतिभा जी ये जो हम बात कर रहे हैं फिर से हम उसी बात पे आएंगे कि जुनून एक बात है और जुनून की ही बात हमको देखनी है, तो आप मलखम के साथ में अपना भविष्य क्या देखते हैं, मतलब आप इसको एज अ करियर अपनाना चाहेंगे या सोचते हैं कि नहीं ठीक है हम इसको अपने फिटनेस के लिए अपने जीवन का पार्ट रखेंगे और जो हमसे सीखना चाहेगा वो उसको सिखाएंगे, आपका क्या प्लान है?
2: जी सर मलखम ये एक स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स या एज अ फिटनेस यहाँ तक ही सीमित रखना नहीं है, तो मलखम को आगे मतलब आगे जैसे एशियन गेम होता है वो सब गेम में भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बाकी खेलों जैसा वो खेल को भी प्रावीण्य मिलेगा तो हम लोग का भी भविष्य उसमें से बन जाएगा। इसके लिए मलखम एक बहुत अच्छा खेल है वो खेल को मान्यता मिलनी चाहिए।
0: जी आपने स्टूडियो से सरकार के सामने एक मांग भी रख दी है।
2: जी हाँ सर।
0: जी निश्चित रूप से अगर हमारे नीति निर्माता सुन रहे हैं जो खेलों को देखते हैं या हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के जो माननीय मंत्री जी हैं, निश्चित रूप तक आपकी बात वहां तक पहुंचे और वो भी इसको लेकर कुछ प्रयास करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।
2: धन्यवाद सर। इसके लिए सर भी हमारे अलग अलग देशों में जाके ये पोल मलखम रोप मलखम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि ऐसे माना जाता है कि जहाँ जहाँ खेल होता है, मतलब ऐसे खेल बहुत जगह पे जो खेल खेला जाता है उसको फर्स्ट मान्यता मिलती है, ऐसे बहुत जगह होता है मतलब सुना है। तो इसके लिए ये स्पोर्ट्स को और ये पोल मलखम को बहुत जगह हमारे सर बहुत देशों में जाके उसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि सबको पता चले, जल्दी वो पोल मलखम को मान्यता मिले।
0: जी तो कोमल जी, आप कौन कौन से आसन करते हैं सुबह 7 बजे जब पहुंच जाते हैं वहां पर, तो रोप मलखम के साथ में किस किस प्रकार से मूवमेंट्स होते हैं, मूव्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा और बताएं ना हमारे श्रोताओं को। हाँ,
1: तो हम हमारा जब क्लास शुरू होने से पहले हम वार्म अप करते हैं, जैसे प्रतिभा ने बोला रनिंग तो कंपलसरी करना ही होता है। रनिंग के बाद हमारा एक स्पेसिफिकली वार्म अप होता है, तो उस वार्म अप में भी मतलब हाथ के वेरिएशंस, लोअर बॉडी के वेरिएशंस वगैरह ये सब डिसाइड होते हैं, तो वो हमें कंपलसरी करना ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि हम मलखम करने से पहले हमारी बॉडी जो वार्म हो जाती है, तो वो करने में इजी हो जाता है।
0: जी।
1: तो वार्म अप नहीं करेंगे और सीधा सा रोप करने लगेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है।
0: जी।
1: ऐसा वो होता है, तो वैसे शुरुआत करते हैं हम। और रोप में जब करते हैं तब अभी मतलब मेरे लाइफ के हिसाब से देखती हूँ, तो मैं मेरे फिटनेस के हिसाब से रोप को देखती हूँ। वो तो अच्छी बात है कि वो मलखम को आगे ले जाना भी बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचना। जैसे सर ने, सर हमारे बहुत आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में भी बहुत जगहों पे हमें लेके जाते हैं। जैसे बेसिकली मैं बहुत सर के साथ घूमी हूँ मलखम के लिए बचपन से ही, तो मुझे मैंने सर को बचपन से ही देखा है, तो कैसे वो दूसरों को सिखाते और मुझे भी मतलब मैं जितना सीखी हूँ तो वो मैं मेरे ब्लाइंड जो स्टूडेंट है उनको सिखाने में भी जाती हूँ। और अभी क्या है, अभी हमारे स्कूल में मतलब मैं जहाँ पढ़ी हूँ उधर भी हमारे मंगलवार और गुरुवार मलखम के क्लासेस होते हैं, तो हमारे जो दूसरे ताई है नीता ताई ताटके, तो उनके साथ मैं 7:30 से 8:30 तक मलखम का क्लास देने जाती हूँ।
0: जी जी जी, निश्चित रूप से आपने अपना रूटीन में तो शामिल किया है, और आपने कुछ ऐसी बातें भी छेड़ी हैं कि विजुअली चैलेंज व्यक्तियों के साथ निश्चित रूप से एक चैलेंज है कि वो उनको कुछ भी जीवन में अपना अपनाना है या जुनून बनाना है उसमें एक उनको संघर्ष की जरूरत है। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग बात बीच में रखी कि आप अपना खाना भी खुद पकाते हैं, तो जुनून में तो आपको पता है इस पर बहुत सारी बातें हम लोग भी आने वाले दिनों में बात करना चाहते हैं कि विजुअली चैलेंज व्यक्ति का खाना बनाने का मतलब है कि आग के साथ खेलना है ना, तो वो भी एक चैलेंज है और चुनौती है, तो उसको भी करते हैं आप। खैर उस पर हम कभी फिर कभी बात करेंगे, और कितनी मात्रा में हमें मसाला डालना है, कितनी मात्रा में हमें डालना है, तेल पक गया कि नहीं पक गया है, चीज़ें तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर इस रसोई पर तो भी हम जाएंगे, और एक ब्लाइंडनेस के साथ रसोई में घुसने की बात है और उससे सक्सेसफुली कुछ सुगंधित बना के बाहर लाने की बात है, तो इस यात्रा पर कभी और बातचीत होगी किसी और जुनून के शो में। लेकिन अभी तो हम बात हमारे जुनून की कर रहे हैं जो कि मलखम से संबंधित है, और मलखम में हम ये देख रहे हैं कि हमारी कलाइयाँ और हमारे कंधे कितने मजबूत हैं, राइट। तो प्रतिभा जी मुझे बताएं ना थोड़ा सा कि इस 7 से 8 का जो समय है, उस समय क्या हो रहा होता है मतलब मैदान में? मुझे लगता है कुछ लोग पसीना बहा रहे होते हैं, कुछ लोग इधर कसरत कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ रस्तों के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, तो आप जिस रोप के साथ प्रयास कर रहे होते हैं मतलब कुछ स्पेसिफिकली एक ब्लाइंड व्यक्ति को और एक सामान्य व्यक्ति को कुछ अलग व्यवस्थाएं करने की जरूरत पड़ती है या खेल के नियम वही रहते हैं?
2: नहीं सर, सबके लिए सेम नियम होते हैं और सबका क्लास साथ में लिया जाते हैं, और सुबह जब क्लास स्टार्ट होता है 7 to 8 तभी माहौल इतना अच्छा रहता है वहाँ पे, बहुत ऐसा दिल लगता है, और सुबह कभी 7 बजते ऐसा इसका इंतजार कर लेते हैं हम लोग, इतना अच्छा लगता है, कभी उठने का कंटाला नहीं आता, ऐसे डेली भी जाना बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, और जाने के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, रोज एक नया आसन सीखने के लिए मिलता है, रोज नया एक्टिविटी, रोज नए लोग, ऐसे सब सीखने के लिए मिलता है वहाँ पे, बहुत विजिटर भी आते हैं मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वहाँ जाने के बाद
0: जी। तो हम लोग पिछले दिनों, कोमल जी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, तो हमसे किसी ने पूछा कि ऐसे कौन से खेल हैं जो ब्लाइंड व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति साथ में खेल सकता है, तो मैंने कहा चेस। तो चेस ऐसा खेल है जो हम सामान्य रूप से दोनों अक्रॉस खेल सकते हैं, और मजा तो तब आता है जब कोई ब्लाइंड व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को चेस में हरा दे। तो उस दिन वो मतलब कुछ ये टाइप मोमेंट होता है उसमें ना। तो मलखम भी एक ऐसा खेल है जो मुझे लगता है अब आपसे बात करने के बाद समझ में आया कि कोई अलग नियम नहीं है, और मलखम में भी एक सामान्य व्यक्ति और एक नेत्रहीन व्यक्ति साथ में इस खेल को खेल सकते हैं, ये बात मुझे समझ में आई। कोमल जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे और कौन से खेल आपको समझ में आते हैं?
1: जैसे बोला आपने खेल सकते हैं, मलखम भी वैसे तो कोई मतलब हम अपने हमने अभी ऐसे कोई टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं खेली है, मतलब मुझे वो टूर्नामेंट्स करने में इतना कोई रस नहीं है, मुझे मेरे सिर्फ हेल्थ की वजह से मैं ये करती हूँ। और ऐसे कौन से गेम है
0: जी? खैर, लेकिन मैं इस पर आता हूँ कि ब्लाइंड व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना। तो मोबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब आप मोबिलिटी के साथ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे स्टेप्स आते हैं या आपके साथ बहुत सारी बाधाएं बीच में आती हैं, ठोकरें आती हैं, हर्डल्स आते हैं। तो एक मलखम ने आपके जीवन में कुछ क्या बदलाव किया है जिससे आपकी मोबिलिटी अच्छी हुई है, खासतौर पर बस से चढ़ना, बस को उतरना, ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन से उतरना,
1: मतलब मलखम के वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इंसान में कॉन्फिडेंस होना वो तो कुछ भी कर सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो उसके वजह से क्या है, रस्ते पे चलना, ट्रेन पे ट्रेवल करना, उतरना, बस से चढ़ना उतरना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाबा नहीं डर लगता। मतलब मलखम एक ऐसा है कि उसमें स्ट्रेंथ तो बहुत लगती है, ताकत बहुत लगती है, फोकस भी बहुत होना पड़ता है, जब मतलब पैर अच्छे से नहीं लगा तो गिर भी सकते हैं, ऐसा भी डर होता है, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस तो लेवल हो जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे, मुझे डेली लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैवलिंग में या किस में भी।
0: प्रतिभा जी आप तो कैसे अपनी मोबिलिटी और आपका जो डेली लाइफ है खास तौर पे, फिर आप दिन में क्या कर रहे होते हैं, आप लोग अपने कॉलेज जा रहे होते हैं या दिन में कुछ अपना अध्ययन किस प्रकार से कर रहे होते हैं?
2: जी सर, सुबह वो सब एक्टिविटी पार करके मलखम वगैरह ग्राउंड से हम लोग, मैं अभी जैसे कि पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ, उसके साथ साथ मैं इवनिंग में पावर लिफ्टिंग का भी प्रैक्टिस करती हूँ, दूसरा गेम है उसका भी 6 to 8 तक उसका प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मुझे सुबह जो मुझे जो स्ट्रेंथ मिलता है और सुबह का जो कॉन्फिडेंस है वो लेके मैं पूरा दिन भर पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ, और शाम में भी वही वजन उठाना वगैरह होता है पावर लिफ्टिंग में, वो भी कर लेती हूँ, तो इसीलिए मोबिलिटी का इतना दिक्कत नहीं होता। ताकि जब पोल मलखम करते हैं ना तभी स्टेप बाय स्टेप करना होता है, वैसे भी अपने जीवन में भी जब रास्ता चलते हैं हम लोग तभी भी खड्डा आएगा तो थोड़ा साइड में चलना होता है, कोई सामने से आएगा तो, और ऐसे रास्ता पार करते समय किसी का हेल्प लेना वो सब हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो इतना हम लोग को ट्रैवलिंग करते टाइम चलते टाइम इतना दिक्कत आती नहीं है।
1: और बेसिकली क्या होता है कि ब्लाइंड स्कूल में सिखाया जाता है, मतलब प्रतिभा ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया पर मैंने किया है कि ब्लाइंड स्कूल में मोबिलिटी के क्लासेस दिए जाते हैं, तो रास्ते पे केन लेके कैसे चलना है, केन कैसी चलानी है, तो वो सब हर्डल्स है वो कैसे पार करते हैं, या किसी से मदद मांगनी हो तो वो कैसी मांगनी है, तो वो सब सिखाया जाता है। तो उसकी वजह से
0: हाँ मलखम की वजह से मोबिलिटी में ज़्यादा बेटर मोबिलिटी आप अपनी पाते हैं, और आप देखते हैं कि जो पहले हम गिर रहे होते थे या फिर टकरा रहे होते थे उसमें काफी हद तक हमारी
1: मलखम एक हाइट का गेम है, और ये मलखम के बारे में एक विशेष बात है कि सब गेम जो होते हैं वो ग्राउंड पे खेले जाते हैं, पर मलखम ऐसा गेम है कि वो हाइट पे खेला जाता है।
0: जी जी,
1: तो ये एक विशेष बात है उसकी, तो डर तो होता ही है
0: जी,
1: और उस डर पे मात कैसे करनी है हमारे हाथों में,
0: और जब डर खत्म हो गया तो फिर मोबिलिटी तो अच्छी होनी है। तो ये सब मामला जो है कॉन्फिडेंस का है। हाँ, मोबिलिटी में कुछ टेक्निक भी जरूरी है, वो आपको आनी चाहिए। टेक्निक्स के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो आप एक अच्छी मोबिलिटी अपनी रख पाएंगे
1: जरूर।
0: और जिससे आपको आपके शरीर को नुकसान कम होगा। तो प्रतिभा ने बताया, प्रतिभा पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, तो जो कि एक ओलंपिक खेल है। तो आपको आपको क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपको जैसा भविष्य में जुनून के साथ अपने?
2: हाँ जी सर, मैंने भी स्टेट में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और नेशनल में गोल्ड मेडल मिलाया है पावर लिफ्टिंग में
0: जी।
2: तो अभी वो नेशनल का भी, इंटरनेशनल का भी वो लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं, तो मैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ।
0: नेशनल पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ जी सर
0: जी, बहुत बढ़िया। तो किस कैटेगरी में खेलते हैं आप? और आपको
2: B3 सर।
0: अच्छा अच्छा, B3 कैटेगरी में खेलते हैं, राइट राइट। कोमल जी, आप कैसे अपना दिन कर रहे होते हैं? प्रतिभा ने तो बता दिया है कि अपनी अपनी प्रतिभा का उपयोग कहीं और भी कर रही है और दो खेलों के साथ आगे बढ़ रही है जी। आप बताएं ना कोमल जी, आप कैसे कर रहे हैं शाम को?
1: तो मेरा जब प्रैक्टिस खत्म हो जाता है तो मैं ट्रेन पकड़ के पालघर जाती हूँ। पालघर में एक NGO है आनंद आश्रम करके
0: जी।
1: तो उधर जो वृद्ध लोग रहते हैं तो उनको मैं एक्सरसाइज सिखाती हूँ, उनसे करवाती हूँ, मतलब उनका भी दिन थोड़ा सा कट जाए ऐसा मैं ये करती हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है, उधर जो रहते हैं वो हमारा वो कैसे भी मतलब खुद का टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ देखते हैं। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि बाबा उनके पास भी कोई तो ऐसा मतलब उनके हेल्थ के लिए हिसाब से, तो वो मैं उनको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह सिखाने के लिए जाती हूँ। शाम को घर पे आती हूँ तो जब काम वगैरह करने पड़ते हैं तो खाना वगैरह बनाना मतलब सब साफ सफाई करना या कुछ भी
0: जी जी,
1: तो ऐसे मेरे दिन अभी तो कट रहा है
0: जी जी। नहीं लिख ठीक है, आप जो है दोनों जुनून के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और एक आपने इंडिजिनस स्पोर्ट को अपने जीवन में डाला है और एक मलखम के साथ, एक मलखम जैसा खेल जो ऊंचाइयों पे खेला जा रहा है और उसमें भी आप ब्लाइंडनेस के साथ या कहें कि अपनी पार्शियल ब्लाइंडनेस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहें कि आंखों की रोशनी तो आधी है बट प्रयास पूरा है ना। तो कुछ ऐसी ही बात आप लोगों ने मैंने देखी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा प्रतिभा जी, इन दोनों ही चीज़ों के अलावा और क्या जुनून में शामिल है? मतलब जुनून में देख रहा हूँ कि सुबह सुबह रस्तों पे मलखम चल रहा है और शाम को रॉड्स के साथ पावर लिफ्टिंग, तो ये रस्ते और रॉड के साथ अलावा कुछ और भी है रास्ते में आपके?
2: हाँ जी सर, मैं जी। साथ साथ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रिपरेशन करती हूँ
0: जी,
2: MPSC का
0: जी।
2: तो वो मेरा पढ़ाई भी चल रहा है
0: जी जी। लेकिन हम दोनों साथियों को कहेंगे कि जुनून के साथ में, जुनून जो है वो आपका जीवन का जुनून बन जाए। और हम जुनून में ऐसे ही साथियों के साथ बातचीत करते रहे हैं जिन्होंने अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा और उसको हमेशा अपने जीवन में बनाए रखा और उसको कंटिन्यू किया। तो आप हमारे प्रोग्राम में जुनून में शामिल हुए हैं, तो जुनून में हम यही आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस खेल को लेकर आप अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहें। और क्या इसमें ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं कोमल जी? मैं जानना चाहूँगा खेल के साथ में।
1: यस, ऊंचाई तो बढ़नी चाहिए और बढ़ती
0: ही
1: रहती है
0: जी।
1: जैसे मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुझे मलखम डेमोंस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा
0: जी।
1: तो 2024 में हमने जब पेरिस में ओलंपिक हुआ तब हमें मौका मिला कि उधर जाके हमें डेमोंस्ट्रेशन करना है
0: जी।
1: तो ये हमको मतलब संधि दी वो रिलायंस फाउंडेशन ने दी
0: जी।
1: तो तब जाके हमने मेरे साथ मतलब दो लड़कियां और दो लड़के, ऐसे हमारी 8 जनों की टीम थी जो पेरिस में जाके हमने डेमोंस्ट्रेशन दिया। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आउट ऑफ इंडिया
0: जी।
1: इंडिया में तो बहुत किया है और सिखाया भी किया भी है
0: जी।
1: पर आउट ऑफ इंडिया ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था।
0: ये प्रदर्शन ओलंपिक कमेटी के सामने था
1: ये, मतलब वो जब मतलब इंडिया हाउस करके था
0: ना, अच्छा अच्छा जी।
1: तो उसमें हमारा हर दिन डेमोंस्ट्रेशन रहता था
0: जी।
1: तो जो भी ओलंपिक देखने जो आते थे तो वो टिकट लेके हमारा मलखम देखते थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने का भी अवसर मिलता था जी। तो और मुझे लगता है और उसी ओलंपिक में आपने देखा कि नीरज जी ने गोल्ड मेडल लगा दिया। खैर, तो प्रतिभा जी पावर लिफ्टिंग और मलखम के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर लिफ्टिंग के साथ में आप स्ट्रेंथ और आपकी फिटनेस दोनों ही जरूरी हैं और मलखम के साथ भी ऐसा ही है। मलखम क्या ऐड ऑन करता है पावर लिफ्टिंग के अलावा? मतलब पावर लिफ्टिंग में वो चीज नहीं जरूरत पड़ती है लेकिन मलखम में वो जरूरी है, मेरा कहने का मतलब यह है।
2: नहीं सर, साथ साथ उन पावर लिफ्टिंग कैसे जमीन पे होता है और वो लकड़ी के ऊपर जमीन के ऊपर करना होता है
0: जी,
2: तो इतना ही डिफरेंस है, बट ताकत तो सेम लगती है
0: जी।
2: ताकि मेरी ताकत मलखम से आई है और मैं जब पावर लिफ्टिंग करने गई तो तभी मुझे पता चला कि मेरे में इतनी ताकत है मैं इतना वजन उठा सकती हूँ, तो तभी से मुझे वो गेम भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो गेम को मैंने सिर्फ ट्रायल करके मैंने गई थी खेलने के लिए, तो वो गेम में मुझे मेडल मिला है, तो तभी से मुझे वो गेम बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
2: और साथ साथ वो गेम भी मैं खेल लेती हूँ
0: जी। हाँ, चुनौतियों के बाद ही मालूम चलता है कि हमारे अंदर कितना एबिलिटीज है
2: जी।
0: राइट, कोमल जी, भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
1: मेरे भविष्य की योजना तो ये कि सेहत के साथ साथ, मतलब खुद की सेहत तो अच्छी रखनी है, सेहत अच्छी हो तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं
0: जी।
1: तो सेहत अच्छी है तो
0: सक्सेस की कहानी सेहत से शुरू होती है
1: जी।
0: लेकिन आपकी क्या योजनाएं हैं आने वाले दिनों में?
1: मैंने अभी जैसे मैंने एमए साइकोलॉजी में मेरा किया है और मुझे काउंसलिंग का कोर्स करके अच्छा काउंसलर बनना है
0: जी।
1: तो जैसे हम देखते हैं कि अभी के परिस्थिति में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जुड़ते हैं, तो उनके साथ थोड़े से बातचीत करके या उनका कुछ सुन के या हमसे कुछ कुछ हेल्प हो सके तो ऐसा मैं करना चाहती
0: हूँ। हाँ, निश्चित रूप से आपने जो बताया है कि आप सोशल वर्क की तरफ सोच रहे हैं और उस दृष्टि से आप अपने जीवन को प्लान कर रहे हैं, तो मैं कोमल जी, आपने तो मुझे बोला है कि सेहत से सक्सेस की बात तो है ही है और जीवन में नई हमें योजनाएं बनानी है, और प्रतिभा ने तो बताया कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किलो के साथ में मतलब जो फिटनेस जो जीवन में इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से मैंने देखा कि ब्लाइंड व्यक्तियों के साथ एक समस्या है जीवन में, कि क्योंकि वो लेथार्जिक हो जाते हैं कई बार जीवन में, मोबिलिटी का लेवल उतना नहीं है, कसरत नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो उनको एक एक, एक सर्टेन एज के बाद उनको चुनौतियां फील होती हैं शारीरिक रूप से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या समझ बनी है इसको लेकर कि ब्लाइंड व्यक्तियों को कैसे फिटनेस को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए?
1: मतलब जब अभी जो स्कूल में जो जाते हैं बच्चे लोग, तो उस स्कूल में उनको ट्रेनिंग या फिटनेस लेवल का महत्व समझाना जाना चाहिए, जो कि उतने लेवल पे नहीं होता है
0: जी।
1: वो थोड़ी बहुत मतलब समझा कर छोड़ देते हैं
0: जी।
1: और जैसे हमें अभी जुनून था कि हमें हमारे स्कूल में तो रोप मलखम था, तो उसमें से होता है ना कि बाबा स्कूल में 100 लड़कियां है तो 100 के 100 तो नहीं जाएंगी मलखम खेलने
0: जी।
1: तो उसमें से 10 लड़कियां या 5 लड़कियां 15 लड़कियां ही ये करेगी, मूव करेगी
0: जी।
1: तो ऐसे सब नहीं होता कि बाबा सबके दिमाग में आए कि चलो हमें मलखम करना है, सीखना है, तो मेंटेलिटी के हिसाब से होता है ना, किसको कुछ पसंद है किसको क्या पसंद है वो तो डिपेंड करता है।
0: क्योंकि तो हमारे आसमान में बहुत सारे फूल हैं और उसको कौन से रंग का फूल पसंद आएगा उसको वो उसकी चॉइस है जी जी। लेकिन मलखम के साथ में मेरा जो एक अनुभव है, एक समझ बनी है कि मलखम एक ऐसा इंडिजिनस स्पोर्ट है जो निश्चित रूप से हमें फिटनेस की तरफ तो लेके जाता ही है, और पिछले दिनों राजस्थान में भी हमने खेलो इंडिया की एक एकेडमी मलखम के साथ में हमने अटैच की थी जयपुर में, और हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर क्यों ना ब्लाइंड व्यक्ति जुड़े, और आपने तो अपना अनुभव भी सुना दिया आज हमें, आज जुनून प्रोग्राम के माध्यम से। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और आपका प्रोग्राम है जुनून, और जुनून में हमारे साथ दो जुनूनी हैं आज, डेफिनेटली वो हमारे स्टूडियोज में आज आई हैं और इस हमारे स्टूडियोज में भी एक ऐसा वातावरण बन गया है मलखम वाला इसमें शायद अब बस रोप्स आनी बाकी है, और नहीं तो हम थोड़ी देर में अब हमें भी देखेंगे कि हम कुछ यहाँ पर कर गुजरे हैं, है ना। तो श्रोताओं, आप हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, आपका फेवरेट प्रोग्राम।

0: जी तो श्रोताओं, फिर से आपके साथ एक ब्रेक के बाद। और आपको तो मालूम ही है हमारे स्टूडियोज में बैठी हैं दो महाराष्ट्र से मुंबई से आई हुई प्रतिभाशाली साथी, और दोनों ही हमारी विजुअली चैलेंज साथी हैं, और दोनों ने ही जुनून प्रोग्राम में रंग भर दिया है अपने अलग अलग कौशल बता के। और अभी तो कोमल के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। कोमल, और क्या कर रहे हैं आप इस बीच में, मतलब मलखम के अलावा और क्या कर रहे हैं अपने जीवन में?
1: मलखम के अलावा मैं टेंडम साइकिलिंग भी करती हूँ।
0: जी,
1: टेंडम साइकिलिंग एक बेसिकली ऐसा है कि जब ब्लाइंड विजुअली चैलेंज को साइकिल चलानी है तो वो खुद मतलब सिंगल साइकिल तो नहीं चला सकता
0: जी।
1: पर ये सपोर्ट जो होता है, आधार जो होता है
0: जी,
1: तो वो टेंडम साइकिल से मिलता है कि पायलट आगे बैठता है और ब्लाइंड पीछे के सीट पे बैठते हैं, तो उस हिसाब से टेंडम साइकिल का आनंद दे सकते हैं।
0: जी जी, तो टेंडम साइकिल के साथ में आपके साथी कौन होते हैं ज्यादातर?
1: ज्यादातर हमारी जो अभी एक संस्था है जो टेंडम साइकिल चलाती है, मतलब वो भी शिवाजी पार्क में ही अभी होता है
0: जी।
1: उसका भी क्लासेस संडे टू संडे क्लासेस होते हैं उसके 7 to 9, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे टेंडम साइकिल करते हुए अभी 4 साल हो गए, 4-5 साल। उसमें भी मैंने बहुत मतलब मैंने खुद से भी साइकिल चलाई है, और मैंने मतलब आगे बैठ के और पीछे सर या कोई जो होता है हमारे साथ तो वो उसको बैठ कर मैंने साइकिल चलाई है, और मुंबई के सड़कों पे मैंने साइकिल चलाई है इतने मतलब ट्रैफिक में या सब इसमें सब एक्सपीरियंस किया हुआ है।
0: तो कितने किलोमीटर कर चुके हैं अपनी साइकिलिंग के साथ?
1: मैंने मेरा हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट ये था पुणे से मुंबई का 161 या 171 ऐसा किलोमीटर था साइकिल पे।
0: जी जी जी जी, हाई स्पीड ट्रैफिक के बीच आपकी टेंडम साइकिल, वाओ बहुत बढ़िया। तो एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए, अब आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और आप खेलों से जुड़े हुए हैं, तो होलिस्टिक हेल्थ के फील्ड में क्यों नहीं एक आपका जुनून जो है वो पूरा किया जाए, और क्यों ना आप काउंसलिंग के साथ भी जुड़ जाएं, और ऐसी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और युवाओं को तो बहुत जरूरत है आजकल इस चीज की, और आप तो एक युवा हैं।
1: मेरा यही ये है कि हर किसी को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही रहनी चाहिए
0: जी।
1: घर में बैठ के भी बहुत सारे काम होते हैं, पर वो फिजिकल होना वो अलग बात है
0: जी।
1: तो बाहर हम जब जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो अलग सा हमारे विचारों में या बोलने में बिहेवियर में अलग सा चेंज होता है, वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी इंसान ने करती रहनी चाहिए
0: जी। प्रतिभा जी, आप क्या इसके अलावा कर रहे होते हैं? कुछ गाना गुनगुनाना बजाना भी कर रहे हैं, कुछ मराठी कविताएं या मराठी गीत?
2: नहीं सर, मैं भी टेंडम साइकिल में भी चलाती हूँ। कोमल के साथ ही मैंने, कोमल एक बार मेरी पायलट बनी थी और मैं पीछे बैठी थी, वो मोमेंट याद आया है। तो टेंडम साइकिल भी बहुत अच्छा है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे सर मनोज कटारिया एक सर है, उन्होंने भी बहुत ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दोनों सर, जैसे उदय देशपांडे सर, मनोज सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छे से सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए वो सर सब स्पोर्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं।
1: मतलब टेंडम साइकिलिंग को भी उतनी मान्यता नहीं है जैसे अभी थोड़े से मलखाम के बारे में है, तो हमारे जो सर है मनोज सर, वो भी टेंडम साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए

0: इंटरनेशनल लेवल जाने के लिए बहुत कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं
1: जी। तो आप एकेडमी की साइकिल्स के साथ ही अपना टैंडम साइकिल या अपनी स्वयं की साइकिल भी ले ली है?
0: नहीं अब तो नहीं
1: जी। ये साइकिल्स गियर के साथ में होती हैं या?
0: गियर के होती है
1: जी। जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो मुंबई से पुणे की यात्रा तो बाकी आपने करी ली है, मुझे लगता है मुंबई से गोवा कब करने जा रहे हैं आप जुनून में?
0: अभी वैसा मौका तो मुझे नहीं आया है,
2: अपकमिंग पर्पल फेस्ट में।
0: इन फ्यूचर
1: हाँ, पर्पल फेस्टिवल में जा रहे हैं आप लोग?
2: अभी नहीं,
0: नेक्स्ट ईयर पर्पल फेस्टिवल तो शुरू हो गए
1: है ना जी,
0: तो यहाँ है।
1: ये पर्पल फेस्टिवल में अभी खेलों के साथ कुछ गतिविधियां हुई हैं, लेकिन जुनून प्रोग्राम में हम लोग भी सोच रहे थे कि पर्पल फेस्टिवल के साथ बातचीत की जाए। तो पर्पल फेस्टिवल में की बात आपने याद दिलाई, तो क्या मलखम का प्रेजेंटेशन वहाँ हुआ है आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं?
0: पिछले साल हुआ था, तब मैं नहीं गई थी। मेरे अजय लालवानी करके एक मेरा दोस्त है और स्वरांजलि पवले करके, तो वो सर के साथ गए थे, तो उन्होंने उधर दिया था डेमोन्स्ट्रेशन
1: जी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विजुअली चैलेंज या डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक बेहतरीन या उनका अपना एक फेस्टिवल उत्सव गोवा सरकार हर साल आयोजित करती है, अक्टूबर से जनवरी के मध्य बीच में किसी भी महीने में। तो इस बार इस अक्टूबर के आज के दिन से ही लगभग पर्पल फेस्टिवल गोवा में चल रहा है, और पर्पल फेस्टिवल में दिव्यांग व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभाओं के साथ वहां पहुंचते हैं हर साल, और वहां पर एक उत्सव का माहौल रहता है। और पर्पल उसकी थीम है जो कि दिव्यांगता को पहचान देती है। तो आप भी जब भी आपको मौका मिले आप पर्पल उत्सव फेस्टिवल में जरूर जुड़े। तो हमारे साथियों से कोमल, आप भी कुछ ऐसा कुछ गाना गुनगुनाना या मराठी सॉन्ग्स आपको आते हैं या आपको लगता है कि आप?
0: नहीं, गुनगुनाना तो नहीं, तो पर मैं मैंडोलियन मुझे बजाना अच्छा लगता है।
1: वाह,
0: स्कूल में सीखा।
1: यस जी जी,
0: तो अभी मैं मेरा खुद का मैंडोलियन लेके उस पे प्रैक्टिस करके मुझे शो में बजाने की बहुत उत्सुकता है।
1: जी जी जी जी,
0: जरूर
1: जी जी जी। वाह, रस्तों से लेकर पैडल और पैडल से लेकर
0: तारों तक
1: की यात्रा आप कर रहे हैं। तो इस बातचीत के साथ में हम भी जानना चाह रहे हैं कि मलखम में का जो मैदान होता है वो लगभग कैसा दिख रहा होता है कोमल? थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बता पाएंगे, मतलब क्या दृश्य होता है? 400 पेविलियंस होते हैं और फिर बीच,
0: मतलब हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं।
1: जी जी जी जी,
0: तो वो तो शिवाजी पार्क तो बहुत बड़ा शिवाजी पार्क है, तो उसमें क्या है कि जो हमारी व्यायामशाला की जो जगह है तो उसपे उतना बड़ा मैदान नहीं है, क्योंकि वो बाकी का मैदान है उसपे तो क्रिकेट वगैरह चलते रहते हैं
1: जी।
0: तो हमारी जो जगह है उधर 8-10 ऐसे पोल मलखम पूरे हुए हैं
1: जी,
0: और कई जगहों पे ऐसे सिंगल बार डबल बार ऐसे प्रैक्टिस के लिए करे हुए, तो वो जो है उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं
1: जी।
0: और अलग व्यायामशाला में भी बहुत बड़ा उधर मतलब रूम है जहाँ पे मलखम के अलावा बहुत जूडो कराटे के क्लासेस वगैरह भी होते हैं
1: जी।
0: तो मैंने प्रतिभा ने थोड़ा जूडो का भी थोड़ा सा ये ट्राई किया है, मतलब
1: तो आप घाट घाट का पानी पीने के बाद आपको मालूम चला है कि मलखम इज अवर चॉइस, तो
0: इज द बेस्ट।
1: हाँ, मलखम इज बेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इन खेलों के साथ में हम जब इनसे जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि कुछ जिमनास्टिक से मिलता जुलता ही खेल है, मतलब जिमनास्टिक में भी कुछ ऐसे ही मूव्स या ऐसे ही स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, तो आप बार्स के साथ में जब कर रहे होते
0: हैं? एक मिश्रण है पूरे, मुझे ऐसा लगता है पूरे जो गेम्स है उसका मिश्रण मलखम है
1: जी जी।
0: जो स्ट्रेंथ लगती है, पावर लगती है बहुत, तो मतलब वो बढ़ाती है। अभी मेरे में भी उतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद का शरीर अपने हाथों पे उठा पाऊं
1: जी,
0: और उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी के मतलब विरुद्ध हमें अपना शरीर ऊपर उठाना होता है
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो अलग स्ट्रेंथ उसमें लगती है। तो वो प्रैक्टिस के वजह से, मतलब हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही मतलब हमें डेवलपमेंट मिलती जाती है। और हमारे सर ऐसे एक मतलब वाक्य बोलते हैं कि नो पेन नो गेम
1: जी,
0: ऐसा बोलते हैं। तो जहाँ पेन होता है वहाँ गेम होता ही
1: जी, जी जी जी, जहाँ गेम होता है वहाँ पेन होता है, और पेन के साथ ही आपको कुछ गेन भी होता है, गेन भी होता है जीवन में। तो हाँ, ये बात तो हुई है, तो पेन से गेन की बात हुई है, तो आप बताएं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कैसे सोच रहे हैं, वहाँ पर कैसे जाने का प्लान बनाया है? और आपको तो मालूम ही होगा कि कुछ राज्यों ने, राज्य सरकारों ने मैं श्रोताओं को बता दूं कि राजस्थान में, चूंकि हम राजस्थान में के में हमारे स्टूडियोज हैं, तो राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पे मेडल लेकर आए हैं उनको आउट ऑफ द टर्न गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफर की हैं, और बहुत सारे खिलाड़ियों ने बिना किसी परीक्षा के डायरेक्टली राजस्थान सरकार को ज्वाइन किया है क्योंकि उन्होंने अपने खेल के मैदान में राजस्थान का परचम ऊंचा किया है। तो ऐसे ही कुछ राज्यों ने और किया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ ऐसा प्लान बनाया है, योजना बनी है आपके राज्य में दोनों साथियों
2: से? बनाने का प्रयास चल रहा है सर
1: जी।
2: हम लोग ने भी जब नेशनल गेम खेल के आए थे तभी हम लोग ने भी मंत्रालय में जाके बहुत सारे प्रयास किए हैं, अभी तक और नहीं हुआ है, होने वाला है
1: जी।
2: तो वो प्रयास चल रहा है। तो मैंने आपके श्रोताओं को मतलब कुछ संदेश देने के लिए आप बोल रहे थे, तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि डेली जब आप उठते हो तभी अपने बॉडी के लिए एक घंटा तो डेली देना ही देना है। जब मतलब हम लोग का जब भी शरीर को तकलीफ हो जाती है तब हम लोग हॉस्पिटल में चार चार दिन एडमिट रहते, वो न आना चाहिए। इसके वजह से सब ने हमने हमारे दिन में ऐसे एक घंटा हमारे बॉडी के लिए देना ही चाहिए, सब ने एक्सरसाइज करने का, सब ने प्राणायाम करने का, डेली हमारे बॉडी के लिए कुछ करने का।
1: जी जी जी, नहीं डेफिनेटली आपने संदेश दे ही दिया है कि भैया उठो और जागो और कुछ कर गुजरो। हाँ तो कोमल, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, और आपको क्या लगता है कि भविष्य की यात्रा को लेकर या देश की में जो खेलों की जो अभी पूरा एक पैनोरमा है खेलों का, उसमें क्या ऐड करने की जरूरत है?
0: मुझे बस इतना ही कहना है कि अपने सेहत को संभालो और जो अचीव करना है वो करो।
1: हाँ, क्योंकि सेहत होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे,
0: हम सब कुछ हासिल कर सकते।
1: जी जी, ठीक है। तो श्रोताओं, हम हमारे कार्यक्रम को आप यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे, और इन दोनों साथियों से, हमारे प्रतिभा जी से और कोमल जी से भी। आप महाराष्ट्र इतनी दूर से हमारे बीच में आए, और मलखम जैसे एक इंडिजिनस स्पोर्ट के बारे में हमारी एक दृष्टि विकसित की, और आप भी हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें, और आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: तहे दिल से धन्यवाद सर
1: जी। थैंक यू।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: वीर सावरकर ने लिखा है कि सन 1857 के समर में युद्ध पद्धति और रणकौशल में राजा वीर कुंवर सिंह की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। बिहार के जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाकर ये साबित कर दिया था कि जब मातृभूमि पुकारती है तो वृद्धों में भी जवानी लौट आती है। छापामार युद्ध में निष्णांत वीर कुंवर सिंह की चालों को अंग्रेज सेना नायक समझ नहीं पाते थे। कभी वे उन्हें धकेलते, कभी छकाते और कभी स्वयं पीछे हटकर अचानक दुश्मन पर हमला बोल देते। एक बार गंगा पार करने से पहले उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे बलिया में हाथियों पर चढ़कर गंगा मैया को पार करेंगे। अंग्रेज बलिया पहुंच गए तब कुंवर सिंह ने शिवराजपुर नामक स्थान से नावों पर चढ़ाकर अपनी सेना को गंगा पार उतार दिया। अंग्रेजों को जब इस चकमे का पता चला तो वे शिवराजपुर पहुंच गए। अंतिम नाव में खुद कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाई जो उनकी कलाई में लगी। जहर फैल जाने के डर से कुंवर सिंह ने कोहनी से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। 1857 के स्वातंत्र युद्ध में उन्होंने तलवार की जिस धार पर अंग्रेजी सेना को उतारा था उसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों को चौंधिया देती है।
3: ढाबे की ये खुली हवा और ये चारपाई, पर कम वक्त नहीं है यहाँ तन्हाई।
4: लो भैया पानी पी लो।
3: और छोटू भाई काका कहाँ है?
4: बस आते ही होंगे भैया।
3: आनंद, तेरे को तो मजा आ जाएगा काका से मिलकर। जो कैरेक्टर तेरे दिमाग में है ना तेरी फिल्म के लिए, एकदम फिट है उसके लिए काका।
5: पर वो मान है तब तो कोई बात है, और जैसा तुम लोगों ने बताया कि काफी पता है उनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी मुझे उन्हें समझाने में। बस यार ये हो जाए तो मेरी फिल्म का काम पूरा समझो। अब काका आएंगे कब तक यार? एक लोकेशन देखने भी जाना है मुझे आज।
3: पर ये बता, तूने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए ये रिसर्च वाला टॉपिक क्यों चुन लिया यार?
5: बस यार, मुझे बचपन से ही फ्रीडम मूवमेंट की कहानियां आकर्षित करती रही हैं, तो सोचा कि इस टॉपिक पर अपना बेस्ट आउटपुट दे पाऊंगा, और मैंने चुना भी थोड़ा मुश्किल कैरेक्टर है।
3: हाँ, वो बिहार के थे ना तेरे वीर कुंवर सिंह?
5: हाँ, 1857 की क्रांति ने देश को कई महान योद्धा दिए। कुंवर सिंह हमारे बिहार के थे जो इनमें प्रमुख माने जाते हैं।
3: लेकिन मैंने तो इनका नाम नहीं सुना।
5: अरे, तात्या टोपे जहाँ छापा मार युद्ध के नकारात्मक पक्ष के कुशल योद्धा थे, वहीं राजा कुंवर सिंह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्षों के सिद्ध हस्त योद्धा थे।
3: भाई आनंद, तुम खुद बिहार के हो तो ज्यादा मजा आएगा तुम्हें ये फिल्म बनाने में।
5: हाँ, वो तो है ही भैया।
3: अच्छा, उनको राजा कुंवर सिंह क्यों कहते थे?
5: असल में क्या है कि वो अपनी रियासत के जमींदार थे तो राजा कहलाते थे। उनका जन्म 1782 में बिहार के पुराने शाहबाद के जगदीशपुर में हुआ था। बचपन से ही कुंवर की दिलचस्पी पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद और युद्ध कला में थी।
6: अरे बचुआ, अरे थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करेगा कि नहीं?
7: नहीं अम्मा, हम तलवार ही चलाएंगे।
6: अच्छा?
7: हाँ, और अब तो हम घुड़सवारी भी करेंगे, देखिएगा।
6: अरे
7: हम सबसे तेज घोड़ा दौड़ाएंगे।
6: अरे बचुआ संभल कर, देख गिरना नहीं।

0: प्रणाम कुंवर साहब, कहिए कैसा रहा शिकार?
1: बढ़िया, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया।
2: माननीय अतिथिगण, सभी पदाधिकारी और यहाँ पधारे हुए जगदीशपुर के निवासियों, आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ईसवी सन 1826 के दिन माननीय कुंवर सिंह जी का राज तिलक किया जा रहा है। आज उन्हें

0: अतिथिगण, सभी पदाधिकारियों और यहां पधारे हुए जगदीशपुर के निवासियों, आप सबने मुझे ये जिम्मेदारी देकर जो प्यार और सम्मान जताया है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही ये विश्वास दिलाता हूं कि जगदीशपुर रियासत की बेहतरी के लिए तन मन धन से प्रयास करूंगा और अपने जिंदा रहते इस रियासत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा।
1: कुंवर सिंह की जय। कुंवर सिंह की जय।
2: कुंवर सिंह की जय।
3: कुंवर सिंह ने न सिर्फ वादे किए बल्कि उसे निभाया भी। उन्होंने अपने शासन काल में ही हर वो काम किया जिससे प्रजा का भला हो।
0: शांत रहिए, शांत हो जाइए आप सब लोग। हमने आज आप सब लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि रियासत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सके। हम चाहते हैं कि रियासत में आप जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने फैसला किया है कि जगदीशपुर में एक तालाब खुदवाया जाए और रियासत की सीमाओं से लगे जंगल का विकास किया जाए।
1: कुंवर साहब, जनता की बेहतरी के लिए आपने जो फैसला किया है उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो आपसे एक विनती और करना चाहते हैं।
0: हाँ हाँ, बोलिए।
1: हम चाहते हैं कि आरा में जो भी बाजार का बनाया जाना प्रस्तावित है उसका नाम बाबू बाजार हो।
0: भाई, आप लोगों की जैसी मर्जी।
1: कुंवर सिंह की जय। कुंवर सिंह की जय।
4: कुंवर साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं।
0: बेझिझक कहिए हरकिशन जी।
4: कुंवर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य की कुल आमदनी 6 लाख रुपए है, जिसमें से हमें 1,06,000 रुपये अंग्रेजी सरकार को देना होते हैं।
0: हम आपका आशय समझ गए हरकिशन जी। हम जानते हैं कि हमारा हाथ बहुत ही खुला हुआ है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि खर्चे में ज्यादा से ज्यादा कटौती की जाए ताकि जनता और राज्य के हित में अधिक कार्य हो सके।
5: गुड मॉर्निंग सर।
6: गुड मॉर्निंग ऑफिसर, प्लीज बी सीटेड।
5: थैंक यू सर।
6: यस, कोई खास बात?
5: सर, सुना आए कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह को राजगद्दी मिल गई आए।
6: ओ, दैट्स रियली गुड। वो तो हमारे भरोसे का आदमी है एंड आई थिंक अब वो शाहबाद के बाद सबसे बड़ी रियासत हो गई है।
5: यस सर, इन फैक्ट चाटबाट और रईसी में तो वो शाहबाद रियासत से भी बढ़ कर आए।
6: ओ यस यस। वेल ऑफिसर, आई लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट पास कर दिया है। इसका मुताबिक इंडियंस को अब बड़ी बड़ी नौकरियां मिल सकेंगी।
5: बड़ी बड़ी नौकरियां?
6: वेल, ओनली ऑन पेपर्स।
7: ठाकुर साहब, अंग्रेजों का चार्टर एक्ट तो अब तक छलावा ही साबित हुआ है।
8: ठीक है, कहते हैं आप बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी के फेर में अपनों की जमीन, अरे अपना गोत्र तक छोड़ दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
7: वैसे गोरों की हरकत और उन तमाम पिछली नीतियों पर अब भारतीयों की नजरें तीखी हो चली हैं। जमींदार जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं और देखिएगा, नए गवर्नर डलहौजी की हड़प नीति के कारण विद्रोह की आवाज बढ़ती चली जाएगी। हाँ,
9: ब्रिटिश हुकूमत

0: सर को जमींदार लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है।
1: Oh, don't worry. They can't do anything. They are very few. जल्दी ही उनकी आवाज को कुचल दो. Understand?
0: Yes, sir.
1: Okay, well, और क्या रिपोर्ट है?
0: सर, आपने सतारा और अवध की रियासतों को कब्जे में ले लिया है. But
1: what?
0: But, sir, नाना साहब को पेशवा की गद्दी से दूर रखना आसान नहीं है. He is a very popular person.
1: That's why it is much more important to keep him out of the frame. कैसे भी करके उसे पेशवा की गद्दी से दूर रखा जाए. हमको जल्द से जल्द हर छोटा बड़ा रियासत हमारा कब्जे में चाहिए. Is that okay?
0: Yes, sir.
2: डलहौजी की हड़प नीति के चलते हिंदुस्तान की कई रियासतों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया. जहां झूठ लालच और मान मुनव्वल से काम न निकला वहां सख्ती की गई. इसी दौरान मंगल पांडे की फांसी के बाद विद्रोह की ये हवा पवंडर में बदल गई.
3: कुंवर साहब, तुलसी प्रसाद, रणदलन सिंह और हरे कृष्ण जी आपसे मिलना चाहते हैं. कहते हैं कुछ खास काम है.
4: ठीक है, उनको आने दो.
5: प्रणाम कुंवर साहब.
4: प्रणाम. आइए फिर आजिए. कहिए कैसे आना हुआ.
6: कुंवर साहब, आप इस इलाके के सबसे रईस जमींदारों में से एक हैं, इसलिए हम लोग देश काल के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं.
4: कैसी चर्चा?
5: आप तो जानते हैं कि मंगल पांडे की फांसी के बाद जैसे देश में एक नई चेतना सी आ गई है. मेरठ से उठिए आग, कानपुर, आगरा, दिल्ली से होकर अवध और बनारस से होते हुए बिहार तक पहुंच गई है.
7: और जगदीशपुर इस क्रांति में भाग ले या ना ले, लेकिन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा.
4: लेकिन क्रांति पथ पर अकेले कदम तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना.
6: उसकी नौबत कहाँ आएगी कुंवर साहब. आपका इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है. आप हर वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं. आपकी एक आवाज पर ही लाखों नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे कुंवर साहब.
4: तो फिर ठीक है, हम कुछ दिन हालात पर नजर रखना चाहते हैं. आप लोग हमें चल रही गतिविधियों की जानकारी देते रहें. भगवान ने चाहा तो मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
8: बहुत अच्छा. प्रणाम.
4: प्रणाम.
3: कुंवर साहब, अंग्रेज कमिश्नर की तरफ से कोई चिट्ठी आई है.
4: चिट्ठी? पढ़ो तो, उसमें क्या लिखा है?
3: जी, लिखा है कि 18 जून को पटना में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी जमींदारों का आना जरूरी है.
4: हरकिशन जी, एक रणनीतिक सलाहकार होने के नाते मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहता हूँ.
3: हुजूर, मेरी माने तो बैठक में शामिल ना होना ही बेहतर है.
4: वो भला क्यों?
3: जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बैठक क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बुलाई गई है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों को आपके क्रांति मार्ग पर चलने का पता चल गया हो, इसलिए संभव है कि आपको वहां बंदी बना लिया जाए.
4: जान का जोखिम भी है, यही ना?
3: जी.
4: ठीक है, तो कमिश्नर को लिख दो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
3: जी, बहुत अच्छा.
9: फिर क्या हुआ?
2: फिर तो जैसे कुंवर सिंह क्रांति पथ पर चलने के लिए उतावले हो उठे. इंतजार बस इसी बात का हो रहा था कि सही वक्त आए. इसी बीच उन्हें 1857 के विद्रोह के लिए निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया. अब दानापुर के क्रांतिकारी उनके दल में शामिल हो गए और वे सब निकल पड़े क्रांति के पथ पर. कुंवर सिंह लखनऊ और अयोध्या होते हुए कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नाना साहब से मुलाकात की.
10: आइए कुंवर साहब, हमने लखनऊ और अयोध्या की आपकी यात्रा के बारे में सुना. हमें ये जानकर बेहद प्रसन्नता है क्या आपने देशभक्ति के कठिन मार्ग को तब चुना है जब लोग सन्यास पर चले जाते हैं?
11: नाना साहब, सन्यास वन्यास तो मन की शांति है, और देश को ऐसे हाल में छोड़कर सन्यास लेना कायरता है। इसलिए हम 75 पार की इस उम्र में तलवार उठाने को मजबूर हुए हैं। हमने सुना है कि अंग्रेजों की नजर कानपुर पर है।
10: जी कुंवर साहब, लेकिन हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे,
11: और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप निश्चिंत रहें।

0: साहब, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं।
1: ये तो मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य था। आपके और मेरे रहते ये विजय पताका यूं ही लहराती रहेगी। आप हमें आज्ञा दें, हम अपने दल के साथ आजमगढ़ जा रहे हैं।
0: लेकिन आप कुछ दिन कानपुर में विश्राम कर लेते तो?
1: नहीं नाना साहब, हमारा भतीजा अपने सैनिकों के साथ घाघरा नदी के दूसरी घाट पर हमारा इंतजार कर रहा है। बस हमें आज्ञा दें।
0: जी, जैसी आपकी इच्छा।
2: सर, कुंवर सिंह अब जमींदार नहीं रहा। इट इज अनएक्सपेक्टेड वो एक क्रांतिकारी बन गया आए। उसने नाना साहब की मदद करके कानपुर पर फिर से कब्जा दिला दिया।
3: कुंवर सिंह को रोकने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले तो उसे पकड़ने के लिए इनाम का अनाउंसमेंट करा दो।
2: इनाम?
3: यस, 10,000 रुपीज।
2: ओह, ओके सर।
3: एंड यस, उसके अगले मूवमेंट का पता लगाओ।
2: सर, एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अपनी सेना के साथ आजमगढ़ के लिए रवाना हुआ आए।
3: ओ आई सी। कर्नल मिल को बोलो कि वो अपने रेजिमेंट लेकर आए और कुंवर सिंह को आजमगढ़ के किले तक पहुंचने से पहले ही रोक ले।
2: ओके, यस सर।
4: आक्रमण!

0: more thing they can make regiment go hara the eye.
1: What?
0: Yes, sir. Ajum karke Clipper bhi unka kabza ho gaya hai.
1: Kabza? Kab tak karega kabza? Allahabad se Lad Cock aur Lucknow se Logat ko bulao. Kile ko do taraf se ghir kar us par attack kar do. I want Kuwar Singh alive or dead.
2: कुंवर साहब, अंग्रेज हर हाल में इस किले को फिर से लेना चाहते होंगे।
3: चाहे वो जो कर ले, मगर किले को वो हमसे वापस नहीं ले सकते।
4: कुंवर साहब की जय हो।
3: कहो, कैसे आना हुआ?
4: आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहता हूँ।
3: कहो।
4: कुंवर साहब, पता चला है कि अंग्रेज इस बार हमें दो तरफ से घेरने आ रहे हैं, जिसके लिए बड़े अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है।
3: यदि अंग्रेजों ने सचमुच दो तरफ से हमला किया तो किले को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
2: कुंवर साहब, इस समय हम सबको किले से ज्यादा जरूरत है आपकी, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम जगदीशपुर की ओर कूच करें।
3: आप ठीक कहते हैं, वैसे भी हम एक बार तो इस किले को जीत ही चुके हैं।
5: साथियों, हमारी सेना का एक भाग यहीं रहेगा और अंग्रेजों का सामना करेगा, और हम दूसरे भाग को लेकर गाजीपुर होते हुए जगदीशपुर पहुंचेंगे और अपनी धरती से गोरों को खदेड़ देंगे।
6: भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
7: फिर क्या होता है?
8: फिर बाबू कुंवर सिंह अपनी रियासत जगदीशपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंग्रेज सेनापति डगलस से मुकाबला करना पड़ता है। वह उन्हें हराते हुए शिवपुर पहुंचते हैं। शिवपुर से आगे जाने के लिए उन्हें सेना सहित गंगा पार करनी होती है, जिसकी व्यवस्था पहले से होती है। लेकिन
7: लेकिन क्या?
8: लेकिन सेनापति डगलस अब भी उनके पीछे था।
5: साथियों, हमें जल्द से जल्द गंगा के उस पार जाना होगा। सेनापति डगलस कभी भी यहां पहुंच सकता है। चलिए, छोटे छोटे जत्थों में नाव पर चढ़कर पार करते हैं।
7: और आप?
3: आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं आप सबको पार कराकर ही उधर आऊंगा। जल्दी करो, जाओ सब लोग।

0: कुंवर साहब सभी पार कर चुके हैं, अब आप भी चलिए।
1: चलो।
2: There he is. हमला करो उस पर। देखो, बच नहीं पाए। Fire!
3: हे भगवान, आपके हाथ पर तो गोली लगी है।
4: रुको मत। नाव चलते रहने दो।
3: लेकिन आपका हाथ,
4: इस हाथ का साथ यही तक था।
3: ये आप क्या कर रहे हैं?
4: हे गंगा मैया, मेरी भेंट स्वीकार करो।
5: उन्होंने अपना हाथ काट लिया?
1: हाँ, उन्हें लगा कि जख्मी हाथ के चलते क्रांति पथ पर समस्याएं बढ़ जाएंगी, इसीलिए उन्होंने, है वो उस दिन गंगा पार करके वापस जगदीशपुर पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया।
5: कुंवर साहब, आपका हाथ?
6: मातृभूमि की रक्षा के लिए एक हाथ क्या, अगर मुझे अपने प्राणों को भी कुर्बान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
7: कुंवर साहब, अंग्रेजों को आपके जगदीशपुर आने और आपके घायल होने की खबर मिल चुकी है। वे लोग किसी भी समय यहाँ पर हमला कर सकते हैं।
6: आने दो, हमारे रहते जगदीशपुर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। साथियों, हमें लड़ना है अपनी आखिरी सांस तक। देश की सेवा करनी है, कुछ ऐसा करना है देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा ना रह जाए। कहिए, तैयार हैं आप सब लोग?
8: हम सब तैयार हैं।

साथियों, हमें पता नहीं कि हम खुशी व्यक्त करें या फिर दुखी हो जाएं। हमने जगदीशपुर पर तो आजादी का परचम लहरा दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे ज्यादातर साथी शहीद हो गए हैं। लेकिन वो मरे नहीं हैं, वे अमर हो गए हैं सदा सदा के लिए।

0: जगदीशपुर की विजय के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह मातृभूमि को याद करते हुए शहीद हो जाते हैं। अपने जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को जगदीशपुर की रियासत पर कदम भी नहीं रखने दिया।
1: सच में आनंद रंजन भाई, समझ नहीं आता कि ये कहानी सुनकर हम लोग आनंदित हो जाएं या फिर रंज करें इस वीर को खोने का जो 75 वर्ष का युवा था।
2: सच में भाई, देशभक्ति की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है।
0: हाँ, तभी तो अंग्रेज तक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कुंवर सिंह जी ने इतनी बार अंग्रेजों को हराया कि अंग्रेज इतिहास लेखक ने उनकी एक लड़ाई के बारे में लिखा है कि अंग्रेजी फौज की इतनी शर्मनाक हार हुई कि मुझे लिखने में भी शर्म आ रही है।
1: वाह भाई वाह आनंद भाई, आज तुमने बाबू कुंवर सिंह के बारे में इतने अच्छे से बताया कि दिल खुश हो गया
3: भाई। हाँ, और इसीलिए हमारी तरफ से यह चाय मुफ्त में।
4: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
6: नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।
7: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जागृति में आप सभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है वो हमारे जीवन शैली में दिखता है। वो कैसे है, क्या है, इसीलिए हमें हमारी मनोरोग विशेषज्ञ है या मानसिक रोग विशेषज्ञ है, इन सभी से चर्चा करने की और समझने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में अनिद्रा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और ये भी सीखा कि हमें नींद करना कैसे है, स्लीप हाइजीन कैसे करना होता है और वो प्रिपरेशंस करना कितना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे जो ओवर स्लीपिंग है, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सो जाते हैं या फिर जब एक बार हम सोते हैं तो फिर उठने का कोई समय नहीं रहता है, कभी भी उठते हैं और उस कारण से हमारी बहुत दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। घर वाले बोलते रहते हैं बहुत टाइम हो गया, अभी उठो उठो, दोपहर हो गया है, दिन चढ़ रहा है, बट देन हमारा मन नहीं करता है कि हम उठें और थोड़ा सो जाएं। लेकिन क्या वाकई में वो नींद हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हम वाकई में वो नींद से रिलैक्सेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम कुछ और चीज़ों को हमारे जीवन में इनवाइट कर रहे हैं? तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारियाँ लेंगे और हमें अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ है हर्षिता जी और डॉक्टर वीरेंद्र जी। आप दोनों हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आप दोनों को जागृति इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है
8: जी। नमस्कार।
7: नमस्ते सर। नमस्ते हर्षिता जी।
9: तो
7: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्लीप हाइजीन जिस तरीके से आपने पिछली बार हमें अवेयर किया है हमारे श्रोताओं को, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार हम रात को लेट हो गया इसीलिए सुबह कभी भी उठेंगे, 12 1 बजे 2 बजे तक भी सोते रहते हैं या फिर शाम को अगर जल्दी भी सो जाते हैं तो भी हम दिन में लेट उठते हैं। तो जैसे पिछली बार ये कहा गया कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन जब देर रात में सोए हैं, पूरा हफ्ता बहुत हार्ड वर्क रहा है या हॉलीडेज हैं इसलिए हम ओवर स्लीपिंग कर लें या फिर कोई काम नहीं है इसलिए हम सो जा रहे हैं, किताब पकड़ लिया नींद आ गई सो गए हैं, फिर इस तरीके की जो स्लीप की कोई साइकिल नहीं है या फिर टाइम नहीं है और जब मर्जी सो रहे और जब सोते हैं तो उठने का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके के जो स्लीप साइकिल रहती है वो क्या ये सही है, और इसके कारण भी हमारे जीवन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं?
8: पिछली बार जब हमने बात करी थी नींद नहीं आने या निद्रा के ऊपर में, उस समय मैंने कुछ बातें आपको अगर याद हो तो बताई थी कि नींद 7 से 8 घंटे की नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं जिनको उससे कम नींद आती है और कुछ लोग होते हैं जिनको उससे ज़्यादा नींद आती है, उनको हम लॉन्ग स्लीपर्स या शॉर्ट स्लीपर्स भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 10 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है और कुछ लोगों के लिए 4-5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। बट अभी जब हम नींद के बाकी डिसऑर्डर्स या बाकी बीमारियों की बात करते हैं निद्रा के अलावा, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां नींद से जुड़ी हुई आती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन जिसके भी हम बात कर रहे हैं, ओवर स्लीपिंग जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, हम डॉक्टरी भाषा में उसको हाइपरसोमनियाज और पैरासोमनियाज बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा आ रही है, मनुष्य जो है वो 10 घंटे से बहुत ज़्यादा 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे सो रहे हैं, तो उनके जगने का समय बहुत कम रह गया है। एक तो ये हो गया, और दूसरा पार्ट ये हुआ कि जब आपकी स्लीप साइकिल का पैटर्न पूरा गड़बड़ हो गया, मतलब जब आप सुबह के 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं और उसके बाद सीधा शाम को 4-5-6 बजे उठते हैं, या अक्सर जो पार्टी करते हैं लोग वो बहुत बार ऐसा करते हैं, यानी जिनके लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि उनकी नाइट लाइफ ही बहुत ज़्यादा है और डे लाइफ उनकी बहुत कम हो गई है, कुछ उस तरह के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सो तो ज़्यादा रहे हैं या सो तो नॉर्मल रहे हैं, बट जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो दिन में भी सोए सोए से महसूस करते हैं खुद को, मतलब खुद को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। रात को तो ठीक से सो गए हैं पर जब सुबह उठ के कहीं भी बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठे तो आँख की झपकी लग गई, कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव चल रही है पीछे गाड़ी में बैठे तो नींद आ गई, मूवी चल रही है कुछ भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे जिनको नींद आ जाती है, काम पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए भी, तो उस तरह नींद की बीमारी, नींद बीमारी। तो इनको हम बारी बारी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें मैं बात करना चाहेंगे वो हाइपरसोमनिया या अधिक नींद आना जिसको बोलते हैं। देखिए अधिक नींद आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, और हमें सबसे पहले अधिक नींद आने के कारण ढूंढने पड़ेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। डायबिटीज़ के लोगों को बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको डायबिटीज़ या शुगर अनकंट्रोल होती है उनकी नींद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और ये मतलब विशेष साइकिल है। आप वो ज़्यादा देर तक सो रहे हैं उसकी वजह से उनकी शुगर और बढ़ रही है, उनकी शुगर और बढ़ रही है उसकी वजह से वो और ज़्यादा देर तक। उसके अलावा कोई अन्य बीमारी तो नहीं है उनको शुगर के अलावा, कोई और मेडिकल इलनेस जिसमें नींद उनको ज़्यादा आ रही है, या वो किसी तरह की दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे जिसमें उनको नींद ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे खांसी के सिरप जो हमारे होते हैं उनके अंदर में ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि ना चाहते हुए भी नींद आती है, या कफ कोल्ड लगा, कुछ लोग एलर्जी की दवाई बहुत रेगुलर लेते हैं, सिट्रिजिन की दवाई, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो महीनों महीनों सालों सालों खाते ही जा रहे हैं, उस दवा के बिना उनका काम ही नहीं चल रहा, तो उन लोगों में भी नींद ज़्यादा आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये सब दवाइयाँ हमारे उन एरियाज में काम करती हैं जो नींद को इंड्यूस करते हैं, जो नींद को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो उन केसेस को हम लोग हाइपरसोमनिया बोलते हैं। तो हाइपरसोमनिया केसेस के अंदर हमने सबसे पहले उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे केसेस है कि सिर्फ नींद ही ज़्यादा आ रही है और कोई मेडिकल इलनेस नहीं है उनको, और भी कोई या कोई दवाई भी नहीं ले रहे, तो ऐसे केसेस को हमें अलग ढंग से ट्रीट करना होता है। तो जिन केसेस में जो मेडिकल इलनेस है जिनको कोई जैसे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले हमें उसको देखना है, शुगर को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, उनकी उस दवाई को टेपर डाउन करके कम करके बंद करना है ताकि उनकी नींद ठीक हो। पर जो लोगों को नेचुरली ये हाइपरसोमनिक हो रखे हैं जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उन केसेस के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्लीप को रेगुलेट किया जाए। उनकी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है, जनरली हम उनको अचानक से कि आप वो 10 बजे सोते हैं और फिर सुबह 11-12 बजे उठते हैं तो उनकी नींद जो है वो 16-17 घंटे की हो रही है, तो हम अगर उनको अचानक से बोलेंगे कि आपको कल से सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है तो वो उनसे नहीं हो पाएगा।

0: वो एक दिन हो पाएगा, दूसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो उस केसेस में हम जो करते हैं, हम उनको ग्रेजुअली टेपर डाउन करते हैं, तो स्पीड को ग्रेजुअली कम करते हैं। कि जैसे अभी आपके उठने का समय, अगर अभी 12 बजे आप रेगुलर उठ रहे हैं रात को 10 बजे सोने के बाद, तो उसको कोशिश करें कि पहले उसको 11 पे करें, फिर उसको 10 पे शिफ्ट करें, फिर उसको 9 पे शिफ्ट करें। ऐसे करते करते हर हफ्ते एक एक घंटा कम करते जाएं, और अगले एक डेढ़ से दो महीने के अंदर में अपनी नींद को 10 से लेकर सुबह 6:30 बजे तक ले आए, तो उस कंडीशन में आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होगी। जब आप ग्रेजुअली कम करेंगे तो आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बहुत समय से बहुत देर तक सो रहे हैं तो आपके शरीर को उस प्रकार की नींद की आदत पड़ जाती है। तो अगर ग्रेजुअली बदलेंगे तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, बहुत समय तक रहेगी, और वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
1: जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कई बार हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या बीपी शुगर या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, उस कारण से भी हमारी नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने कहा कि चाहे वो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर नाइट पार्टीज कर रहे हैं उस कारण से, बट देन इसमें हम ये जानना चाहते हैं, जब ओवर स्लीपिंग होता है, क्या वाकई में वो इंसान नींद कर रहा होता है, या जो वो डीप स्लीप या फिर साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं, या फिर वो सिर्फ सोया हुआ है लेकिन वो गहरी नींद नहीं है जो बॉडी को हील कर रहा है, या फिर जो स्लीप साइकिल जो बॉडी को रेस्ट देने के लिए होता है?
0: इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि नींद की प्रकार, नींद में दो तरह की नींद होती है, आरईएम स्लीप और एमरीएम, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, उस समय वो हिल रही है, वो नींद हमारी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है। और बहुत सा सीन हमें नींद का ऐसा होगा जब हमारी आंख की पुतलियां नहीं हिल रही होती, उसको हम एनआरईएम स्लीप बोलते हैं। तो इसमें जो एनआरईएम स्लीप होती है उसको हम जनरल अधिकतर गहरी नींद या फिर डीप स्लीप बोलते हैं। उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, एनआरईएम 1, एनआरईएम 2, एनआरईएम 3, एनआरईएम 4, कि आप कितना गहरी नींद के अंदर में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही हम सोने गए तो हमारी एनआरईएम स्लीप सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है, और उसके 45 मिनट बाद पहली आरईएम स्लीप की बाउट आती है। हमारे जो सारे स्वप्न हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमें आरईएम स्लीप के अंदर में दिखाई देते हैं, और एनआरईएम स्लीप में हमारा ब्रेन बिल्कुल डीप स्लीप के अंदर में और एकदम गहरी गहन अवस्था के अंदर में चला जाता है, जहां वो बिल्कुल अपने उसने सिर्फ कुछ जरूरी काम छोड़कर बाकी सब काम करना उसने बंद कर दिए हैं। तो उस समय ब्रेन जो है वो एक्चुअली रिकवर कर रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चाहे 8-10 घंटे सो रहे हैं या 15 घंटे सो रहे हैं, आपकी एनआरईएम की स्लीप की टोटल जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, कि आपको पूरे रात के अंदर में 3 घंटे की एनआरईएम स्लीप आनी है, जो कि डीप स्लीप है, वो 3 से 3.5 घंटे की आनी है, वो आपकी फिक्स है। अब अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, आप 10 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, और आप 12 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएंगे। तो जो एक्चुअल नीडेड स्लीप है, हालांकि दोनों नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरईएम स्लीप की जरूरत है, बट जो ब्रेन को एक्चुअल रिलैक्स कर रही है, जिसको हम डीप स्लीप या गहन निद्रा बोलते हैं, उसका टाइम बहुत फिक्स है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो नेचुरल स्लीप है, क्योंकि अगर जब आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं पर आपकी एनआरईएम स्लीप उतनी रह रही है, तो जो आपकी बाकी स्लीप है वो बेसिकली उसमें आपका बॉडी फंक्शन और आपका दिमाग फंक्शन कर रहा है, वो रेस्ट स्टेट में नहीं जा रहा है। तो हमें अपनी डीप स्लीप को बढ़ाना जरूरी है कंपेयर टू आरईएम स्लीप।
1: जी, कि कई बार लोगों का ये होता है कि वो नींद हमें क्यों रिड्यूस करना है, वो 10-12 घंटा 15 घंटा जो भी है हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं और हमको कोई काम नहीं है इसलिए हम सो रहे हैं, तो नींद तो अच्छी होती है, हम क्यों कम करें, ऐसा भी लोगों का विचार होता है, खास करके जो यंग जनरेशन्स हैं, हॉलीडे है या फिर हमने रात को पूरा काम किया है तो अभी दिन में सोएंगे, और वो ऐसा कंटिन्यू होता है कि दिन की 10-12 1-2 भी बज रहा है लेकिन उठने का वो नहीं होता है उनसे। तो हम कैसे वो मेंटल प्रिपरेशन करें कि नहीं, मुझे कितना भी काम करे मुझे इस टाइम तक सोना है, इसके बाद नहीं सोना है।
0: ये सबसे जरूरी है जानना यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके जगने में होती है, सोने के अंदर में नहीं होती। नींद हम अपने दिमाग को और शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए कर रहे हैं, और नींद का कोई काम नहीं। नींद का काम यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में जाए, और उसको एक लेवल तक की रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद वो रिलैक्सेशन चाहिए इसलिए कि वो दोबारा काम कर सके। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो जगने के अंदर में है, सोने के अंदर में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सोने से हम कोई काम नहीं कर सकते, दुनिया में सारे काम सब मेहनत चक्कर ही होते। तो इस समय जो लोगों का कहना है कि हम क्यों जागें, तो सबसे पहले तो इसमें जानना ये जरूरी है कि अधिक सोने से आपको कुछ अधिक फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, ना आपको ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपके मन को, ना आपकी बुद्धि को, ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा अधिक सोने से। उल्टा उसके नुकसान जरूर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शुगर अनकंट्रोल हो रही है, आपका थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल होने लग पड़ता है अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब हम जगेंगे तभी हमें, अगर हम 10-12 बजे तक, 12 एक बजे तक सो रहे हैं, तो हम अपने जो सुबह के रूटीन है, जो मॉर्निंग वॉक है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जिम जाना है, जॉगिंग करना है, मेडिटेशन करना है, वो कब करेंगे अगर हम 12 एक बजे तक सो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उनकी जरूरत ज्यादा है। तो अधिक सोने से हमें कोई अधिक सोने से हमारे शरीर को अब नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहे हैं, वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो इसलिए सोने के समय को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सोने के शुरुआत का समय, जब हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए कि इस समय सोने चले जाना है, 10 बजे मैं बेड पर जाऊंगा, और उसको रोजाना वैसा ही रखना। जब आप वैसा रखेंगे और उसके बाद सुबह उठकर बेड से उठना, जगने का मतलब ये नहीं है कि आप जग गए और उसके बाद बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जगने का मतलब जब सोने के लिए आप बिस्तर पर जा रहे हैं तो जब आप जग रहे हैं तो आपने बिस्तर छोड़ देना है, अपने बिस्तर से खड़े हो जाना है और अपने नित्य कर्म करने हैं। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे, एक बार जब बिस्तर छोड़ देंगे तब फिर दोबारा नींद आने की संभावना कम है। बट अगर आप जग गए और बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद कर दिया, आप गए और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फिर आप दोबारा नींद एक देखेंगे। तो हमें उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है कि हम ये समझना होगा कि हमें बिस्तर को छोड़ देना है, नित्य कर्म जो करने हैं, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, या पढ़ाई करनी, पढ़ने की जो चीज जो है वो सुबह का होता है, उस समय सबसे ज्यादा चीजें याद रहती हैं। तो उठते हैं तो आपके पास आपको 1-1.5 घंटा मिलता है दिन के सब काम निपटाने के लिए, तो आपके पास में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी सर, ये तो ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और स्लीपिंग आवर्स की बात हो गई है। इसमें नींद की जब हम बातचीत करते हैं तो और चीजें हैं, एक तो खर्राटे मारते हैं, क्या उनकी नींद उतनी ही गहरी और रिलैक्सिंग होती है? और दूसरा, जब वो खर्राटे मारते हैं उस कारण से दूसरों की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर वो लोग नींद ना होने के कारण इरिटेशन है, वो सभी चीजों से वो जूझते रहते हैं, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या खर्राटे का भी कोई इलाज होता है? ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, इसका क्या कारण है?
0: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बात करनी चाहिए बेसिकली कि हम लोगों को क्या लगता है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में ये मिथ है कि खर्राटे वाली नींद जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब कोई अगर खर्राटे मार के सो रहा है तो लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा खासा तो एकदम खर्राटे ले रहा था, इतना अच्छा सो रहा था। ये बात जनरली हम लोग आपस में जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, वो ये बात हमेशा करती है आपस में कि एकदम गहरी नींद में सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब खर्राटे लेके सो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि खर्राटों वाली नींद अच्छी नींद नहीं होती।
1: ओके।
0: अच्छी नींद वो है जो बिना खर्राटों के आ रही है। खर्राटों वाली नींद बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं होती। जो व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है, हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो खर्राटे किस लिए आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। खर्राटों का कारण क्या है?
1: जी,
0: खर्राटे एक फिजिकल फिनोमिना है, वो इसलिए हो रहा है कि जब दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई
1: जी,
0: तो दिमाग ने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी बाकी शरीर के साथ। तो दिमाग जग गया, दिमाग सो रहा था, अचानक से उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जग गया, उसके सारे पार्ट अलर्ट हो गए, उसने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी। अब उस ऑक्सीजन की डिमांड के लिए वो छाती के ऊपर में प्रेशर सिग्नल भेजता है कि आप मुझे और हवा सोख के दीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो छाती है वो जोर जोर से हवा खींचने की कोशिश करती है, और उस समय जो आवाज पैदा होती है वो खर्राटे हैं। तो बेसिकली वो ब्रेन डिमांड कर रहा है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। और वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसको जनरली जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि ज्यादातर जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है वो लोग बहुत खर्राटे मारते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। उनमें क्या होता है कि जो जीभ है जब वो सो रहे हैं वो पीछे चली जाती है, टंग फॉल बैक के नाम से, वो जीभ पीछे चली जाती है और वो सांस की नली के रास्ते को रोकने लग पड़ती है। इसलिए हवा फेफड़ों में ठीक ठाक नहीं जा रही। तो जब हवा ठीक ठाक फेफड़ों में नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही खून के अंदर में, और खून में जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो दिमाग को कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसीलिए खर्राटे का फिनोमिना आता है। तो खर्राटों का मतलब यह है कि जब जब खर्राटे लग रहे हैं तो एक्चुअली ब्रेन जो है वो गहरी नींद में नहीं जा रहा है, वो एकदम कच्ची नींद में रह रहा है, वो नींद अच्छी नहीं है। खर्राटों वाली नींद बहुत बहुत खराब है। और जिन भी श्रोताओं को खराब

0: आ रही है जिसकी वजह से खराटों वाली नींद, जो सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर में नींद के सेल्स गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर जीभ नीचे जा रही है, या वजन बहुत अधिक है। खासकर मैंने जैसे बताया कि मोटे लोगों में खराटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनका वजन अधिक है उनमें खराटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खराटों वाली नींद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं
1: जी। तो इसका साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है खराटे वालों से?
0: खराटे की नींद का न्यूरोलॉजी से संबंध है, बेसिकली न्यूरोसाइकोलॉजी से संबंध है उसका, बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजी, साइकेट्री और न्यूरोसाइकेट्री संबंध है उसका, नसों का काम है सिर्फ, कि ब्रेन जो है वो रात को बार बार जाग रहा है। इसके अंदर में सबसे पहले हम मरीज को वजन कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। उसके बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं हो रही तो बाईपास बोल के एक मशीन आती है जनरली, वो यूज करने के लिए दी जाती है, जो ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ में नाक से अंदर की ओर भेजती है, ताकि रात की नींद गहरी हो। तो जब एक बार ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलने लग पड़ती है तो चीजें ठीक होने लग पड़ती है। बट मरीज से हम कोशिश करते हैं कि उसकी शुगर ठीक रहे, उसका वजन कम हो, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये एक प्योरली मेडिकल इलनेस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि खराटे की दिक्कत आती है
1: जी। सर दूसरी प्रकार की जो नींद है जिसमें हम सपने बहुत देखते हैं, कई बार ये कहावतें भी सपनों के रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, जो दिन में सपने देखते हैं, या फिर वो जो मृत वेले के टाइम पे जो सपने आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों की सपने ऐसे होते हैं वो नींद खराब कर देती हैं, हॉन्टिंग होते हैं, इससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। और वो सपने किसी को सुकून की नींद देती है तो किसी की नींद उड़ा देते हैं, लेकिन क्या ये जो सपने हम देखते हैं उसमें भी हमारी नींद और नींद से जो शरीर को रिलैक्सेशन मिलनी है वो हो रहा है, या फिर हमारी नींद पूरी हो चुकी है लेकिन हम ख्याल कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, या जो भी हम फिजिकली यहाँ पे सो रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली कहीं और हैं, एंड देन वी आर नॉट, वो नींद फुलफिल नहीं हो रही है?
0: देखिए सपने हमारी नींद का बहुत जरूरी हिस्सा है। मैंने जैसा आपको बताया कि नींद के दो पार्ट होते हैं, NREM और REM। तो REM स्लीप के अंदर में सपने आते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पुतलियाँ घूम रही होती हैं, तो उस समय जो भी दिन में या उसके कुछ दिन पहले घटित हुआ है, जो दिमाग में स्टोर हुआ है, दिमाग उसी को आसान फॉर्म में रिलीज करने की कोशिश करता है, और वही चीज़ें जो है वो सपने की फॉर्म में आती है। आप जब जैसे कि आप किसी पुराने अपने मृत रिलेटिव की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों से, तो आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो आपको सपने में वो व्यक्ति दिखाई देने लग पड़ा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने इतनी बात करी कि दिमाग में जो उस व्यक्ति की छवि थी वो एक्टिवेट हो गई, तो वो सपने में हमें वही छवि दिखाएगी, और हम उस व्यक्ति के बारे में जो जो सोच रहे थे वो वैसा वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, बट उससे जुड़ा जुड़ा कुछ ना कुछ आपके सपने में आएगा। तब अब जो सपने, जैसे कि जिनको बोलते हैं कि जिनको सपने में भूतों के सपने आते हैं वो डर जाते हैं, तो बेसिकली वो लोग एंग्जाइटी की बीमारी से पीड़ित होते हैं। उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन लोगों को सपने अत्यधिक आते हैं, क्योंकि उनका दिन ब्रेन जो है वो सारा दिन बहुत बेचैन और बहुत कोशिश करता रहता है अपने आप को कंट्रोल करने की, तो इस वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है उनका ब्रेन, तो सपनों की फॉर्म के अंदर में आती है, जिसमें उनको ऐसे सपने आएंगे कि जैसे कि आपको बहुत बारी सपना आएगा कि मेरा एग्ज़ाम छूट रहा है, हालांकि अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा, फिर भी मुझे रात को ये सपना आता है कि मैं अपने एग्ज़ाम में टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, मेरी ट्रेन छूट रही है। बहुत बारी सपना आता है कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन निकल चुकी है, इस तरह के सपने आते हैं। उससे उन सपनों से आदमी घबरा के आदमी की नींद खो जाती है, तो बेसिकली वो हमारी इनर एंग्जाइटी को शो करते हैं। तो अगर एंग्जाइटी के ऊपर में काबू पाया जाएगा वाई JPMR करके, या दवाई के साथ में, या मेडिटेशन के साथ में, जैसे भी एंग्जाइटी में जब कंट्रोल किया जाएगा तो सपनों की नींद जो है वो कम होने लग पड़ेगी, और सपनों की क्वालिटी अच्छी होने लग पड़ेगी। मतलब आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे, स्वप्न आने तो जरूरी है, स्वप्न आएंगे ही आएंगे, उसको बंद नहीं किया जा सकता, बट अच्छे स्वप्न आएंगे तो हमको दिन के समय वो याद नहीं रहेंगे। बट अगर डरावने सपने आए जिसमें हमारी नींद खुल गई अचानक से, तो वो हमें काफ़ी देर तक याद रहते हैं, अगर हमारे REM स्लीप वाले स्वप्न आ रहे हैं।
1: तो जिस तरीके से आपने एक स्लीप हाइजीन के बारे में बोला है अनिद्रा के लोगों के लिए, तो इज देर एनी मेथड या फिर कोई प्रिपरेशन जो ओवर स्लीपिंग या फिर ये सपने हैं, ये सभी तरीके के जो डिजास्टर्स हैं आज जिन चीज़ों पे हमने चर्चा की है, उसके लिए भी कोई तरीका है या प्रिपरेशन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए?
0: ओवर स्लीपिंग के लिए तो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि सबसे पहले जैसे नींद सोने जाने का समय निर्धारित करना है, वैसे ही उठने का समय भी हमें फिक्स करना है। पहला पॉइंट है ये कि हमें उठने का समय हमेशा फिक्स करना है, और उठने के बाद हमें बिस्तर को छोड़ देना है। ये दूसरा पॉइंट है कि हमें बिस्तर पे नहीं रहना है। जब सोने जाना है

0: था जिनके समय तब बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है, तो जैसे ही आपके उठने का समय हुआ आपको बिस्तर को छोड़ देना, बिस्तर का त्याग कर देना। तीसरी चीज, रात के समय शराब या इन सब का सेवन नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, वो हमारे को हाइपरसोमिया इनको बढ़ा देते हैं या नींद को कम भी करते हैं, पर बहुत केसेस में वो नींद को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम नशे से दूर रहें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। चौथी, हाइपरसोमिया का हमें कारण निकालना पड़ेगा कि कहीं कोई शारीरिक परेशानी की वजह से, कोई मेडिकल इलनेस की वजह से तो नहीं आ रहा। अगर वैसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। और जो लोग ऑलरेडी हाइपरसोमिक हैं, जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उन्होंने तरीका बताया था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आधा आधा एक एक घंटा कम करते करते अपने आप को 2 से 3 महीने में नॉर्मल लेके आना है। बनिस्पत की आप एक दिन में कोशिश करें कि मैं सुबह 4 बजे कल से उठना शुरू कर दूं, वैसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि एक एक घंटे अपनी नींद को ठीक करते करते आप 1 से 1.5 महीने में अपनी नींद का समय को ठीक करें। और जहां तक स्वप्न की बात है, तो स्वप्ने जो जैसे मैंने बताया कि उसमें वो जो डरावने सपने और ये सब आते हैं वो एंग्जाइटी की वजह से बहुत बार होते हैं, तो हमें एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, हमें जड़ के ऊपर में काम करने की कोशिश करनी है। तो एंग्जाइटी के लिए जैसा डॉक्टर हर्षिता ने बताया था कि JPM एक टेक्निक होती है, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, वो मैम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। ये हो गया, या फिर एंग्जाइटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन, सोने से पहले थोड़ा ध्यान लगाकर सोए, तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो आपके सपने जो हैं वो अच्छे सपन रहेंगे और ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको सुबह याद रहें या आपकी रात की नींद में खलल डालेंगे।
1: जी सर, यहाँ पर एक और सवाल है जहाँ पर हम महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी इस प्रकार की स्लीप साइकिल्स को देखने को मिलता है, वो जो रेस्ट चाहिए, या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर स्लीपिंग की जो आदत पड़ जाती है, घंटों तक वो सोने की इच्छा होना या नींद करने की, तो इज इट समथिंग डिसऑर्डर या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या महिलाओं को खास करके अपनी हेल्थ को देखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है?
0: देखिए, प्रेगनेंसी के समय डेफिनेटली नींद कभी कुछ लोगों की बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि नींद जो है प्रेगनेंसी के समय में भी हम 8 से 10 घंटे के बीच की नींद रखें, इससे ज़्यादा की नींद ना लें, ठीक है? क्योंकि आप को प्रेगनेंसी के अंदर में दिन के सारे कार्य भी करने हैं, नॉर्मल कार्य भी करने हैं अपने, तो अगर आप नींद बहुत ज़्यादा लेंगी तो उसका एज सच तो कुछ असर नहीं करता पटवाड़ता, पर जब एक बार डिलीवरी हो जाएगी, जब पोस्टमार्टम पीरियड आएगा, क्योंकि उस समय जब बच्चा आएगा तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, तो उसके बाद में अचानक से आपकी स्लीप साइकिल चेंज होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो रात को भी जगेगा, रात को बहुत बार रोएगा, आपको उठना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, तो उस समय आपकी नींद जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के समय 15-15 घंटे सो रही हैं आखिर में जाकर, तो फिर जब अचानक से आपकी नींद 5 घंटे 4 घंटे की रह जाएगी, तो आप फिर बहुत डिस्टर्ब फील करने लग पड़ेगी, तो जैसे पोस्टमार्टम की इस तरह की बीमारियां सिर उठने लग पड़ती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी के समय अपनी नींद को निर्धारित रखें, और पोस्टमार्टम समय में जो मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि बच्चे ने तो रात को जगना ही है, तो मैं हमेशा ये माँ जो पोस्टमार्टम मदर्स होती है उनको सलाह देता हूँ कि आप अपने सोने का समय अपने बच्चे के साथ निर्धारित करें। जिस समय बच्चा सो रहा है आप उस समय कोशिश करें कि आप अपनी नैप ले लें, क्योंकि आपको कभी भी इकट्ठी 5 घंटे सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे को 2-2.5 घंटे में भूख लगनी ही लगनी है, और उसके बाद वो उठेगा, रोना शुरू करेगा, तो आपको जगना पड़ेगा। उसमें जो जीवन साथी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी वाइफ की मदद करे, कि जिस समय वाइफ आराम कर रही है तो उस समय बच्चे की देखभाल वो करे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड आजकल जैसा कि बोलते हैं कि सिर्फ महिला का नहीं, पति का भी साथ में होता है, उसको भी साथ में पूरा का पूरा सहयोग देना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए जो क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए है, तो उनके लिए प्रेगनेंसी में अपनी नींद को ठीक ठाक रखना है, 8 से 10 घंटे सोना है, उसी शेड्यूल को सारी प्रेगनेंसी में मेंटेन करना है, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देना, और जब पोस्टमार्टम पीरियड आना है तो उस समय कोशिश करनी है कि अपनी नींद को बच्चे की नींद के साथ साथ पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पहले 3-4 महीने सोने का समय बहुत कम मिलने वाला है।
1: जी, इसके अलावा और कोई प्रिकॉशंस या फिर कोई बातें हैं जो नींद को रिलेटेड खासकर महिलाओं के लिए?
0: डॉक्टर हर्षिता अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं तो वो बता सकती हैं।
1: जी
2: हाँ, श्योर, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक रिलेटेड टू जब हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो एक स्लीप केयर है वो वुमेन की लाइफ में अगर बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होता है, अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, उसका जो साइकिल होता है उसकी बात करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इन जनरल से वहाँ पे पीएमएस के सिम्टम्स अगर आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी वजह से विमेन की जो स्लीप डिस्टर्बेंस फील वो बिल्कुल कर सकते हैं. तो पीरियड्स के पहले जिनको हम पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीरियड्स के दौरान स्लीप की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है. तो अगर हम कुछ चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखें तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं कि जैसे हीट पैड्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल हो सकती है उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टीज आती हैं, चाय आती हैं, अगर वो उनका सेवन करें बेड टाइम पर तो वो बहुत रिलैक्सिंग, एक आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है. सो एक ये चीज़ हम स्पेसिफिकली वेमेन के लिए कर सकते हैं. दूसरा, जब टाइम आता है मेनोपोज का, उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो रात को वेमेन फील करती हैं कि उनको नाइट स्वेट्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, एकदम से गर्मी लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी स्लीप का उस समय पर भी ध्यान रखें, अपने बेडरूम को थोड़ा ठंडा रखें, एसी या फैन का यूज़ करें, और अपना सोने का उठने का टाइम फिक्स करें, और एक एक्सरसाइज जो है वो उसमें स्पेसिफिकली ऐड ऑन करें, क्योंकि डेली एक मॉडरेट एक्सरसाइज से हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. तो ये दो चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ऐड कर सकते हैं.
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर हर्षिता जी. हमारी जो नींद जीवन का सबसे प्यारी चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में एक संतुलन और एक सही तरीके से सोना और क्यों ज़रूरी है और उसको ठीक कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर आज प्रकाश डाला और हमारी श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को जागरूक किया. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
0: जी शुक्रिया, धन्यवाद
1: जी. तो दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी को कुछ बेहतर जानकारियाँ मिली हैं, और जहाँ पे भी आपको लगा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है या फिर हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करें, और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर जो भी जिनसे भी आपको संपर्क करना है उनसे संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें. हम फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों, मान लीजिए 2026 में जो प्रॉमिसेस हमने अपने आप के साथ किया था कि हम ये करेंगे 2026 में, क्या दृढ़ निश्चय के साथ हम वो कर पा रहे, या फिर जो हमारे लक्ष्य है उसके लिए हम पहला कदम उठा चुके हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। क्योंकि दृढ़ निश्चय अगर हमारे अंदर होगा तभी ही हम उसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं प्रिया दीदी जी, जिनको आप जानते हैं, आप उन्हें कई बार सुन चुके हैं। तो इनसे बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं जो हमें दृढ़ संकल्प के इस मूल्य के बारे में सरल शब्दों में, सरल तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे। दीदी ने MBA कंप्लीट किया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनके नस नस में बचपन से ही था, और उसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा है और औरों को भी समझा रहे हैं। यूथ हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो घर में रहने वाले पेरेंट्स हो, सबको वो सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जो निजी लाइफ है उसे कैसे जीना है बेहतर तरीके से, पॉलिश्ड तरीके से। तो प्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं आज जो मूल्यों के बारे में, क्योंकि सपनों को अगर हकीकत में लाना है तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो अगर हम दृढ़ निश्चय ये बात कहते हैं, ये तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, आप इसे सरल तरीके से कैसे समझाना चाहेंगे?
1: जी, बहुत अच्छा जो मैंने सुन रही हूँ शुरू से ही आपने लिया है कि जनवरी में हम लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, खुद से किए हैं, लोगों से किए हैं, शायद खुदा से भी किए हैं।
0: फरवरी महीने में भी हमने किया है, जैसे प्रॉमिस डे और भी डेज थे।
1: हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि दृढ़ निश्चय कितना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि दृढ़ निश्चय माना कोई भी चीज पक्का करना, और पक्का करना इतना कि उसके ऊपर हमें पूरा निश्चय भी हो कि हाँ ये मैं करूंगा या करना ही है
0: जी।
1: तो इसको हम कहें कि कोई भी चीज जो मैं ठान लेता हूँ या अपने अंदर पक्का कर लेता हूँ, तो उसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो कमिंग जनरेशन है, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं
0: जी,
1: तो इनमें हमने देखा है खास, हालांकि ये पहले से ही हो रहा है, सिर्फ इन जनरेशन में नहीं आया है, उनके फादर मदर उनसे भी पहले से ये चीज शुरू हो गई है कि हमारे अंदर ये दृढ़ता की कमी बहुत ज्यादा आने लग गई है
0: जी।
1: हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे हैं अपने संकल्पों में। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं
0: जी।
1: तो ये चेंजेस अगर आते हैं तो एक मानवीय जो कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ अगर हम किसी का देखते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का है या किसी भी व्यक्तित्व जो आज हम देखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बहुत जो लोगों के दिलों पे है, तो उनका हमने देखा है कि दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा होता है
0: जी।
1: वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं
0: जी।
1: तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उनके जीवन का, दृढ़ निश्चय, जिसकी वजह से वो आज जहां है उनको आज पूरी दुनिया जो है सम्मान करती है
0: जी। दृढ़ निश्चय मतलब एक मानसिक स्तर पे हम सोच लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कि आप अफर्मेशंस लो, मैनिफेस्ट करो, ये तो हम करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, और उसके लिए बोलते हैं कि आप फेक उन चीजों को अपने दिमाग में लूप मोड में रिपीट करो जब तक आप इसको कर सकते हो, मेक कर सकते हो, तो ये तो करते हैं। लेकिन वो जो स्तर है वो सूक्ष्म में है, तो ये स्थूल में क्यों नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल में क्यों अचीव नहीं कर पाते?
1: क्योंकि जितने स्टेटमेंट आपने बोले हैं उसमें कुछ चीजें अगर आप नोट डाउन करें कि पहले ही आपने कहा फेक है, तो आपका माइंड जानता है ये फेक हो रहा है, जबकि माइंड को ये सूचना नहीं देनी है। इट्स अ माइंड गेम, इट इज वेरी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल टू, कि माइंड को ये सूचना नहीं देना है कि फेक करना है जी, मैं नकली बोल रहा हूँ जी। हालांकि हम ये चीज उसे बोलकर नहीं बता रहे, लेकिन ये अंदर है,
0: सबकॉन्शियस माइंड में है।
1: हाँ, और तभी मुंह से निकला है कि ये फेक हम अभी कर रहे हैं जब तक कि ये अचीव हो जाए। और दूसरा सेंटेंस जो आपने कहा कि ये करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसको प्रेजेंटली फील करना होता है कि ये मेरे साथ हो रहा है।
0: ओके, उसको फील करना। लेकिन माइंड जानता है ना कि फेक कर रहे हैं, लेकिन
1: माइंड जानता है, लेकिन तभी जानता है जब आप इसको कह दो कि फेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम देखते हैं, जो बोला गया है कि लॉ है एक दुनिया का, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, जो धरती के लिए भी बोला जाता है। तो आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो सोच रहे हैं या चाहते हैं भविष्य में अचीव करने को, उसको इतना महसूस करें कि वो आपको प्रेजेंट में फील होने लगे कि वो आप कर रहे हैं।
0: जी,
1: फॉर एग्जाम्पल, जो एक रियल एग्जाम्पल भी था इसमें, कि एक व्यक्ति थे और उनका जो बेटा है वो बेसमेंट में जाता है, विदेश में बेसमेंट में स्टोर होता है
0: जी।
1: तो बच्चा नीचे जाता है और नीचे कुछ गंद सा बहुत पुराने टाइम का एक बास्केट है, डब्बा है, कार्टन टाइप है, उसको वो खोलता है कि क्या है इसमें। बच्चा छोटा ही है, अभी 5-7 साल का होगा, तो उसमें से वो एक पिक्चर उठाकर ले आता है जो पिक्चर उसके घर की है जिसमें वो रह रहा है
0: जी।
1: तो वो मिट्टी मिट्टी हो रखा था, तो उसको बहुत वो क्लीन करता है कि मेरे घर का पिक्चर इतना सुंदर है, यहाँ क्यों पड़ा है। तो वो बहुत कॉन्शियस है पापा से पूछने के लिए कि ये गंद में क्यों पड़ा है। तो वो ऊपर जाता है और पापा से पूछता है कि पापा ये नीचे क्यों है
0: जी।
1: तो पापा थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते हैं और सुन होने के बाद बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आज से 20 साल पहले
0: जी,
1: या कुछ साल पहले, एग्जैक्टली नॉट द 20 लेकिन कुछ साल पहले, काफी साल पहले, जहां मैं शून्य पे खड़ा था, तो तब मैंने ये घर देखा था, ये पिक्चर मुझे मिली थी
0: जी,
1: और ये पिक्चर मैंने अपने बेड के आगे लगा दी थी
0: जी।
1: ठीक है, और उसके बाद डेली जब उठता था इस घर का देखता था और विजुलाइज करता था मैं इस घर में घूम रहा हूँ, और वो जो सी शोर फेसिंग था ऐसा कुछ, तो मैं वहां खड़ा हूँ और समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ। और वो घर फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचा, देखा, विजुलाइज किया, मैंने डाई हार्ड मेहनत की है और आज मैं उसी घर में खड़ा हूँ।
0: ओके,
1: तो यू हैव टू फील इट कि इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, वो मेरे साथ अब भी हो रहा है, ये माइंड को सूचना देना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: उसके लिए आपको विजुअलाइज, सिर्फ बोलना इज नॉट कंप्लीट टास्क, यू हैव टू फील इट
0: जी।
1: ठीक है, कोई भी चीज अगर जिसको एफर्मेशन आप वर्ड दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू अटर दैट कि आपने रिपीट कर लिया बार बार, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आंसू आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फेक है और आपको खुद भी फील हो रहा है और माइंड को पता नहीं फेक हो रहा है, क्योंकि इमोशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है
0: जी।
1: यू हैव टू क्रिएट द इमोशंस अकॉर्डिंग टू दैट कि वाकई में मैं बहुत खुश हूँ,
0: तो उसके लिए कुछ करना होगा
1: ना, उसके लिए विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप किस चीज से खुशी होती है कि गुलाबों के बीच में मैं बैठा हूँ, गार्डन में हूँ, अगर आपको गार्डन पसंद है, लेकिन अगर आपको खेलना पसंद है तो बहुत सारे बच्चों के बीच में हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग,
0: ओके,
1: आई एम लिविंग द बेस्ट,
0: उसको विजुअलाइज करना।
1: विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इमोशंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
0: Okay.
1: तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें कि जो आपने बोला वही आप देखें और वैसा ही फील करें। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ पर मेरे चेहरे पे एक भी स्माइल ही नहीं है, तो मेरा जो इमोशन है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को फील करना है कि यस मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट इट। मैं खुश हूँ बिकॉज आई एम अलाइव, मैं खुश हूँ बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, रेडियो में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो यू हैव टू क्रिएट दैट इमोशन। तो ये जो टास्क होगा जो 10 साल में होने वाला है वो बहुत फास्ट होगा।
0: ओके जी, तो कुछ और चीजों के बारे में पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम खुश रहने की बात कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बाकी चीजें तो अचीवमेंट्स है, स्थूल रूप में जॉब ये सब हम कोशिश करते हैं और मिल भी जाता है, लेकिन खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम चाहते हैं हर दिन खुश रहें जो भी परिस्थिति हो, लेकिन नहीं रह पाते। तो जब परिस्थिति ऐसे हो प्रैक्टिकल लाइफ में, किसी की डेथ हो गई, परिवार में झगड़ा चल रहा है, कोई जमीन वगैरह की विवाद चल रहे हैं, तो उस बीच में कैसे खुश रह सकता है कोई?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं किसी की डेथ का ही दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लौट के नहीं आती है
0: जी।
1: क्योंकि जो जमीन का विवाद है उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकल जाता है या कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है, चाहे जमीन नहीं मिलती है लेकिन कुछ तो मिलता है, नहीं मिलता है तो कम से कम एक तसल्ली मिलती है, लेकिन स्टिल यू आर अलाइव। लेकिन जब व्यक्ति ही जीवन से चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है किसी के लिए। लेकिन उस समय भी हम ये जरूर सोच सकते हैं कि जो जैसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो होता है, जो हम ब्रह्मा कुमारी में भी समझाते हैं, और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में है। आप शास्त्रों में देखें, आप बाइबल में देखें, कुरान में देखें, तो सदा ही ये लिखा गया है कि जो मेरा था वो शारीरिक रूप में जीवित नहीं है, ओके फाइन आई लॉस्ट हिम, ठीक है, या हर, लेकिन वो जिंदा है
0: जी।
1: ये मानना एक खुशी दे देता है। जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं, सीरियसली जब हम किसी से मिलते हैं जिसका नियर एंड डियर वन जिन्होंने शरीर छोड़ा होता है, तो हम उनको यही कहते हैं कि वो जिंदा है बस उन्होंने घर चेंज किया है। और अगर जैसे एक माता पिता होते हैं और उनका बच्चा जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, विदेश में जॉब लग जाती है, तो माता पिता को खम्मी तो खलती है
0: जी।
1: लेकिन दे फील हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा विदेश में डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है।
0: तो ये एक थॉट अपने मन में लाना बहुत जरूरी
1: है। लेकिन उसके लिए थर्ड पर्सन ही जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक एंड डाउन है। तो उस समय हम उनको यही बोलते हैं कि वो जिंदा है, बस घर छोड़ा है, किसी और के घर में प्रवेश किया है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं लेकिन आप रो रहे हो, और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तो जब ये बात वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, दे अंडरस्टैंड्स कि आपका बेटा वहां जन्म ले रहा है और वहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, बड़े ढोल ताशे शुरू हो चुके हैं, और आप यहाँ रो रहे हो, तो वहां उसके लिए अपशगुन क्रिएट होगा। और वहां क्या हो सकता है उसके साथ प्रॉब्लम, वो आप यहाँ नहीं जान सकते क्योंकि हमें नहीं पता वो किस घर गया, लेकिन गया है। तो जब ये चीज वो समझते हैं तो दे ट्राई टू स्टॉप देमसेल्फ, एटलीस्ट कम होता है उनका,
0: क्योंकि जो जाता है उसको हमें हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी जो हम कहते हैं,
1: यस,
0: तो दिल से निकलना।
1: हाँ, तो हम यही उनको बोलते हैं कि जैसे अभी मोहाली में अगर डेथ हुई है एक दो दिन में, तो हम उनको यही समझाते हैं कि 13 दिन तक 15 दिन तक सोल जो है वो आसपास है। आप रोकर दूसरे व्यक्ति के साथ दुख साझा कर रहे हैं, ठीक है, आप रो रहे हैं, आपको दुनिया समझा रही है, आपके पास कोई है जो आपके साथ बैठा है, ठीक है, आपका रोना देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। वो आपको देख रहा है और वो बहुत रो रहा है, क्योंकि वो अपना रोना आपको शेयर भी नहीं करा सकता, आपको चुप भी नहीं करा सकता। तो इसीलिए आपको उसको फील करके ये याद रखिए कि आपको रोता हुआ देखकर वो कैसा कर रहा होगा फील। तो जब ये बात भी वो समझते हैं कि हाँ मेरे रोने से ना

0: एक्चुअली मेरे से प्यारा था, चाहे वो जवान बेटा है, चाहे वो पति है या पत्नी है, तो जब वो ये चीज़ समझते हैं तो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि मुझे थोड़ा मतलब जो है कंट्रोल अपना करना चाहिए. तो उसके बजाय, क्योंकि वो जा रहा है, उसको जाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी वो उस मोड पे है.
1: जी
0: तो जब कोई घर से जाता है तो आप उसको गंदा बक्सा, गंदे कपड़े, गंदे खाना, ये बासी खाना ऐसा पैक करके देंगे?
1: बिल्कुल
0: नहीं.
1: नहीं.
0: जब भी जाएगा तो आप उसको बढ़िया बेस्टेस्ट आप देंगे. तो अभी भी वो जा रहा है तो यू हैव टू गिव योर बेस्टेस्ट, कि बेस्ट फीलिंग्स, बेस्ट थॉट्स, जो भी है उसको एनर्जी की जरूरत है बिकॉज ही इज इन अ चेंज मोड. और जब हम चेंज मोड में होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है.
1: राइट.
0: फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रमोशन भी हुआ है, यू आर बिकमिंग द बॉस ऑफ दिस FM, ओके, तो भी आपको एनर्जी चाहिए.
1: जी
0: यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर, आपको और पेशेंस चाहिए, तो एनर्जी चाहिए होता है. तो ही इज ऑल्सो चेंजिंग द प्लेस. हर चीज चेंज होने वाला है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका रिलेशंस, उसका घर, उसका प्लेस, उसकी ओनरशिप, हर चीज चेंज हो रही है. तो ही नीड्स द एनर्जी मोस्ट, उसको उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो जब ये चीज भी समझते हैं जब वो, तो
1: जी
0: फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं. हालांकि ऐसा मैं नहीं कहती कि वेरी फर्स्ट डे ही वो रोना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो संभलते हैं.
1: जी बिल्कुल. तो ये संकल्प जो है ये बहुत ज़रूरी है. इस 2026 शुरुआत में ही हमें ये सारी चीज़ें दीदी से जानने को मिला कि कैसे कोई पर्सनल लॉस है, कोई चला गया है आपके लाइफ से, तो किस तरीके से आप उसके साथ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में पेश आएंगे, कैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है. आइए जानते हैं दृढ़ निश्चय के बारे में. डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए. तो दीदी से जानना चाहूँगी कि बहुत से श्रोता हैं और जो भी हमारे दोस्त जॉब करते हैं तो ये कहते हैं कि 2-3 बार असफल होने के बाद वो हार मान लेते हैं.
0: जी.
1: तो असफलता के बाद भी दृढ़ निश्चय को कायम रखना कितना ज़रूरी है और कैसे रखें?
0: अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस 4 घर मिलाइए,
1: 4 लोगों
0: से.
1: ओके.
0: और किसी का भी पता कर लीजिए जो कई बार असफल ना हुआ हो, एक ही बार में टॉप लेवल पे, हर चीज़ में टॉप लेवल पे रहा हो. ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है.
1: जी.
0: सबके साथ फेलियर्स अटैच्ड हैं. ठीक है. जैसे हम देखते हैं कि जिन्होंने बल्ब इजाद किया है तो वो 10,000 बार फेल हुए हैं.
1: जी.
0: ठीक है. तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम समझ सकते हैं. हम तो 10 ही बार हुए हैं, लेकिन क्या 10 बार फेल हुए तो फिर क्या लगे रहें? यस, लगे रहें इफ़ यू थिंक द थिंग इज़ राइट. ये जो मेरा लक्ष्य है वो सही है, मैं सही दिशा पे हूँ, तो लगे रहने में कोई बुराई तो है ही नहीं. इसीलिए फेलियर हो रहा है तो ये भी एक चैप्टर है जो मुझे समझना है. तो जो एडिसन वॉटसन थे उन्होंने भी यही कहा था कि 10,000 बार फेल होने से मुझे ये पता चला कि 10,000 तरीके जो मैंने यूज किए थे उससे बल्ब नहीं बनता, उससे बल्ब नहीं जलता. तो उन्होंने उस फेलियर को भी चैप्टर काउंट किया कि इट वाज अ लेसन फॉर मी कि इससे बल्ब नहीं जलेगा.
1: राइट.
0: ओके. तो अगर हम हर फेलियर को फेलियर वर्ड ना लें, दिस इज अगेन द फर्स्ट जो हमने बात किया कि मैं वर्ड्स को कैसे ले रहा हूँ. आई हैव गिवन माई माइंड कि मैं फेल हो गया हूँ, तो माइंड उसको और इमोशनली मुझे डाउन कर देगा.
1: ओके. डिप्लीट होता है तो उसमें कोई मतलब हार्मोन्स और ये सब
0: सब कुछ पता नहीं, मल्टी मिलियन सेल्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं कितना. वो सारे सेल्स आपके एक वर्ड से चेंज होने लग जाते हैं, वो सारे सेल्स नेगेटिवली चार्ज होने लगते हैं, हार्मोन्स भी नेगेटिव होने लगता है, सारा जो केमिकल सिक्रेशन है, आपका स्टमक है, सब कुछ नेगेटिव होने लगता है. और अगर आप बहुत दिन तक हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ जाता है. तो इट्स अ वेरी बिग आपका साइन है ये.
1: जी.
0: कि आप फेलियर फेलियर फेलियर में ही सोच रहे हैं तो डॉक्टर फिर मेडिसिन देने लगता है कि बच्चा ये खाओ. फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर चार्जिंग योर बॉडी फुल्ली नेगेटिव, आपने कर दिया है. तो इसीलिए फेलियर को फेल कहकर माइंड को नहीं खिलाएं, उसको यही कहें कि इट वाज अ चैप्टर एंड आई लर्न्ड इट.
1: ओके.
0: तो फिर मुझे आगे बढ़ना है. जैसे कहा कि लक्ष्य मेरा सही है तो मुझे आगे बढ़ना है. हाँ, लक्ष्य में मुझे अगर लगता है कि नहीं तो फिर सलाह लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीख करके फिर मुझे आगे बढ़ना है.
1: जी.
0: तो इसलिए अभी जो मुझे करना है कि विशेष जो मेरा फेलियर आ रहा है, आगे भी होगा. लाइफ इज लाइक अ फेलियर एंड सक्सेस मिक्सचर है. कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई भी टॉप पे नहीं बैठा है, कोई भी नहीं. चाहे वो विवेकानंद स्वामी जी हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक बार में ऊपर नहीं पहुंचा है
1: जी।
0: इनफैक्ट भगवान भी अगर हम देखते हैं तो वो भी पूरी दुनिया से गालियां जो हम देखते हैं वो इंसानों से खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भी फिर उनको अपना बच्चा समझ करके माफ करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए ही इज वेरी पॉजिटिव
1: जी।
0: और हम भगवान तक को गाली दे रहे हैं इसलिए आई एम टोटली नेगेटिव। इसलिए अपना चेंज करना, इट्स टाइम टू चेंज आवरसेल्फ
1: जी,
0: कि मैं अपना वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच कैसा रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ, मैंने फेलियर सोचा है और अपने कमरे में फिर वही ऑरा एंड वही जो है मैं वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा हूँ, तो वो मुझे वापस टकराएगा क्योंकि मैं बंद कमरे में हूँ। हाँ, ओपन में बैठा हूँ तो ओपन जैसे गार्डन या टॉप ऑफ द हिल बैठा हूँ और वहां कुछ सोच रहा हूँ तो जो नेचर है वो मुझे गुड वाइब्स भेजती है आज भी, ठीक है, हालांकि नेचर बहुत डिस्टर्ब है लेकिन अब भी उसमें बहुत पावर है। तो जब ऐसा डाउन फील करते हैं तो जो चीज आपको पसंद है, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुछ भी है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको टीवी पसंद है, आपको खाना पसंद है, हैव इट, उसके साथ बैठे और फेलियर को यही चैप्टर है और अब मुझे आगे बढ़ना है।
1: जैसे आज हम एक कॉलेज में गए थे तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया कि फेल हो गए 10वीं में 12वीं में, सुइसाइडल जो थॉट्स थे वो भी आए कि सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि ताना माने लगते हैं लोग पड़ोसी, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और आज वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि जस्ट कुछ परसेंटेज के कुछ मतलब 0.01 भी कम है तो भी वो लोग ये कदम उठा लेते हैं। तो उनको कैसे, क्या कहेंगे, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ फिर से चैप्टर शुरू करें नए?
0: इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे 99.9 आए हैं लेकिन मेरा उम्मीद था कि 100 आ जाए, तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं कि मेरा जो मैंने मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए सोचा था, ठीक है, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हमेशा पेरेंट्स को बोलना चाहिए, जो मैंने अभी एक देखा था, मैं कहीं गई थी, आई फॉरगॉट द प्लेस, लेकिन वहाँ साइंटिस्ट हैं, मम्मा भी साइंटिस्ट हैं, फादर भी साइंटिस्ट हैं
1: जी।
0: और उन्होंने अपने बेटे को बोला हुआ है, ही वाज इन 10th आई गेस, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला था डोंट टेक द टेंशन, बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में था बिकॉज ऑफ द मैथ्स
1: जी।
0: तो मम्मी पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हेल्प भी होती ही होगी, स्टिल ही वॉज नॉट सो गुड इन मैथ्स, तो वो इतना स्ट्रेस में था और नहीं पता, वो अपने मम्मी पापा को पूरा शेयर नहीं किया एंड ही डाइड, ही जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग। तो पेरेंट्स शॉक में हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि स्ट्रेस नहीं लेना
1: जी।
0: तो ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन चीजें फिर भी जुड़ी हुई हैं, एक अकेले का थॉट उसके साथ काम नहीं कर रहा है, पेरेंट्स है लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, बच्चा देख रहा है कि भाई मैं तो जीरो हो रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा क्या है, तो वो गैप को फील करना एक बहुत बड़ी जरूरी है
1: जी।
0: मेरे पापा बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, आई एम डूइंग नथिंग, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस की बात हो जाती है
1: जी।
0: फिर मेरा फ्रेंड सर्कल क्या बोल रहा है, तेरे मम्मी पापा तो साइंटिस्ट है
1: जी।
0: और तू ऐसा, तो ये क्या चल रहा है, तो वो अकेले नहीं होता है जब वो ऐसे थॉट्स में पहुंचता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे डिस्कस कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं
1: जी।
0: कुछ स्ट्रांग होते हैं कि खुद ही कोप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें
1: जी।
0: अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, जीरो आए हैं, तो भी मुझे शेयर करना है, क्योंकि लाइफ मुझे पढ़ाई में जीरो चाहती है, शायद स्पोर्ट्स में हीरो चाहती है, लेकिन हो सकता है मैथ्स में जीरो चाहती है लेकिन कॉमर्स सेक्शन में टॉपर बनाना चाहती है। लाइफ कभी भी किसी को जीरो नहीं देती, कभी भी नहीं। हमने बेगर्स भी देखे हैं जो करोड़पति निकले हैं तो लाइफ कभी किसी को जीरो नहीं देती है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि मेरा हर बच्चा नालायक से नालायक भी मैंने उसको एक गुण जरूर दिया है, यानी उसके लिए उसको दिया है ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसीलिए अगर मैं ऐसे मोड पे हूं तो आई मस्ट शेयर, ठीक है, किसी से भी जिससे आप अच्छा फील करते हैं, और मेरा कोई शेयरिंग सर्कल नहीं है, हेल्दी सर्कल नहीं है, तो फिर आप गॉड से बात करें, लेकिन लोगों को गॉड से बात करने में सबसे ज्यादा टफेस्ट लगता है,
1: तो गॉड को कुछ और रिलेशनशिप दे
0: फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन वही है, ये लिंक लाने में ना टाइम लगता है, एक दिन से तो नहीं बनता है, तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, या कुछ भी, आज ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर, कोई टेंपल में जाकर आपको मेंबरशिप नहीं लेने की जरूरत है, या कहीं भी नहीं, आप गूगल करें एंड यू कैन गेट द वर्जन्स, यू कैन गेट द टाइप ऑफ मेडिटेशन,
1: एआई से भी बात कर सकते हैं,
0: बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं उसको उतना अच्छा नहीं लेती हूँ बिकॉज इतनी दुनिया में इंसान है एंड स्टिल आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर, तो मेरा लेवल जो आगे
1: इंसान ढूंढना बहुत जरूरी
0: है, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है हमारी लाइफ में, यू हैव टू चेक, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं नहीं कर रहा हूँ,
1: क्योंकि हम शायद इंसानों को फेस करना नहीं चाहते,
0: हाँ कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी बात बताने से डरते हैं कि कहीं लीक आउट ना हो जाए,
1: लीक आउट के साथ साथ वो जज करते हैं हमें, उस तरीके से देखते हैं, हाँ, हर बार,
0: बिल्कुल, तो इसलिए एआई से बेटर है भगवान, कहीं ज्यादा बेटर,
1: राइट राइट, कोई तुलना ही नहीं है,
0: कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मेड ही है, और इसका जो आज भी साइंस ये कहता है कि वो एआई जो है वो बहुत एक बुरा जो है जगह बनाने वाला है, एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा, एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है,
1: जी, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन है,
0: यस सबकी इंफॉर्मेशन, तो इट्स बेटर टू क्रिएट मतलब एक हेल्दी सराउंडिंग, हम फ्रेंड सर्कल बना लें, ठीक है, लोग तो अपने डॉगी से भी बात करके खुश हो लेते हैं, ठीक है ना, तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस कि कहां आप अपना शेयर कर सकते,
1: भगवान जवाब देते हैं क्या,
0: बिल्कुल देते हैं
1: तुरंत, जैसे एआई देता है
0: तुरंत चाहिए तो, तुरंत चाहिए तो, जैसे एआई आपके लिए एक्सेस इजी कर लिया है आपने,
1: अब प्रैक्टिस करके किया है,
0: किया है, है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल में नेट ही रिचार्ज नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं एआई से कुछ मांग सकता हूं,
1: नहीं
0: नहीं, तो आई हैव डन समथिंग टू गेट द एआई, तो भगवान के आंसर्स लेने के लिए मैंने कुछ किया है, बहुत मैं चाहता हूँ तुरंत दे दे पर मैं कुछ ना करूँ, तो ऐसा नहीं,
1: मेरे लाइन भी क्लियर होना चाहिए,
0: मेरे जवाब आने चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता, दुनिया में नहीं होता, आपको कुछ करना ही पड़ता है, एक डॉगी भी उसको आप रोटी देते हैं तब वो पूछ लाता है,
1: राइट,
0: इसलिए कुछ तो करना होगा तो आपको आंसर जरूर मिलते हैं,
1: जी जी, उसके बारे में तो हम आगे जानते रहेंगे, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी युवा का सपना अलग है, उसके घर वाले अलग चाहते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, तो फिर क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे दृढ़ निश्चय रखें उस परिस्थिति में,
0: मैक्सिमम हम देखते हैं कि युवा जो है वो थोड़ा हटके ही पेरेंट्स से सोचती है, कई युवा इसका बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, जैसे अब मैं क्या नाम लूं, बहुत सारी हस्तियां हैं समाज में, हम देखते हैं कि जिन्होंने पेरेंट्स ने कुछ और सोचा था, लेकिन भाई ने या बहन ने जो भी बच्चे ने है वो डिफरेंट सोचा है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन कई हम जिनके हमारे पास न्यूज नहीं है, कई ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट गए हैं और गड़बड़ हो गई है,
1: जी, जी.
0: उनका लाइफ ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसीलिए मेरा ये जो मानना है कि ठीक है, अगर आप पूरे दृढ़ संकल्प धारे हैं, आपको पक्का है कि आई विल डू इट 100%, तो कि फिर आप वो संकल्प को पूरा करने का अपने पेरेंट्स को भी, मैं तो कहूँ कि उनको समझाएं,
1: कन्विंस करें,
0: कन्विंस करने की ताकत रखें, लेकिन जो इंडियन टेंडेंसी है कि पेरेंट्स जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, दैट्स टू आई अग्री, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मम्मी को कन्विंस कर लें, क्योंकि मम्मियाँ हो जाती हैं, तो पेरेंट्स को ज़रूर आपकी पता हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समाज आज की डेट में सेफ नहीं है, तो इसलिए एक पेरेंट को ज़रूर अपने उसमें कॉन्फिडेंस में रखें, पापा भी मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अगर पूरा पक्का 100% है कि मैं ये करूँगा, तो फिर पेरेंट्स को बोलकर आप उस चीज़ को ज़रूर पक्का पूरा कीजिए, लेकिन अगर आपको ही 100% नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट लेकिन दे आर फोर्सिंग मी टू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो आप पढ़ें भी
1: जी,
0: लेकिन क्रिकेट भी खेलें, ठीक है, क्रिकेट खेलने के भी वो भी टाइम देंगे, अगर वो देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो क्रिकेट खेलने के लिए भी भेजेंगे, वो इतने भी नहीं है कि भाई नहीं जी पढ़ो क्रिकेट को फेंकी दो, ऐसा नहीं है, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है आज की डेट में, इसलिए पैरेलल में अगर लेके चलते हैं वो सबसे बेस्टेस्ट है
1: जी,
0: तो आप जहाँ अपना बढ़िया बेस्ट करेंगे तो वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, आपने क्रिकेट में अगर दिखाया कि आई कैन बी द टॉपर, ठीक है, अर्जुन अवार्ड या जो भी अवार्ड, आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो जो भी आप चीज़ हासिल करेंगे तो फिर वो आपके साथ आ ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे
1: जी। बात क्रिकेट की हो रही है तो मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार समाज तुलना करते हैं, आजकल तो बोलते हैं देखो वो लड़की कितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है और तुम नहीं खेल पा रहे हो, तुम क्रिकेट में नाम नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि अभी

यही उनका तीर है जिससे फिर वो बोल बोल के अपने बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं आगे के तानों के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स के ताने सह जाते हैं तो समाज ताना नहीं देगा, और अगर पेरेंट्स के ताने हमसे सहे नहीं जा रहे हैं तो बी रेडी फॉर द समाज, वो ताना जरूर देगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसा नहीं समझिए कि वो शत्रु हैं, उनके ताने भी अगर वो आपके लाइफ के लिए, मैं देखती हूँ कि आपका मोटिव अचीव करने के लिए कह रहे हैं, तो उनके ताने भी फूल हैं। आप उनके तानों को समझिए कि वो क्यों दे रहे हैं, वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपका बिगाड़ने के लिए ताना नहीं दे रहे हैं। माए कहेंगे घुसा रहे मोबाइल में, यू नो ना मोबाइल में घुसने

0: से तो लाइफ में कुछ बनेंगे नहीं, लेकिन हाँ आज टिकटॉकर भी बहुत सारे रील्स बना करके लाखों कमा रहे हैं,
1: राइट,
0: ठीक है ना। लेकिन जब आप लाखों कमा रहे होते तब तो नहीं वो ताना दे रहे,
1: नहीं,
0: ठीक है ना।
1: बोलते क्या मोबाइल पे घुसे रहते हो, लेकिन जब रील्स बनाते जब पैसे आते हैं और अच्छे क्रिएटिविटी के साथ रील्स बनाते हैं।
0: कॉमेडियन सेड सो कि पहले मैंने छुपाया था कि मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को लगता था जॉब जाता है, और मैं जॉब जा भी रहा था। लेकिन जब कॉमेडी में पैसे आने लगे तो पेरेंट्स को जब मैंने दिया तो उन्होंने पूछा क्या करते हो आप, तो बोला मैं कॉमेडी करता हूँ। तो पेरेंट्स ने कहा कि कुछ भी करो बस पैसे कमा रहे हो तो ठीक है। तो अब वो आ गए ना आपके ट्रैक पे, तो इट्स नेसेसरी कि यू आर प्रोग्रेसिंग। तो पेरेंट्स कहीं नहीं जाते, वो आपके साथ ही आएंगे।
1: जी जी बिल्कुल। तो अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर और आप दृढ़ संकल्प रखते हैं तो आगे बढ़ते जाइए, सब एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो दृढ़ संकल्प और जिद, तो इस दोनों में क्या अंतर है? जिद करके हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार सब कहते हैं, कह रहे थे कि असफल भी हो जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे पहचाने?
0: जिद आप देखिए नेगेटिव है और दृढ़ संकल्प उसका ऑपोजिट है, टोटली पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मेरी दृढ़ निश्चय कब जिद बन जाती है, तो ये कई बार मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरा सराउंडिंग मुझे बताता है। क्योंकि जो जिद है वो ईगोइस्टिक है
1: जी,
0: और जो दृढ़ संकल्प है वो नॉन ईगोइस्टिक है। तो लोग मुझे बता देंगे कि आपके, वो बोलेंगे पीठ पीछे भी बोलेंगे, मुंह पे भी बोलेंगे कि क्या है आपकी तो जिद है। तो ठीक है, एक ने का इट्स ओके, दो ने का इट्स ओके, लेकिन इफ एवरीवन इज सेइंग
1: ओके
0: तो फिर समझ जाइए कि मैं ये बहुत ज्यादा रिजिडनेस क्रिएट कर रहा हूँ अपने में,
1: अगर हर कोई वही सेम फीडबैक दे रहा है।
0: हाँ, सेम फीडबैक दे रहा है। दूसरा, आपको वो रिस्पांस गलत दे रहे हैं, यानी उतना वो आपके साथ मधुर बिहेवियर नहीं है उनका, और आपको भी लग रहा है कि मैं अपनी चीजों को जो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे निगेटिव ज्यादा फील होता है। आपको भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम बस यही होती है कि मुझे नहीं पता चलता है कई बार
1: जी।
0: तो आपका सराउंडिंग आपको बताता है, कुछ चीजें जो आपके साथ हो रही हैं वो आपको इशारा करती हैं कि जो ट्रैक है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है
1: जी,
0: यानी पॉजिटिव से हल्का सा नेगेटिव की ओर अग्रसर हो रहा है। तो चीजें आपको बताती हैं, लेकिन चाहिए महसूस करने की शक्ति। इतना ओपन माइंडेड बनिए कि अगर किसी ने व्यू दिया है तो उसके व्यू को आपने समझने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जहां दृढ़ संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है।
1: ओपन माइंडेड का एक्चुअली क्या डेफिनेशन है?
0: माना आपको हर चीज सुनकर समझने की क्षमता।
1: ओके
0: एक है कि मैंने बस अपनी, जो कहते हैं ना कि बस लठ गाड़ दी कि खूंटा यहीं गड़ेगा, मींस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे नहीं पता, अब कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो इट इज रिजिडनेस, ये जिद्दीपना है।
1: ओके
0: तो ये चीज नहीं चाहिए। आपने लाठी यहीं गाड़नी है, ओके फाइन, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया है कि बच्चे नीचे पत्थर है, आपकी लाठी ज्यादा गहरे में नहीं जाने वाली है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया, बोला कि यहाँ लाठी गाड़ोगे तो फलाना आ जाएगा, उल्टा लड़ाइयां होंगी
1: जी।
0: तो उनकी इन्फॉर्मेशन को मुझे समझना है। सिर्फ अपनी रिजिडनेस की मैं यहीं गाड़ूं तो ये रिजिडनेस है
1: जी,
0: ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बातें बोली है वो इन्फो को आप समझिए, उनको टेक्निकली आप चेक कीजिए
1: जी,
0: लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है, अब बोलते जाओ, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं गाड़ूंगा, तो इट इज रॉन्ग।
1: ओके
0: ठीक है ना। तो ओपन माइंडेड मीन सबको मुझे देखना है, सुनना है, समझना है, टली करना है। ऐसा नहीं जो कह रहे हो कि भाई तुम गधे हो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं, स्वीकार मत करें
1: जी,
0: लेकिन चेक जरूर करें कि उन्होंने मुझे गधा बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने कहा ऐसा नेगेटिव किया, चेक करना बहुत जरूरी
1: है जी।
0: तभी जो है एक टॉप पोजीशन पे बैठ पाएंगे, नहीं तो अगर अपने को चेक नहीं करेंगे, आप देखिए जो भी बहुत हायर लेवल पे है वो सुनते ज्यादा है और बोलते बहुत कम है।
1: अच्छा, लिसनिंग करना,
0: लिसनिंग पावर उनकी बहुत है, और लिसनिंग के लिए बोला गया है गोल्ड, और बोलने वाली पावर, टॉकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड बोला गया है। तो मुझे सुनना है, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुन जरूर रहा हूँ, समझ जरूर रहा हूँ। उन्होंने गधा बोला, मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गधा हूँ, उनके कहने से मैं गधा नहीं बन जाता, लेकिन चेक जरूर करना है मेरे से क्या रॉन्ग हुआ।
1: ओके कई बार हम कहते हैं कि ओपननेस या ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप हर किसी को एक्सेप्ट करो, या जैसे आपने कहा स्वीकार कर लो, जो जैसा कहा अच्छा ठीक है।
0: मैंने कहा स्वीकार नहीं करना,
1: हाँ, नहीं करना
0: है, सुनना है,
1: हाँ, सुनना है,
0: हाँ,
1: पर हम ये समझ लेते कई बार, लेकिन ये नहीं है।
0: ओपन माइंडेडनेस अपना, सबका अपना अपना मीनिंग है, डेफिनेशन से, लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है कि मैंने सुनना सबका है,
1: ओके,
0: समझना सबका है,
1: करना,
0: हाँ करना जो सही है,
1: सही है,
0: हाँ उसके लिए भी मैं टेली कर लूँ जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे फादर मदर है, या जो भी मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंट है उनसे मैं टेली कर लूँ। मैं शायद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि ठीक है मैं सुन ली समझ ली बट मैं तो वही करूंगी, तो इट इज नॉट इंटेलिजेंट बना, इट इज लाइक रिजिडनेस। ठीक है, तो आप
1: एक सलाह भी लेना,
0: सलाह भी लेनी है
1: जी। ओके, अभी हम बात करते हैं कि कई लोग लक्ष्य तय करते हैं लेकिन बीच में उमंग गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए मुझे चाय छोड़ना है क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि दूध जो है वो मेरे बॉडी को सूट नहीं होता, तो उसमें क्या करें? दृढ़ निश्चय भावना रखना है, अनुशासन रखना है,
0: दोनों ही चाहिए क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों को स्कूल में शुरू से, नर्सरी क्लास से इनफैक्ट घर से
1: जी
0: अनुशासन, बड़ों का पैर भी छूना है ठीक है, लेकिन अनुशासन की बस ऐसे भाग लिए दौड़ घर से ही शुरू हो जाता है
1: जी।
0: दृढ़ संकल्प अपनी जगह है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ कि मुझे, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया कि मुझे चाय छोड़ना है बिकॉज दूध मेरे लिए ठीक नहीं है बॉडी के लिए, तो वाकई में अगर मैं इस कंसेप्ट को माइंड को डाइजेस्ट करा देती हूँ कि दूध पीते ही नेगेटिव होता है, बाउलिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं होता है, वॉट एवर, इसको बहुत अच्छे से अगर मैं खिला देती हूँ तो ये हेल्प करता है।
1: okay.
0: तो मैं नहीं कहती कि एक दिन में छूट जाएगी, लेकिन अपने अंदर ये पक्का करिए कि मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है नहीं छोड़ा जा रहा तो ओके, लेकिन कम तो कर सकता हूँ
1: जी।
0: तो एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। हम क्या एक बहुत बड़ा स्टेप फर्स्ट डे ले लेते हैं, वो किला हम सोच लेते हैं अरे वाह इतना बड़ा किला बनाना है मुझे छोड़ना है, ठीक है तो एक दिन में किला नहीं बनता, ठीक है छोटा छोटा स्टेप रखिए कि मैं, अच्छा मैं एक कप पीता था अब मैं हाफ कप पीऊंगा या और पौना कप पीऊंगा, मैं एक चम्मच शुगर और एक चम्मच टी डालता था, लीव्स डालता था, अब मैं आधा आधा डालूंगा या पौना पौना डालूंगा, मतलब उसकी ना पावर को, इंटेंसिटी को कम कर दूंगा।
1: ओके
0: ओके, फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे आप बढ़े तो वो किला जो है वो फिर जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज एक पूरा किला एक ही दिन में लेने की कोशिश में शायद दिक्कत आ सकती।
1: कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारे ट्रिगर्स के बीच में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं और फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या करेंगे, चाय पियेंगे, बातें करेंगे तभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ऐसे कहते हैं।
0: हाँ, आज का तो यही है।
1: और बाकी थोड़ा एक्सट्रीमिटी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि साथ में बैठ के दारू पी लीजिए, अल्कोहल की सेवन करते हैं लोग, तो उन ट्रिगर्स को कैसे समाप्त करें अपने मन से भी, मतलब ट्रिगर्स होते हुए भी हम ट्रिगर ना हो, वो कैसे करें?
0: तो आज का तो यही बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी कहीं थी और उन्होंने कहा, शी इज क्वाइट, शी केम फ्रॉम जर्मनी एंड बहुत अच्छा है वो प्रोफेशन में, तो शी सेड कि आज की डेट में अगर हम पीते नहीं है मीन्स अल्कोहल तो आई एम नोवेयर, शी सेड सो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये बोलेगा ना कि मैं नहीं पीता तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है ये दिन आएगा, बहुत जल्दी ही आएगा क्योंकि आज समाज में ये अल्कोहल ऐसे घुल गया है जैसे खून बॉडी में होता है ना, ऐसा अल्कोहल हो गया है और अल्कोहल एक फैशन हर जगह बन चुका है, चाहे वो बर्थडे पार्टीज है, मैंने सुना एक 2 साल का बच्चा, 2-4 साल में भी होगा उसका बर्थडे है लेकिन अल्कोहल इज देयर। अब वो बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है वो तो ये देख रहा है कि मेरे होटल में मेरा बहुत बढ़िया सा बर्थडे मनाए बट अल्कोहल इज देयर, ठीक है तो ठीक है आज आपने उसे नहीं दिया बिकॉज ही इज इन योर कंट्रोल, 4 साल का बच्चा तो मम्मी पापा के कंट्रोल में है, लेकिन जब वो 14 का होगा तो वेयर वुड ही स्टैंड
1: जी,
0: ठीक है ना। और मैं तो एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है, सिस्टर है एक नोन है वो मतलब तो पहाड़ों की है, तो कहती दादी हमें दिया करती थी कि बीड़ी सुलगा के ले आओ, तो हम एक दो सुट्टा मार के उनको दिया करते थे
1: जी।
0: तो कहाँ से मारा, क्यों मारा, बिकॉज दादी मार रही है, तो दादी ने दिया कि जला के लेके आओ, पी के लेके आओ नहीं बोला है, लेकिन बड़ों में अगर ये सेंस हो कि अगर बच्चों को दे रहा हूं तो बच्चा क्या ही करके रास्ते तक आएगा, इनफैक्ट वो जान भी रही है कि ये छोटी कैसे हो गई, तो बच्चा कहता है जलाते लाते लाते जल गई,
1: झूठ भी बोलने लगा।
0: हाँ तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, बच्चे को नहीं बड़ों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पिए तो फिर ठीक है कैरी ऑन द बिजनेस, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है एक टाइम आएगा, या मैं तो कहूंगी कभी भी नहीं पिए, इट वॉज नॉट अ गुड थिंग, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है, ठीक है, इट केम फ्रॉम आउटसाइड और इसीलिए हम सभी चीजें जो कर रहे हैं वो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं. तो जो बाहर की है वो
1: एनवायरमेंट को भी सूटने होता है.
0: क्योंकि बाहर ये नेसेसरी शायद बन गई है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर.
1: यस,
0: ठीक है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है. इतना टेम्परेचर आईसी वो नहीं है जो हमें इसकी एक नेसेसिटी हो. ठीक है, तो हम चीजों को समझें क्या चीज जरूरी है और मेरा बच्चा, खास मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो क्या हो रहा है. लोग बड़े खुश होते हैं, मैं तो अपने बेटे के साथ बैठ के पीता हूँ तो बहुत अच्छी बात है. आप बेटे के साथ बैठे पीते हैं तो पोता क्या दिख रहा है, वो क्या देखेगा, या जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे. बड़ी हैप्पी फैमिली है, दोनों बैठ के पी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी पियेंगे. ठीक है, तो हमें अपने को रोकना होगा. इफ आई वॉन्ट चेंजेस इन द कमिंग जनरेशन देन आई हैव टू चेंज माई सेल्फ.
1: जी, लेकिन कई बार मन साथ नहीं देता है क्योंकि मन हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते. सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमने दृढ़ संकल्प रखा है शायद उसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं. मन में उमंग उत्साह कम हो जाती है या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कैसे करें.
0: वही सारी चीजें जुड़ी हुई है, एक दिन में किला नहीं बनेगा.
1: स्टेप बाय स्टेप,
0: स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए. ठीक है, जैसे जिनको छुड़ाया जाता है, जो वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग सेक्टर सेक्शंस में भी जाते हैं, जिनको अल्कोहल ड्रग्स वगैरह छुड़ाई जाती हैं, एक दिन में उन्हें ड्रग्स बंद नहीं करते, वो ड्रग्स देते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं और धीरे धीरे उस लिमिट को भी कम करते चले जाते हैं. इस तरीके से उनकी ड्रग्स छुड़ाई जाती है. तो हम भी अगर छोड़ना चाहते, इट्स ऑल अबाउट द दृढ़ संकल्प. अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे कितने ही आते हैं आश्रम में, आते हैं हमारे सेंटर्स पे आते हैं एंड दे वांट टू लीव इट बट दे आर नॉट एबल टू.
1: जी,
0: ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को चैप्टर्स देने होंगे कि मैं छोड़ना क्यों चाहता हूँ.
1: okay, आपको क्वेश्चंस पूछना.
0: हाँ, क्यों मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, चलो ठीक है. दूसरा, मेरा बच्चा, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है. तीसरा, वो पैसा जो मैं इनमें स्पेंड कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, अगर वो मैं घर में देता हूँ तो घर की चीजों में और बरकत होती है. चाहे वो किसी सेंस में आपने खाने पीने की चीजों में खर्च कर लिया, बच्चों के लिए आप रसगुल्ले ले आए उसी पैसों से, तो बच्चे कितने खुश हैं. ठीक है, नहीं तो आपने उनके लिए सेविंग कर दी, चलिए मत खिलाइए रसगुल्ला डेली, मत लाइए कुछ भी, लेकिन आप उसे अमाउंट को सेव कर दीजिए
1: उनके फ्यूचर के,
0: पढ़ाई के लिए. कभी भी मंथ में उनका कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज होता है, वहां खर्चा पड़ जाता है, और जब पैसे बचे होंगे तो डोंट हैव टू थिंक मच. ठीक है, तो पहले मुझे अपने आप को कुछ चैप्टर्स देने होंगे, कुछ अपने लाइन्स बनाने होंगे, व्हाई आई वांट टू लीव इट. और उसको जब मैं इतना अच्छे से समझ जाऊंगा, ये मेरी ही तैयारी होगी.
1: जी.
0: बाहर की दुनिया पूरी लगी रहे, लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो मुझसे नहीं छुड़ा सकती. दिस और दैट वे आई गेट माई अल्कोहल. ठीक है, लेकिन मैंने अगर पक्का कर लिया कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ चार पॉइंट्स हैं जो मेरे को नहीं पीना चाहिए, फर्स्ट डे नहीं छोड़ूंगा, इट्स वेरी मच ओके एंड अंडरस्टूड कि नहीं छूटता है. पीयर प्रेशर पड़ जाता है कि दोस्तों के बीच बैठ गए, मैंने कहा नहीं पीता हूँ, अरे थोड़ी तो पी लो, कल तक तो पूरी बॉटल पी रहा था, आज क्या हो गया. तो दे विल टॉक लाइक इट बिकॉज आप पीते थे एंड दे आर नॉट रॉन्ग, तो पिलाएंगे ही. लेकिन आप कुछ दिन के लिए या तो सर्कल को अवॉइड करें जब तक कि आप इतने एम्पावर हो जाएं कि उनको फेस कर सके. ठीक है, और अगर आप इतने एम्पावर्ड नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको थोड़ा दिन अवॉइड ही करें, यही सबसे बेस्टेस्ट जो तरीका हो सकता है. उस पार्टीज में नहीं जाएं जहां अल्कोहल है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ. जब मेरे को आ गया कि मैं अब चार पेग नहीं, सिर्फ एक पेग पे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन इट. लेकिन फिर भी बहुत गैप में, क्योंकि फिर वो हैबिट बनवा देंगे. ठीक है ना, तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा. फ्रेंड्स हैं, पार्टीज हैं,
1: थोड़े टाइम के लिए किनारा
0: करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं छूटती हैं.
1: तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने आप को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं आप. जी दीदी, अभी हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो ऑफिसेस हैं, कार्यस्थल जहाँ पे हम कार्य करते हैं, वहाँ पर कई बार हमारे मेहनत का श्रेय किसी और को चला जाता है. कई बार हमें सब कुछ करने के बाद प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, फिर स्ट्रेस है, उसके उस बीच में लक्ष्य पर टिके रहने का क्या तरीका है, सकारात्मक खुद को कैसे रखें और फिर दृढ़ता के साथ
0: कैसे आगे बढ़े। हाँ। तो पक्का है कि आपको उसी जॉब में रहना है, पहले तो यही पक्का कर लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना प्रमोशन मिल रही है, ना फिर कोई इस तरह से मेरे को इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट कोई भी चीज ऐसा नहीं हो रहा है,
1: तो स्विच करने की जरूरत है कि नहीं, हाँ, वो भी सोचना। हाँ,
0: क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही है कि मुझे वहीं टिकना है, कोई भी जो आपने सोचा है। तो अगर पक्का है कि मुझे यहाँ टिकना है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट कि बेस्टेस्ट कंपनी है, टाइम लगाती है लेकिन इससे बेस्ट कंपनी मुझे नहीं मिलने वाली है,
1: टाइम टू टाइम घर जाते हैं,
0: हाँ, मुझे अपना हॉलीडे, अपना मैं घर मैनेज कर लेता हूँ इस जॉब के साथ, फॉर एग्जांपल टीचिंग जॉब, तो व्हाई गर्ल्स डू दैट, क्योंकि उनको लगता है मैं हाफ ऑफ द डे आई कैन स्पेंड विद माय फैमिली, मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई दे जॉइन इट। हालांकि टीचिंग जॉब इज नॉट सो ईजी जो हमें दिखती है, इट इज अ टफेस्ट,
1: प्रिपरेशन चाहिए बहुत,
0: हाँ, बहुत। लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए गुड इसलिए है क्योंकि मेरा और भी चीजें जो है वो पार्लर में गुड हो रहा है। तो पहले तो अपने आप को ये पक्का कर लीजिए कि हाँ यही मुझे रहना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पक्का नहीं है देन यू कैन गो ऑन, आप चेंज करें, लेकिन अगर मुझे पक्का है कि हाँ मुझे करना ही है, तो इंक्रीज योर एफिशिएंसी,
1: ओके,
0: फिर अपने पे काम करें, फिर अब बाहर नहीं कुछ करना है, कुछ ढूंढने या करने की जरूरत नहीं, अपने पे काम करना है कि मुझे मेरा क्रेडिट नहीं मिला, मुझे मेरा प्रमोशन नहीं मिला, मुझे लोगों का जो भी मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन मैं अब इससे कुछ ऐसा आगे करूं जो मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूं, वो पहले आप सोचें कि क्या करना है, और पॉजिटिव सेंस में ही सोचें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगी
1: जी।
0: अगर नेगेटिव सेंस में कुछ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है,
1: ओके,
0: तो इसलिए मैं पॉजिटिव सोचूं और अपने लिए ही कुछ एफिशिएंसी को या किसी भी तरीके से अपना लेवल जो बढ़ाने का है, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं जिससे मेरा लेवल, या मैं एग्जाम्स दे सकता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं तो उसमें एक खाता है कि आप और फर्दर एग्जाम्स देते हैं तो यू कैन आगे आप प्रमोट हो सकते हैं। तो मैं, अगर मुझे अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखा है,
1: ओके, मतलब अप्रिसिएशन में भी ऐसा ही है, आप काम कर रहे हो आपको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, तो वो दृढ़ संकल्प और हैप्पीनेस वो कम हो जाती है,
0: बिल्कुल कम हो जाती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन यही बात याद रखिएगा कि क्या किसी और के एप्रिसिएशन की वजह से मैं जिंदा हूँ,
1: नहीं
0: नहीं। जंगल में जब फूल खिलता है उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं, बट स्टिल वो खिल रहा है, अपनी पूरी ब्यूटी के साथ खिल रहा है, उसने उतने ही रंग बिखेरे हैं, उतनी खुशबू बिखेरी है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। मैं भी फूल हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, ओके फाइन, हैव अफर्मेशंस कि आई विल प्रूव इट कि आई एम द बेस्ट,
1: ओके। हमारे जंगल में भले फूल खिल रहे हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गार्डन में फूल खिलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है कि एक फूल का खिलना भी इस नेचर में कहीं ना कहीं जरूरी है
1: जी,
0: उसको बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहाँ हूँ तो मैं हूँ क्योंकि फिर कोई ना कोई चीज मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वो, उनको मेरी जरूरत है,
1: मेरी हैप्पी रहना भी बहुत,
0: ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, तो खुश रहकर करने में प्रॉब्लम क्या है,
1: अपने आप को समझाना है, हाँ,
0: समझाना नहीं है ये करना ही है,
1: करना ही है
0: कि जब करना ही है तो रो के क्यों करूं, हंस के भी तो कर सकता हूँ। उन्होंने आज मुझे प्रमोट नहीं किया है लेकिन अगर मैं अपना EQ बैलेंस रखता हूँ, आज बड़ी कंपनीज में EQ बहुत काउंट होता है, इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर
1: जी,
0: अगर आप उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं तो क्या पता, क्योंकि आपने अपने अंदर अफर्मेशंस दिए हैं फॉर द सक्सेस, गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क, कौन सा मिरेकल, इस दुनिया में तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं
1: जी,
0: ठीक है ना, तो आप तो बहुत जिंदा हैं, बहुत अच्छी कंपनी में हैं, बहुत कमा रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, आपके आगे स्कोप ही स्कोप है, ये आप पक्का अंदर कीजिए, आज नहीं मिला है कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है।
1: नहीं, कई बार हम दृढ़ संकल्प रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं, इन जनरल मैं पूछना चाहूँगी जब PI की बात आती है तो कई बार लुक्स में मात खा जाते हैं, कई बार इंग्लिश में मात खा लेते हैं, फिर हम अपने कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे अफर्मेशंस रखना चाहिए?
0: PI
1: पर्सनल इंटरव्यू,
0: ओके ओके ओके, तो लुक्स में मात खाया और किस में मात खाया?
1: लुक्स में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में,
0: ये दो बेसिस आपने लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. खास जैसे जब हम खास इंटरव्यूज देते हैं और लुक्स में हम नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को देखा है, कंपनी के मालिकों को देखा है
1: जी.
0: लुक्स में जीरो है लेकिन स्टैंडिंग स्ट्रांग, बहुत बहुत शानदार खड़े हैं. तो लुक्स आर नॉट एवरीथिंग. हम देखते हैं लुक्स बहुत आगे अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिख रहा है उसको प्रेफरेंस बहुत जल्दी मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिलता है, लोग उसकी तरफ देखना पहले स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो सुंदर नहीं है, इस लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सुंदर तो हर कोई है, भगवान ने अगर बनाया है तो कुरूप कोई नहीं है, सुंदर हर

0: इज आप कहाँ हो, तो फिर आई से प्राउडली कि मुझे देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ती है
1: जी.
0: तो हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, कि मैं काली हूँ तो क्या हुआ दिलवाली हूँ. हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, डोंट फील डाउन. आपको बनाया है, आप गुणों को तो बढ़ा सकते, कलर को नहीं कर सकते. ओके फाइन, ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेलानिन को हम कम कर सकते हैं, गो फॉर इट इफ यू कैन. लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो गुण है, तो आप बहुत आगे अपने कलर को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं. और इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, मैं समझती हूँ आज के MNCs में प्रॉब्लम्स तो आती हैं. तो इंग्लिश के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐप्स भी है, सीखो आप बहुत सारी चीजें. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन सीखो सीखो, लाइफ इज टू सीखो, ठीक है, इसलिए सीखो. ठीक है, छोटा छोटा इंग्लिश सीखो, बड़ा एक दिन बन जाता है. और मैं जो मानती हूँ, पूरी इंग्लिश तो कहीं कोई नहीं बोल रहा भारत में, जो बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करके अपना बोलना शुरू करें, लेकिन जो बोले कॉन्फिडेंस से बोले. आज आप देखिए कई हैं जो फॉरनर्स मेनली मैं देखती हूँ, दे वॉक इन बरमुडास विद चप्पल्स
1: जी,
0: लेकिन कॉन्फिडेंटली
1: जी,
0: उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है, बनियन में है, बनियान पहनी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट योर आउटफिट, नॉट योर कलर, नॉट योर लैंग्वेज. आप कॉन्फिडेंट हैं, वो कंपनी देख रही है, ठीक है. आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनी आपको मेजर करने वाली है. और हायर लेवल में तो ये सारी चीजें जो हायर कंपनीज हैं जो मैं देखती हूँ, वो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं कि आपका EQ कहाँ है, कितना है, आप कितना बैलेंस्ड रहते हैं, आपका कितना अच्छा बोलने का कैपेसिटी है. इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश, देन मेरा हिंदी कितना स्ट्रांग है. मैं बोलते सामने आपको देखते ही मेरा शटर हो गया, हिंदी भी शटर हो गया, तो इट्स ना, तो फिर यानी फिर इंग्लिश तो आप भूल ही जाइए. आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो पहले अपना बोल सुधारें. जैसे बचपन में कहते हैं शीशे के आगे बोले, जोर जोर से पढ़ करके बोले, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है. तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं. आपका स्पीकिंग एबिलिटी शुड बी गुड,
1: मतलब दृढ़ संकल्प के साथ स्किल्स को भी बढ़ाएं.
0: हाँ, स्किल्स को भी बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है.
1: ओके जी, इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल कि अगर हम दृढ़ निश्चय को मजबूत करना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं, सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए?
0: टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात करें.
1: ओके.
0: क्योंकि मुझे ही करना है जो करना है. बाहर वाले मुझे आइडियाज देने वाले हैं, बाहर वाले मुझे गिराने वाले भी हैं, बाहर वाले मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन मेरे ही कदमों पे तो करेंगे जो करेंगे, जो मैंने कदम लिया है. तो टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना है. तो मेरी मेरे से बात होना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
1: है.
0: मी टाइम, यस, वेरी नाइस वर्ड, मी टाइम. आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, आई हैव फेथ, आई शुड हैव फेथ ऑन माई सेल्फ. मुझे मेरे पे विश्वास होना चाहिए. जब मेरे को मेरे पे ही विश्वास नहीं है तो लोगों पे क्या होगा, या लोग मेरे पे क्या विश्वास करेंगे, मेरे को खुद पे ही नहीं है. तो ये मी टाइम बहुत जरूरी है, मुझे मेरे लिए जीना है पहले.
1: अगर मैं बार बार हार खाती हूँ तो मेरे पे विश्वास तो उठ ही जाता है, फिर खुद को कैसे समझे, क्या मतलब कैसे देखे कि मेरे अंदर कुछ है अच्छा ही कि नहीं.
0: वही मैंने जो कहा कि अगर हार हो रही है तो ये मुझे सिखाने के लिए हो रही है, लेकिन सदा ही हार नहीं होने वाली.
1: तो अलग अलग तरीका देखें.
0: हाँ,
1: अपना
0: बिल्कुल बिल्कुल, हार आपके पास आती है आपको हराने के लिए, मारने के लिए नहीं आई है,
1: कुछ सिखाने के लिए,
0: सिखाने के लिए आई है. लेकिन आप उसको सीखने के अंदाज से देख रहे हो या आप उसको हार ही देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट. आपका नजरिया इज इम्पोर्टेंट. आप चार बार फेल हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक निश्चय है, ठीक है. जैसे अभी मुझे कोई हमारे एक ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ मुझे एक यूथ मिले और वो कहते हैं कि मेरे पास इतना फेलियर्स है, इतना फेलियर्स है, आई वॉज इन डिप्रेशन. तो उन्होंने कहा कि माई मम्मा गोज इन ब्रह्मा कुमारीज, तो मैंने भी सोचा चलो मैं चल कर देखता हूँ. तो आई एम फीलिंग क्वाइट ओके राइट नाउ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ. अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, ही सेड सो, कि मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर फिर से वो विश्वास आ गया है कि हाँ मुझे करना है और सक्सेस को हासिल करना है. तो बी लिटिल स्पिरिचुअल. आपको स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग ट्रिमेंडस एनर्जी, वो पत्थर को पारस करने की शक्ति रखती है. तो मैं तो बहुत एक अजीज या भगवान का बहुत नियरेस्ट बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ. उसने मुझे धरती पे नहीं फेंका है, उसने मुझे धरती पे भेजा है
1: जी.
0: हम हमेशा यही कहते हैं ना, भगवान ने भेजा है. तो भगवान ने मुझे भेजा है, फेंका नहीं है. तो मैं कुछ करने के लिए ही मुझे भेजा है, भेजा माना कुछ करने के लिए।

0: तो मेरे डेस्टिनी में है, हाँ वो पेजेस बहुत पीछे हैं और अभी मुझे उन्हें टर्न करना है।
1: कई बार क्या हमारे लक्ष्य को हमें फिर से रिवाइज करके देखना है और चेंज भी करना चाहिए?
0: करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको देखना है कि क्या चीजें मेरे से नेगेटिव हो रही हैं और चीजें कहाँ से कैसे जोड़ी जा रही हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं लेकिन जॉब किसी और लाइन में लगती है। मेरा लौकिक भाई है जो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर है, तो ही वॉज इन डिफरेंट लाइन एंड नाउ ही इज डूइंग डिफरेंट जॉब।
1: लाइक हम इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद अब रेडियो
0: में है, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चेंजेस लाइफ में आएंगी ही
1: जी।
0: आपकी डेस्टिनी में है जो ना वो आपको उस तरफ खींच रही है, तो वहां आपके कम नंबर हैं या वहां आप फेलियर है या यहाँ गड़बड़ हो गई है, लाइफ की डेस्टिनी में जो है वो आपको खींच रही है, वहां जीरो कर रही है ताकि आप इधर आ सके।
1: ओके, तो इसलिए आपको रिवाइज करना भी जरूरी है। तो यहीं पर रुकते हैं हम। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15। थैंक यू सो मच प्रिया दीदी आपका।
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच आपका भी और हमारे लिसनर्स का भी। थैंक यू।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग...

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे, सफलता बनाएंगे। पूरा करेंगे जो हुआ शुरू।

0: रेडियो मधुबन पर हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, मैं संदीप त्रिवेदी आज आप सबके लिए लेकर के हाजिर हो चुका हूं, आपका अपना और हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी को बयां करने का एक बहुत ही जबरदस्त माध्यम है, बहुत ही शानदार एक जरिया है। तो श्रोताओं, आप सब जानते हैं, अब तक जान भी चुके हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम हमारे दिव्यांग साथियों को आमंत्रित करते हैं और उनके जिंदगी की कहानी यानी उनके हम सफर की कहानी, उनके हमराही की कहानी। क्योंकि क्या होता है कि संघर्ष करना, एक अपने पैरों पर खड़े हो जाना, ये सब एक बात है, लेकिन अपनी जिंदगी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना, समाज में बराबरी से जीना, ये एक और बात है। तो इस विषय पर बात आमतौर पर नहीं हो पाती है कि एक दिव्यांग व्यक्ति समाज में किस प्रकार अपने आप को स्थापित करता है। तो बस इसीलिए हम राही यही सब तो बताता है। तो आज श्रोता हूं, हमारे साथ हमारे जो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम है श्रीमान रिंकुलाल सोनी जी और उनके साथ हैं उनकी धर्म पत्नी सविता जी। तो रिंकू सर और सविता मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। सविता मैम।
2: हाँ सर, धन्यवाद।
0: चलिए, बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार पुनः। श्रोताओं, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और आज की कहानी की तरफ आते हैं। तो रिंकुलाल सर
1: जी,
0: हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताइए।
1: सबसे पहले तो रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। और सबसे पहले मैं संदीप भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का जो ये बीड़ा उठाया है, ये निरंतर चल रहा है और मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि ये प्रयास निरंतर जारी रहे ताकि हम जो समाज में जो दिव्यांग लोगों के प्रति जो धारणाएं हैं उसको बदला जा सके, उसमें परिवर्तन लाया जा सके। तो इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग क्लब का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत उसका शुक्रगुजार हूं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
0: जी धन्यवाद।
1: तो मेरा नाम रिंकुलाल सोनी है और मैं मूल रूप से तखतगढ़ पाली राजस्थान से हूं और मैं मतलब 100% ब्लाइंड हूं बाय बर्थ। और जब मैं छोटा था तो मुझे भी पढ़ने की काफ़ी इच्छा थी, मुझे भी पढ़ना था और आगे बढ़ना था। तो जब मेरे चाचा जी थे तो क्या है कि दुकान के सिलसिले से, मतलब दुकान के काम के सिलसिले से जोधपुर में आया जाया करते थे
0: जी।
1: तो उन्होंने मतलब उनको किसी ने बताया कि भाई ब्लाइंड स्कूल है जोधपुर में
0: जी।
1: तो उन्होंने मुझे हमारे मेरे पिताजी को और हम सब चर्चा की तो फिर मुझे पिताजी ने भेजा। तो सबसे पहले मैं जोधपुर में एक अंध विद्यालय था जो कि बागर चौक में चला करता था
0: जी।
1: काफी पुरानी बिल्डिंग थी और हमारे लिए बहुत एक्सेसिबल भी नहीं थी। वहां मेरा दाखिला हुआ
0: जी,
1: वहां से मेरा अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद अध्ययन चलता रहा जोधपुर में और फिर बाद में जब हमारी वो स्कूल जो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई तो इस प्रकार से अध्ययन जारी रहा। फिर आठवीं तक की कक्षा मतलब शिक्षा मैंने नेत्रेंद्र विकास संस्थान जोधपुर से प्राप्त की
0: जी।
1: हाँ जी। तत्पश्चात मैंने नवीं से बारहवीं तक की जो शिक्षा है वो राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय आदर्श नगर अजमेर से प्राप्त की
0: जी।
1: और मैंने जो कॉलेज है वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से बीए बीएड और संस्कृत में एमए किया। और इस तरह से फिर मेरी जॉब मतलब 2005 में मेरी जॉब लग गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने हिंदी विषय में मतलब मैंने एमए किया
0: जी,
1: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से
0: जी।
1: और उसके बाद नेट स्लैट ये भी परीक्षाएं पास की। तो इस तरह से मेरा अध्ययन का ये सिलसिला चला
0: जी। क्या बात है। और वर्तमान में आप शिक्षक हैं
1: जी। वर्तमान में अभी मैं हिंदी व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ 2016 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिवांदी सुमेरपुर पाली में
0: जी।
1: हाँ जी,
0: बहुत खूब बहुत खूब। तो श्रोताओं, मैं बता दूं आप सबको कि थोड़ा सा अगर आप लोग अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो हमारी एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी एकता की आवाज, उसमें हमारे रिंकूलाल सर निर्णायक की भूमिका में थे। वो एक संगीत प्रतियोगिता थी और साथ ही साथ मेरे सीनियर भी रह चुके हैं, तो ये संगीत भी जीवन में रहा है आपके रिंकू सर?
1: हाँ जी, संगीत से भी मेरा जुड़ाव प्रारंभ से ही रहा है और मुझे भी इसके बारे में काफी शौक प्रारंभ से ही रहा है
0: जी।
1: ये मेरे 11th से लेके ग्रेजुएशन तक मेरा ये ऐच्छिक विषय भी रहा है म्यूजिक।
0: क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया।
1: और उसके बाद मैंने भातखंडे ये संगीत विश्वविद्यालय, यहाँ से मैंने जो है विशारद भी किया लखनऊ से।
0: जी जी जी जी वाह। यानी पढ़ाई के साथ साथ और अपनी जॉब के साथ साथ संगीत का अभ्यास भी आपका जारी रहा है?
1: हाँ जी, संगीत का भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास जारी रहा मेरा।
0: क्या बात, बहुत।
1: हाँ जी,
0: हम चाहेंगे कि सविता मैम आप भी हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं तो अच्छा लगेगा।
2: जी सर, जरूर
0: जी।
2: मेरा नाम सविता है
0: जी,
2: और मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर से बिलोंग करती हूँ
0: जी,
2: और बाय कास्ट हम लोग महाराष्ट्र मराठी है
0: जी जी जी,
2: मीन्स जो कहते हैं ना तुम्ही मराठी मुलगी आहे।
0: वाह वाह,
2: तो मैं
0: चांगला आहे,
2: तो मैं तो मैं एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि आप तो जानते हैं कि सर एक सोनी, मतलब हम लोगों की कास्ट भी काफी कुछ चेंजेस है
0: जी, जी, जी।
2: सभी तौर तरीके रीति रिवाजों में बहुत अंतर है हम लोगों
0: जी, जी, जी, जी, जी।
2: तो भी मतलब हम लोगों के जो मन है वो एक दूसरे से मिले और हमने इन सब चीजों को मतलब
0: आपने शिक्षा वगैरह क्या अर्जित की? आपने
2: हाँ, मैंने शिक्षा में मैंने अपना BA/BEd किया हुआ है
0: जी,
2: MA किया है इंग्लिश लिटरेचर से।
0: अरे वाह क्या बात है।
2: और मैं मतलब वहाँ MP में मतलब एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी
0: जी,
2: वहाँ पर मैं इंग्लिश और अबेकस पढ़ाते थे बच्चों को।
0: बहुत खूब जी।
2: हाँ, 6th to 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे
0: जी जी जी जी जी।
2: हाँ,
0: तो मैं श्रोता हूँ आप सबको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि पूरे जीवन परिचय को जब आप सुन रहे होंगे रिंकूलाल सर के और मैम के, तो आप सबको लग रहा होगा कि इनको मिले हुए बहुत साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में हमारे दोनों मेहमान जो है वो विवाह सूत्र में बंधे हैं, और देखिए हमारे मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं के लिए आए। तो रिंकू सर।
1: हाँ जी।
0: क्या होता है अक्सर कि हमारे मित्रगण कई बार बोलते हैं कि भाई सभी दृष्टिबाधित साथियों की कहानी तो एक जैसी होती है, कोई नई बात तो है नहीं उसमें, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से समझें, सोचें और सुनें तो पता चलेगा कि हर एक कहानी में कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ नयापन है और कोई ना कोई ऐसी बात है जो शायद हर एक के लिए प्रेरणादायी बन सके। तो मैं चाहूंगा कि आप भी आपके हमराही की जो कहानी है, आपके जीवन की जो कहानी है, वो श्रोताओं को जरा विस्तार से बताएं ताकि आपके माध्यम से भी हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ जानने समझने को मिले।
1: हाँ जी बिल्कुल जरूर। तो देखिए संदीप भाई की मेरी फर्स्ट मैरिज जो है 2006 में हुई थी
0: जी,
1: जॉब लगने के एक साल बाद।
0: जी जी जी, जो बहुत ही जो कि आइडियल टाइम होता है, मतलब ये आपका दूसरा विवाह है? ओके
1: जी जी जी
0: जी जी,
1: ये मेरी सेकंड मैरिज है
0: जी।
1: और वो मैरिज हुई थी एक्चुअली परिवार वालों ने ही, वो सब उन्होंने ही रिश्ता करवाया था
0: जी,
1: और उन्होंने तो अच्छा ही चाहा था
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उनको इस चीज का मतलब मालूम नहीं पड़ पाया कि वो लड़की एक्चुअली मंद बुद्धि थी।
0: अच्छा।
1: तो हमारे जो फैमिली वाले वो इस चीज को जज नहीं कर पाए कि मतलब ये मंद बुद्धि है क्या है, जैसा भी है
0: जी।
1: तो जब हमारी मैरिज हुई 2006 में
0: जी,
1: तो उसके बाद जैसे जैसे दिन बीते तो हमें मालूम पड़ना शुरू हुआ कि मतलब ये इस तरह से है
0: जी।
1: लेकिन फिर भी मैंने मतलब काफी धैर्य रखा, काफी पेशेंस रखा
0: जी,
1: कि हमने सोचा कि भाई चलो काम, घर वाले भी कोशिश कर रहे थे इसको काम सिखाने का, तो मैंने कहा भाई कुछ समय तक धैर्य मैंने रखा, मैंने कहा हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ काम सीखे कुछ, मतलब उसकी कंडीशन ये थी कि वो खुद की भी केयर नहीं कर पाती थी, खाना वाना कुछ भी नहीं बना सकती थी, घर का काम बिल्कुल भी वो करने में असमर्थ थी मतलब
0: जी,
1: फिर भी हमारे घर वालों ने काफी प्रयास किया उसको सिखाने का, और बहुत प्रयास किया, डॉक्टर्स को भी मैंने काफी चेकअप कराया उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए
0: जी,
1: बट कुछ मुझे उसमें कुछ सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से मतलब हमारे 8-10 साल मतलब निकले। तो फिर मैंने प्रयास किया, खूब कोशिश की, डॉक्टर्स को भी खूब चेकअप करवाया, लेकिन कुछ मुझे इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला नहीं एक्चुअली
0: जी।
1: तो फिर मैंने सोचा कि भाई देखिए अपने पेरेंट्स है तब तक तो ध्यान रख लेंगे, बाकी फिर बाद में क्या स्थिति होगी,
0: मुश्किल हो जाएगी। या तो सर ये बताएं कि वो दृष्टिवान थी?
1: हाँ जी, वो बिल्कुल दृष्टिवान थी।
0: तो आपके घर वाले नहीं जज कर पाए, ये बात तो समझ में आती है।
1: हाँ,
0: लेकिन जिस परिवार में आपका रिश्ता किया जा रहा था, क्या उन्होंने भी कभी इस बात के संकेत नहीं दिए कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ है मामला?
1: उन्होंने एक्चुअली पूरा हमको क्लियरली नहीं बताया, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने बताया सीधी है लड़की, तो हमने सीधी से ये अर्थ लिया कि भाई लड़की सीधी है तो मतलब किसी प्रकार का झगड़ा वगैरह नहीं करेगी, प्रेम से रहेगी।
0: सीधी का मतलब तो यही निकाला जाता है आमतौर पर।
1: हाँ
0: जी,
1: आमतौर पर यही निकाला जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब पागल है, मंद बुद्धि है।
0: जी,
1: तो मैंने इसका यही अभिप्राय समझा कि चलो सीधी है तो कोई बात नहीं, अपना अच्छा है, झगड़े नहीं करेगी, प्रेम से रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: प्रेम से रहेगी, और मुझे भी ऐसी चाहिए जो कि सीधी शादी हो, शांति शांति पूर्वक रहे और अपने घर को संभाले और अच्छे से प्रेम से रहे। तो मुझे भी ऐसी लाइफ पार्टनर की आवश्यकता थी
0: जी।
1: तो मैंने उस हिसाब से फिर मैंने भी यस कर लिया, और वो गुजराती बोलती थी बिल्कुल, मारवाड़ी उसको बिल्कुल आती नहीं थी
0: जी,
1: और ना हिंदी बोलना आती थी। तो मैं ज्यादा उनसे मतलब ये कन्वर्सेशन कर नहीं पाया, मतलब ज्यादा मतलब उनको समझ नहीं पाया मैं
0: जी।
1: और क्या है कि जल्दी हमारी शादी हो गई थी मतलब
0: जी,
1: महीने भर में। तो इसलिए फिर, और फिर मैंने भी ये भी सोचा कि भाई ठीक है, नहीं वह भी शर्मा रही होंगी, बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
0: तो सर आमतौर पर क्या होता है कि जो विवाह करने जा रहा है जो व्यक्ति, वो खुद भी काफी विचार करता है, सोचता है। आपने भी आपके भी मन में बातें आई होंगी कि यार ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है, तो कहीं कोई डाउट या कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कुछ आया आपके मन में उस समय?
1: हाँ थोड़ा मुझे लगा था, मतलब मुझे दस्तक थोड़ा सा मन में ऐसा लगा था कि हाँ कुछ है गड़बड़, लेकिन मैंने घर वालों को बोला, मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सब लोग इतना कह रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, कोई तुम्हारे लिए गड़बड़ अच्छा तो बुरा थोड़ी ना करेंगे
0: जी।
1: सब पिताजी ने वगैरह सब ने ये बात कही, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब
0: ज्यादा
1: मत सोचो, मतलब सब अच्छा है, हम देख के आए, और हम लोग आपके पेरेंट्स को किसी के लिए खराब थोड़ी ना करते हैं।
0: ठीक बात हो।
1: फिर मैंने सोचा चलो, मैंने कहा इतने लोग कह रहे हैं, चलो मैंने कहा चलो भी अच्छा ही कह रहे होंगे, मतलब अच्छा ही करेंगे, और मुझे पता नहीं था कि इस तरह से हो सकता है, मुझे थोड़ा लगा था, लेकिन फिर भी मैंने उन पर विश्वास किया, मैंने कहा चलो ये इतने लोग कह रहे तो मतलब
0: मान लेते हैं,
1: अहित नहीं करेंगे
0: जी।
1: मैंने फिर विश्वास करके वो शादी कर ली
0: जी।
1: फिर बाद में फिर ये सब चला, मैंने फिर बाद में अंतोगत फिर मैंने हमारे दिनेश वगैरह सबसे बातचीत की, मैंने कहा इस तरह से तो ये चलेगा नहीं, मेरे भाई से दिनेश सोनी से, तो उन्होंने मैंने बोला कि इस तरह से चलेगा नहीं, मैंने कहा कुछ अपन लोग घर वालों से मतलब बात करें, उनको समझाएं
0: जी।
1: तो फिर हमने उनको समझाया भाई ये अब मैं इसको मतलब कंटिन्यू नहीं रख सकता, मतलब मैं ये झेल नहीं सकता।
0: कुल मिलाकर के कितने साल बाद आपको ये एहसास हो गया था पूरी तरह से कि भाई अब इस रिश्ते से तो छुटकारा ही पाना पड़ेगा?
1: मुझे मतलब ऐसा है कि 6-7 साल बाद वैसा हो गया था, लेकिन घर वाले ये नहीं चाह रहे थे कि मतलब ऐसा करे, मतलब वो चाहते थे कि कहीं केस वैसे हो गया, कहीं कुछ, वो डर रहे थे मतलब।
0: अच्छा।
1: हाँ कि मतलब ऐसा कुछ हो गया, उन्होंने कुछ केस कर दिया, ऐसा कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी
0: और दिक्कत हो जाएगी जी,
1: दिक्कत हो जाएगी, तो वो इसके लिए एग्री नहीं थे।
0: अच्छा।
1: फिर बाद में जब वो भी खुद भी परेशान हो गए, मतलब मेरे घर वाले भी, मतलब उसको बार बार संभालना, कहीं भी जाना हो तो तैयार करना उसको
0: जी,
1: उसको तो वो खुद भी परेशान हो गए थे। फिर बाद में फिर हमने 2016-17 की बात है, वहां उस समय बात की हमने, तो दिनेश ने हमारे मेरे भाई दिनेश वगैरह सब ने मतलब सब लोगों ने हमने मतलब घर वाले सबसे बात की, उनको समझाया, तो उनको भी लगा कि हाँ नहीं बात तो सही है कि भाई ऐसे तो कब तक चलेगा
0: जी,
1: और कोई इशू भी नहीं हुआ ताकि वो कि भाई आप बड़ा होके वो भी संभाल सके ऐसा कुछ।
0: तो आखिरकार फिर आपने तलाक ले लिया?
1: आखिरकार फिर मैंने 2019 में मैंने,
0: अच्छा 2019 में जाकर के पूरी तरह से आप अलग हो पाया।
1: हाँ जी,
0: बड़ा मतलब अजीब स्थिति है कि विवाह हुआ लेकिन परिस्थितियां मतलब ऐसी नहीं रह बन पाई कि आपका जीवन जो है शादीशुदा जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कोई संतान वगैरह रही आपकी उनसे?
1: नहीं, कोई संतान वगैरह नहीं रही।
0: नहीं। हाँ। तो मतलब सर काफी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत कष्ट उठाने पड़े होंगे, इसमें तो कोई दोराय नहीं आपको?
1: हाँ बिल्कुल, बहुत परेशान हो चुका था मैं, मतलब बहुत अपने आप से हार चुका था, मतलब बहुत मायूस हो चुका था मैं, बहुत परेशान हो चुका था। लेकिन फिर इसलिए भी मैंने ये डिसीजन लिया था, मतलब कि मतलब अगर मान लो शादी भी नहीं भी होगी, मान लो तो अकेले भी इससे तो अच्छे, मतलब कहीं आ जा सकते हैं ना, पिछले भी तो टेंशन नहीं ना, कहीं जैसे कहीं चले गए, तो ये मैंने कहा, ये सोचा फिर।
0: तो अलग होने के बाद आपने क्या सोचा था कि भाई विवाह करूंगा, या फिर आपने सोचा था कि देखेंगे यार जो होगा वो देखा जाए?
1: नहीं, विवाह का तो सोचा था मैंने, प्रयास तो मैं करूंगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो अच्छा हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही है जी।
1: अभी ये मन में तो था ही कि नहीं करना तो है अपन को, प्रयास करेंगे, और अगर माँ ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा, अन्यथा। लेकिन हाँ, ये इच्छा तो थी कि मतलब दूसरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कब तक संभालेंगे, और अपन तो जॉब वाले, कहीं मान लो कहीं और कहीं मतलब रहना पड़ जाए, तो फिर जीवन साथी तो सही हो तो अच्छा रहता है कि अपन संभाल सके ताकि अच्छे से।
0: तो 2019 से लेके अब ये 21 चल रहा है सर, ये दो वर्ष का समय कैसा बीता आपका, मतलब इस दौरान क्या क्या हुआ आपकी जिंदगी में?
1: बस ये समय बीता, मतलब इनके डाइवर्स होने के बाद हमारे घर वालों ने भी कोशिश की, लेकिन फिर मैं वो भी कोशिश करते रहे, फिर मैंने भी जीवन साथी .com पे वगैरह अपनी प्रोफाइल बनाई
0: जी,
1: तो वहां पे मतलब ये कोशिश करता रहा। कुछ और भी हमारे जो भी मतलब रिलेटिव से थे उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने मेरे घर वालों ने बात की, सभी से बोला इस तरह से, लेकिन वहां से बात नहीं बनी। फिर जीवन साथी .com से मतलब मुझे अच्छे लाइफ पार्टनर मिले
0: जी।
1: हाँ जी।
0: तो कई प्रोफाइल भी देखे होंगे इस बीच में आपने, या बस मैम को ही देखा आपने?
1: मैं प्रोफाइल कई देखे, कईयों से बातें की, बहुत से लोगों से बातें की, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई प्रोफाइल।
0: अच्छा, तो आखिरकार ये निर्णय कैसे कर पाए आप कि भाई सविता मैम ही जो है आपके जीवन में सबसे उपयुक्त है?
1: मैंने उनको ये रिक्वेस्ट, मुझे इनकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी, तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। मतलब क्या, मैंने काफी लोगों से बात की तो को ब्लाइंड का सुनते ही वो लोग मना कर देते थे, है ना, और कुछ और तो इसलिए मतलब, और कुछ लोग थे तो ऐसी कुछ बात करते थे तो मुझे पता चल जाता था, मतलब
0: जी
1: कि भाई मुझे घर बनवा के देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा पहले, मतलब कुछ कंडीशन है, डिमांड्स रखते थे कुछ लोग
0: जी,
1: तो मुझे पता लग जाता कि भाई इनका कुछ मतलब दाल में कुछ काला है
0: जी।
1: फिर ये सविता जी से मेरी मुलाकात हुई अक्टूबर 18 अक्टूबर को, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी और इन्होंने 25 को मतलब 24 को इन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया था मेरी रिक्वेस्ट को, और 25 तारीख को मैंने इनको पहला कॉल किया।
0: अच्छा।
1: तो इनको मैंने अपने बारे में बताया, मेरे ये भी बताया कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो इन सारी बातें बताई। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने फिर इन्होंने इनके एक बच्चा भी है 14-15 साल का, इन्होंने कहा भाई, मैंने बोला, मैंने कहा भाई आपके बच्चे को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है
0: जी।
1: तो इन्होंने कहा अगर कि आप अगर ऐसा एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारी बात आगे बढ़ी, और मुझे मतलब इनकी बातों से ऐसा लगा नहीं कि भाई कोई भी इन्होंने डिमांड वगैरह कुछ ऐसी कुछ नहीं की, और बहुत अच्छे से बात करती थी। कोई मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे तो उन्होंने पर्ट से मेरे साथ वो शेयर किए, और तो मुझे लगा कि भाई नहीं, ये ईमानदार है, बहुत अच्छे हैं, तो फिर मैंने इनसे आगे बात बढ़ाई।
0: कुल मिलाकर के विश्वास करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैम की बातों में आपको सादगी और सच्चाई नजर आई?
1: हाँ, काफी सच्चाई नजर आई इनकी बातों में मुझे
0: जी। तो चलिए, बहुत खूब, बहुत एक बार शुभकामनाएं और बहुत बधाई आप दोनों को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अब सविता मैम के साथ, देखें उन्हें आप पर विश्वास करने में वक्त कितना लगा। तो सविता मैम
2: जी, सर
0: पहले तो अगर आप बताना चाहें तो हम जानना चाहेंगे कि आपका पहला विवाह जो है वो क्या हुआ उसमें, और फिर उसके बाद रिंकूलाल सर के बारे में, क्योंकि आपका भी ये पहला ही अनुभव किसी ब्लाइंड से मिलने का रहा होगा,
2: बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम,
0: किसी को जानते नहीं होंगे, किसी को देखा नहीं होगा,
2: कभी
0: इतना आसान नहीं था आपके लिए भी निर्णय लेना, तो थोड़ा सा विस्तार से हमारे सुनने वालों को बताएं प्लीज।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हमारी कास्ट मराठी है, तो हम लोगों के कास्ट में क्या होता है कि बहुत कम एज में ही विवाह हो जाता है
0: जी।
2: तो मैंने मतलब अपना 12th पास किया था और 1 year तब भी मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब किया था 12th के बेच पे ही। तो उसके बाद में तब मैं 19 years की थी और मेरी शादी हो गई थी
0: जी मैम।
2: हाँ, मेरी शादी उस समय अरेंज मैरिज थी, कास्ट में ही हुआ था रिश्ता, मतलब रिलेटिव्स के माध्यम से ही।
0: हाँ जी, हाँ जी मैम।
2: और जो मेरे हस्बैंड थे वो पुणे महाराष्ट्र में रहते थे, मतलब वहाँ मेरा रिश्ता हुआ था
0: जी मैम।
2: अच्छा था काफी सब कुछ, मतलब नॉर्मल जैसी लाइफ सबकी चलती है इस तरीके से, सब कुछ हैप्पी लाइफ चल रही थी। 2005 में मेरा विवाह हुआ और 2007 में मुझे, मतलब मैंने एक बेटे को जन्म दिया
0: जी।
2: हाँ, इसके पश्चात सब कुछ चल रहा था बहुत अच्छे से, और जो मेरे हस्बैंड थे वो भी मतलब अच्छा इनकम था उनका, बिजनेसमैन थे, पीओपी किचन ट्रॉली वगैरह इस तरीके से
0: जी।
2: सब वेल सेटल भी था और बढ़िया चल रहा था। फिर उसके पश्चात 2011 में क्रिसमस की छुट्टियां थी, मतलब बच्चा इतना बड़ा हो चुका था कि वो प्रेप, मतलब नर्सरी जो होती है क्लास
0: जी,
2: उसमें उसका एडमिशन भी हो चुका था
0: जी।
2: तो हम लोगों को जैसे कभी बुरहानपुर मायके आने के लिए बहुत वैसे भी कम मिलता था, तो उस टाइम क्रिसमस की छुट्टियां थी, और उधर महाराष्ट्र में क्या होता है कि क्रिसमस की छुट्टियों में ही लंबा टाइम मतलब होता है, हॉलीडेज वगैरह दिवाली वगैरह में कोई हॉलीडे नहीं होते वहाँ,
0: नहीं होते हैं जी।
2: हाँ, तो हम क्रिसमस की छुट्टियों में यहाँ पर आए थे मम्मी के यहाँ मायके में
0: जी।
2: और उसी दरमियान बस आके हमको 6-7 दिन ही हुए थे यहाँ पर, हम आए थे वैसे 20-25 दिन के प्लान से रहने के हिसाब से
0: जी।
2: और आकर हमको 6-7 दिन ही हुए थे, और हमको अचानक घर से कॉल आया कि मतलब मेरे हस्बैंड का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है।
0: ओ।
2: और हाँ, और जैसे कि कॉल पे तो कोई डायरेक्ट ये नहीं बता देता है कि इस तरीके की दुर्घटना हो गई है, मतलब ऑन द स्पॉट वो नहीं रहे इस तरीके का तो कोई
0: नहीं बताता
2: जी। हाँ, तो जैसे एक्सीडेंट का बताया, और मेरे देवर जी ने कॉल किया था और उन्होंने ये बोला कि जैसे भाभी आप तुरंत जल्दी पिकअप करके हाँ आ जाओ, प्रियांशु को भी वहाँ छोड़ना नहीं, जैसे बेटे का नाम प्रियांशु है मेरा, तो बोले उसको भी वहाँ नहीं छोड़ना है, आप दोनों आओगे और जल्दी निकल के आइए, और लगे तो आपकी मम्मी भैया पापा नहीं है, मतलब मेरे फैमिली में इधर मायके में भी मम्मी है भैया है भाभी है
0: जी।
2: तो बोले भैया और मम्मी को भी साथ में लेकर आना
0: जी।
2: जैसे मैं हमेशा अकेले अप डाउन आना जाना करती थी मायके से ससुराल और ससुराल से मायके, तो उनको लगा हो सकता है कि भाभी अकेले आ जाए, तो इस तरीके से उन्होंने समझाया। फिर हम लोग यहाँ से बहुत और बाकी सारे रिलेटिव्स हम लोगों के मतलब इधर ही है बुरहानपुर साइड आसपास थोड़ा सा, सबको कॉल आ चुका था और सबको पता था कि एक्चुअल में क्या स्थिति हुई आगे। हाँ हाँ, तो फिर सब लोगों ने मतलब गाड़ियां वगैरह की प्राइवेट साधन मतलब करके, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बस मेरी जो मेरे लिए जो गाड़ी बुक की थी उसमें मेरे मम्मी भैया मेरे एक मामा ससुर मामी सास वगैरह मतलब लिमिटेड लोग थे, ताकि मुझे कोई शक ना हो कि इतने लोग पुणा क्यों जा रहे हैं। हाँ, बाकी और 6-7 गाड़ियां और इधर से उस साइड जाने के लिए निकली थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था रास्ते में। जैसे हम लोग मतलब काफी लंबा सफर होता है बुरहानपुर से लेकर पुणे जाने के लिए, मतलब रात में हम यहाँ से शाम में 5 बजे बैठे थे, तो वहाँ सुबह 5 बजे पहुंचे थे
0: जी।
2: पूरी रात मतलब एक बोलते ना एक आस मन में तूफान चल रहा था कि क्या हुआ होगा
0: क्या होगा।
2: हाँ, तो मतलब ना तो आंसू थम रहे थे और ना ही मतलब
0: जी समझ समझ सकते हैं मैम कि वो समय याद करके मतलब आज भी आपकी मनस्थिति कैसी हो सकती है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं।
2: हाँ सर,
0: खैर लेकिन चलिए जो भी है, वहाँ गए तो फिर आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि भाई
2: वहाँ जाने के बाद सब मतलब जो रियल स्थिति थी वो साथी मेरे सामने आ गई। फिर क्या था वहाँ, तो मतलब थे काफी संभालने वाले लोग भी थे, लेकिन जो एक बोलते हैं एक सब्र का बहन जो एक उम्मीद थी पूरे रास्ते में कि अगर एक्सीडेंट भी हुआ होगा तो मतलब संभाल लेंगे, कर लेंगे, लेकिन वहां जाके जो एक उम्मीद की आस थी वो पूरी तरीके से वहां जाने पर मतलब टूट गई,
0: सब खत्म, एक पल में सब बिखर गया जी।
2: और मीन्स तब शादी को केवल 5-6 साल ही हुए थे, 2005 में शादी हुई, 2011 दिसंबर की बात है
0: जी।
2: उस दरमियान जब ऐसा लगा कि सारी मतलब लाइफ खत्म हो गई
0: जी।
2: फिर कुछ एक आध महीना हम लोग वहां रहे, ससुराल वाले मतलब जो थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे, हमारी जो सासू थी वो मतलब सासू माँ ही थे फैमिली में बड़े, उधर भी जो थे ससुर जी नहीं थे हमारी फैमिली में, दो देवर थे और बाकी फिर दूसरी जो कजन फैमिलिया वगैरह होती है वो थी, तो वो काफी स्ट्रिक्ट थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि मतलब अब मेरा बेटा नहीं रहा तो आपको यहाँ रहने के जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे, हाँ ये चीज उन्होंने मुझे
0: एहसास करा दिया आपको एक तरह से,
2: एहसास नहीं डायरेक्ट बोल दिया था।
0: अच्छा, जैसे बोल ही
2: इनको, हाँ इनके मतलब गए हुए 16 दिन भी कम्प्लीट नहीं हुए थे और उन्होंने मुझे ये सेंटेंस बोल दिया था, और उसी टाइम मतलब मुझे ऐसा घर में भी फील होने लग गया था कि मतलब इस घर में अब अपना कुछ बचा ही नहीं है, एक इंसान था जिसके लिए अपन यहाँ रह रहे थे और अब इस फैमिली में मतलब अपने लायक कुछ बचा ही नहीं, इधर मायके वाले भी नहीं चाहते थे मतलब कि वहां पर मैं रहूं।
0: सही है।
2: फिर कुछ समय 1-2 महीने जैसे तैसे वहां पर निकाला, बच्चे की स्कूल कंप्लीट की, और फिर फरवरी में मम्मी भैया ये लोग आए और वहां से मुझे हमेशा के लिए इधर लेके आए। दिमाग में तो इनके भी चल रहा था कि अभी एज हमारी बेटी की ज्यादा नहीं है, 23-22 है, तो हम इसके रीमैरिज करवाएंगे
0: जी।
2: काफी उन्होंने भी खूब कई जगह रिश्ते ढूंढे, मतलब उनका मेन तो मोटो यही था कि हम कास्ट में ही रिश्ता करवाए जहाँ तक हो
0: जी।
2: क्योंकि ज्यादातर सभी का यही होता है कि कास्ट में हो जहाँ तक तो बेटर हो, इस तरीके की सोच थोड़ी सी है फैमिली में, तो उन्होंने काफी जगह रिश्ते ढूंढे, बहुत सी जगह ऐसे रिश्ते भी आए कि जो व्यक्ति होते थे वो कम से कम 50-55 साल के होते थे, और उनके हाँ इतने बड़े बड़े मतलब एज वाले होने के बावजूद भी उनके बच्चे, उनके घर में बहुएं होने के बावजूद भी वो ये कहते थे कि हम आपके बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे
0: जी।
2: और मैं तो मतलब पढ़ी लिखी थी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मतलब मैं करूँ, और फिर कभी कभी रियलाइज भी होता था कि यार मायके में कब तक रहेंगे इस तरीके से, मतलब खुद का घर भी होना चाहिए, खुद की फैमिली होनी चाहिए
0: जी।
2: इस तरीके से एक तूफान मन में चलता था, एक मन में चलता था कि नहीं कर लेना चाहिए, एक मन में चलता था कि नहीं करना चाहिए, कैसे मिलता सेकंड मैरिज में पता नहीं क्या होगा कैसे होगा इस तरीके से। और कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे भी आते थे उनके खुद के 2-2, 3-3 संतान होने के बावजूद भी वो मतलब मेरे एक बेटे को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे।
0: मतलब बड़ी उलझन चल रही थी जिंदगी में आपके,
2: बहुत ज्यादा। और फिर कुछ कुछ ऐसे रिश्ते आते थे कि वो अनमेरिड थे, बट क्या होता था कि विचार नहीं मिलते थे। अब जैसे मान लो किसी को अपना सिग्नेचर करना तक नहीं आता है तो उसके और फिर अपने विचार कुछ मेल नहीं खाते हैं।
0: ठीक बात है।
2: तो ऐसा आता था, पढ़ाई तो एजुकेशन प्रॉब्लम आता था, एज प्रॉब्लम आता था, बेटे को लेके काफी कुछ समस्या आई है, मतलब बेटे को एक्सेप्ट करने से ऑलमोस्ट ज्यादा ना सुनने को मिले मुझे
0: जी।
2: तो उस टाइम
0: कहीं ना कहीं आपके तो जीवन का सहारा बेटा ही था एक तरह से,
2: बेटा ही था और मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी ना।
0: बिल्कुल ठीक बात है जी।
2: तो हमेशा मतलब दिमाग में ज्यादातर यही ख्याल आते थे कि समाज मतलब आज भी कितना मतलब है कि मतलब उनके दिमाग में लेडीज को लेकर विचार जो है वो आज भी खुले नहीं, मतलब आप चाहो तो हमारे 2 बच्चों को एक्सेप्ट करो बट हम आपके एक बेटे को एक्सेप्ट
0: नहीं करें। बिल्कुल जी।
2: हाँ बोले ऐसे डिमांड रखते थे, चाहो तो बोले मिलने बुला लिया करो, तुम मिलने चले जाया करो, लेकिन हम उसको हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रख सकते।
0: बताइए
2: इस तरीके की काफी कुछ समस्याएं आई। फिर धीरे धीरे मायके का भी मतलब ऐसा लगने लगा कि जैसे कभी रियलाइज होता था त्योहार वगैरह आते थे तब उस टाइम पे मतलब किस तरह हमें जैसे एक तरीके से मायके में रहना और एज अ गेस्ट बन के त्योहारों में जैसे जानना काफी डिफरेंस होता लगता था, मतलब दिवाली रक्षाबंधन सभी कुछ ऐसा लगता था ना कि अपन तो यही है, अपने लिए तो रक्षाबंधन भी वही है, दिवाली भी वही है, सब कुछ वही है। फिर कुछ दिनों बाद थोड़ा सा पढ़ाई और कोचिंग के लिए मैंने सोचा कि अब मैं बाहर शिफ्ट होंगी, जो जहाँ मतलब भैया मम्मी ये लोग रहते थे वो थोड़ा छोटा गांव था, तो वहाँ पे कोचिंग की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो वहां से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर दूरी पर बुरहानपुर सिटी है, फिर हम लोग वहां पर शिफ्ट हुए ध्यानशु को लेकर मैं अकेले। फिर मैंने वही जॉब भी किया और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी की, और उसके लिए मुझे कोचिंग जाना पड़ता था, बेटे को भी पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल भी की, ट्यूशन भी की, इस तरीके से फिर मैं अपना अपना घर मैनेज करने लगे। फिर लॉकडाउन के दरमियान मतलब मैंने शादी का तो खुद अपना पर्सनली नहीं सोचा, फिर बाद में अभी जब ये लॉकडाउन लगा ना अप्रैल में
0: जी,
2: तब मेरे दिमाग में काफी कुछ तूफान चलने लगा कि क्योंकि इनकम का सोर्स भी बंद हो गया
0: बिल्कुल सही है।
2: हाँ, घर रूम रेंट देना है, बच्चे को खिलाना है, अपने को भी खाना है, पढ़ना है, बाकी की बहुत सारी रहती है जो करना ही है, जिसको आप मतलब स्किप नहीं कर सकते, जो डेली चीजें है वो
0: जो तो चीजें जरूरी है वो जरूरी है, वो करनी ही पड़ती है।
2: उसको करनी ही पड़ती है, नई लग्जरी लाइफ तो कम से कम जो जरूरी है वो तो अपने को करना ही होगा,
0: करना ही होता है जी।
2: तो तब बहुत मतलब दिलो दिमाग में ख्याल आने लगे कि जॉब की भी प्रॉब्लम है, जॉब में भी मतलब प्राइवेट में ये कोरोना वगैरह इसकी वजह से भी काफी कुछ, जो आपकी सैलरी 7,000 है तो आपको 5 मिलेगी, उसमें से 25% कटवाना होगा, इस तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सुनने में आने लगी, कॉल्स पे ही मतलब बातें होने लग गई थी। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, और फिर इस तरीके से तो लाइफ नहीं चलेगी। फिर एक दिन अचानक नाइट में दिमाग में आया, फिर मैंने सोचा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, अब मैं अपने बलबूते पे ट्राई करती हूँ। अब तक जैसे मैंने फैमिली को टाइम दे दिया, फिर मैंने सोचा अब मैं अपने हिसाब से एक बार ट्राई करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, फिर मैंने अपना प्रोफाइल जीवन साथी पे बनाया, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, जहाँ तक मेरा अभी मेन यही था कि मैंने यही सोचा था कि मैं शादी करूंगी तो महाराष्ट्रीयन लड़के से ही करूंगी, मराठी जिसके मदर टंग मराठी हो। मैंने ये ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जीवन में राजस्थान जाऊंगी।
0: हाँ, लेकिन जिस इलाके में आप आए हैं ना, वहाँ के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में सेटल्ड हैं। बिजनेस के।
2: और हाँ, तो जैसे फिर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया था 4 अप्रैल को, तो काफी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोग फेक भी लगे, कुछ फ्लर्ट करने वाले लगे, मत अलग अलग लोगों से सामना हुआ। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को जब इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजा, तो मैंने मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ भी पता नहीं कि मैंने इनका रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट किया। मैं यही सोचती हूँ कि मैंने मेरे जीवन में आज तक जितने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी ना, किसी की भी रिक्वेस्ट बिना रीड किए प्रॉपर एक एक लाइन पढ़ती थी, उसके बाद ही मैं उसको एक्सेप्ट करती थी।
0: ये कहानी तो ऊपर वाला तैयार कर रहा था।
2: हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही, जब मैंने बाद में सारा रियलाइज किया ना, तो मुझे यही फील हुआ कि ये कहानी शायद ऊपर वाले ने ही कुछ सोच समझ के लिखी होगी, इसलिए उसने अनजाने में, वरना मैं रीड करती ना कसम से, जैसे ही मैं ब्लाइंड पढ़ती मैं इनकी मतलब रिक्वेस्ट है उसको डेक्लिन कर देते। क्योंकि जीवन में आज तक कभी किसी मतलब सामना हुआ नहीं है,
0: हुआ नहीं, अनुभव नहीं कोई जी।
2: हाँ, कोई अनुभव नहीं किसी चीज का, मतलब डर वाली फीलिंग आ जाती है वहां पर।
0: नहीं तो एक बात बताओ मैम, आपको क्या लगता है ये फीलिंग आनी चाहिए क्या? वैसे
2: नहीं आनी चाहिए। अब देखो, मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, जैसे सभी के दिलों में जिस तरीके की फर्स्ट टाइम फीलिंग आती है, वैसे मुझे भी थोड़ी सी लगी। फिर उसके बाद 24 को अचानक से मतलब वो एक्सेप्ट हो गई, 25 को इनका डायरेक्ट कॉल आ गया। जब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, तो मुझे 1% के लिए भी याद नहीं आ रहा था कि कौन रिंकू लाल सोनी और मैंने कब इनका
0: एक्सेप्ट कर लिया जी।
2: हाँ, कुछ भी आइडिया नहीं। हालांकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कभी भी मतलब किसी को एकदम ऑन द मतलब
0: ना नहीं बोलते हो
2: और हर्ट भी नहीं करते हो। देखो, बनाया तो सभी को ऊपर वाले ने है, किसी को 19 बनाया, किसी को 20 बनाया,
0: सही है,
2: ये तो अपन इंसानों का है, जरूरी नहीं आज जो सामने वाला है कल अपन हो, तो अपन कह नहीं सकते उसके लिए। तो मैंने उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, उनकी बात पूरी ध्यान से सुनी कॉल पे, मतलब उनको रियलाइज भी नहीं होने दिया कि मुझे किसी प्रकार का डर लग रहा है उनकी बातें सुन के या कुछ भी इस तरीके का, मैंने कभी उनको महसूस भी नहीं होने दिया,
0: पूरा कॉन्फिडेंस में रहे मतलब आप।
2: हाँ, बहुत अच्छे से बात की। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं आपका प्रोफाइल चेक करती हूँ। फिर मैंने उसको नहीं, मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि मैंने बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लिया। मन में सोचा कि अब इनका कॉल हुआ कि मैं एक बार जाके देखती हूँ कि एक्चुअल प्रोफाइल है क्या,
0: है क्या।
2: फिर मैंने उसके बाद पढ़ी, फिर इनके फोटो देखे, उसमें कुछ में गॉगल्स लगा था, कुछ में नहीं लगा था, मतलब जो एक्चुअल पिक था वो भी मुझे क्लियर दिख, मतलब कि सामने वाला पर्सन रियल है कैसा, मतलब उसको ढाक के रखना और ओपनली दिखाना दोनों में फर्क होता है,
0: फर्क होता है जी।
2: हाँ, तो इन्होंने अपने जो ओपन पिक थे वो भी वहाँ शेयर किए हुए थे, सब कुछ था, मैंने वो सब देखा। फिर कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी घबराहट हुई, फिर खुद को समझाया कुछ, मतलब बोलते ना ऑल इज वेल, उस तरीके से मैंने अपने आप को उस टाइम के लिए थोड़ा सा समझाया। फिर थोड़ा अंदर मन में ये भी तूफान चल रहा था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद घर वाले तो इतनी आसानी से हाँ
0: नहीं करेंगे जी,
2: नहीं करेंगे। फिर रोज इनका कॉल आता था, बातचीत होती थी, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे, समझने लगे, ये भी मेरी हर एक बात मतलब समझने लगे, इनके अंदर भी मुझे पूरी सच्चाई नजर आने लगी। इन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किए, मैं तो मतलब अभी तक बहुत सारे फेक लोगों से सामना हुआ, लेकिन अपन सही है तो अपने को सामने वाले की बातों में भी मतलब सच्चाई लगती है। और इन्होंने मुझसे जो पूछा,
0: आपको लगा कि कोई सच्चे इंसान से आमना सामना हो रहा है?
2: आमना सामना हुआ है कि जैसी मैं हूँ और ये सामने वाला भी बिल्कुल सेम मुझ जैसा ही है, तो इसको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट वीक है तो उसको साइड में रख दो, बाकी की चीजों को देखते हुए आगे बढ़ने का फिर मैंने फैसला लिया। फिर धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को समझने लगे। फिर मतलब टोटल एक ही महीना हम लोगों ने बातचीत वगैरह की। फिर नवंबर में दिवाली के टाइम में अपने मायके गए, उस टाइम फिर इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे, फिर उसके पहले तो मैंने बता दिया था जैसे भैया इन लोगों को, सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को बताया था कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और ये भी क्लियर बताया था कि उनका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, राजस्थान के रहने वाले है ये, जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में है।
0: और अच्छा सविता मैम, यहाँ पर आपको रोकूंगा, एक मजेदार किस्सा याद आ रहा है मुझे कि शायद आपकी बातचीत के दौरान आपको हमराही कार्यक्रम भी सुनवाया सर ने ना।
2: हाँ, हम लोगों की जो बातचीत होती थी, हाँ बिल्कुल सुनवाया। सबसे पहला हमराही प्रोग्राम मैंने देखा था अंजू मैम और उनके हस्बैंड
0: जी जी,
2: हाँ
0: कुलदीप
2: नीरज जी, क्या नाम है उनका, उनका प्रोग्राम सबसे फर्स्ट टाइम मैंने देखा।
0: नीरज जी, हाँ नीरज जी, जी जी,
2: हाँ अंजू मैम और नीरज जी जो उमरिया से बिलोंग।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो एमपी के ही थे।
2: बिल्कुल, तो उनका मैंने सबसे फर्स्ट प्रोग्राम मेरी लाइफ में, और आपकी आवाज भी मैंने उसी टाइम फर्स्ट टाइम सुनी थी, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगी थी।
0: नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, नहीं, मतलब ये हमराही कनेक्शन भी है कहीं ना कहीं इस कहानी में।
2: अच्छा, फिर मैंने जब वो फर्स्ट टाइम सुना तो इन्होंने मुझे ये वो भेजा था, 10:30 के दरमियान उसकी लिंक भेजी थी नाइट में
0: जी।
2: वो सुनते सुनते मुझे फिर भी 11:30-12 बज गए थे
0: जी, जी।
2: उसके बाद मैंने वो सुना, और जब मैं उनकी स्टोरी सुन रही थी तो मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे
0: जी,
2: बिल्कुल नहीं थम रहे थे। उसके बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन के मोबाइल साइड में रखा, आधा पौन घंटा मेरे आंसू कंटिन्यू बहते रहे, बहते रहे। वो बोलते ना सारा दर्द उन आंसुओं के साथ में मेरा सारा
0: निकल
2: गया, उसी के साथ में मेरा सारा डर भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो कहीं ना कहीं रोना भी एक अच्छी चीज होती है कि अपने अंदर जो तूफान चलता है तो अपने एक रिलैक्स हो
0: मतलब
2: जाते हैं।
0: थोड़े बहुत जो डाउट थे आपके मन में वो उन कहानियों को सुनने के बाद वो सब निकल गए।
2: उसके बाद सेकंड एपिसोड मैंने आपका और आपकी वाइफ का सुनना था
0: जी, जी
2: वो मैंने मेरी मम्मी को भी सुनवाया और अंजू मैम वाला भी मम्मी को वापस सुनवाया। इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मुझे जैसा इन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाया, तो मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली को भी मतलब इस तरीके से कॉन्फिडेंस में लाऊं कि मतलब ये लोग भी किसी से कम नहीं होते, उनको मुझे ये दिखाना था
0: जी, जी, जी, जी, जी,
2: कि भाई है वो ब्लाइंड लेकिन वो किसी मामले में किसी से कम नहीं। तो फिर मम्मी को भी थोड़ा सा लिया मैंने कॉन्फिडेंस में, हिम्मत करके, मतलब हिम्मत तो नहीं थी मुझ में इतना बोलने की, लेकिन जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से खुद ब खुद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। कुछ मोटिवेट इन्होंने किया मुझे कि आपको बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले कैसे चलेगा, इस तरीके से धीरे धीरे। फिर सबसे पहले मम्मी के सामने ये बात रखी,
0: जी।
2: फिर मैं नहीं चाहती थी कि ये डायरेक्ट मेरे, मतलब जो मेरे भैया है उनका नेचर थोड़ा स्ट्रिक है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा स्ट्रिक है
0: जी।
2: तो उनके सामने तो मैं भी डायरेक्ट बात नहीं कर पाती, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले का चमत्कार हुआ कि दिवाली के टाइम में वहां पर गई। ये मुझे कॉल करते थे, मैं बड़ी डर डर के बात करती थी सबसे, छुप छुपा के
0: जी।
2: हाँ, इस तरीके से इनसे बात कर लेती थी, और ये मुझसे रोज पूछते थे कि भैया से बात हुई क्या। मैं हमेशा टाल दिया करती थी
0: जी।
2: फिर एक दिन अचानक इन्होंने मेरे नंबर पे कॉल किया। वो छोटा गांव था थोड़ा सा, तो वहां पे कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती थी, और मेरा ही एक सिम कार्ड था जो मैंने अपनी मम्मी को दे के रखा था, मम्मी के मोबाइल में। हाँ, तो इन्होंने उस दिन लगाया, तो मेरा नंबर, मैंने इनको फैमिली में किसी का भी नंबर दे के नहीं रखा था, सिर्फ मेरे ही दोनों तीनों नंबर और एक मेरे बेटे का तियांशु का नंबर, उसके अलावा इनके पास कोई नंबर नहीं था। तो उस दिन मेरा कॉल मतलब नहीं लगा, तो अचानक से वो ऐसा बता रहा था कि भाई आपका जो कॉल है वो मतलब नहीं, उन्होंने जो अपना कॉल है वो किसी और नंबर पे फॉरवर्ड किया हुआ है
0: जी।
2: और वो फॉरवर्ड मैंने जब भी कभी लाइफ में अपना नंबर कभी किसी अदर नंबर पे फॉरवर्ड नहीं किया था
0: जी।
2: तीन चार बार ट्राई करने के बाद इनकी चौथी या पांचवी बार डायरेक्ट रिंग बजी मेरी मम्मी के मोबाइल पे
0: जी।
2: और वो कॉल उठाया मेरे भैया ने
0: जी।
2: और थोड़ी थोड़ी मतलब मोबाइल से आवाज बाहर आ रही थी, और इन्होंने जैसे ही बोला कि मैं राजस्थान से रिंकू लाल सोनी बात कर रहा हूँ, ये सुन के तो मेरे पैरों तले से जमीन तरफ
0: जी।
2: बहुत डर गई थी मैं
0: जी।
2: फिर खुद फिर वापस समझा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। इनका नाम सुनते से तो बड़ी हार्ट बीट्स बढ़ गई, बड़े रिंकू लाल सोनी राजस्थान से बोल रहा हूँ। फिर मैंने बोला आपको गए, फिर भैया ने बोला हाँ बोलिए। थोड़ा सा मैंने उनको बता के रखा हुआ था, मतलब इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे अपना जॉब से रिलेटेड जो भी मुझे भेजा था, वो मैंने डायरेक्ट बात ना करते बस चोरी छुपके जो व्हाट्सएप पे सेंड करने वाली प्रोसेस होती है वो मैंने भैया को सिर्फ
0: बताई,
2: सेंड की थी, डायरेक्ट बात नहीं की थी, और मैसेज में लिख दिया था कि ऐसी ऐसी बात है। कॉल पे तो मैंने उससे बात ही नहीं की थी इस टॉपिक पे। फिर जब इन्होंने नाम बोला तो उन्होंने भी पहचान लिया, फिर इन्होंने अपना सब कुछ बताया, तो वो बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। मतलब उसने मतलब ऐसा मतलब भैया ने जो था केवल ऊपरी रिप्लाई दिया, हाँ हाँ ठीक है ना, देखते है, बताता हूँ मैं आपको, बाद में कॉल करूंगा, अभी तो मैं ड्यूटी से आया हूँ, इस तरीके से बोल के इनको फुल्ली इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे ही कॉल रखा, फिर मुझे पता था कि अब जो है वो मतलब अदालत में मुझे खड़े
0: अब आपका नंबर आने वाला है जी।
2: हाँ, जैसे इनका कॉल हो गया फिर मेरा नंबर आने वाला था। फिर पता नहीं थोड़ी सी मतलब आज तक मैंने कभी मतलब मेरे भैया से बोलो तो ऐसे मतलब ऊंची आवाज में कभी बात भी नहीं की थी, और वो जो बोलता था मैं उसका हर कहना मानती, लेकिन पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हो गया था, मतलब उसकी हर बात को मैंने क्रॉस में काटा। जब वो बात हो गई फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर मैंने फिर स्टोरी रिपीट करना पड़ा कि भाई राजस्थान के रहने वाले हैं, नाम ये है, ये करते हैं, इस तरीके से पूरा स्टोरी फिर से बता। तो सबसे पहला सेंटेंस मेरे भैया ने मुझे ये बोले तुझे शर्म आ रही है कि नहीं थोड़ी सी भी, मतलब तू ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगी तुझे ठीक लगेगा क्या, उसने मुझसे सबसे पहला ये
0: ऐसा इंसान मतलब जो ब्लाइंड है यूं।
2: हाँ ये अच्छा, और बोले बहुत दूर है ना, तो वो हमारे कास्ट के है और ना ही बोले किसी भी चीज में बोले लोग हमको क्या बोलेंगे, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने यूज किया। फिर मैंने बोला मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है,
0: मतलब
2: मुझे
0: नहीं
2: उस मुझे उस इंसान से मतलब है। आज अगर उस इंसान के मेरे लाइफ में आने से मेरी लाइफ बनती है, और मेरे उनके लाइफ में जाने से उनकी लाइफ सवरती है, मेरे बेटे की लाइफ सवरती है, तो मैं अपना फ्यूचर देखूंगा। इस तरीके की बातें हम दोनों भाई बहनों के बीच में हुए। बीच में मम्मी थे, मम्मी ने थोड़ा मुझे भी सपोर्ट किया, लेकिन जहां तक हो ज्यादा भैया के ही सपोर्ट में रही कि भाई वो कह रहा है, जैसे मम्मी को ये लगता था कि भाई बाहर ज्यादा घूमता है तो भैया को ज्यादा दुनियादारी समझती है।
0: हाँ, मतलब माताजी को कुलना के दोनों तरफ ही देखना था आपको भी।
2: हाँ, मतलब वो मुझे भी समझती थी, लेकिन
0: एक बैलेंस बना करके चलना था उन्हें तो।
2: हाँ, और भाभी जी जो थे वो बेचारे चुप थे, वो तो किसी भी मतलब बोलने वाली कंडीशन में नहीं थे। फिर उसके बाद में इस तरीके के नाइट में बात हो गई, फिर उन्होंने भैया ने बोला कि मैं जीजाजी को कॉल करता हूँ, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। फिर उन्होंने जीजाजी को फोन किया, हमारे मतलब एक बड़े जीजाजी है, एक सिस्टर है जिनकी शादी महाराष्ट्र में हुई है, फिर जीजाजी को कॉल किया। जीजाजी से कॉल पे बात हुई तो जीजाजी ने भी तुरंत ना बोला, मेरी बिल्कुल ना है बोले, सविता की शादी पहली बात तो इतनी दूर करना नहीं है और ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही वो लोग, सबसे मेन तो इन लोगों का टॉपिक ये चलता था, ना ही वो हमारी कास्ट के है और ना ही राजस्थान में हमारा कोई रिलेटिव है जिनके भरोसे हम लड़की इतनी दूर दे दे। इस तरीके की बात दोनों की हो गई, फिर ये लोग सब सो गए। फिर रात भर तो मन में वही ख्याल चलते रहे कि अब क्या होगा कैसे होगा। फिर दूसरे दिन हमारा निकलने का समय आया, हमको आना था बुरहानपुर वापस। हम लोगों ने पैकिंग की, इस टॉपिक पे कोई रिपीट बात नहीं हुई, बस जब मैंने बैग उठाया तो निकलते टाइम भैया ने एक ही सेंटेंस बोला कि राजस्थान कॉल करके क्लियरली मना कर देना, उनको बोल देना दोबारा यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं है और हमारी ना है। तो मैंने बोला क्यों ना है, तो बोले कि जीजाजी ने भी अब मना कर दिया है और मेरी भी ना है। तो मैंने बोला ठीक है आप लोगों की ना है लेकिन मेरी थोड़ी ना है, मैंने कहा मेरी तो हाँ है।
0: मतलब हिम्मत आ गई थी आपके अंदर भी?
2: हाँ आ गई थी। तो उस टाइम मैंने बोला मेरी तो ना नहीं है ना, आप लोगों की हाँ है, ठीक है आप लोग सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर

0: लगी कि जब एक बार भैया ने मना कर दिया है, तेरे जीजाजी ने मना कर दिया है, तो समझ में नहीं आता क्या इस तरीके से वो मुझे, मतलब बड़ी सिस्टर है तो डांट भी सकती है, तो डांटना शुरू कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने यही सोचा कि मैं जितना इन लोगों से बात करूंगी ये उतना मुझे उलझाएंगे और कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी ये लोग कम करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बाहर दुनिया से आप बहुत लड़ाई लड़ सकते हो लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने एक एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया।
1: आपने तो ये तय कर रखा था कि भाई अब जो भी होगा देखा जाएगा।
0: हाँ, जो भी होगा देखा जाएगा इस तरीके से।
1: अच्छा, और एक बात बताऊँ मैम कि एक यहाँ पर मेरे जहन में प्रश्न ये आ रहा है कि चूंकि बेटा भी अब इतना छोटा नहीं है, तो क्या कभी उससे आपको लगा कि चर्चा करनी चाहिए या नहीं, आपने कुछ नहीं चर्चा की?
0: नहीं, मैंने की उससे भी। सबसे जब इनके प्रोफाइल और मतलब जो हमने सिर्फ 2 या 3 दिन बात की होगी ना, उसके बाद तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे ये कि नहीं, इंसान अच्छे है। तो तभी उसके मतलब बाद में ही जस्ट मैंने सबसे पहले अपने बेटे से ही बात की थी सबसे पहले
1: जी।
0: हाँ, कि बेटा इस तरीके की बात है। और फिर इन दोनों की भी आपस में मैंने बात करवाई सबसे पहले, तब जाके मैंने परिवार वालों से बात की। जब जिसको मेरे साथ रहना है अगर वो तैयार है तो फिर बाकी लोगों से बात करने वो बात का मैटर है कि बाकी लोगों से कब बात की।
1: कुल्ला करके बच्चे की प्रतिक्रिया क्या रही?
0: उसकी प्रतिक्रिया तो उस टाइम पर नॉर्मल ही थी, जैसे एक बच्चा रिएक्ट करता है वैसे। उसने मतलब ना तो जवाब नहीं दिया ऐसे किसी प्रकार से कि मेरी ना है, कि नहीं मुझे पसंद नहीं है।
1: मम्मी आप देख लो, मतलब जो ठीक लगे आपको।
0: नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। उसने कहा कि मम्मी अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।
1: साथ हूँ, अच्छा, वेरी गुड।
0: हाँ, फिर जब उसने इनसे एक दो बार बात की, फिर मैंने उसको वापस पूछा कि बेटा तेको कैसा लगा बात करने पे, तो बोले नहीं मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर उसके बाद में घर वालों को मैंने बहुत बार फोन किया कि वहाँ चलना है अपने को, जैसे ये हम लोगों को यहाँ बुला रहे थे कि ठीक है भाई आप देख लो आकर मिल लो। क्योंकि ऐसी जो शादी की बातें होती है वो केवल फोन पे आप लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए मिलना जुलना भी जरूरी है। फिर इन्होंने हम लोगों को राजस्थान बुलाने के लिए, मतलब इनके पेरेंट्स से भी मेरी 2-4 बार बात हुई। इनके घर वाले भी पहले बिल्कुल मना थे कि नहीं नहीं मराठी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करना है, मराठी लड़की हम लोगों को नहीं चलती। तो इनके घर वाले भी बिल्कुल ना के पक्ष में थे। फिर इन्होंने भी अपने मतलब मम्मी तो बिल्कुल इनके मना कर रहे थे। उनकी मम्मी ने कहा जैसे भाई मेरी तो मराठी लड़की के लिए ना है, लेकिन अगर बाकी के फैमिली वाले हाँ बोल दे तो मैं मना भी नहीं करूँगी। फिर इन्होंने अपने पापा जी से बात की, सभी से धीरे धीरे बात की। फिर उन लोगों को भी ये फील होने लगा कि हो सकता है अपने बेटे की आंखों का कुछ फायदा उठा के कोई चीट लड़की ना आ जाए।
1: बिल्कुल, ये एक बड़ा डर रहता है आजकल जी।
0: हाँ, ये उनकी फैमिली को बहुत डर सता रहा था कि भाई वो तो पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, कोई उसके अंदर कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, तो फिर वो लड़की क्यों अपने बेटे को हाँ बोल रही है। ये उनके दिमाग में चल रहा था। तो फिर मेरे सारे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, सब कुछ देखा, उसके बाद उनको थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। डॉक्यूमेंट देखने के बाद केवल मतलब बोला जाए तो 40-45% उनको थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। फिर आई बात यहाँ पर चलने के, आने के। मम्मी से पूछा आप चलोगे, मम्मी बोले मैं नहीं आऊंगी। भैया से पूछा मैं नहीं आऊंगा। ऐसा किसी ने भी मुझे सपोर्ट करने से क्लियरली मतलब मेरे फैमिली वालों ने मना कर दिया। फिर जब फैमिली वाले मना कर देते हैं तो लास्ट में सहारा बचता है फ्रेंड्स लोगों का। फिर मेरी एक 11th-12th क्लास की फ्रेंड थी, तो मैंने उससे इस टॉपिक पे सब कुछ डिस्कस किया। तो मतलब मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको डायरेक्ट बोल दूं कि चल तू मेरे साथ चल रही हो, तो क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में थी और एक मतलब शादीशुदा एक फैमिली वाली लड़की को अपन जैसे अपन पहले के टाइम की बात अलग हो जाती है, लेकिन शादी के बाद में बोलना थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मतलब मेरी फ्रेंड इतने अच्छे थे कि उसने खुद मुझे मतलब सामने से कहा, राखी तिवारी नाम है उसका, वो ब्राह्मण कास्ट के ही है
1: जी।
0: तो उसने खुद सामने से मुझसे कहा कि ठीक है मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अब जो मतलब तूने जो निर्णय लिया है उसको अपन अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर वहां से हम लोग मतलब वो देवास में रहती है, इंदौर के पास में है, तो वहां हम उसके घर गए प्रियांशोर में। वहां से फिर हमारा रिजर्वेशन था इधर आने के लिए, इन्होंने ही करवाया था। उदयपुर से फिर हम लोग आए हाँ देवा

0: से हम लोग उदयपुर आए, उदयपुर में ये हमको मतलब लेने के लिए पिकअप करने के लिए आए, फिर इनके घर पहुंचते, सारी फैमिली वालों से मिले इनके घर, काफी लोग मतलब मुझसे मिलने के लिए बड़े एक्साइटेड थे, इनके चाचा
1: कुल मिला करके जो अड़चने थी बड़ी बड़ी वो सारी दूर हो गई।
0: हाँ, फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद में सबसे मिले, जब उन लोगों ने मुझसे बात की उसके बाद इनके मम्मी ने मुझसे बस 15 मिनट बात की, और 15 मिनट के बाद में इन्हें बाहर आके बोलते हैं कि अब मेरी बिल्कुल भी ना नहीं है, मेरी तरफ से 101% हाँ है, वो भी चाहिए तो इसी लड़के से होगी।
1: जी जी जी,
0: इस तरीके का इनकी फैमिली मतलब पूरी तरीके से हाँ थी, बस शर्त उनकी भी ये थी कि मतलब मेरी फैमिली वाले भी तैयार होने चाहिए, ताकि मतलब यहाँ के लोगों को ये ना लगे कि भाई इन्होंने पता नहीं कोई लगता है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ के लोगों की सोच रहती है कि पता नहीं कौन सी लड़की मतलब ये लेके आ गए, फैमिली थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड साथ में हो तो सभी को थोड़ा कॉन्फिडेंस।
1: बहुत अच्छी बात है कि आपकी कहानी सुनते सुनते जो है वो समय भी हमारा लगभग पूरा हो गया और आखिरकार आप दोनों का मिलन हुआ। काफी विस्तार से और काफी बारीकी से आपने जो है वो सिलसिलेवार ढंग से सारी घटनाओं को समझाया, जो कि जरूरी भी है इस तरह की कहानियों में, क्योंकि बहुत लोगों को निर्णय लेना बड़ा आसान नहीं होता है। तो रिंकुलाल सर,
2: हाँ जी,
1: अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में है,
2: हाँ जी,
1: आप सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी कहानी में कोई बात अगर आप ऐड करना चाहें?
2: बस कहानी में ये कि घरवाले मतलब मेरे मम्मी जी बिल्कुल ही मना कर रहे थे, लेकिन फिर मेरे मम्मी जी फिर मेरे पिताजी से बात की तो पिताजी तो पूरी तरह से एग्री थे, उन्होंने कहा अगर लड़की सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1: नहीं है जी।
2: तो फिर बाद में जो है मेरे पिताजी ने एग्री हो गए, फिर तो फिर सब लोग यस कर दिया, फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम
1: जी
2: नहीं आई हमारी फैमिली।
1: क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: हाँ, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई अगर आपको मैरिज किसी से भी करनी है तो पहले तो उसके बारे में पूरी परख कर ले अच्छे से, उसको जांच ले अच्छे से, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखें जैसा भी है, उनके अच्छे से बात करके उनको समझ ले परख ले, फिर अगर आपको अगर उनसे मैरिज करना है तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाने से ही मतलब काम आगे बढ़ेगा। जब तक अपना विश्वास मतलब कायम रखेंगे तभी मतलब अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर डगमगा गए तो फिर वो हम जो जिस मंजिल को पाना चाह रहे हैं वो हासिल हमें नहीं होगी, तो इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। और हमारे जो हमारे धन पर पत्नी जी ये भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रही हैं।
1: जी जरूर जरूर, स्वागत, क्योंकि बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हम लोग
0: लास्ट में जो मतलब जो भी मधुबन हमारा जो रिकॉर्डिंग क्लब वाले जो भी सुन रहे हैं उनको लास्ट में यही संदेश देना चाहूंगी कि जैसे जिस तरीके से नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल हो, ब्लाइंड हो, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, मतलब उसे किसी भी इसमें कम नहीं आंकना चाहिए। जब हम उससे मिलते जुलते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं और तभी हमको मतलब सब समझ में आता है कि वो किसी भी मामले में कम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में तो कि भाई अब जब मैं इनके साथ अब कम से कम 6 महीने से बात को मतलब जब से बात कर रहे तब से लेकर अब तक हमको एक दूसरे से मिले हुए कम से कम 6 महीने तो हो ही गए, तो आज की कंडीशन ऐसी है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि इनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी है, शारीरिक कोई कमी है इनके।
1: बहुत खूब बहुत खूब, तो ये बहुत जरूरी है एक दूसरे को जानना समझना और उसके बाद अपनी राय को बनाना। कुल मिला करके आज का कार्यक्रम श्रोताओं आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर और सविता मैम आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और इतनी शानदार इतनी प्यारी प्यारी बातें सभी के साथ करने के लिए।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इसके लिए मौका दिया, इसके लिए हमें चुना, एक मंच प्रदान किया, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं
1: जी। तो श्रोताओं सुनते रहिए रेडियो मधुबन और मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहिए। रेडियो मधुबन का कारवा यूं ही चलता रहेगा, हमारा ही कार्यक्रम आपके बीच में आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रविवार किसी और हमराही के साथ।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। अब जिंदगी से प्यार ना हो तो भाई जिंदगी जीने का आनंद कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा। और ना जाने जिंदगी के ऊपर कितने गाने सुने हैं, कितने गाने बने हैं, लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं, और बड़ा मजा आता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो चलिए जिंदगी को तो नहीं लेकिन खुद को जानने की कोशिश करते हैं लव यू जिंदगी में। और आज हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको खुद से मिलाएंगे। आज हमारे साथ हैं कल्पना जी जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत लंबा अनुभव है उनका यूथ के साथ, बच्चों के साथ, बहुत लोगों को उन्होंने मदद की है जिंदगी से प्यार करने में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आरजे भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आरुषि जी।
2: नमस्कार। नमस्कार आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार आपके साथ जुड़कर।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों की आवाज सुनकर, और ये जानकर और खुशी हो रही है कि बड़ा ही टॉपिक इंटरेस्टिंग है आज का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो फॉरगिव और फॉरगेट की बात करता है। खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों को माफ करना फिर भी आसान होता है, पर खुद को माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद को माफ करना भी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो ही जाता है वैसे, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है माफ करना? और माफ करना कैसे होता है, मतलब कह दिया माफ कर दिया तो क्या सच में माफ कर दिया, या वो अंदर वो रह जाता है कुछ बाकी? तो जानेंगे ये सब। कल्पना जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको कितना रेलिवेंट लगता है ये टॉपिक?
2: ये टॉपिक मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हमेशा से मेरा ये अभ्यास रहा है कि मैं किसी को माफ नहीं कर पाती थी बचपन से लेकर बड़े होने तक। लेकिन जब मुझे थोड़ा समझ आई और मुझसे ऐसी कोई गलती हुई जिसके लिए मैं चाहती थी कि मुझे कोई माफ करे, और जब उनकी तरफ से मुझे माफी नहीं मिली, तो उस समय जो मुझे तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने ये सोचा कि आज से आगे से चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे सबको माफ करने की आदत डालनी है। और जिस दिन से मैंने ये ठान लिया, मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत बहुत सुंदर एक एहसास उत्पन्न हुआ जिसको हम सुकून कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन कह सकते हैं, हल्कापन कह सकते हैं। वो एहसास मेरे में जागा, और जब मैंने माफ करना शुरू किया तब मैंने देखा कि मेरे पांव जमीन पर नहीं, मैं कहीं दूसरी दुनिया में, मतलब मैं इतना हल्का महसूस कर रही थी अपने आप में। उस दिन मैंने जाना कि माफ करना किसी और के लिए नहीं होता है, ये तो खुद को आजाद करने का, नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव इमोशन से ये आजाद करने का एक तरीका है। हम जितनी देर तक अलग अलग प्रकार से मिले हुए दर्द को पकड़ के रखते हैं, उतनी ही गहराई से वो दर्द हमें पकड़ के रखता है, और उसके कारण जो लाइटनेस है, इजीनेस है, हल्कापन है, क्रिएटिविटी है इवन, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। सो माफ करना मेरी जिंदगी का बहुत अच्छी शिक्षा मेरे लिए मिली, जो कि मैंने अपने जीवन में अच्छी तरह से उसको धारण कर लिया।
0: मतलब माफ करने से हम लाइट हो जाते हैं और हमारी क्रिएटिविटी पे भी असर पड़ता है, बहुत चीजों पे असर पड़ता है, आपने बताया। श्री जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, इतना रेलिवेंट है आपके लिए टॉपिक, क्या आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है माफ करने से जुड़ा हुआ?
1: मैं शुरुआत ही एक शेर से करना चाहूंगा। रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, नाराज होना गलत नहीं तू खता बताया कर।
0: क्या बात।
1: कहने का भाव ये है कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम कभी किसी से माफी चाहते हैं, या कभी कभार हमें खुद ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे माफ करे या मैं किसी को माफ करूं, मगर बिना ये जाने कि वजह क्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज है। अगर हम किसी से खफा भी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो उसके भी पीछे कोई वजह है, और अक्सर ये बात कही जाती है कि हम उन्हीं लोगों से नाराज होते हैं, उन्हीं लोगों से खफा होते हैं जो अपने होते हैं। वरना सड़क चलते कोई टक्कर लग गई, किसी का हाथ लग गया, तो हम कहते हैं चलो जाने दो यार, गाँव को हम ये सब कुछ करेगा। मगर अपने ही लोगों से अगर कभी कभी कभार दुख होता है तो ऐसी सूरतों में हमें मुश्किलात ज्यादा लगने लगती हैं, पेन या हर्ट ज्यादा होने लगता है, तो इसलिए जानना जरूरी है।
0: कहते हैं बहुत से लोग जहाँ प्यार होता है वही नाराजगी होती है, वही गुस्सा होता है, या वही उनसे ही मुश्किल होता है लेकिन माफ करना उन्हीं को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार होता है।
1: जी, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम वजह जाने, और पहली वजह ही ये है कि हम उनसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमने ये उम्मीद नहीं की थी, हमने ये सोचा था कि वो हमारे अपने हैं और उनसे हर्ट या उनसे किसी प्रकार की तकलीफ या उनसे इस प्रकार का व्यवहार मैंने अपेक्षा ही नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक ऐसे क्वार्टर से जब मुझे वो पेन मिला या मुझे वो वैसा व्यवहार मिला तो हम नाराज हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे। और कभी कभार हमसे जब गलतियां होती हैं तो हमें भी लगता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए, मगर वो नाराज इतने होते हैं तो लगता है कि माफी मांगे तो किस मुंह से मांगे कि माफी मांगेंगे तो ऐसा लगता है माफी मिलेगी नहीं, हमें और चार बातें खरी खरी सुनने को मिलेंगी, इसलिए भी हम संकोच करने लगते हैं। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के पास ऐसी घटनाएं हैं, जीवन के ऐसे अनेक किस्से हैं जहां पर या हमने गलती की है या किसी और ने हमारे साथ कुछ गलत किया है जिसकी वजह से या तो हम माफी के तलबगार हैं या हम खुद माफी मांगने के इंतजार में हैं, हम उस सही मौके की खोज में हैं। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं समझना कि हर इंसान गलतियां करता है, हर एक को माफी मांगने की और माफ करने की जरूरत है, और ये कैसे किया जाता है ये सीखना जरूरी है।
0: लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि माफ खुद को करना ज्यादा आसान है या दूसरों को करना।
2: एक किस्सा याद आता है, एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और अपनी कहानी उसने सुनाई। उसने कहा मैं जब 2 साल का था, मेरा भाई 4 साल का था, तब हमारी मम्मी बिना किसी वजह के, बिना कुछ बताए हमें छोड़कर चली गई। सो वो अपनी कहानी बता रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं अब इस बच्चे को क्या जवाब दूं और कैसे इसका दर्द को समझूं। सो हम दोनों ने एक कोशिश की कि चलो हम ये पॉजिटिव सोचते हैं कि अगले 6 महीने में आपकी मम्मी आपके घर आ जाएगी। सो हम दोनों ने ये मिलके सोचा और वो पॉजिटिव एनर्जी का असर देखिए कि उनकी मम्मी 6 महीने के भीतर घर आ गई। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बट उसको पता नहीं चल रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे, उनको क्या बोले। वो माफ करने के लिए तैयार नहीं था मन से, उसके मन में बहुत सारी शिकायतें थी कि आप हमें क्यों छोड़ के गए, 2 साल से लेकर 15 साल तक का मेरा जीवन मैंने कैसे बिताया मुझे पता नहीं, और वो माफ नहीं कर पा रहा था। परंतु जब उसने मुझे पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तब हमने कहा कि नहीं, अब सोचते हैं कि वो 2 साल से 15 साल का समय आया ही नहीं, और अभी अभी मतलब कि पुरानी सारी बातें भूल कर माफ करके दोनों एक दूसरे से गले लग जाएं और एक सेकंड में भूल जाएं। जब उसने ऐसा किया तब उसे महसूस हुआ कि माफ करना और भूल जाना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना वो सोच रहा था। सो इस घटना से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से कुछ न कुछ सीखते हैं और अक्सर माँ बाप भी अपने बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी माता पिता की गलती हो सकती है, कभी बच्चों की गलती हो सकती है, और दोनों जब एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ उम्र भर के लिए रहने के आदि हो जाते हैं। वो जो प्यार है, अपनापन है, सुरक्षा की भावना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो हर रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। इसलिए वक्त रहते माफ करना और भूल जाने की आदत जल्द ही हमें सीख लेनी चाहिए।
0: ये बहुत बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसमें वो बच्चे ने माफ कर दिया, मगर हम तो छोटी छोटी बात में भी कई बार माफ नहीं कर पाते और वेट करते कोई माफी मांगे तो मैं माफ करूं, बिना माफी मांगे माफ करने का भी मन नहीं करता कि भाई अपनी गलती रियलाइज तो करो कम से कम, बोलो तो सॉरी आके, फिर तो चलो मैं माफ कर दूं, पर सामने वाला भी बोल नहीं रहा होता, हम भी माफ कर नहीं रहे होते। तो दूसरों को माफ करने के लिए अपॉलॉजी इम्पोर्टेंट है बहुत, या फिर बिना उसके भी माफ किया जा सकता है?
1: मैं समझता हूँ बहुत बार ये चीज भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई सामने वाला माफी मांगे तब मैं माफी दूंगा, और इसके इंतजार में हम बहुत सारी गलत फहमियां पाल लेते हैं, हम इंतजार

0: इंतजार में रहते हैं कि मौका आने दो, उसके इंतजार में होते हैं। जैसे अभी कल्पना जी वो कहानी सुना रहे थे, बिल्कुल ये बात भी है कि हम सामने वाले को रियलाइज कराना चाहते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। और कभी कभार गलतियां, मुझे याद आता है मैंने एक बहुत ही सुंदर प्रवचन सुना था दादी जानकी जी से, उन्होंने ये कहा था कि गलती, भूल, गुनाह, खता, ये कितने सारे अलग अलग लफ्ज हैं, और इसके एवजे में जो चीजें माफी देने वाली चीजें हैं उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं फॉरगिवनेस, मर्सी। अगर आप इन शब्दों को देखते ही चले जाएंगे, फॉरगिवनेस के लिए जो शब्द बने हुए हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि कितनी गहरी बातें हैं ये। खैर, मैं उस गहराई में न जाते हुए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि छोटी मोटी भूलों को हम भी भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, शायद हम उसे दिल पे भी नहीं रखते। उससे भी थोड़ी बड़ी अगर गलतियां होती हैं, भूल नहीं है, कोई गलती हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि चलो गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, ये भी कह देते हैं। फिर कभी कभार इसके बाद जो आप अभी बात कर रहे हैं कि हम इस उम्मीद में है कि वो हमसे माफी मांगे, तब माफी दी जाएगी। और ये अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जब गलतियां करते हैं तो छोटे बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जितने छोटे होंगे बच्चे, उतना उनकी गलतियों को और ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब बच्चे गिर भी जाते हैं या कहीं उनको भी चोट लगती है तो उनको ये बताया जाता है, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालांकि उस बच्चे की गलती की वजह से कोई चीज टूटी हो सकती है या उसे चोट लगी हो सकती है। तो ये चीजें करते हैं, हम सबको माफ करना सिखाया गया, हम सीखते आए हैं, मगर जैसे जैसे हम बढ़ती उम्र के साथ ये एक उम्मीद लगाने बैठ जाते हैं कि हम अपने लोगों से, जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारे अपने स्वजन हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवार के नजदीकी लोग हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि तुमसे तो ये गलती अपेक्षित नहीं थी, तो इसलिए हम उन्हें उस कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनको उस गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, रियलाइज कराना चाहते हैं कि देखो भाई तुमसे गलती हुई है। और जब वो माफी मांगे तब हम माफी देना चाहते हैं, तब तक हम उस चीज को पाल के रखते हैं और वो भी एक बोझ की तरह बन जाता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले ये कल्टिवेट करना, ये एक अभ्यास डाल लेना चाहिए कि कोई माफी मांगे या ना मांगे, मैं माफ करने के लिए इंतजार नहीं करता। अगर मुझे समझ में आया है कि गलती हुई है तो उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट में हम लोग इस चीज को समझते हैं कि एक बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये, डू नॉट आस्क हु मेड द मिस्टेक, आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग। ये मत पूछो कि ये गलती किसने की, ये पूछो कि क्या गलती हुई है, ताकि उसे सुधारा जा सके। अगर हम ये पकड़ के बैठ जाएं कि इसने गलती की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए या इसे माफी मांगने की जरूरत है, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसमें बहुत वक्त जाया हो जाता है। और इसीलिए ये बात शायरों ने बहुत खूबसूरती से कही है। मुजफ्फर रजमी का ये शेर बहुत ही मशहूर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और अक्सर यही चीज होती है कि वो लम्हे होते हैं जहां पर गलतियां होती हैं, वो खता एक लम्हे भर की होती है, कोई चूक हो जाती, कोई भूल हो जाती है, ना चाहते हुए भी, कभी कभार चाह के और बहुत बार ना चाहते हुए भी वो गलतियां हो जाती हैं। अगर आप उस घड़ी उसको माफ नहीं करते, तुरंत तुरंत माफ नहीं करते, तो फिर वो जो लम्हों की खता है उसकी सजा सदियां पाती हैं, और लंबे समय तक वो फॉरगिव न करने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सफर करते हुए आए हैं, उनको मुश्किलों का सामना करते आना पड़ा है, किसी और की गलती के लिए आज की पीढ़ियां तक उसकी भरपाई कर रही होती हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि जैसे गलती हुई तब माफ करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले को माफ करने की जरूरत है, इसलिए ताकि मेरे ऊपर वो बोझ ना हो, इसलिए पे करना आवश्यक है।
1: कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे माफ करना जरूरी है, हम समझ गए कोई हमसे माफी मांगे या ना मांगे, और वो सिर्फ उनके लिए नहीं अपने लिए जरूरी है, मगर अब करूं कैसे, क्योंकि मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हुआ है, किसी ने गलती करी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये वो करेंगे, उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो ऐसा कर सकते हैं, बहुत विश्वास किया था, अब वो विश्वास भी डोल रहा है और बहुत सारी यादें भी है पुरानी की, लग रहा है अरे ऐसा बोला, वो भी बार बार चल रहा है मन में, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो माफ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, तो क्या
2: जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ, जब भी मेरी लाइफ में कुछ होता है तो मैं खुद के पास लौट आती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जब कोई व्यक्ति खता करता है, गलती करता है और माफी भी नहीं मांगता, तब ऐसे लगता है कि शायद इनको रियलाइज नहीं हुआ है, या इनका मुख सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं है, या इनका माइंड वो सॉरी शब्द कह नहीं पाता है। इसमें कई सारी भी चीजें बैकग्राउंड में काम करती है। ईगो रहता है, बॉडी कॉन्शियस है, मतलब अपने बारे में वो आदत ही नहीं है माफी मांगने की। पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में ऐसा कई बार होता है। तब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना शुरू कर देती हूँ, मतलब उनसे नहीं जिनसे गलती हुई है, परंतु मैंने ये देखा है कि जब आप सॉरी कहना शुरू कर देते हैं किसी छोटी सी गलती के लिए, उस व्यक्ति के सामने जो सॉरी कहने के लिए जिनको दिक्कत हो रही है, तो उस व्यक्ति को एक लेसन अपने आप मिल जाता है कि देखो छोटी सी बात के लिए इन्होंने सॉरी किया। जैसे कल की बात है, किसी को मैंने टाइम दिया था और मैं थोड़ा 5 मिनट लेट पहुंची, तो आते ही मैंने कहा कि सॉरी मुझे 5 मिनट देर हुआ, ये कारण था। उनको रियलाइज हुआ कि वो कई बार लेट आए थे और मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा था। अब उनसे एक्सपेक्ट तो इतना तो किया जा सकता है कि वो एटलीस्ट कारण बताएं या फिर लेट आने पर सॉरी कहें, तो वो कह नहीं पाए थे क्योंकि उनको वो गलती या वो कुछ गलत है ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। तो जब मैंने अपनी ये छोटी सी भूल नहीं कहेंगे, गलती नहीं कहेंगे, लेकिन एक लेट आने की बात को सॉरी कहा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि अरे उनको तो कितनी बार कहना चाहिए था। देन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं कई बार लेट आया, लेकिन आपने बहुत पेशेंटली उस चीज को हैंडल किया। ये एक छोटी सी बात है। हम कुछ करके सिखाते हैं तो वो सामने वाले को ईजी लगता है कि अगर वो सॉरी कह सकते तो हम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से सॉरी कहने के लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए।
3: थी आपने जैसे अपनी बात करी, आपने कि मैं कैसे करती हूँ, या एक ये तरीका आपने डेवलप किया जो हम लव यू जिंदगी, जो हमारा टाइटल है प्रोग्राम का, अगर हम जिंदगी से थोड़ा सा प्यार और बढ़ाना चाहें, और उसमें जरूरी है कि बोझ को कम किया जाए, वरना बोझ के साथ प्यार करना जरा मुश्किल होता है, तो हम क्या तरीका डेवलप करें और आज क्या शुरुआत करें, या कोई ऐसी चीजें हैं जो नो लिख के रख ले अपने पास या याद कर ले कि हाँ कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अब कहाँ जाना है मुझे, क्या करना है मुझे।
2: बिल्कुल। हम अपने आप को सिखा सकते हैं, माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत है। अगर मैं किसी को माफ कर पाता हूँ और कह पाता हूँ कि मैंने गलती की और मुझे माफ कीजिए, तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण मेरे दिल पर जो बोझ हमेशा के लिए बना रहेगा, अगर कोई व्यक्ति रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक को, तो उसको बोझ महसूस होगा। एंड एक छोटे से सॉरी कहने से, तो आज से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी मिलकर कि ऐसा नहीं कि हर बार सॉरी सॉरी ही कहे, कुछ और तरीके भी होते हैं सॉरी कहने के, या सामने वाले को बताने के कि मैंने फील किया, मैंने रियलाइज किया। कई बार लोग बार बार सॉरी सॉरी सॉरी कहते हैं, तो वो भी कई बार अच्छा नहीं लगता है। तो क्या तरीका हो सकता है कि हम सामने वाले को ये रियलाइज भी करवाए कि हमने सॉरी फील किया है, तो जाकर उनसे बात करना, नॉर्मल वे में बात करना, उनके साथ मुस्कुराना, उनके किसी काम में उनको मदद करना, उनका रिस्पेक्ट रखना। सॉरी कहने के अलावा भी हम उनके पास जाकर उनके दिल की बात सुनने का प्रयास कर सकते हैं, और हल्के से कभी कह सकते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता चला, रियलाइज हुआ। तो एक नहीं कई अनेक तरीके हैं कि हम अपने महसूस कराएं सामने वाले को कि हमने सॉरी फील किया है।
3: ओके, जेन्युइनली फील करें और फिर वो महसूस करवाएं। ओके, ग्रेट। श्री जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अगर माफ करना हो किसी को, मान लीजिए कैसे, क्या थॉट्स में क्रिएट करूं या क्या मैं सोचूं जो मैं माफ कर पाऊं?
0: जब माफी की बात कही जाती है तो ये समझना जरूरी है कि माफ करने के तरीके, जैसे कल्पना जी कह रहे थे, बहुत सारे हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं और मुझे, जैसे कल्पना जी कह रही थी, मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आए जो घड़ी घड़ी सॉरी बोलते हुए सुनाई देते हैं कि हर चीज के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, और कभी कभार उनका सॉरी कहने का अंदाज इतना कैजुअल हो जाता है कि उनकी सॉरी का कोई मतलब नहीं हो। सॉरी लग गया तो क्या हुआ, वो मतलब बिल्कुल है, हमने सॉरी तो कह दिया, ऐसा वो बात होता है। वो चीज एक हार्टफेल्ट चीज नहीं लगती, एक अपोलोजेटिक एटीट्यूड नहीं है उसमें, वो चीज समझ में आता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर माफी देने या माफी मांगने के तरीके में जो दिल की गहराई है वो बहुत जरूरी है, ये समझ में आता है कि जब तक मैं उस चीज को महसूस करते हुए नहीं कह रहा हूँ तो शायद सामने वाले तक वो चीज टच भी नहीं होती, वो उनके दिल तक भी जाती नहीं है। इसलिए माफी, आजकल हम ये कहते हैं कि हम देखते हैं हवाई जहाज में, अगर आप यात्रा करते होंगे तो वहां पर गगन सखियां होते हैं या फ्लाइट का क्रू होता है, और वो लोग आप अंदर जाते ही आपको मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं। कई सारे होटल्स पे भी लोग स्माइल करते हुए आपको वेलकम करते हैं रिसेप्शन पर, और आपको लगता है कि आह कितना अच्छा लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतने सारे लोग, 200 पैसेंजर अंदर चढ़े हवाई जहाज में और 200 के लिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कि मुस्कुराहट एक्चुअल मुस्कुराहट नहीं है, ये प्लास्टिक स्माइल है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा जा रहा है, उनको प्रोफेशन में जरूरी है करने के लिए इसलिए वो कर रहे हैं, मगर अंदर से वो चीज नहीं आ रही है, वो एक रूखा स्माइल होता है। तो ऐसे ही सॉरी कहने के लिए भी, ओ सॉरी ये कर देना सही नहीं है, एक्चुअल में जब वो चीज अंदर से महसूस करते हुए सॉरी मेरे से गलती हुई है, अगर वो विचार मन के अंदर आते हैं तब जो शब्द मुंह से निकलते हैं तब वो भावनाएं सामने तक पहुंचती है और सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि हाँ इनको इस बात का एहसास है कि उनसे कोई गलती हुई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मन में वो अपोलॉजी उत्पन्न होना पहले आवश्यक है, इससे पहले कि मैं शब्दों में सॉरी कहने को एक आदत मात्र बना लूं, मन के अंदर से वो चीज निकलना बहुत आवश्यक है। और एज ए कल्चर अगर आप देखेंगे तो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत में हमारे पास क्षमा प्रार्थनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति रात को सोने से पहले एक कल्चर रहा है कि लोग सोने से पहले क्षमा मांगते हैं, ये कहते हैं कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे महादेव शंभु। ये प्रार्थना है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर जाने अनजाने में मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, सोचकर या न सोचकर या जाने अनजाने की भी गलतियां हुई हो तो उन सभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब उस घड़ी गलती हुई और उसी घड़ी मुझे रियलाइजेशन हो जाए और मैं माफी मांगू, कभी कभार उस घड़ी रियलाइजेशन नहीं होता, देर से होता है, पर तब तक वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, वो आगे चला गया है, तो उस समय पर भी माफी मांगना, उस व्यक्ति के इन एब्सेंशिया आप माफी मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब भी आपके मन के अंदर वो क्षमा प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप मन से उस व्यक्ति के प्रति ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई भगवान, उनको मैंने जाने अनजाने तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो ये जो मन से उठने वाली बात है वो बहुत आवश्यक है, शब्दों में सिर्फ कह देने से शायद वो काम नहीं होगी। और माफी मांगने के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, एक पुराना जमाना तो नहीं कहूंगा मगर लोग बहुत थॉटफुली अपोलॉजी के लेटर्स लिखा करते थे, लोग सॉरी के कार्ड्स भेजते थे कि जब उनसे गलतियां होती थी तो सॉरी के लिए भी ग्रीटिंग कार्ड होता था। आप सोचिए सॉरी का ग्रीटिंग कार्ड आज लोग हैरान होंगे ये सोच। और ये जो शेर और शायरियां मैंने कुछ एक के सामने प्रस्तुत किया, ऐसी कितनी चीजें हैं जो कवियों ने लिखी हैं और उनकी जुबान से हम अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत करते हैं।
3: और सच में माफी मांगना जब दिल से होता है तो वो बात पहुंचती भी है, वो कैजुअली सॉरी बोल दिया और फिर हमने सोचा अरे हो गया सॉरी। अब बहुत सारी और भी बातें हैं, दूसरों को माफ करने के बारे में तो हमने बात करी है, खुद को माफ करने के बारे में भी बात करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। अभी फिलहाल जैसा आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया, दूसरों को माफ करना और माफी मांगना दोनों का तरीका, क्या हम कुछ 2 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं जो अभी तक हमारे जीवन में न जाने कितने किस्से हुए होंगे, हमारे अंतर मन में, हमारे सबकॉन्शियस में फिट होंगे, वो हमें आज भी कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो गलती याद आती है, वो व्यक्ति से मिलने से पहले ही कई बार उससे मिलना होता है तब भी याद आता है वो पहले वाला इंसिडेंट, उसको लेट गो कर सके, अपनी स्लेट को क्लीन कर सके, क्या कुछ ऐसा मेडिटेशन हम कर सकते हैं कि वो भार को, जो बोझ लिए हम चल रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर सके आज?
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है उस भार को उतारना, खत्म करना। कुछ मिनटों के लिए हम थोड़ा सा अपने भीतर की ओर चले जाएं, बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को बटोर कर अपने भीतर की दुनिया में। एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल शांति है, सुकून का एहसास है। उस जगह पर जाएं और कुछ बातों को अपने आप को याद दिलाएं। क्षमा और छोड़ना, क्षमा करना और भूल जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, ये मेरी ताकत है। रिपीट करें इस बात को अपने मन में और उस शक्ति को महसूस करें। याद दिलाएं अपने आप को, मैं अपने दिल से सारी कड़वाहट को रिहा कर रही हूं, आजाद कर रही हूं। मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं अपने जीवन में सुकून और शांति की अधिकारी हूं। दोहराए अपने मन में, मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं सुकून और शांति की अधिकारी हूं। गहरी लंबी सांस लेते हुए महसूस करें अपने भीतर के भावों को, दिल में जो सुकून का एहसास हो रहा है क्योंकि मैंने बोझ को रिहा कर दिया, मैं आजाद हूं। याद दिलाएं अपने आप को, मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूं और उससे मुक्त हो रही। अतीत में मेरे से या किसी और से कोई खता हुई, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ती हूं, खुद को आजाद करते हुए। और लास्ट, मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है। मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है। धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत ही सुंदर, बहुत पीसफुल महसूसता हुई ये करते वक्त। और मुझे लगता है ये हम रोज करेंगे तो हमारे जो बोझ है, जो हम दूसरों को माफ नहीं कर पाए हैं, खुद को माफ नहीं कर पाए हैं, उसमें जरूर बहुत बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि ये तो हम समझ गए हैं कि माफ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है, दूसरों को माफ कर देना, तभी हम जिंदगी बेहतर जी पाएंगे। तो चलिए इस प्रयास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये इजाजत लेना नहीं है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव नोट पर आपको छोड़ कर जा रहे हैं ताकि आपकी आपकी जिंदगी से और बेहतर मुलाकात हो पाए और प्यार थोड़ा बढ़ जाए और आप दिल से कह पाए लव यू जिंदगी। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और थोड़ा सा और जिंदगी से प्यार करना सिखाने के लिए।
2: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू
3: दोस्तों, लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी लव जिंदगी के अगले एपिसोड में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: रेडियो मधुबन 107।

0: उसने भारत को मान दिया, जननी माँ को अभिमान दिया, राजे राजवारों से मिलकर पूरे भारत को बनाया अनुपम, जिसने खंडित भारत भूमि का नक्शा नया सवारा था। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सच्चा सरदार हमारा था, सच्चा सरदार हमारा था। दोस्तों, इतिहास किताबों में तारीखें लिखता है, लेकिन राष्ट्र उन्हें याद रखता है जो दृढ़ इरादों को अपना ढाल बना लेते हैं। आज हम उस व्यक्ति की कथा सुनेंगे जिन्होंने बोला कम, अडिग रहे, झुके नहीं और ना ही देश को झुकने दिया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला बच्चा बना देश का सरदार और किया मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के सपने को साकार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो चलिए सुनते हैं आज गीत बन्नो को कहां लेकर गई है। अरे, ये तो कोई गांव लग रहा है। यहाँ कई किसान इकट्ठा हैं और किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे युवा वल्लभ भाई पटेल भी उनके बीच उपस्थित हैं। लगता है जैसे वकालत कर अभी अभी वापस आए हों। चलिए सुनते हैं गीत और बन्नो वहाँ खड़े होकर क्या बात कर रही हैं।
1: गीत, सब लोग गांधी जी की बात करते हैं, पर ये सरदार पटेल कौन थे? आप मुझे यहाँ लेकर तो आई हो सरदार जी की कहानी सुनाने और दिखाने, मगर वो थे कौन? क्यों उन्हें सरदार कहा जाता था? वो तो पगड़ी भी नहीं पहनते थे।
2: बन्नो, अगर गांधी जी भारत की आत्मा थे तो सरदार जी थे लौह पुरुष।
1: गीत, क्या सरदार जी बचपन से ही इतने सख्त थे? देखो ना, कितने खामोश से दिख रहे हैं, चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं।
2: नहीं बन्नो, वो सख्त नहीं थे, वो मजबूत थे, अपनी बात कहने का साहस रखते थे। बचपन से ही ये गुण उनमें कूट कूट कर भरा था। जैसे जैसे बड़े हुए, वो एक स्वाभिमानी और निडर नेता के रूप में पहचाने जाने लगे।
0: नाडियाद की धरती पर एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे वल्लभ भाई। पिता किसान और माँ गृहिणी थी। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर उभरेंगे, जो अपने नेतृत्व कौशल से न सिर्फ संगठन को मजबूत करेंगे बल्कि देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले वल्लभ भाई पटेल ने एक कामयाब वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी वकालत अच्छी चल रही थी जब वो गांधी जी के संपर्क में आए। तत्पश्चात बापू के चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने पटेल के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी।
1: गीत, ये बताइए, खेड़ा जिले के इस गांव में किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है और पटेल जी यहाँ क्या कर रहे हैं?
2: थोड़ा धीरज धरो, बताती हूँ। ये साल 1918 की बात है। पटेल खेड़ा जिले में प्लेग बीमारी और अकाल को लेकर राहत कार्य चला रहे थे। तभी खबर मिलती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों की कर छूट की याचिका को ठुकरा दिया है। गांधी जी चंपारण में व्यस्त थे तो उन्होंने वल्लभ भाई को खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा। पटेल ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।
3: अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ चुप रहना किसी अपराध से कम नहीं है। कानून का काम है सही गलत का फैसला करना, पर देश के लिए भी हमारा कुछ फर्ज है। हमें अपनी एकता कायम रखनी है और अहिंसक तरीके से अपनी मांग रखनी है।
0: वल्लभ भाई के इस उद्बोधन के बाद खेड़ा जिले के गांव में जमा किसानों की भीड़ में कुछ सुबुगाहट शुरू हो गई। किसान उलझन में थे कि क्या करें जिससे उनकी समस्या का निदान हो।
4: वल्लभ भाई तमे सही कह रहे हो, लेकिन अंग्रेज जो लगान बढ़ा रहे हैं उसे कितना उचित कहेंगे आप? खेती आपड़ी, फसल आपड़ी और फायदा वो ले जाए।
0: तब पटेल उत्तर देते हैं,
3: डरे नहीं, अहिंसा की शक्ति पर विश्वास रखे। एकजुट रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
2: बन्नो, यही वो पल था जब वल्लभ भाई पटेल केवल एक वकील नहीं रहे बल्कि किसानों की आवाज बन गए।
0: गीत और बन्नो की बातें चल ही रही थी, तभी अचानक दूर से अंग्रेजों के दो सिपाही भीड़ की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए। वो एक एक कर आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लेते जा रहे थे, लेकिन पटेल को हाथ नहीं लगा सके, उन्हें चेतावनी ही दे पाए। आगे सुनेंगे कि कैसे यही वल्लभ भाई पटेल बने किसानों के सरदार और राष्ट्र की रीढ़। ये था सरदार, मिट्टी से बना लौह संकल्प, भारत माता के लिए उनका प्रेम।
5: मिस्टर पटेल, ओबे द क्राउन, ये हुकूमत है।
3: हुकूमत डर से चलती है और देश विश्वास से। हम डरने वाले नहीं।
0: खेड़ा आंदोलन के बीच जब पटेल गांधी जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो वो अपने चरखे पर काम कर रहे थे। उन्होंने पटेल जी से पूरी घटना सुनी, फिर बड़े ही धैर्य से बोले,
6: वल्लभ भाई, देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है जो सत्य की मशाल को थामे रहें, चाहे आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो। वल्लभ भाई, सत्य और अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि इससे साहस बढ़ता है।
3: बापू, मैं लड़ना जानता हूं, पर देश के लिए खुद को पीछे रखना भी सीख लूंगा। अगर यही साहस देश को आजाद कर सकता है तो मैं कांग्रेस के साथ हूं बापू।
6: वल्लभ भाई, खेड़ा के किसान टूट चुके हैं, अकाल है, फसल नहीं और फिर भी लगान की मांग।
3: बापू, अगर किसान झुकते हैं तो अन्याय जीत जाएगा और अगर हम साथ खड़े रहे तो इतिहास बदलेगा।
0: वल्लभ भाई की बातें सुनकर बन्नो ने गीत से पूछा,
1: दीदी, ये वही खेड़ा सत्याग्रह है?
2: हाँ बन्नो, खेड़ा सत्याग्रह केवल आंदोलन नहीं था, ये पहली बार था जब किसानों ने डर के सामने सिर नहीं झुकाया।
0: गांधी जी से भेंट करने के बाद पटेल पहुंचे किसानों के पास ताकि उनकी मनस्थिति को समझ सके, उनके मन से अंग्रेजों का डर मिटा सके।
7: वल्लभ भाई, घर में अनाज नहीं है, अने सरकार लगान मांग रही है।
3: लगान हम नहीं देंगे, जेले भर जाएंगी पर आत्मसम्मान नहीं टूटेगा।
8: नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
0: वल्लभ भाई झुके नहीं, ना लालच से ना लाठी से। उन्होंने खेड़ा में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और एक वर्ष के लिए कर वसूली को निलंबित कर दिया गया। यह वल्लभ भाई की पहली जीत थी। इस घटना के बाद वो ना सिर्फ गांधी जी के और समीप आए बल्कि उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली। वो एक नायक बनकर उभरे। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का विचार समाहित था और रणनीति थी पटेल की। यही कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार पीछे हटना पड़ा।
1: दीदी, तभी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को इतना मानते थे?
2: हाँ बन्नो, गांधी जी कहते थे, जहां मुझे कठोर निर्णय लेना होता है वहां मैं वल्लभ भाई को देखता हूँ।
0: वल्लभ भाई पटेल वैसे तो साल 1917 से किसानों से जुड़े मसले सुलझाने के लिए प्रयासरत थे। खेड़ा सत्याग्रह के पश्चात वो बापू द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और यहीं से वो स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग बन गए। ऐसे रमे कि सर्वस्व त्याग, खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। असहयोग आंदोलन को भावनात्मक अपील गांधी जी ने की, पर उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरदार जी ने संभाली। इस आंदोलन के दौरान लोग सरकारी स्थानों, चीजों और नौकरियों का भी त्याग कर रहे थे, मगर कुछ लोग इतने बड़े फैसले को लेने से घबरा रहे थे।
9: सरदार, सरकारी स्कूल छोड़ने को लोग तैयार है, पर डरते हैं, रोजगार का होगा क्या?
10: डर स्वाभाविक है, इसीलिए असहयोग अराजकता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विद्यालय बनेंगे, स्वदेशी उद्योग खड़े होंगे, आज की कुर्बानी आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेगी।
2: बन्नो, सरदार का नेतृत्व भाषणों में नहीं, योजना में बोलता था।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: आगे सुनो।
0: आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के सचिव सरदार पटेल के पास एक समस्या लेकर आते हैं।
7: सरदार, हजारों लोग गिरफ्तारी को तैयार हैं, लेकिन सूची, व्यवस्था, जिम्मेदारी?
10: हर गिरफ्तारी दर्ज होगी, परिवारों की मदद होगी। आंदोलन भावुक हो सकता है, पर अराजक नहीं।
0: असहयोग आंदोलन में जहां एक ओर त्याग था, वहीं दूसरी ओर सरदार पटेल की लोहे जैसी व्यवस्था थी। यही कारण था कि जब आंदोलन रुका तो वो टूटा नहीं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हाथों में थी।
1: दीदी, तो सरदार जी सिर्फ लड़ते नहीं थे, सबको संभालते भी थे।
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास को संभालते हैं। सरदार वही करते थे।
0: इसके बाद पूरे आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल लोगों की हिम्मत बने, उनके अंदर जोश भरते रहे।
10: अगर जेल जाना पड़े तो याद रखना, हर कैद आजादी की नींव है।
1: दीदी, क्या आजादी ऐसे ही आएगी?
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग अपने सुख को कुर्बान करके देश का भविष्य बनाते हैं।
0: असहयोग आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 3 महीने की सजा हुई और साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल की उन दीवारों के भीतर वल्लभ भाई पटेल केवल कैदी नहीं थे, वो सोच रहे थे कि आंदोलन के बाद देश को किस तरह संभालना होगा।
1: दीदी, अगर सब जेल में होंगे तो देश कैसे चलेगा?
2: यही तो सरदार जी की सोच थी बन्नो। देश केवल जोश से नहीं चलता, व्यवस्था से चलता है।
0: कैद के उन दिनों में सरदार का मन भविष्य की योजनाएं गढ़ रहा था। अनुशासन, नियम, जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होगी, इनको लेकर ही सारे विचार चल रहे थे। वो जानते थे कि आज अगर संगठन टूटा तो कल

0: वेलकम।
1: समय बीता और देखते देखते साल 1928 के 4 फरवरी का दिन आया। वल्लभ भाई पटेल को एक नई जिम्मेदारी मिली। उन्हें बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करना था, जो बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध संघर्षरत थे। सर्वप्रथम सरकार को पत्र लिखा गया, लेकिन कुछ सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर पटेल ने किसानों को संगठित किया तथा उन्हें लगान न अदा करने के लिए कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। बारदोली सत्याग्रह नाम से एक दैनिक पत्रिका निकाली गई। बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया। ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने बंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। उधर पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए वैकल्पिक नेतृत्व के लिए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। किसानों का आंदोलन चल रहा था और वो कड़ी धूप में अपनी मांग पर डटे हुए थे।
2: हमें भूखे मरी रहा है सरदार, अने ये जालिम कहते हैं लगान दो के पची जमीन छोड़ दो।
3: जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे पूर्वजों की है, कोई अंग्रेज तुम्हें तुम्हारे घर से बेदखल नहीं कर सकता। यह हमारा अंतिम संघर्ष है, हम लगान नहीं देंगे, एक पैसा नहीं।
4: डिसोबीडियंस, सेडिशियस बिहेवियर, तुम सबको जेल भेजा जाएगा।
3: जेल हमारी आजादी की पहली सीढ़ी होगी, डरना मत। जब किसान खड़ा होता है तो कोई हुकूमत उसे झुका नहीं सकती।
5: वंदे मातरम, वंदे मातरम, सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद।
1: बारदोली आंदोलन की एक और विशेषता रही कि इसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली के लोग पटेल के नेतृत्व से बेहद प्रभावित हुए। इसी सत्याग्रह के दौरान पटेल को वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध घोषित किया गया। सरकार को लगान घटाना पड़ा। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन सफल रहा। गांधी जी ने सफलता पर कहा, बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है।
5: सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार,
6: वंदे मातरम,
5: वंदे
6: मातरम,
5: वंदे
6: मातरम।
1: साल 1931 में जब गांधी जी डांडी मार्च पर निकले तो सरदार पटेल को राजगांव में गिरफ्तार कर लिया गया। वो महीनों जेल में रहे, पर उनके साहस के किस्से हर गली हर गांव में गूंजते रहे। वो आंदोलन के सेनापति थे और राष्ट्र के शिल्पकार भी। उनकी और बापू की गिरफ्तारी के बाद देश में नमक सत्याग्रह और तेज हो गया। जब दोनों रिहा हुए तो देश एक नई दहलीज पर खड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन अब केवल भावनाओं से नहीं, व्यवस्थित होकर अनुशासन से आगे बढ़ना चाहता था। इसी मोड़ पर कराची के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। अधिवेशन से ही गांधी इरविन समझौते का ऐलान किया गया। न्यूनतम मजदूरी, अस्पृश्यता एवं दास प्रथा के उन्मूलन के साथ एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की वकालत की गई। सरदार का अनुशासन और नेतृत्व क्षमता ऐसी थी कि कांग्रेस हर मुश्किल दौर से निकलती गई। बारदोली सत्याग्रह से लेकर आजादी के बाद राज्यों के एकीकरण तक उन्होंने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। उनकी सूझबूझ और संगठनात्मक क्षमता ने ही स्वतंत्रता संग्राम को एक ठोस दिशा दी।

0: कोई भी समस्या हो पार्टी के कार्यकर्ता उनके ही पास जाते थे।
1: सरदार साहब, संगठन बिखरा हुआ है, कार्यकर्ता जोश में हैं, पर दिशा साफ नहीं।
2: तो पार्टी को जोड़ेंगे, चुनाव, चंदा, अनुशासन भी लाएंगे। कांग्रेस केवल आंदोलन नहीं, एक मजबूत संस्था बनेगी। कांग्रेस को अब नारे नहीं, संगठित ढांचे की आवश्यकता है।
0: यह सुनकर एक दूसरे कार्यकर्ता ने कहा,
3: लेकिन सरदार, इतने बड़े जन आंदोलन को काबू में कैसे लाएंगे?
4: वंदे मातरम,
5: वंदे मातरम।
0: सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना कांग्रेस में केवल पद परिवर्तन नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। पटेल ने पार्टी को एक कुशल राजनीतिक मशीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांतों को कांग्रेस की मुख्य नीति बनाया, यूं कहें कि पार्टी को सत्ता के लिए तैयार किया।
6: दीदी, लोग उन्हें आयरन मैन क्यों कहने लगे?
7: क्योंकि बन्नो, वो भावनाओं में नहीं बहते थे, परिस्थितियों को संभालते थे। उनका दिल नरम था पर निर्णय लोहे जैसे।
0: एक ओर वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस संगठन और किसानों को उनका अधिकार दिलाने में जुटे हुए थे, तभी लंदन में हुआ गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। ये साल 1932 का समय था। देश में दोबारा से संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी एवं पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को यरवदा जेल में डाला गया। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी थे, उनकी परछाई नहीं। यानी दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद था, लेकिन जेल में दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों के बीच स्नेह एवं विश्वास का एक नया संबंध कायम हुआ। खेड़ा हो, बारदोली, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, सब में एक बात समान रही, वो था सरदार पटेल का अनुशासन। उन्होंने नारा जितना ऊंचा दिया, जिम्मेदारी उतनी ही गहराई से निभाई। जब कोई आंदोलन जनजीवन को हर क्षण उद्वेलित करने लगे तो उसे नेतृत्व नहीं, विश्वास चाहिए होता है। गांधी जी के उस विश्वास का नाम था वल्लभ भाई पटेल। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा था,
8: एक देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते।
7: बन्नो, बापू के इन शब्दों ने भारत की जनता पर जादू सा असर डाला। वे नए जोश, साहस, संकल्प, नई आस्था, निश्चय एवं विश्वास के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े।
6: अच्छा दीदी,
0: भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी के समय सरदार पटेल ने भी अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओजस्वी भाषण दिया था।
9: ब्रिटिश हुकूमत अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बंदी बना ले तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को खुद को कार्यकर्ता समझना होगा, उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, प्राण की बाजी लगाकर देश की आजादी के लिए संघर्ष करना होगा, तभी स्वाधीनता स्वयं हमारा दरवाजा खटखटाने लगेगी।
0: भारत छोड़ो आंदोलन मूल रूप से एक जन आंदोलन था, जिसमें देश के हर जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई, अपने कॉलेज छोड़ दिए, जेल का रास्ता अपनाने लगे। सरदार पटेल ने अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर देश भर की यात्रा की और आंदोलन के प्रति नागरिकों में नया जोश भरा। आगे के भाग में हम सुनेंगे कि कैसे सरदार ने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक बना दिया और कहलाए लौह पुरुष। आप सुन रहे थे एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते कहानी और दिलचस्प मोड पर आने वाली है।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। और इसके तहत आज हम थोड़ा हट के पर्यावरण संबंधित एपिसोड चलाएंगे, क्योंकि हर संडे को पर्यावरण का संबंधित पर्यावरणविद हमारा गोपाल राम पुरेत जी, जो कि कुवली निवासी, हमें सहयोग देते हैं। और पर्यावरण में उनका जो बुद्धिमत्ता, जो व्यक्तित्व और जो अनुभव हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो रेडियो मधुबन एक मंच जो हर कम्युनिटी को देते हैं, तो उस कम्युनिटी उभर करके आए हैं और एक शिक्षा जगत में बिलोंग करते थे, जो कि आबरोड ब्लॉक में CBO साहब के हिसाब से दे रहे थे रिटायरमेंट होने के पश्चात। अभी भी रिटायर नहीं है, अपना सहयोग देते हैं। गवर्नमेंट ने अभी गर्ल सेवा में लगे हुए, गवर्नमेंट सर्विस से प्रमोशन होकर गर्ल सर्विस में अपना निस्वार्थ स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई जबरदस्त नहीं, वो अपना हिसाब से कर रहे हैं। जब भी समय मिलता हर संडे को उनका एपिसोड चलता है, हमें खुशी है। ऐसे गाँव और अंचल से कोई रेडियो सुन के बा रेडियो का कार्यक्रम को देखकर बा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध संपर्क में आकर अपने को खुद आ रही है, हमें बहुत खुशी है। इससे पता चलता हमारा कार्यक्रम बा हमारा कार्य को सराहनीय करते हैं। तो आज इस एपिसोड को उनके लिए डेडिकेट करते हैं, उनका गांववासियों के लिए, खासकर कीवली के लिए। और जहां पर हम आज कीवली में पहुंचे, जो कि सुशांत बाटी का, जहां पर हम बैठकर आज बात कर रहे हैं और इसका तो प्रोग्राम आप शाम को सुनते हैं हमेशा, तो आज भी इस कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग के लिए हम पहुंचे सुशांत बाटिका में कीवली के। आज तरह हट के पर्यावरण, हर सीजन में प्रकृति हमको कैसे बचाना है, जैसे समर होता है और विंटर होता है, कोल्ड होता है, सब सीजन में कैसे हम प्रकृति का साथ रखकर उनको, हमारे प्रकृति में जो जो पशु पंछी उनको भी देखभाल करना जरूरी होता है। जैसे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, कम से कम तीन सीजन में, क्योंकि हम तो सेफ रहते, लेकिन हमारा इर्द गिर्द जो भी पशु पक्षी उसको भी,
1: विचार बहुत ही उत्तम है। ऋतुचर्या के अनुसार क्लाइमेट किस तरह से प्रभाव डालता है, इस पर
0: आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बढ़ बढ़ कर कैसे क्या लेंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं था, अचानक आए तो उनको बुलाए,
1: ईश्वरीय प्रेरणा से आपने बुलाया और मुझे पहुंचना
0: भाई, आए तो आपका गाँव, ये हमारा फर्ज है, तो इसलिए आए। तो आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। और खासकर हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड मैंने बोला, ऋतु का हिसाब से हमारा पर्यावरण कैसे होना चाहिए और हमें उससे क्या बचत संरक्षण करने के लिए हमारा अंगुली कैसे होना चाहिए, ये टॉपिक रहेगा। तो आपको स्वागत है रेडियो मधुबन परिवार की ओर से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से और खासकर हमारा श्रोता मित्र की ओर से।
1: क्या बात है, नमस्कार आपको। प्रथम तो आप जिस तरह से यहाँ पहुंचे और आपने मुझे यहाँ आकर के सुशांत वारिका के अंदर इस शांत वातावरण में आप यहाँ पहुंचे और मुझे फोन करके बुलाया, वास्तव में आपका जो डेडिकेशन है इसको देख करके मैं आपको तहे दिल से जी प्रणाम करता हूँ कि आप प्रकृति के लिए अपना जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो रेडियो मधुबन है वो किस तरह से आउटरीच प्रोग्राम तक जा करके, ग्रामवासियों तक जा करके किस किस तरह से आप उनको प्रकृति संरक्षण के प्रति, एडिक्शन के प्रति आप जिस जिस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं, वास्तव में मैं उसकी तारीफ करते नहीं थकता। और इस तरह का काम करना जो ईश्वरीय कार्य है, आपने मुझे भी प्रेरित किया है, उनको बहुत बहुत खुशी होती है। और आज जैसे ही आपने मुझे याद किया, मैं जैसे खड़ा था वैसे ही भाग करके चला है। सर, इतना बड़ा मौका ये मुझे आप दे रहे हैं रेडियो मधुबन के माध्यम से, मैं आपकी पूरे दल का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस संस्थान का जो किस तरह से मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है, वास्तव में हम लोग प्रकृति के प्रति अगर खुद अगर प्रेरित नहीं हुए, अगर खुद ने करने की कोशिश नहीं की, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से महंगाई की मार सारा विश्व आज की तारीख में झेल रहा है।
0: जी जी।
1: देखिए, प्रकृति ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। प्रकृति ने, जो इंसान सिर्फ हाय पैसा कर रहा है, पैसा इकट्ठा करने के लिए जिस तरह का स्वार्थ भरा जो नजरिया उसका है प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के लिए,
0: जी जी,
1: जैसा स्वार्थ उसने लगा रखा है, तो प्रकृति ने इसको कंट्रोल करना भी अपने तरीके से शुरू कर दिया।
0: जी।
1: जो देश अपनी जो परमाणु शक्ति को जैसे उपयोग करके, परमाणु शक्ति के सर दो उपयोग है, एक तो उपयोग है उसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। इसकी जो खोज की थी वो तो
2: कंस्ट्रक्टिव उपयोग के लिए ही की थी, लेकिन व्यक्ति अगर उसका डिस्ट्रक्टिव उपयोग करे तो वो तो पूरे समाज के लिए, पूरी सभ्यता के लिए, और पहले भी सर सभ्यताओं का जो उन्नति हुई है वो उसके पॉजिटिव दृष्टिकोण से हुई है
3: जी जी।
2: और जो उनका जो अवसान हुआ है या उनका जो पतन हुआ है वो हुआ है कि जब व्यक्ति अति कर गया तब प्रकृति ने उनको रोक दिया। प्रकृति सर अपने आप कंट्रोल करती है, अगर हम सावधान नहीं है तो प्रकृति कंट्रोल कर लेगी। तो इससे बढ़िया है कि हम इस तरह के बड़े बड़े एनजीओ जो काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे लीडर्स है दुनिया में, जो पॉजिटिव ही चलना चाहते हैं, जो बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के दुनिया के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे हम प्रकृति के संरक्षण के लिए काफी अच्छा कर पाएंगे। सवाल सर ये है कि हम इसके लिए चल पड़े, हमने हमारे इस एपिसोड में भी एक बार ये करा था कि हम कहाँ से शुरू करें। अरे जहाँ खड़े वहीं से शुरू करो।
3: कोई बोलता था भाई लाइन कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पर खड़े हो जाएंगे वहां से लाइन
2: शुरू करो, वहीं से शुरू करो। जैसे आपने कॉल किया आज, आज क्या करूंगा, पर बस आपने मुझे बिठा के सुशांत वाटिका में बिठा दिया, तो जो ईश्वरीय प्रेरणा है वो मुझे यहाँ तक ले आई, आपको यहाँ तक ले आई, हम यहाँ पर आकर के मिले और अनायास तो अपना ये एपिसोड्स भी शुरू हुए। तो ये एजुकेट तो कर ही रहे हैं ना आप, हर संडे इसको रेडियो मधुबन से प्रसारित कर रहे हैं शाम को 7 से 8 बजे के बीच में, तो उसमें बिल्कुल फैक्चुअल आंकड़ों के साथ में कर रहे हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट भी दिखाई देने लगा
3: जी जी
2: सर। इम्पैक्ट इतना प्रबल हुआ कि आज आप देख रहे हैं, देखिए ये परिंदे मेरे सुशांत वाटिका में, इस गांव की सुशांत वाटिका में आप जब पहले आए थे उस समय कितने थे और अब कितने लगे हुए हैं,
3: बहुत सारा है।
2: आप शाम को
3: नया है, अब तो नया है
2: कलरव। अभी सर समय क्या हो रहा है,
3: अभी तो दिन में 11 बज रहे हैं।
2: अपन जो बात कर रहे थे कि अगर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वो जब प्रकृति को बचाने की बात कर रहे हैं, इनके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उसमें सारी बातें हो रही, तो नीचे तक सिस्टम में जो बड़े बड़े एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे अपना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दुनिया के 140 देशों में और उससे भी ज्यादा जहां तक उनकी पहुंच है, उस हेडक्वार्टर से लेकर के जितने इंटीरियर तक वो लोग जा सकते हैं वहां तक जा करके अगर इस काम को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, क्योंकि ईश्वरीय
3: कार्य है,
2: कार्य है, और ईश्वर ने इस प्रकृति को बनाया है। उस ईश्वर ने
3: प्रकृति को
2: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व जब उस ईश्वर ने बनाए हैं और इसी से निर्मित है ये सारे, और उसके संरक्षण के लिए ये सब लोग जब मिल करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित और निश्चित रूप से हमको इसका लाभ मिलने वाला है
3: भाई। कोई भी
2: जहां भी,
3: ये तो इनडायरेक्टली प्रकृति को और परमात्मा को, ईश्वर को हम सहयोग दे रहे हैं,
2: ये ईश्वरीय काम है,
3: उसे
2: ये काम
3: उनका काम के लिए, हम मान लीजिए आपका काम है, हम हाथ बटा रहे तो आपको सहयोग दिया ना,
2: तो सहयोग तो देना ही,
3: तो उसका रिटर्न आप कभी रोकेंगे नहीं,
2: नहीं, नहीं
3: किस रूप में दे देंगे
2: उसका सर रिटर्न, मुझे तो आज भी मिल रहा है,
3: सभी को मिले, तो सभी लोग ऐसे धूप में कौन आकर करेगा, कौन है मतलब धूप है नहीं, छाया हमको यहाँ लग रहा है,
2: एसी से भी अच्छा माहौल है, इस सुशांत वाटिका का शमशान भूमि है, यहाँ पर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं दोपहर को, कितने बजे सर,
3: 11:30
2: 11:30 बजे 11:30 बजे और ये पक्षी यहाँ पर कलरव कर रहे हैं,
3: पानी आराम से बैठ कर,
2: आराम से
3: बात कर,
2: पेड़ पौधे सिंचित हो रहे हैं सर, आराम से सो रहे हैं,
3: इसको तो पर्यावरण कहते हैं,
2: यही तो पर्यावरण है,
3: तो यही पर्यावरण
2: सर, कितना ऑक्सीजन दे रहा है ये, कितनी ठंडक दे रहा है
3: सर, जो हेवन स्वर्ग जो कहते हैं, भारत में स्वर्ग जब था ऐसे था,
2: तो सर स्वर्ग तो
3: यही है,
2: और जहां जहां प्रकृति का आपने नुकसान किया वहां पर स्वर्ग से
3: नरक हो गया,
2: चले गए नरक होता चला गया, और जहां भी सर यही बात,
3: नरक और स्वर्ग का परिवेश है।
2: आज मैं सर सुबह किसी काम पे गया तो वहां बैठा तो प्रसंग बस बात आई
3: जी जी
2: सर, व्यक्ति पहले ये जो केलू पोष मकान थे उसमें बहुत सुखी था।
3: केलू पोष क्या होता है,
2: केलू मतलब ये मिट्टी के नलिए होते थे, मतलब मकान होता था जिस तरह से,
3: अच्छा समझ गया, उसका पूरा शिखर शिखर जैसे हम लोग बोलते हैं,
2: मतलब
3: अभी भी हमारे शांति मन में है,
2: हाँ
3: मिट्टी का बना हुआ है,
2: मिट्टी की सर
3: ईंटें
2: सर, जो पहले था, ये अभी प्रसंग बस मेरे घर पे अभी हम बैठे हुए थे, अपने जो काम वाला है
3: वो तो बहुत ठंडक सर,
2: सर
3: एसी से
2: सर ये जो बने हुए थे केलू पोष मकान जिनको कहते हैं, ये इसको नली कहते हैं हमारे और सर तो वो इतना ठंडा होता था उसमें से टेम्परेचर इतना नहीं होता था, उसमें टेम्परेचर बहुत डाउन रहता था। वो नहीं होने से टेम्परेचर रिफ्लेक्ट होकर के सर अभी तो क्या जैसे छत है तो टेम्परेचर जब उसमें पड़ेगा छत पर तो फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस बाहर चला आएगा
3: राइट।
2: तो उसमें सर वो जो अंदर अंदर जाता था उस मिट्टी में उस ऐसी तासीर थी, उस नलिये में ऐसी तासीर थी, उस केलू में ऐसी तासीर थी कि वो उसको हीट को एब्जॉर्ब करता है। बस वही बात मैं समझाना, वो जो हीट जो आ रही है जिस टेम्परेचर की आ रही है वो उसमें से जॉइंट क्रॉस होगी तो जैसे किसी मतलब गर्म चीज को पानी में से गुजारते हैं वैसी स्थिति उसकी हीट की हो जाती है और वो टेम्परेचर
3: डाउन होकर। कोई पढ़ा लिखा नहीं है
2: तो सर ये
3: प्रकृति का टेक्नोलॉजी
2: सर, प्रकृति की ये टेक्नोलॉजी थी,
3: मनुष्य आज का साइंस का टेक्नोलॉजी उसमें आगे फेल है। आपका एक मकान को ऐसी करके इतना खर्च हो जाता है,
2: टेम्परेचर को इस तरह से डाउन आज भी किया जा सकता
3: है उसी माध्यम से, लेकिन अभी ऐसे
2: साउथ में हाँ ऐसा अभी सर कल्चर हो गया है कि नहीं ऐसा मकान होना चाहिए जिसमें आप लोहा डालेंगे और सीमेंट डालेंगे और केमिकल डालेंगे तो सर वो हीट तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, वो तो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो तो हीट तो वही के वही रही। जैसे आपका 44 डिग्री टेम्परेचर है
3: जी जी।
2: सन का दोपहर तो जो 44 है तो वो तो 44 ही रहा, जो रिफ्लेक्ट होगा तो 44 ही जाएगा और भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि बाहर से भी अगर दूसरी जगह से 44 है सर जो ये मिट्टी है ये एब्जॉर्ब करती है सन रे जब मिट्टी पर पड़ेगी
3: जी।
2: जैसे आपको छाया पेड़ के नीचे आपको थोड़ा सा ठंडा इसलिए लगता है आपकी जो ऊपर से जो गर्मी आ रही है
3: उसको रोक
2: वो ये जो पत्ते वगैरह है ये क्लोरोफिल के रूप में उसको ग्रहण करते हैं सर, इनका तो भोजन बनता है वाइस में ये ऑक्सीजन देते हैं
3: जो
2: ठीक है सर, और जो ये निकलेगी नीचे रेज वो ऑटोमेटिक नीचे आएगी और उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो सर ये तो बहुत बड़ा एसी लगता प्राकृतिक एसी, अपने वृक्षारोपण किया ये तो आपने प्राकृतिक एसी लगा दिए, बहुत सारे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है और जब ये जो ही धरती पर पड़ेगा धरती पर पड़ेगा तो ये मिट्टी भी इसको ऑब्जर्व इस हीट को शोषित करती है। हाँ धूप में होगी तब तो रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन अच्छा धूप में भी वो मिट्टी इसको ऑब्जर्व करती है उसको शोषण करती है तो निश्चित रूप से उस अवशोषण से वहां टेम्परेचर डाउन होता है। शर्त यह है कि वो रिफ्लेक्ट ना हो।
3: सर जब हम गांव अंचल में जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जो भाकर क्षेत्र में जहां पहाड़ी इलाका में छोटा छोटा जो कुटिया कर आदिवासी लोग रहते हैं ग्रामीण समाज के हमारे भाई लोग उनका कुटिया मैंने देखा है
2: किस तरह से प्रकृति इसको टेम्परेचर को कम करने में मदद कर रही है, किस तरह से प्रकृति मनुष्य के फायदे के लिए कम कर रहा है।
3: तो कहना मतलब अभी भी वो देखने को मिलता है कभी भी हमारा शांतिमन का अंदर में भी हमारे दादी कॉटेज का में
2: जी जी हाँ बिल्कुल
3: वहाँ पर उस तरह लगा हुआ है।
2: हाँ।
3: इससे और ये तो रिफाइन है
2: बिल्कुल, लेकिन
3: जो देहात में जो बना था
2: बिल्कुल,
3: में,
2: बिल्कुल
3: उसको जलाकर ऐसे छोटा छोटा
2: पीस छोटा पीस
3: पानी जैसे जाते नाला आधा
2: सर
3: नाला का जैसे पूरा ब्राउन नहीं हाफ
2: बिल्कुल उसका हाफ
3: हाफ सर्कल उसको लगाने के
2: बिल्कुल
3: हमारा घर में भी था
2: मेरे घर में सर था ना मेरे घर में
3: अभी तो 50 साल का अंदर
2: सर आपसे एक निवेदन करो इसी मामले में मेरे घर की सर हाइट थोड़ी ज्यादा थी हमारा जो मकान है जहाँ हमारा मकान बना जी हुआ जी। इस समय सर वहां सर बाकी मकान छोटे छोटे थे मतलब बाकी मकान थे उसमें सर क्या एक स्टोरी लोगों ने लगा दी थी मतलब बीच में एक माड़ कह करके एक जो अपन जो मंजिल होती है तो ग्राउंड फ्लोर के बाद में एक लकड़ी का मांड बनाते थे
3: जी जी, राइट एग्जैक्ट
2: और उसके ऊपर ये केलू होते थे तो उस मकान की तुलना में मेरा मकान इसलिए ठंडा ज्यादा था कि उसकी हाइट ज्यादा थी और हाइट ज्यादा होने से
3: दोनों काम
2: उसका एरिया ज्यादा हो गया और वो केलू है उससे वो छन करके जो ये हाँ
3: वो फास्ट स्टोरेज में रहेगा
2: तो वो सर इतना ठंडा मकान रहता कि लोग पानी पीने सर आसपास से हमारे घर में आते ये मुझे पता है अगर कोई मेहमान आता था ना सर
3: ये उस समय का लोग का दिमाग बहुत
2: देखो सर देखो सर ये जो मटकी है ना पानी की मटकी हम बिल्कुल नहीं लेते और उसमें जो पानी ठंडा होता था अभी सर कलर वाली नहीं जो पुरानी स्टाइल की जो जो मटकी होती है आज भी मैं सर कहता हूँ हमारे घर में आज भी रखी हुई है तो उसमें जो पानी का जो कैपिलरी एक्शन होता है सर वाटर का क्या होता है कि उससे उस छिद्र से हवा अंदर प्रवेश करती है
3: जी,
2: और वो फिर जिस पानी को ठंडा कर दिए, फिर उसके साथ में कैपिलरी एक्शन से वो पानी की बूंद उसके उस जो घड़ा है ना मिट्टी का, उसके बाहर तक आती है। वो कौन सा सर? इसके कुमार के द्वारा हाथ से बनाया हुआ,
3: जी जी,
2: हैंडमेड जो है उसकी जो परत है वो फूट के जो बनाया हुआ है उसकी जो पकड़ है वो सिर्फ उस मटके के पानी को ठंडा भी रखती है। और सर एक और नई बात बताऊं कि उस पानी की डेंसिटी को भी चेंज कर देती
3: है। क्या बात
2: सर, ये जो फ्लोराइड है ना उसमें भी उसका इफेक्ट कम कर देती है। फ्लोराइड है तब तो आएगा तो, लेकिन उसका इफेक्ट कम हो जाता है।
3: कहने मतलब प्रकृति का कितना देन है, किसी रूप में हमें सहयोग देने के लिए।
2: तो सर वो जो आस पड़ोस के लोग है वो हमारे घर में से पानी लेते हैं, मेहमान आए इसलिए पानी वहां से लाओ, क्योंकि सर जो स्टील के घड़े का पानी है तो सर उसमें कैपिलरी एक्शन से पानी ठंडा नहीं होता, तो वो ठंडा पानी उस मटके का होता है। तो हम लोग, मैं तो हमेशा से आपको कहता हूँ कि
3: नेचुरल में
2: जो ये अभी विकास हुआ है उसका मैं विरोधी तो नहीं हूं, लेकिन ये जो नेचुरल चीजें हैं आपको कितना फायदा देती है, स्वास्थ्य को कितना आपके मेंटेन करती है। अपने कई बार आप अभी डॉक्टर्स भी कई बार सर मना करने लग गए हैं कि सर अभी मैं कुछ समय पहले पालनपुर किसी बीमार के साथ में गया था सर, वहां डॉक्टर सर अभी एक मेरे मित्र हैं 80 ईयर्स ओल्ड।
3: क्या बात, 80 ईयर्स।
2: उनके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, उनकी बच्ची अमेरिका में है, वो उनको ले जाना चाहते कि बोले मैं तो नहीं आऊंगा, वो हमारी स्टाइल से रहते, मेरी स्टाइल अकेले रहते हैं, पर मैं तो यही सेवा करूंगा। और वो सर ऐसे डॉक्टर है, आपको इस प्रसंग बस ये बात बताई दी, वो ऐसे डॉक्टर है कि सर उनके कहीं पर कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की सेवा करते हैं जो आप और हमारे जैसे पुराने लोग हैं। और सर मेडिकल में वो इस तरह के इंटेलिजेंट एमडी है कि जब वहां के जो हमारे पालनपुर के डॉक्टर्स जब फेल होते हैं तब वो उनके पास में सलाह लेने जाते हैं, डॉक्टर्स 80 ईयर्स ओल्ड। और बंदा सर एक बार आता है, जितने पेशेंट है उनको देखेगा और जाएगा, फिर वापस नहीं आता, मतलब उनके कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है,
3: सेवा भाव,
2: सेवा भाव है,
3: और निस्वार्थ मतलब
2: बस उनका काम में सेवा करनी है, बस उनका काम इतना ही है कि बस
3: दुआएं कमाते हैं ना, बहुत लोग दुआएं कमाते हैं,
2: पैसा तो बच्चे कमा रहे हैं सर, मेडिकल की फैक्ट्री है, बच्चे पैसा तो वो कमा ही रहे हैं ना, पर उनके साथ वो नहीं रहते, मैं मेरे स्टाइल में जीता हूँ।
3: तो इसलिए अभी भी गाँव के लोग बड़े बड़े शहर में आने के लिए मना कर रहे हैं, पहले कितना तुम अमीर हो, लेकिन हमारा घर घर,
2: यही बात, यही बात, प्रेम भी बना रहता है। और सर वो इस प्रकृति के अंदर रह करके अपने आप को इतना अच्छा फील करते हैं किसी के हेल्प करके, जैसे कोई डॉक्टर है तो अपने अनुभव से उसको बचा करके, जैसे आप जैसे लोगों ने एक अच्छी बात आउटरीच प्रोग्राम में समाज को दे करके, हम कुछ सीख करके सिखा करके अपन इतने खुश होते हैं कि आज कुछ हुआ, आज आप पधारे थे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मैं किसी भी परिस्थिति में हूं लेकिन कि मुझे क्लाइमेट पर बात करने का एक मौका मिल रहा है
3: जी, जी।
2: और किस तरह से इसको ठंडा किया जाए।
3: सही बात
2: सर,
3: बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर बताए अचानक में मेरा जो अनुभव है 15 साल में आउटरीच में जाते हैं गाँव और अंचल में, क्योंकि प्रोग्राम हमें दिया मेरा गाँव मेरा अंचल, तो मैं किसको सूचना नहीं देता हूँ, ऊपर वाला को सूचना दे देता हूँ, भाई आपका काम है, आप किससे कराएगा
2: सर,
3: क्या करेगा कर वो कर रहा है
2: सर, आप और तो, हम से प्रेरित है वही काम कर रहा है।
3: तो कहने का मतलब अभी जो समय जैसे चल रहा है और अचानक उनका काम है हम चल पड़ते हैं, और जैसे आपने बताया भाई अचानक हम जाते हैं कहीं पर और करने वाला करा रहा है, हम ऐसे निमित्त मात्र सोच के कर लेते तो हो जाता है, और हमें एक कदम चढ़ते हैं तो हमें 10 कदम मदद कहीं ना कहीं
2: सर मदद मिलती है,
3: क्योंकि चाहे कोई दे चाहे नहीं दे प्रकृति हमें दे रहा है, वो गुप्त मैंने बैंक मामला जमा हुआ है, मनुष्य देकर कितना देगा वो भी तो मांगता है किससे,
2: प्रकृति देती है सर,
3: प्रकृति जितना जब देगा ना तो आपका जीवन बचा देगा, जो पैसा आप इंडायरेक्टली दे रहे मेडिकल में
2: बिल्कुल
3: स्वास्थ्य तकलीफ हो तो वापस आएगा नहीं,
2: सही बात है,
3: आपका कोई पार्ट हार्ट का प्रॉब्लम हुआ वो तो रिप्लेस होगा नहीं,
2: सही बात,
3: इतना डैमेज हो जाता है जिससे ग्लूकोमा पर कितना सर, तो जब हम प्रकृति को साथी बनाकर अपना उनके लिए कुछ करें, उनका महिमा कर रहे हैं
2: तो प्रकृति अपने आप बचाने के लिए
3: दे रही है। और हमारा जो 5 तत्व क्या है, प्रकृति का ही देन है,
2: उसी
3: तो कहीं ना कहीं इसलिए हमें बहुत खुशी मिलती है, जैसे आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो खुशी लगता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ प्रस्तुतियां खासकर इस एपिसोड का दूसरा भाग लिंक सुनेंगे, खासकर उसको कैसे बचत करना, और जैसे हमने शुरू में बताया था सीजनल हर ऋतु में उसका बचत करना है बात करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर पर्यावरण स्पेशल। एपिसोड में आज जो गोपाल रामपुरे जी जो हमारा इस कार्यक्रम को हम तो दोस्त नहीं बनाएंगे कि गांव वाला बनाए तो हमारा साथी बन गए और दोनों मिलकर एक ही इच्छा है जो पर्यावरण को हमको बचाना है, पर्यावरण प्रबंधन में हम लगे रहते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे हैं। इस एपिसोड में खासकर पर्यावरण संबंधित ऋतुचर्या जो कहते हैं, हर ऋतु में अलग अलग क्लाइमेट होता है और उसको हम संरक्षण करना है, बचत करना है और अपने को बचाना है, खुद बचना है और दूसरों को भी बचाना है। जैसे मैंने सर अभी तो गर्मी का टाइम में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बारिश समय जो बारिश होता है तब भी हम जब जाते हैं कितना एक्सीडेंट होता है, मैंने रफड़ जो पता नहीं चलता,
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: काई चलता रहता है जिसमें पानी थोड़ा साफ वहाँ लिखा रहता है तब भी बोला हाँ चल जाएंगे, लेकिन वो भी प्रकृति के साथ हम खेलवाल करते हैं, प्रकृति दे रहा पानी इतना जोर से, हम भाव में स्कूटर साइकिल आदमी फिसलता है, एक्सीडेंट भी होता है,
1: बिल्कुल सर।
0: और ऐसे ठंडी का टाइम में भी हम थोड़ा लापरवाही करते हैं जिसका चलते इतना ठंडी होता है जिसका चलते भी सहन नहीं कर पाते,
1: बिल्कुल सर।
0: तो उसमें गर्मी कपड़ा का, जैसे अभी गर्मी का टाइम में ये कपड़ा पहनते हैं,
1: राइट,
0: कभी बारिश का टाइम में वो कपड़ा पहनना है, ठंडी का टाइम में वो, सर्दी का टाइम वो कपड़ा पहनना है, ये सब प्रकृति को जैसे हमें हित के लिए के लिए
1: हमारे हित के लिए कैसे उपयोग किया
0: है। में परिवर्तन जब होता है हमें भी परिवर्तन क्यों होना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा बताइए श्रोता मित्र को, क्योंकि हम ऋतु का हिसाब से हमको ढलना पड़ता है,
1: बिल्कुल सर,
0: गर्मी ठंडी और बारिश खासकर।
1: सर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं,
0: जी सर,
1: पर्यावरण संरक्षण इसको ऋतु के अनुसार भी अपने को देखना चाहिए। ऋतु में जैसे ग्रीष्म काल में है तो अपने को गर्मी के हिसाब से ये सोचना है कि ये प्रकृति हमको किस तरह से इस गर्मी से बचाएगी, हीट स्ट्रोक से बचाएगी, ठीक है। ये पानी जो है ये किस तरह से आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है, तो इसका सीमित उपयोग करना, जल संरक्षण करना। अभी सर सरकार ने भी अभियान चला रखा है,
0: जी जी,
1: जल संरक्षण अभी से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसात ज्यादा होती है अथवा कम होती है,
0: जी जी,
1: तो फिर पानी को बचाना तो जरूरी है, क्योंकि पानी बचेगा, जल संरक्षण के उपाय करेंगे तो उस पानी को हम डैम्स में या जो बड़े बड़े प्रिजर्वेयर है या उसको रिचार्ज करने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए वो अभी से डेवलप हो जाना चाहिए और उस पर सरकार अब एक्टिवेट हो गई।
0: सर ये सब जो पहले जैसे 50 साल पहले सब प्रिजर्वेशन डैम और सोचना नहीं पड़ता, अभी 50 साल का बाद सबका मन में इसका मतलब कुछ कमी
1: सर
0: नजर आ रहा है, पहले कमी इतना नहीं था।
1: सर सर ऐसा हुआ कि अभी सब चीज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है।
0: ओके,
1: अब जैसे पानी है उसका उपयोग हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब उसका सीमित उपयोग करना चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा, कंजम्पशन जब बढ़ेगा
0: रिक्वायरमेंट भी ज्यादा,
1: तो रिक्वायरमेंट लोगों की ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा तो ज्यादा होगी, लेकिन अब हमको उसका जो है उचित उपयोग करना पड़ेगा। जैसे 100 लीटर पानी है आपके अकेले एक हिस्से में आ रहा था, अब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी तो वो 100 लीटर पानी को 2 जनों को काम में लेना पड़ रहा है, तो पानी तो वही है, 100 लीटर ही है।
0: पहले एक हफ्ता में एक साबुन लगाते थे एक दिन, अभी तो दो तीन बार लगाने चाहेंगे तो पानी वेस्टेज होगा ना सर,
1: वेस्टेज होगा ना सर,
0: पहले तो एक में हो जाता था।
1: वहां पर सर अपने को जो है अपने को अपनी भौतिकता को छोड़ते हुए उसके मिनिमम जो उपयुक्त उपयोग है उस तक आना पड़ेगा, इस तरह से उसका उपयोग भी हमने को व्यवस्थित करना है। जैसे नल है वो जो सर छोटी छोटी चीजों से इसका संरक्षण हो सकता है, उसको सही तरीके से उसकी फिटिंग हो, उसका पानी बहे नहीं, उसकी बूंद वेस्ट नहीं हो, एक एक बूंद को अगर आप बचाएंगे तो वो सारा पानी बचेगा तो वो किसी के उपयोग की चीज हो जाएगी, सीधा सा तरीका है। तो मतलब उसका वेस्टेज को अपने को रोकना होगा,
0: कैसे उसके लिए क्या करना चाहिए, अवेयरनेस,
1: बिल्कुल सर अवेयरनेस, जहां भी आप देखते हो जहां भी पानी का एक्सेस उपयोग होता है, ठीक है, उसको कम कराने के अपने को
0: खुद को खुद एकला क्या कर, सभी लोग अपने को जिम्मेवार लेंगे
1: सर,
0: तो हो सकता
1: सब
0: है।
1: करेंगे तभी होगा,
0: एकला और से सर कितना बचाएंगे,
1: अपना जो एनजीओ है ब्रह्मा कुमारी ज्वाला वो तो सब कर सकता है, दुनिया के 140 देशों में इसका संरक्षण अगर करवाता है खुद करता है तो उनके संपर्क वाले भी करेंगे तो निश्चित रूप से काफी अच्छा इसका जो है सदुपयोग हो जाएगा।
0: उसके लिए तो विवेक का खुद का
1: विवेक
0: काम करना पड़ेगा,
1: सब जगह काम में लेना पड़ेगा।
0: भगवान क्या कर सकते हैं, यदि माल जाप नहीं करना चाहेंगे तो भगवान भी बोला भाई तुम्हारा
1: प्रकृति में आपको जितना दिया है बैलेंस, पानी का बैलेंस दिया है और पॉपुलेशन बढ़ रही है उस बैलेंस के अनुसार चलना है, नहीं तो आप प्यासे मर जाएंगे।
0: सर ये तो गर्मी का टाइम आपने दिया सुझाव, बारिश का टाइम में सर, पानी को कैसे बचाएं?
1: बारिश के टाइम में सर जैसे डैम बने हैं, चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, बड़ा काम तो हो गया, छोटे छोटे जो चेक डैम्स अगर बन गए पानी वहां रुकेगा तो
0: धरती पर जाएगा,
1: धरती के अंदर जाएगा, वो चार्ज होगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगा,
0: राइट,
1: सीधा सा
0: खेती को भी काम में,
1: खेती के लिए भी वो काम में आ जाएगा,
0: पशु पक्षी आराम से।
1: अपने को वहां भी सर बरसात में भी पानी का अति उपयोग तो नहीं करना, उसकी दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए, उपयोग का एक एक पैमाना होना चाहिए।
0: नहीं तो पानी सब सागर में चला जाता है।
1: हाँ, तो बह करके चला जाएगा, तो चेक डैम सर बनाने की जरूरत रहेगी। और चेक डैम्स अगर बन गए सब जगह, सब सही तरीके से सरकार कर रही है सर, इसके लिए प्रयास कर रही है।
0: और सर जब कभी कभी ये तो हो गया, लेकिन जब गांव-गांव में जो जाते पूरा कभी कोई कीचड़ होता है, ड्रेनेज सुविधा नहीं होता है बारिश के टाइम में।
1: बिल्कुल सर, बारिश के टाइम में नहीं होती,
0: तो पानी इतना रहता है, कहाँ पर अच्छा सड़क है, कहाँ पर
1: तो सर
0: कच्चा सड़क है।
1: बिल्कुल,
0: तो जिसका चलते पानी का भी तो वो तो जाता है, खराब होता है, और पूरा परिवेश को भी, एनवायरमेंट को कितना खराब करता है।
1: तो सर वहाँ पर सर वहाँ उसके लिए सर सीधा सा है, जन भावना तो होनी चाहिए, फिर पंचायत उस एरिया में है, पंचायत अपने बजट का सही प्लान करके अगर सदुपयोग करे,
0: ड्रेनेज सिस्टम करे,
1: तो ड्रेनेज सिस्टम को अगर सही करती है तो निश्चित रूप से इसका सुधार हो सकता है। अब जैसे अपने यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में वाटर को रिसाइकल करके पौधों में डाला जा रहा है।
0: जी जी,
1: जैसे आपका यहाँ पर हमारे यहाँ पर फ्लोराइड ज्यादा है, तो फ्लोराइड को हटाने के लिए वाटर जब साइकिल होता है
0: जी जी,
1: तो उसके अंदर सर ये होता है कि ज्यादा पानी वेस्ट जाता है और पीने के काम में कम आता है। मतलब
0: घर में हम
1: तो जो पानी जो वेस्ट जा रहा है वो नाली में न बहे, उसके स्थान पर वो पौधों में चला जाए या अन्य उपयोग में, नहाने के काम में आ जाए, तो निश्चित रूप से उसका सदुपयोग हो जाएगा। और यही वाटर या जल संरक्षण है। तो अगर ये इस तरह का काम अगर शुरू हो जाता है सब जगह, तो जैसा कि हमारे यहाँ हो रहा है, जैसा कि, और सर मॉडल के लिए ब्रह्मा कुमारी के अंदर आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए और देखिए और किस तरह से वो रिसाइकल वाटर है। प्रत्येक घर में सर वो वाटर रिसाइकल होकर के नाली में बहता है, उसके बजाय पेड़ पौधों में चला जाए या अन्य उपयोग में चला जाए, इसको सुनिश्चित कर सकती है ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं, तो निश्चित रूप से इस पानी का सदुपयोग हो सकता
0: है। वहाँ संसाधन है भाई विवेक, इसलिए ब्रह्मा संस्था कर पाते हैं। लेकिन गांव में खासकर आजकल पानी का जो पीने का लोग डर गए, कहाँ पर पानी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पानी को फिल्टर लगाया,
1: बिल्कुल
0: आरओ लगाया सभी घर में।
1: हाँ हाँ,
0: तो उसका जो वेस्टेज पानी जाता है, मैंने देखा है,
1: बिल्कुल
0: हमने अपना जो लोग के घर में भी एक वाटर टोल लगाया आरओ का, तो उसमें तीन हिस्सा पानी वेस्टेज में जाता है, एक हिस्सा ही पानी
1: काम में आ रहा है,
0: तो तीन हिस्सा हम बहा देते हैं,
1: वो बहता है,
0: बहता है। और उसको हम कैसे प्रिजर्व करें, जो कि उसके लिए थोड़ा बताइए
1: सर, उसके लिए
0: घर घर के कहानी
1: सर। ये सारा पानी अगर प्रिजर्व हो जाए, ये पंचायत इसको बजट में लेकर के इस पानी को, आपका जो एरिया है, जैसे अपने यहाँ पर ये बगीचा बनाया हुआ है, वहां तक पंचायत ला सकती है छोटे से पाइप के जरिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो गली गली का पानी है वो इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होकर के जहां पर, या तो उस पानी को ऐसी जगह डाला जाए ताकि वो
0: पूरा डायरेक्ट आए पाइप,
1: हाँ, पाइप सिस्टम करे, पेड़ पौधों तक ले जाए, मतलब जहां भी बगीचे तक
0: गांव का
1: बने हुए है ये, उस बगीचे तक ले जाए,
0: जहां घर बैठकर आप इजीली दे सकते हैं,
1: इजीली
0: आना नहीं पड़ेगा, पाइप लगा दो एक बार वन टाइम।
1: जैसे सर हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, मेरे इस गाँव के अंदर हमारे इस गांव का एक साझा कुआ है, और उस कुएं में सर जब हम छोटे थे सर, पानी का लेवल इतना डाउन हो गया, मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ा है कि उस कुएं के अंदर पहले हम पानी पीते थे, करते थे, सीढ़ियों से नीचे उतरते थे, बावड़ी थी बहुत बढ़िया, फुल पानी रहता था, बढ़िया पानी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो सूख गया, उसके बोर में भी पानी नहीं आया। तो हमने क्या करा कि गाँव का जो ड्रेनेज है उसका पानी उसमें डाल दिया, और उस कुएं से मतलब वो कम से कम 5-7 बीघा है सर, उससे पूरा कम से कम गांव को एक ठेका मिलता है 60-70 हजार रुपया, और उसको गांव के विकास में लगा। ये हमारे गांव की कहानी। तो सर
0: ये
1: वो जो नाली है वो गांव के कुएं में सिंचाई के काम में लेते हैं, और उस पानी से गांव के विकास के लिए पैसा मिलता है।
0: बताओ ये
1: गांव इसका डेवलपमेंट
0: सूझबूझ का काम किया, और
1: तो सर ये सब जगह हो सकता
0: है, हो सकता क्यों,
1: केवल
0: में
1: ये मॉडल हाँ इस गांव में है तो सब जगह हो सकता है। और ये बात अपने माध्यम से अपन कहें तो आप आकर के देख सकते हैं किस तरह से हमारे यहाँ ये काम चल, तो
0: ये बहुत अच्छा काम है।
1: और देखिए सर हर गांव में ही हो सकता
0: है, एक गांव आदर्श गांव बनाने के लिए, मेरा गांव महान तब बनेगा जब इस तरह काम पुनित काम करे,
1: प्रयास हम सबको दिशा भी देनी पड़ेगी, बताना भी पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हो जाएगा।
0: अच्छा बात बताए अभी, जो वेस्टेज पानी को हम कैसे उसको
1: उपयोग कर सकते,
0: और ये रह गया बस दिमाग का काम है, बुद्धि का काम।
1: जैसे बरसात में भी वो ड्रेनेज बिल्कुल चैनलाइज हो जाएगा, तो बरसात की जो फसल है उसके लिए तो वो पानी चाहिए ना, तो जो ड्रेनेज चैनलाइज होगा तो वो पानी स्टोर में होकर के वहां चला जाएगा, स्टोर से आपको उठाना रहा, और लेकर के उसकी सिंचाई कर दो।
0: ये किसी न किसी तरफ से प्रकृति को हम सहयोग दे रहे, पर्यावरण को सहयोग दे रहे।
1: यही सहयोग है, यही हम सहयोग, कोई बहुत बड़ा या बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर
0: बारिश का सीजन में भी हम कर सकते,
1: कर सकते हैं सर। उसको वाटर को बचाना है और इस काम को करना है सीधा सर। सहयोग करने के लिए बहुत बड़ी उसकी आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजें और वहाँ हम आगे बढ़ करके अगर सहयोग।
0: अभी मनरेगा जो चल रहा था उसमें भी जैसे प्रोजेक्ट तालाब वगैरह कितने खुदा कर पानी संचय करने के लिए करते
1: सर थे। ये प्रश्न आया ना तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे यहाँ पर जब शुरू किया ना, हमने यहाँ ड्रेनेज की ड्रिप्स लगाई थी यहाँ
0: सुशांत वाटिका
1: में। वो सर जो टांका बनाया
0: मैं देखा है,
1: 5-7 लोगों ने मिलकर बनाया था, पानी पेरेनियल वहीं से चालू कर दिया। अब गांव का ही पानी है, हमको उसका सिस्टम तो देना पड़ा, वो दिया भाई हमने जन सहयोग से किया, जन सहयोग से किया और वो सही हो गया। वो ड्रिप्स लगाई थी हमने, अब सर वो ड्रिप तो खत्म हो गई लेकिन अब पंचायत ने इस काम को उठा लिया
0: जी,
1: वो आगे वाली वाटिका में हो गया। तो सर ये तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता है सर, ऐसे आगे तो वैसे ही बढ़ेगा कि आपको शुरू करना पड़ेगा,
0: करना पड़ेगा।
1: आपने परिंडे लगाए दो चार दूसरे ने लगाए, ये आगे बढ़ गया। अभी सर एक और डिमांड आई थी, ये जो बीच में जो वो टैंक है ना उसमें कोई वो लोगों ने नल वल तोड़ दी, तो हमारा तो यही है कि लोग तोड़ने वाला तोड़ेगा, अपने को लगाने हम तो यही कहते हैं,
0: देने वाला लेने वाला,
1: उसको
0: खोया पाया
1: भाई कोई तोड़ता है वो
0: उसके लिए बहुत थोड़े काम होता है, उनका तो काम है,
1: का काम वो करता है,
0: हमारा काम है।
1: तो ज्यादातर लगाने वाले हैं
0: जी,
1: तो हम वापस लगा दीजिए
0: जी।
1: तो निश्चित रूप से तो वहाँ सर इरिगेशन के हमने नए सिस्टम लगाए, अभी मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा, वहाँ कोई नया ही सिस्टम डेवलप। हमने सर ये बात की थी कि जैसे इसी वाटिका अभी अपन जैसे बरसात की बात करते उसको कीचड़ से निकाल करिए, अब सर आप सर्दी की बात करें, सर्दी के दिनों में भी सर ये प्रकृति है ना, ये ठंड से हमको बचाती है सर। जिस तरह से सर ये प्रकृति के लिए गर्मी में एसी

0: लगा दिए ना, वैसे ठंडी में उस ठंडी से बचाती है,
1: इसलिए ठंड का टाइम में बाहर डायरेक्ट नहीं सोते, फिर पेड़ का नीचे सो जाते हैं।
0: इसका मतलब ये कितना बड़ी चीज है सर, इस सीजन इसका मतलब प्रकृति का प्रिजर्वेशन कर लिया आपने सही तरीके से। तो सर आप तो सब तरफ से प्रोटेक्टेड हो गए।
1: मैंने गाड़ी में देखा भाई, गर्मी का टाइम में ठंडी और ठंडी का टाइम में गर्मी। अभी तो ये पेड़ बिना पैसा से गर्मी के टाइम में ठंडी।
0: और सर यही बात मैं आपसे निवेदन करूं कि साउथ में अभी बना रहे हैं इंजीनियर्स सर गर्मी के लिए, वो भी मिट्टी की ईंटों के ठंडे मकान बना रहे हैं, ये किलोपोश जो जो सर्दी में मिट्टी का जो मकान है ना, मिट्टी की आंगन वाला उसमें मिट्टी की दीवार हो और वो हो तो सर उसमें
1: गर्मी पैदा,
0: उसमें ठंडी भी नहीं लगती सर्दी के दिनों में, तो वो सर तो ये सर नेचर फ्रेंडली है। अब ये एक्चुअल में क्या, अभी आधुनिकता आ गई है इसलिए लोग ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन सर उसकी आवश्यकता है आने वाले समय में
1: भी होगा ना, आने वाले बनाते हैं कारण है उसका
0: दिखावा है, दिखावा है और तो क्या कारण है।
1: उनका सम्मान चला जाएगा, गरीब सोचेंगे
0: हाँ,
1: सोचेंगे इसलिए से आप अभी आ गए तो अरे सीबी सब ऐसे जा रहे हैं इसे आप उसको नहीं देखे हैं, अरे तो सिंपल में आ गए
0: तो सर
1: तो वो पेंट ड्यूटी कर लेता पवित्र चला जाएगा।
0: सही बात,
1: इतना सब इंतजार नहीं करेगा भाई, अरे फिर हम घंटा देंगे तो पवित्र तो चला यहाँ से रिकॉर्डिंग क्या करेगा, इसलिए आप जैसे थे
0: ऐसे
1: ही आपका कार है
0: अपन दौड़ के चले।
1: तो कहने मतलब जो मान शान जो हमें लोग गवार सोचेंगे, अनपढ़ बने, ये तो बहुत पुराना गांव से आए हैं ऐसे सोचेंगे बोल के लोग, बड़ा साइंस का बोले पैसा घर में नहीं हो इधर उधर करके अपना मेंटेन करेगा, ऐसे भावना रखेंगे
0: सर प्रकृति के साथ में, प्राकृतिक रूप से अगर आप रहेंगे और प्राकृतिक रूप से सोचेंगे, प्राकृतिक रूप से चलेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रकृति आपका सहयोग करेगी।
1: एकदम
0: मेरा तो सहयोग कर रही
1: है। जैसे महात्मा गांधी देख जितने सब बड़े महान हुए हैं
0: जी जी,
1: उनका जीवन कहने हमको ध्यान
0: सर जितना
1: सरल
0: सर जितना संभव है पैदल चलो,
1: सरल
0: सर ये बात
1: पहले से कहते हैं
0: जितना संभव है पैदल चलो। अब तो सरकार भी अपने वाहन को वाहन कटौती वाहन को जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम करके सरकार के मिनिस्टर भी आजकल तो बस में आने लग गए।
1: देखिए समय बड़ा बलवान है
0: सर, हमारे जिला स्तर का जो सिरोही जिले के जिला कलेक्टर समेत जिला स्तरीय अधिकारी वो साइकिल से ऑफिस पहुंच रहे, तो फिर आप और हम क्यों नहीं पहुंचे।
1: सही बात
0: सर, ये बात बहुत पहले मैंने एपिसोड शुरू किया तब आपसे निवेदन किया था कि भाई जहां तक आवश्यक है आप साइकिल से, देखो प्रकृति ने वहां ला दिया, जहां तक आवश्यक है पैदल चलो, जहां तक आवश्यक है साइकिल से चलो, जहां तक अपन बचा सकते हैं कम से कम मिनिमम उसका उपयोग, और जहां के भाई अब तो बहुत दूर है वहां फोर व्हीलर लेकर के भी जाएं आप, जी कहां दिक्कत है,
1: कोई मना थोड़ी कर,
0: कोई मना थोड़ी कर। तो आप जैसे आप या बाइक से आए बहुत अच्छा है,
1: देखो फिर भी गाड़ी उधर रख कर
0: मैंने पता, चार लोग होते तो फोर व्हीलर से आना होता ना, आना ही चाहिए। तो सर इसका जो विवेकपूर्ण उपयोग करना है प्रकृति का, प्रकृति ने इसके लिए अपने को ये सारा वातावरण दिया है।
1: सही बात बताएं
0: तो सर हमारे सब चीजों का विवेक उपयोग करते हैं तो हम इस प्रकृति में शान के साथ जिएंगे और सर जीवन में संतोष आता है।
1: संतोष सबसे बड़ा धन,
0: संतोष सबसे बड़ा धन अपना सर उपयोग है, अपने संसाधनों का उपयोग है वो संतोष के लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। और वो हो गया सर, चाहिए क्या हम तो करें,
1: लेकिन इस तरह से हमको समझना चाहिए, बोलने के बाद भी लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे
0: सर, बस करना है अपना तो एक ही उद्देश्य है और आपको देख के वो भी कर लेगा। आप सर सुशांत वाटिका में पधारे थे तब क्या इस तरह की ग्रीनरी जब आप फर्स्ट पधारे थे तब थी क्या?
1: नहीं ना,
0: अब है ना,
1: अभी है।
0: अब तो बड़ी, अब गर्मी में भी ऐसी ग्रीनरी है,
1: बारिश के टाइम में
0: तो, बारिश के टाइम में तो बहुत भी बड़ी सर, यहाँ तो शाम को तो आप आते मोर पपिए यहाँ बोलते गांव वाले सुनते हैं
1: तो लेकिन सर, पूरा
0: तो सर जब आप करेंगे तो
1: स्वर्ग, तो स्वर्ग हमारा हाथ में, नरक हमारा हाथ में
0: सर, स्वर्ग
1: चाहेंगे तो हम स्वर्ग बना सकते हैं,
0: तो ऊपर तो है कि नहीं लेकिन यहाँ का तो पता है ऊपर का तो नहीं देखा लेकिन यहाँ का देखा है।
1: स्वर्ग मतलब सुखदाई हर चीज
0: सर, सुखदाई आपने हमने देखा है, अबू पर्वत जाकर के ब्रह्म कुमारी में जाके देखा है, यहाँ शांतिवन में जाकर के देखा है, यहाँ इन वाटिकाओं में बैठ करके देख रहे हैं, तो सर यहाँ का तो स्वर्ग देखा, अब ऊपर वाला स्वर्ग तो जब देखेंगे तब देख लेंगे।
1: ऊपर कोई स्वर्ग नहीं, नर्क स्वर्ग नर्क यहीं पर है,
0: सब यही है,
1: यही हमारा विचार है स्वर्ग और हमारा विचार ही नर्क,
0: हम यहाँ आनंद में है ना, ये स्वर्ग में है।
1: और बाहर दो लोग बैठे धूप में उनको नर्क लग रहा है,
0: तो वो तो है
1: क्योंकि वो बुद्धि नहीं भाई, अभी गर्मी के टाइम में बाहर बैठे कैसे होगा, अभी बारिश का टाइम में बोलेगा हमको बाहर बारिश हो रहा है जा रहे वहीं पर,
0: तो
1: विवेकवान क्या करता है आकर पेड़ का नीचे,
0: बिल्कुल
1: घर का नीचे
0: रहता
1: नहीं, तो कहना मतलब विवेक से काम करेंगे तो हमारा हाथ में स्वर्ग हमारा हाथ में नर्क, लेकिन हमारा सोच को बदलना
0: बदलना पड़ेगा,
1: सोच जैसे सोचना सोचेंगे
0: सर ये कितना बढ़िया हो गया कि आप इस श्मशान भूमि में यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग करवा करके एक एक अच्छा मैसेज दे रहे, ये कहीं से भी संभव है, इसी कमरे से भी संभव है, तो यहाँ से भी संभव है,
1: रहेंगे तो प्रकृति का जो
0: के साथ में रह करके आप
1: करेंगे तो हमें खुशी,
0: आपको जो आनंद है उसकी
1: प्रकृति कुछ लेता नहीं, हमें देते हैं
0: तो दे रही है ना सर, ये पानी पिलाया आपने, सब कुछ किया था, प्रकृति आपको दे रही है सर। देखिये वो कुंड पानी का, देखो वो पीछे कुंड देखा, ये बढ़िया सा कुंड बना हुआ है,
1: अभी तक जल स्तर ऊपर ना नीचे नहीं है, यहाँ पर है,
0: यह है, क्या बात है,
1: क्या बात
0: सर, ये आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा।
1: तो श्रोता मित्र गांबाज और खास हमारे पर्यावरण भी जो पर्यावरण में संबंध रखते हैं, पर्यावरण को बचत के लिए बचाने के लिए आपने एक कदम बढ़ाते हैं तो उनको स्वागत करते हैं हमारे मंच के लिए। कभी भी आप हमारे नंबर पर डायल करिए 8302352272 जो कि 8302352272 ये मेरा गाँव मेरा अंचल का नंबर है, और 9414151415 जो रेडियो मधुबन का ऑनलाइन लाइव
0: बिल्कुल सर
1: कॉल है उसमें आप फोन करके बता सकते, क्योंकि हमें खुशी मिलेगा इस तरह आपका गांव में ऐसे सुशांत बाटी आप भी बना सकते
0: और आपके गांव में
1: बना होंगे कुछ नवीनता कुछ किए तो वो भी हमारा मंच के माध्यम से आप बता सकते,
0: और अगर आपने बनाई है तो
1: वेलकम
0: वेलकम है, और आप बताइए हमको ताकि हम भी वहां आकर के उसको देखें और ताकि देख करके और लोग भी उससे प्रेरित होंगे।
1: जी जी, और हमारा सुभावना है तो सिर्फ केवल लिखूं जिसे अबरोड ब्लॉक में हो चाहे सिरोही ब्लॉक जिला में जितना
0: सब जगह गाँव है,
1: पर अब इसमें जो सुन रहे इसी कार्यक्रम का माध्यम से अपना स्तर पर जो के प्रकृति का प्रति पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए प्रिजर्वेशन करने के लिए सहयोग देने के लिए जो भी आपका चिंताधारा विचार है
0: बिल्कुल
1: तो हमारे साथ साझा करें और जन जन को पहुंचाइए जनहित में,
0: ताकि लोग सीखेंगे आगे बढ़ेंगे तो हमको फायदा ही होगा, फायदा ही
1: तो सिर्फ आपका सोच का ऊपर डिपेंड करता। तो इन शुभ भावना का साथ हमें और श्रीमान पर्यावरणविद गोपाल राम पुरोहित जी को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे।
0: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रुक, ओए रुक, ओए रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
2: सर वो सर सर।
1: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए? ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
3: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है, धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
2: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
3: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
1: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट, फिर गाड़ी।
4: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। जी हाँ दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जहाँ दिलचस्प बातें तो होती हैं, लेकिन साथ साथ हमारा गीत संगीत का सफर कुछ इस प्रकार चलता है कि ऐसा लगता है हम लोग कहीं भी हो लेकिन साथ साथ चल रहे हैं। अब संगीत का असर कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, और आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि हमारे साथ गेस्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं। वो एक एनजीओ से आए हैं और वो एनजीओ जो चलाते हैं, जो इस नेक काम को कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यश अग्रवाल जी और हर्ष अग्रवाल जी, जो कि एक एनजीओ रन करते हैं बनारस में जिसका नाम है डिवाइन संस्कार शाला। उसके बारे में जानेंगे, बच्चों से भी बातें करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी सुनेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को एक बार आप अपने बारे में साथ साथ एनजीओ के बारे में भी कुछ बताएं।
1: हेलो, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है और मैं इस एनजीओ का ट्रेजरर प्लस को फाउंडर हूँ। और ये एनजीओ 2017 से चल रही है बनारस में, और स्टार्टिंग जैसे हमने घर से किया था, अब और थोड़े बच्चे हमारे यहाँ आते थे उनको पढ़ाना लिखाना, और जैसे कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी से 12 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ 11 साल से गीता पाठशाला भी चलती है, और ये उसके बाद से हम लोग ने एनजीओ स्टार्ट किया। तो बच्चों का हम लोग का मेन मोटिव था उनको संस्कार देना, स्किल डेवलपमेंट और एथिकेट्स और ये सब उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि बड़े लोगों के बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ऐसे ही करते करते आज 6 साल हो गए, हम लोग ने 6 बस्तियां भी अडॉप्ट की हुई हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रोग्राम किए हुए हैं, और हमारे यहाँ डेली 40-50 से लमसम बच्चे आते हैं बस्तियों के, उनको पढ़ाना लिखाना और मेडिटेशन और अच्छी बातें और खाना पीना, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसे चलती हैं। और हमारे यहाँ जैसे क्लब्स आते हैं उनको कुछ बांटना होता है, और जगह जगह हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं तो उसका भी हम लोग एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं,
0: काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जी यश जी, आप कुछ बताइए।
2: हेलो, मेरा नाम यश अग्रवाल है और मैं डिवाइन संस्कार शाला का सेक्रेटरी हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के समय में संस्कार की ज़रूरत बचपन से ही होती है, बड़े होने के बाद तो हम बन जाते हैं जैसा हमें बनाया जाता है। मगर जैसे कुम्हार होता है, वो कच्ची मिट्टी से तो घड़ा बना सकता है, मगर जब वो मिट्टी पक जाती है, वो घड़े का शेप ले लेती है, तो उसको किसी दूसरे फॉर्म में डालना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसी सोच के साथ ये एनजीओ की शुरुआत की, जो कि अभी एजुकेशन विंग से कनेक्टेड है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को बुला के उनका संस्कार बदलते हैं, उनके परिवार वालों का भी प्रोग्राम रखते हैं, और बच्चों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी कलाएं हैं जो सिर्फ पढ़ते रहने से वो कलाएं निखर नहीं पाती हैं। तो सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और इन सब के माध्यम से, ताकि बच्चे आगे चलकर उन चीज़ों के द्वारा अपना रोजगार भी बना सकते हैं, और प्लस वो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जितना ही ज़रूरी हमारा स्तर जो है वो फिजिकली हम जितना अच्छा बनते हैं, साथ ही साथ हमारा मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हर क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़ें, ये सारा हमारा एनजीओ देखता है। और हम विभिन्न स्कूलों में जाके भी वहाँ पे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग का कैसे बच्चों को कोर्स भी कराते हैं
0: जी।
2: और ये सारी चीज़ें हम लोग सब निःशुल्क करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही एक नेक पहल है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भविष्य की बात होती है तो बच्चों की बात होती है, क्योंकि वो ही है हमारे देश का, दुनिया का भविष्य। क्या आपको कोई चेंज नजर आया जो आपको लगता है कि हाँ ये इस तरीके से हुआ, एक प्रैक्टिकल कुछ अंतर आपको दिखा?
2: सबसे बड़ा अंतर तो ये दिखा कि जब बच्चे यहाँ आते हैं उसके बाद से उनका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, हर चीज बहुत बदलता है। यहाँ पे हम लोग इस बात पे फोकस्ड होते हैं कि बच्चे हमारे शुद्ध भोजन खाएं, जो कि उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नहीं तो ये बच्चे बाहर का खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो उससे उनकी हेल्थ भी खराब होती है। प्लस ये रोज राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं जिससे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इनको पढ़ाई में मदद मिलती है, और इनकी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है जो यहाँ आने से धीरे धीरे चेंज होने से समाज के दूसरे बच्चों पे और उनके परिवार वालों पे भी असर पड़ता है, और फिर वो भी अपने बच्चों को यहाँ पे एंट्री कराते।
0: क्या बात है, तो बहुत सुंदर आपने बात कही। बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ आप लोगों से भी जानेंगे, लेकिन क्योंकि ये संगीत का कार्यक्रम है दोस्तों और बच्चों की बात हो रही है, तो चलिए आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना।

लौट कर आ गए हम कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और दोस्तों, जिन नन्हे नन्हे बच्चों की बात हो रही थी वो स्टूडियो में मौजूद है और उनकी आवाज आप सुन पाएंगे, उनसे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वो अपनी एक प्रस्तुति लेकर तैयार हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में। एक गाना गाने वाले हैं मिलके, तो आइए इन बच्चों की आवाज आप तक पहुँचाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ओम शांति।
1: बहुत ही सुंदर गाया बच्चों ने, और प्यारे प्यारे बच्चों की आवाज आपने सुनी, कितने प्यार से, कितने श्रद्धा से ईश्वर को याद कर रहे थे, शिव परमात्मा पिता को याद कर रहे थे और सब साथ में गा रहे थे, तो बहुत ही सुंदर एक माहौल भी बन गया था। तो आइए इन बच्चों से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है?
2: ओम शांति, मेरा नाम गुड़िया है।
1: आपका नाम क्या है?
3: ओम शांति, मेरा नाम है काजल।
1: गुड़िया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: और आप?
3: 4th में।
1: अच्छा, आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है? गाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है कि पढ़ाई अच्छी लगती है? पहले आप बता दो गुड़िया।
3: हमको डांस अच्छा लगता है।
1: अच्छा, और आप?
3: हमें भी डांस अच्छा लगता है।
1: आपको भी डांस अच्छा लगता है? ओके, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
3: मैथ।
1: आपको?
3: मैथ।
1: अच्छा, दोनों को सेम सब्जेक्ट भी पसंद है। अच्छा, आप लोगों को कोई पोयम याद है जो स्कूल में आपको सिखाई जाती है या फिर आप लोग यहाँ आते हो तो सीखते हो?
3: हाँ।
1: किसको याद है आप दोनों में से?
3: हमें।
1: आप याद है? ठीक है, चलो आप सुना दो।
3: रोज सवेरा सूरज आता, पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार को दूर भगाता, उसके स्वागत में ही देखो कमल तार खिल जाता। ओम शांति।
1: ओके, आपको याद है? सोचना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप सोचो। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग, अभी यहाँ पे समर कैंप चल रहा था ना, दोस्तों आपको भी बता दी कि ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें सब बच्चे आए थे। तो क्या क्या किया आप लोगों ने? मजा आया?
3: बहुत मजा आया।
1: क्या क्या किया आप लोगों ने?
3: हम लोगों ने डांस किया और खेला भी, खूब
1: खेला,
3: ड्राइंग भी किए।
1: क्या बात है, और आपने क्या क्या किया?
3: हम भी बहुत खेले और ड्राइंग भी किए और डांस भी
1: किए। अच्छा, आप लोग आते हो यहाँ पे बनारस में, है ना, भैया लोग के पास आते हो, सबके पास आते हो, क्या सीखते हो, क्या सीखा आपने?
3: हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो पहले तो अच्छे से रहना सीखे हैं, खान पान का बहुत ध्यान रखे हैं, बाहर का भी नहीं खाते ज्यादा, लहसुन प्याज और नॉनवेज छोड़ चुके हैं हम लोग मधु बनाने के लिए।
1: आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा आपको?
3: हम भी यही सीखे।
1: यही सीखे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से आगे बढ़ना आप लोग, ठीक है?
3: थैंक यू। ओम शांति।
1: ओम शांति। और भी प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आ जाइए आगे। अच्छा, आपका नाम क्या है?
4: हेलो, ओम शांति, मेरा नाम लकी है।
1: लकी, और दूसरे माइक पे कौन है हमारे साथ?
5: माय नेम इज मंजीत केसरी।
1: मंजीत, ओके। लकी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: क्लास 8।
1: और मंजीत?
5: मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है करना?
4: सबसे अच्छा शांति, मेडिटेशन।
1: मेडिटेशन सबसे अच्छा लगता है? ओके, वेरी गुड।
4: और गेम भी है।
1: कौन सा गेम अच्छा लगता है?
4: गेम में हमको कबड्डी।
1: अच्छा, क्या बात है, कबड्डी में तो इंडियन टीम अभी बहुत अच्छा कर रही है। आप बताओ मंजीत।
5: और हमको योग करना पसंद है।
1: अच्छा, और क्या पसंद है? गाना गाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना?
5: खेलने में पकड़म पकड़ाई।
1: अच्छा, और पढ़ाई नहीं अच्छी लगती?
5: हाँ, लगती है।
1: लगती है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है?
5: सब्जेक्ट हिंदी।
1: हिंदी अच्छा लगता है, अरे वाह। तो आपको कोई कविता या कोई याद है?
5: हाँ,
1: कोई
5: याद है, इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल।
1: ठीक है, सुना दो।
5: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप वाज़ सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई।
1: लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना? ओके, अच्छा आपको क्या अच्छा लगता है?
4: हमको
1: इतिहास अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, डिवाइन संस्कार शाला में आप लोग जाते हैं, है ना, तो क्या सीखते हैं, क्या सीखा आपने?
4: हम डिवाइन संस्कार शाला में 6 साल से जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को अलौकिक पढ़ाई, जैसे कि स्कूल का पढ़ाई भी अलौकिक पढ़ाई भी होता है। हमको आध्यात्मिक पढ़ाई में सबसे अच्छा मेडिटेशन लगता है, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, पढ़ाई नहीं कर पाते तो मेडिटेशन करते तो इतने अच्छे से याद हो जाता है। और मेडिटेशन करने के लिए हमको अपने ब्रिक्विटी के बीच में स्टार चमकता है वो देखते हैं, और फिर अपना स्टार जो है ना, एक रेड आकाश में परम धाम में होते हुए जाता है, और फिर वहाँ पे मेरे मतलब पिता शिव परमात्मा है ना, उनसे शक्तियाँ लेके फिर अपने वापस आते, तो हमको सब कुछ अच्छे से
1: तो याद हो जाता है आपको। तो क्या आप करते हो, आप रोज करते हो मेडिटेशन?
4: इससे में उठ नहीं पाते मगर ऐसे करते,
1: जब उठते हो तब करते, बहुत अच्छी बात है। तो यानी उससे आपकी पढ़ाई बेहतर होती है, वेरी गुड। चलिए, आप लोग इतने यंग एज में मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे आपको सुनेंगे, है ना, वो भी फिर करने लगेंगे सीख के, है ना, ठीक है, वेरी गुड। आप कोई गाना गाना चाहते हो या कोई पोयम सुनाना चाहते हो? ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।
3: शांति।
1: ओम शांति। तो आप दोनों के नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप लोग बताओ।
0: ओम शांति, आई एम नेहा सोनकर, आई रीड इन क्लास 10th।
1: ओके, आप 10th में पढ़ते हैं नेहा, और आप?
0: Yes.

0: क्लास 8।
1: तो आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है करना, बहुत पसंद क्या है करना?
2: डांस।
1: डांस अच्छा लगता है? आप दोनों को डांस अच्छा लगता है? ओके। और कंप्यूटर यूज करना या फिर आता है?
2: नहीं।
1: आपको नहीं आता? स्कूल में नहीं पढ़ाते?
2: पढ़ाते।
1: पर इतना अच्छा नहीं लगता? बोरिंग लगता है?
2: थोड़ा
1: थोड़ा। अच्छा, आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
2: टीचर।
1: और आप क्या बनना चाहते हो?
3: एयरफोर्स।
1: एयरफोर्स में जाना चाहते हो? क्या बात है, तो बहुत अच्छे एम है आप दोनों के। टीचर भी अच्छा चाहिए हमें। तो आप लोग को डांस अच्छा लगता है? गाना अच्छा लगता है? किसी को
2: सुनना
1: पसंद है? अच्छा ठीक है, तो कोई गाना सुनाना चाहोगे आप लोग जो आपको सुनना अच्छा लगता है? थोड़ा सा सुना दीजिए।
2: ओम शांति।

0: थैंक यू, वेरी नाइस। आपको अच्छा लगता है गाना? सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग यहाँ पे आके क्या क्या किया, क्या अच्छा लगा?
1: यहाँ पे आने में तो बहुत खुशी है, और मतलब बहुत ही अच्छा जगह है। अब जितना भी दिल्ली बम्बई घूम लेंगे, ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा, इतना तो पता चल ही गया है।
0: अरे वाह, तो यहाँ पे पहाड़ देखे? पहाड़ बहुत बड़े,
1: बहुत कुछ जो आज तक लाइफ में कभी नहीं देखे।
0: ऐसा क्या देखा, सबसे अच्छा क्या देखा?
1: सबसे अच्छा तो यहाँ का मतलब जो फीलिंग होता है वो आज तक कभी हम नहीं किए।
0: यहाँ कुछ डिफरेंट फील होता है
1: बहुत।
0: चांदनी को कैसा लगता है?
2: तो एक ड्रेस में, वाइट ड्रेस में कितना अच्छा लगता है, मतलब इससे लगता है कि
1: बाय चांस कहीं अगर ढूंढेंगे ऐसा सुकून तो कहीं मिलने वाला नहीं,
0: कहीं और नहीं मिलेगा
1: कहीं।
0: तो आप लोग फिर आओगे फिर दोबारा से? बहुत बार आएंगे, ठीक है, वेरी गुड। और फिर आप लोग मेडिटेशन करते हो?
1: हाँ करते
0: करते हैं। मेडिटेशन से कोई बेनिफिट लगता है आपको, ऐसा लगता है फायदा होता है कुछ लाइफ?
1: हाँ, टेंशन दूर होता है सबसे पहली बात, और मन तो हल्का ही हो जाता है।
0: आप लोग को टेंशन होता है?
1: होता नहीं, बट फैमिली वाले एकदम थोड़ा हो जाता है,
0: और भी थोड़ा सा हो जाता है ना। स्कूल का भी होता है?
1: हाँ स्कूल का भी होता है,
0: थोड़ा थोड़ा नहीं होता, ठीक है। चलो मेडिटेशन हम जल्दी अर्ली लाइफ से सीखते हैं तो फिर आगे फायदा करते हैं ना, ठीक है। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए। शांति, आपका नाम क्या है?
3: शांति, मेरा नाम पीयूष है, हम क्लास 10 पढ़ते हैं, और मेरे को खेलने में फुटबॉल बहुत ही पसंद है, और हम घर में पियानो बजाते हैं। और
0: अरे वाह, कब सीखा आपने पियानो?
3: ये मेरे को भैया सिखाए हैं, हम पे एक डिवाइन संस्कार शाला में पहले जाते हैं, उसमें अच्छा अच्छा सीखते हैं।
0: पियानो भी वहीं पे सीखा आपने?
3: हाँ, पियानो में भैया सिखाए मेरे।
0: क्या बात है, आपका नाम क्या है बेटा?
4: मेरा नाम हंसी, मेरा नाम प्रथम है, और हम क्लास 9th में पढ़ते हैं। हमको खेलना फुटबॉल बहुत पसंद है, और हमको एनजीओ डिवाइन संस्कार शाला में जाना भी बहुत पसंद है, मेरे बाबा
0: बहुत पसंद है। तो कभी होता है ऐसा नहीं जा पाते हो कि जाते हो हमेशा?
3: नहीं, हम हमेशा जाते हैं,
0: हमेशा जाते हैं,
3: रुकता है लेकिन नहीं जाते, तब भी जाते हैं जो अपने बहुत मिलता है।
0: हाँ, अभी तो सबसे फ्रेंडशिप भी हो गई होगी आपकी, है ना? अच्छा, तो आप लोग क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
4: फुटबॉलर
0: बनना है।
3: मेरे को भी वही बनना है, फुटबॉलर।
0: दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि भाई इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो इस वक्त, पहले जैसे लोग नहीं भी जानते थे, अब सुनील छेत्री जी को जानते हैं, कई फुटबॉल प्लेयर्स को जानते हैं। आप किसकी तरह बनना चाहते हो, कोई प्लेयर है ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता है? रोनाल्डो सबको अच्छे लगते हैं भाई, वो इतने ग्रेट प्लेयर है, नो डाउट। कौन से?
4: मेसी।
0: और इंडियन प्लेयर कोई?
4: सुनील छेत्री।
0: अच्छा, आप लोग को कौन सा गाना अच्छा लगता है, कोई गाना गा के सुनाओगे हमें, या कोई पोएम अगर आती हो आप लोगों को स्कूल? गाना प्रथम सुनाएंगे, ठीक है, सुना दीजिए।

0: खुश हो गए। हम गाना गाते तो सब खुश हो जाते हैं।
1: पहली बार गाना गाया? प्रथम कभी गाना नहीं गाते?
0: क्यों नहीं गाते आप कभी गाना? हुआ
1: नहीं, गाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा लगता है तो गाना चाहिए। अच्छा लगता है गाना?
2: हाँ
1: तो कुछ गाना चाहिए पर।
2: है
1: ना? आप नहीं गाते हो? बिल्कुल नहीं गाते हो। डांस करते हो?
2: डांस भी नहीं करते।
1: डांस भी नहीं करते? हाँ वो डांस तो सब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो दोनों फुटबॉलर बनने वाले हो अभी, है ना, बड़े होके। और पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? अच्छा ये बताओ आपको?
2: मेरे को इंग्लिश।
1: इंग्लिश अच्छी लगती है? ओके, आपके तो बोर्ड्स होंगे ना इस बार?
2: इस बार बोर्ड है।
1: पढ़ाई अच्छे से करते हो दोनों लोग की कभी कभी मस्ती करते हो फिर मिस कर देते हो पढ़ाई?
3: पढ़ाई तो करते हैं क्योंकि पढ़ाई के समय हम लोग को आगे चल के फ्यूचर अपना
1: बनाना है। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है?
2: पढ़ाई करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं हम।
1: कम क्यों करते हैं? मस्ती करते हैं?
2: मस्ती ज्यादा, पढ़ाई कम करते हैं। अब इस बार करेंगे, प्लान आ गया।
1: इस बार करना है ना? फिर आपके बाकी सारे जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको फॉलो करने वाले हैं फिर वो तो देखेंगे, है ना, भैया पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम्स के लिए। अच्छे से पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। ओके, थैंक यू। आप दोनों के नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
4: मेरा नाम सपना है और मैं क्लास 7 से पढ़ती हूँ।
1: आपका नाम क्या बेटा?
5: मेरा नाम प्रीति है और इस टाइम मैं BFA की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
1: ओके, क्या बात है। अच्छा BFA क्या होता है आप थोड़ा सा बताएंगे?
5: हाँ, ये एक तरह की डिग्री होती है, जैसे किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट हो और कुछ बेहतर स्तर पे वो करना चाहते हो तो उसे ये जरूर करना चाहिए। इससे तो एक तो अगर वो करता है तो उसके आर्ट में और भी डेवलपमेंट होती है और ऊपर से कुछ डिग्री मिलती है।
1: तो आपको ड्राइंग या पेंटिंग क्या पसंद है आपको? आपको
5: स्केचिंग?
1: स्केचिंग पसंद है हमेशा से, बचपन से?
5: देखा जाए तो हाँ, ये तो है कि मुझे बहुत पसंद रहा, लेकिन ये कि कभी ध्यान नहीं दिया था। स्टार्टिंग में तो बहुत पसंद था लेकिन पढ़ाई की वजह से उतना लगता था कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब 10th किया तो फिर ये हुआ लॉकडाउन के बाद से ड्राइंग में इंटरेस्ट पड़ा।
1: अच्छा, तो आपको किसने बताया कि कोर्स करना चाहिए आपको, पढ़ाई करनी चाहिए? किसने गाइड किया आपको?
5: भैया लोगों ने, डिवाइन स्पेशल रखे जहाँ पर अभी हम लोग जाते हैं, और भैया लोग जो
1: उन्होंने आपको गाइड किया। वेरी गुड, चलिए प्रिपरेशन करिए अच्छे से। और आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी मतलब कौन सी हॉबी है आपकी?
4: ड्राइंग बनाना।
1: आपको भी ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? क्या बनाते हो?
4: ऐसे कुछ भी, देख के।
1: कार्टून बनाते हो, सीनरी बनाते हो, क्या बनाते हो?
4: कार्टून, सीनरी, सब
1: सब कुछ बनाते हो, ठीक है। और पढ़ाई में सबसे अच्छा क्या लगता है?
4: हिंदी।
1: हिंदी, ओके। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके?
4: आर्टिस्ट।
1: आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मतलब आप पेंटिंग करना चाहते हो, ड्राइंग करना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों की जरूरत है हर फील्ड में। अच्छा, आप लोग कोई गाना गाते हो या कोई पोएट्री आपको या कोई कविता अच्छी लगती है आपको? कोई ऐसी पढ़ी हो आपने कभी क्लास में या कोई गाना अच्छा लगता है जो गुनगुनाते हो, है कोई ऐसा जो आपको याद आ रहा हो?
5: एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है,

आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है ना, सबको अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा, सब लोग अपना सर हिला रहे हैं धीरे धीरे ताकि माइक में डिस्टर्बेंस नहीं हो, है ना? अच्छा ठीक है, आपको कोई पोएट्री याद है, कुछ सुनाना चाहते हो आप? सुना दीजिए।

0: गुड, बहुत बहुत प्यारा और बहुत भावना से गाया तुमने. थैंक यू सो मच. शांति, का नाम क्या है?
1: मेरा नाम विजया है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ.
0: विजया, ओके. आप?
2: मेरा नाम मनुष्य कैसे है, मैं क्लास 2 में पढ़ती
0: हूँ. मनुष्य, ओके, 2 में पढ़ते हैं. तो मनुष्य, आपको क्या अच्छा लगता है करना? सबसे ज्यादा मजा क्या आता है करने में? खेलने में मजा आता है कि पढ़ने में मजा आता है?
2: पढ़ने.
0: पढ़ने में मजा आता है आपको? सच्ची में क्या पढ़ना अच्छा लगता है? मैथ अच्छा लगता है. मैथ टफ नहीं लगता है, सब प्लस माइनस करना पड़ता है. अच्छा लगता है, मजा आता है. ओके, और आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: सब्जेक्ट.
0: हाँ, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है?
1: इकोनॉमिक्स.
0: इकोनॉमिक्स, वंडरफुल. और क्या करना अच्छा लगता है? हॉबीज क्या है आपकी?
1: स्पोर्ट्स.
0: स्पोर्ट्स, क्या खेलते हो आप?
1: कबड्डी.
0: क्या बात है, वेरी गुड. और क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके?
1: इंडियन आर्मी.
0: इंडियन आर्मी में जाना है? वेरी गुड. आप लोग के एम तो बहुत अच्छे हैं. आप क्या करना चाहते हो निशी? बड़े होके क्या बनोगे?
2: इंडियन आर्मी.
0: इंडियन आर्मी में जाओगे? वेरी गुड. चलो, अच्छी बात है. देश के लिए सेवा करना चाहते हो आप, देश के लिए कुछ करना चाहते हो. अच्छा, आपको कोई पोयम याद है मनुष्य? कुछ याद है आपको स्कूल में? कौन सी वाली?
2: लाला जी ने की.
0: सुना दीजिए.
2: लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया.
0: मुँह पिचका के क्या किया?
2: कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलकाया, लाला जी के पड़े धरा, मुँह से निकला हायरा.
0: ओके, आपको गाना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, सिर्फ पोयम अच्छी लगती है. ओके, और मैंने आपको?
1: हमको पोयम.
0: पोयम अच्छी लगती है. तो कोई याद है आपको, कोई कविता आपने पढ़ी हो स्कूल में? कौन सी?
1: क्लास 8 में पढ़े थे. पेड़ों पे है.
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, सुना दीजिए.
1: पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग जाना, पेड़ों के संग हिलना. बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं. खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोली, ताजी हवा जलाशय में अपना हरंग बिनोली. हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो. हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही. तो विनती है यही हमारी, तुम ना इस दुनिया को खोना, पेड़ों को ना कटने देना, ना पंछियों को रोना. ओम शांति.
0: बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने, क्योंकि हम आज बहुत सारे डेज मनाते हैं ना, एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे. तो अगर हम सच में पेड़ नहीं लगाते तो फिर, या सच में हम पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी हम सोशल मीडिया पे ऐसे फोटो डाल देते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं होता, है ना? अच्छा मानुषी, आप भी बताओ, आप क्या करते हो जब आप डिवाइन संस्कार शाला में जाते हो? क्या करते हो वहाँ पे? पढ़ते हो कि बैठते हो, सबकी बातें सुनते हो? क्या करते हो?
2: पढ़ते.
0: पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? मैथ्स. और यहाँ क्या किया? कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया आपने? कौन से? डांस किया. अरे वाह. किसने सिखाया डांस आपको? आपने खुद सीखा कि किसने सिखाया था?
2: प्रीति ने.
0: ओके, चलो ठीक है, प्रीति को थैंक यू बोल देते हैं फिर हम. मजा आया आपको यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का, एंड ऑल द बेस्ट. अच्छे से मैथ्स पढ़ना, अच्छे से इकोनॉमिक्स.
1: थैंक यू.
0: और अब दोस्तों, बच्चों से तो आपने बात की ही, लेकिन एक और प्यारा सा गाना तो बनता है जो उन बच्चों ने मिल के तैयार किया है. सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. हमारे साथ बने रहिएगा.

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। तो आइए इन बच्चों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना।

0: तो दोस्तों, आपने बच्चों से बात की, डिवाइन संस्कार शाला में ये सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ संस्कारों का जो फाउंडेशन है वो भी उनके जीवन में पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, हमारे साथ यश जी और हर्ष भी जुड़े हुए हैं और आइए उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से एनजीओ चला रहे हैं। जो माता पिता हैं, जो स्कूल में टीचर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस कई चैलेंजेस वो लोग भी फेस करते हैं। कई लोग बच्चों के साथ कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं बट नहीं भी कर पाते हैं, तो अपने अनुभव से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
1: हमको तो ये लगता है कि भले ही छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ हो तब हम कुछ करें, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो जाए या फिर और भी कई सारे संसाधन होते हैं। आदमी को लगता है कि हमें ये चीज मिल जाए फिर हम उस लेवल पे करें, और अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो उसमें भी आप उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई लोगों का ये भी थोड़ा मानसिकता रहती है कि उनको रहता है कि हम अपना जब स्टार्ट करें तो उसमें करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें चल रही है तो आपको वहां पे भी सपोर्ट करना चाहिए, कि अंदर से होना चाहिए। और स्टार्टअप हर जगह, ये ऐसी चीज तो हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हर जगह हैं, बस के बच्चे हर जगह होते हैं, तो ये इनिशिएटिव सबको लेके चलना चाहिए।
0: मतलब ऐसा नहीं कि हम वेट करें कि इतना अमाउंट हम कमा लेंगे या इतना कुछ आ जाएगा या कोई हमें सपोर्ट करेगा तब हम कुछ करेंगे।
1: एज वाइज भी, जैसे कि लोग सोचते हैं कि अभी हम अपने ही घर का देख लें, जैसे लोगों को रहता है कि हमारे दो बच्चे हैं, उनको अब इनको भी अपना बच्चा समझ के उनके लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज उन अपने दो बच्चों के लिए लोग पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरे पैसे लगा देते हैं, और उसकी भी गारंटी नहीं कि आगे चल के वो आपका मतलब सहारा बनेंगे कि नहीं, और आगे चल के वो उतना आपके मतलब की माइंडसेट से चलेंगे कि नहीं, क्योंकि आज के समय में तो बहुत कमी देखा जाता है। पर आप इनके करेंगे तो ये तो आपके मतलब जैसे होते हैं ना कर्जदार, कि आप जिंदगी भर आप कराएंगे कि नहीं कुछ करना।
0: बिल्कुल, और आपको बहुत प्यार भी मिलता है उनसे।
1: और यही लोग आगे चल के क्या कहते हैं कि बड़े बड़े फील्ड्स में आप देखते हैं, हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, हम और भी जैसे म्यूजिशियंस होते हैं या फिर स्टार्स होते हैं, वो कोई कोई बड़े घर से नहीं आते, ऐसी जगह से लोग आते हैं उठ के निकल के, तो उनको भी कभी ना कभी किसी ने सपोर्ट किया है।

0: तो अगर आगे भी अगर वैसे लोग चाहते तो किसी न किसी को सपोर्ट करने से ही कोई आगे बढ़े।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे पास अगर भगवान ने दिया है तो ये सोच के दिया होगा कि आगे चल के हमको किसी को करने से।
1: बिल्कुल। अगर हमें मिला है तो हम दूसरों को बांटे और वो ब्रिज शायद हम में से कोई भी बन सकता है जो बच्चों को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत सुंदर बात है आपकी हर्ष। आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: हम लोग जैसे 6 साल से सेवा कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, तुम्हें ये बनना है, तुम हम नहीं बन पाए तो तुम्हें हमारी ड्रीम्स को पूरा करना है। जबकि जो बच्चों को बेसिक चाहिए, उनको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, उनको खुशी चाहिए, वो चीजें न देके हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए वर्क करें क्योंकि हमने इनको जन्म दिया है। मगर अगर हम उनको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं तो वो हमारी सोच से भी ज्यादा करेंगे और हमारा नाम भी रोशन करेंगे, देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसलिए हमें बच्चों को किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए क्योंकि मार्कशीट तो एक समय के बाद कोई पूछता भी नहीं कि आपने कितने नंबर पाए। आपका व्यवहार देखा जाता है, आपकी सोच देखी जाती है। और देखा गया कि बहुत सारे लोग बहुत गरीबी से निकल निकल के और बहुत ऊंचे ऊंचे पायदान तक, जैसे अब्राहम लिंकन है या बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसमें कोई मैटर नहीं होता कि कोई बड़े घर के लोग ही ये कर सकते हैं, कोई किसी भी एज में और किसी भी अवस्था में ये कार्य कर सकता है। और इस कार्य में भगवान की बहुत मदद मिलती है।
1: ये आपने फील किया?
2: हाँ, क्योंकि तो अगर आप ये काम उसका है, ये आपका काम नहीं है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपका पर्सनल काम है, तो उसमें सारी मेहनत आपकी है। और जब आप समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं और बच्चों के लिए करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान का रूप है, तो भगवान अपने बच्चों के लिए कराने के लिए आपको मदद भी करते हैं, तो आपको किसी भी चीज की कहीं भी कोई हर्डल्स नहीं आते, कोई कमी भी नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल। और हम देखते हैं, मतलब जब हम किसी सोशल वर्कर से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर या उनकी भावनाओं में बहुत स्ट्रांग होते हैं, या कई बार हम उनको देखते हैं कि वो इतनी आसानी से विचलित हैं। आज हम देख रहे हैं कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, कितनी बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, और जब हम देते हैं तो शायद वो हमें पहले मिलता है, तो उसकी खुशी अलग है। बहुत सुंदर बात आप दोनों ने कही और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी प्रेरणा मिली होगी। कहीं से वो लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, एक और कदम और आगे बढ़ाएं, कुछ और किसी के लिए करें और मिलकर इस सफर को बढ़ाते रहें, यूं ही चलाते रहें। तो दोस्तों, फिलहाल इस कार्यक्रम का सफर तो यहीं तक था, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते भी इसी समय रविवार को, यानी रात 8 बजे। और अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए रेडियो मधुबन के नंबर, जो कि है 9414151415। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: दोस्तों, जब एक परिवार शुरू करने की बात होती है तो माता पिता दोनों की आंखों में कई आशाएं होती हैं। हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा घर ऐसा होगा, बच्चे का फ्यूचर भी वो देख चुके होते हैं। क्या होता होगा उस परिवार के साथ जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा जो है मानसिक रूप से असंतुलित है? क्या होता होगा उस परिवार को या उनके सपनों को जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो सपना है वो पूरी तरीके से अब अलग है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो कई तरीके से मानसिक रूप से कई ऐसे अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा है जिसका समाधान माता पिता के पास नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आता है जो अपनी उदारता से, अपनी दृढ़ता से और अपनी समझ से उनके जीवन की इस परेशानी को कम करने में या उसका सामना करने में उस माता पिता को मदद करता है। और इस मदद के दौरान सबसे बड़ा मदद का जो भागीदार होता है वो बच्चा होता है, जिसे खुद को नहीं समझ कि वो किन चीजों से गुजर रहा है या उसके जीवन में क्या हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ आज हमारी मुलाकात होने जा रही है। स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में, जहां हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव से, सिकंदराबाद के बहुत ही प्रतापी हॉस्पिटल, स्वीकार हॉस्पिटल ही नहीं, एक स्कूल भी है, एक इंस्टीट्यूट भी है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वास का एक यज्ञ है, जहाँ कई ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाता है, उनके माता पिताओं का काउंसलिंग किया जाता है। और अपने इस समाज सेवी प्रयत्न की वजह से डॉक्टर पी हनुमंत राव जी को भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव जी का। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना टाइम शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स।
1: मुझे भी बहुत खुशी है। मैं बहुत मेरे शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: अक्सर ये ऐसा होता है डॉक्टर हनुमान जी, दैट हम सोचते हैं कि हमारा दिन कैसे शुरू होगा, कैसे जाएगा, कैसे होने वाला है, बट मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मुझे और हमारे श्रोता साथियों को इस बात का यकीन जरूर होता है कि रेडियो मधुबन जैसे ही हम खोलते हैं, दिन की शुरुआत तो अच्छी होती ही है, लेकिन दिन भर में भी जो कार्यक्रम रेडियो मधुबन प्रस्तुत करता है उसके जरिए दिन हमारा बेहतर से बेहतर बनने लगता है। और जब कार्यक्रम यशस्वी भारत का हो, जिसमें हम भारत के यशस्वी पुत्र आप जैसे डॉक्टर पी हनुमंत राव जी से मिलते हैं, तो हमारा दिन बेहद खुशनुमा हो जाता है। जैसे कि आपकी कहानी में आता है कि आपने भारत के सैकड़ों ऐसे बच्चों का जीवन सुधारा है जिनके लिए लोगों ने उम्मीद या आस छोड़ दी थी, और तब जबकि उनके खुद के परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी, तब आपने उनका हाथ थामा और उनको एक ऐसे जीवन की दिशा दी, जीवन को जी करके न केवल वो लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम की या ऐसे सेवा की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे, इसलिए हम शुरू करना चाहते हैं आपकी कहानी आपकी जुबानी।
1: मेरा पैदाइशी तो ओल्ड सिटी में हुआ, हैदराबाद में, चार मीनार से एक 3-4 किलोमीटर। पूरे डॉक्टर्स के परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे फादर, मेरे अंकल पूरे आरएमपीएच थे। वो जमाने में एमबीबीएस बहुत कम लोग थे, पूरे आरएमपीएच थे और बहुत पॉपुलर थे, बहुत नाम था। वो जमाने में डॉक्टर्स ही कम थे, तो हमारा एक 40 रूम्स का नर्सिंग होम था। जब हमारा जॉइंट फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, मैं मेडिसिन में ज्वाइन हुआ, सेकेंड ईयर में ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत तकलीफों के सामना करना पड़ा। पूरे हमारे अंकल सब सेपरेट हो गए, तो बहुत आर्थिक तकलीफों में शुमार हो गया। एक मरतबा मेडिकल कॉलेज से निकाले गया, दो मरतबा हॉस्टल से निकाले गया, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहने से। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं आई एम ए कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोडक्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। तो मैं सोचा भी नहीं था मेडिसिन कंप्लीट करता हूँ। मैं वारंगल में मेडिसिन कंप्लीट करके काकतीय मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद आया, गांधी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हुआ। वहाँ के सुपरिटेंडेंट बोले, भाई मैं हॉस्पिटल वो हॉस्टल के लिए पूछा, हाउस सर्जन हॉस्टल, नहीं, तुम हैदराबाद के ना, हॉस्टल क्यों? मैं बोला, नहीं सर, मैं वारंगल का हूँ, हॉस्टल चाहिए। तो फिर बाद में मैं ओल्ड सिटी गया नहीं, मेरे मेडिसिन में जब ज्वाइन हुआ ओल्ड सिटी नहीं गया, इधर ही मैं सिकंदराबाद में सेटअप हो गया, मेरा हाउस जॉब हो गया, सीनियर हाउस जॉब हो गया, मेरे फादर को ओल्ड सिटी से सिकंदराबाद लाया। मेरे फादर बोले नहीं गवर्नमेंट जॉब आया, तुम्हारा कॉल आया, चले जाओ। मैं बोला गवर्नमेंट जॉब अभी करना नहीं है मेरे को, मेरे को आगे पढ़ना है। नहीं नहीं मैं तो पढ़ा नहीं सकता, मैं घर भी चला नहीं सकता। तो मैं पूछा भाई घर चलाने कितना पैसा चाहिए? 600 रुपये। ठीक है मैं वो दे दूंगा, मेरे को आप डिस्टर्ब मत करो। तो वो लोगों को सिकंदराबाद लाया, मगर माँ नहीं ठहरा, मैं हॉस्टल में ही ठहरा, गांधी हॉस्टल में। तो मेरा स्टाइपेंड जो आता था पूरा 600 वो लोगों को देता था। हम चार बहन है, चार भाई हैं, हम लोग टोटल 10 मेंबर्स का फैमिली है। तो मैं हाउस सर्जन से ही प्रैक्टिस शुरू करा था, बिकॉज आई एम बॉर्न इन ए जॉइंट फैमिली। मैं जब से ही डॉक्टरी करता था, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना, मिक्सर वे बनाना। तो इमिडिएटली मैं जैसा औरंगल से आया और जब शुरू करा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी शुरू करा। तो थोड़ा कुछ जो भी कमाता था मेरा लिविंग चलता था, मेरा स्टाइपेंड फैमिली को देता था। वैसा मैं MD पीडियाट्रिक्स में ज्वाइन हुआ। हालांकि पीडियाट्रिक्स मेरा इंटरेस्ट नहीं था, MD जनरल मेडिसिन था, मगर उसमें डक ले गया, मेरा सीट और कोई दिए। उस जमाने में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था जो मनमाने करते थे, तो मेरा सीट और एक इन्फ्लुएंशियल आदमी लिया। मैं 3 महीने तक रेगुलर नहीं गया, मेरे को पीडियाट्रिक्स इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जनरल मेडिसिन जाना है। बाद में मेरे सीनियर लोग एडवाइस करे, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने, नहीं तुम लड़े तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाता, तुम्हारे को फेल कर देंगे, तुम तो जो मिला हो ईश्वर की कृपा समझो, चैन हो जाओ। तो फिर मैं कॉन्सेंट्रेट करके MD पीडियाट्रिक्स कर लिया। सोचा मेरे फादर और ये लोग जो है RMP रह के इतना सेवा करे, सर्दी खांसी बुखार ये रूटीन एलिमेंट्स को देखते थे। मैं MD पीडियाट्रिक्स करा, मैं भी वही काम करूंगा, ये पीडियाट्रिक्स होने के बाद कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करा, बॉम्बे गया, मेरा प्रैक्टिस को और एक दोस्त को बिठा के बॉम्बे गया। बॉम्बे में एक 4 महीने PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन, जब भी वो 3-4 साल के नीचे खुला था, वहाँ मैं एक ही डॉक्टर था, दूसरे पूरे फिजियोथेरेपिस्ट थे, दूसरे दूसरे स्पेशलिटी वाले थे, सब लोग थोड़ा एक अलग ही नज़र से देख रहे थे, अरे इतना बड़ा उन्होंने क्वालिफिकेशन रह के कोर्स ज्वाइन करा इन्हों, पूरा पैरामेडिकल के थे बहुत से। तो मैं इसलिए ज्वाइन हुआ कि मेरे को दूसरा नॉलेज भी है, रिहैबिलिटेशन क्या चीज़ है, कैसा करना है, वो ध्यान से मैं वो मिशन से मैं वहाँ ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन गया। वहाँ के डायरेक्टर को इनवाइट करके मेरा पार्ट ऑफ मैं क्लिनिक में स्टार्ट करा एज ए हैदराबाद स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। वो नाम तो सबको समझ में नहीं आया, व्हाट इज स्पेशल स्कूल, जमाने में स्पेशल एजुकेशन बोले तो भी मालूम नहीं था, स्पेशल स्कूल मालूम नहीं था। लोग मेरे को आगे डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को एडमिशन दो, अरे मैं बोला ये ऐसा नहीं भाई, ये स्पेशल बच्चों के वास्ते है, ये ऐसा नॉर्मल बच्चों के वास्ते नहीं। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरे प्रैक्टिस में एक शॉप लिया और एक शॉप लिया और एक शॉप लिया, 4 शॉप्स पीछे जो है, और दो घरा भी ब्लॉक्स ले लिया था किराए को। बाद में सोचा ये मेंटली ट्राइड एक ही नहीं है, डिप बच्चों को भी मैं अपनी सेवा जरूरत है बोल के डिप स्कूल स्टार्ट करा, पोलों को हॉस्टल भी स्टार्ट करा। और बहुत भीड़ बढ़ने लगा तो मैं सोचा गवर्नमेंट को अपील करेंगे। मेरे एक नेबर थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर मिस्टर DK रेड्डी, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर, उन्होंने मेरे को गाइड करा, डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हैं, आप डिफेंस का जमीन के वास्ते अपील करो। तो उन्होंने बहुत सहायता करे, डिफेंस का लैंड 1 एकड़ लैंड सिकंदराबाद में जुबली बस स्टेशन के सामने, वो जब तो वैल्यू नहीं था, अभी बहुत बड़ा वैल्यू है उसका, सबकी नज़र अपने ऊपर ही है। और अब उस तरीके से अपन बहुत लोगों की ईर्ष्या के शिकार हुए, मगर सबका सामना करा, ईश्वर की कृपा है कि अपने को गिराया नहीं। तो आगे बढ़ते गया। एक मरतबा हमारे CM डॉक्टर YSR रेड्डी को बुलाया था, हम एक बिल्डिंग 5 माले का 5-स्टोरी बिल्डिंग को मैं अग्रीमेंट करा एक दोस्त से। अरे भाई वो दोस्त पंडित राव बोल के थे, उन्होंने भाई इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया 2 साल से खाली रखे, मेरे को दे दो। तो इतना पैसा आप कहाँ से दे सकते डॉक्टर साहब? मैं बोला भाई एवरी मंथ देऊंगा मैं थोड़ा। तो अग्रीमेंट करे हम, वहाँ पर जो है ड्रग रिएक्शन स्टार्ट करा, ये नशीली दवाओं के शिकार होकर बहुत से लोग तकलीफ उठा रहे थे। जहाँ जहाँ मेरे का दिल को तकलीफ हुआ, ये काम करना है या कुछ करना है, ये किसी का दुख बांटना है, तो वहाँ ड्रग रिएक्शन चलाया, डेप स्कूल यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, मेंटली रिटायर्ड स्कूल भी शिफ्ट कर दिया, हॉस्टल शिफ्ट करा वहाँ पर। और होम फॉर द एजेड भी बनाया वहीं से, तो बहुत से काफी बिल्डिंग था, 5 स्टोरी बिल्डिंग था, 45 फ्लैट्स थे उसमें, काफी एक 15-20 साल चलाया वहाँ। चलाने के एक 10 साल के बाद जब मैं पूरा पैसा पे कर दिया, जब चीफ मिनिस्टर को बुलाया तो डॉक्टर साहब तो 10 साल से बिल्डिंग में ऑक्यूपाई करा हुआ है, आज हमारे से इनॉग्रेट कर रहे हैं। मेरा साहब अभी तक हम ओनर नहीं थे, अभी स्वीकार इज ओनर, उस वजह से आपसे डेडिकेशन कराया। तो बहुत दोनों खुश हो के क्या करा, नहीं, ये सब कुछ जाने दो, मैं आपसे बात करना है। तो मेरे बाजू बिठा के बात करा, ऐसा सेंटर आप कड़प्पा में खोलो। तो कड़प्पा में अपने को जमाने में 40 साल के नीचे मेरे को अलग ही इंप्रेशन था, लोग मार लेते, मर्डर कर लेते, सब बहुत फैक्शनिस्ट। वो मैं बोला मैं नहीं आता था, बोला तो ये परस्यूट, देन मेरे मेरे में भी कुछ लालचीपना हुआ, अरे ये आदमी को तो अपन यूज कर रहे थे और आगे इंस्टीट्यूशन को ले जा सकते, उससे मैं क्या करे, ठीक है चलाएंगे। तो कड़प्पा में जाके एक सेंटर ओपन करा, उन्होंने पहले तो जगह नहीं दिया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट करा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस चार्ज नहीं कर सकता, फ्री रहता, 2 फ्लोर्स मेरे को दे दिया। तो मैं, 2 कंपोनेंट्स थे मेरे स्वीकार एक्टिविटी में, स्वीकार एक्टिविटी में सेवा, एक जो है सर्विस है विकलांग को, हर तरीके के विकलांग को सेवा देना है। मेरा मोटो ये था, रिहैबिलिटेशन फ्रॉम टूम टू टूम, फायदा हुए से जब से उन्होंने, जब टूम में जाता है, ग्रेवयार्ड को जब जाता है, तो कितने भी कहीं भी हर किस्म का रिहैबिलिटेशन, दैट इज द नेम आई कॉल इट स्वीकार। बोले तो ये लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रहना अपने पास, दिल रहना चाहिए। तो स्वीकार के बाद उपकार बोल के लगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो सेवा करना है। उसके बाद क्या है, आश्रय, उसको आश्रय देना, नहीं तो बिगड़ जाए आदमी, ही विल बी लॉस्ट। आश्रय के बाद सुरक्षा देना है। तो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन आई मेड इज अ सुरक्षा, स्वीकार, उपकार, आश्रय, सुरक्षा, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करा। ये सब मेरे जो सर्विस यूनिट्स थे सब 4 ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया, तो के इजी मैनेजमेंट के लिए। अभी मेरा डायनेमिज्म मेरा एनिमी हुआ, जैसा मैं कड़पा गया, पूरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मेरा था, ऑपरेशनल कॉस्ट मेरा था। अब सीएम साहब पैसे दे तुम बोले, उन्होंने बहुत बिजी हो गए थे सेकंड टाइम इलेक्शन में, तो पैसे उधर से नहीं आए। मगर एक 5 साल के बाद जमीन दिया हूँ, 10 एकड़ का जमीन दिया हूँ, वो बहुत वैल्यू चीज है, मगर उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, मैं बेच नहीं सकता, और कुछ कमर्शियली नहीं कर सकता। तो वो भी क्या करा, मैं बोला साहब ये फ्री फ्री दे दो, बोले सीएम, मैं बोला नको साहब, कुछ नॉमिनल चार्ज करो, आप कोई यार एनजीओ को दे देना, ये चार्ज 1 रुपया और 5 रुपये, आप कितना चार्ज करो, मैं बोला 50,000 पर एकड़ लगाओ सब। बोला नहीं, यहाँ तो 1 करोड़ पर एकड़ है ना डॉक्टर साहब, सब 1 करोड़ है तो मैं तो प्लॉटिंग वोटिंग करके तो नहीं बेच सकता, मैं हैदराबाद भी नहीं ले जा सकता। तो इनिशन को आगे आपके बाद मेरे बाद कोई भी चलाएगा। तो फाउंडेशन स्टोन उन्हीं से कराया, उससे पहला क्या करा, वो सर्विस यूनिट अपने शिंदे साहब गवर्नर थे, वो नया गवर्नमेंट प्रोविंसी में गवर्नर साहब से इनॉग्रेट कराया, सर्विस यूनिट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्वीकार, स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड। उसके 3 महीने के बाद सीएम साहब से और एक इनॉग्रेशन कराया, डॉक्टर साहब ये क्या 3 महीने नीचे कराया, गवर्नर जी को बुला के अभी मेरे से करा रहे हैं साहब, आप जो है ट्रेनिंग कॉलेज को इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक डॉक्टर हनुमंतराव कितने लोगों को सर्विस देगा, एक कहावत है, इफ यू गिव ए फिश इन चैरिटी यू विल ईट इन द मॉर्निंग शिट इन द इवनिंग, इफ यू टीच ए पर्सन फिशिंग ही विल कैच फिश फॉर हिमसेल्फ फॉर द फैमिली फॉर द सोसाइटी लाइफ लॉन्ग एंड ही विल टीच 100 पीपल फिशिंग। तो विद्या दान इज द ग्रेटेस्ट दान द अन्नदान। नो बहुत से स्वामी जी भी अग्री करते ये जमाने में, तो विद्यादान बहुत बड़ी महत्व है, क्यों बोल तो खाना फ्री खिलाए तो हर एक आदमी बैठ जाता है उसमें। वो एक कहावत है, इंडिया हैज इनफ फॉर द नीडी नॉट फॉर द ग्रीडी, देयर इज अ शॉर्टेज बिकॉज ऑफ मोर ग्रीडी पीपल आर देयर। मैं इतने मरता हुआ देखा, मैं 2 दिन जगह फेल हुआ, मैं सोचा सोसाइटी सामने आएगा एक हेल्पिंग हैंड देते समझा, मगर चलो डिसअपॉइंट हो गया मैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो और क्या कह रहा, मेरा डायनेमिज्म से कोस्टल आंध्र से बहुत से लोग आ रहे थे, मैं बोला भाई वहाँ एक सेंटर खोलेंगे, गुंडर में जाके खोल दिया सेंटर। और मेरे वाइफ का नेटिव प्लेस तांडूर बोल के है, विकाराबाद के करीब है, वो एक 250 किलोमीटर है। तो वहां जाके खोला, एक 5 एकड़ जमीन खरीदा स्वीकार के नाम पे मेरा पैसे से। तो अच्छा बिल्डिंग बनाया 1-2 करोड़ से, वहां भी स्टार्ट करा, वहां भी CM स्टार्ट करे। और गुंटूर का जो है वहां के कलेक्टर और वाइस चांसलर इनॉग्रेट करे। तो तीनों सेंटर्स को चलाते गया। मैं CM साहब को पैसा पूछा, दे दो बोले, और उन्होंने देहांत हो गए, यही पास देवे। देन मेरा मिशन में बहुत बड़ा रुकावट शुरू हो गया, मगर मैं रोका नहीं, मैं बोला ये मिशन तो चालू रखना है। तो अभी बैंक लोन्स लेना शुरू करा, कड़प्पा में बैंक लोन लेके, तांडूर में बैंक लोन लेके बिल्डिंग बनाया, कड़प्पा में जमीन दिए तलक भी CM साहब थे, मगर बाद में बिल्डिंग मैं बनाया मेरे पैसे से, 1-2 फ्लोर्स का बिल्डिंग, 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाया। यहाँ भी 5,000 स्क्वायर फीट तांडूर में बनाया, मगर गुंडर में बिल्डिंग ओन बिल्डिंग नहीं बनाया, किराए का बिल्डिंग मेरा एक दोस्त का नर्सिंग होम क्लोज हो गया तो वो लिया, 25,000 रेंट पर मंथ देता था, वो भी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट था, उन्हें भी काफी सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट दिया। अब हर जगह सब मेरे दोस्तों बोले अरे बंद कर दो तुम, पूरा फाइनेंशियली क्या कर रहे तुम, मुश्किल हो जाता, बंद कर दो। मैं बोला नहीं नहीं, कहीं ना कहीं से हेल्प आएगा, ये तो आई हैव डन ऑलवेज, आई हैड अ फेथ, आई हैव डन गॉड्स वर्क, आई नीड नॉट लुक आउट, ही विल टेक केयर। वो मेरा बहुत बड़ा जिद था, वो मेरा फेथ था। हलो हलो 25 करोड़ लोन कर दिया मैं, और कौन सा भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं था। अभी लोन से ज्यादा लोग प्रेशर करना शुरू करे, प्रॉपर्टीज में बहुत बनाया था स्वीकार के नाम पे। मेरा दोस्त में बोलते थे क्या तुम रियल एस्टेट कर रहे क्या, मैं बोला ये मैं तो स्वीकार के वास्ते खरीदा पैसा पूरा प्रॉपर्टीज। तो 32 एकर्स लैंड था स्वीकार, हैदराबाद से 30 एकर्स के डिस्टेंस में, 32 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे 32 एकर्स जमीन लेके वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रूरल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मेंटली चैलेंज्ड। पूरे आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से भी आते थे लोग, बड़े बच्चे। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द मेंटली चैलेंज वो भी चलाया, काफी साल चलाया, ऐसे 25 साल से ज्यादा चलाया। मगर जैसा मैं आगे बढ़ते गया तो आई स्टार्टेड सिंकिंग। अब मैं एक सर्विसेज पे नहीं रुका, और एक मिस्टेक नहीं, आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स बट आई डोंट थिंक अगेन इट इज नॉट अ मिस्टेक। हु एम आई टू डू, ही मेड मी डू, आई हैव डन, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। तो खाली सर्विस करे तो क्या फायदा बोल के टीचिंग शुरू करा, डिप्लोमा से शुरू करके 1-2-3 डिप्लोमा, डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयर्ड, जो पढ़ते वो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग देते, मेंटली डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं नॉर्मल लोग, वो मंद बुद्धि बच्चों की सेवा करते ट्रेनिंग देते। वैसी दिन साइकोलॉजी, अब इतने लोगों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सुइसाइड, मर्डर, स्टैबिंग, स्कूल ड्रॉप आउट, बच्चे मिसबिहेवियर, और ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते थे, अल्कोहलिस्ट हो जाते थे। मैं बोला ये सब दवाएं रोकना है, ये सब रोकना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ स्टार्ट कर, दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन प्राइवेट इन आंध्र एंड तेलंगाना। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था एर्रागड्डा, दैट इज बहुत पुराना है, वो ब्रिटिश टाइम से था। मैं प्राइवेट में स्टार्ट करा तो मैं एक ही था, और रूरल में वहाँ भी लगाया। वहाँ लगाने के बाद क्या है, मेंटली इल लोग थे, मेंटली हैंडीकैप थे, तो एक आदमी बॉडी में गिर के सुइसाइड कर लिया, तो उन्हें नोट लिखा, नहीं डॉक्टर इज वेरी काइंड, दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर अस वेरी वेल, ही क्रिएटेड शेल्टर फॉर अस, वैसा ऐसा अच्छा ही लिखा, अच्छा लिख के मर गया। तो मेरे को वहाँ से अब जब सेलफोन नहीं था, मैसेज आया ऐसा ऐसा एक आदमी मर गया, अरे मैं बोला निकाल दो आदमी को अंदर से, बोल से निकालो। वो एक्सीडेंटली मेरे साथ एक इंस्पेक्टर था, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं निकालना पड़ता, अब पंचनामा कराओ, आप इंस्ट्रक्शन बराबर दो वो लोगों को, पुलिस को बुला बोलो, गाँव वालों को बुला बोलो, पंचनामा करके जब भी बॉडी निकालना है। सो इट वॉज ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। सो वो जमीन था, बहुत साल वहाँ भी चला। अब कोर्सेज बढ़ाते गया, डिप्लोमा से डिग्री, डिग्री में से पीजी, पीजी में से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी स्टार्ट करा। ये कोर्सेज स्टार्ट करने में अपने वाइस रेड्डी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों बोले तो मेरे को कौन सुनता था, यूनिवर्सिटी वाला कोई नहीं सुनता, आई एम ए नॉन एंटिटी। तो उन्होंने सेक्रेटरी बुलाया, डॉक्टर साहब जो भी सपोर्ट होना, बोलते दे दो डॉक्टर हनुमंतराव को, कोई चीज रुकना नहीं है। तो मैं कोर्सेज स्टार्ट करा, यूनिवर्सिटी वाले रिफ्यूज करते थे, क्यों भाई हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, आप कोर्स कैसे स्टार्ट करते, हमारे पास स्पेशलिस्ट ही नहीं है। बोला भाई हम स्पेशलिस्ट देगा, ऑल ओवर द कंट्री से स्पेशलिस्ट को आपके बोर्ड में रखेगा, दे विल मॉनिटर दिस। तो ऐसा कोर्सेज का परमिशन तो मिला उनका। स्वर्गवासी होने के बाद हम बहुत उलझन में फंस गए, अब लड़ाई लड़ते गए, बहुत से प्रॉपर्टीज बेच दिया, गुंडूर का क्लोज डाउन कर दिया, तांडूर का क्लोज डाउन कर दिया, 17 ईयर चला है सब। आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग निर्माण वो भी क्लोज कर दिया, ओमफर दी एजर क्लोज कर दिया, बहुत से क्लोज करा। अभी थोड़े कोर्सेज चल रहे हैं स्वीकार में, सिकंदराबाद में, उसमें भी क्या बहुत से बाधाएं आ रहे हैं। ये जो इंस्पेक्शन को आते मेडिकल काउंसिल के, वैसा रिहैबिलिटेशन काउंसिल बोल के है, वो दिल्ली में है, उससे पहले ही मैं स्टार्ट कर रहा था ये सेंटर। रिहैबिलिटेशन काउंसिल जन्म नहीं हुए से पहले हम सोच रहे बिकॉज हमें चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कोई नहीं था सिकंदराबाद हैदराबाद में, मैं ही स्टार्ट कर रहा था। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज खोले, मैं खोलने के 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोले, मगर किसी में नजर में नहीं आए, लोगों का कोई ध्यान नहीं दिए, कोई सपोर्ट नहीं आया किसी भी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से आते थे, दैट वाज पिटेंस, ओनली फॉर स्कूल को आता था, मेंटली चैलेंज स्कूल को आता था, डिफ स्कूल को आता था, बाकी सब इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई डायनेमिज्म, आई क्रिएटेड प्रॉब्लम एंड माई डायनेमिज्म बिकेम माई एनिमी, बट आई सक्सीडेड। नाउ स्लोली आई हैव टू वाइंड अप। नाउ आई आज पीपल इन्वाइट करा, मैं बोला देखो भाई मेरे को कुछ मत दो, आप इसमें भागीदार बनो, अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नाम ले, मैनेज्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाम लिख लो। मैं तो अपना नाम कहीं नहीं लिखा हनुमंतराव बोल के, अपना कर्म निभाया हमने, हम कर दिया, पर जो भगवान हमसे करा हम कर दिया, नाम हमसे कोई, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो बहुत से कंपनी को बोला चेक पावर दो, कमिटी में ज्वाइन हो, मगर अभी तक तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, मगर लोग बहुत से थोड़े एक्सपर्ट करने को देते, हमारे कमेटी में मेंबर दो, तुम्हारे पास कमेटी मेंबर्स क्या सेवा करे, कुछ भी नहीं करे, खाली नाम दर्शन मूर्ति है। मैं बोला वो सब एक्शन मूर्ति है तो काम आगे नहीं बढ़ता।
0: लेकिन आपकी जो इस कहानी में मैंने एक चीज देखा कि देखने में लगता है कि ये तो कितना अच्छा काम है, ये तो मैं भी करना चाहूंगा, ये तो बहुत सुंदर सेवा है, मुझे भी करना चाहिए, ये भाव लोगों में जरूर आएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस सुंदर सेवा के पीछे कितना कठोर परिश्रम है, कितना मेहनत है, कितना चैलेंजेस है, और इन सभी परिस्थितियों को पार करने में एक व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए, तब जाकर के वो कुछ ऐसा कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन जब मैं आपकी कहानी को सुन रहा था तो मेरा ध्यान उस टाइम पे गया जब आपने बताया कि आपके परिवार में सभी चिकित्सक थे, सभी डॉक्टर थे, और इसलिए चिकित्सक बनना या डॉक्टर बनना जायज ही लग रहा था। लेकिन आपने ये भी बताया कि उस दौरान आपको बहुत मॉनेटरी सिचुएशंस आए, बहुत सारा आपके सामने ऐसा परिस्थिति आया जहाँ पर धन की वजह से आपको कॉलेज से निकाला गया या हॉस्टल से निकाला गया, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े हुए और अपने पढ़ाई की। बार बार ये जो गिरना और उठना चलता रहा, उसमें आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से गिरने के बावजूद भी आप खड़े हो जाते थे, या आपके अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप कभी झुके नहीं?
1: बस मैं ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ और कुछ नहीं है। अपन तो बिल्कुल स्मॉल है, वी आर वेरी स्मॉल, इट इज ऑल ही इज द पावर, इज द पावर विद इन अस। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नाम हनुमान है, बोला भाई ये तो शक्ति है
0: जी, जैसे बस... हनुमान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं था, वो उन्होंने पर्वत भी दिखा, ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने पर्वत हाथों में उठाया और संजीवनी बूटी एक लेने गए थे, पूरा पर्वत ले आए, तो ऐसे ही आप एक का भला करने निकले थे और आपने पूरे पर्वत समान लोगों, मतलब एक बहुत बड़े हिस्सा का आपने जीवन कल्याण किया है, बहुत बड़े समुदाय का जीवन कल्याण किया है। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जब आप बॉम्बे गए पढ़ने के लिए और आपके परिवार को आवश्यकता थी उस समय एक ऐसे व्यक्ति की जो कि कमा करके डायरेक्टली उनको सपोर्ट करे, बट उस समय आपने अपना बहुत बड़ा जो मोटो है या आपके जीवन का उद्देश्य है, आपने समाज सेवा भले चिकित्सा के द्वारा ही हो, लेकिन आपने उन बच्चों के प्रति अपना जीवन और अपना समय, अपनी शक्ति को लगा दिया जिनके प्रति लोगों का इतना भाव नहीं होता है। लोग उन लोगों से बहुत बेउम्मीद होते ही हैं, उनके परिवार वाले भी बेउम्मीद होते हैं कि ये तो मेंटली चैलेंज्ड हैं, मानसिक रूप से ये थोड़े से उतने परिपक्व नहीं हैं, आगे चल के क्या कर पाएंगे। तो परिवार वाले काफी दुखी होते हैं। ऐसे में आपने उनका हाथ थामा, आपके परिवार
1: मेरा
0: ने क्या साथ दिया आपका, या आपके परिवार वाले थोड़े
1: मेरा ये एक बड़ा यज्ञ है। मैं तो बोलता हूँ ये बड़ा यज्ञ है। यज्ञ में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मदद करे। अकेला यज्ञ एक आदमी नहीं करता है। एक यज्ञ जो है बहुत ग्रुप से बनाया जाता है। उसमें ज्यादा भागीदारी तो मेरे पत्नी है, डॉक्टर पशुपति निर्मला राव। तो बाद में मेरे बच्चे, मेरा पत्नी भी डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है। मैं बिफोर मैरिज इंटरव्यू करा, मैं शी कम्स बहुत बड़े फैमिली से भी आते उन्होंने, उनके दो ब्रदर्स मिनिस्टर थे। तो बहुत बड़ा योगदान मेरे बीवी का था कि वो तो मेरे ओन प्रॉपर्टीज भी बेचना पड़ा। बहुत से मरतबा मेरा ओन हाउस भी मैं हाइपोथिकेट करना पड़ा। परसों जनवरी में रिलीज करा, फिर अभी परसों मैं ज्यादा अभी सैलरीज नहीं दे सक रहा था, वैसे स्टेज में आ गया। तो क्या करा मैं, एक बैंक को ओवरड्राफ्ट देने के लिए, एक फ्रेंड जो है डॉक्टर राम करी बोल के है, उन्होंने एक बैंक से इन्फ्लुएंस डाल के, मैं भाई डॉक्टर साहब को मिनिमम 1 करोड़ ओवरड्राफ्ट दो, मेरे को सैलरी टाइम पे देने का है, मेरे को थोड़ा 1-6 महीने में संभाल लिया ना आगे आगे जा सकते। तो ओवरड्राफ्ट के फैसिलिटी करने के लिए फिर मेरा घर हाइपोथेकेट करना पड़ रहा, अभी वो प्रोसेस में है। तो कभी मेरे मिसेज, मेरे पत्नी जो है बीच में नया, ये मत करो वो मत करो, मैं जो भी करा उसके साथ दिए, वो लोग मेरे साथ भी तकलीफ उठाए। मेरे को दो डॉटर्स हैं, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वो जो है फैशन डिजाइनर है। मेरे सेकंड डॉटर जो है, तो बड़ी डॉटर का नाम ममता राव है, छोटी डॉटर का नाम नम्रता, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है वो भी। उसको भी मैं सुपर स्पेशलिटी कराया, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशन। ये बहुत डिमांड ब्रांचेस थे, नियोनेटोलॉजी वो है। मैं बोला नहीं, जो सोसाइटी में शॉर्टेज है उसको दो, तुम ज्यादा लोगों को सर्विस कर सकते। वैसे मेरे सन इन लॉ भी है, मेरे दामाद जी डॉक्टर आनंद प्रसाद, उन्होंने भी नियोनेटोलॉजी करना चाह रहा था, तो आई हैड टू बैप्टाइज हिम। बैप्टाइज करके न्यूरोलॉजी में शिफ्ट कराया। वो टाइम पे काउंसलिंग जरूरत रहता, गाइडेंस जरूरत रहता। और एक सज्जन, मैं सब लोग मेरे बहुत से दोस्त थे इंग्लैंड में, अमेरिका में, नए नए इंग्लैंड को अभी आना मुश्किल है वो ये बोले, तो मैं इंटरनेट में सर्च करके 6 इंडियन कंसल्टेंट को ढूंढ निकाला, न्यूरोलॉजिस्ट को। उसमें जो 3 लोग बहुत बड़ा इंटरेस्ट बताया उसमें, और एक केरला का आदमी बहुत इंटरेस्ट बताया, डॉक्टर साहब यू सेंड बैक योर सन इन लॉ, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड आई विल बी हैप्पी टू ट्रेन माई बॉयज बैक होम, इंडिया नीड्स। वो आदमी अभी अमेरिका में है, वो बहुत हेल्प करा हमारे सन इन लॉ को। विद इन 15 दिन में उन्होंने वीसा भेजा दिया, वो हम भेजा दिया, वहाँ जाके हॉस्टल में अकोमोडेशन दिया। यू हैव टू पे ओनली फॉर द हॉस्टल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द हॉस्पिटल। तो मेरा सन इन लॉ न्यूरोलॉजी बना के, वो न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैदराबाद में नहीं था।
0: इसका मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले भी कहा कि केवल आपका सामर्थ्य नहीं है, कई लोगों का योगदान है इस यज्ञ में, जिसमें आपका पूरा परिवार भी है सम्मिलित और आसपास के आपके दोस्त साथी सभी सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जब लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो केवल धन संपदा और वैभव ऐश्वर्य ये सब कैसे प्राप्त हो उसके लिए सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि समाज में अभी किस चीज की आवश्यकता है, समाज में किस चीज की नीड है, उस आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए मैं अपनी उच्च शिक्षा का समय लगाऊं। ये सोच जो है बच्चों में या युवाओं में डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो कि आपने किया अपने बच्चों में भी और अपने जैसे परिवार वालों के लिए आपने कहा, और इसके वजह से आज उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। लेकिन आपके साथ जब उच्च शिक्षा का समय आया, जब आप एमडी करना चाहते थे और आपको बच्चों के लिए उच्च शिक्षा करना, पीडियाट्रिशियन बनने का आपको भाग्य मिला, उस समय आप वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर मुझे पीडियाट्रिशियन नहीं बन करके अगर मैं जनरल फिजिशियन का एमडी कर लिया होता तो क्या आपका लाइफ डिफरेंट होता, और आप कुछ बदलना चाहते अगर आप बाय टाइम मशीन पहुंच जाए तो?
1: नहीं, इतना कर नहीं पाता था। ये बच्चों ने, एक बच्चे भगवान के स्वरूप है, ये दैव, स्वामी जी साई बाबा जी बोलते थे, दे आर दैव स्वरूपास। ये लोगों को कोई आशा नहीं रहता, ग्रीड नहीं रहता, नीड नहीं रहता। सो एनीथिंग विदाउट नीड एंड ग्रीड इज डिवाइन।
0: कि कोई भी चीज जो कि लोभ और आकांक्षाओं से जो परे है वो बहुत दिव्य होता है, और बच्चे जो है बड़े दैवी स्वरूप के होते हैं। इन
1: बिल्कुल
0: बच्चों की जब आप सेवा करते हैं तो ये स्पेशल बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं दूसरे बच्चों से, इनके प्रति समय और सामर्थ्य और व्यक्ति का जो उदारता है वो, उसका सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा चाहिए रेगुलर बच्चों से। कैसे कंपेंसेट कर पाते हैं आप समय को
1: नहीं,
0: या
1: बहुत
0: उस
1: से बहुत
0: एनर्जी
1: से
0: को?
1: बच्चे, वो मैं जब टाइम पे स्टार्ट करता था, मंदबुद्धि बच्चे बहुत रहते थे। अभी मंदबुद्धि बच्चे कम हो गए। क्यों बोले तो साइंस बहुत एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, मगर दूसरे किस्म के डिजेबिलिटीज आ रहे हैं। अभी ऑटिज्म बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फीचर है। बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल रहता, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल रहता, मगर उसका प्रवर्तन ना बहुत अजीब रहता है। एक जगह नहीं बैठता है, ऊब तोड़ता, फोड़ता, घर से बाहर निकल जाता, एक बंगले से और एक बंगले में कूदने को भी जाता। बच्चों को ये डेंजर है बोल के पता नहीं लगता है, गर्म की चीज भी पकड़ लेता है, लोगों को मारता काटता। ये बहुत बड़े वो दुख की बात रहता है। फैमिली में एक बच्चा ऑटिज्म है तो अब उसके अंदर में बहुत बड़ा रिसर्च करा, तो अभी दवाएं लिखता हूँ मैं, बहुत से दवाएं लिखता हूँ, बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट भी है दवाएं नहीं लिखना। मेरा लॉजिक क्या है, मैं तो दवाएं कोई चीज नहीं बना रहा हूँ। अवेलेबल मेडिसिन आई एम यूजिंग, दोज मेडिसिन वर यूज इन एडल्ट्स आर बीइंग यूज इन एडल्ट्स इवन टुडे। वही दवाएं को कम मात्रा में बच्चों को दे तुम, तो ये आर्टिस्टिक बच्चे है। अभी मेडिसिन यूज करता हूँ, अभी लोगों को मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूँ, जो भी चांस मिला वो एडल्ट मेडिसिन से कम मात्रा में बच्चों को यूज करे तो क्या है, उन्हें स्टेबल हो जाता। अभी 90% बच्चों को क्या, 90% बच्चों को क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मेडिसिन से क्या है। अभी मेडिसिन के एक मेंटेलिटी है, रिहैबिलिटेशन फील्ड में अभी मोस्ट ऑफ लेडीज आर डोमिनेटिंग, लेडीज एंड नॉन डॉक्टर्स। तो उसमें क्या है, वो लोगों को मैसेज नहीं जा रहा, वो लोगों को कन्विंस करना बोल तो बहुत पब्लिसिटी करना पड़ता, ये जो जो बच्चों को बेनिफिट हो रहा है वो लोगों को बताना पड़ता। देर शुड बी लॉट ऑफ सेशंस दैट मेडिसिन आर यूजफुल फॉर दिस चिल्ड्रन। मैं पीडियाट्रिशियन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड आई हैव डन पीएचडी इन साइकोलॉजी आल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एज ऑफ एट द एज ऑफ 50 आई हैव रिटन एग्जाम फॉर 5 डेज, देन आई टुक 3 इयर्स टू सबमिट माई थीसिस एंड गॉट द पीएचडी। नॉट ऑनरेरी पीएचडी एज अ शावरिंग नहीं है, आई गॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 7 टाइम्स। ये पद्मश्री परसों आया, 5 टाइम्स इट वॉज रिकमेंडेड, अभी 6th टाइम बोला मैं ये लास्ट चांस लेता हूँ सेल्फ नॉमिनेशन। मोदी जी साहब के ये हया में सेल्फ नॉमिनेशन भी है, तो मैं मेरा पीए को बोला, वो मेरे कंप्यूटर उतना नया था, तो बोला भाई तो चलो अपलोड करते जा, किसी को नहीं बोलेंगे। आई डिडंट टेल माय वाइफ आल्सो। हाँ, जनवरी में फोन आया, होम मिनिस्टर से फोन आया, देर इज अ गुड न्यूज, वी वांट टू वी विल कंग्रेचुलेट यू। मतलब बोला सर क्या बात है, बोलता ऐसा ऐसा यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पद्म अवार्ड। वो ये बोले तो नहीं, डू यू एक्सेप्ट? मैं बोला श्योर, इट इज ऑनर। तो वैसा हुआ, जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, उगादी के दिन, एग्जैक्टली 1 ईयर नाउ टुडे। और एक चीज क्या है, इंसिडेंटली उगादी के दिन मैं स्वीकार स्टार्ट करा।
0: अच्छा, तो स्वीकार को भी उगादी के दिन पे उसके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
1: मार्च 17, 1977, 47 इयर्स हो गए अभी। तो अभी तक तो चल रहा है, अभी तो ज्यादा लोग ऑल ओवर द कंट्री से, फॉरेन से भी आ रहे हैं लोग, ये मेडिसिन
0: तो
1: दे रहे हैं
0: आपको
1: ना।
0: लगता है कि, ये जो सम्मान है, जैसे आपने बताया 7 बार आपको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ, और इस वर्ष 2023 का आपको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। क्या इन सम्मान और पुरस्कारों की वजह से आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा, वो थोड़ी सहज होती है या मुश्किलात उतनी ही आते रहते?
1: मुश्किलात में तो कुछ कमी नहीं हुआ, मगर एक ही क्या है, मैं आई गॉट रिचार्ज, माई एनर्जी गेट्स रिचार्ज। मैं डिमोरलाइज हुआ तो ये सब चीज़ें मेरे को रिचार्ज कर देते, आगे बढ़ाते रहते, प्रोपेल करते रहते, तो कहीं रुक नहीं पाया। ये जर्नी तो चलाते जा रहा हूँ आज तक भी। तो ये पद्मश्री पुरस्कार आने के बाद बहुत से लोगों को मालूम हुआ, उससे पहले बीच राय अवार्ड भी आया था, वो भी बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेसिडेंट से दिए हुए, मेडिकल फील्ड में बड़ा अवार्ड है वो भी, मगर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम।
0: जब आप तो, राष्ट्रपति भवन गए पद्मश्री सम्मान लेने के लिए, और जब आप राष्ट्रपति महोदय से मिले, तो क्या बातचीत हुई आपकी या कैसा रहा आपका यह?
1: नहीं अभी सब तो मैं आपको भेजाना, मैं भेजा तो मेरा वीडियो है, अभी सब थे,
0: हाँ जी हाँ जी, आपका स्वीकार का मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा है, बट ये पुरस्कार का आप बता रहे?
1: पुरस्कार थे, पीएम साहब थे, अमित शाह थे, पूरे जयशंकर जी थे, सब शांति वनम के दाजी थे
0: जी,
1: उनको मैं सामने देखा था, तो उनको भी जाके चरण प्रमाण प्रणाम करा, क्यों बोलते सब डिवाइन सोल्स है, वो लोगों को मिलना तो मुश्किल है। मैं बोला अपोजिट में, मेरे अपोजिट में बैठे थे, मैं उठ के जाके उधर चरण प्रणाम करके आया, तो वो एक सौभाग्य है, जब दर्शन हुआ तो भाई चलो अभी पीएम साहब और सबको मिले, एक एक को आके एक एक को करचालन करे, तो उनके सामने अपन बात नहीं कर सकते, इतना बड़ा पर्सनालिटी है ना, अपन अपना मुंह बंद हो जाता, तो फिर भी बोला मैं सोएंड सो और क्या बात कर सकते उनसे
0: जी।
1: सच्चे पर्सनालिटी एक, बस अभी क्या बोल सकते, अभी देखना है अभी कैसा कैसा अपना कंट्री तो आगे बढ़ रहा है, अब उन्होंने इतने चीजों के सामना कर रहे हैं, हम तो नाचीज है, हम जो चीज को हम सामना कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम है।
0: ये मुझे जो चीज समझ में आता है कि आप वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं करते हैं, और आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही नम्र चित्त हैं, इसीलिए मुझे ये उत्सुकता थी कि आपके सामने जब राष्ट्रपति महोदय थे, क्योंकि वह भी एक बहुत ऐसी नम्र चित्त व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन बिल्कुल ही निर्माण है, कोई अभिमान नहीं है, बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए आज वो उस मुकाम पे पहुंची है, तो मुझे वही लगा कि जब ऐसी दो हस्तियां आमने सामने होती है तो कैसा अनुभव होता होगा, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा।
1: जी जी जी
0: मुझे एक और चीज ये जानना था कि ऐसे आपके जीवन में आपने इतने सारे बच्चों के साथ समय गुजारा है, उनको समय दे करके, उनको चिकित्सा के द्वारा, उनको काउंसलिंग के द्वारा अपने बेहद मदद पहुंचाई है, स्वीकार, उपकार, रक्षा, आश्रय, सुरक्षा, इन चार माध्यमों से आपने उनके जीवन को एक सर्वांगीण विकास का रास्ता दिया है। इस दौरान आपके सामने कोई ऐसा केस, ऐसा कोई बच्चा आया हो जिसकी कहानी आपके दिल को छू गई, या जिसके द्वारा एक आपको शिक्षा मिली, कोई ऐसी कहानी आई क्या? दो
1: ऐसा तो बहुत से है, एक तो हाथ बोल के भी नहीं है, बहुत से है। मैं एक दिन एक स्वीकार के नाम पे एक प्लॉट लिए थे, वो साइड को जाने के लिए एक हार्डवेयर शॉप के पास रुका, वो इंक्वायरी कर रहा था, एक बच्चा आके नमस्कार करा, साहब मैं स्वीकार में पढ़ा, मैं स्वीकार में, स्वीकार का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ अभी स्टील शॉप में काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ और एक दोस्त थे, उन्होंने बहरेन से आए हुए थे, आनंद बाला बोल के, बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने बोले डॉक्टर साहब कितना खुशी होता वो आदमी आके हंसते हुए आपको विनम्रता से नमस्ते कर रहा है। मैं बोला हाँ भाई मेरे भी खुशी होता, वही आनंद है, वही हमारा प्रॉपर्टी है, हम तो ज्यादा कुछ कमाए नहीं है, मगर भगवान नहीं गिरा है हमारे, आनंद है, तो आत्मतृप्ति बोलते हैं ना, आत्मतृप्ति है
0: जी, आत्मतृप्ति ही आनंद है,
1: आत्मतृप्ति जब नहीं रहता आदमी दुखी रहता,
0: हाँ जी
1: दुखी रहता आदमी,
0: आत्मतृप्ति ही आनंद है, और आनंद जो आपने बताया वो दूसरों की खुशी में। मुझे इसमें एक और चीज जानना था कि जैसे ये तो एक आपने ऐसा किस्सा बताया जो कि किसी बच्चे ने जिसने कुछ उपकार प्राप्त किया है स्वीकार के द्वारा और उसके जीवन में संवर्धना हुई और फिर वो आपके सामने आया। क्या कभी कोई ऐसे लोगों की कहानी आपको सामने आती है या आपको याद आता हो कोई ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा किस्सा जहां लोग आपके जो अगेंस्ट थे, जो आपके विपरीत दिशा में खड़े थे, आपके कार्य को देखते हुए धीरे धीरे वो बदल गए? कोई ऐसा कोई कहानी आपको याद आता हो?
1: नहीं, एक सेइंग है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन प्रोग्रेस विदाउट रेसिस्टेंस। मेरे को जितना क्रिटिसाइज कर रहे थे उतना आगे बढ़ते गया, मेरे को जितना रुकावट बढ़ते गया, मेरा प्रॉब्लम और इजी होता गया। मेरे ऊपर कोर्ट केसेस है, मैं एक्सेस बनाया बिल्डिंग, मैं बोला था मेरा प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो गिराने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया है कि इसको डिसमेंटलिंग नोटिस, वो भी बनाने के 15 साल के बाद। मैं बोले थोड़ी दुष्ट शक्तियां रहते, ये दुष्ट शक्तियां क्या है, यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस संतान भी रहता ना, ये मैं कर रहा हूँ यज्ञ है, वो यज्ञ को भंग करने के लिए बहुत से दुष्ट शक्तियां पैदा होते। तो मेरे को कोर्ट को खींचे, मैं बोला चलाते गया। अब कड़पा में 10 एकड़ तुम्हारे कई को हमारे को दे दो, 9 एकड़, कलेक्टर नोटिस दे दिया, वहां भी केस चल रहा, तो केस मेरे फेवर में आया, मगर दुखी हो जाते हम, कितना परेशान होना पड़ता, कोर्ट को जाना, वो ये सब बड़ी चिंता की बात है। अब बिल्डिंग गिराना बोल के बोल नोटिस दिया तो कोर्ट को जाना पड़ता, मैं 1-3-4 मरता गया। मैं बोला भाई मैं कोर्ट को नहीं आता, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या? हम अच्छे भावना से बनाए, मेरा तो प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक कुर्सी भी मेरा नहीं है। तो मेरा पीए को लगाया, एक बच्चा है, यंग बच्चा है, पूरा उन्हें कोर्ट को घूमता, उसको पर वो जीपीए दे दिया, वो पूरा कोर्ट को उन्हें फिरता है। तो इतने संघर्ष करना पड़ा मेरे को, कहीं इजी वर्क नहीं चला मेरा। आज भी बहुत से बड़े बड़े बहुत पैसा ऐसे वाले नहीं दिए मेरे को पैसे, छोटे आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, उन्हें मंथली पेंशन रहे तो साल को एक मरतब आके 1-20 हज़ार दे के जाता था। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर साहब को मिल सकता हूँ क्या? नहीं, बराबर मिल सकते। मेरे फोन आए नीचे से, एक एक साहब है हर साल अपने को 20 हज़ार देते, उन्हें मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो हम ठीक है भाई, लेको चलते के व्हील चेयर में लाओ। नहीं नहीं विद सपोर्ट इज वॉकिंग। नहीं, व्हील चेयर में लेके आ, बोला ये रिफ्यूज टू कम ऑन व्हील चेयर। तो आदमी को पकड़ के सपोर्ट से आ गया ऊपर, मैं उठ के नमस्कार करा, पेट में मुंडी डाला। नहीं, आप उठना नहीं, आप महान है। मैं बोला मैं कहाँ से महान हूँ, आप इंजन है, मैं इंजन हूँ, बगैर इंजन का इंजन नहीं चलेगा।
0: इंजन नहीं चलेगा, बगैर फ्यूल के तो नहीं चल सकते।
1: ना, आपके आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत एजेड था आदमी, मैं ऐसा झुक के नमस्कार किया तो वो रो लिया आदमी। बोला नहीं, ये आप भी भागीदारी है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये यज्ञ एक आदमी से नहीं होता, बार बार बोलता हूँ। कोई लकड़ी डालता, कोई घी डालता, कोई पंचदान डालता, कोई प्रेयर पढ़ता। बोला आप सब लोग भागीदारी है इसमें, तो अपने अपने अकाउंट सेपरेट है, उसके बाद ईश्वर के पास ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, बेनामी अकाउंट नहीं है वहाँ। जो आप ठीक काम करते हैं, नेकी करते हैं, वहीं जाता है, सेपरेट अकाउंट में जाता है। मैं तो खाली एक इंसान हूँ, तो दूसरे लोग मेरे को एक दिन नीचे आ रहा था बंगले, वो थर्ड फ्लोर से, मेरा ऑफिस थर्ड फ्लोर पे, डॉक्टर साहब आप इतने लोगों को पैसा पूछते, मैं अकेला दे सकता हूँ पैसे, ऐसा देखा मैं। ठीक है, तो मैं मेरे बच्चे अच्छा कर दो देता हूँ। मैं बोला मैं नहीं कर सकता आपके बच्चे, ईश्वर मेरे को सब कुंजियां नहीं दिया, थोड़ा ज्ञान दिया है, थोड़ा बुद्धि दिया है, थोड़ी कुंजियां दिया है, उसी को ऑपरेट करता हूँ, वो तो उसी की कृपा है, अब उसी को पूछो, मैं नहीं दे सकता, अब मैं आपके पैसा भी नको। तो फिर एक बात बोला, आप ऊपर वाले से बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे से बिजनेस नहीं कर रहे, आपके जरा बुद्धि जो है चेंज होना है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि किसी को तो नहीं छोड़ता, उसको एक झलक तो देता हूँ। क्यों बोलते हो? विद्यादान, हर एक को एक झलक दे दो। बस मैं ये तो समझा दिया, देखो आपका बच्चे को मैं अच्छा नहीं कर सका, देखा बहुत से बच्चों को तो फायदा हो रहा ना, ये स्वार्थ छोड़ दो आप, जब आपका नियत ठीक रहता है भगवान की कृपा आपके ऊपर आता है।
0: ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब व्यक्ति का नियत साफ होता है तो मुराद हासिल होता है, अर्थात
1: बिल्कुल
0: जब उसकी नियत साफ है, दिल साफ है, तो ऊपर वाला भी बैठा होता है मेहरबानी उसके ऊपर झड़काने के लिए, उसके ऊपर मेहरबानी होती रहती है। मुझे आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है, वो ये कि आज कई लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, युवा जो है, एक एक दिशा ढूंढ रहा होता है, वो अपने जीवन में कोई जॉब ढूंढ रहा होता है या कोई स्टार्टअप करता है, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, उद्देश्य तो उसका यही होता है कि इससे लोगों का भला हो। लेकिन उस रास्ते में चलते चलते कई बार वो इतने उलझ जाते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था

0: इंडिया में 32 कोर्सेज स्टार्ट करा था। वही माध्यम से क्या है, ज्यादा लोगों में ट्रेनिंग करूंगा, ज्यादा लोग जाके सर्विस करेंगे। एक डॉक्टर मतलब कितने लोगों को सर्विस कर, तो बहुत से स्पेशलिस्ट आना बोल के 9700 स्पेशलिस्ट को मैं डेवलप करा। देयर इज एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीकार टू द सोसाइटी, बट वेरी फ्यू रियलाइज माई कंट्रीब्यूशन। लोग समझते कि पैसा आता, पैसा कहाँ से आता। 25-35,000 दिए तो मैं डिग्री बताया। आज एक एक बच्चा जो है महीने को 2-3 लाख भी कमाता है, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी क्लिनिक लगा के। एक एक को 6-6 क्लिनिक भी है। हमारे स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़े, जो 25,000 साल को दिए, मैं तो आज बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ। क्वार्टरली मैं 25,000 देता हूँ हाई स्कूल बच्चे को। मैं उसको डिग्री कराया और कड़पा में कराया डिग्री, गुंटूर में कराया। मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या है, वो कोई नहीं सोचा। बच्चे अभी ज्यादा परिवर्तन है जनरेशन में, कोई चीज की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। तो मैं परसों मीटिंग लगाया तो बोला, मैं बोला भाई तुम समझ रहे हैं कि मेरे पास 25,000 में तुम डिग्री खरीद लिए, क्या कॉस्ट हुआ मेरे को तुमको पढ़ाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इज माइन, ऑपरेशनल कॉस्ट इज माइन, और कितना हम कितने चीजों का सामना करा, कितना दुखी हो गए तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मगर अभी बहुत ये लोगों में स्पिरिचुअल नॉलेज के वैक्यूम हो गए, दे आर स्पिरिचुअली सार्व्ड द जनरेशन। तो मैं परसों बोल रहा था कृष्णा बहन से, माधवी बहन से और 2-3 लोगों से, हमारे पास ये लोगों का में परिवर्तन लाना है, अपना भी गलती है। क्यों बोलो तो भगवान सबको सद्बुद्धि नहीं देता। दे नो द सब्जेक्ट व्हाट इज इन द बुक्स, दे डोंट नो व्हाट इज इन बिटवीन लाइंस। That is human science. ये human science जो ज्ञानी रहते हैं ना वही दे सकते। Human science कोई किताब में नहीं पढ़ा हुआ रहता।
1: ये आपने बहुत ही अंदरूनी बात को टच किया आपने, कि व्यक्ति किताब पढ़ सकता है लेकिन किताब के अंदर में जो ज्ञान निहित है उसको समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। और आज का जो जनरेशन है उसे आवश्यकता सबसे ज्यादा अधिक आध्यात्मिक बल की है, आत्मिक बल की है, जिसकी वजह से ही लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आध्यात्मिक बल है, आत्मिक बल है, तो वो समस्या कोई समस्या नहीं लगेगी, व्यक्ति उसका सामना आसानी से कर सकता। और दूसरी जो बात आपने कही कि महत्व, कोई भी चीज का जो गूढ़ महत्व है उसको समझना, उसे उस महत्व से सम्मान देना, ये हमारे में कहीं कमी रह जाती है। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आप भारत के कई स्थानों का भ्रमण कर चुके हैं, भारत में कई जगहों पर जा चुके हैं, कौन सी ऐसी बात आपको अनोखी लगती है पूरे भारत में जो कि पूरे भारत को एक करती, भारत को अनेक या विविध बनाने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोई एक चीज जो पूरे भारत देश को जोड़ती है, आपके हिसाब से वो कौन सी बात है?
0: वही सनातन धर्म है, वही स्पिरिचुअल नॉलेज है। विनी पीपल द प्रेजेंट जनरेशन स्पिरिचुअली स्टार्ड, दे आर रनिंग लाइक मैड रेस। पैसा पैसा पैसा कितना जरूरत है, हाउ मच यू ब्रॉट, हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक, हाउ मच हैप्पीनेस इट गिव्स। द मोर मनी आई हैव सीन पीपल दे आर मोर अनहैप्पी। हैप्पीनेस इज नॉट बॉट विद मनी। तो अभी मैं देखता हूँ अभी जनरेशन में, अभी आगे जनरेशन में चेंज लाना है बोले तो अपने वैसे लोग ही लाना है। आध्यात्मिक धार्मिक ये सब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेना है, बहुत से सनातन धर्म को रिवाइव करना है। अब मोदी साहब ये 5-10 साल में तो बहुत परिवर्तन लाए, बहुत से परिवर्तन लाए। अब मैं माउंट आबू भी गया था, कितना शांति रहता, कितना एक किस्म का आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सी एवरी ह्यूमन इज नॉट ए ह्यूमन, इन एवरी ह्यूमन बीइंग देर विल नॉट बी ह्यूमैनिटी। एक हिंदी में कहा, हर एक आदमी इंसान नहीं होता है, हर एक इंसान में इंसानियत नहीं रहता है। So people think that by having degrees is not a human being, in my view. Having degree, having qualification, having money is inhuman. So I always say, now I have 96 lakhs patients ko service diya, 9,700 students ko PG, diploma, PG, post-PG, doctorate in clinical psychology. India mein 2 institute chalate hain, MIT University aur mine, a course. अभी क्या है, अभी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ क्लैश इन देम, बिकॉज द मास्टर ट्रेनर्स आर वेरी फ्यू, दे आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। दिस गैप इज इन टर्मॉइल।

0: अटेंडेंस के बच्चे पास होना चाहते, क्लासेस को नहीं आना चाहते, और टीचर सीख रहा उसके ऊपर कुछ तो भी एलिगेशन लगाते तो उसको कहीं तो भी फंसा देते। अब टीचर रिजाइन हुआ था, मेरे को मैन पावर नहीं तो कहाँ से लाना, बहुत बड़ा मुश्किल होता। अभी यही साल से मेरा एक कोर्स डी रिकग्नाइज करे स्पीच एंड ऑडियोलॉजी का, भाई ऑनलाइन उन्होंने दिल्ली से करता है, मेरे पीपल नॉट ट्रेन टू गिव ऑनलाइन इंस्पेक्शन को ट्रेन नहीं है, जो आदमी उन्हें इंस्पेक्ट कर रहा उन्हें भी ट्रेन नहीं है। मेडिकल काउंसिल के वजह से रिहैबिलिटेशन काउंसिल है संस्था, भाई संस्था में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ गैप्स आ रहा है सोसाइटी कैसा डैमेज हो रहा है। अब जितना मैं दुखी होगा, इतना तकलीफ मैं उठाया, मैं बोला भाई कोर्सेज बंद कर दूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद कर दिया, अब दूसरे प्लेयर से चला न दो, मैं अब 79 ईयर्स हूँ, अब कितना वजन उठा सकता हूँ, फिर भी मेरे भगवान जो शक्ति दिया ज्यादा ही उठाया। अभी फर्स्ट कोर्स मैं ये स्पीच एंड ऑडियोलॉजी का बंद कर दिया, मैं बोला नेक्स्ट ईयर से मेरा कोई कोर्स रन नहीं करूँगा, बिकॉज ये जो परिवर्तन है बच्चों में, यंगर जनरेशन में पढ़ रहे भी नहीं, डायरेक्ट एग्जाम को जाता हूँ बोलते, कैसा करता हूँ दूसरे को कैसा सर्विस देता हूँ, पैसा कमाता, तो इसको मैं अपने अकेले चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत बड़ा मोदी जी तो कर रहे हैं, उन्होंने अकेले भी करना कर रहे हैं, कोई तो भी करना पड़ता, एक नहीं और 10 लोगों के साथ करना पड़ता, वी कांट गो नेगेटिवली, ऑलवेज वी मस्ट हैव पॉजिटिव वाइब्स, आई बिलीव आई एम ए पॉजिटिव थिंकर।
1: दो चीज जो आपने बताई जो भारत को एक करती है, एक तो आध्यात्मिक भूख लोगों की या आध्यात्मिक आवश्यकताएं लोगों की जो कि समान बनाती है, और दूसरा जो आपने बताया कि वही आवश्यकता जो है जब सामर्थ्य में बदल जाती है तब पूरे भारत देश में हम परिवर्तन ला सकते हैं, भारत को यशस्वी बना सकते हैं जैसे कि आपने बनाया। हम चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड की तरह जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा। आर यू रेडी?
0: हाँ यस।
1: सबसे पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: सेवा विच यू शेयर अदर पर्सन्स प्रॉब्लम, विच यू मेक अदर पर्सन्स लाइफ इजी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज सेवा, निष्काम सेवा। भाई कुछ अपन कोई लोगों से अपना आनंद क्या है, किसी का दुख बांट दिए, किसी को कुछ वेलफेयर का कुछ इसमें अपन हिस्सेदार बने, उसका दुखी में भागीदार कम करे, किसी को संतोष ऐड करे, बस वही सेवा। किसी कोई एक्सपेक्टेशन करना सेवा है, नहीं तो भाई को बहन को मैं सब भाइयों को सबको ऊपर लाया, वो सेवा नहीं है, वो मेरा धर्म था।
1: आशा से परे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को अगर हम समाधान कर सके तो वो सेवा है।
0: हाँ, विदाउट आशा वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, भाई बहन को करना तो वो धर्म है कर रहे हैं। रियल सर्विस इज वन विच यू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू यू, समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू यू, दैट इज सर्विस। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग मींस लविंग, लविंग इज डिवाइन, डिविनिटी इज गॉडलीनेस।
1: बहुत सुंदर आपने बताया, ये बहुत ही सुंदर बात बताया कि उसके लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं हो, और जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हो उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वही सेवा है।
0: बस
1: दूसरा सवाल, शांति क्या है?
0: जब आत्मतृप्ति रहता है शांति रहता है,
1: आत्मतृप्ति ही शांति है। सुख क्या है?
0: जब तुम कोई चीज अपेक्षा करते हैं कोई चीज नहीं पाते हैं, वो जब दुखी हुआ था आदमी, सो ज्यादा कोई चीज को न्याय कुछ फीलिंग होना नहीं अपने, बस ग्रीडी नहीं, कुछ जो जो भी दिया भाई वो दे दिया, बस मेरा भाग में इतना ही। तो उसमें दुखी होने का सवाल ही नहीं है, बस अरे के कर्मा कर्मानुसार कर्म सिद्धांत जो करते रहते ना, बस अरे को आना है जाना है, अपना टाइम टेन्योर में अपना जर्नी जब है जितना करे अपन आनंद है। गॉड हैज गिवन मी अ चांस टू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू मी, एंड दैट टू द नेगलेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब मदर बोलती है मेरा बच्चा बात कर रहा है अभी बहुत अच्छा है, तो हमारा दिल भर जाता है। मैं बोलता हूँ फीस आज क्यों बढ़ाया, मैं आज फीस बढ़ाया मैं क्यों बढ़ाया, मैं तुम लोगों से अभी क्या कर दूं, अभी कमा के क्या कर दूं मैं पैसा, इतने साल ही मैंने नहीं करा, मेरा 200-300 फीस था 40 साल तक, अभी मैं बड़ा है क्यों बोलते, मैं वैल्यू करने के लिए एवरीथिंग, एनी डॉक्टर क्यूर्स फ्री क्यूर्स नथिंग, कोई चीज पकड़ में आया ना उसका वैल्यू नहीं रहता, उसका वैल्यू रहना बोलते पार्टिसिपेशन रहना।
1: इसलिए लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए कि जो चीजें उनके सामने रखी जा रही हैं वो बहुत बहुमूल्य है, इस वजह से उसका मूल्य आपने थोड़ा बढ़ाया। अगले कुछ सवाल जो है वो बड़े ही शॉर्ट हैं, जिनका जवाब आपको एक या दो शब्द में ही देना है। तो स्वीकार क्या है?
0: स्वीकार टू एक्सेप्ट द पर्सन्स हु आर नॉट केयर्ड, हु आर रिजेक्टेड इन द फैमिली, इवन बाय देयर ओन पेरेंट्स, डिसओन्ड, आई वांट टू एक्सेप्ट देम, दे आर गॉड्स लेसर चिल्ड्रन, फॉरगॉटन चिल्ड्रन ऑफ सोसाइटी, सो दैट इज स्वीकार। वन मस्ट हैव अ बिग हार्ट। मदर इज डिजेक्टेड, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, शी इज कर्सिंग द गॉड, क्यों दिया मेरे को ऐसा बच्चा। उसमें
1: उपकार क्या है?
0: यू आर क्रिएटिंग होप टू द पीपल हु लास्ट होप, यू आर क्रिएटिंग ए स्माइल ऑन देयर फेसेस।
1: तो इसका मतलब स्वीकार जो है वो आशा है, एक शब्द
0: बिल्कुल
1: में अगर बोले तो।
0: हाँ
1: उपकार क्या है?
0: भाई, मैं एक्सेप्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है उसको, अगर मैं कोई अच्छा नहीं करूंगा कोई मतलब ही नहीं है। आई हैव टू गिव बैक। गॉड हैज गिवन मी टैलेंट, गॉड हैज गिवन मी एनर्जी, गॉड हैज गिवन मी मनी ऑल्सो, सो लेट मी गिव इट, लेट मी क्रिएट ए रे ऑफ होप ऑन द अदर्स।
1: इसका मतलब अगर स्वीकार किया लेकिन साथ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड किया, उसमें कुछ उपकार नहीं किया, तो उस स्वीकारने का कोई
0: मतलब
1: मतलब
0: ही
1: नहीं
0: नहीं,
1: है। तो
0: मतलब ही नहीं।
1: इसका मतलब स्वीकार अगर आशा है तो उपकार उसका अर्थ है, उस स्वीकारने का अर्थ जो है वो उपकार है, कि सही मायने में स्वीकारना अर्थात उसका कुछ उपकार करना। भारत क्या है?
0: एक भारत पुण्य भूमि है, ये जो अपन भारतवासी है, भारत में जन्म लिए है, भारत माता के सुपुत्र है, अपन धन्य है अपन।
1: आखिरी सवाल, हनुमंत राव कौन? एक शब्द में।
0: हम कुछ भी नहीं है, भगवान
1: नहीं, कुछ तो है, क्या है वो सोच के बताइए।
0: का देन है और कुछ नहीं।
1: बहुत सुंदर, हनुमंत राव जो है भगवान का दिया हुआ एक देन है समाज को, जिसके द्वारा समाज में इतना प्रकाश फैल रहा है जो कईयों के जीवन के अंधकार को मिटा रहा है। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद दोबारा हम करना चाहेंगे। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने जीवन के
0: थैंक
1: इतने गूढ़ ज्ञान को हमारे साथ शेयर किया। लेकिन स्वागत इसलिए करना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि बाकी लोग दुनिया का बहुत भला कर रहे हैं लेकिन आप भी कर रहे हैं, तो आप भी उसी दल का एक हिस्सा है, और मैं तो कहूंगा केवल हिस्सा नहीं, आप एक नेता है जिनके नेतृत्व में बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा स्वागत इसलिए भी करना चाहेंगे कि आप दोबारा माउंट आबू आए, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में दोबारा आए और दोबारा हमारे श्रोता साथियों के साथ जुड़े, हमसे बातें करें और भी कई विषयों पर बात करें। आज तो समय की सीमा थी इसलिए हम बात नहीं कर सके, लेकिन अगली बार हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार से हम ऐसे लोगों का जो हमारे आसपास में है, जो कई प्रकार के मानसिक समस्याओं का शिकार है, उन्हें हम कैसे थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। अगले एपिसोड में दोबारा हम मिलेंगे आपके बीच में, एक और ऐसी हस्ती को लेकर के आएंगे जिनके जीवन से हम हमारे जीवन को रोशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन। हर कार्यक्रम ही रेडियो मधुबन का शानदार होता है, लेकिन जी हाँ जरूर, यशस्वी भारत कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा 107.8 FM पर रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज संडे है, संडे में हम लोग विशेष आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर TN सिंह जी हैं, जिनसे हमारी बहुत सारी बातें होती हैं और पिछले कई एपिसोड उनके आपने सुने हैं। और मैं चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में भी आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी बातें हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें बता सकते हैं। और डॉक्टर साहब 9 से 10 हमारे साथ है और उनसे जो बातें आपको करना हो किसी भी विषय को लेकर हेल्थ रिलेटेड, ज़रूर उनसे बातें कर सकते हैं। इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं 94-1415-1415 इस नंबर पर, या फिर कॉल करके डायरेक्टली भी डॉक्टर साहब से अभी बात कर सकते हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद रमेश भाई
0: जी।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक घंटे आपके बीच में मैं रहूँगा। इस बीच में जो भी आपको मेडिकल संबंधी प्रॉब्लम है, कोई भी, कोई ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन संबंधी ही हो, और सर्जिकल हो, ऑर्थोपेडिक हो, गाइनी हो, INT, जो भी संबंधी जानकारी लेनी हो कि बीमारी क्यों होती है, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, कितने समय लगेगा ठीक होने में, दवाएँ कैसे चलेगी, ठीक होगा नहीं होगा, आगे कहाँ दिखाया जाएगा, क्या होगा, कोई जानकारी बेझिझक आप पूछ सकते हैं। फिर बीमारी से हम बचे कैसे, इसके बारे में सबसे ज़रूरी होता है प्रिवेंशन, बीमारी नहीं हो उसके लिए हम कैसे तैयार करें अपने को, इन सब बातों की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप बेझिझक मुझसे बात करें। धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी तरह से हूँ, बहुत अच्छी तरह से हूँ। लेकिन आजकल जो मौसम ऐसा जी, हुआ जी, है इसमें काफी केसेज आ रहे हैं आपके, इन्फ्लुएंजा वाले केस में आ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन है ये बहुत, इतना परिवार में एक आदमी को अगर हो गया तो सारे परिवार के लोगों को हो जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो इससे सबको थोड़ा बचना है, सावधान रहना है उसके लिए, उस पर ध्यान देना है।
0: अच्छा, अभी जो बारिश का मौसम है और यहाँ पर बिल्कुल अलग टाइप का मौसम है, जैसे कि एकदम से बारिश बंद होते ही जितना वो ठंडक लग रहा था उससे कई गुना ज़्यादा गर्मी भी, उमस आ जाती है, पसीना पसीना लगता है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें क्या बीमारियां हो सकती हैं?
1: इसमें सबसे अधिक इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत अधिक फैलता है, क्योंकि वायरस जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं जनरली स्प्रेड होते हैं आपके छींकने से, खांसने से, ये सबसे अधिकतर स्प्रेड होते हैं, खास करके इन्फ्लुएंजा बी वायरस जो है ये अधिक होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: दूसरी बात हो गई कि खास करके जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज वाले हैं, थोड़ा सा भी अगर बॉडी रेसिस्टेंस उनका कम है तो बारिश में भींग गए, थोड़ा सा भी सर गीला रह गया या कपड़ा कोई गीला रह गया तो उनको पकड़ लेगा पट से, या परिवार में किसी एक मेम्बर को हो गया तो थोड़ा सा उसको अलग करना है, दूसरे रूम में रखना है। और दूसरी बात है कि उनको आप ऐसा कीजिए कि एक जो होता है ना मांस जो होता है, बहुत सस्ता मिलता है मांस, उस मांस को जिनको हुआ है उनको बांधना चाहिए। जनरली होता क्या है कि बाकी लोग अपने मुंह पर लपड़ी करते हैं, असल तो उनसे फैलना है, जो छींकते हैं खांसते हैं उनसे फैलना है, इसीलिए उन लोगों को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बचे इससे, कि कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। दूसरी बात है कि अगर बारिश से भींग गए तो तुरंत एक कपड़ा चेंज कर लेना चाहिए, माथा अगर सर गीला हो गया है तो उसको टॉवल से पोंछ लीजिए, कपड़ा चेंज कीजिए, और थोड़ा सा हॉट ड्रिंक, कोई भी, कोई चाय लेना है, कॉफ़ी लेना है, दूध लेना है, ये सब ले लीजिए। उस ऐसा नहीं कि भींगने के बाद कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोई भी चीज़, छाछ हुआ या कोई कोल्ड ड्रिंक हुआ, कुछ भी, यहाँ भी जूस भी अगर फ्रिज का निकाला हुआ पी लेंगे, फ्रिज में रखा हुआ अगर मिठाई, खास करके आपका रसगुल्ला वगैरह जितना भी है, ये बहुत जल्दी पकड़ता है, थ्रोट पकड़ लेगा पट से। और एक बार वायरस इन्फेक्शन हो जाने के बाद में कितना भी हम कोशिश करें 3-4 दिन तो खींच ही लेता है। आप इलाज कराइए तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं इलाज कराइएगा तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तंग करेगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो बच करके रहना है। काफ़ी फीवर भी मतलब हाई शूटअप कर रहा है। इसके साथ अभी कन्फ्यूजन की बात ये है कि अभी आपको इस मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, खास करके डेंगू है, जो डेंगू है वो काफ़ी केसेज आ रहे हैं, मलेरिया के केसेज आ रहे हैं हम लोगों के हॉस्पिटल में। बाहर की जो बहने आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं लोग दिल्ली वगैरह साइड से, या राजस्थान के ही, अपने राजस्थान के आ रहे हैं लोग, ये लोग मलेरिया और डेंगू लेकर के आ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो उससे थोड़ा बचना है। देखिए, किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उससे आपको इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैन टू मैन नहीं कैरी करता है ये। जिसको हुआ है डेंगू, अगर उसको एडिस मॉस्किटो काटेगा उसमें, उसके थ्रू फिर और वही मॉस्किटो अगर दूसरे किसी को काट लिया, आपको काट लिया, तो हो जाएगा। वो ऐसे फैलता है, वो वायरस वो कैरी करेगा और दूसरे को इंजेक्ट कर देगा। इस तरह से होता है। तो इसका वही उपाय है कि हम डेंगू के लिए खास करके जो एडिस मॉस्किटो होते हैं, वो एडिस मॉस्किटो दिन में ही, रात में वो नहीं काटते हैं, रात में मिलेंगे नहीं, वो छुपे रहते हैं बेचारे। और दिन में खास करके 9-10 बजे के बाद में, दिन में दो मैंने 12 बजे तक थोड़ा रिस्की पीरियड है, आप बाहर बैठते हैं लोन वगैरह में कहीं पर बैठते हैं, तो एक तो कि पूरा कपड़ा, अगर लोन में बैठते हैं तो पूरा कपड़ा पहन करके बैठिए, खाली जगह नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है कि जो होता है, मतलब जैसे ओडोमॉस वगैरह टाइप की चीज़ है ना, एंटी मॉस्किटो रेपलेंट, उसका तो बहुत चीज़ निकल गया है आजकल, लोशन भी आ गया है, पहले से क्रीम था ही, और आजकल कपड़ों पर लगाने के लिए भी आ गया है, उस पर क्लोथ्स पर भी लगा दिया जा रहा है, उससे वो बैठते नहीं है, काटते नहीं है। तो इस मॉस्किटो को से बचने के लिए क्या है, और ये खूबी ये है कि बाकी मॉस्किटो जैसे मलेरिया के जो जितने भी मच्छर हैं, ये मच्छर जो हैं वो पानी, स्टेग्नेंट वाटर जो है, वो गंदा पानी है, उसमें ग्रो करते हैं, होते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और उसमें उनका अंडा होता है, लार्वा डेवलप करता है। और एडिस मॉस्किटो का उल्टा है, ये साफ पानी में, जैसे आपने अपने गमला में, प्लांट में साफ पानी डाला कहीं पर, या किसी कंटेनर में साफ पानी रखा हुआ है, और वो मतलब कुछ देर के लिए रह गया, उसमें उसको मौका मिलता है ग्रो करने का। अगर 2 दिन रह गया तो उसमें ग्रो कर जाएगा वो मॉस्किटो। तो उसमें जहां पर अगर कहीं जरूरी है कि साफ पानी अगर पड़ा हुआ है तो, और नहीं तो उसमें थोड़ा सा केव ऑयल वगैरह डाल दीजिए ऊपर से, तो वो मच्छर उस पर नहीं बैठेंगे, या फिर उनका ब्रीडिंग नहीं होगा, बढ़ने की देर नहीं होगी। और ये बाकी तो मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता ही है, तो एनोफिलस काटने से होता है, लेकिन वो मच्छर जनरली रात में अंधेरा होने के बाद वो काटते हैं, एनोफिलस मच्छर। और उसके बाद क्विलेक्स मॉस्किटो एक होते हैं जो अगर काटते हैं तो उससे भी मैंने होता है मॉस्किटो। उसके बाद क्विलेक्स फाइलेरियल भी फैलता है, फाइलेरिया भी होता है जो मॉस्किटो ही फैलाते हैं। तो बहुत सारा है, एक और होता है तो उसका होता है कि काला जर होता है, वो भी मॉस्किटो से ही ये होता है, उसको कहते हैं लिस्मेनियसिस कहते हैं, हम काला जर कहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो बहुत सारे, तो मॉस्किटो से एनी हाउ बचना है,
0: सही बात।
1: और अभी वायरस भी ग्रो होता है, क्या डेंगू जो है वो वायरल इन्फेक्शन
0: है,
1: लेकिन मलेरिया जो है वायरल नहीं है, मलेरियल पैरासाइट है, फैलेरियल पैरासाइट हैं ये सब। काला जार वाले जो हैं, डिस्मेनिया में डोनोफनाई करके आता है, वो पैरासाइट है, ये अलग ग्रुप हो गया। और ये डेंगू जो फैलता है ये आपका वायरल है, तो वायरल है, लेकिन यही है कल्याण है कि मैन टू मैन नहीं फैलता है। ये नहीं कि आप एडिस वाले इसके पास में, डेंगू वाले फीवर के पास आप बैठे तो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मॉस्किटो के काटने के बाद ही होगा। तो मॉस्किटो से बचें, रात में मॉस्किटो नेट लगा करके सोया करें, दिन में अगर कहीं फील्ड वील्ड में बैठते हैं तो या तो यही मॉस्किटो रिपेलेंट जो है बताया, ओडोमॉस टाइप की बहुत सारी
0: निकली,
1: तो उसको आप लगा करके ही करें। और कुछ नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल भी शरीर में लगा करके अगर बैठते हैं तो उससे भी मॉस्किटो नहीं होते हैं। अगर उसमें बैठते हैं आप, इसमें मॉस्किटो लगा करके, मस्टर्ड ऑयल केवल, तो मस्टर्ड ऑयल भी शरीर में लगा करके अगर आप बैठते हैं तो जनरली मच्छर नहीं काटते हैं, दिन में भी बचते हैं। लेकिन अगर आप ये करके ये करें, मॉस्किटो रेपलेंट अगर करें तो बेटर है। दूसरी बात है कि अगर कहीं पर बारिश में भीग गए, या बारिश में भीगने के बाद में अगर आपको हुआ भीग गए, तो ऐसा करना है कि छींकों को आनी शुरू हो गई तो तुरंत एंटी एलर्जिक ले लीजिए, आप एंटी एलर्जिक आप ले सकते हैं।
0: जी जी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि बारिश में ये जैसे कि सिचुएशन में आपने बताया, और एक मैसेज आया है, अंजिता जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आपको और डॉक्टर जी को, सभी सुनने वालों को नमस्कार। और कई मेडिकल स्टडीज़ में ऐसा बताया हुआ है कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी,
1: हाँ बोलिए, हाँ,
0: तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ऐसा पानी पीने से कई तरह की बीमारियां का खतरा टलता है। जानते हैं कि रोज़ इस पानी को पीने से क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए ऐसा है कि कॉपर के मतलब तांबे के बर्तन में अगर पानी रख करके, ऐसा नहीं कि तांबे का गिलास खरीद लिया उसमें पानी रख करके पी गए, उसे नहीं होगा। वो तांबे के बर्तन में पानी 12 घंटा रहना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: मतलब जो घड़ा है या कोई चीज रखते हैं या लोटा वगैरह टाइप का जो गांव में रखते हैं, उसमें पानी रहना चाहिए 12 घंटा, और उसका और

0: कोई चीज पर तो असर हो या नहीं, डाइजेशन में इफेक्ट है जैसा आप मानते हैं। और दूसरी सबसे अधिक है एक विटिलिगो होता है, स्किन डिजीज होता है, जहाँ पर
1: वाइट पैचेज
0: हो जाते हैं, जिसमें कि एक पिगमेंट होता है और मेलनोसिल पिगमेंट आता है, वो वहाँ डिपोजिट होता ही नहीं है।
1: अच्छा,
0: तो वो डिपोजिट अगर ये तांबे का रखा हुआ पानी पीते हैं तो थोड़ा जल्दी डिपोजिट होता है, ये फायदा है। और दूसरी बात है जैसे धूप में भी अगर ये बैठते हैं तो उनको भी बेनिफिट होता है। दूसरा, थोड़ा सा इसका रोल सोरियसिस में भी रखा गया है, एक सोरियसिस स्किन डिजीज होता है जिसमें कि पैचेज होते हैं, ड्राई पैचेज भी होते हैं, वेट पैचेज होते हैं, जल्दी ठीक होता नहीं है, ये क्रोनिक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका कारण पता नहीं है। तो इसमें भी है कि अगर वो तांबे का बर्तन का पानी पीते हैं तो हो सकता है, एक चांस है कि कभी ठीक हो जाए, कंफर्म नहीं है इसके बाद। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा धूप में भी दिखाना उसको जरूरी होता है, अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन अगर होता है तो दोनों में बेनिफिट होता है, विटिल्गो में भी बेनिफिट होता है और इसमें भी बेनिफिट होता है, सोरियसिस में भी बेनिफिट होता है, दोनों।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्ली
0: मॉर्निंग वाला ये सनलाइट,
1: सवेरे सवेरे
0: सवेरे वाला धूप, दोपहर वाली धूप नहीं। तो तांबे के पानी में अगर आप कोई रखती हैं, पॉट रखती हैं जिसमें कि पानी रखा जाए, 12 घंटा रख करके उसके बाद पिए, जब खत्म हो तो फिर उसको भर,
1: फिर उसको भर के 12 घंटे के बाद पीना है।
0: मैंने वो तो हो गया ना कंटिन्यूअसली, तो रेगुलर हो गया।
1: अच्छा, फिर रेगुलर
0: एक बार अगर मान लीजिए 10 ग्लास वाला कोई भी कंटेनर आपने रख दिया है, भर दिया है, और उसके बाद 12 घंटे के बाद रात में रखा, सुबह से पीना शुरू कर दिए,
1: ओके ओके,
0: तो एक एक ग्लास निकालती है, एक ग्लास पानी डाल दीजिए, दो ग्लास निकालती है, दो ग्लास पानी डाल दीजिए, सर साइकिल चलता
1: रहेगा,
0: इसमें लॉस नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि तांबे के इसमें पानी पीने से, क्योंकि तांबे का बाद में स्टील आया है, स्टेनलेस स्टील आया
1: है, सही बात है।
0: पहले तो जो खास करके जितने अच्छे परिवार, रईस परिवार वाले होते थे तो उनके पास तांबे का है, जो जो सबसे राजे महाराजे होते थे तो उनके यहाँ गोल्ड का रहता था, उसके बाद उसे नीचे वाले थोड़ा सा आते थे, रईस लोग थे, उनके यहाँ सिल्वर का रहता था, अभी भी सिल्वर में ग्लास में पानी पीते हैं लोग,
1: धनी मानी है।
0: और उसके बाद नंबर तीन वाले जो आते हैं, जो उनको कॉपर का यूज करते हैं तांबे का, और जो हम लोग जो बाकी पीते हैं स्टील वाले पीते ही, तो जनरल है ये, ऐसा चीज निकल गया कि ना टूटता है ना फेंकने से ही फेंकना ही पड़ेगा आपको, पुराना होने के बाद जब 15-20 साल 25 साल हो जाएगा तो वो खत्म होने वाला है नहीं।
1: सही बात है, सही बात।
0: अभी भी तांबे का बर्तन महंगा है, आप कोई भी बर्तन लीजिए तांबे का, तो वो महंगा है स्टील से, बहुत महंगा है। तो अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, और आप उसे यूज करें तो कोई आपको
1: कोई हार नहीं,
0: हार नहीं है कम से कम।
1: चलिए, एक और मैसेज उन्होंने लिखा है, जिंदगी क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यय होती है, जब बुद्धि व्यय होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है, क्रोध मत कीजिए।
0: ये तो मेडिकल संबंधी कोई बात
1: कोई बात नहीं है इसमें, ऐसे, लेकिन ऐसे, ऐसे मैसेज
0: क्रोध,
1: किया है।
0: क्रोध करने से मेडिकल भी बहुत सारा है, जहाँ मेंटल टेंशन बना क्रोध बने तो बहुत सारी बीमारियां, आपका बीमारी होती है मेंटल, इसलिए आजकल हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा है, अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा है,
1: अच्छा अच्छा,
0: माइंड बॉडी मेडिसिन।
1: अच्छा, ये कहाँ चल रहा है?
0: अभी अभी चल रहा है माउंट आबू में चल रहा है, ज्ञान सरोवर में चल रहा है, काफी डॉक्टर्स इंडिया के आए हुए हैं,
1: वेरी गुड,
0: मोर देन 1000 डॉक्टर्स आए हुए हैं, और ये सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हुए हैं। इसमें यही टॉपिक ही रखा जाता है इसमें, कि पहले इलाज करना है माइंड का, माइंड का इलाज करने का मतलब क्रोध का ही हुआ ना, टेंशन का हुआ, कि हम कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, तो पहले माइंड का इलाज करके तब बॉडी का इलाज करते हैं हम लोग, तब दवा पर, माइंड बॉडी मेडिसिन, मेडिसिन लास्ट में आता है। तो ये भी ठीक है, क्रोध नहीं करें तो बड़ी अच्छी बात,
1: बड़ी अच्छी बात है,
0: कहना बड़ा आसान चीज है, क्रोध नहीं करें, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ धारण करना पड़ेगा अपने भीतर, कि हमको क्रोध कैसे नहीं करना है।
1: जी जी जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को, और संडे है, और आशा करता हूँ आप सभी छुट्टी फरमा रहे होंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं किसी भी विषय को लेकर, 94-14-15-14-15 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, चाहे आप डायबिटिक हो, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, काफ़ी समय से मेडिसिन ले रहे हो और कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर उसके लिए भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: Mammography is X-ray imaging of breast for early detection of breast cancer and other benign breast lesions. Global Hospital and Research Center at Mount Abu has recently installed new mammography system. CR-based Digital mammography. There is evidence in the medical literature that suggests that periodic mammography screening is the most effective method for early diagnosis of breast cancer, with significant reductions in the specific mortality rates caused by this disease. This screening method is especially beneficial for women aged 40 years and above. Warning signs of breast cancers are these: lump, hard knot, or thickening inside the breast or underarm area, swelling, warmth, redness, or darkening of breast, change in the size or shape of the breast, dimpling or puckering of the skin, itchy, scaly sore or rash on the nipple, pulling in of your nipple or other parts of the breast, nipple discharge that starts suddenly, new pain in one spot that does not go away. For further information, contact X-ray Department, Global Hospital, Mount Abu.
3: रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज कर सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी / एपीटी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, ए वेंग शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली 11001, फोन 011-233-86547, ईमेल pramodit.sharma@nic.in या फिर crscell-moib@nic.in।
4: अरे साहब, जरा हमको रिपोर्ट तो दो, अफवाह फैलाने में हम कितने कामयाब हुए हैं।
5: बच्चर सरदार, हमारे फौजी बच्चर इंसानों के कानों में भिन्न भिन्न की आवाज के साथ यही मैसेज दे रहे हैं कि मलेरिया संक्रमक नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो भी बुखार उतर जाएगा, और ये इंसान हमारी बातों में पूरी तरह से फंस गया है, कंफ्यूज हो गया है सरदार।
4: सब पास मेरे सेनापति मच्छर, इस बार तुमको प्रमोशन जरूर मिलेगा।
6: मच्छर गैंग चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, पर रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आपको मिलेगी मलेरिया संबंधित पूरी जानकारी।
7: मलेरिया जैसी बीमारी का इलाज समय पर ना होने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। अधिकतर बीमारियों को लेकर लोगों में भ्रम है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। जैसे एक भ्रम यह है कि अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो आप आजीवन इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं। तथ्य इसके बिल्कुल ही विपरीत है। सही चिकित्सा से मलेरिया पूरी तरह ठीक हो सकता है, इसीलिए अपने डॉक्टर्स की पूरी सलाह माने। मलेरिया और इससे बचने के उपायों को जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और डॉक्टर टीएन सिंह जी हमारे साथ है और काफ़ी अच्छी बातें वो समझाते हैं, बड़े दिल से हर चीज़ को जो है स्पष्ट करते हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोग अभी डेंगू के बारे में पूछ रहे थे, तो इसके कैसे हम लोग जो है दूर रह सकते हैं, जैसे आपने बताया तीन चार चीज़ें, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, डेंगू ना हो, मलेरिया ना हो, इसके लिए क्या करें?
1: प्रिवेंशन के लिए तो मैंने बताया ना कि इसमें एक है कि जो डेंगू एडिस मच्छर का नाम होता है,
0: अच्छा,
1: ये दिन में काटते हैं और इससे वो वायरस जो डेंगू के पेशेंट हैं वो एक डेंगू वायरस है,
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उसके पेशेंट जो हैं उसको जब वो काटेगा, डंक मारेगा, तो उससे ब्लड सक कर लेता है वो,
0: अच्छा,
1: और वो ब्लड उसके शरीर में जब गया डेंगू इसके मच्छर में,
0: हाँ,
1: एडिस मच्छर में,
0: हाँ, हाँ,
1: और वो फिर दूसरे को डंक,
0: अच्छा,
1: मारेगा,
0: दूसरे को मारेंगे,
1: मारेंगे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा वो,
0: अच्छा,
1: वायरस,
0: अच्छा, अच्छा,
1: और फिर वो वायरस जो है, तो वायरस बहुत जल्दी ग्रो करते हैं,
0: हाँ,
1: तो वो वायरस से डेंगू फीवर ये होता है। और मलेरिया वाला जो है वो दूसरा चीज है, मलेरियल पैरासाइट है,
0: अच्छा,
1: वो मलेरियल पैरासाइट क्या होता है कि जो मच्छर जो हैं वो मच्छर में ही मलेरियल पैरासाइट का साइकिल चलता है,
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: उसी में मल्टीप्लाई होकर के बहुत ही होते हैं, और तब वो जब डंक मारेगा, डंक मारेगा तो उसके बाद में उसमें वो मलेरियल पैरासाइट को इंजेक्ट कर देगा, मलेरियल पैरासाइट को इंजेक्ट जब कर देगा तो मलेरिया भी खांसने से छींकने से बढ़ता नहीं है, मलेरिया भी जो है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको अगर कोई मॉस्किटो डंक करता है तो जल्दी वो मलेरियल पैरासाइट उसमें फिर चले जाएंगे मॉस्किटो में, लेकिन मॉस्किटो में रहता है मलेरियल पैरासाइट, जब एक बार चला गया तो उसके भीतर उसका साइकिल चलता रहता है। अंतर क्या है पहचानने में, तो बचने की बात है कि दोनों में वही चीज़ है कि मॉस्किटो से मच्छर से बचना है, तो मच्छर से बचना है कि एक तो कि मच्छर ग्रो नहीं हो, बढ़े नहीं, उसके अंडा नहीं, उसके एग्स नहीं बढ़े, लार्वा नहीं बढ़े, फिर से उसमें मॉस्किटो आए नहीं, मतलब मच्छर नहीं बन सके, तो इसका तरीका ये है कि इसमें जो खास करके मलेरियल जो मॉस्किटो जो होते हैं एनोफिलस होते हैं, उसके एनोफिलस में भी फीमेल एनोफिलस से ही फैलता है मलेरिया, तो उसमें क्या है कि उसमें जो मच्छर ये होते हैं वो मल्टीप्लाई उसके लार्वा, जो अंडा दिया इसमें पानी में, अंडा से लार्वा बढ़ा, लार्वा से उसके बाद में वो एडल्ट मच्छर बन जाते हैं, तो मच्छर का साइकिल कैसे तोड़ा जाए, माने मच्छर बढ़े नहीं, जैसे मच्छर पानी में जाकर के अंडा दे रहा है, एक मच्छर कितना सैकड़ों हजारों अंडा दे दिया है तो उसे उतने मच्छर तो बन जाएंगे ना, तो उसको खत्म करने के लिए तरीका क्या है कि एक तो ऐसे गांव वगैरह में लोग मछली उसमें पाल देते हैं पानी में,
0: अच्छा अच्छा,
1: और वो मछली जो है वो सब खा जाती है,
0: अच्छा, यहाँ
1: उसका एक को भी और इसको भी लार्वा को भी खा जाएगी, तो मच्छर बनने नहीं देगी, तो उसे एक बेनिफिट होता है। और दूसरा क्या चीज है कि वो पानी, एक तो पानी को खत्म करें, नहीं रहने दें, स्टेग्नेंट वाटर जो गंदा पानी है, नाले उले का पानी हुआ चाहे सबको, उसको खत्म करें, और दूसरी बात है कि उसके ऊपर अगर कोई भी वायल का एक लेयर दे दिया जाए, कोई भी, खास करके के वायल का हुआ, कोई भी वायल का लेयर दे देने के बाद में, तो उस पर मच्छर का एक बन रह नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, ऊपर रह जाएगा, उसका कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा, तो एक उससे खत्म करने का तरीका ये है कि मॉस्किटो मच्छर कैसे, मच्छर बढ़ने नहीं पावे, और दूसरा तरीका ये हो गया कि मच्छर कैसे हमको काटे नहीं, तो नहीं काटने का तरीका ये है कि मच्छर अगर हो गए हैं, चूंकि आजकल ब्रीडिंग सीजन में मतलब मच्छर का बढ़ने का समय है, हर जगह पानी जमा हुआ है, हर जगह ऐसा है, तो मच्छर नहीं करते, एक तो जब भी जहाँ सोए जहाँ मच्छर है तो रात में मॉस्किटो नेट तो जरूर यूज करें, यहाँ तक कि देहात वगैरह में जहाँ पर अधिक मच्छर होते हैं वहाँ तो दिन में भी मॉस्किटो नेट लगाना पड़ जाता है लोगों को, दिन में अगर सोते हैं तो, और दिन में अगर काम करते हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे होता है ओडोमॉस टाइप का, बहुत सारा क्रीम है, लोशन है, या कपड़े पर लगाने का है, क्लोथ पर लगाने का ये है, उसको यूज करें तो मच्छर नहीं आते हैं, या रात में सोते हैं तो मॉस्किटो वाले जो आते हैं, जो ये सब आते हैं, मैंने फ्लूइड जो आते हैं जिससे वेपर निकलता है उससे, तो उसके गैस से वेपर निकलने से मच्छर भागते हैं, लेकिन आजकल वो मच्छर इतने एडिक्ट हो गए हैं उसके कि उसका कोई असर होता नहीं है, तो मच्छर से बचना है दोनों में ही। और एडिस वाला मच्छर है, जो एडिस मच्छर जो है, जो कि आपका डेंगू फैलाता है, वो मच्छर है वो दिन में जनरली पानी में बैठता है, पानी के ऊपर बैठता है और दिन में ही ये काटता है और वो क्लियर वाटर में बैठता है, गंदे पानी में नहीं, नाले वाले में जहाँ पानी गंदा है, सड़ा हुआ पानी, उस पर नहीं बैठेगा, क्लीन वाटर पर जनरली करो। तो इसलिए क्लीन वाटर को भी आपके फ्लावर पॉट्स में, आप घर में रखे हुए हैं भीतर फ्लावर पॉट्स सुंदरता के लिए रखे हुए हैं, खासकर लो मनी प्लांट और इनडोर प्लांट्स सब रखते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें मच्छर ग्रो करते हैं ये एडिस वाले, क्लियर पानी जो है उसमें, तो उसको हमेशा पानी निकाल दिया करें, कम से कम हफ्ते में एक बार तो पानी निकाल ही देना चाहिए। आदत बना लीजिए कि संडे को ही आप निकालिए, घर की सफाई होती है, संडे को पानी निकाल दिया कीजिए। तो पानी जब तक स्टेग्नेंट नहीं होगा तो मच्छर ग्रो नहीं कर पाएगा। मान लो आज पानी है, दो दिन रहा, आपने निकाल दिया, तो दो दिन में नहीं ग्रो कर पाएगा, उसको भी टाइम चाहिए, तो उससे बचना है। और रह गई बात, सबसे बड़ी बात आती है कि फीवर आया, हाई फीवर करके आया, हाई फीवर करके आया, तो हाई फीवर करके आया तो हर जगह कन्फ्यूजन होता है कि है क्या, मलेरिया है, डेंगू है, क्या चीज है, या इन्फ्लुएंजा वायरस से हुआ है, फ्लू हुआ है, क्या हुआ है। तो इसको लेकर के इसको ऐसा है कि एक तो है कि डेंगू अगर होगा तो डेंगू में एक्यूट बॉडी एक होता है, मैंने समझो कि कमर दर्द होता है, कमर तोड़ दर्द होगा, लगेगा कि एकदम टूट गया कमर, एकदम बॉडी में एक्यूट पेन होगा, सहना मुश्किल होता है, बहुत हाई फीवर भी होगा, साथ साथ ये होगा। और दूसरी बात होता है कि अगर वो बुखार कुछ दिन रह गया 6-7 दिन के बाद में, तो हेमरेजिक स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी में, लाल लाल लाल लाल लाल पूरे शरीर में लाल लाल बॉडी में आ जाएंगे, वो हेमरेजिक स्पॉट्स से वो बताता है कि मतलब रिस्की पॉइंट में जा रहे हैं हम लोग, मतलब ब्लीडिंग शुरू होने का डर है। जब वैसा हो जाता है तो नाक से भी खून आ सकता है, पेशाब के रास्ते से आ सकता है, अपना मल द्वार के से भी पानी, ब्लड कहीं से भी ब्लड निकल सकता है, ब्लड वेसल से डैमेज होकर के ब्लड आ जाते हैं। तो ये आगे की जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत डाउन हो जाते हैं, तो इसमें जो ब्लड जांच किया जाता है, तो एक तो CBC जनरल हम लोग कराते ही हैं और उसी में प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है, और उसके बाद टोटल WBC काउंट होता है। तो प्लेटलेट्स काउंट अगर जनरली 1.5 लाख होना चाहिए, और 1 लाख से अगर नीचे आया तो थोड़ा सा कोशिश तब डेंगू का किट का जांच करना चाहिए। डेंगू का किट आजकल आ रहा है, उसमें 3-4 उसके एंटीजन होते हैं, उसका जांच किया जाता है कि डेंगू कौन सा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है क्या है। अगर घट करके 60,000 के नीचे आ गया तब तो रिस्की चीज़ है, तब तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है। जैसे मलेरिया के लिए इंजेक्शन है, हम गोली भी है, क्लोरोक्विन का टेबलेट चलता है, या मलेरिया का उसका क्लोरोक्विन का इंजेक्शन चलता है, या आजकल और भी सारे इंजेक्शन आ गए हैं, क्योंकि मलेरिया में दो तरह के मलेरिया ले है, वायरस और फैल्सीफेरम, दोनों दो चीज़ है, दोनों का इलाज अलग अलग ये है, तो उसमें उसका इंजेक्शन आया हुआ है। लेकिन डेंगू के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, डेंगू से जो वायरस फैलता है, क्योंकि वायरस का कोई खासी है नहीं, वायरल अगर डेंगू हो गया तो बॉडी रेसिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, मतलब फ्लूइड को नॉर्मली करके, हमेशा ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, सलाइन ट्रांसफ्यूजन हुआ, ग्लूकोज का हुआ, उस जरूरत पड़ी तो प्लेटलेट्स भी चढ़ाते हैं, प्लेटलेट्स अगर कम हो गया तो ये सब हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट हो जाता है। डेंगू में जो भी रिस्क होता है वो इसलिए होता है कि प्लेटलेट्स काउंट डाउन गया, ब्लीडिंग शुरू हुआ तो इंटरनल ऑर्गन में जहाँ जहाँ से भी ब्लीडिंग हुआ तो रिस्की हो जाता है। तो देखिए कहीं आया कॉल।
2: हेलो जी रमेश जी, नमस्ते।
0: नमस्ते बताइए क्या तकलीफ
2: बोल रहा हूँ। हरीश जी,
0: हाँ हरीश जी बताइए।
2: डॉक्टर साहब से मेरी ये विनती है, ताकि हमारी बीवी को है ना जो खांसी होती है, खांसी,
1: हाँ जी,
2: हाँ खांसी कई बार हो जाती है, कितनी भी दवा की तो वो नाबूदी नहीं होती है, कोई भी मौसम में हो जाती है, सर्दी हो, बारिश हो, या गर्मियों का मौसम हो।
1: अच्छा, सूखी खांसी,
2: एलोपैथिक दवाई ली है और होम्योपैथिक भी चालू है तो भी फर्क नहीं पड़ता कुछ।
1: सूखी खांसी है, क्या होता है?
2: सूखी खांसी है, पर उसका इलाज ही नहीं होता है, क्या करें?
1: एक मिनट आपको समझाते हैं। सूखी खांसी होती है, उसमें कुछ पीला या सफेद कफ नहीं निकलता, तो ठीक है, आप सुनो, कोई बात नहीं। तो जो कफ, अगर ड्राई कफ है तो ये निश्चित है कि किसी न किसी चीज का एलर्जी है, हो सकता है डस्ट का एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी से भी होगा, या यहाँ तक होता हो सकता है कि कोई भी आप मैंने घर में अगरबत्ती अगर जलाते हैं उसका जो वेपर निकलता है उससे भी एलर्जी होता है, कमरे में झाड़ू पड़ रहा है वो जो कमरे का डस्ट जो है वो सबसे खतरनाक होता है, कमरे का डस्ट जो है, हाउस डस्ट, टेबल के ऊपर किताब कॉपी रखा हुआ है, अखबार रखा हुआ है पुराना, उसके ऊपर जो पेपर डस्ट होता है उससे भी बहुत, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्यों। आप सोचिएगा कि ठंडा तो रहा नहीं, गर्मी रहा नहीं, तो हो क्यों गया। ये डस्ट एलर्जी से भी होता है, तो ये पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसा एलर्जी चीज से होता है। दूसरी बात है कि उनको ठंड से तो कोई भी खाना ठंडा नहीं देना है, कोई भी चीज़, दही छाछ कड़ी वगैरह नहीं देना है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है उनको, फ्रिज का खाना उनको नहीं देना है, और एक बैग ठंडा से गर्मी, गर्मी से ठंडा, जैसे एसी वगैरह में सो गए, आदत नहीं है तो हो जाएगा, या बहुत ठंडा से नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत धूप में अगर निकल गए तो उससे भी हो सकता है। तो इसमें आप कफ सिरप पिलाएंगे या कफ की दवा जो चलेगी उससे नहीं आराम होगा, इसको एंटी एलर्जिक देना पड़ेगा कि जिससे कि ये हो नहीं, आगे नहीं बढ़े। अगर हो गया है तो उसके लिए दवाएं देते हैं हम लोग, खांसी की दवा देते हैं, जिसमें कि कफ का बाउट जो रिफ्लेक्स है, कफ क्या है, कफ एक रिफ्लेक्स है, जो रिफ्लेक्स बताता है, कफ कोई बीमारी नहीं है। लोग कफ को बीमारी समझते हैं, या टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है जिसको फीवर कहते हैं, तो समझते हैं कि ये बीमारी हमारे को बुखार वाली बीमारी हो गई, वो बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है। सिम्टम दिखाता है कि कफ हो गया, इसका मतलब है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर में चाहे लोअर में कहीं पर कोई एलर्जी से हो रहा हो या फिर इन्फेक्शन से हो रहा हो, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिससे कि ये नेचर जो है वो रिफ्लेक्स से बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है। उसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हाई टेम्परेचर जो होता है वो भी बताता है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बात है, इसलिए टेम्परेचर बॉडी का अधिक बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंटी एलर्जिक, एंटी पायरेटिक हम लोग दवा देते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो जाए, पैरासीटामोल वगैरह। और कफ वाला अगर होता है तो कफ रिफ्लेक्सेस को डाउन करने के लिए हम देते हैं कि कफ का बाउट कम हो। लेकिन अगर एलर्जी मिलता रहा, जिस चीज़ से इनको एलर्जी है, तो खांसी तो कभी ठीक नहीं होगी ना। तो उनको पहले ये पकड़ना है कि हाँ, डस्ट वगैरह नहीं लगे। जब घर में झाड़ू वाड़ू पड़ रहा है घर में, तो घर में नहीं बैठें झाड़ू के समय में, या अपने अगर झाड़ू लगा रही हैं तो मुंह नाक पर, मुंह पर वो कपड़ा, पतला कपड़ा बांध करके या मास्क बांध करके तब ये करें। इस वजह से बचना पड़ेगा।
0: हेलो जी, नमस्कार।
3: जी नमस्कार, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ।
1: बोलिए
3: जी सर। मेरे को मतलब पेशाब में जलन रहती है और पेट में पानी भर जाता है, जब भी पानी पीता हूँ मतलब पेशाब के जरिए कम निकलता है, पेट में पानी बचता रहता है।
1: अच्छा, क्या एज, उम्र कितनी हुई आपकी?
3: 24।
1: अच्छा, 24 हुआ। तो ये कितने कितने दिनों से ऐसा है पेशाब वाला?
3: ये मतलब लगभग 5-6 महीने हो गए।
1: 5-6 महीने में आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कहीं से मिला हुआ है? कभी फीवर भी हो जाता है, बुखार भी होता है?
3: बुखार तो मतलब कमजोर से होता है हल्का।
1: पहली चीज तो ऐसा करें, आपकी पानी खूब पिया करें। आपका कितना बॉडी वेट होगा, वजन कितना है अंदाजन आपका शरीर का?

0: 40 किलो मेरा।
1: कितना?
0: 40
1: किलो है तो कम ही है वजन, तो आपको कुछ नहीं। अगर 3 लीटर पानी अगर आप पिए तो सफिशियंट है दिन में 3 लीटर। लेकिन
0: पानी तो खूब पीता हूँ, मतलब पेट में ही रहता है।
1: हाँ पानी खूब पीजिए। देखिए पेट में पानी जब जाएगा तो पेट में से उसके बाद वो उसको किडनी में जाना ही है, रास्ता वही है निकलने का। पानी जब भी निकलेगा तो रास्ता उसका वही तरीका है, किडनी में जा कर के किडनी के थ्रू ही निकलेगा, गुर्दा के थ्रू निकलेगा पेशाब के रास्ते से। तो अब ये है कि अगर पेशाब में ऐसा है तो फिर आपको कोई यूरोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ेगा, जो मूत्र विशेषज्ञ होते हैं हिंदी में कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, वो हर हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल में रहते हैं लोग, उनके पास आप जाओगे तो एक तो वो पेशाब का जांच कराएंगे, उसका कल्चर कराएंगे, सेंसिटिविटी देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, किस किस चीज़ से ये बैक्टीरिया मर रहा है। दूसरी चीज़ है कि वो और भी देख करके उसका सोनोग्राफी करके देखते हैं लोग कि किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में कहीं पर वाटर स्टेग्नेंट तो नहीं हो रहा है, रुक तो नहीं रहा है, उसके लिए सिस्टोस्कोपी तक किया जाता है। ये कुछ जांच है। लेकिन अभी आप तो इतना करें, अभी तक तो मुझसे बात करने के बाद में पानी पीना बढ़ा दें। दूसरी बात है कि एक आप साधारण एंटीबायोटिक कुछ दिनों तक 10 दिन तक खाइए आप, नॉरफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग खाने के बाद नॉरफ्लॉक्स, पीले रंग की गोली होगी ये नॉरफ्लॉक्स, समझे, और खाने के बाद आपका पेशाब का रंग भी पीला हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, ये दवा का रंग निकलेगा। कितने लोग भागते हैं कि क्यों पीला पेशाब हो गया, जॉन्डिस तो नहीं हो गया हमको, पीलिया रोग तो नहीं हो गया, ऐसी बात नहीं है, वो दवा का रंग निकलेगा। 10 दिन आप खा कर देखो, 2-4 दिन 5 दिन खाने से नहीं होगा, खा करके देखिए, पानी अधिक पीजिए, अगर नहीं उस पर कंट्रोल होता है तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए।
2: ठीक है,
1: यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए तो वो टेस्ट करा कर देखेंगे। अभी जो कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की, अभी आप दवा खा करके देखिए, पानी खूब पीजिए।
2: ठीक है, नॉरफ्लॉक्स 400 आपको 10 दिन तक चलाना है।
1: किसी तरह से आपका पेशाब अधिक होना चाहिए,
2: अधिक,
1: अगर हाँ अगर डिसूरिया होता है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो एक अल्कली आता है, अल्कासोल है, अल्कासाइट्रन है, तो इस तरह की एक अल्कली आती है, बाजार में बहुत मिलता है, अल्कासोल करके भी मिल जाएगा, अल्कासाइट्रन करके मिल जाएगा, ये दवा ले करके और 1 कप पानी में 2 चम्मच दवा डाल करके 2-3 बार इसको पीजिए तो पेशाब का जलन आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे तो पहले बहुत अच्छा चीज़ एक मिलता था, टिंचर हायसमस करके आता था, लिक्विड आता था, बहुत सस्ता होता था, वो पानी में डाल करके पीते समय डालिए थोड़ा सा भी उसमें से, 1/4 चम्मच भी उसमें से डाल दिया गया तो पेशाब का जलन खत्म हो जाता था। आजकल मिलेगा नहीं दुकान में, क्योंकि वो सस्ती दवा है, सस्ती दवाएं जनरली मिलती नहीं है, प्रॉफिट नहीं है ना उसमें।
2: हाँ हाँ, चलिए लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है नॉरफ्लॉक्स 400 जो है 10 दिन आपको लेना है सुबह शाम करके, और सिट्राल का
1: इससे अगर बेनिफिट होता है ना तो 10 दिन तक आप मॉर्निंग इवनिंग खा करके या उसके बाद 20 दिन तक एक एक गोली रात में खाते रहो।
2: हाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत,
1: 1 महीना दवा चला दो, 1 गोली फिर रात में खाना है। इससे क्या होगा कि रात में जो पेशाब जमा होता है पेशाब के थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में, वो जब भी एक्युमुलेट होगा तो बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका नहीं देगा वो, इसलिए रात में अगर गोली खा लेंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया।
2: ये अच्छी बात आपने बताया, आशा करता हूँ लक्ष्मण जी आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी इन सभी चीज़ों को करने के बाद अगर नहीं कुछ होता है तो मूत्र विशेषज्ञ को जो है उसको आपको बताना है, वो डॉक्टर को, मूत्र विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट करके होता है, तो वो उनसे आप जरूर एक बार संपर्क करें ताकि आपको पूरा डिटेल्स मालूम पड़ जाए। हेलो जी नमस्कार।
3: नमस्कार, और आपको नमस्कार, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नमस्कार सुरेश जी, बोलिए
3: सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति।
2: ओम शांति।
3: और मैं पूछना चाहता था डॉक्टर साहब से कि मैंने मोतिया का ऑपरेशन करवाया है।
1: क्या चीज का, क्या ऑपरेशन?
2: मोतियाबिंद
1: का कराया है, कैटरेक्ट का कराया है।
3: तो आज मेरे 12 दिन हो गया।
1: हाँ हाँ,
3: तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता कि हम कितने दिन के बाद काम कर सकते हैं, जो हमारा सिलाई का काम है।
1: हाँ हाँ, इसमें देखिए दो मतलब आइडिया है इसका, जो हाँ। बहुत अच्छे सर्जन हैं आई के, तो हाँ। मैं आई सर्जन नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो फैक्ट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो दो ग्रुप है, एक जो पुराने सर्जन जो हैं, जो कि बड़े नामी सर्जन सब हैं, अच्छा ही हैं, हाँ। वो तो 3 हफ्ते तक का 3 वीक्स का करते हैं,
2: टाइम देते हैं, हाँ।
1: 3 हफ्ते तक का कि प्रिकॉशन लेना है आपको, कि आपको आंख में कोई चीज नहीं पड़ना चाहिए, हम चश्मा देखो मैं धूल ओल नहीं पड़ना चाहिए, कोई ऐसा चीज आंख पर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ तक कि स्नान उस्नान करने में भी लोग ऊपर से पानी नहीं डालने देते हैं, लोग बहुत सारा प्रिकॉशन लेते हैं लोग। और एक ग्रुप अभी मैंने ये हुआ 3 हफ्ते वाली है इसमें रखने में, तो अगर आप रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सेफ्टी के लिए, उसमें कोई घाटा आपको नहीं है। यही है कि 3 हफ्ते तक अब सिलाई आप कर रहे हो, सिलाई करने में आप ध्यान देकर कर रहे हैं, कपड़ा ही सिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कपड़े का कोई कॉटन का कोई चीज उड़कर आंखों में अगर पड़ जाता है आपको तो आपको कष्ट कर सकता है। अगर वैसा करना है तो चश्मा लगा करके, जो डॉक्टर लोग चश्मा भी देते हैं ना ऑपरेशन के बाद में, तो चश्मा पहन करके अगर करें तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि
3: एक हफ्ते के बाद दिखाने गया था तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जो आपको नंबर निकालना तो मैं आपको नंबर निकाल के आप काम कर सकते हैं,
1: हाँ।
3: और एक हफ्ते के बाद जरूर 10 दिन के बाद काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 15-20 दिन के बाद ही काम,
1: ठीक है, आपने अच्छा सोचा और डॉक्टर साहब ने भी 10 दिन का समय दिया। अच्छा अभी मैं दूसरा ग्रुप के लिए आ रहा था, दूसरा ग्रुप जो पहले वाले ग्रुप हैं ये, तो अगर पहले वाले जो डॉक्टर जो नामी नामी डॉक्टर हैं लोग जो कैटरेट के नामी डॉक्टर हैं वो कुछ, वो तो सारे डॉक्टर जो पुराने डॉक्टर हैं वो तो 3 वीक के लिए चलते हैं, आप कहते रह जाओगे उनके सारे असिस्टेंट जो कहेंगे कि नहीं साहब 3 हफ्ते के पहले आपको कोई काम नहीं करना है। कहीं कहीं पर तो जो बड़े बड़े आई हॉस्पिटल हैं शंकर नेत्रालय वगैरह मद्रास वाला जो है वो तो हफ्ते 10 दिन के लिए एक साइड में एक करवट में सोने के लिए करता है, राइट आइड में अगर हुआ तो राइट आई साइड में सोने नहीं देगा, करवट नहीं सोने देगा, इतना तक प्रिकॉशन लेते हैं लोग कि थोड़ा सा भी झटका नहीं आना चाहिए आंख में। लेकिन दूसरा ग्रुप जो आजकल नए नए डॉक्टर्स जो आए हैं, अच्छे सर्जन हैं, उनका भी काफ़ी नाम है, ऐसा नहीं है, वो तो 7 दिन के बाद ही कहते हैं कि भाई सारा काम करो आप।
3: मुझे ऐसा ही बोला जो वो सर्जन ही है, मैंने जो ऑपरेशन करा वो सर्जन ही है, तो बोला कि 1 हफ्ते बाद आप काम कर सकते हैं और आराम से, तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मैं
1: अच्छा है, आपने ठीक ही सोचा, दोनों के बीच में सोचा कि ठीक है आप आराम दिन 15 दिन के बाद ही करें तो कोई घाटा तो नहीं है ना। लेकिन ये जो है 7 दिन वाले जो है ये भी गलत नहीं है, उनका कहना ये है कि आजकल का जो लेंस जो आता है इंट्राऑक्युलर लेंस कहते हैं उसको, तो जो लेंस डाला जाता है उस पर जो सिस्टम जो है, अभी आजकल आंख का जो ऑपरेशन होता है कैटरेक्ट का ना, उसको फेको सिस्टम कहते हैं, तो फेको सिस्टम से वो लेंस को फोल्ड करके डाल दिया जाता है, बहुत छोटा सा होल करके, हाँ वैसा ही किया होगा
3: आपने, आपने बताया ऐसा हिसाब नहीं किया है,
1: हाँ वही वही फेको सिस्टम, आजकल फेको सिस्टम ही चलता है।
3: बस ऑपरेशन के बाद बोला कि आप आंख खोल के चले जाओ, कोई बात नहीं,
1: हाँ तो उससे अभी क्या होता है कि आपका जो लेंस जो निकाला जाता है ना, जिस पर कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, जिसमें माड़ी टाइप का जो होता है कि वाइट हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, उस लेंस को निकालना पड़ता है, और लेंस निकाल करके उसके जगह पर लेंस एक डाला जाता है, तो लेंस को अगर पूरा डाला जाए तो वो तो पूरा पड़ने में चीरा बहुत लगेगा, ऑपरेशन का इंसिजन बड़ा पड़ेगा, लेकिन वो नया ऐसा फोल्ड करके निकल गया है कि लेंस को फोल्ड कर दिया जाता है, बहुत छोटा कर दिया जाता है, वो मिलीमीटर में आता है एकदम, मैंने इतना छोटा करके, और उसको एक ड्रॉप के साथ ऊपर से डाल देते हैं आंख में, और डाल जा करके वो फोल्ड फिर खुल जाता है वहां पर, समझे, खुलने के बाद में तब वो धीरे, तो अब वो फुल लेंस भीतर चला गया, अपने जगह पर वो चला गया। तो पहले वाले डॉक्टर जो थे वो जो 3 हफ्ता का करते हैं वो ये कहते हैं कि लेंस अपना जगह पकड़ लिया, जब तक लेंस वहाँ सेट नहीं हो, माने वहाँ के आई के टिश्यू के साथ वो पक्का नहीं हो जाए, पकड़ नहीं ले, तब तक रिस्क है। और अभी नए वाले जो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं, उन लोगों का कहना ये है कि साहब जो हमने डाल दिया वो इस तरह का लेंस बना हुआ है कि वो एकदम फिक्स हो गया, तो उसमें ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत काम करें तो कोई बात नहीं है। तो आपके डॉक्टर साहब ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, जो बताए हैं 10 दिन 7 दिन आप 15 दिन कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है आप करके, हाँ थोड़ा सा यही है कि अधिक, हाँ बिना चश्मा का धूप, बिना जो डार्क चश्मा देते हैं लोग उसके धूप में नहीं निकलना है, डस्ट कोई कोई इंजुरी नहीं होनी चाहिए, आंख पर झटका नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरह का झटका नहीं, कपड़े का काम आप कर रहे हो सिलाई उलाई का ना, तो कपड़ा खींच करके और फैलाने में चाहे इस सब में कभी आंख में झटका पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए, उससे बचना है आपको। यहाँ तक कि माथे ओथे में जो होता है ना, लोग तेल वेल लगाते हैं तो ऊपर से, कितने लोग आदत है कि ऊपर से माथे पर मारते हैं, जो चंपी करते हैं लोग, जो पहले जो फिल्म देखे होंगे जो इसमें जॉनी वॉकर करता था चंपी वाला, वो जो चंपी चंपी करते हैं लोग, तो चंपी वंपी बंद रहता है उस पर, माथे पर ठोकने वाली बात बंद होती रहती
3: है।
1: तो वही वही बचना है, और कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।

0: डॉक्टर ही हम लोग हैं, तो कितना दिन अपना काम छोड़ करके ये करेंगे, या जो भी कहीं पर भी जो कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये है, दोनों मतलब डिफिकल्ट है। नया वाला भी सिस्टम बुरा नहीं है।
1: तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे शुरुआत में हमने डेंगू और मलेरिया के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसमें और क्या बता सकते हैं?
0: हाँ, तो दूसरा चीज़ है कि अगर फीवर आता है, हाई फीवर आता है और जाड़ा दे करके आता है, ठंडा करके आता है, मैंने कपकपी हो गई जाड़ा दे करके आता है, अगर आ करके या तब बुखार चढ़ता है खूब जोर से, बुखार काफ़ी अधिक हुआ, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा बुखार रहने के बाद में पसीना होकर के अगर उतर गया, तो चांसेस अधिक है मलेरिया का। ठंडा लग करके आया, एकदम कपकपी हुई, आपको कंबल चादर ओढ़ना पड़ गया, और ओढ़ने के बाद में फिर फीवर हाई गया, हाई जाने के बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे फीवर उतरना शुरू हुआ, पसीना हुआ उतर गया, तो इस तरह का फीवर अधिकतर मलेरियल होते हैं। ऐसे जाड़ा देकर के और भी बुखार में आता है
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन इसमें दूसरा है कि फीवर वाला में एक ग्रुप जो है वो अल्टरनेट फीवर आता है।
1: अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, ये बहुत लोगों को देखा है।
0: जनरली जनरल अल्टरनेट आता है, तो ये भी एक लक्षण है मलेरिया का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: कि अल्टरनेट डे करके आता है, तो उसमें कुछ गेस कर सकते हैं, लेकिन डेंगू में कभी अल्टरनेट नहीं होगा, जब होगा तो
1: बहुत ज्यादा तगड़ा होगा।
0: अच्छा, ऐसा भी है कि डेंगू का कोई जरूरी नहीं है कि कोई आप दवा करें, बॉडी रेसिस्टेंस अगर ठीक है तो 4-5 दिन के बाद अपने भी ठीक हो जाएगा, अगर आपका प्लेटलेट्स अधिक डाउन नहीं हुआ है तो क्योंकि उसकी कोई दवा नहीं है। उसमें यही है कि न्यूट्रिशन पूरा दिया जाता है, हॉस्पिटल में भी जो एडमिट होते हैं तो ट्रांसफ्यूजन ही किया जाता है, वो ग्लूकोज का हुआ, सलाइन का हुआ, ये सब का दिया जाता है, अगर कम हो गया प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स का भी आता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, किया जाता है, फुल न्यूट्रिशन दिया जाता है, पानी का कमी बॉडी में नहीं होना चाहिए। डेंगू में डेंगू का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, उसके किट से एंटीजन से डायग्नोसिस किया जाता है, वो जरूरी है। मलेरियल पैरासाइट का पहले तो पेरिफेरल मलेरिया का जांच होता था कि ब्लड में पेरिफेरी में जनरली रात में पेरिफेरल मलेरिया पकड़ाता है, रात में अगर ब्लड स्लाइड लिया जाए तो अधिक पकड़ाता है। देखिए,
1: हाँ जी,
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार कंचन भाई, बताइए।
2: बस सर, अभी सुन रहा था, थोड़ा चल गया था नेटवर्क। तो आगे जो मुंह में मेरी तकलीफ थी, छाले पड़ गए थे, तो जो बताया डॉक्टर साहब ने जो उपचार किया वो ठीक हो गया।
0: अच्छा, ठीक हो गया, धन्यवाद।
2: जो मलेरिया की
0: बाबा को धन्यवाद दीजिए, श्री बाबा को धन्यवाद दीजिए।
2: थैंक यू सर, धन्यवाद। और जो मलेरिया की बात बता रहे हैं, तो आज सीजन है अभी,
0: हाँ बहुत सीजन है,
2: हाफ बॉय के कपड़े पहनने चाहिए, आखी बॉय के, और खूब सतर्क रहने की जरूरत है सर। मैंने काम किया है मलेरिया में, MLV
0: मलेरिया प्रिवेंशन वाले ग्रुप में कर रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है।
2: 50 रुपये मानद एकदम मिलता था महीने का,
0: पहले पहले पहले 50 रुपया भी मिलता था, तो आजकल 5,000 से ऊपर हो गया ना। उसमें वही है कि आजकल यही है कि कपड़ा जो है ना, मतलब फुल बाजू का हो, मैंने मैक्सिमम एक्सपोज पार्ट्स नहीं रहे,
1: फुल शर्ट पहन लेने से भी,
0: फुल शर्ट पहने तो जनरली,
2: और हेलो पहले से मादा मच्छर आपको तो पता है, लेकिन ये स्वच्छ पानी का रहना था, स्वच्छ पानी में जो आसपास जो टायर वगैरह है, और इसको ये कर देना चाहिए,
0: उसमें भी होता है, उसमें खास करके डेंगू वाला जो है ना, क्लीन वाटर में डेंगू वाला जो एडिस मच्छर जो है ना, वो ब्रीड करते हैं अधिक, दोनों में यही डिफरेंस होता है, वो कभी भी
2: पानी भरा रहता है वहाँ, ऑयल
0: थोड़ा सा डाल दें तो बेटर ही होता है। और ऐसा है कि कहीं रखे, कितने लोगों को शौक से हैचरी करके बना करके रखे हुए हैं लोग, मैंने मछली पाल करके रखे हुए हैं लोग शीशा में, अपने जो करके घर में रखते हैं ना,
2: तो गर्मियों की ऋतु में जो गर्म कुंड रखे हैं ना हमने,
0: बाहर भी कितने लोग अपने कुंड बना करके मछली पाल करके रहते हैं, तो वो भी उसमें यही है कि मछली है ना, तो वो नहीं ग्रो करने देती है, वो सारे उसके अंडे लार्वा को खा जाती है इसके, मॉस्किटो के,
2: इसमें कोई मछली आती है सर, हमने छोड़ी है कई बार,
0: वो दूसरी मछली होती है, सारी मछलियां नहीं है, उसे स्पेशल मछली है वो।
2: नहीं सारी मछलियां नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ, वो मछलियों का भी ग्रोथ बहुत जल्दी होता है।

0: है उसका,
1: हाँ,
0: बहुत बड़ी हो जाती है बहुत जल्दी
1: हाँ,
0: सही
1: जब
0: आपने
1: जबकि मछली
0: बताया।
1: आती है, एक हमें एक बताया था सर ने, जब ट्रेनिंग करते थे तो।
2: ठीक
1: अच्छा
2: ओके जी,
1: सभी दोस्तों को आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: नमस्कार
2: नमस्कार। चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। तो कंचन भाई जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे और पिछले कुछ समय पहले उन्होंने किसी विषय को लेकर बात की थी, वो मुंह में छाले आ जाते
0: थे, ब्रोंकाइटिस के बारे में बात हुई थी,
2: तो ठीक हो गया उनको। तो उसके साथ में आज के इस एपिसोड में, जैसे कि शुरुआत में हमने मलेरिया, इससे जुड़ी हुई बुखार, ये सब चीज़ें कैसे होता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताया है। और उसके बाद हमारे एक कॉलर लक्ष्मण जी पेट में पानी भरने की समस्या बताया, उनके लिए डॉक्टर साहब ने नॉरफ्लक्स 400 10 दिन चलाने के लिए बोला है,
0: में उनका यूटीआई का प्रॉब्लम
2: तो वो 10 दिन ले ले, फिर उसके बाद एक एक गोली करके 20 दिन और ले ले, तो पूरा महीना भर अगर आप खाते हैं तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद हरीश जी ने फोन किया था खांसी के लिए, तो उसके लिए सब चीजें डॉक्टर साहब ने बताया है, एंटीबायोटिक और फिर सिरप आप ले सकते हैं जिससे आपको राहत मिलेगा। और उसके बाद हमारे सुरेश जी जोटाना वाले आ गए, जो कैटरेक्ट ऑपरेशन किया है और उनको जो है रेस्ट करने के लिए कहा था, तो वो चीज़ें चल रही हैं उनकी। और उसके बाद अभी हमारे कंचन भाई आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक्स।
2: और मैं चाहूँगा कि आपका नंबर ज़रूर बता दें ताकि कोई मिस हो गया, जैसे एक फ़ोन नहीं लग रहा था कंचन भाई बता रहे थे, तो आप अपना नंबर ज़रूर बताएँ।
0: 9494141400074793।
2: तो ये डॉक्टर साहब का नंबर है, आप सुबह 9 से 12 के बीच में या शाम को 4 से 6 के बीच में ही फोन कीजिए, बीच में डिस्टर्ब ना करें। ओके, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामना के साथ हम चाहेंगे इजाजत। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: बाबा की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
1: बस मजे में।
0: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रही कि आप बहुत खुश हो।
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
1: मेरा बचपन गुजरात में।
0: गुजरात में कहाँ पर?
1: पालनपुर।
0: ओ तो तुम्हें गुजराती छो एम ने?
1: गुजराती छो।
0: सुवाद छी है। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
1: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
0: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
1: मेरे 3 भाई थे और 5 बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब। फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए थे, ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
0: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे। थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं कि आप बता रहे थे आप 8 भाई बहनों।
1: 8 भाई।
0: आपका नंबर कौन सा बनता है?
1: मैं तो लास्ट में हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे, तब तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
1: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। 3 बहनें बड़ी थी हमारे से।
0: अच्छा तो आपका नंबर 7वें नंबर पर, 8 भाई बहनों में आपका 7वां नंबर।
1: 7वां नंबर। 3 भाई ऑफ हो गए मेरे
0: बचपन में ही।
1: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे है इनके।
0: सॉरी बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
1: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
0: आप 8 भाई बहन में आपका 7वां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
1: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
0: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
1: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। मम्मी भी बिचारी, ये भी हमारे हम छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे। ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
0: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
1: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी, क्योंकि
0: 8 भाई बहन है इसलिए।
1: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
0: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
1: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
0: सर्विस किस में करते थे?
1: ये चपरासी की।
0: स्कूल में?
1: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
0: अच्छा तो आप 8 भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए, कि भाई नहीं पीना चाहिए?
1: छोटे छोटे थे, क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
0: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
1: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बेचारी कहाँ कहाँ ध्यान देवे। ओ मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के हमारा पेट भरने का लावे के हमारे में ध्यान देवे।
0: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
1: सारे पैसा उड़ा देते थे। तो फिर माँ को तो करना है कुछ न कुछ काम।
0: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
1: नहीं कौन करने वाला है मदद आजकल।
0: नहीं जैसे आपके भाई बहन ऐसे बड़े भाई बहन?
1: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था, झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
0: पिताजी तो व्यसनी थे लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने, आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
1: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो। पर इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने हम 5 बहनें थी, 3 भाई थे, तो फिर शादी शुदा हो गया, तो फिर ये इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी तो मम्मी इन सबका टेका लेके सहारा लेके हमार को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
0: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
1: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, और पढ़ाई नहीं करी, हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए, कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने कभी किसी से नहीं।
0: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे तो घर का काम कौन संभालते थे?
1: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदियां संभालती थी सारा काम। फिर ये शादीशुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा, हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम, तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने, फिर पैसे थोड़े घने मिले तब मम्मी के पास में ही है।
0: अच्छा, अभी भी आपने मम्मी के पास ही रहते
1: हैं? हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां एक लड़का।
0: जल के मर गए?
1: तो फिर
0: कुछ हादसा हुआ क्या?
1: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी, तो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गए। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई, सारा हमारे पियर में वही संभालती, भाभियां नहीं संभालती, हमारी छोटी वाली संभालती है।
0: अच्छा, बहुत तो देखो, कहते हैं कि कहां से कहां नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
1: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में ही थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
0: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
1: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले भगवान, भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आके ये सारे बच्चे, तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे मान ही नहीं भाव, ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
0: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
1: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को ही, बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको, घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता।
0: वो कहते ना, त्याग उन्होंने भी किया ना,
1: इसने जीवन त्याग कर दिया, इसने शादी शुदा था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे, तो बच्चे बहुत इज्जत करते हैं इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते कि नहीं हमारे मम्मी पापा यही है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जाकर के मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं, और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे। तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
5: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
4: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहा है, बड़े होवे ही नहीं।
5: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
4: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके। तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
5: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके बच्चों को संभालने के लिए, थोड़ा घना मम्मी ने करा। फिर भाई ने नौ सर्विस करी, कुछ भाई ने थोड़े घने पैसे दिए, ऐसे करके हमारा गुजारा। की सब बहनों की शादियां कर दी मम्मी ने।
4: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
5: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर करके, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी काम काज करने के लिए।
4: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
5: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को, काम ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था, तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
4: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: 15-16 साल की थी।
4: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी?
5: तो
4: शादी करके आप सीधे आबू आए?
5: सीधे आबू आए।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
5: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
4: मतलब कैसे, जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
5: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
4: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
5: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
4: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
5: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, मैंने भी डट के सामना करा।
4: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
5: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जी थी मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
4: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, या परिवार वालों का दबाव था?
5: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलो। ऐसे ही झोपड़ा था, घर मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इनों को मैंने बनवाया। बहुत ऐसे मैंने संकट से झीला है।
4: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
5: नहीं देखा था, इन्होंने देखा था क्योंकि मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से। पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी क्या मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे में हेल्प करते थे। मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे, करते थे।
4: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था? जैसे आप कह रहे थे ना ननन देर सास ससुर सभी।
5: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला नहीं सारा करा।
4: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
5: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए। फिर ऐसे ही छोटी मजूरी करी, धंधा कर, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है। इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे। जैसे तैसे करके सोड़ी गणी बचत करके फिर ये मकान करवाया, बनाया मैंने।
4: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
5: मैंने 5-6 साल बाद।
4: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया। तो 5-6 साल आपने क्या किया, घर के कामकाज?
5: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
4: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू मैं होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोजी। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
5: हाँ, होता था, बहुत होता था। कोई सगे वाले आते थे, करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी। फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़ा करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने, आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले। फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए, दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया। करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
4: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपये लिए मंथली?
5: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करे मैंने।
4: ये कितने साल पहले की बात होगी?
5: ये होगी दीदी, ज्यादा टाइम के।
4: पर 250 रुपये में सारा ही काम?
5: फिर 550 रुपये ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
4: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
5: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती, 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं। वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश ब्रश करवा के चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती। तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते, बंद करके मैं काम करके आती।
4: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद दियर, फिर इनको कौन?
5: हाँ,
4: समझ
5: तो शादी होगी थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे। इसके आदमी तकलीफें देते थे तो भाई के ही घर पे आवे ना, कहने का जा रहे, माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको। जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनको, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको। कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं ही संभालती हूँ दोनों बहनों को।
4: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक गीत, तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव। तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: जय।
1: ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतना इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं इस संस्था को।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया है कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
3: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारा में सेट हो गई हूँ।
2: जी जी, अब तो इतने साल हो गए। जो
3: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी। ये हिंदी क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते हैं हिंदी। अब सब समझ गई हूँ।
2: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी, क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
3: नहीं, मेरे पेयर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी सरप बरप पीते थे करते थे, तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे, आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे 5 लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जाता दे दी थी बेटियों को, देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह 5 बहनों के।
2: जी जी हाँ, सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएगी तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
3: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं, पर तकलीफें तो घनी हैं।
2: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे? आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
3: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को। ऐसे ही घूंघट में रहना, करना, मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
2: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
3: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
2: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
3: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको, दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
2: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
3: हाँ, पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
2: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
3: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा, कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
2: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
3: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना है ऐसा काम, बंगलों का काम, तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते, तो तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
2: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है। काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
3: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
2: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
3: 1-2-3 बज जाते थे सोते करते। सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के फिर 9 बजे मैं थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती।
2: सुबह 9 बजे?
3: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
2: बहुत काम करते थे। तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया, वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है, तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
3: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी, पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
2: खुददारी से जीवन जिया,
3: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
2: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है। काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
3: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
2: जी जी, तो आपके जैसे बेटियाँ भी है, तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटियाँ पढ़ रही है?
3: नहीं, मेरी 2 बेटियाँ ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
2: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की, पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
3: हाँ, 7th क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूलें छोड़ दी। फिर
2: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
3: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे, तो फिर इन्होंने बिचारियों ने काम करा दोनों बहनों ने।
2: देखिए, पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों को तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
3: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चियों ने फिर मम्मी कहे तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
2: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?

0: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाना थे, फिर दिखने जैसी हुई, फिर सगाई करी, शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। फिर छोटी वाली थी, इसने 8वीं पास करी है, इसने छोटी वाली ने, वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इनों को भी ऐसा लगा कि भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी, फिर तो फिर घर पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, फिर वो दे ही नहीं पाई बापड़ी, काम धंधे के आगे पढ़ाई नहीं कर सकी।
1: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते?
0: हेल्प करती मेरे साथ।
1: तो अभी आप क्या करते हो काम?
0: अब बेटा कमाता है, थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे। बेटी अभी जाती थी काम पे, फिर इसने छोड़ दिया। छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती, इसने छोड़ दिया अभी।
1: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
0: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया, तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
1: जी जी बिल्कुल। तो प्रवीणा जी, और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumari.
1: सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम. प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं. प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है. बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
2: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संघट करा है. बोले अपनी, अब मम्मी हम जाएंगे तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो. काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है.
1: काम तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
2: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते हैं. तो ऐसे कुछ मांगते हैं तो दे देते हैं, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती. अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास, ये इनका छो करता है. इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा, पर इज्जत की रोटी खाई मैंने. मैंने शान से जी, उन शान से ही वही रहना है मेरे को. इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा, अब मत काम करो.
1: जी जी बिल्कुल. कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है, लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है. तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
2: नहीं, सब खुश थे. मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई. मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ. सबके सामने हंस के सामने आई हूँ. तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियां खुशी थी मेरे को. प्रवीणा प्रवीणा करके करती, ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है. वहां पे भी पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी.
1: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है. तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है, और यही होना चाहिए सही मायने में. तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटे वाले को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
2: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है, और एक बेटा अभी छोटा वाला है नौवीं में आया है. तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे, कैसे करे, अभी सोच रहे. इसकी फीस भी जमा करनी है और सोच रहे वहां तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको चुप्त कर देंगे.
1: जी जी बिल्कुल. देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना. आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की? जो
2: बहुत अफसोस होता है, बहुत, के खेल कूद में हम

0: मेरे बच्चों के साथ में हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ।
1: बच्चे आपका कहना मानते?
0: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं। मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे देवे, एक रोटी देवे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है।
1: जी जी, तो प्रवीणा जी, आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
0: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने, अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा।
1: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
1: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और रेडियो मधुबन पर अभी कार्यक्रम समय हो रहा है सलामे जिंदगी का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.8 FM, और जहां पर आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम, जो हर सप्ताह में एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आपके सामने लेकर आते हैं जिनके जीवन में हम थोड़ा झांकने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक विशेष शख्सियत रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे हैं, जिनका नाम है अनिल वर्मा अमरोही जी। और अनिल वर्मा जी उत्तराखंड रुड़की से आज हमारे स्टूडियो पर पधारे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आज एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है और ब्रह्मा कुमारी इसके कैंपस में है, और आज आपका यहाँ आना हुआ है, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आत्मिक शांति प्राप्त हो रही है
0: जी। और जो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है रेडियो मधुबन, हमारे यहाँ के आसपास के जो जनसाधारण है उनकी आवाज़ है, और उनके लिए आप जैसे लोगों को भी लेकर आता है जिनके जीवन से बहुत सारे अनुभवों में से कुछ अनुभव हम अपने श्रोता तक पहुँचाते हैं। आज के इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में आगे की ओर चलते हैं, और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में आपके श्रीमुख से। सबसे पहले चलेंगे आपके बचपन की ओर, कि जो बचपन होता है वो हमारे पूरे जीवन की नींव होती है
1: जी।
0: और उस नींव में जो पत्थर रखे गए हैं उस नींव में, उसके अनुसार ही उतना मजबूत हमारा जीवन का मकान बनता है
1: जी।
0: तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, माता पिता आपके कौन थे, अपने माताजी से क्या सीखा, पिताजी से क्या सीखा जो अभी भी आपको काम आता है?
1: मैं अमरोहा, जिला मुरादाबाद में आता था, अब तो अमरोहा अपने आप में एक जिला बन चुका है। मेरा जन्म वहाँ पर हुआ
0: जी,
1: 19 नवंबर 1954 को। लेकिन मेरी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई है 30 जुलाई 1955, वो स्कूल में जो लिखवाई गई वो अलग है, पुराने लोग ऐसी लिखवा दिया करते थे
0: जी जी।
1: तो माता जी ने बताया कि आपका जन्म उसको हुआ था। तो अमरोहा से मैं जन्म के बाद जो है वहाँ पे ही कुछ चौथी क्लास तक वहीं तक पढ़ा। मेरे पिताजी पुलिस लाइन में थे, रामपुर पुलिस लाइन में। पुलिस में होने की वजह से हम फिर वहाँ से अमरोहा से उनके पास चले गए रामपुर उत्तर प्रदेश में रहने के लिए।
0: जो बचपन के बारे में पूछ रहा था, जैसे हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला जो परिचय हमारा होता है अपने माँ माता जी से और पिताजी से होता है
1: जी।
0: तो माता जी के अंदर कौन सी ऐसी विशेषता आप देखते हैं?
1: जी, माता जी से मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा ली है, एक तो इस बात के लिए है कि वो बहुत सच्चाई और ईमानदारी पे चलने का उनका वो था। दूसरी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, भजन गाया करती थी।
0: अरे,
1: तो वो मुझे भी शौक लग गया। ये बहुत ही अच्छा मेरा सौभाग्य रहा कि आज वो चीज़ मेरे गले में उनकी आवाज़ दी हुई है जो काम आ रही है।
0: और पिताजी से क्या सीखा?
1: पिताजी पुलिस में थे तो अनुशासन प्रियता तो स्वाभाविक सी बात है, और वो थोड़ा गुस्सा तो करते थे, यार पुलिस वालों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। लेकिन पिताजी से मैंने ये सीखा कि आप कम बोलिए लेकिन संतुलित बोलिए और अनुशासित रहिए जीवन में।
0: तो ये विशेषताएं आपने भी अपने जीवन में डालने का प्रयास किया?
1: बिल्कुल किया। मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जब मैं पिताजी के साथ, उनका ट्रांसफर शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में हो गया
0: जी,
1: वहाँ से मुझे जाना पड़ा चांदपुर जिला बिजनौर मेरे मामा जी के यहाँ। वो मुझे ले गए, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, बड़ा था हमारे, हम तीन बहन भाई थे। वो चांदपुर में ले गए, वहाँ मेरी हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई 1965 से लेकर के
0: जी।
1: और 1970 तक, इस दौरान जो हमारे जो पैतृक उनका व्यवसाय था, स्वर्णकार हम लोग हैं वर्मा, वो सोने का काम हमारे मामा जी करते थे। तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही था कि आपने स्कूल जाना है और स्कूल से जो है घर आना है और घर से दुकान, इतना ही मेरा जीवन था। वहाँ मामा जी के यहाँ रह करके जो मेरी नींव जो पड़ी है वो ये थी पड़ी कि वहाँ वो जो काम करते थे वो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी पे चलते थे। वही गुण मामा जी में थे, वही माता जी में थे।
0: माता जी में,
1: और कहते हैं ना कि माता जी में तो एक माँ होती है लेकिन मामा में दो माँ होती है। इस नाते जो मैंने वहाँ से सीखा वो, और जो मेरे जीवन में काम आया वो सच्चाई ईमानदारी थी सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा।
0: बहुत अच्छी बात है। और आज इस सलामी ज़िंदगी के मंच से इन दोनों आत्माओं का, जिनका आपके जीवन में गहरा प्रभाव रहा, उनको भी हम सलाम करना चाहेंगे
1: जी, जी।
0: और आगे बढ़ना चाहेंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, अगले कदम पे उसको सामना होता है अपने शिक्षक से,
1: जी जी,
0: स्कूल के दर जाता है, माता पिता उसको लेकर भले जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा समय आता है कि शिक्षक का प्रभाव माता पिता से भी ज्यादा एक छात्र के जीवन में हो, तो उनको कैसे याद करना चाहिए, कैसा स्कूल था, आपके दोस्त थे और शिक्षक कौन हुआ करते?
1: जी जी, मैं जरूर इस पे प्रकाश डालूंगा। 1970 में मामा जी के यहाँ से हमें अमरोहा आना पड़ गया, जो हमारा पैतृक निवास था।
0: जी,
1: जब मैं वहाँ फर्स्ट ईयर में 11वीं क्लास में दाखिला लिया, मेरी छवि जो थी एक अच्छे स्टूडेंट की थी, तो वहाँ पर जो मेरे शिक्षक थे, तब तक मैं बहुत शर्मीला था, स्टेज का मुझे कोई अनुभव नहीं था। मेरे एक शिक्षक थे, मैं आज उनको याद करना चाहूँगा, श्री श्याम सुंदर जी, जो हमें हिंदी पढ़ाया करते थे।
0: जी,
1: उन्होंने मुझे एक बार, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हम थे, सेकेंड ईयर वालों को हम वो दिया करते थे विदाई, फेयरवेल होती ना
0: जी,
1: सीनियर्स को विदाई देने के लिए, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा, हमसे कहा नील तुम्हें वहाँ जा करके कुछ बोलना है विदाई। अच्छा। और बिल्कुल कोई अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था, बोलना कैसा है, जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं गया और जा करके जो भी मन में आया, जो कुछ था, वो मैंने बोला। लेकिन उन श्याम सुंदर जी की उस मुझे जो जबरदस्ती धक्का दिया था या भेजा था माइक पे, उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके बाद मैं सेलेक्ट, मेरा सिलेक्शन होने लगा डिबेट्स के लिए। मैंने स्कूल से जो थी कई डिबेट्स में, जैसे हमारा जिला था मुरादाबाद, तो वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गया, तीन तीन लड़कों की या लड़कियों के साथ जिस तरह से टीम बनती थी, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, गए, कुछ सफलता कम मिली, लेकिन माइक फेस करने की वो हुई। फिर उसके बाद जो है हमें रामपुर भेजा गया किसी डिबेट के लिए, एक प्रोग्राम के लिए,
0: तो एक सिलसिला चल निकला।
1: और ऐसा हुआ, मतलब धीरे धीरे करते करते, जब मैं डिग्री कॉलेज में 1972 में आया, तब तक जो है मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो चुका था, और मुझे अपने शिक्षकों को ही सारा मतलब क्रेडिट देना चाहूँगा कि अगर वो मुझे उस दिन 11वीं कक्षा में नहीं भेजते विदाई समारोह में, तो मैं शायद जो आज बोल रहा हूँ आपके सामने, इतना भी नहीं बोल पाता।
0: बिल्कुल, एक इंसान के जीवन में जो मार्ग से हम गुजरते जाते हैं, तो उस मार्ग में जो भी हमको मिलते हैं, हर एक का कहीं ना कहीं कम बेसी योगदान होता है। कई जगह पे अनुभव हमारे बहुत मीठे होते हैं, कई जगह खट्टे या कड़वे अनुभव भी होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए एक योगदान देती हैं, कि क्या हमको और ज़्यादा करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से हमको दूरी बनानी चाहिए। कुछ ना कुछ शिक्षा तो हर एक बात में होती है
1: जी।
0: और इसी पथ पर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, स्कूल में जो शिक्षक हैं, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा?
1: शिक्षकों का पहला प्रभाव तो यही है कि मुझे स्टेज मिला
0: जी।
1: फिर वहाँ से जो है, जब मेरा डिबेट्स वगैरह में जाना हो गया, तो मुझे स्टेज पे एक्टिंग के लिए भी चांस मिला, तो एज एन एक्टर मैंने काम किया, और एक्टर बन गया तो फिर छोटे बच्चों को डायरेक्ट करने के लिए निर्देशक का भी दायित्व मुझे सौंपा गया, वो सब भी मैंने छोटे बच्चों के लिए नाटक वगैरह,
0: एक प्रतिभा से दूसरी प्रतिभा, दूसरी से तीसरी प्रतिभा निकल
1: वो होता गया। तो जब तक मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा, तब तक जो था हमारी ये पोजीशन हो गई थी कि हम तीन लोग जाया करते थे टीम की तौर से प्रोग्राम करने के लिए डिबेट्स में।
0: उनके नाम याद करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, एक थे श्री ओमदत्त त्यागी, जो हमसे बहुत सीनियर थे डिग्री कॉलेज में, और एक मेरे साथी थे, वो आज भी हैं, श्री सुल्तान अख्तर जी, जो अमरोहा में रहते हैं, और वो बहुत प्यारे इंसान हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं। तीनों गए वहाँ पे रामपुर में, और वहाँ से हम तीनों ही को फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड मिला, और एक जो चल वैजयंती कहलाती है, जो कॉलेज को दी जाती है, एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है। अच्छा। तो वो भी ट्रॉफी हमें मिली, और फिर जो स्टेज पे
0: रनिंग ट्रॉफी,
1: जी रनिंग ट्रॉफी, तो वो लेकर के जब हम आए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हमारे यहाँ से ही है, रनिंग ट्रॉफी भी हमारी है, तो फिर वो सम्मान जो प्रेयर के टाइम पे होता है स्टूडेंट्स का, जो कुछ अचीव करते हैं, वो बड़ा प्रेरणादायक रहा।
0: बिल्कुल।
1: फिर इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं 1972 11वीं में मैंने NCC ज्वाइन कर ली थी।
0: ओके।
1: तो एक तो पिताजी का पुलिस में होना, दूसरा अनुशासन प्रियता मन में आ चुकी थी, तो और NCC में कद छोटा होने के नाते हम सबसे आगे रहते थे
0: जी।
1: उसका प्रभाव यह हुआ कि NCC बेस्ट कैडेट में गिने जाने लगे, क्योंकि उस जमाने में एक उपराष्ट्रपति हुआ करते थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी।
0: ओके।
1: उनका हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर में, हिंदू इंटर कॉलेज अमरोहा में आना हुआ, तो उनको हमने NCC के कैडेट के नाते गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
0: ओके।
1: तो उस गार्ड ऑफ ऑनर की ट्रेनिंग हमारी चली एक महीना तक राइफल के साथ। तो वो जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसका सर्टिफिकेट हमें मिला, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। और मैंने NCC में रह करके 20 सर्टिफिकेट पास किया।
0: वाह।
1: अब 20 सर्टिफिकेट पास करने का मतलब ये था कि हम LNG खोलना और बंद करना ये सब चीजें सिखाई गई। आज मैं शायद पहली बार ही इन सब चीजों को व्यक्त कर रहा हूँ और बड़ी खुशी भी हो रही है जो आप
0: जी बिल्कुल। ये जो मंच है सलामे जिंदगी रेडियो मधुबन का, ये मंच इसीलिए है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे समाज के बड़े और बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को अपने बच्चों के बच्चों को भी नहीं बताया होते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं सामने आती है और एक दोबारा से आपको उन पलों को जीने का मौका मिलता है।
1: बहुत अच्छा लग रहा
0: है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, आपकी जो जीवन की सत्य कथा है उसे जानकर। और भी बातें करेंगे लेकिन इससे पहले समय हो रहा है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनाएं और फिर लौट कर आए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम सलामे जिंदगी और हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी। और भी उनकी कहानी को जानेंगे और उनके जीवन से कुछ ऐसा सीखने का प्रयास करेंगे जो आज तक हमने नहीं किया है। लेकिन तब तक लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं। सुनते रहिए।

0: दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में, और हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी। अनिल वर्मा जी के बचपन और शिक्षा काल के अनुभवों को हमने सुना, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको भी हमने जाना कि कैसे एक विशेषता दूसरी विशेषता को लेकर आती है। तो जरूर आप भी जो युवा साथी हमारे सुन रहे हैं, आप जरूर ये कोशिश करिए कि किसी ने आपको धक्का लगाया, खींच के लाया या ना लाया, आप अपनी ओर से भी प्रयास करिए। कहीं पर एक मंच मिलता है तो कुछ अपनी भावों को व्यक्त करने का प्रयास करिए, और ये विशेषताएं धीरे धीरे आगे एक सुंदर रूप लेकर आपके जीवन को और बेहतर बना देगी। तो अनिल जी, जैसे आपने बचपन के दिनों को और स्कूल के दिनों के बारे में बताया, आप थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे
1: जी, बिल्कुल।
0: कि जैसे ही स्कूल का समय पूरा होता है कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज पूरा होने से पहले ही हमारे मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि अब हमें क्या करना है। एक सामाजिक रूप से भी प्रेशर होता है कि कहीं आपको जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। आगे की यात्रा आपकी कैसी रही, कि जब स्कूल से कैसे निकले, फिर जो आपकी पहली जॉब कैसे लगी?
1: मैं वही बताना चाहूँगा, 1972 में मैंने इंटर किया, और उसके बाद मैं 1973 में आया डिग्री कॉलेज में। हिंदू इंटर कॉलेज अमरोहा और डिग्री कॉलेज बराबर बराबर ही थे, सिर्फ एक दीवार थी बीच में। जब हम डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई, जो हमारा अनुशासन और वो सब था उसको देखते हुए मेरे कुछ पारिवारिक मित्रों ने ये कहा कि अब अनिल बड़े हो रहे हैं, इनको कुछ काम करना चाहिए। 1973 में मैंने, जबकि मेरी उस समय उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 18 साल का भी पूरा नहीं था, तो मैंने बाटा इंडिया लिमिटेड में टेम्परेरी काम करना शुरू किया।
0: तो ये कंपनी आपके वहीं पर थी?
1: अमरोहा में शॉप थी, बाटा शॉप। बाटा इंडिया तो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है, लेकिन वहाँ का जो स्टोर था उसमें मैंने पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने 3 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, जो भी उस समय मिल।
0: कैसे मैनेज होते थे पढ़ाई और ये दोनों चीज?
1: वो इस तरह से होता था कि या तो मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी, या छुट्टियों में मैं काम करता था पार्ट टाइम। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक वैकेंसी हो गई बाटा की दुकान, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा। इस तरह से कि 1973 में मैंने जब बाटा कंपनी को 2 अगस्त 1973 मुझे आज भी डेट याद है, ज्वाइन किया। मैं काम करता रहा मेहनत से, ईमानदारी से, और सबसे छोटे पद पर मैं लगा था।
0: ओके।
1: उस पद को उस समय नाम था हेल्पर, मैंने जब 1973 में ज्वाइन किया
0: जी।
1: लेकिन मेरी जो बैकग्राउंड मैंने बताई कि मैं मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मेरे सारे जो ऑफिसर थे बहुत खुश हो गए, और मैं दूसरे एक मैनेजर के साथ काम कर रहा था, फिर दूसरे एक और मैनेजर आ गए। इस बीच में क्या है, मेरा जाना हुआ बाटा शू कंपनी से छुट्टी लेकर के कुछ दिन की, मैं अपने दोस्तों के साथ बम्बई गया। बम्बई मेरे औरों की तरह मेरा भी ख्वाबों का शहर था।
0: अगर तो आपके अंदर छुपा ही था पहले
1: जी
0: से।
1: वो था, तो वहाँ चाहता था मैं कुछ बनने के लिए, तो मैं वैसे ही घूमने के लिए गया आपके साथ। तो मैं वहाँ बाटा के शॉप के एक मैनेजर थे, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुरादाबाद में थे, वो बॉम्बे में बहुत बड़ी शॉप पे मैनेजर हुआ करते, क्राफर्ड मार्केट एक जगह है वहाँ बॉम्बे में, वहाँ पर मैं उनसे मिलने के लिए गया, जस्ट फॉर कर्टसी कॉल के सम्मान मैं मिलने के लिए गया। तो मैंने उनसे कहा, सर मैं तो बॉम्बे में आना चाहता हूँ। तो बोले, पता है तुम्हें बम्बई में कैसे रहा जाता है, यहाँ सब कुछ मिल सकता है लेकिन रहने की जगह नहीं मिलने की, तुम्हें ये लिख करके देना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो ट्रांसफर। में ट्रांसफर तो तुम्हारा चुटकियों में करा दूंगा, 15 दिन के अंदर अंदर तुम ट्रांसफर हो जाओगे, लेकिन ये समझ लो कि रहने के लिए मत कहना तुम मुझसे। फिर मैंने कहा, साहब मैं नहीं कहूँगा। मैंने वापस गया अमरोहा, जाकर के अपने मैनेजर साहब से बात करी, और तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है बेटा, तुम आगे जाना चाहते हो तो अच्छी बात है
0: जी।
1: मेरा ट्रांसफर जो था 1978 में 8 अगस्त 1978 को मैंने अमरोहा छोड़ा, और मैं बम्बई की यात्रा पर निकल गया। लोग मुझे इस तरह से अमरोहा में छोड़ने के लिए आए थे, जिस तरह हाजी लोग जाते हैं हज के लिए, तो वो इस तरह से मालाओं को पहना करके मेरे दोस्तों ने मुझे
0: बम्बई जा रहे
1: हैं, हाँ बम्बई जा रहे हैं, कि बम्बई में चले गए। वहां जाकर के दिल्ली होकर के जाते थे, पहले तो दिल्ली जाकर टिकट बुक कराते थे, वो बम्बई चले गए, वहां पे ज्वाइन कर लिया। वहां जाने का फायदा ये हुआ, एक वाइड स्कोप मिला मुझे, बड़ा
0: समझ,
1: सारी दुनिया
0: समझ विकसित हुई।
1: तो लेकिन वहां सबसे ज्यादा वही चीज काम आई जो इनिशियली मैंने आपको बताया, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम। मैं जब वहां पे पहुंचा और मेरा वर्किंग वहां पे मैनेजर्स ने देखा, और वहां के बाकी स्टाफ जो थे वो सब मैच्योर्ड थे और मुझसे बड़े थे सारे, जब उन्होंने वर्किंग मेरे देखा, तो मेरा टेस्ट के लिए सेल्समैन के प्रमोशन के लिए लेटर आया अमरोहा, लेकिन मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि मैं प्रमोशन से रह जाऊंगा, मैं यहाँ ट्रांसफर होके आ गया। लेकिन हमारे जो मैनेजर थे वो कलकत्ता से डायरेक्ट, जो हमारा हेडक्वार्टर था वहाँ से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहीं पे बम्बई में बैठाऊंगा एग्जाम के लिए। तो बम्बई में जब मैं एग्जाम के लिए बैठा, तो मेरा सबसे लास्ट नंबर था 46वां नंबर जितने कैंडिडेट आए हुए थे। मैं देने के लिए गया और उन्होंने ये कहा तुम्हें एग्जाम में बैठाऊंगा मैं तुम्हें जब कि जब तुम्हें मैं कुछ पेपर्स दूंगा उनको तुम सॉल्व करके लाओगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे दिया, बोले तुम सुबह को सॉल्व करके लाओगे। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा क्योंकि मुंबई की लाइफ तो ऐसी है, भागदौड़ बहुत है। वहां से जब मैं लौट के अगले दिन लेकर के आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए कि आपने जो है वो सारी चीज़ें सही किया, ठीक है नाउ अब तुम पार्टिसिपेट की। मैंने पार्टिसिपेट किया उस एग्ज़ाम में और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं दुकान पे वापस लौट के नहीं आया था एग्ज़ाम से। मैंने जब अपने मैनेजर साहब से कहा कि मैं दे आया हूँ, कैसा हुआ? ठीक हुआ। भावुक हो गया मैं, रोने लगा। तो बोले क्यों रो क्यों रहे हो? मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मैं इतनी दूर आया हुआ हूँ मुंबई छोटे से शहर से। उन्होंने कहा जाओ तुम पास हो गए। ही डिक्लेयर्ड एग्जाम दे के कोई बच्चा आया हो उसको ये कह दिया जाए कि तुम पास हो जाओगे तो कितना हौसला बढ़ता है। मैंने और हौसले से काम किया और फिर वहां से मेरा ट्रांसफर जो है एज ए सेल्समैन आगरा कैंट की शॉप पे हुआ 79 में। वहां पे जब आगरा आया तो आजकल वो समय इनलैंड लेटर वगैरह सब पहुंचा करते थे। बम्बई में मेरे पास बहुत लेटर आते थे दोस्तों के, सुबह की डाक में 7 और शाम की डाक में 3, तो 10-10 लेटर एक दिन में आते थे। मेरे आगरा कैंट की खबर पहले पहुंच चुकी थी। आगरा में मेरे पहुंचने से पहले मेरे 5 लेटर मैनेजर के फाइल में रखे हुए थे। कौन लड़का ऐसा आ रहा है जिसके आने से पहले नील कुमार वर्मा के नाम से जो है वो 5 लेटर पड़े हुए ऑलरेडी। मैं उससे मिलने गया बिफोर जानी उसी दिन शाम को, जिस दिन मैं पंजाब मेल से आगरा उतरा उसी दिन मैं शाम को मिलने गया। तो उन्होंने कहा इसी तरह से मिस्टर वर्मा वेलकम और ये आपके 5 लेटर आए रखे हैं, टुमारो यू कैन ज्वाइन। तो मैंने 15 जुलाई, मुझे याद है आज ही, 15 जुलाई 1979 को मैंने आगरा कैंट शॉप पर ज्वाइन किया। और वहाँ फिर वही चीज़ काम आई, मेहनत ईमानदारी, जिससे जब वहाँ पर काम किया तो हमारी जो बाटा कंपनी के मालिक थे मिस्टर बाटा का वहाँ पर विजिट हुआ। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि आपकी किसी भी संस्था के सबसे बड़े जो रचयिता जो हैं वो आकर के अगर विजिट करते हैं तो उससे बड़ी खुशी वो नहीं हो सकती। वो अटेंड किया उनके साथ एक रात को, फिर 5-स्टार होटल में प्रोग्राम था आगरा में, वो अटेंड किया। बहरहाल बड़ा अच्छा आगरा का रहा, 6 साल तक मैं वहाँ रहा, 84 दिसंबर तक।
0: कितने साल आप बाटा कंपनी में? टोटल
1: मैंने बाटा शू कंपनी में टोटल जो काम किया है 35 साल, 35 years। 1973 से लेकर के मैंने 15 मार्च 2007 को मैंने छोड़ा बाटा कंपनी।
0: आप फिर बता रहे थे कि IIT रुड़की में भी आपने कार्य किया, तो ये और भी बाटा के बाद फिर आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन?
1: जी मैंने कोई और कंपनी ज्वाइन नहीं की। मैंने फिर उसके बाद वहाँ पे फर्नीचर स्टोर था अग्रवाल फर्नीचर स्टोर, मैं उनके पास गया किसी के जरिए क्योंकि पैसों की जरूरत थी। वो बाटा कंपनी का कोई और इशू था जिसकी वजह से 2007 में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, मैं रिटायर नहीं हुआ था 2007 की बात
0: जी।
1: तो वहां से जो है मैंने 1 महीने भी पूरा काम नहीं किया और वो इतने ईमानदार और बढ़िया आदमी थे, उन्होंने मेरी कदर किया क्या। तो मैं इस बीच में IIT में जाकर के उन लोगों से, अधिकारियों से मिला। तो हम लोग अपने बाटा के शूज, सैंडल्स और सॉक्स वगैरह सप्लाई किया करते थे। अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो इतना मतलब अच्छा ईमानदारी और उसके साथ काम करने वाला हो। तो मैं जाकर के जब उनसे मिला अग्रवाल फर्नीचर पे काम करते करते, क्या ठीक है, ये बात है 27 दिसंबर की और 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला था 2008। तो उन्होंने मुझे, अग्रवाल फर्नीचर वालों ने इजाजत दे दी, बोले हमें बहुत खुशी होगी कि आप एक अच्छी जगह जा रहे हैं। तो वहां मैंने 2008 में 1 जनवरी से काम शुरू किया IIT रुड़की में ऑफिस में। और मैंने वहां पे 3 डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट्स में काम किया IIT में। और ये परमानेंट जॉब नहीं था, ये टेम्परेरी जॉब था, लेकिन किसी एजेंसी के थ्रू, जैसे आजकल वर्क हायर पर लोग रखे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे 30 जून 2018 तक मैंने जो है वहाँ IIT में काम किया 11 साल।
0: जैसे अगर मैं ये पूछूं कि बाटा कंपनी में जो आपकी लर्निंग है
1: जी,
0: कौन सी ऐसी वैल्यूज आपने सीखी जो आपको लगता है कि दूसरों को पता होना चाहिए?
1: मेरी फिर वही बात आती है जो मैंने शुरू में कही, जो बाटा कंपनी में पंक्चुअलिटी, ईमानदारी, मेहनत, यही चीज मेरे काम आई सबसे।
0: कंपनी से क्या आप सीखा?
1: कंपनी से मैंने ये सीखा कि आपको जो है वो यू विल हैव टू हार्ड वर्क, और कस्टमर जो है हमारा मास्टर होता है। अगर कोई कस्टमर आपको आया है और आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय ठंडी हो जाने दीजिए, रख दीजिए, छोड़ दीजिए, यू वेलकम योर कस्टमर फर्स्ट। तरह से हमने जो था ये इस चीज को सीखा। और मैं अब लोगों से कहता भी हूँ कहीं जाता हूँ शॉप पे कि भाई आप कम से कम मोबाइल से नजर उठा करके कस्टमर की तरफ देख तो लीजिए, eye-to-eye कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी होता है। बाटा शू कंपनी में कहा जाता है कस्टमर इज किंग, वो हमें कुछ देने आ रहा है, हम उसे कुछ नहीं दे रहे, हमें तो कंपनी काम करने के पैसे दे रही है, लेकिन बाटा कंपनी में जो बाटा कंपनी चल रही है या कोई भी संस्थान जो चलता है वो उसके एम्प्लॉयज की वजह से चलता है, कस्टमर की वजह से चलता है। एम्प्लॉयज कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तभी वो कंसर्न काम करेगा।
0: और ऐसे अगर मैं ये पूछूं कि आपकी आखिरी जॉब थी आईआईटी रुड़की वाली, वहां से क्या लर्निंग हुई आपकी?
1: वहां से मेरा जो चीज वो काम आई, जो बाटा कंपनी का एक्सपीरियंस था, लोगों से पोलाइटली मिलना, प्यार से मिलना, अंग्रेजों की कंपनी थी तो इंग्लिश का ज्यादा था, अभी भी शायद आप महसूस कर रहे हैं मेरी भाषा में हिंदी उर्दू और इंग्लिश का समावेश ज्यादा हो रहा है। वही चीज मेरे जो वहाँ स्टूडेंट थे, मेरा स्टूडेंट से कंसर्न रहता था और मेरा डिपार्टमेंट था वो स्टूडेंट्स की समस्याओं से रिलेटेड था। उसमें कहते थे डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, DSOW, तो उस ऑफिस में मैं काम करता था। ज्यादातर फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट से मेरा लिंक रहता था और वो मेरे जो इंग्लिश का शौक था यह समय का वो था, बाटा कंपनी का एक्सपीरियंस वो वहाँ पे काम आया। और स्टूडेंट से जो है मैंने स्टूडेंट से भी बहुत सीखा, स्टूडेंट ने मेरे को बहुत इज्जत दी, प्यार दिया और मेरा वहाँ से भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मुझे गाना गाने का शौक था तो मैं वहाँ रह करके लंच टाइम में एक गाना जरूर गाता था विदाउट म्यूजिक
0: जी।
1: तो वहाँ किसी स्टूडेंट ने आकर के मुझसे ये कहा कि सर आप इतना अच्छा गाते हैं तो आप इस म्यूल या स्टार मेकर के थ्रू क्यों नहीं गाते, वहाँ पे आपको लिरिक्स भी मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा और आपका एक्सपोजर जो है और ज्यादा होगा। तो कर लिया।
0: काफी इंस्पायरिंग जर्नी है, अलग अलग फेजेस, अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनी, अलग अलग जगह।
1: बिल्कुल।
0: और कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा के अंदर जो यात्राएं आपने की है उसमें से अपने अंदर भी आपने बहुत सारी विशेषताओं को भी अडॉप्ट किया। तो जैसे आपने गीत के बारे में बोला, कुछ ऐसा सुनाइए हमारे श्रोताओं को जो आपके दिल के बहुत करीब है।
1: अभी एक गीत रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ मैं, उसी को सुनाया देता हूँ
0: जी।
1: लता जी का गाया हुआ गीत है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैंने अब तक मतलब हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं लेकिन जो ये अभी अभी रिकॉर्ड करके आता हूँ इमीजिएटली याद आ रहा है।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: कुमार जी की रचना है,
0: क्यों ना यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं और फिर लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। तो श्रोताओं सुनिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो अनिल जी के दिल के बहुत करीब है और दो लाइन उन्होंने भी गाया है आपके लिए, और बाकी गीत आप सुनेंगे रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन, कार्यक्रम सलामे जिंदगी से।

0: दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। जैसे हम बात कर रहे थे अनिल वर्मा जी से कि उनके बचपन, युवा काल, स्कूल की लाइफ, फिर जो उनका कार्यमय जीवन है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी अपनी यात्रा के बारे में बताया। कैसे इंसान कहीं अनुभव लेता है, कहीं सीखता है, और साथ साथ उन्होंने अपने गायकी का भी थोड़ा सा हमारे को एक झलक दिखलाई। आइए आगे चलते हैं और उनके जीवन की ओर। सर, जैसे आपने अपने कार्यमय जीवन तक बताया, इसी कड़ी में जैसे स्कूल से निकले, काम पे लगे, कंपनियां चेंज की, और इसी बीच में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आरंभ हो जाता है
1: जी।
0: तो आपका विवाह कौन से वर्ष में हुआ?
1: 1980 में।
0: कितने साल के थे आप?
1: मैं 1980 में 25 साल का था।
0: जिनसे आपका विवाह हुआ उनके बारे में कुछ बताइए, और कैसा आपका विवाह का स्थिर हुआ, और उनकी क्या विशेषताएं?
1: जब बॉम्बई से ट्रांसफर होकर के आगरा आया, तब तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वहाँ शादी करूँगा, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने के 2 दिन बाद ही मेरे जीजा जी वहाँ रहते थे आगरा में, उन्होंने ये कहा, अनिल हमने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, सरप्राइज गिफ्ट। मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और फिर मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। बोले नहीं देख, तो वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। लड़की वाले जो थे वो देखने के लिए आए बाटा की दुकान पे, आकर के उन्होंने देखा कि भाई हाँ, तो उनको कुछ जचा होगा अब। लेकिन मेरे को फिर वही बीमारी सच बोलने की, तो हमारे साले साहब मिलने के लिए आए, तो वो कहने के, मैंने कहा भी सोच लीजिए, मुझे केवल 500 रुपये महीना मिलता है, कैसे गुजारा होगा आपकी बहन के लिए? इसके बारे में बोले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या मिलता है हम इस बात से मतलब नहीं है। मैं 6 जुलाई हमारी शादी की,
0: आगरा में विवाह,
1: आगरा में शादी हो गई
0: जी।
1: बस वहीं से पहला जीवन शुरू हुआ, और 1983 में हमारे बेटे का जन्म हुआ।
0: नाम क्या है
1: जी
0: आपकी युगल का? नाम क्या है?
1: मेरी पत्नी का नाम था स्वर्गीय श्रीमती विनीता वर्मा
0: जी। उनको कैसे याद करते हैं अभी आप? कौन सी विशेषताएं आपको उनकी अच्छी लगती है?
1: वो बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है। वो बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत मजबूत थी, बहुत टेक्निकल माइंडेड थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेरी जिंदगी को सजाया संवारा। और घर कैसे बनता है, घर जो है वो घर जब बनता है, जब कोई उसको बनाता है, उससे पहले वो एक कमरा होता है
0: जी।
1: घर किसी के बनाने से बनता है, अकेला व्यक्ति घर नहीं बना सकता।
0: तो जैसे आपके सामने दोनों समय है, एक समय जब आपका विवाह हुआ था, और एक वर्तमान समय है जहाँ आपके भी बच्चे होंगे, और भी समाज में आप देखते हैं कि परिवार बन रहे हैं, कई परिवार बिगड़ भी जाते हैं, कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, कई बार पति पत्नी के बीच मन बन हो जाती है। कौन सी वो वैल्यूज़ हैं, कौन सी वो जो हमारे भारतीय मूल्य हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, एक परिवार को संगठित करके रखने मददगार होते हैं, आप क्या देखते हैं इसमें?
1: मेरे तो यही हमेशा कहना है कि जब हमारा किसी से वैवाहिक संबंध होता है तो हमें उसको बेइंतहा प्यार करना चाहिए, और शक जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार पैदा कर देता है, बहुत बड़ी बीमारी है, वो कभी नहीं लाना चाहिए। और जितना आप एक दूसरे को समझेंगे उतना ही मजबूती संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उतना ही मजबूत संबंध बनेंगे, उतना ही जीवन सुचारू रूप से चलेगा। अब आना और जाना तो जिंदगी में कौन पहले जाएगा कौन आएगा, ये बात की बात है
0: जी।
1: लेकिन मेरी जिससे शादी हुई, वो उसने

0: मतलब मेरे अनिल वर्मा को जो है वो जो एक्चुअल मतलब एक गृह स्वामी कह सकते हैं या जो भी कुछ बनाया वो उन्होंने बनाया,
1: उन्होंने बनाया। तो आज उस आत्मा को भी हम यहाँ से श्रद्धांजलि भी देते हैं, याद भी करते हैं और सलामी जिंदगी से सलाम कहते हैं। और बच्चों के बारे में क्या बताना चाहिए?
0: मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी की शादी मैंने 2008 में कर दी थी।
1: कहाँ शादी हुई?
0: बुलंदशहर में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं। और बेटे की शादी 2010 में की
1: जी।
0: वो अब तो उल्टा ही कहना पड़ता है, पहले बच्चे रहते थे माँ बाप के साथ, अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरा एक पोता है
1: जी।
0: और बहू रानी है और हम लोग
1: बेटा कहाँ रहता है?
0: बेटा साथ में ही है, रुड़की में रहते हैं।
1: रुड़की में रहते
0: हैं। अब तक वो IIT में काम कर रहे थे, वो भी एक डिपार्टमेंट में, लेकिन अब वो आजकल क्योंकि परमानेंट नहीं हो पाए, परमानेंट जॉब नहीं मिलता
1: जी।
0: तो आजकल वो अपना ही कुछ काम
1: कारोबार कर। परिवार को बेहतर बनाने का एक सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था। परिवार में जैसे पति और पत्नी का संबंध है, उसके लिए तो ये दो लोगों की मेहनत होती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं और बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, तो उस समय कौन सी ऐसी बातें हमको सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी वैल्यूज हैं बच्चों को देनी चाहिए?
0: देखिए, हम बच्चों को वही सिखा सकते हैं जो हम सीख करके वहां तक आए हैं
1: जी।
0: वो जो हमारा सामाजिक दायित्व उनको दुनिया में लाने के बाद होता है, और वो हम उनको वही चीज देते हैं जो हमारे पास होता है
1: जी।
0: इस जर्नी में अब तक की
1: जी,
0: शादी के बाद उनके जन्म होने तक, मैं तो यही कहूंगा कि हम बच्चों को जैसा पौधों की तरह होते हैं बच्चे छोटे, जैसा उनको हम खाद पानी देंगे वैसे ही वो बनेंगे। और वाकई वैसे ही है, बच्चे जो है वो उसी राह पे चल रहे हैं।
1: कच्चा घड़ा को जैसे बनाया जाता है फिर पकाया जाता है, तो माता पिता कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी होती है कि जो हम उनको बता रहे हैं वो हम खुद भी प्रैक्टिस करें।
0: और माता पिता बताते भी वही हैं जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है।
1: कई बार आजकल हम देखते हैं एक शब्द यूज किया जाता है, जनरेशन गैप
0: जी।
1: और ये माता पिता भी करते हैं और बच्चे तो उससे भी ज्यादा करते हैं कि आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे,
0: आपको आता ही क्या है।
1: आता ही क्या तो बहुत बाद में आता है, लेकिन पहले तो बच्चों को लगता है हमें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, या कई चीजें होती है, कई चीजें माता पिता की अनुभव की होती है, तो वो भी अपनी बात सही जगह रख रहे होते हैं। इस चीज का क्या सॉल्यूशन देखते हैं?
0: देखिए, आजकल जिस हिसाब से तेजी के साथ ये दुनिया भाग रही है और नए नए गजेट्स आ रहे हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट वो हमारे जमाना तो रहा नहीं कि उपन्यास पढ़ करके बड़े हो गए है ना, या पढ़ाई करके बड़े हो गए। अब तो इसके हाथ में कंप्यूटर भी अलग हो गया, तो जो है सबके पास जो है वो लैपटॉप और मोबाइल,
1: मोबाइल
0: के अंदर
1: सभी चीजें
0: आ गई हैं। कल भी जो हमारा मीडिया का विषय था उसमें भी यही चर्चा हो रही थी कि आजकल हर वक्त जो है बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और मोबाइल में सारी चीजें आती जा रही हैं। अब ये हमें माँ बाप होने के नाते ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे क्या देखें और क्या नहीं देखें। हालांकि वो इसमें अपने इंटरफेरेंस मानते हैं माँ बाप का,
1: प्राइवेसी की बात आ जाती है,
0: प्राइवेसी वाली बात आ जाती है बड़ा होते ही, लेकिन फिर भी हमें अंकुश तो लगाना पड़ेगा कि नहीं, अब टाइम हो गया, जाइए आप सोइए, अब आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, आप रोते चिल्लाते हैं कुछ भी करते रहिए। लेकिन अगर बच्चों को संवारना है, सजाना है, तो उनको थोड़ा सख्ती तो करनी।
1: फैमिली वैल्यूज या पारिवारिक मूल्य जो कहते हैं
0: जी,
1: ये कौन से वैल्यूज हैं जो एक परिवार को बांध के रखते हैं?
0: देखिए, परिवार को बांध करके जब भी रखा जा सकता है जब हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हों,
1: कनेक्टेड हों।
0: अगर हम जरा सा भी, मम्मी काम पे चली गई, पापा काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए और शाम को आए तो मोबाइल लेकर के बैठ गए, तो उससे कनेक्टिविटी अब उतनी नहीं है, पहले हुआ करती थी
1: जी।
0: जब हम पढ़ते थे हमारी माताजी पढ़ाती थी ये, तो वो था, अब दौर अलग हो गया है। अब बच्चे कहते हैं कि हमारे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, बल्कि देखा जाए तो अगर मोबाइल चलाना सिखाया तो बच्चों ने सिखाया हमें, जितना भी हम करते हैं आजकल
1: जी।
0: बच्चों को हमें ध्यान रखते हुए उनको करना पड़ेगा कि वो पढ़े लिखे, काबिल बने और जो है वो अपना जीवन जैसे हमने कोशिश की है संवारने की, ऐसी हमसे बेहतर बन के दिखाएं।
1: बहुत ही खूबसूरत अनुभव, और अपने जो सवाल हमारे श्रोताओं की ओर से मैंने रखा उनके भी अच्छे जवाब आपने दिए, और भी जानेंगे, पर इस बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि समय हमारा लिमिटेड है
0: जी।
1: और जीवन इतना लंबा है कि अनुभव गाथा खत्म नहीं हो सकती है
0: जी।
1: छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन और कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अनिल जी से फिर मुखातिब होते हैं। अनिल जी, जैसे आपने जीवन के अलग अलग पड़ाव के बारे में बातचीत की, एक पड़ाव जो है वो वर्तमान है आपका
1: जी,
0: और इस समय आपने अपने जो कार्यमय जीवन था उससे अवसर भी ले लिया है
1: जी,
0: और बच्चों के साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं एक जीवन भर एक ढर्रे से हम बंधे रहते हैं, जो हम सुबह 8 बज गए 9 बज गए अपना टिफिन लेना है, काम पे जाना है, फिर रात को लौट के आना है, फिर अगले दिन की तैयारी के साथ, मेंटल तैयारी के साथ सो जाना है, फिर सुबह उठ के जा रहा है,
1: डेली रूटीन रहता है।
0: फिर एक वो समय जब आपने रिटायरमेंट लिया तो वो एक पैटर्न ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती रही होगी आप?
1: बिल्कुल चुनौती थी
0: जी,
1: बहुत ही अजीब सा लगता था। और मैं जितना स्लिम ट्रिम उस जमाने में था जब मैं मेहनत करता था, उतना अब मैं नहीं रहा। एक कुर्सी पे बैठ करके जो काम किया IIT रुड़की में 11 साल, उससे जो है वो थोड़ा सा बल्कीनेस तो आई गई है, हमें इससे थोड़ा सा बचना चाहिए।
0: तो जैसे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं अभी, तो हर उम्र के लोग रेडियो मधुबन पर अभी आपको जैसे सुन रहे होंगे, चीज मैं जानना चाहूंगा, एक चीज तो नहीं कई बातें ऐसी हैं जो वर्तमान जीवन से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो बुजुर्ग होने वाले होंगे, हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद उनकी भी उम्र आगे बढ़ेगी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जिस भी उम्र के हम हैं वहाँ ध्यान रखनी चाहिए, ताकि जब हम बुजुर्ग हों स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे?
1: देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना तो बहुत ही जरूरी है
0: जी
1: सभी को, और वो स्वास्थ्य को एक आपको शौक बना लेना चाहिए। जैसे आपको गाने का शौक है, एक कविताओं लिखने का शौक है, कुछ भी चीज है, तो उसी तरह स्वास्थ्य का हमें रोजाना ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं है। वो एक कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है।
0: सही बात है।
1: इसलिए योगा है या एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, सुबह शाम का वॉकिंग बहुत जरूरी है, और संतुलित डाइट लेना है
0: जी।
1: अपने आप को, खुराक तो कम हो ही जाती है इस उम्र तक आते आते
0: जी, जी,
1: है ना, बहुत सी चीजें भूलने भी लगता है आदमी, तो अपने आप माइंड को शार्प रखने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल अपने आप को पहले जैसे था, मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। मेरे पास 24 घंटे पहले भी कम होते थे और आज भी कम है।
0: क्या रूटीन रहती है आप, कैसे दिन आरंभ करते, क्या भोजन लेते?
1: मेरा देखिए, जैसे सप्ताह में 6 दिन का तो रहता ही है कि पोते को स्कूल छोड़ करके आना, वो IIT में ही स्कूल है तो उसको वहाँ छोड़ जाता हूँ मैं जब सुबह, उसकी वजह से ही मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और ये बहुत मेरे लिए फायदे की चीज़।
0: कितने बजे उठते हैं
1: सुबह? वैसे तो मुझे नींद ही 4 घंटे की केवल रह गई है, लेकिन फिर भी मैं 5:30 या 6 बजे तक बिस्तर छोड़, और उसके बाद जब मैं उसको लेकर के जाता हूँ IIT में, स्कूल छोड़ने के बाद मैं फिर IIT के जो ग्राउंड है वहाँ पर मैं चक्कर लगाता हूँ, घूमता हूँ, टहलता हूँ, अपने जो मेरा शौक है गाने का वो भी कई बार रिकॉर्ड करता हूँ, रील्स बनाने का शौक है वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: 1.5 घंटे बाद मैं 9 बजे तक वापस आता हूँ
0: जी जी,
1: और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद थोड़ा सा नहाने धोने के बाद अपने पूजा अर्चना की, और फिर जब तक फिर थोड़ा और काम वाम निपटाए जो घर के

0: दोस्तों, जब एक परिवार शुरू करने की बात होती है तो माता पिता दोनों की आंखों में कई आशाएं होती हैं। हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा घर ऐसा होगा, बच्चे का फ्यूचर भी वो देख चुके होते। क्या होता होगा उस परिवार के साथ जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा जो है मानसिक रूप से असंतुलित है? क्या होता होगा उस परिवार को या उनके सपनों को जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो सपना है वो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो कई तरीके से मानसिक रूप से कई ऐसे अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा है जिसका समाधान माता-पिता के पास नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आता है जो अपनी उदारता से, अपनी दृढ़ता से और अपनी समझ से उनके जीवन की इस परेशानी को कम करने में या उसका सामना करने में उस माता-पिता को मदद करता है। और इस मदद के दौरान सबसे बड़ा मदद का जो भागीदार होता है वो बच्चा होता है, जिसे खुद को नहीं समझ कि वो किन चीजों से गुजर रहा है या उसके जीवन में क्या हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ आज हमारी मुलाकात होने जा रही है। स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में, जहां हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव से, सिकंदराबाद के बहुत ही प्रतापी हॉस्पिटल, स्वीकार हॉस्पिटल ही नहीं, एक स्कूल भी है, एक इंस्टीट्यूट भी है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वास का एक यज्ञ है, जहाँ कई ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाता है, उनके माता पिताओं का काउंसलिंग किया जाता है। और अपने इस समाज सेवी प्रयत्न की वजह से डॉक्टर पी हनुमंत राव जी को भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव जी का। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना टाइम शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स।
1: मुझे भी बहुत खुशी है। मैं बहुत मेरे शुभकामनाएं यहाँ, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: अक्सर ये ऐसा होता है डॉक्टर हनुमान जी, दैट हम सोचते हैं कि हमारा दिन कैसे शुरू होगा, कैसे जाएगा, कैसे होने वाला है, बट मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मुझे और हमारे श्रोता साथियों को इस बात का यकीन जरूर होता है कि रेडियो मधुबन जैसे ही हम खोलते हैं, दिन की शुरुआत तो अच्छी होती ही है, लेकिन दिन भर में भी जो कार्यक्रम रेडियो मधुबन प्रस्तुत करता है उसके जरिए दिन हमारा बेहतर से बेहतर बनने लगता है। और जब कार्यक्रम यशस्वी भारत का हो, जिसमें हम भारत के यशस्वी पुत्र आप जैसे डॉक्टर पी हनुमंत राव जी से मिलते हैं, तो हमारा दिन बेहद खुशनुमा हो जाता है। जैसे कि आपकी कहानी में आता है कि आपने भारत के सैकड़ों ऐसे बच्चों का जीवन सुधारा है जिनके लिए लोगों ने उम्मीद या आस छोड़ दी थी, और तब जबकि उनके खुद के परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी, तब आपने उनका हाथ थामा और उनको एक ऐसे जीवन की दिशा दी, जीवन को जी करके न केवल वो लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम की या ऐसे सेवा की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे, इसलिए हम शुरू करना चाहते हैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी।
1: मेरा पैदाइशी तो ओल्ड सिटी में हुआ, हैदराबाद में, 4 मिनट से एक 3-4 किलोमीटर। पूरे डॉक्टर्स के परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे फादर, मेरे अंकल पूरे आरएमपीस थे। वो जमाने में एमबीबीएस बहुत कम लोग थे, पूरे आरएमपीस थे और बहुत पॉपुलर थे, बहुत नाम था। वो जमाने में डॉक्टर्स ही कम थे, तो हमारा एक 40 रूम्स का नर्सिंग होम था। जब हमारा जॉइंट फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, मैं मेडिसिन में ज्वाइन हुआ, सेकेंड ईयर में ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत तकलीफों के सामना करना पड़ा। पूरे हमारे अंकल सब सेपरेट हो गए, तो बहुत आर्थिक तकलीफों में शुमार हो गया। एक मरतबा मेडिकल कॉलेज से निकाले गया, 2 मरतबा हॉस्टल से निकाले गया, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहने से। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं आई एम ए कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोडक्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। तो मैं सोचा भी नहीं था मेडिसिन कंप्लीट करता हूँ। मैं वारंगल में मेडिसिन कंप्लीट करके काकतिया मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद आया, गांधी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हुआ। वहाँ के सुपरिटेंडेंट बोले, भाई मैं हॉस्पिटल वो हॉस्टल के लिए पूछा, हाउस सर्जन हॉस्टल, नहीं, तुम हैदराबाद के ना है, हॉस्टल क्यों? मैं बोला, नहीं साहब, मैं वारंगल का हूँ, हॉस्टल चाहिए। तो फिर बाद में मैं ओल्ड सिटी गया नहीं, मेरे मेडिसिन में जब ज्वाइन हुआ ओल्ड सिटी नहीं गया, तो इधर ही मैं सिकंदराबाद में सेटअप हो गया, मेरा हाउस जॉब हो गया, सीनियर हाउस जॉब हो गया, मेरे फादर को ओल्ड सिटी से सिकंदराबाद लाया। मेरे फादर बोले ना गवर्नमेंट जॉब आया, तुम्हारा कॉल आया, चले जाओ। मैं बोला गवर्नमेंट जॉब अभी करना नहीं है मेरे को, मेरे को आगे पढ़ना है। नहीं नहीं मैं तो पढ़ा नहीं सकता, मैं घर भी चला नहीं सकता। तो मैं पूछा भाई घर चलाने कितना पैसा चाहिए? 600 रुपये। ठीक है मैं वो दे दूंगा, मेरे को आप डिस्टर्ब मत करो। तो वो लोगों को सिकंदराबाद लाया, मगर माँ नहीं ठहरा, मैं हॉस्टल में ही ठहरा, गांधी हॉस्टल में। तो मेरा स्टाइपेंड जो आता था पूरा 600 वो लोगों को देता था। हम चार बहन है, चार भाई हैं, हम लोग टोटल 10 मेंबर्स का फैमिली है। तो मैं हाउस सर्जन से ही प्रैक्टिस शुरू करा था, बिकॉज आई एम बॉर्न इन ए जॉइंट फैमिली। मैं जब से ही डॉक्टरी करता था, इंजेक्शन देना, दवाया देना, मिक्सर वो बनाना। तो इमिडिएटली मैं जैसा औरंगल से आया हाउस जॉब शुरू करा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी शुरू करा। तो थोड़ा कुछ जो भी कमाता था मेरा लिविंग चलता था, मेरा स्टाइपेंड फैमिली को देता था। वैसा मैं MD पीडियाट्रिक्स में ज्वाइन हुआ। हालांकि पीडियाट्रिक्स मेरा इंटरेस्ट नहीं था, MD जनरल मेडिसिन था, मगर उसमें ढकले गया, मेरा सीट और कोई दिए। उस जमाने में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था जो मनमाने करते थे वो लोग, तो मेरा सीट और एक इन्फ्लुएंशियल आदमी लिया। मैं 3 महीने तक रेगुलर नहीं गया, मेरे को पीडियाट्रिक्स इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जनरल मेडिसिन जाना है। बाद में मेरे सीनियर लोग एडवाइस करे, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स, नहीं नहीं तुम लड़े तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाता, तुम्हारे को फेल कर देंगे, तुम तो जो मिला हो ईश्वर की कृपा समझो, चैन हो जाओ। तो फिर मैं कंसंट्रेट करके MD पीडियाट्रिक्स कर लिया। सोचा मेरे फादर और ये लोग जो है RMP रह के इतना सेवा करे, सर्दी खांसी बुखार ये रूटीन एलिमेंट्स को देखते थे। मैं MD पीडियाट्रिक्स करा, मैं भी वही काम करूंगा, ये पीडियाट्रिक्स होने के बाद कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करा, बॉम्बे गया, मेरा प्रैक्टिस को और एक दोस्त को बिठा के बॉम्बे गया। बॉम्बे में एक 4 महीने PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन, जब भी वो 3-4 साल के नीचे खुला था, वहाँ मैं एक ही डॉक्टर था, दूसरे पूरे फिजियोथेरेपिस्ट, दूसरे दूसरे स्पेशलिटी वाले थे, सब लोग थोड़ा एक अलग ही नज़र से देख रहे थे, अरे इतना बड़ा उन्होंने क्वालिफिकेशन रह के कोर्स ज्वाइन करा, इन्हों पूरा पैरामेडिकल के थे बहुत से। तो मैं इसलिए ज्वाइन हुआ कि मेरे को दूसरा नॉलेज भी है, रिहैबिलिटेशन क्या चीज़ है, कैसा करना है, वो ध्यान से मैं वो मिशन से मैं वहाँ ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन गया। वहाँ के डायरेक्टर को इनवाइट करके मेरा पार्ट ऑफ मैं क्लिनिक में स्टार्ट करा एज ए हैदराबाद स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। वो नाम तो सबको समझ में नहीं आया, व्हाट इज स्पेशल स्कूल, जमाने में स्पेशल एजुकेशन बोले तो भी मालूम नहीं था, स्पेशल स्कूल मालूम नहीं था। लोग मेरे को आगे डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को एडमिशन दो, अरे मैं बोला ये ऐसा नहीं भाई, ये स्पेशल बच्चों के वास्ते है, ये ऐसा नॉर्मल बच्चों के वास्ते नहीं। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरे प्रैक्टिस में एक शॉप लिया और एक शॉप लिया और एक शॉप लिया, 4 शॉप्स पीछे जो है, और दो घर भी ब्लॉक्स ले लिया था किराए को। बाद में सोचा ये मेंटेलिटी एक ही नहीं है, डिप बच्चों को भी मैं अपनी सेवा जरूरत है बोल के डिप स्कूल स्टार्ट करा, पोलों को हॉस्टल भी स्टार्ट करा। और बहुत भीड़ बढ़ने लगा तो मैं सोचा गवर्नमेंट को अपील करेंगे। मेरे एक नेबर थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर मिस्टर DK रेड्डी, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर, उन्होंने मेरे को गाइड करा, डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हैं, आप डिफेंस का जमीन के वास्ते अपील करो। तो उन्होंने बहुत सहायता करे, डिफेंस का लैंड 1 एकड़ लैंड सिकंदराबाद में जुबली बस स्टेशन के सामने, वो जब तो वैल्यू नहीं था, मैं अभी बहुत बड़ा वैल्यू है उसका, सबकी नज़र अपने ऊपर ही है। और अब उस तरीके से अपन बहुत लोगों की ईर्ष्या के शिकार हुए, मगर सबका सामना करा, ईश्वर की कृपा है कि अपने को गिराया नहीं। तो आगे बढ़ते गया। एक मरतबा हमारे CM डॉक्टर YSR रेड्डी को बुलाया था, हम एक बिल्डिंग 5 माले का 5-स्टोरी बिल्डिंग को मैं अग्रीमेंट करा एक दोस्त से। अरे भाई वो दोस्त पंडित राव बोल के थे, उन्होंने भाई इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया 2 साल से खाली रखे, मेरे को दे दो। तो इतना पैसा आप कहाँ से दे सकते डॉक्टर साहब? मैं बोला भाई एवरी मंथ देऊंगा मैं थोड़ा। तो अग्रीमेंट करे हम, वहाँ पर जो है ड्रग रिएक्शन स्टार्ट करा, ये नशीली दवाओं के शिकार होकर बहुत से लोग तकलीफ उठा रहे थे। जहाँ जहाँ मेरे का दिल को तकलीफ हुआ, ये काम करना है या कुछ करना है, ये किसी का दुख बांटना है, तो वहाँ ड्रग रिएक्शन चलाया, डेफ स्कूल यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, मेंटली रिटायर्ड स्कूल भी शिफ्ट कर दिया, हॉस्टल शिफ्ट करा वहाँ पर। और होम फॉर द एजेड भी बनाया वहीं से। तो बहुत से काफी बिल्डिंग था, 5 स्टोरी बिल्डिंग था, 45 फ्लैट थे उसमें। काफी एक 15-20 साल चलाया वहाँ। चलाने के एक 10 साल के बाद जब मैं पूरा पैसा पे कर दिया, जब चीफ मिनिस्टर को बुलाया तो डॉक्टर साहब तो 10 साल से बिल्डिंग में ऑक्यूपाई करा हुआ है, आज हमारे से इनॉग्रेट कर रहे हैं। मतलब साहब अभी तक हम ओनर नहीं थे, अभी स्वीकार इज ओनर, उस वजह से आपसे डेडिकेशन कराया। तो बहुत दोनों खुश हो के क्या करा, नहीं, ये सब कुछ जाने दो, मैं आपसे बात करना है। तो मेरे बाजू बिठा के बात करा, ऐसा सेंटर आप कड़प्पा में खोलो। तो कड़प्पा में अपने को जमाने में 40 साल के नीचे मेरे को अलग ही इंप्रेशन था, लोग मार लेते, मर्डर कर लेते, सब बहुत फैक्शनिस्ट। वो मैं बोला मैं नहीं आता था, बोला तो ये परस्यूट। देन मेरे में भी कुछ लालचीपना हुआ, अरे ये आदमी को तो अपन यूज कर रहे तो और आगे इंस्टीट्यूशन को ले जा सकते, उससे मैं क्या करे, ठीक है चलाएंगे। तो कड़प्पा में जाके एक सेंटर ओपन करा। उन्होंने पहले तो जगह नहीं दिया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट करा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस चार्ज नहीं कर सकता, फ्री रहता, 2 फ्लोर मेरे को दे दिया। तो मैं दो कंपोनेंट्स थे मेरे स्वीकार एक्टिविटी में। स्वीकार एक्टिविटी में सेवा, एक जो है सर्विस है, विकलांग को हर तरीके के विकलांग को सेवा देना है। मेरा मोटो ये था, रिहैबिलिटेशन फ्रॉम टूम टू टूम, फायदा हुए से जब से उन्होंने जब टूम में जाता है, ग्रेवयार्ड को जब जाता है, तो कितने भी कहीं भी हर किस्म का रिहैबिलिटेशन, दैट इज द नेम आई कॉल इट स्वीकार। बोले तो वे लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रहना, अपने पास दिल रहना चाहिए। तो स्वीकार के बाद उपकार बोल के लगा और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो सेवा करना है। उसके बाद क्या है, आश्रय, उसको आश्रय देना, नहीं तो बिगड़ जाए आदमी, ई विल बी लॉस्ट। आश्रय के बाद सुरक्षा देना है। तो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन आई मेड इज सुरक्षा, स्वीकार, उपकार, आश्रय, सुरक्षा, ये चार ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करा। ये सब मेरे जो सर्विस यूनिट्स थे सब चार ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया, तो के इजी मैनेजमेंट के लिए। अभी मेरा डायनेमिज्म मेरा एनिमी हुआ, जैसा मैं कड़पा गया, पूरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मेरा था, ऑपरेशनल कॉस्ट मेरा था। अब सीएम साहब पैसे दे तुम बोले, उन्होंने बहुत बिजी हो गए थे सेकंड टाइम इलेक्शन में, तो पैसे उधर से नहीं आए। मगर एक 5 साल के बाद जमीन दिया हूँ, 10 एकड़ का जमीन दिया हूँ, वो बहुत वैल्यू चीज है, मगर उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, मैं बेच नहीं सकता और कुछ कमर्शियली नहीं कर सकता। तो वो भी क्या करा, मैं बोला साहब ये फ्री फ्री दे दो, बोले सीएम। मैं बोला नको साहब, कुछ नॉमिनल चार्ज करो, अब कोई यार एनजीओ को दे देना, ये चार्ज 1 रुपया 5 रुपये, आप कितना चार्ज करो। मैं बोला 50,000 पर एकड़ लगाओ साहब। बोला नहीं, यहाँ तो 1 करोड़ पर एकड़ है ना डॉक्टर साहब। साहब 1 करोड़ है तो मैं तो प्लॉटिंग वाटिंग करके तो नहीं बेच सकता, मैं हैदराबाद भी नहीं ले जा सकता। तो इनिशियन को आगे आपके बाद मेरे बाद कोई भी चलाएगा। तो फाउंडेशन स्टोन उन्हीं से कराया। उससे पहला क्या करा, वो सर्विस यूनिट अपने शिंदे साहब गवर्नर थे, वो नया गवर्नमेंट प्रोविंसियल गवर्नर साहब से इनॉग्रेट कराया, सर्विस यूनिट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्वीकार, स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड। उसके 3 महीने के बाद सीएम साहब से और एक इनॉग्रेशन कराया। डॉक्टर साहब ये क्या 3 महीने नीचे कराया, गवर्नर जी को बुला के अभी मेरे से करा रहे हैं साहब, आप जो है ट्रेनिंग कॉलेज को इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक डॉक्टर हनुमंतराव कितने लोगों को सर्विस देगा। एक कहावत है, इफ यू गिव एफिशिएंट चैरिटी यू विल ईट इन द मॉर्निंग शिट इन द इवनिंग, इफ यू टीच ए पर्सन फिशिंग ही विल कैच फिश फॉर हिमसेल्फ फॉर द फैमिली फॉर द सोसाइटी लाइफ लॉन्ग एंड ही विल टीच 100 पीपल फिशिंग। तो विद्या दान इज द ग्रेटेस्ट दान द अन्नदान। बहुत से स्वामी जी भी अग्री करते हैं, ये जमाने में तो विद्यादान बहुत बड़ी महत्व है। क्यों बोल तो खाना फ्री खिलाए तो हर एक आदमी बैठ जाता है उसमें। वो एक कहावत है, इंडिया हैज इनफ फॉर द नीडी नॉट फॉर द ग्रीडी, देयर इज अ शॉर्टेज बिकॉज ऑफ मोर ग्रीडी पीपल आर देयर। मैं इतने मरता हुआ देखा, मैं 2 दिन जगह फेल हुआ। मैं सोचा सोसाइटी सामने आगा एक हेल्पिंग हैंड देते समझा, मगर चलो डिसअपॉइंट हो गया मैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो और क्या कह रहा, मेरा डायनेमिज्म से कोस्टल आंध्र से बहुत से लोग आ रहे थे। मैं बोला भाई वहाँ एक सेंटर खोलेंगे, गुंडर में जाके खोल दिया सेंटर। और मेरे वाइफ का नेटिव प्लेस तांडूर बोल के है, विकाराबाद के करीब है वो, एक 250 किलोमीटर है। तो वहां जाके खोला, एक 5 एकड़ जमीन खरीदा स्वीकार के नाम पे मेरा पैसे से। तो अच्छा बिल्डिंग बनाया 1-2 करोड़ से, वहां भी स्टार्ट करा, वहां भी सीएम स्टार्ट करे। और गुंटूर का जो है वहां के कलेक्टर और वाइस चांसलर इनोग्रेट करे। तो तीनों सेंटर्स को चलाते गया। मैं सीएम साहब को पैसा पूछा, दे दो बोले, और उन्होंने देहांत हो गए, पास देवे। देन मेरा मिशन में बहुत बड़ा रुकावट शुरू हो गया, मगर मैं रोका नहीं। मैं बोला ये मिशन तो चालू रखना है। तो अभी बैंक लोन्स लेना शुरू करा, कड़प्पा में बैंक लोन लेके, तांडूर में बैंक लोन लेके बिल्डिंग बनाया, कड़प्पा में जमीन दिए। जमीन दिए तलक भी सीएम साहब थे, मगर बाद में बिल्डिंग मैं बनाया मेरे पैसे से, 1-2 फ्लोर्स का बिल्डिंग, 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाया। यहाँ भी एक 5,000 का स्क्वायर फीट तांडूर में बनाया, मगर गुंडर में बिल्डिंग ओन बिल्डिंग नहीं बनाया, किराए का बिल्डिंग मेरा एक दोस्त का नर्सिंग होम क्लोज हो गया तो वो लिया। 75,000 रेंट पर मंथ देता था, वो भी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट था, उन्हें भी काफी सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट दिया। अब हर जगह सब मेरे दोस्तों बोले अरे बंद कर दो तुम, पूरा फाइनेंशियली क्या कर रहे हो तुम, मुश्किल हो जाता, बंद कर दो। मैं बोला नहीं नहीं कहीं ना कहीं से हेल्प आएगा, ये तो आई हैव डन ऑलवेज आई हैड अ फेथ, आई हैव डन गॉड्स वर्क, आई नीड नॉट लुक आउट, ही विल टेक केयर। वो मेरा बहुत बड़ा जिद था, वो मेरा फेथ था। हलो हलो 25 करोड़ लोन कर दिया मैं, और कौन सा भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं था। अभी लोन से ज्यादा लोग प्रेशर करना शुरू करे, प्रॉपर्टीज में बहुत बनाया था स्वीकार के नाम पे। मेरा दोस्त में बोलते थे क्या तुम रियल एस्टेट कर रहे क्या, मैं बोला ये मैं तो स्वीकार के वास्ते खरीदा पैसा पूरा प्रॉपर्टीज। तो 32 एकर्स लैंड था स्वीकार, हैदराबाद से 30 एकर्स के डिस्टेंस में, 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 32 एकर जमीन लेके वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रूरल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मेंटली चैलेंज्ड। पूरे आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से भी आते थे लोग, बड़े बच्चे। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द मेंटली चैलेंज वो भी चलाया, काफी साल चलाया, सिर्फ 25 साल से ज्यादा चलाया। मगर जैसा मैं आगे बढ़ते गया तो आई स्टार्टेड सिंकिंग। अब मैं एक सर्विसेज पे नहीं रुका, और एक मिस्टेक नहीं, आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स बट आई डोंट थिंक अगेन इट इज नॉट ए मिस्टेक। हू एम आई टू डू, ही मेड मी डू, आई हैव डन, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। तो खाली सर्विस करे तो क्या फायदा बोल के टीचिंग शुरू करा, डिप्लोमा से शुरू करके 1-2-3 डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयर्ड, जो पढ़ते हैं वो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग देते हैं। मेंटली डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं नॉर्मल लोग, वो मंदबुद्धि बच्चों की सेवा करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। वैसी देन साइकोलॉजी, अब इतने लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सुइसाइड, मर्डर, स्टैबिंग, स्कूल ड्रॉप आउट, बच्चे मिसबिहेवियर और ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते थे, अल्कोहलिक हो जाते थे। मैं बोला ये सब दवाएं रोकना, ये सब रोकना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ स्टार्ट कर, दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन प्राइवेट इन आंध्र एंड तेलंगाना। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था एर्रागड्डा, दैट इज बहुत पुराना है, वो ब्रिटिश टाइम से था। मैं प्राइवेट में स्टार्ट करा तो मैं एक ही था, और रूरल में वहाँ भी लगाया। वहाँ लगाने के बाद क्या है, मेंटली लोग थे, मेंटली हैंडीकैप थे, तो एक आदमी बॉडी में गिर के सुसाइड कर लिया। तो उन्हें नोट लिखा, नहीं नहीं डॉक्टर इज वेरी काइंड, दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर अस वेरी वेल, ही क्रिएटेड ए शेल्टर फॉर अस, वैसा ऐसा अच्छा ही लिखा, अच्छा लिख के मर गया। तो मेरे को वहाँ से अब जब सेलफोन वेलफोन नहीं था, मैसेज आया ऐसा ऐसा एक आदमी मर गया। अरे मैं बोला निकाल दो आदमी को अंदर से, बॉडी से निकालो। वो एक्सीडेंटली मेरे साथ एक इंस्पेक्टर था, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं निकालना पड़ता, अब पंचनामा कराओ, आप इंस्ट्रक्शन बराबर दो, वो लोगों को पुलिस को बुला बोलो, गांव वालों को बुला बोलो, पंचनामा करके जब भी बॉडी निकालना है। तो इट वॉज ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। सो वो जमीन था, बहुत साल वहाँ भी चला। अब कोर्सेज बढ़ाते गया, डिप्लोमा से डिग्री, डिग्री में से पीजी, पीजी में से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी स्टार्ट करा। ये कोर्सेज स्टार्ट करने में अपने वैसे रेड्डी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों बोले तो मेरे को कौन सुनता था, यूनिवर्सिटी वाला कोई नहीं सुनता, आई एम नॉन एंटिटी। तो उन्होंने सेक्रेटरी बोला डॉक्टर साहब जो भी सपोर्ट होना, बोलते दे दो डॉक्टर हनुमंतराव को, कोई चीज रुकना नहीं है। तो मैं कोर्सेस स्टार्ट करा, यूनिवर्सिटी वाले रिफ्यूज करते थे, क्योंकि हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, आप कोर्स कैसे स्टार्ट करते, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। बोला भाई हम स्पेशलिस्ट देगा, ऑल ओवर द कंट्री से स्पेशलिस्ट को आपके बोर्ड में रहेगा, दे विल मॉनिटर दिस। तो ऐसा कोर्सेस का परमिशन तो मिला उनका, स्वर्गवासी होने के बाद हम बहुत उलझन में फंस गए। अब लड़ाई लड़ते गए, बहुत से प्रॉपर्टीज बेच दिया, गुंडूर का क्लोज डाउन कर दिया, तांडूर का क्लोज डाउन कर दिया, 17 ईयर्स चला है सब। आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग निर्माण वो भी क्लोज कर दिया, ओमफर दिएजर क्लोज कर दिया, बहुत से क्लोज करा। अभी थोड़े कोर्सेज चल रहे हैं स्वीकार में, सिकंदराबाद में, उसमें भी क्या बहुत से बाधाएं आ रहे हैं। ये जो इंस्पेक्शन को आते हैं मेडिकल काउंसिल के, वैसा रिहैबिलिटेशन काउंसिल बोल के है, वो दिल्ली में है, उससे पहले ही मैं स्टार्ट कर रहा था ये सेंटर। रिहैबिलिटेशन काउंसिल जन्म नहीं हुए से पहले हम सोच रहे, बिकॉज आई एम चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कोई नहीं था सिकंदराबाद हैदराबाद में, मैं ही स्टार्ट कर रहा था।

0: कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नाम ले हो, मैनेज एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाम लिख लो, मैं तो अपना नाम कहीं नहीं लिखा ना मतलब, बल्कि अपना कर्म निभाया हमने, हम कर दिया पर जो भगवान हमसे कराए हम कर दिया, नाम हम सब कोई आई डोंट बिलीव इन दैट। तो बहुत से कंपनी को बोला चेक पावर दो, कमिटी में ज्वाइन हो, मगर अभी तक तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, मगर लोग बहुत से थोड़े एक्सपर्ट करने को देते, हमारे कमिटी में मेंबर दो, तुम्हारे पास कमेटी मेंबर्स क्या सेवा करे, कुछ भी नहीं करे, खाली नाम दर्शन मूर्ति है। मैं बोला वो सब एक्शन मूर्ति है तो काम आगे नहीं बढ़ता।
1: लेकिन आपकी जो इस कहानी में मैंने एक चीज देखा कि देखने में लगता है कि ये तो कितना अच्छा काम है, ये तो मैं भी करना चाहूंगा, ये तो बहुत सुंदर सेवा है, मुझे भी करना चाहिए, ये भाव लोगों में जरूर आएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस सुंदर सेवा के पीछे कितना कठोर परिश्रम है, कितना मेहनत है, कितना चैलेंजेस है, और इन सभी परिस्थितियों को पार करने में एक व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए तब जाकर के वो कुछ ऐसा कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन जब मैं आपकी कहानी को सुन रहा था तो मेरा ध्यान उस टाइम पे गया जब आपने बताया कि आपके परिवार में सभी चिकित्सक थे, सभी डॉक्टर थे, और इसलिए चिकित्सक बनना या डॉक्टर बनना जायज ही लग रहा था। लेकिन आपने ये भी बताया कि उस दौरान आपको बहुत मॉनेटरी सिचुएशंस आए, बहुत सारा आपके सामने ऐसा परिस्थिति आया जहाँ पर धन की वजह से आपको कॉलेज से निकाला गया या हॉस्टल से निकाला गया, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े हुए और अपने पढ़ाई की। बार बार ये जो गिरना और उठना चलता रहा, उसमें आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से गिरने के बावजूद भी आप खड़े हो जाते थे, या आपके अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप कभी झुके नहीं?
0: बस मैं ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ और कुछ नहीं है। अपन तो बिल्कुल स्मॉल है, वी आर वेरी स्मॉल, इट इज ऑल ही इज द पावर, ही इज द पावर विद इन अस। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नाम हनुमान है, बोला भाई ये तो शक्ति है
1: जी, जैसे बस। हनुमान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं था, वो उन्होंने पर्वत भी दिखा, ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने पर्वत हाथों में उठाया और संजीवनी बूटी एक लेने गए थे, पूरा पर्वत ले आए, तो ऐसे ही आप एक का भला करने निकले थे और आपने पूरे पर्वत समान लोगों, मतलब एक बहुत बड़े हिस्सा का आपने जीवन कल्याण किया है, बहुत बड़े समुदाय का जीवन कल्याण किया है। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जब आप बॉम्बे गए पढ़ने के लिए और आपके परिवार को आवश्यकता थी उस समय एक ऐसे व्यक्ति की जो कि कमा करके डायरेक्टली उनको सपोर्ट करे, बट उस समय आपने अपना बहुत बड़ा जो मोटो है या आपके जीवन का उद्देश्य है, आपने समाज सेवा भले चिकित्सा के द्वारा ही हो, लेकिन आपने उन बच्चों के प्रति अपना जीवन और अपना समय अपनी शक्ति को लगा दिया जिनके प्रति लोगों का इतना भाव नहीं होता है, लोग उन लोगों से बहुत बेउम्मीद होते ही हैं, उनके परिवार वाले भी बेउम्मीद होते हैं कि ये तो मेंटली चैलेंज्ड हैं, मानसिक रूप से ये थोड़े से उतने परिपक्व नहीं है, आगे चल के क्या कर पाएंगे, तो परिवार वाले काफी दुखी होते हैं। ऐसे में आपने उनका हाथ थामा, आपके परिवार ने क्या साथ दिया आपका या आपके परिवार वाले?
0: मेरा ये एक बड़ा यज्ञ है, मैं तो बोलता हूँ ये बड़ा यज्ञ है, यज्ञ में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मदद करे, अकेला यज्ञ एक आदमी नहीं करता है, एक यज्ञ जो है बहुत ग्रुप से बनाया जाता है, उसमें ज्यादा भागीदारी तो मेरे पत्नी है डॉक्टर पॉसिबिलिटी निर्मला राव, तो बाद में मेरे बच्चे, मेरा पत्नी भी डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, मैं बिफोर मैरिज इंटरव्यू करा, मैं शी कम्स बहुत बड़े फैमिली से भी आते, उन्होंने उनके दो ब्रदर्स मिनिस्टर थे, तो बहुत बड़ा योगदान मेरे बीवी का था कि मतलब मेरे ओन प्रॉपर्टीज भी बेचना पड़ा, बहुत से मरता हुआ मेरा ओन हाउस भी मैं हाइपोथिकेट करना पड़ा, परसों जनवरी में रिलीज करा, फिर अभी परसों मैं ज़्यादा अभी सैलरीज नहीं दे सक रहा था, वैसे स्टेज में आ गया, तो क्या करा मैं एक बैंक को ओवरड्राफ्ट देने के लिए, एक फ्रेंड जो है डॉक्टर राम करी बोल के है, उन्होंने एक बैंक से इन्फ्लुएंस डाल के मैं भाई डॉक्टर साहब को मिनिमम 1 करोड़ ओवरड्राफ्ट दो, मेरे को सैलरी टाइम पे देने का है, मेरे को थोड़ा 1-6 महीने में संभाल लिया ना भागे आगे जा सकते, तो ओवरड्राफ्ट के फैसिलिटी करने के लिए फिर मेरा घर हाइपोथेकेट करना पड़ रहा, अभी वो प्रोसेस में है।

0: मिसेज मेरे पत्नी जो है बीच में नया आए, ये मत करो वो मत करो, मैं जो भी करा उसके साथ दिए, वो लोग मेरे साथ भी तकलीफ उठाए। मेरे को दो डॉटर्स है, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में है वो जो है फैशन डिजाइनर है, मेरे सेकंड डॉटर जो है वो, तो बड़ी डॉटर का नाम ममता राव है, छोटी डॉटर का नाम नम्रता, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है वो भी, उसको भी मैं सुपर स्पेशलिटी कराया, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। ये बहुत डिमांड ब्रांचेस थे, नियोनेटोलॉजी वो है। मैं बोला नहीं, जो सोसाइटी में शॉर्टेज है उसको दो, तुम ज्यादा लोगों को सर्विस कर सकते। वैसे मेरे सन इन लॉ भी है, मेरे दामाद जी डॉक्टर आनंद प्रसाद, उन्होंने भी नियोनेटोलॉजी करना चाह रहा था, तो आई हैड टू बैप्टाइज हिम, बैप्टाइज करके न्यूरोलॉजी में शिफ्ट कराया। वो टाइम पे काउंसलिंग जरूरत रहता, गाइडेंस जरूरत रहता। और एक सज्जन, मैं सब लोग मेरे बहुत से दोस्त थे इंग्लैंड में अमेरिका में, नहीं नहीं इंग्लैंड को अभी आना मुश्किल है वो ये बोले, तो मैं इंटरनेट में सर्च करके 6 इंडियन कंसल्टेंट को ढूंढ निकाला न्यूरोलॉजिस्ट को, उसमें जो 3 लोग बहुत बड़ा इंटरेस्ट बताया उसमें, और एक केरला का आदमी बहुत इंटरेस्ट बताया, डॉक्टर साहब यू सेंड बैक योर सन इन लॉ, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड आई विल बी हैप्पी टू ट्रेन माई बॉयज बैक होम, इंडिया नीड्स। वो आदमी अभी अमेरिका में है, वो बहुत हेल्प करा हमारे सन इन लॉ को, विद इन 15 दिन में उन्होंने वीसा भेजा दिया, वो हम भेजा दिया, वहां जाके हॉस्टल में अकोमोडेशन दिया, यू हैव टू पे ओनली फॉर द हॉस्टल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द हॉस्पिटल। तो मेरा सन इन लॉ न्यूरोलॉजी बना के, वो न्यूरोलॉजी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैदराबाद में नहीं था।
1: इसका मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले भी कहा कि केवल आपका सामर्थ्य नहीं है, कई लोगों का योगदान है इस यज्ञ में, जिसमें आपका पूरा परिवार भी है सम्मिलित और आसपास के आपके दोस्त साथी सभी सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जब लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो केवल धन संपदा और वैभव ऐश्वर्य ये सब कैसे प्राप्त हो उसके लिए सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि समाज में अभी किस चीज की आवश्यकता है, समाज में किस चीज की नीड है, उस आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए मैं अपनी उच्च शिक्षा का समय लगाऊं, ये सोच जो है बच्चों में या युवाओं में डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो कि आपने किया अपने बच्चों में भी और अपने जैसे परिवार वालों के लिए आपने कहा, और इसके वजह से आज उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। लेकिन आपके साथ जब उच्च शिक्षा का समय आया, जब आप एमडी करना चाहते थे और आपको बच्चों के लिए उच्च शिक्षा करना, पीडियाट्रिशियन बनने का आपको भाग्य मिला, उस समय आप वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन
0: हाँ
1: आज अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर मुझे पीडियाट्रिशियन नहीं बन करके अगर मैं जनरल फिजिशियन का एमडी कर लिया होता तो क्या आपका लाइफ डिफरेंट होता, और आप कुछ बदलना चाहते अगर आप बाय टाइम मशीन पहुंच जाए तो?
0: नहीं, इतना कर नहीं पाता था। ये बच्चों में एक बच्चे भगवान के स्वरूप है, ये दैव, स्वामी जी साई बाबा जी बोलते थे, दे आर दैव स्वरूपास, ये लोगों को कोई आशा नहीं रहता, ग्रीड नहीं रहता, नीड नहीं रहता, सो एनीथिंग विदाउट नीड एंड ग्रीड इज डिवाइन।
1: कि कोई भी चीज जो कि लोभ और आकांक्षाओं से जो परे है वो बहुत दिव्य होता है, और बच्चे जो है बड़े दैवी स्वरूप के होते हैं। इन
0: बिल्कुल
1: बच्चों की जब आप सेवा करते हैं तो ये स्पेशल बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं दूसरे बच्चों से, इनके प्रति समय और सामर्थ्य और व्यक्ति का जो उदारता है वो, उसका सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा चाहिए रेगुलर बच्चों से। कैसे कंपेंसेट कर पाते हैं आप समय को
0: नहीं,
1: या
0: बहुत से बहुत
1: एनर्जी
0: से
1: को?
0: बच्चे, वो मैं जब टाइम पे स्टार्ट करता था मंदबुद्धि बच्चे बहुत रहते थे, अभी मंदबुद्धि बच्चे कम हो गए। क्यों बोले तो साइंस बहुत एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, मगर दूसरे किस्म के डिजेबिलिटीज आ रहे हैं अभी। ऑटिज्म बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फीचर है, बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल रहता, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल रहता, मगर उसका प्रवर्तन बहुत अजीब रहता है, एक जगह नहीं बैठता है, ऊब तोड़ता फोड़ता, घर से बाहर निकल जाता, एक बंगले से और एक बंगले में कूदने को भी जाता, उसको को ये डेंजर है बोल के पता नहीं लगता है, गर्म की चीज भी पकड़ लेता है, लोगों को मारता काटता, ये बहुत बड़े वो दुख की बात रहता है फैमिली में। एक बच्चा ऑटिज्म है तो अब उसके अंदर मैं बहुत बड़ा रिसर्च करा, तो अभी दवाएं लिखता हूँ मैं, बहुत से दवाएं लिखता हूँ, बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट भी है दवाएं नहीं लिखना। मेरा लॉजिक क्या है, मैं तो दवाएं कोई चीज नहीं बना रहा हूँ। अवेलेबल मेडिसिन आई एम यूजिंग, दोज मेडिसिन वर यूज इन एडल्ट्स आर बीइंग यूज इन एडल्ट्स इवन टूडे, वही दवाएं कम मात्रा में बच्चों को दे तुम। तो ये आर्टिस्टिक बच्चे है, अभी मेडिसिन यूज करता हूँ, अभी लोगों को मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूँ, जो भी चांस मिला वो एडल्ट मेडिसिन से कम मात्रा में बच्चों को यूज करे तो क्या है, उन्हें स्टेबल हो जाता। अभी 90% बच्चों को 90% बच्चों को क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मेडिसिन से क्या है, अभी मेडिसिन के एक मेंटेलिटी है, रिहैबिलिटेशन फील्ड में अभी मोस्ट ऑफ लेडीज आर डोमिनेटिंग, लेडीज एंड नॉन डॉक्टर्स, तो उसमें क्या वो लोगों को मैसेज नहीं जा रहा, वो लोगों को कन्विंस करना बोल तो बहुत पब्लिसिटी करना पड़ता, ये जो जो बच्चों को बेनिफिट हो रहा है वो लोगों को बताना पड़ता। देर शुड बी लॉट ऑफ सेशंस दैट मेडिसिन आर यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन। मैं पीडियाट्रिशियन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड आई हैव डन पीएचडी इन साइकोलॉजी ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एट द एज ऑफ 50 आई हैव रिटन एग्जाम फॉर 5 days, देन आई टुक 3 years टू सबमिट माई थीसिस एंड गॉट द पीएचडी। Not 100 PhD as a showering, नहीं है। I got President of India award 7 times. ये पद्मश्री परसों आया, 5 times it was recommended. अभी 6th time बोला मैं ये last chance लेता हूँ सेल्फ nomination. अब मोदी जी साहब के ये हया में सेल्फ nomination भी है, तो मैं मेरा PA को बोला, वो मेरे को कंप्यूटर उतना नया था, तो बोला भाई तो चलो अपलोड करते जा, किसी को नहीं बोलेंगे। आई डिडंट टेल माय वाइफ आल्सो। जनवरी में फोन आया, होम मिनिस्टर से फोन आया, देयर इज अ गुड न्यूज, वी वांट टू विल कांग्रेचुलेट यू। मैंने बोला सर क्या बात है, बोलता ऐसा यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पद्म अवार्ड, वो ये बोला था नहीं डू यू एक्सेप्ट, मैं बोला श्योर इट इज ऑनर। तो वैसा हुआ, जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, उगादि के दिन एग्जैक्टली 1 year नाउ टूडे। और एक चीज क्या है, इंसिडेंटली युगादि के दिन मैं स्वीकार स्टार्ट करा।
1: अच्छा, तो स्वीकार को भी युगादि के दिन पे उसके जन्मदिन की बहुत बधाई।
0: मार्च 17, 1977, 47 years हो गए अभी। तो अभी तक तो चल रहा है, अभी तो ज्यादा लोग ऑल ओवर द कंट्री से, फॉरेन से भी आ रहे हैं लोग ये मेडिसिन दे रहे हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो सम्मान है, जैसे आपने बताया 7 बार आपको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ और इस वर्ष 2023 का आपको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, क्या इन सम्मान और पुरस्कारों की वजह से आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा, वो थोड़ी सहज होती है या मुश्किलात उतनी ही आते रहते?
0: मुश्किलात में तो कुछ कमी नहीं हुआ, मगर एक ही क्या है, मैं आई गॉट रिचार्ज, माई एनर्जी गेट्स रिचार्ज। मैं डिमोरलाइज हुआ तो ये सब चीजें मेरे को रिचार्ज कर देते, आगे बढ़ाते रहते, प्रोपेल करते रहते, तो कहीं रुक नहीं पाया, ये जर्नी तो चलाते जा रहा हूँ आज तक भी। तो ये पद्मश्री पुरस्कार आने के बाद बहुत से लोगों को मालूम हुआ, उससे पहले बीच राय अवार्ड भी आया था, वो भी बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेसिडेंट से दिया हुआ है, मेडिकल फील्ड में बड़ा अवार्ड है वो भी, मगर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम।
1: जब आप राष्ट्रपति भवन गए पद्मश्री सम्मान लेने के लिए और जब आप राष्ट्रपति महोदय से मिले, तो क्या बातचीत हुई आपकी या कैसा रहा आपका यह?
0: नहीं अभी सब तो मैं आपको भिजाना, मैं भिजा तो मेरा वीडियो है, अभी सब थे प्राइम मिनिस्टर से।
1: हाँ जी, हाँ जी, आपका स्वीकार का मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा है, बट ये पुरस्कार का आप बता रहे?
0: पुरस्कार थे, पीएम साहब थे, अमित शाह थे, पूरे जयशंकर जी थे, सब शांतिवनम के दाजी थे
1: जी,
0: उनको मैं सामने देखा था, तो उनको भी जाके चरण प्रमाण प्रणाम करा, क्यों बोलते सब डिवाइन सोल्स है, वो लोगों को मिलना तो मुश्किल है। मैं बोला अपोजिट में, मेरे अपोजिट में बैठे थे, मैं उठ के जाके उधर चरण प्रणाम करके आया, तो वो एक सौभाग्य है, जब दर्शन हुआ तो भाई चलो। अभी पीएम साहब और सबको मिले, एक एक को आके एक एक को करचालन करे, तो उनके सामने अपन बात नहीं कर सकते, इतना बड़ा पर्सनालिटी है ना, अपन अपना मुंह बंद हुआ था, तो फिर भी बोला मैं सोएंसो और क्या बात कर सकते उनसे
1: जी।
0: सच्चे पर्सनालिटी एक, बस अभी क्या बोल सकते, अभी देखना है अभी कैसा कैसा अपना कंट्री तो आगे बढ़ रहा है। अब उन्होंने इतने चीजों के सामना कर रहे हैं, हम तो नाचीज है, हम जो चीज को हम सामना कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम है।
1: ये मुझे जो चीज समझ में आता है कि आप वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं करते हैं और आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही नम्र चित्त हैं। इसीलिए मुझे ये उत्सुकता थी कि आपके सामने जब राष्ट्रपति महोदय थे, क्योंकि वह भी एक बहुत ऐसी नम्र चित्त व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन बिल्कुल ही निर्माण है, कोई अभिमान नहीं है, बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए आज वो उस मुकाम पे पहुंची है। तो मुझे वही लगा कि जब ऐसी दो हस्तियां आमने सामने होती है तो कैसा अनुभव होता होगा, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा।
0: जी।
1: मुझे एक और चीज ये जानना था कि ऐसे आपके जीवन में आपने इतने सारे बच्चों के साथ समय गुजारा है, उनको समय दे करके, उनको चिकित्सा के द्वारा, उनको काउंसलिंग के द्वारा आपने बेहद मदद पहुंचाई है, स्वीकार, उपकार, रक्षा,
0: आश्रय, सुरक्षा,
1: आश्रय और सुरक्षा, इन चार माध्यमों से आपने उनके जीवन को एक सर्वांगीण विकास का रास्ता दिया है। इस दौरान आपके सामने कोई ऐसा केस, ऐसा कोई बच्चा आया हो जिसकी कहानी आपके दिल को छू गई या जिसके द्वारा एक आपको शिक्षा मिली, कोई ऐसी कहानी आई क्या? दो
0: ऐसा तो बहुत से है, एक तो हाथ बोल के भी नहीं है, बहुत से है। मैं एक दिन एक स्वीकार के नाम पे एक प्लॉट लिए थे, वो साइड को जाने के लिए एक हार्डवेयर शॉप के पास रुका, वो इंक्वायरी कर रहा था, एक बच्चा आके नमस्कार करा, साहब मैं स्वीकार में पढ़ा, मैं स्वीकार में स्वीकार का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ अभी स्टील शॉप में काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ और एक दोस्त थे, उन्होंने बहरेन से आए हुए थे, आनंद बाला बोल के, बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने बोले डॉक्टर साहब कितना खुशी होता वो आदमी आके हंसते हुए आपको विनम्रता से नमस्ते कर रहा है। मैं बोला हाँ भाई मेरे भी खुशी होता, वही आनंद है, वही हमारा प्रॉपर्टी है, हम तो ज्यादा कुछ कमाए नहीं है, मगर भगवान नहीं गिरा है हमारे, आनंद है। तो आत्मतृप्ति बोलते है ना, आत्मतृप्ति है
1: जी, आत्मतृप्ति ही आनंद है।
0: आत्मतृप्ति जब नहीं रहता आदमी दुखी रहता,
1: जी
0: दुखी रहता आदमी,
1: आत्मतृप्ति ही आनंद है। और आनंद जो आपने बताया वो दूसरों की खुशी में, मुझे इसमें एक और चीज जानना था कि जैसे ये तो एक आपने ऐसा किस्सा बताया जो कि किसी बच्चे ने जिसने कुछ उपकार प्राप्त किया है स्वीकार के द्वारा और उसके जीवन में संवर्धना हुई और फिर वो आपके सामने आया, क्या कभी कोई ऐसे लोगों की कहानी आपको सामने आती है या आपको याद आता हो कोई ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा किस्सा जहाँ लोग आपके जो अगेंस्ट थे, जो आपके विपरीत दिशा में खड़े थे, आपके कार्य को देखते हुए धीरे धीरे वो बदल गए, कोई ऐसा कोई कहानी आपको याद आता?
0: नहीं, एक सेइंग है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन प्रोग्रेस विदाउट रेजिस्टेंस। मेरे को जितना क्रिटिसाइज कर रहे थे उतना आगे बढ़ते गया, मेरे को जितना रुकावट बढ़ते गया मैं, मेरा प्रॉब्लम और इजी होता गया। मेरे ऊपर कोर्ट केसेस है, मैं एक्सेस बनाया बिल्डिंग, मैं बोला था मेरा प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो गिराने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया गया इसको डिसमेंटलिंग नोटिस, वो भी बनाने के 15 साल के बाद। मैं बोले थोड़ी दुष्ट शक्तियां रहते, ये दुष्ट शक्तियां क्या है, यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस संतान भी रहता ना, ये मैं कर रहा हूँ यज्ञ है, वो यज्ञ को भंग करने के लिए बहुत से दुष्ट शक्तियां पैदा होते। तो मेरे को कोर्ट को खींचे, मैं बोला चलाते गया, अब कड़पा में 10 एकड़ तुम्हारे कई को, हमारे को दे दो 9 एकड़, कलेक्टर नोटिस दे दिया, वहां भी केस चल रहा, तो केस मेरे फेवर में आया, मगर दुखी हो जाते हम, इतना परेशान होना पड़ता, कोर्ट को जाना, वो सब बड़ी चिंता की बात है। अब बिल्डिंग गिराना बोल के बोल नोटिस दिया तो कोर्ट को जाना पड़ता, मैं 1-3-4 मरता गया, मैं बोला भाई मैं कोर्ट को नहीं आता, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या, हम अच्छे भावना से बनाए, मेरा तो प्रॉपर्टी नहीं हो, एक कुर्सी भी मेरा नहीं हो। तो मेरा पीए को लगाया, एक बच्चा है, यंग बच्चा है, पूरा उन्हें कोर्ट को घूमता, उसको पर वो जीपीआई दे दिया, वो पूरा कोर्ट को उन्हें फिरता है। तो इतने संघर्ष करना पड़ा मेरे को, कहीं इजी वर्क नहीं चला मेरा। आज भी बहुत से बड़े बड़े बहुत पैसा ऐसे वाले नहीं दिए मेरे को पैसे, छोटे आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, उन्हें मंथली पेंशनर है तो साल को एक मरतब आके 1-20 हज़ार दे के जाता था। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर साहब को मिल सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, बराबर मिल सकते। मेरे फोन आए नीचे से, एक एक साहब है हर साल अपने को 20 हज़ार देते, उन्हें मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो ठीक है भाई, लेको चलते के व्हील चेयर में लाओ। नहीं नहीं, विद सपोर्ट इज वॉकिंग। नहीं, व्हील चेयर में लेके आ, बोला ये रिफ्यूज टू कम ऑन व्हील चेयर। तो आदमी को पकड़ के सपोर्ट से आ गया ऊपर, मैं उठ के नमस्कार करा, पेट में मुंडी डाला। नहीं नहीं, आप उठना नहीं, आप महान है। मैं बोला मैं कहाँ से महान हूँ, आप इंजन है, मैं इंजन हूँ, बगैर इंजन का इंजन नहीं चलेगा,
1: इंजन नहीं चलेगा, बगैर फ्यूल के तो नहीं चल सकता।
0: बोला आपके आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत एजेड था आदमी, मैं ऐसा झुक के नमस्कार किया तो वो रो लिया आदमी। बोला नहीं नहीं, ये आप भी भागीदारी है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक ने एक आदमी से नहीं होता। बार बार बोलता हूँ, कोई लकड़ी डालता, कोई घी डालता, कोई पंचदान डालता, कोई प्रेयर पढ़ता। बोला आप सब लोग भागीदारी है इसमें, तो अपने अपने अकाउंट सेपरेट है, उसके बाद ईश्वर के पास जॉइंट अकाउंट नहीं है, बेनामी अकाउंट नहीं है वहाँ। जो आप ठीक काम करते हैं, नेक करते हैं, वहीं जाता है, सेपरेट अकाउंट में जाता है। मैं तो खाली एक इंसान हूँ। तो दूसरे लोग मेरे को एक दिन नीचे आ रहा था बंगले, वो थर्ड फ्लोर से, मेरा ऑफिस थर्ड फ्लोर पे, डॉक्टर साहब आप इतने लोगों को पैसा पूछते, मैं अकेला दे सकता हूँ पैसे, ऐसा देखा मैं। ठीक है, तो मैं मेरे बच्चे अच्छा कर दो देता हूँ। मैं बोला मैं नहीं कर सकता आपके बच्चे को, ईश्वर मेरे को सब कुंजियाँ नहीं दिया, थोड़ा ज्ञान दिया है, थोड़ा बुद्धि दिया है, थोड़ी कुंजियाँ दिया है, उसी को ऑपरेट करता हूँ, वो उसी की कृपा है, अब उसी को पूछो, मैं नहीं दे सकता, अब मैं आपके पैसा भी न करूँ। तो फिर एक बात बोला, आप ऊपर वाले से बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे से बिजनेस नहीं कर, आपके जरा बुद्धि जो है चेंज होना है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि किसी को तो नहीं छोड़ता, उसको एक झलक तो देता हूँ। क्यों बोलते हो? विद्यादान, हर एक को एक झलक दे दू। बस मैं ये तो समझा दिया, देखो आपका बच्चे को मैं अच्छा नहीं कर सका, देखो बहुत से बच्चों में तो फायदा हो रहा ना, ये स्वार्थ छोड़ दो आप। जब आपका नियत ठीक रहता है, भगवान की कृपा आपके ऊपर आता है।
1: ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब व्यक्ति का नियत साफ होता है तो मुराद हासिल होता है, अर्थात जब उसकी नियत साफ है, दिल साफ है, तो ऊपर वाला भी बैठा होता है, मेहरबानी उसके ऊपर झड़काने के लिए उसके ऊपर मेहरबानी होती रहती है। मुझे आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है, वो ये कि आज कई लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, युवा जो है, एक दिशा ढूंढ रहा होता है, वो अपने जीवन में कोई जॉब ढूंढ रहा होता है या कोई स्टार्टअप करता है, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, उद्देश्य तो उसका यही होता है कि इससे लोगों का भला हो, लेकिन उस रास्ते में चलते चलते कई बार वो इतने उलझ जाते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था उस काम को, वो उद्देश्य पीछे रह जाता है और भागम भाग दौड़ ये बहुत आगे निकल जाता है। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, कौन सी चीजें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान कर सके, या कौन सी वो बातें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे जो उन्होंने उद्देश्य लिया है उस उद्देश्य को वो मूल रूप से पकड़ के रखे, उसमें कोई घोल मेल या उसमें कोई जो बाहरी तत्वों का सम्मेलन हो जाता है वो ना, उसकी प्यूरिटी को कैसे मेंटेन करे, किसी भी यज्ञ के भाव को कैसे संजो करके रखा जा सके।
0: मैं इंडिया में 32 कोर्सेज स्टार्ट करा था, वही माध्यम से क्या है, ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग करूंगा, ज्यादा लोग जाके सर्विस करेंगे। एक डॉक्टर मतलब कितने लोगों को सर्विस कर, तो बहुत से स्पेशलिस्ट आना बोल के 9700 स्पेशलिस्ट को मैं डेवलप करा। देयर इज एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीकार टू द सोसाइटी, बट वेरी फ्यू रियलाइज माई कंट्रीब्यूशन। लोग समझते कि पैसा आता, पैसा कहाँ से आता? 25-35 थाउजेंड दिए तो मैं डिग्री बताया, आज एक एक बच्चा जो है महीने को 2-3 लाख भी कमाता है, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी क्लिनिक लगा के, एक एक को 6-6 क्लिनिक भी है। हमारे स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़े, जो 25,000 साल को दिए, मैं तो आज बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ, क्वार्टरली मैं 25,000 देता हूँ हाई स्कूल बच्चे को। मैं उसको डिग्री कराया और कड़पा में कराया डिग्री, गुंटूर में कराया, मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या है, वो कोई नहीं सोचा। बच्चे अभी ज्यादा परिवर्तन है जनरेशन में, कोई चीज की वैल्यू नहीं।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधु

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 15 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को 3 कथाएं सुनाते हैं यथार्थ रूप में। बाबा कहते हैं दुनिया में ये 3 कथाएं मशहूर है। एक तो अमरनाथ की कथा, दूसरी है तीजरी की कथा और तीसरी है सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते वास्तव में अमरनाथ की कथा जो बाबा आकर के सुनाते हैं हमें अमर लोक में जाने के लिए। अमर लोक परमधाम को नहीं कहा जाता है, नई दुनिया को कहा जाता है जहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ऐसे अमर लोक में जाने की कथा बाबा सुनाते हैं। दूसरा बाबा कहते तीजरी की कथा। दुनिया में ये भी मनुष्य नहीं जानते कि तीजरी की कथा क्या होती है। वास्तव में ये तीसरा नेत्र खोलने की कथा है। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु विधाता परमात्मा ही आकर के हम सबको देते हैं। जिस ज्ञान चक्षु से हम तीनों कालों को तीनों लोकों को जान जाते हैं, तो ये तीजरी की कथा है। और तीसरी है सत्य नारायण की कथा। बाबा कहते हैं ये वो ज्ञान है जिससे तुम नर से सो नारायण सहजता से बन सकते हो, अर्थात मनुष्य से सो देवता पद की प्राप्ति कर सकते हो। रूहानी बाप आते ही है सब रूहों को वर्षा देने के लिए, और यह वर्षा अविनाशी 2 युग तक चलता है। तो ये तीनों कथा इस समय बाप आकर के हम बच्चों को सुनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अमर बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक निर्वाण धाम को नहीं कहा जाता। अमर लोक अर्थात जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। अमर लोक की भेंट में ही इस समय को कहा जाता है, ये कलियुगी दुनिया मृत्यु लोक है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएं। अमरनाथ बाबा अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई देख ना सके। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है।
जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और स्थूल वतन के भी आदि मध्य अंत को तुम जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। सारे कल्प में एक ही बार हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। इसलिए मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं। और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं, मैं यह पढ़ता हूं, मैं यह करता हूं, देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़ो, ये रूहानी नॉलेज अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। अब यह तो रॉन्ग है ना, एक व्यक्ति को कथा सुनाने के लिए भी कंदराओं में ले जाकर के पहाड़ों पर ले जाकर के सुनाना, बाबा के ये तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो सच क्या है, झूठ क्या है। अब सारी यथार्थ बातें हमारे सामने स्पष्ट हो रही है, तो अब तुम जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए, सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं, यह है शिव बाबा वा रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह है शिव बाबा वा रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह अंतिम यज्ञ है। इतना स्पष्ट बाबा ने समय का इशारा दे दिया कि यह है अंतिम यज्ञ। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है, घंटों का भी नहीं, थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है, वह तो कह देते मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष भी पड़े हैं। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सन्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा, बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है, जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्मकांड का झाड़ है।
यज्ञ व्रत नेम जप तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्य की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। जब से हम भक्ति मार्ग में आए, भक्ति मार्ग आरंभ किया, तब से बाबा कहे दूसरे धर्म स्थापन हुए और हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रसम रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया, तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। क्राइस्ट ने जैसे ही क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया तो क्रिश्चियन चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। क्यों नहीं कहला सकते? क्योंकि बाबा कह समझते हो हम तो पापी नीच कंगाल विकारी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने लिए अमर कथा सुना रहे हैं। जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। कोई मरा तो कह देते स्वर्गवासी हुआ, तो बाबा के स्वर्गवासी बनने का कोई पुरुषार्थ थोड़ी किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को अमरनाथ बाबा को कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यहां ये बेहद का यज्ञ है और इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है, जहां ये तीनों कथाएं विस्तार में पढ़ाई जाती है। बाबा कहते यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठा है। यज्ञ भी है, कॉलेज भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई। दुनिया में लोग कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई। तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? जब हमारे साथ लड़ाई नहीं है तो फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना। मौत तो बाहर है, यहां लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए
तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है, हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। मनुष्य सृष्टि को रचा इसीलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे, कब रचते हैं, कैसे रचा, कब रचते हैं, ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही है पतित पावन आओ, तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभि सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को, हर एक मनुष्य मात्र को, हर एक चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। हर एक चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से फिर पुरानी जरूर होती है, नई है पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंचते ऊंच मां बाप, बाकी है बच्चे। अभी मां बाप से वर्षा मिल सकती

सकता है। बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, बाबा के जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहां तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो, आत्मा की कितनी कमाई हो जाती है 21 जन्मों के लिए, विचार करो। 21 जन्मों की कमाई हो जाती, वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसा देंगे। यहां बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए कितने शाहूकार बनते हो। वहां सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां से आए। यह है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पति पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं, जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम सोने कला संपूर्ण बनते हो। ये सच्ची कथा सुनकर के ही हम सोने कला संपूर्ण बनते हैं। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न सोने कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्होंने में खाद पड़ जाती है। सत्य त्रेता पूरा हुआ उसके बाद धीरे धीरे खाद पड़ने लगती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न सोने कला संपन्न 100 देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए, इस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए, बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो ब्रह्मा बाबा द्वारा, ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा भी शिव बाबा का हो गया। ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके, ब्रह्मा द्वारा मिलता है। क्यों ब्रह्मा से नहीं मिल सकता है, यह भी भाई हो गया, भाई भाई को वर्षा नहीं देते हैं। ये शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, इक्षु बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा ब्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। शरीर छोड़ा तो आत्मा एक सेकंड में उड़ती है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, ब्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूं। एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेते हैं तो वहां जाकर ब्रुकुटी के बीच में विराजमान होता हूं। बुद्धि में समझ है, हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आश नहीं रखते,
आत्म साक्षात्कार करने की भी आश नहीं रहती है। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है, मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहां तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल के दुखों से भी छुड़ा देते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। वो सब दुखों से छुड़ाए तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं को रूह समझ। रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सच खंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को साफ करना है। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लिख भी न रहे। जो भी व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ कर्म किया है, बाबा कहे दूसरे दिन उसकी लिख भी न रहे, माने उसका निशान भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहब राजी हो जाएगा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना यह भी अपवित्रता है। खाली व्यर्थ संकल्प करना यही अपवित्रता नहीं है, लेकिन दूसरों के भी व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना यह भी अपवित्रता है। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। अभी की रिजल्ट में कहां सहनशीलता अधिक है, कहां सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाओ।